0: तरह से फ्री था, पूरी तरह से मुफ्त था।
1: देश हित में और देश के लोगों के हित में मोदी जी जब भी कोई अच्छा फैसला लेते हैं, इनको वो भाता नहीं है, इनको मोदी फोबिया हो गया है। यूपीआई से अब सरकार ने स्पष्ट किया है 2000 तक कुछ नहीं होने वाला, और 96% लोग 2000 से ज्यादा यूपीआई से लेन देन, ये आंकड़े हैं, लेन देन नहीं करते। फिर भी पर्सन सुपर डन पर्सन, कोई एमडीआर नहीं लगने वाला है।
2: यूपीआई पर लगे चार्ज को लेकर मोदी सरकार और बीजेपी समझा रही है कि ग्राहकों पर इसका कोई सीधा सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि घूम फिरकर ये आम आदमी की जेब पर ही आएगा। इसी बीच यूपीआई पर चार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजेक्शन्स पर नए चार्ज लगाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
3: राहुल गांधी के जवाब में मोदी सरकार और बीजेपी ने यूपीआई पर लगे चार्ज पर देश को समझाना शुरू किया कि पहले तो 2000 रुपए से नीचे के भुगतान पर कोई चार्ज नहीं है, और 2000 रुपए के ऊपर के ट्रांजैक्शन पर चार्ज ग्राहक को नहीं बल्कि दुकानदार या कारोबारी को देना होगा। सरकार ने एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू किया है, यानी 15 अक्टूबर 2026 से 2000 रुपए से ज्यादा के चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% एमडीआर लगेगा। इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगी। ये शुल्क मर्चेंट से लिया जाएगा, ग्राहक से नहीं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो कह रही है कि एमडीआर यानी यूपीआई पर लगे चार्ज का ग्राहक से कोई लेना देना नहीं है, तो आखिर में ये टैक्स घूम फिर कर आम आदमी की जेब पर ही आएगा।
4: मिनिस्टर फाइनेंस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एक आम नागरिक पर्सन टू पर्सन पे करता है तो कुछ नहीं, पर्सन टू मर्चेंट होता है जो उस पर 0.4% लगेगा, वो भी मर्चेंट को देना है, आदमी को नहीं देना है।
0: मैं और आप और इस देश का हर व्यक्ति जानता है कि कोई मर्चेंट बढ़ी हुई कॉस्ट को खुद बेयर नहीं करता है। उसका बड़ा आसान तरीका है, वो कैसे ये कॉस्ट निकालेगा, कुछ नहीं करेगा, वो धीमे से कीमत बढ़ाएगा। बार बार हमने ये देखा है।
3: आपको बता दें कि अभी एक हफ्ता पहले ही हुआ जब ब्रिक्स बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की ताकत दुनिया को बताई थी। मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 50% रियल टाइम पेमेंट यूपीआई वाली तकनीक से होते हैं।
5: भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई, इसने पॉपुलेशन स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजेक्शन को नई गति दी है। आज विश्व के 50% रियल टाइम पेमेंट्स इसी टेक्नोलॉजी पर होते हैं।
3: लेकिन जैसे ही यूपीआई पर 0.4% एमडीआर लगा तो सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। कांग्रेस कह रही है कि पहले तो सरकार कहती थी कि यूपीआई करो, अब उसी यूपीआई पर चार्ज लगा रही है।
0: क्योंकि आप ही ने तो कहा था भैया कैश यूज करना बंद करो, यूपीआई करो, यूपीआई करो। आप सेल्समैन बने हुए थे यूपीआई के, और अब उसी यूपीआई की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
6: तो मुझे लगता है कि सरकार चलानी है तो सरकार के रेवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए ही। और राहुल गांधी का आरोप है कि भाई अमेरिका के कहने पर ही ऐसा किया है, तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें? हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
3: आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट्स पर चार्ज लगाने के फैसले को भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को टिकाऊ बनाए रखने के लिए जरूरी कहा है, तो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स वाली कंपनियां भी इसके फायदे गिना रही हैं।
7: यूपीआई का एमडीआर 0.4% पे आज भी दुनिया का सबसे सस्ता एमडीआर है, मगर वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि होपफुली उसके वजह से फोन पे और बाकी जितने भी पेमेंट कंपनीज हैं, अब हम लोग भी जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे वापस मार्केट को ग्रो करने में।
8: आई थिंक अगले लेवल की ग्रोथ के लिए ये एमडीआर बहुत जरूरी है, और ये इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है ताकि यूपीआई का और उद्धार हो, भारत का और उद्धार हो।
3: लेकिन कांग्रेस सरकार के यूपीआई वाले फैसले पर न सिर्फ सवाल उठा रही है बल्कि महंगाई से जूझते लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा बता रही है।
0: बजाय लोगों के मरहम लगाने के, महंगाई से जूझते हुए लोगों के घाव पर नमक मिर्च रगड़ी जा रही है कि ऐसा कैसे है भैया, हम तो अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए, मोदी जी कह रहे हैं तो वसूली तो तुमसे करनी पड़ेगी क्योंकि उनके इशारे पे की जा रही है।
9: कोई टैक्स नहीं है, 96% से ज्यादा लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
3: मोदी सरकार यूपीआई को भारत की बड़ी सफलता बताती है। 2016 में नोटबंदी के बाद भारत में लेस कैश और डिजिटल पेमेंट्स का मुद्दा राजनीतिक चर्चा में आया था और अब एक बार फिर से इस पर सियासी घमासान छिड़ा है। 15 अक्टूबर से यूपीआई की नई व्यवस्था लागू होगी, लेकिन आम जनता और कारोबारी इस पर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं।
10: ग्राहक तो उस पे लगा देगा ही चार्ज, क्योंकि भाई वो ले रहा है 2000 के ऊपर पेमेंट ले रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो जनता पे ही लगा देगा।
11: बिल्कुल, दुकानदार जनता से ही वसूलेंगे, वो अपनी लागत नहीं बढ़ाएंगे।
12: सरकार थोड़ी हमें मतलब दुकानदार के पास हमारा निपटारा करवाने आएगी कि न इनसे फीस नहीं लेनी।
13: निश्चित रूप से देश के 10 करोड़ छोटे व्यापारी रिटेल कारोबारियों के लिए एक बहुत बड़ा ग्रहण होने वाला है।
14: सामने वाला हमें देना नहीं चाहेगा और ये एक एक्स्ट्रा, इसके हमें नहीं लग रहा था कि सरकार को कोई इसी हो सकता थी।
15: जो है मोदी सरकार कहती है कि जो है ऑनलाइन आप जो है लेन देन करिए तो वो प्रथा फिर बंद हो जाएगी, फिर पुरानी प्रथा पे हमको लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
16: यूपीआई कहते हैं पहले गुड़ खाओ और बाद में ढेला, वो हाल है।
3: आज तक ब्यूरो।
2: यूसीसी पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद छिड़ा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले एनडीए में यूसीसी को लेकर विरोध के सुर उठे, अब मुस्लिम स्कॉलर्स और धर्मगुरुओं ने भी कॉमन सिविल कोड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल मुस्लिम वोट बैंक का है, लिहाजा कांग्रेस हो, ओवैसी हो या फिर समाजवादी पार्टी, सभी यूसीसी को संविधान विरोधी बता रहे हैं।
3: यूसीसी पर चुनावी प्रयोग या फिर संयोग,
17: फिर बड़ा खराब मिल गया।
3: यूसीसी के खिलाफ मदनी ने खोला मोर्चा।
18: यूसीसी तुम लागू कर रहे, निकालना लगी हाथ को।
3: ओवैसी की एंट्री यूसीसी पर खतरे की घंटी। तेजस्वी और अखिलेश यादव का ऐलान,
19: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है।
3: बीजेपी का शुद्ध कम्युनल एजेंडा है यूसीसी। यूसीसी पर लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आए। कॉमन सिविल कोड पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान से उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं दे रहा। पहले यूसीसी पर एनटीए के अंतर मतभेद सामने आए, अब विपक्ष और इस्लाम के जानकारों ने खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया है। अरशद मदनी ने ऐलान किया है कि देश के मुसलमानों को ऐसा कोई कानून कबूल नहीं है जो शरीयत के खिलाफ है। गृह मंत्री का ये ऐलान है कि 2029 से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि देश संविधान से चलेगा या किसी राजनीतिक दल के वैचारिक एजेंडे से। हम ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं कर सकते जो शरीयत के खिलाफ हो। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपने धर्म और दीन से हरगिज नहीं। ये सवाल मुसलमानों के वजूद का नहीं बल्कि उनके संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों का है। सरकार समान नागरिक संहिता के माध्यम से मुसलमानों से वो अधिकार छीनना चाहती है जो देश के संविधान ने उन्हें दिए हैं। मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में यूसीसी एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने बीजेपी के यूसीसी प्लान पर सीधा हमला बोला है। जनता समझ रही है कि भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है, दरअसल उसका फुल फॉर्म कुछ और है, यूसीसी यानी अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। इधर सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का पोस्ट आया, उधर यूपी में टीम एनडीए ने अखिलेश की टिप्पणी को हाथों हाथ उठा लिया। बस फिर क्या था, पूरे मामले में हिंदू और मुसलमान की सीधी एंट्री हो गई।
20: समाजवादी पार्टी के मुखिया हमेशा इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई नीति नहीं है। लोगों को बरगलाना, झुठलाना, इनके प्रकार सत्ता हासिल करना, इसके सिवाय उनका कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग अब स्वीकार नहीं करेंगे, उनको कभी माफ नहीं करेंगे। गुंडई, अराजकता, दंगा, प्रदेश की समाजवादी पार्टी के रीजन में जो हालात थे आज भी लोग भूले नहीं।
21: उनके सलाहकार कैसे हैं, उसी की वजह से वह सत्ता से बाहर है। संविधान हमेशा सामाजिक न्याय की बात करता है, तो जब सामाजिक न्याय तभी मिलेगी जब समान नागरिक संहिता रहेगा, समान अधिकार रहेगा, अधिकार तो कानून से मिलता है, अधिनियम से, अधिसूचना से। तो जब हिंदू कोड बिल अंबेडकर ने इसीलिए उनका विरोध किया था कि धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव है, इसलिए उनको इस्तीफा दिया था। कांग्रेस नहीं मानती थी और फिर मानना पड़ा कांग्रेस को। लेकिन एक विशेष वर्ग में अभी तक चला आ रहा है, हमारे यहाँ तो खत्म हो गया, लेकिन अभी विशेष वर्ग में जिनको वकालत कर रहा है, क्या महिलाओं को, मुस्लिम महिलाएं उनकी वोटर नहीं है क्या? मुस्लिम महिलाएं इस देश की नहीं है क्या?
1: अखिलेश यादव जी को कोई काम तो है नहीं, 5 साल सड़कों पर तो विरोध कर नहीं पाए चूंकि विरोध का उन्हें मौका नहीं मिला। अब वो ट्विटर खेल रहे हैं। ट्विटर खेल के देश में राजनीति नहीं होती। अखिलेश यादव जी दो ही काम करते हैं, या तो ट्विटर खेलते हैं या उस पर टीवी पर बैठकर गेम खेलते हैं, दूसरा उन्हें कोई काम नहीं है। कई कोड़ी हो गई, अब अखिलेश जी इस प्रदेश की राजनीति में नहीं आ सकते। वो तो एक बार मुलायम सिंह जी की कृपा से वो सीएम बन गए, अब दुनिया में की कोई ताकत उन्हें सीएम नहीं बना सकती।
2: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यूसीसी पर अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुके हैं, तो कुछ दिन पहले मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को योगी सरकार की मुसलमान विरोधी नीति का हिस्सा भी उन्होंने बताया। बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के बयानों को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा जा रहा है, तो वहीं यूपी चुनाव में ताल ठोक रहे ओवैसी लखनऊ से दूर भोपाल में यूसीसी को लेकर जबरदस्त तरीके से गरजे हैं।
3: AIMM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी यूसीसी के विरोध में बुलाई गई जनसभा में हिस्सा लेने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। मौका यूसीसी के विरोध का था, लिहाजा ओवैसी ने बीजेपी पर सीधा हमला बोला।
4: यूसीसी का कानून नाफिज किया गया, वो न सिर्फ मुसलमानों के कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के भी खिलाफ है। आप तमाम लोगों का यहाँ पर जमा होना, बीजेपी और दिल्ली में बैठे हमारे सुस्त वजीर आजम को पैगाम मिलता है कि हम आपके बनाए हुए कानून को भारत के संविधान के खिलाफ मानते हैं और हम पुरजोर इसके खिलाफ एहतजाज अपना दर्ज कराते हैं।
3: पहले ओवैसी ने यूसीसी को संविधान और मुसलमान विरोधी बताया, उसके बाद अपने चिर परिचित अंदाज में नौजवानों को किसी मौलाना की तरह शरीयत को लेकर बड़ी नसीहत दे डाली।
22: अरे सोवियत यूनियन इस्लाम को खत्म नहीं कर सका, ये आरएसएस कौन सी खेत की मौली है जो हक की सभा को बुझा सके? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों में तुमसे भीख मांग रहा हूं, मेरे नौजवानों तुम कौम का मुस्तकबिल हो। कानून बनते हैं, मिट जाएंगे बनाने वाले इंशाल्लाह, मगर याद रखो नौजवानों, तुम जब तक अपनी तबीयत पर शरीयत को गालिब नहीं करोगे, हम इनकलाब नहीं ला पाएंगे।
3: ओवैसी यही नहीं रुके, खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि यूसीसी के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने से देश का मुसलमान अब पीछे नहीं हटेगा।
22: तुम हमको कमजोर समझकर दबा रहे हो, मगर याद रखो जब कमजोर उठ जाएगा, बेकार हो जाएगा, तो जिंदगी उसको, उसकी जिंदगी का मकसद उसको समझ में आ जाएगा। जब कमजोर बेकार हो जाएगा, याद रखो मौत का डर दूर हो जाएगा, तो फिर किसी के महल आबाद नहीं रहेंगे, किसी का इख्तदार नहीं रहेगा। तुम हमको कब तक दबाओगे? अरे दबाते रहो, मगर हम दबने वाले हैं। तुम जितना दबाओगे उतनी ताकत से हम उठेंगे इंशाल्लाह।
3: यूसीसी विरोधी जनसभा में ही ओवैसी ने बीजेपी विधायक की विवादित टिप्पणी पर ललकारा।
23: मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब हिंदुस्तान में लोग कहते थे सुई बनाना नहीं जानते, तो मोदी जी ने कहा कि हम मिसाइल बनाएंगे। जैसे तुम करोत के चौराहे पर खड़े होकर मिसाइल लगाओ और काजी कैंप पे गिरा दो, वैसे ही। अरे मैंने यहाँ का काजी कैंप नहीं बोला, इस्लामाबाद वाला बोला था।
22: कोई रामेश्वर शर्मा साहब का बयान सुना, क्या बोले? मैं मिसाइल लॉन्च करूंगा करोत स्क्वायर से काजी कैंप पर। रामेश्वर शर्मा अगर तुम मई के लाल हो
3: मतलब यही है कि यूसीसी पर शाह के बयान पर बवंडर खड़ा हो चुका है। कांग्रेस भी यूसीसी पर बीजेपी को घेरने में पीछे नहीं है।
5: संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साथ लेकर क्या फर्क पड़ रहा है यूसीसी से? बताओ मुझे कि निकाह नहीं होगा क्या? हमारा निकाह ही तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या? फेरे ही तो होंगे, क्या तमाशा बना रखा है? कुछ भी नहीं है।
6: भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना, आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहाँ चली जाएगी? तो गृहमंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों सबसे मिल करके भारत बनता है। आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं, एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।
3: वही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने यूसीसी को कम्युनल एजेंडा बताया।
7: हमने सहारनपुर की मस्जिद भी गिरवा दी, फिर भी कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हम मेरठ भी मस्जिद गिरवाने जा रहे हैं, संभल भी जा रहे हैं, मुरादाबाद भी जा रहे हैं, कहीं कुछ हलचल ही नहीं हो रही है, तब यूसीसी। तो कुल मिला के भारतीय झगड़ा पार्टी जो है वो इस देश को बर्बाद करना चाहती है। अब इस देश के लोगों को तय करना है।
8: यूसीसी जो है वो किसी एक मजहब के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण मुल्क के लिए है। किसी एक धर्म के साथ उसको जोड़कर आप नहीं देख सकते, ये संपूर्ण मुल्क के लिए है। ये कानून हिंदू कानून नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का कानून है।
3: यूसीसी की बिसात पर तमाम सियासी पार्टियों के बीच शह और बात का खेल शुरू हो चुका है, लेकिन देखना यही है कि शह और बात के इस खेल में बाजी कौन जीतता है। आज तक ब्यूरो।
2: राजस्थान निकाय चुनाव तो खत्म हो गए, लेकिन जीते हुए पार्षद गायब हैं। कांग्रेस बीजेपी समेत निर्दलीय जीते करीब 10,000 नव निर्वाचित पार्षद होटल और रिजॉर्ट्स में अलग अलग जगहों पर बंद हैं। जनता ने भरोसा करके इन्हें चुन तो लिया है, मगर कांग्रेस बीजेपी और छोटे दलों को अपने ही पार्षदों पर भरोसा नहीं है। हालात ऐसे हो गए कि मतदान खत्म होते ही प्रत्याशी के मोबाइल से लिए गए और वोटिंग के बाद सीधे होटल पहुंचे और मतगणना के दिन भी चुनावी मैदान से दूर होटल के कमरों से ही नतीजों पर नजर बनाए रखी गई। यहां तक कि मतगणना के बाद जीत का सर्टिफिकेट लेने भी इनको जाने नहीं दिया गया। इनके एजेंट्स ने जीत का सर्टिफिकेट लिया है।
24: राजस्थान में टूरिज्म का भले ही ऑफ सीजन चल रहा, लेकिन फिर भी वहां रिजॉर्ट और होटल फुल। राजस्थान के पार्षद स्विमिंग पूल में चिल कर रहे हैं, तो कहीं परिवार का जन्मदिन मनाने के लिए सबको रिजॉर्ट में बुला ले रहे हैं। देर रात तक गीत संगीत की महफिल चल रही है। नाली पानी सड़क बिजली के लिए संघर्ष कर रही जनता को पसीने पसीने छोड़कर पुष्कर के रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल में मजे कर रहे हैं। ये ब्यावर के कांग्रेस के पार्षद। 9 सितंबर को वोटिंग के बाद से ही इन्हें रिजॉर्ट में बंद कर दिया गया है। दौसा के महुआ नगरपालिका में जीते ये बीजेपी के पार्षद, जो जयपुर के जामवारागढ़ में रिजॉर्ट में महुआ के विधायक राजेंद्र मीणा की बेटी के जन्मदिन की पार्टी में शरीक हो रहे हैं। इस पार्टी में आशीर्वाद देने बाड़ेबंदी में ही कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा आए। राजस्थान के 309 निकाय चुनाव में से बीजेपी को 85 निकाय में बहुमत मिला है, तो कांग्रेस को 45 निकाय में स्पष्ट बहुमत मिला है। बाकी 5 नगर निगम, 18 नगर परिषद और 122 नगर पालिकाओं में चाबी निर्दलियों के हाथ में है। 34 निकायों में तो निर्दलियों ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसे में पार्टी नेताओं को डर था कि कहीं जीतने वाले पार्षदों पर दूसरे दलों की नजर ना पड़ जाए और बोर्ड बनाने के समय कोई खेला ना हो जाए। इसी आशंका के चलते प्रत्याशियों को अलग अलग होटलों में ठहराया गया। मतदान के बाद पार्षद अपने वार्ड में जनता के बीच कम और होटल की चारदीवारी में ज्यादा नजर आए। सबसे ज्यादा खतरा अजमेर के कांग्रेस के पार्षदों को, जिन्हें 4 दिनों में 4 होटल बदलने पड़े और आखिर में इन्हें कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक के बेंगलुरु में ले जाना पड़ा है।
25: ऐसा कुछ नहीं है, हमारे तो बहुत बहुत ज्यादा, हमारे पास 11 के 11 निर्दल हमारे साथ है, 37 हम कांग्रेस ही हैं।
24: अजमेर के कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी हमारे पार्षदों को तोड़ने में लगी है। होटलों में पार्षदों की आवभगत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लजीज पकवान खिलाए जा रहे हैं, मौज मस्ती का भी पूरा इंतजाम है ताकि वफादारी निभाने के समय ये भाग न जाए। जयपुर में तो बीजेपी ने बहुमत मिलने के बाद भी पार्षदों को 30 किलोमीटर दूर बगरू के होटल में बंद कर रखा है, गेट पर ताला बंद, किसी की पत्नी प्रसाद लेकर पहुंच रही है तो किसी का बेटा दवाई लेकर आ रहा है।
0: प्रसाद खिला के आ रही
9: है? हाँ, गणेश जी का लड्डू।
0: क्या कर रहे हैं पति?
9: पति अभी तो प्रशिक्षण शिविर में है उधर ही।
0: क्या नाम है उनका?
9: राजेंद्र सैनी।
0: किस वार्ड से जीते हैं?
9: वार्ड 12 से। अभी कपड़े देने आई थी मैं उनको।
10: राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव तो हो गए मगर किसी को किसी पर भरोसा नहीं है। पार्टियों को अपने चुने हुए पार्षदों पर भरोसा नहीं है, कांग्रेस हो बीजेपी हो निर्दलीय सभी बाड़े बंदी में है। जयपुर का ये भंवर सिंह पैलेस है जहां पर बीजेपी के सभी पार्षद यहां पर कैद किए गए हैं। बीजेपी के पास मेजोरिटी है जयपुर में, बहुमत है, उसके बावजूद डर है कि कहीं बिक न जाएं, कहीं फूट न पड़ जाए, कहीं भाग न जाए, जिसकी वजह से इस तरह से सारे पार्षदों को यहां पर कैद करके रखा गया है। ये देख रहे हैं होटल में मुख्य द्वार पर ताला लगाया गया है, इस ताले को देखिए, और ताला जब गार्ड खोलता है तब जाकर किसी की पत्नी आ रही है प्रसाद लेकर, तो किसी का बेटा रहा है दवाई लेकर, और फिर तस्दीक करके अंदर भेजा जा रहा है। राजस्थान के 10,000 से ज्यादा पार्षद पूरे राजस्थान के अलग अलग रिजोर्ट में होटल में बंद हैं, कई तो हरियाणा के रिजोर्ट में पहुंचे हैं, गुजरात के रिजोर्ट में पहुंचे हैं।
24: डूंगरपुर में बीजेपी के जीते पार्षदों को जश्न मनाने का मौका नहीं, बस से लाए, सामूहिक शपथ दिलाई और वापस ले गए। घरवाले और समर्थक बस के बाहर से मिलते दिखे, कोई कपड़े दे रहा था तो कोई मिठाई तो कोई जीत की बधाई। इस पूरे बाड़ेबंदी का सबसे दिलचस्प पहलू निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों को लेकर सामने आया। चुनाव से पहले या मतदान के बाद जिन निर्दलीय प्रत्याशियों को राजनीतिक दलों ने अपने संभावित काम के चेहरे के तौर पर देखा, उन्हें भी अपने साथ होटल में रखा गया। वजह साफ थी, वोट बनाने के लिए एक एक पार्षद की गिनती महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन जैसे ही नतीजे आए और इनमें से कुछ प्रत्याशी चुनाव हार गए, कहानी भी बदल गई। जो कल तक पार्टी के मेहमान थे, जीत की उम्मीद खत्म होते ही उनकी होटल वाली मेहमान नवाजी भी खत्म हो गई। हारने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों को होटल से वापस घर भेज दिया गया, जबकि जीतने वाले या बोर्ड बनाने के समीकरण में उपयोगी माने जा रहे पार्षदों की बाड़ेबंदी अभी भी जारी है। महापौर और सभापति चुनाव 21 सितंबर को होना है, ऐसे में आने वाले दिनों में बाड़ेबंदी और तेज होने की संभावना है।
10: कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी बाड़ेबंदी कर रहे हैं और होटल भी बदल रहे हैं। ऐसा नहीं है दो दिन एक होटल में जा रहे हैं तो तीसरे दिन किसी और होटल में भाग रहे हैं, पुलिस भी पीछे पीछे पहुंच रही है, हंगामा भी हो रहा है, जांच के नाम पर पुलिस भी जा रही है। आप समझिए बाड़ेबंदी के नाम पर किस तरह का तमाशा लोकतंत्र के नाम पर राजस्थान में चल रहा है। कैमरा मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
2: और इसी के साथ हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
12: सूर्य देव के राशि परिवर्तन से किस राशि को मिलेगा धन? सूर्य देव का राशि परिवर्तन किसको करेगा परेशान? और सूर्य देव का राशि परिवर्तन किसकी समस्याओं का करेगा समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
2: पता नहीं ये सरकार क्या कर रहे हैं, इनकी पॉलिसी क्या है, क्या सोचते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। अचानक से कोई नियम या कुछ थोप दिया जाता है, फिर जनता पर जब उसकी आदत लग जाती है, जनता उसके आदि हो जाते हैं, फिर उसे बदल दिया जाता है। अगर इसमें भी इतना टैक्स थोप देंगे 2000 के ऊपर के पेमेंट पर, तब तो आने वाले समय में जनता काफी क्राइसिस में आ जाएगी। अब इमीडिएटली इसे बंद करना चाहिए, जो भी निर्णय है ये बिल्कुल गलत निर्णय है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
13: नहीं, यूपीआई में तो ऐसा है कि भाई 2000 तक जो व्यापारी लोग होते हैं वो 2000 तक उसकी सीमा है, और उसमें कोई मतलब और ज्यादा पैसा ले रहे इसी तरह का राहुल गांधी का आरोप है, वो इसमें तथ्य नहीं है। कोई सरकार ने अभी निर्णय ऐसा लिया भी नहीं है, वो किसी व्यापारी को और किसी लोगों को तकलीफ देने की भूमिका हमारी बिल्कुल नहीं है।

ट्रंप को मिला रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार। अमेरिकी संसद के निचले सदन में बिल पास, लिस्ट में भारत का भी नाम। आज पीएम मोदी का 76वां जन्मदिन। बीजेपी एक महीने तक चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। अलग अलग शहरों में पार्टी के दिग्गज कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लाखों दिए जलाने की तैयारी। 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर शुल्क के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा। कहा, नियम वापस ले सरकार। वित्त मंत्री का जवाब, फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। नौकरी पेशा कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा। कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रति माह किया। 51 लाख लोगों को फायदा होगा। और यमन के हूती विद्रोहियों ने देसी मिसाइल से सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को गिराने का दावा किया। वीडियो भी जारी किया।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर हम लेकर आप सामने हाजिर हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से जो अमेरिका से आ रही है, लेकिन इसका असर भारत पर होगा। तो अमेरिका से बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी संसद के निचले सदन ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास कर दिया है। हाउस में बिल के पक्ष में 262 और विरोध में महज 159 वोट पड़े हैं। अब बिल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत करते ही ये कानून बन जाएगा। तो ये कानून है क्या? लिंडसे ओग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026, ये इस कानून का नाम है। इस बिल का असर सीधे सीधे भारत पर पड़ेगा, वो इसलिए क्योंकि बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार मिल गया है जो सीधे सीधे रूस और ईरान से तेल खरीदेंगे। भारत भी इसमें शामिल है। रूस से ज्यादा तेल खरीदने पर जिन देशों पर 100% टैरिफ का प्रस्ताव है उसमें चीन के साथ साथ भारत और 5 कुल देश हैं। यानी इन देशों पर अब सीधे सीधे 100% टैरिफ लगाने का अधिकार सेनेट ने, जो अमेरिकी संसद है, उसने अमेरिकी राष्ट्रपति को दे दी है। और अब जैसे ही ट्रंप इस पर दस्तखत करेंगे, इस दस्तखत के बाद उनके पास ये अधिकार होगा कि भारत चीन समेत उन 5 देशों पर वो 100% सैंक्शन लगा सकें। इसके पहले भी जब ट्रंप ने सैंक्शन लगाया था भारत पर, उस सैंक्शन के खिलाफ अमेरिकी अदालत ने फैसला सुनाया था। और उसके बाद अब ये कानून अमेरिकी संसद के जरिए आया है, जिसके बाद सीधे राष्ट्रपति को अधिकार मिल जाता है कि वो देश जो चीन, जो रूस और ईरान से तेल खरीदते हैं, अधिक मात्रा में ऊर्जा खरीदते हैं, उन पर अमेरिका सीधे प्रतिबंध लगा सके। तो अमेरिका के इस फैसले का असर चीन, भारत यानी उन एशियाई बाजारों को देखने को मिल सकता है। और इसका असर संभवतः आज जब भारतीय बाजार खुलेंगे तब भी दिखाई दे सकता है। युद्ध के दौरान जब रूस से भारत ने तेल खरीदना शुरू किया, उस पर अमेरिका ने पहले प्रतिबंध लगाया था। इन प्रतिबंधों को सबसे पहले अमेरिकी अदालत ने खारिज किया था और उसके बाद अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बार संसद से अधिकार मिला है। वॉशिंगटन लिए चलते हमारे सहयोगी रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, एक बार ट्रंप ऐसा कर चुके हैं लेकिन तब अमेरिकी अदालत ने उनके फैसले को गलत साबित किया। अब तो संसद से अधिकार मिल चुका है और ऐसा लग रहा है कि उनके निशाने पर सीधे सीधे चीन और भारत हैं।
1: देखिए, ये जो बिल था जिसकी हम आप थोड़ी देर पहले आप बता भी रहे थे कि ये लिंडसे ग्रहम ने एक बिल शुरू किया था जिन्हें रशिया हॉक माना जाता था सेनेट में। और उन्होंने जब ये बिल्स की शुरुआत की थी तो उस पर 500% टैरिफ, वहां से शुरू हुआ था ये बिल। और इसे माना जा रहा था सेनेट में जब तक लिंडसे ग्रहम थे, अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं रहे, कि एक टूल था, एक डराने के लिए टूल था कि कल को चल के अगर रशिया नहीं मानता है तो हम इसको, इस बिल को पास कर देंगे। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद सेनेट में इस तरह से एक ट्रिब्यूट के नाम के दर्ज पे इसको पास किया गया और उसको ऑब्वियसली टोन डाउन किया गया। 100% टैरिफ इसमें जो है वो प्रावधान लाए गए। लेकिन काफी सरप्राइजिंग इसलिए भी है ये कि ऐसी कोई डिमांड व्हाइट हाउस की तरफ से नहीं थी या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नहीं थी कि ये बिल पास हो जाए। ये अपने आप, जैसे कि आप कह रहे थे कि अमेरिकी संसद ने इसे आगे बढ़ाया, जब सेनेट ने पास कर दिया तो ऑब्वियसली वहां से निकल के बिल हाउस के पास आया और फिर हाउस में जो फ्रीडम कॉकस है उन्होंने इसको जो हम कहते हैं फास्ट ट्रैक किया। तो काफी इंटरेस्टिंग है आई थिंक। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है जो मैं बताना चाहूंगा कि अगेन व्हाइट हाउस नहीं का कोई पुश नहीं था इसको करने के लिए। ये अमेरिकी संसद ने एक नया अधिकार, एक नया लॉ बना के अधिकार दिया प्रेसिडेंट ट्रंप को। अब देखना इसमें ये होगा कि क्या सचमुच प्रेसिडेंट ट्रंप इसका इस्तेमाल करते हैं और कब करते हैं। अब ये भी समझना है इसमें, और उसमें थोड़ी सी और एक लेयर है ये चीज की राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति अमेरिका आने वाले हैं अगले हफ्ते। तो ये भी माना जा रहा है कि एक तरह से एक आपसे पावर डायनेमिक के रूप में भी देख सकते हैं कि उससे पहले भी इसे जानबूझ के पारित किया गया कि एक वेपन दिखा सकता है अमेरिका चाइना को भी, रशिया को भी और बाकी देशों को भी। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जैसे ही प्रेसिडेंट ट्रंप से साइन करेंगे उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप या आने वाले कोई भी राष्ट्रपति इसके बाद इसको यूज कर सकते हैं।
0: अमेरिकी कानून में ये देखा गया कि एक बार आप कोई कानून बना दीजिए और उसके बाद उसको नोटिफाई करते जाइए। मुझे याद है 9/11 के बाद जिस तरह अमेरिका को अधिकार मिले थे कि आप फेडरल पावर बने, उनको ग्वांटानामो जेल ले जाके रखे, और उसका इस्तेमाल आज भी वो नोटिफाई करके कर लेते। लेकिन यहां दरअसल मुद्दा यह है कि चीन के साथ अब चीनी राष्ट्रपति जाएंगे अमेरिका मिलने, भारत और अमेरिका के बीच में भी ट्रेड बातचीत तो हो रही है, वार्तालाप हो रही है। माना जा रहा है कि 5 से 6 महीने में उसे भी कमली जामा पहना दिया जाएगा। अगर इस तरह की तैयारियां हैं तो क्या ये सिर्फ एक डर दिखाने के लिए उनके लिए एक वेपन हो जाएगा, या लग रहा है कि वाकई उनकी मंशा है कि भाई अगर रूस के साथ खरीदारी चल रही है तो आप जो है पूरी तरह टैरिफ लगा करके आप जो है उसकी इकोनॉमी को रोकने की कोशिश करेंगे?
1: मंशा आई थिंक संसद में जो जिन लोगों ने सब इस बिल को पारित किया उनकी तो यही है कि एक तरह से टूल दिया जाए डराने के लिए या सम यू नो एक एक लेवरेज के लिए, मुझे लगता है डराने इज नॉट राइट पर लेवरेज के लिए. लेकिन आप देखिए इसमें बात वही हो जाती है कि इसमें अगेन रशिया की तरफ तो कोई सैंक्शन नहीं जा रहे. जो जो आप टैरिफ बढ़ाएंगे वो उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑयल और गैस के जो चाइना है इंडिया है टर्की है और जो यूरोपियन देश है वो भी एनर्जी लेते हैं. तो कहीं ना कहीं बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है यार. मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली यू नो कंसल्ट करेंगे अपने जो कैबिनेट के लोग हैं उनसे और बाकी लोगों से. लेकिन अगेन एज आई हैव सेड यू नो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि संसद ने इसे एकदम से फास्ट ट्रैक करके पास कर दिया. माना यह जा रहा था कि अमेरिका में चुनाव है मिड टर्म्स, शायद उसके बाद इसकी तरफ देखा जाएगा या हो सकता था कि इसे एक्सपायर भी होने दिया जाए इस बिल को. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है क्योंकि ईरान का जो युद्ध है उसमें कुछ नहीं हो पा रहा है, वो वैसे ही चल रहा है और चुनाव आ रहे हैं अमेरिका में, तो कहीं ना कहीं एक सिग्नलिंग भी है. और इसलिए भी शायद यूएस कांग्रेस जो है सब लोग चुनाव में जाने वाले हैं नवंबर में, तो हर कांग्रेसमैन भी कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स उन्हें दिखाए कि कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया है और कहीं ना कहीं तो दबाव बनाया है ये दोनों में से एक युद्ध खत्म करने का. सो काफी लेट अप्रोच है इसमें.
0: बड़ा दिलचस्प है कि ट्रंप को ये नहीं पता है कि इस कानून का इस्तेमाल कैसे करेंगे. अमेरिका को ये जरूर लग रहा है कि अब उसको जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है कहीं ये टैरिफ वाला जो वोट केमिस्ट्री है वो वहां काम कर जाए. बहुत बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए. नजर इस पर बनी रहेगी आखिर अमेरिका के इस फैसले का, संसद के इस फैसले का इस्तेमाल राष्ट्रपति ट्रंप कैसे करते हैं और भारत पर उसका क्या असर होगा. लेकिन मोदी सरकार 15 अक्टूबर से 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने जा रही है. सरकार के इस फैसले पर विपक्ष और राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं. पहले तो सरकार कहती रही आम आदमी पर इसका सीधा कोई असर नहीं होगा. जैसे जैसे वक्त बीतता रहा उसके बाद पता चला कि उस यूपीआई के पीछे असली खेल है क्या. अब दुकानदार मर्चेंट ये कह रहे हैं कि हम नुकसान क्यों सहेंगे, तो नुकसान कौन सहेगा, हम और आप सहेंगे. राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर अमेरिका के दबाव में आने का आरोप लगाया, फैसले को वापस लेने की मांग की. सरकार अब जवाब दे रही है कि वो किसी विदेशी दबाव में नहीं आई है.

0: कहा था भैया कैश यूज करना बंद करो, यूपीआई करो, यूपीआई करो, और अब इस उसी यूपीआई की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
1: ये मर्चेंट पे कॉस्ट है, मर्चेंट जो है वो पे करेगा, ना कि जो एंड यूजर या कंज्यूमर पे होगा।
2: मोदी जी प्लीज स्टॉप लाइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हैव अ स्पाइन, खड़े हो जाइए और यूपीआई टैक्स को वापस लीजिए।
3: जो खुद किसी और के इशारे पे काम करते हो और वो इस तरह की अनगढ़ बातें करते हैं।
2: ये अमेरिका के दबाव के अंदर ये सरकार बिल्कुल घुटने टेक गई है।
0: यूपीआई पर मार, गरीब पर वार, और फिर झुकी अमेरिका के आगे मोदी सरकार।
4: तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें, हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
5: नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी देश की इकोनॉमी को डुबा के रखी है।
6: मुझे लगता है कांग्रेस का काम ही केवल गुमराह करना और आलोचना करने का रह गया।
7: ये नाराज फूफा ने देश की जनता की जेब काटने का फैसला लिया है।
0: जनता का कितना गला रेता जाएगा मैं ये जानना
8: चाहूंगा। राहुल गांधी जी की बात करें, सुबह शाम उन्हें मोदी जी दिखते हैं ताकि किसी न किसी विषय पर मोदी विरोध को ऊपर कर सके और मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बोल पाए।
9: इधर 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सरकार ने चार्ज लगाया, उधर विपक्ष ने सीधे पीएम मोदी पर जैसे धावा बोल दिया। सबसे पहले राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो जारी करके न सिर्फ सरकार के इस फैसले की आलोचना की बल्कि आरोप लगाया कि यूपीआई पर चार्ज से अमेरिका को फायदा होगा और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। जी हां, राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कहा कि इंदिरा जी हमेशा सीधी खड़ी रहती थी पर ये सरकार आज अमेरिका के सामने दंडवत हो गई है, यूपीआई पर सरकार के फैसले से अमेरिका को फायदा होगा।
2: He is neither left nor right. He has decided to lie down straight and prostrate himself in front of Donald Trump. He's put a tax on every single Indian person by taxing UPI and giving huge amount of money to the United States. Modi ji, please stop lying down in front of the United States. Have a spine, khade ho jaiye aur UPI tax ko wapis lijiye.
9: यूपीआई पर चार्ज को राहुल गांधी ने अमेरिका से जोड़ा तो कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, लेकिन जवाब में सरकार कह रही है कि यूपीआई नियमों में बदलाव किसी विदेशी दबाव में नहीं लाया गया है।
0: क्योंकि वसूली मैन नरेंद्र मोदी का कहर जारी है और इस बार जो वसूली है वो अमेरिका के सामने बार बार सरेंडर करने की आदत से मजबूर होकर फिर की जा रही है। वसूली के नए प्लान में 2000 से ऊपर के हर यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन में 0.4% चार्ज लगेगा और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह अभी तक पूरी तरह से फ्री था, पूरी तरह से मुफ्त था।
3: देश हित में और देश के लोगों के हित में मोदी जी जब भी कोई अच्छा फैसला लेते हैं, इनको वो भाता नहीं है, इनको मोदी फोबिया हो गया है। यूपीआई से अब सरकार ने स्पष्ट किया है 2000 तक कुछ नहीं होने वाला और 96% लोग 2000 से ज़्यादा यूपीआई से लेन देन, ये आंकड़े हैं, लेन देन नहीं करते, फिर भी पर्सन सुपर टर्न पर्सन कोई MDR नहीं लगने वाला है।
10: अब सरकार कह रही है कि जनता पर असर नहीं होगा, कोई MDR नहीं है, कुछ नहीं है। अगर नहीं है तो नए नोटिफिकेशन की जरूरत क्या थी? अगर RBI या सरकार ये कह रही है कि UPI इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ढांचागत खर्च है वो थोड़ा सा खर्च आएगा, पैसा मिलेगा तो मजबूत होगा, तो क्या सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो UPI जैसे बुनियादी जो भारत की पहचान दुनिया में बन चुका है उस पर कुछ खर्च हो सके, उसे मजबूत किया जा सके, लोगों को फायदा होगा तो UPI का इस्तेमाल बढ़ेगा। UPI पर लगे चार्ज को लेकर के सरकार और BJP समझा रही है ग्राहकों पर इसका असर नहीं होगा। विपक्ष कह रहा है कि घूम फिर कर ये आम आदमी की जेब पर ही आएगा। यूपीआई पर चार्ज का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नए चार्ज लगाने के खिलाफ याचिका दायर की गई है।
9: राहुल गांधी के जवाब में मोदी सरकार और बीजेपी ने यूपीआई पर लगे चार्ज पर देश को समझाना शुरू किया कि पहले तो 2000 रुपए से नीचे के भुगतान पर कोई चार्ज नहीं है और 2000 रुपए के ऊपर के ट्रांजैक्शन पर चार्ज ग्राहक को नहीं बल्कि दुकानदार या कारोबारी को देना होगा। सरकार ने

0: 0.4% MDR लगेगा। इसकी अधिकतम सीमा ₹300 प्रति ट्रांजैक्शन होगी। ये शुल्क मर्चेंट से लिया जाएगा, ग्राहक से नहीं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो कह रही है कि MDR यानी UPI पर लगे चार्ज का ग्राहक से कोई लेना देना नहीं है, तो आखिर में ये टैक्स घूम फिर कर आम आदमी की जेब पर ही आएगा।
1: मिनिस्टर फाइनेंस ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि एक आम नागरिक पर्सन टू पर्सन पे करता है तो कुछ नहीं, पर्सन टू मर्चेंट होता है जो उस पर 0.4% लगेगा, वो भी मर्चेंट को देना है, आदमी को नहीं देना है।
2: मैं और आप और इस देश का हर व्यक्ति जानता है कि कोई मर्चेंट बढ़ी हुई कॉस्ट को खुद बेयर नहीं करता है। उसका बड़ा आसान तरीका है, वो कैसे ये कॉस्ट निकालेगा, कुछ नहीं करेगा, वो धीमे से कीमत बढ़ाएगा। बार बार हमने ये देखा है।
0: आपको बता दें कि अभी एक हफ्ता पहले ही हुआ जब ब्रिक्स बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की ताकत दुनिया को बताई थी। मोदी ने कहा था कि आज दुनिया के 50% रियल टाइम पेमेंट UPI वाली तकनीक से होते हैं।
3: भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI, इसने पॉपुलेशन स्केल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजेक्शन को नई गति दी है। आज विश्व के 50% रियल टाइम पेमेंट्स इसी टेक्नोलॉजी पर होते हैं।
0: लेकिन जैसे ही UPI पर 0.4% MDR लगा तो सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ। कांग्रेस कह रही है कि पहले तो सरकार कहती थी कि UPI करो, अब उसी UPI पर चार्ज लगा रही है।
2: क्योंकि आप ही ने तो कहा था भैया कैश यूज करना बंद करो, UPI करो। आप सेल्समैन बने हुए थे UPI के, और अब उसी UPI की वसूली करने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं।
4: मुझे लगता है कि सरकार चलानी है तो सरकार के रेवेन्यू सरकार को मिलना चाहिए ही। और राहुल गांधी का आरोप है कि भाई अमेरिका के कहने पर ही ऐसा किया है, तो अमेरिका का क्या मतलब है इसमें? हमें भारत की इकोनॉमी डेवलप करनी है, देश के लिए पैसा भी चाहिए।
0: RBI ने UPI पेमेंट्स पर चार्ज लगाने के फैसले को भारत के डिजिटल इकोसिस्टम को टिकाऊ बनाए रखने के लिए जरूरी कहा है, तो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स वाली कंपनियां भी इसके फायदे गिना रही हैं।
5: UPI का MDR 0.4% पे आज भी दुनिया का सबसे सस्ता MDR है, मगर वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि होपफुली उसके वजह से फोन पे और बाकी जितने भी पेमेंट कंपनीज हैं, अब हम लोग भी जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे वापस मार्केट को ग्रो करने में।
6: आई थिंक कि अगले लेवल की ग्रोथ के लिए ये MDR बहुत जरूरी है, और ये इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है ताकि UPI का और उद्धार हो, भारत का और उद्धार हो।
0: लेकिन कांग्रेस सरकार के UPI वाले फैसले पर न सिर्फ सवाल उठा रही है बल्कि महंगाई से जूझते लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा बता रही है।
2: बजाय लोगों के मरहम लगाने के, महंगाई से जूझते हुए लोगों के घाव पर नमक मिर्च रगड़ी जा रही है कि ऐसा कैसे है भैया, हम तो अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए, मोदी जी कह रहे हैं तो वसूली तो तुमसे करनी पड़ेगी क्योंकि उनके इशारे पे की जा रही है।
7: कोई टैक्स नहीं है, 96% से ज्यादा लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है।
0: मोदी सरकार UPI को भारत की बड़ी सफलता बताती है। 2016 में नोटबंदी के बाद भारत में लेस कैश और डिजिटल पेमेंट्स का मुद्दा राजनीतिक चर्चा में आया था, और अब एक बार फिर से इस पर सियासी घमासान छिड़ा है। 15 अक्टूबर से UPI की नई व्यवस्था लागू होगी, लेकिन आम जनता और कारोबारी इस पर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं।
8: ग्राहक तो उस पे लगा देगा ही चार्ज, क्योंकि भाई वो ले रहा है 2000 के ऊपर पेमेंट ले रहा है, एक्स्ट्रा दे रहा है, तो वो जनता पे ही लगा देगा।
9: बिल्कुल, दुकानदार जनता से ही वसूलेंगे, वो अपनी लागत नहीं बढ़ाएंगे।
10: सरकार थोड़ी हमें मतलब दुकानदार के पास हमारा निपटारा करवाने आएगी कि न इनसे फीस नहीं लेनी।
11: निश्चित रूप से देश के 10 करोड़ छोटे व्यापारी रिटेल कारोबारियों के लिए एक बहुत बड़ा ग्रहण होने वाला है।
12: सामने वाला हमें देना नहीं चाहेगा, और ये एक एक्स्ट्रा इसकी हमें नहीं लग रहा था कि सरकार को कोई इसी हो सकता थी।
13: जो है मोदी सरकार कहती है कि जो है ऑनलाइन आप जो है लेन देन करिए, तो वो प्रथा फिर बंद हो जाएगी, फिर पुरानी प्रथा पे हमको लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं।
14: UPI कहते हैं पहले गुड़ खाओ और बाद में ढेला, वो हाल है।
0: आज तक ब्यूरो।
15: एक तरफ UPI पर संग्राम

0: छिड़ा हुआ है। दूसरी तरफ यूसीसी पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान के बाद भी जो सियासी संग्राम घमासान छिड़ा वो भी नहीं थम रहा है। पहले एनडीए में यूसीसी को लेकर विरोध के सुर उठे, अब मुस्लिम स्कॉलर धर्मगुरुओं ने भी कॉमन सिविल कोड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल मुस्लिम वोट बैंक का तो है ही, लिहाजा कांग्रेस ओवैसी फिर समाजवादी पार्टी सभी को यूसीसी संविधान विरोधी दिख रहा है।
1: यूसीसी पर चुनावी प्रयोग या फिर संयोग,
2: फिर बड़ा खराब मिल गया।
1: यूसीसी के खिलाफ मदनी ने खोला मोर्चा।
3: यूसीसी तुम लागू कर रहे, निकालो ना जिहाद को।
1: ओवैसी की एंट्री यूसीसी पर खतरे की घंटी। तेजस्वी और अखिलेश यादव का ऐलान,
4: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है।
1: बीजेपी का शुद्ध कम्युनल एजेंडा है यूसीसी। यूसीसी पर लड़ाई हिंदू मुसलमान पर आए। कॉमन सिविल कोड पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान से उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं दे रहा। पहले यूसीसी पर एनटीए के अंतर मतभेद सामने आए, अब विपक्ष और इस्लाम के जानकारों ने खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया है। अरशद मदनी ने ऐलान किया है कि देश के मुसलमानों को ऐसा कोई कानून कबूल नहीं है जो शरीयत के खिलाफ है। गृह मंत्री का ये ऐलान है कि 2029 से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि देश संविधान से चलेगा या किसी राजनीतिक दल के वैचारिक एजेंडे से। हम ऐसा कोई कानून स्वीकार नहीं कर सकते जो शरीयत के खिलाफ हो। मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है लेकिन अपने धर्म और दीन से हरगिज नहीं। ये सवाल मुसलमानों के वजूद का नहीं बल्कि उनके संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों का है। सरकार समान नागरिक संहिता के माध्यम से मुसलमानों से वो अधिकार छीनना चाहती है जो देश के संविधान ने उन्हें दिए हैं। मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में यूसीसी एक बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने बीजेपी के यूसीसी प्लान पर सीधा हमला बोला है। जनता समझ रही है कि भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है, दरअसल उसका फुल फॉर्म कुछ और है, यूसीसी यानी अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। इधर सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव का पोस्ट आया, उधर यूपी में टीम एनडीए ने अखिलेश की टिप्पणी को हाथों हाथ उठा लिया। बस फिर क्या था, पूरे मामले में हिंदू और मुसलमान की सीधी एंट्री हो गई।
5: समाजवादी पार्टी के मुखिया हमेशा इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई नीति नहीं है। लोगों को बरगलाना, झुठलाना, इनके प्रकार सत्ता हासिल करना, इसके सिवाय उनका कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग अब स्वीकार नहीं करेंगे, उनको कभी माफ नहीं करेंगे। गुंडई, अराजकता, दंगा, प्रदेश की समाजवादी पार्टी के रीजन में जो हालात थे आज भी लोग भूले नहीं।
6: उनके सलाहकार कैसे हैं, उसी की वजह से वह सत्ता से बाहर है। संविधान हमेशा सामाजिक न्याय की बात करता है, तो जब सामाजिक न्याय तभी मिलेगी जब समान नागरिक संहिता रहेगा, समान अधिकार रहेगा। अधिकार तो कानून से मिलता, अधिनियम से, अधिसूचना से। तो जब हिंदू कोड बिल अंबेडकर ने इसीलिए उनका विरोध किया था कि धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव है, इसलिए उनको इस्तीफा दिया था। कांग्रेस नहीं मानती थी और फिर मानना पड़ा कांग्रेस को, लेकिन एक विशेष वर्ग में अभी तक चला आ रहा है। हमारे यहाँ तो खत्म हो गया, लेकिन अभी विशेष वर्ग में जिनको वकालत कर रहा है, क्या महिलाओं को, मुस्लिम महिलाएं उनकी वोटर नहीं है क्या? मुस्लिम महिलाएं इस देश की नहीं है क्या?
7: अखिलेश यादव जी को कोई काम तो है नहीं, 5 साल सड़कों पर तो विरोध कर नहीं पाए क्योंकि विरोध का उन्हें मौका नहीं मिला। अब वो ट्विटर खेल रहे हैं। ट्विटर खेल के देश में राजनीति नहीं होती। अखिलेश यादव जी दो ही काम करते हैं, या तो ट्विटर खेलते हैं या केवल उस पर टीवी पर बैठकर गेम खेलते हैं, दूसरा उन्हें कोई काम नहीं है। कई कोड़ी हो गई, अब अखिलेश जी इस प्रदेश की राजनीति में नहीं आ सकते। वो तो एक बार मुलायम सिंह जी की कृपा से वो सीएम बन गए, दुनिया में की कोई ताकत उन्हें सीएम नहीं बना सकती।
0: तो बयान बहादुरों के बयान सुनकर आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि यूपी में चुनाव नजदीक है। हाँ, विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यूसीसी पर अपना स्टैंड स्पष्ट कर रहे हैं, तो कुछ दिन पहले मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को योगी सरकार की मुसलमान विरोधी नीति का हिस्सा बताया। बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के बयानों को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा, तो यूपी चुनाव में ताल ठोक रहे ओवैसी लखनऊ से दूर भोपाल में यूसीसी को लेकर जमकर गरजे।
1: AIMM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी UCC के विरोध में बुलाई गई जनसभा में हिस्सा लेने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे। मौका UCC के विरोध का था, लिहाजा ओवैसी ने BJP पर सीधा हमला बोला।
8: UCC का कानून नाफिज किया गया, वो न सिर्फ मुसलमानों के कुरान और सुन्नत के खिलाफ है बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के भी खिलाफ है। आप तमाम लोगों का यहाँ पर जमा होना, BJP और दिल्ली में बैठे हमारे सुस्त वजीर आजम को पैगाम मिलता है कि हम आपके बनाए हुए कानून को भारत के संविधान के खिलाफ मानते हैं और हम पुरजोर इसके खिलाफ एहतजाज अपना दर्ज कराते हैं।
1: पहले ओवैसी ने UCC को संविधान और मुसलमान विरोधी बताया, उसके बाद अपने चिर परिचित अंदाज में नौजवानों को किसी मौलाना की तरह शरीयत को लेकर बड़ी नसीहत दे डाली।
9: अरे सोवियत यूनियन इस्लाम को खत्म नहीं कर सका, ये RSS कौन सी खेत की मौली है जो हक की समा को बुझा सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। मेरे नौजवानों, तुम कौम का मुस्तकबिल हो, कानून बनते हैं मिट जाएंगे बनाने वाले इंशाल्लाह, मगर याद रखो नौजवानों, तुम जब तक अपनी तबीयत पर शरीयत को गालिब नहीं करोगे हम इनकलाब नहीं ला पाएंगे।
1: ओवैसी यही नहीं रुके, खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि UCC के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने से देश का मुसलमान अब पीछे नहीं हटेगा।
9: तुम हमको कमजोर समझकर दबा रहे हो, मगर याद रखो जब कमजोर उठ जाएगा, बेदार हो जाएगा, तो जिंदगी उसको उसकी जिंदगी का मकसद उसको समझ में आ जाएगा। जब कमजोर बेदार हो जाएगा, याद रखो मौत का डर दूर हो जाएगा, तो फिर किसी के महल आबाद नहीं रहेंगे, किसी का इख्तदार नहीं रहेगा। तुम हमको कब तक दबाओगे? अरे दबाते रहो, मगर हम दबने वाले हैं। तुम जितना दबाओगे उतनी ताकत से हम उठेंगे इंशाल्लाह।
1: UCC विरोधी जनसभा में ही ओवैसी ने BJP विधायक की विवादित टिप्पणी पर ललकारा।
10: मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जब हिंदुस्तान में लोग कहते थे सुई बनाना नहीं जानते, तो मोदी जी ने कहा कि हम मिसाइल बनाएंगे। जैसे तुम करोत के चौराहे पर खड़े होकर मिसाइल लगाओ और काजी कैंप पे गिरा दो, वैसे ही। अरे मैंने यहाँ का काजी कैंप नहीं बोला, इस्लामाबाद वाला बोला था।
9: कोई रामेश्वर शर्मा साहब का बयान सुना, क्या बोले? मैं मिसाइल लॉन्च करूंगा करोड़ स्क्वायर से खाजी कैंप पर। रामेश्वर शर्मा, अगर तुम मई के लाल हो लॉन्च करोगे, मैं अकेला फिरता हूँ खाजी कैंप में आकर। मैं शहीद होने तैयार हूँ, मरने तैयार हूँ, तुम्हारे जैसे सामने से जुटाने वाला हूँ।
1: मतलब यही है कि UCC पर शाह के बयान पर बवंडर खड़ा हो चुका है। कांग्रेस भी UCC पर BJP को घेरने में पीछे नहीं है।
11: संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है UCC से, बताओ मुझे? कि निकाह नहीं होगा क्या हमारा? निकाह तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या? फेरे ही तो होंगे। क्या तमाशा बना रखा है? कुछ भी नहीं है।
12: भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना, आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहाँ चली जाएगी? तो गृहमंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों, सबसे मिल करके भारत बनता है। आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं, एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।
1: वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने UCC को कम्युनल एजेंडा बताया।
13: हमने सहारनपुर की मस्जिद भी गिरवा दी, फिर भी कोई दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हम मेरठ भी मस्जिद गिरवाने जा रहे हैं, संभल भी जा रहे हैं, मुरादाबाद भी जा रहे हैं, कहीं कुछ हलचल ही नहीं हो रही है, तब UCC। तो कुल मिला के भारतीय झगड़ा पार्टी जो है वो इस देश को बर्बाद करना चाहती है। अब इस देश के लोगों को तय करना है।
14: UCC जो है वो किसी एक मजहब के लिए नहीं है बल्कि संपूर्ण मुल्क के लिए है। किसी एक धर्म के साथ उसको जोड़कर आप नहीं देख सकते, ये संपूर्ण मुल्क के लिए है। ये कानून हिंदू कानून नहीं है बल्कि हिंदुस्तान का कानून है।
1: यूसीसी की बिसात पर तमाम सियासी पार्टियों के बीच शह और मात का खेल शुरू हो चुका है, लेकिन देखना यही है कि शह और मात के इस खेल में बाजी कौन जीतता है। आज तक ब्यूरो।
0: रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: ट्रंप को मिला रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार। अमेरिकी संसद के निचले सदन में बिल पास, लिस्ट में भारत का भी नाम। आज पीएम मोदी का 76वां जन्मदिन। बीजेपी एक महीने तक चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। अलग अलग शहरों में पार्टी के दिग्गज कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लाखों दिए जलाने की तैयारी। 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर शुल्क के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा। कहा, नियम वापस ले सरकार। वित्त मंत्री का जवाब, फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। नौकरी पेशा कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा। कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रति माह किया। 51 लाख लोगों को फायदा होगा। और यमन के हूती विद्रोहियों ने देसी मिसाइल से सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को गिराने का दावा किया। वीडियो भी जारी किया। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। पश्चिम एशिया का तनाव अभी एक मुहाने पर खत्म हुआ नहीं था कि एक और फ्रंट खुल चुका है। तो मिडिल ईस्ट से एक बड़ी खबर यह है कि यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। हुती सैन्य मीडिया के विंग ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें आसमान से जमीन पर गिरता हुआ जलता हुआ एक मलबा दिखाई दे रहा है और इस नीचे गिरे हुए मलबे के एक हिस्से पर अब सऊदी अरब का झंडा नजर आ रहा है। हुती सैन्य प्रवक्ता याहया सरी ने दावा किया है कि सऊदी के F-15 को निशाना बनाया गया है। वीडियो की जगह, इसे कब रिकॉर्ड किया गया, इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। देखिए, ये वो रैकेज है जहाज का, ये वो मलबा है जिस पर हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब का झंडा दिखाया है और सऊदी अरब के झंडे के साथ साथ F-15 उसी के साथ उन्होंने तस्वीरें जारी की है। इसके पहले हुती लगातार सऊदी अरब ने जब कार्रवाई की है, उन्होंने कहा कि उन्होंने सऊदी के मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया है, उनके मारक प्रणाली को, और उसी के साथ साथ अब सऊदी के F-15 को मार गिराया है। लगातार यमन में जो हूती विद्रोही हैं वो तटीय किनारों पर आक्रामक हो रहे हैं, कई इलाकों पर उनका कब्जा है और सऊदी की कार्रवाई के बाद उन्होंने F-15 को मार गिराने का दावा किया है। तो सऊदी अरब पर हूतियों के हमलों में ईरान और अमेरिका के बीच बारूदी वार पलटवार तो बंद है, लेकिन अब जो सऊदी में हो रहा है उसमें हूतियों की मिसाइलें, ड्रोन हाहाकार मचा रही हैं। हूतियों ने मक्का तक ड्रोन से हमला करने की कोशिश की जिसे सऊदी के एयर डिफेंस सिस्टम ने निष्क्रिय कर दिया, समय रहते मार गिराया। सवाल यह है कि क्या सऊदी पर हूतियों के हमले के पीछे ईरान है? अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए क्या हूती विद्रोही सऊदी अरब पर हमले करवा रहा है ईरान? क्या ईरान का प्लान हूती है? जरा समझिए इस रिपोर्ट के जरिए।
1: सऊदी अरब पर हूती के ताबड़तोड़ हमले। बॉर्डर पर सऊदी सेना से जमीनी लड़ाई। आसमान से मिसाइल और ड्रोन से हमला। हूतियों के हमलों से सऊदी में मची तबाही। अमेरिका ने जारी की खतरे की एडवाइजरी। मक्का तक हमला, सऊदी कैसे लेगा बदला? आठ सितंबर को अमेरिका ने ईरान के 5 तेल टैंकरों पर हमला किया था। इसी हमले के जवाब में ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से पलटवार किया। करीब 48 घंटे तक वार पलटवार चलता रहा, लेकिन 10 सितंबर के बाद अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर कोई नया हमला नहीं किया है। लेकिन जैसे ही युद्ध के एक मोर्चे पर बारूदी हमले रुके, हूती और सऊदी अरब के बीच भीषण जंग छिड़ गई। बीते 72 घंटों से हूती के मिसाइलों और ड्रोन हमलों से सऊदी में दहशत का माहौल है। एक के बाद एक सऊदी अरब के नए शहरों पर हूतियों के हमले जारी हैं। इसी कड़ी में अब सऊदी अरब ने हूतियों पर मक्का पर ड्रोन हमले की कोशिश का सनसनीखेज आरोप लगाया है। सऊदी अरब की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी रॉयल डिफेंस फोर्सेस ने एक दुश्मन ड्रोन को रोका और उसे नष्ट कर दिया। इस ड्रोन को हुती आतंकवादियों ने लॉन्च किया था। इसे मक्का के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में दाखिल होने से पहले रोक दिया गया। ये मक्का को निशाना बनाने की दूसरी शत्रुतापूर्ण और आतंकवादी कोशिश है। इससे पहले जुलाई 2017 में बैलिस्टिक मिसाइल दागकर मक्का को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। इसे शर्मनाक हरकत और पवित्र काबा के मेहमानों को डराने की कोशिश कहा जा सकता है। हुतियों की आक्रामक और आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से सऊदी अरब हिचकिचाएगा नहीं। सऊदी अरब के इसी आरोप को हुतियों ने सिरे से खारिज कर दिया है। हुतियों का दावा है कि मक्का पर कोई हमला नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने सऊदी के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया है। हुतियों का दावा है कि सऊदी अरब में उनसे मुकाबला करने की ताकत नहीं है, लिहाजा मक्का को ढाल बनाकर झूठी कहानी गढ़ी है। हुतियों का दावा है, हमने अल्लाह की मदद और उसके आदेश से सऊदी अरब के एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया। ये लड़ाकू विमान मारे प्रांत के आसमान में अपने सैन्य अभियान के समर्थन में हमले कर रहा था। इसे स्थानीय स्तर पर बनाए गए हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमारे हमले सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हैं। इन जगहों का पवित्र स्थलों से कोई संबंध नहीं है। सऊदी का दावा झूठा है। मक्का को निशाना बनाने का दावा एक घिसा पिटा झूठ है। पहले भी इसका इस्तेमाल किया जा चुका है और अब कोई इस पर भरोसा नहीं करता। मक्का पर ड्रोन हमले के आरोपों को हुतियों ने खारिज कर दिया है। अब सवाल यही है कि मक्का पर हुतियों ने नहीं तो किसने ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC ने मक्का को निशाना बनाने की कोशिश की निंदा की है। हुती आतंकवादियों की ऐसी गतिविधियां जिनमें पवित्र स्थलों, मस्जिदों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, ये आतंकवाद है। ये इस्लामी मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं, सिद्धांतों और कानूनों के खिलाफ है। बड़ी बात यह है कि मक्का पर ड्रोन हमले ने लोगों के दिमाग में 47 साल पुरानी भयावह घटना की यादें ताजा कर दी। दरअसल नवंबर 1989 में सऊदी अरब के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने 15 दिनों तक इस्लामी देशों को हिलाकर रख दिया। ये वो घटना थी जिसमें सलाफी समूह ने इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मक्का की मस्जिद को अपने कब्जे में ले लिया था, लोगों को बंधक बनाया था। बंधकों की रिहाई के लिए तब बड़ा ऑपरेशन चलाया गया जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। 1989 में मक्का में हुई घटना के लिए सऊदी अरब ने ईरान को दोषी ठहराया था, क्योंकि ये हमला ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के ठीक बाद हुआ था। हालांकि ईरान ने मक्का पर हुए हमले से खुद को अलग कर लिया था। बड़ी बात यह है कि 1989 में मक्का पर हुए हमले की घटना ने ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों की खाई को और गहरा कर दिया। एक बार फिर मक्का पर हमले की कोशिश हुई और आरोप के मुताबिक ये कोशिश किसी और ने नहीं बल्कि हुतियों की तरफ से की गई, वही हुती जिन्हें ईरान का संरक्षण मिला हुआ है। यहाँ ये समझना है कि हुती यमन के अल्पसंख्यक शिया समुदाय का एक हथियारबंद गुट है। इस समूह को ईरान का समर्थन हासिल है। हुतियों की फंडिंग से लेकर हथियारों की सप्लाई ईरान करता है, इसमें ड्रोन से लेकर मिसाइलें तक शामिल हैं। ऐसे में सऊदी अरब पर हुतियों के हमलों को ईरान से अलग करके नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि हुतियों के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब है। बड़ी बात यह है कि सऊदी पर हमले से चंद दिनों पहले ही ईरान ने अमेरिका को सीधी धमकी दी थी। धमकी ये कि उन्होंने हुर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है और बहुत जल्द बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद करवा सकता है। ये एक अहम समुद्री मार्ग है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। ईरान की धमकी के कुछ दिन बाद हुतियों ने इसे हकीकत में बदल दिया। एक तरफ हुर्मुज बंद है और दूसरी तरफ हुतियों के डर से बाब अल मंडेब भी करीब करीब बंद है। इसी रूट पर हुतियों ने सऊदी अरब के तेल टैंकरों को निशाना बनाया था। मतलब साफ है कि हुतियों के हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। मकसद है सऊदी अरब के बहाने अमेरिका पर दबाव बढ़ाना, क्योंकि सऊदी अरब का तेल कारोबार ठप है। तेल की पाइपलाइनों पर हुतियों के हमले जारी हैं और अब सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका पर ईरान के साथ युद्ध विराम का दबाव बनाया जा रहा है। इस दबाव का असर अब अमेरिका पर पड़ने लगा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एक चेतावनी जारी की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने सऊदी अरब की यात्रा को लेकर लेवल 3 एडवाइजरी जारी करते हुए अपने नागरिकों को हवाई अड्डों, सैन्य ठिकानों, ऊर्जा संयंत्रों, होटलों, ट्रांसपोर्ट और भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहने को कहा है। मतलब ईरान ने हूतियों के जरिए अमेरिका और सऊदी अरब पर अपना शिकंजा कस दिया है। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात करेंगे इसराइल और अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के 26,000 करोड़ के हथियार देने की तैयारी कर रहे हैं। हथियारों के इस पैकेज की डील में 40,000 भारी बम शामिल हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान क्या है? क्या ईरान के खिलाफ बड़े हमलों की तैयारी है या फिर गजा के लिए बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में कुछ चल रहा है? आज के दौर में इसराइल में 7 से 8 अलग मोर्चों पर युद्ध या युद्ध लड़ रहा है और ऐसे में तनाव का सामना कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर अमेरिका हथियारों की इतनी बड़ी खेप को क्यों भेजने की तैयारी कर रहा है।
1: गाजा में अक्टूबर 2023 से इजरायली सेना हमास के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई और संघर्ष में फंसी है। लेबनन में उत्तरी सीमा पर ईरान समर्थित हिजबुल्ला के खिलाफ इजरायल के जमीनी और हवाई हमले जारी हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जंग अभी थमने का नाम नहीं ले रही है। 28 फरवरी को जिस तरह से इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की, ईरान के साथ आज भी युद्ध जारी है। यमन से हुती विद्रोही इजरायली क्षेत्र और लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे हैं। सीरियाई क्षेत्र में सक्रिय मिलिशिया और सैन्य ठिकानों पर इसराइल लगातार हवाई हमले और सैन्य कार्रवाई कर रहा है। इराक में मौजूद शिया मिलिशिया और ईरान समर्थकों के साथ इसराइल की लड़ाई चल रही है। वेस्ट बैंक के अंदरूनी हिस्से में भी इजरायली सेना को लगातार मोर्चा संभालना पड़ रहा है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू कुल मिलाकर 7 से 8 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे हैं या फिर सैन्य संघर्ष में फंसे हैं। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन इसराइल को 2.8 अरब डॉलर यानी करीब 26,000 करोड़ रुपए के हथियार देने की तैयारी कर रहा है। इस पैकेज में करीब 40,000 भारी बम शामिल हैं। हर बम का वजन 2,000 पाउंड यानी करीब 900 किलो है। इन बमों की सप्लाई पर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2024 में रोक लगाई थी। प्रस्तावित हथियार पैकेज में 20,000 MK-84 और 20,000 BLU-117 बम शामिल हैं। डील अभी फाइनल नहीं हुई है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक कांग्रेस को इसकी अनौपचारिक जानकारी दे दी गई है। आपको बता दें कि 2024 में बाइडेन प्रशासन ने 2,000 पाउंड के इन बमों की एक खेप इसराइल भेजने पर रोक लगा दी थी। उस समय चिंता थी कि गाजा जैसी घनी आबादी वाले इलाके में इनका इस्तेमाल होने पर बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ये रोक हटा दी गई। अब उनका प्रशासन इन्हीं बमों की बड़ी संख्या वाली नई डील की तैयारी कर रहा है। इन 900 किलो के बमों के अलग अलग मॉडल हैं। कुछ को जमीन के अंदर मौजूद ठिकानों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि कुछ जमीन के ऊपर फटकर बड़े इलाके में भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने गाजा में हुए हमलों के वीडियो और घटना स्थलों से मिले बमों के टुकड़ों का विश्लेषण किया है। उनके मुताबिक वहाँ अमेरिकी निर्मित बमों का इस्तेमाल हुआ है। इनमें कुछ हमास के सुरंग नेटवर्क को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन घनी आबादी वाले इलाकों में भी लोगों की मौत हुई है। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का प्लान क्या है? क्या ईरान के खिलाफ इसराइल अमेरिका का कोई प्लान है? क्या एक बार फिर इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले करेंगे या फिर हमास, हिजबुल्ला और हूती के खिलाफ बड़ा एक्शन होने वाला है? लेकिन अमेरिका और इसराइल में 40,000 बमों की इस डील से पहले दुनिया में गाजा युद्ध पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म नाजा की न सिर्फ चर्चा है बल्कि वो विवादों के घेरे में है। वेनिस फिल्म फेस्टिवल में नाजा डॉक्यूमेंट्री ने काफी ध्यान खींचा। इसे वहाँ स्पेशल जूरी पुरस्कार प्रदान किया गया। फिल्म देखने वालों ने तालियां बजाई, लेकिन इसी के साथ ये फिल्म सवालों के घेरे में है। फिल्म के मेकर्स पर इसराइल के खिलाफ नफरत फैलाने का आरोप लगा है। खुद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी नाजा डॉक्यूमेंट्री पर सवाल खड़े किए हैं और इसे यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश बताया है।
2: שמעתי וזה מזעזע. אתה יודע, אנחנו נלחמים בהסתה אנטישמית עולמית. אבל כשזה בא מתוכנו, זה פשוט בלתי נסבל. ועכשיו שני במאים ישראלים שמציגים את צהל כפושעי מלחמה וזוכים לתשואות בפסטיבל ונציה.
1: आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे, जबकि 251 लोगों को बंधक बनाया गया। इसके बाद इसराइल ने गाजा में जो तबाही मचाई, दुनिया दहल गई। जी हां, गाजा पर इजरायली हमलों में अब तक 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि उनकी मध्यस्थता में गाजा के अंदर युद्ध विराम हो चुका है। अब सवाल यह है कि जब ट्रंप युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं, तो फिर इसराइल में हथियारों की इतनी बड़ी खेप क्यों भेजी जा रही है? दुनिया यही सोच रही है अब युद्ध के कौन से मोर्चे पर बमबारी होने वाली है। वैसे आपको बता दें कि इसराइल में अगले महीने यानी 27 अक्टूबर को आम चुनाव भी होने जा रहे हैं। ऐसे में सबकी नजरें इस बात पर होगी कि बेंजामिन नेतन्याहू फिर सत्ता में लौटते हैं या जनता किसी नए नेतृत्व पर भरोसा जताती है। बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना है कि वो ऐसी राष्ट्रीय सरकार बनाना चाहते हैं जो सिर्फ किसी एक विचारधारा पर आधारित ना हो। चुनाव प्रचार में उनका फोकस सुरक्षा के मुद्दे पर रहेगा, खासकर ईरान और लेबनान के हिजबुल्ला के खिलाफ चलाए गए सैन्य अभियानों को वो जनता के सामने प्रमुख मुद्दे के रूप में रख सकते हैं। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू चुनावों के मद्देनजर हथियारों की डील कर रहे हों, ताकि वो इजरायली जनता को समझा सकें कि नेतन्याहू उनकी सुरक्षा चाहते हैं। आज तक ब्यूरो।
0: दुनिया के अलग अलग पटल पर युद्ध के नियम और युद्ध के हथियार दोनों बदल रहे हैं। यह हैरान करने वाली खबर इसलिए है कि शायद आपने सोचा भी ना हो कि अंतरिक्ष में भी हथियारों की तैनाती हो सकती है और वहां युद्ध हो सकता है, लेकिन अब ये सच हो रहा है। अमेरिका ने कुछ ऐसा ही ऐलान करके सबको चौंका दिया है, क्योंकि पहली बार उसने माना है कि उसने अंतरिक्ष में हथियार तैनात किए हैं। अमेरिका के स्पेस फोर्स ने इसकी जानकारी दी है। उसके मुताबिक स्पेस हथियार रक्षा और हमले दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं। अमेरिका के इस कदम को लेकर रूस और चीन ने नाराजगी जताई है।

0: दुनिया ने जमीन पर कई लड़ाइयां देखी हैं, समंदर के सीने पर संग्राम होता देखा है, जल और थल के बाद अब नभ में भी अमेरिका अपनी ताकत में इजाफा कर चुका है। 21वीं सदी में अब अमेरिका ने अंतरिक्ष तक मोर्चा खोल दिया है। सुपर पावर अमेरिका ने एक ऐलान कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। कह दिया है कि उसने अंतरिक्ष में हथियार तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी स्पेस फोर्स के मुताबिक स्पेस वेपन्स रक्षा और हमले दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं। खुलासे के मुताबिक अमेरिकी हथियार अंतरिक्ष की कक्षा यानी ऑर्बिट में तैनात हैं। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने यह भी कहा है कि ये हथियार अंतरिक्ष में अमेरिकी सैन्य बलों को दुश्मन की कार्रवाई से बचाने और उसका मुकाबला करने के लिए है।
1: अभी अमेरिका ने क्या किया, क्या ये लीगल है? हाँ, लीगल तो है, करना नहीं चाहिए था, मॉरली गलत है। लेकिन अगर आप जो ट्रीटी के शब्द देखो तो आर्टिकल 4 में, जैसे मैंने पहले बताया है, उसमें सिर्फ लिखा है कि न्यूक्लियर वेपन्स और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। इसका मतलब बाकी की उन्होंने कोई बात नहीं की है। तो ये जो स्पेस रेस हो जाएगी, ये मैं समझता हूँ एक बहुत खतरनाक चीज़ है विश्व के लिए। ये सिर्फ मेजर पावर्स की बात नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। और अगर इस प्रकार की स्पेस वॉर अगर शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ आगे वाले दिन बहुत कठिन हो जाएंगे।
0: चिंताएं कई हैं, सवाल उठना लाजमी है कि आखिर स्पेस में हथियारों की होड़ क्यों? लेकिन अमेरिका ने अभी इसके कई तथ्यों का खुलासा नहीं किया है। स्पेस फोर्स का कहना है कि उसके पास ऑर्बिट में मौजूद स्पेस कंट्रोल वेपन्स हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य बलों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। हालांकि हथियारों की सही संख्या, उसके प्रकार या उनकी तैनाती की जगह की जानकारी देने से इनकार किया है। अमेरिका के इस कदम के बाद रूस और चीन ने चिंता जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है, कहा है कि चीन अंतरिक्ष में किसी भी तरह की सैन्य होड़ या उसे युद्ध क्षेत्र में बदलने की कोशिश का कड़ा विरोध करता है। अमेरिका के स्पेस वेपन्स को लेकर कुछ ऐसी ही चिंता रूस ने भी जताई है। रूस ने कहा है कि अंतरिक्ष को किसी भी हथियार से मुक्त रखना चाहिए। तमाम चिंताओं के बीच अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ शुरू होने का नया खतरा है।
1: मिलिट्राइजेशन बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन स्पेस के ऊपर हथियार नहीं डाले थे। अब हथियार आ गए हैं, ये पहली बार आ गए हैं, और मैं समझता हूँ अब ये एक रेस अलग से शुरू हो जाएगा। क्योंकि अमेरिका ने किया है, अब यकीन मानिए रूस और चीन भी साथ जाएंगे, वो भी करेंगे। और रूस और चीन करेंगे तो भारत भी जरूर है, भारत पीछे नहीं रहेगा इसमें।
0: अमेरिका पहले भी अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने को लेकर लगातार काम करता रहा है। रूस, चीन और भारत समेत कई अन्य देश भी स्पेस में अपनी ताकत बढ़ा चुके हैं, जिनका इस्तेमाल सैन्य संचार, निगरानी और नेविगेशन से जुड़े सैटेलाइट को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन अब अंतरिक्ष में हथियारों की अमेरिकी तैनाती के बाद फिर से नई चिंता बढ़ा चुका है। आज तक ब्यूरो।
2: अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की। दरअसल बड़ी बड़ी मल्टी स्टारर, बड़े बजट की फिल्में आप देखने जाते हैं, कई बार निराशा लेकर के लौटते हैं। लेकिन बेहद कम बजट में बनी एक फिल्म हनुमान अंश का कमाल नहीं रुक रहा है। फिल्म ने अपनी लागत से 100 गुना से ज्यादा कमाई कर ली है। हर दिन बीतने के साथ फिल्म की कमाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोगों की आस्था श्रद्धा उन्हें इस फिल्म की ओर खींच रही है।
3: कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो,
4: इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर आजकल आम लोगों के बीच बस एक ही नाम गूंज रहा है, और वो है हनुमान अंश।
5: अरे हनुमान चालीसा पढ़ते हो फिर भी डरते?
6: हनुमान जी को सोने का चढ़ावा नहीं चाहिए,
7: चाहिए तो बस।
4: फिल्म समीक्षकों से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक के लिए ये फिल्म चर्चा का विषय बन गई है, और हो भी क्यों ना, ना तामझाम और ना पब्लिसिटी, फिर भी कामयाबी और कमाई का हर दिन नया कीर्तिमान बनाती जा रही है हनुमान अंश।
8: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती समझाने पहुंचे।
4: हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर अभी तक अपनी कुल लागत से 100 गुना से भी ज्यादा की कमाई कर ली है, और अभी भी ये सुनामी थमने का नाम नहीं ले रही। हनुमान अंश ने 40वें दिन 8,25,00,000 रुपए की नेट कमाई की, और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इसी वक्त दूसरी बड़ी फिल्में जैसे धुरंधर, पठान और छावा को हनुमान अंश ने पीछे छोड़ दिया है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 270 करोड़ के पार पहुंच गई है। वहीं 40वें दिन 8 करोड़ 25 लाख रुपए की नेट कमाई की, जिसने धुरंधर, पठान और छावा को पीछे छोड़ा। सेक्नेल के डेटा के मुताबिक फिल्म ने 9000 शो में 27% ऑक्यूपेंसी दर्ज की, जिससे भारत में नेट कलेक्शन 231 करोड़ रुपए और ग्रॉस कलेक्शन करीब 273 करोड़ रुपए हो गया। सिनेमा घरों में चल रही बाकी की फिल्मों का हाल हनुमान अंश के सामने पस्त है। चाहे वो मिर्जापुर हो या फिर हैवान, सभी को हनुमान अंश ने पीछे छोड़ दिया है। हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। एक्सपर्ट पहले ही अंदाजा जता चुके हैं कि अगर हनुमान अंश 300 या 400 करोड़ का आंकड़ा भी छू जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं है।
5: हनुमान चालीसा पढ़ते हो फिर भी डरते हो?
6: हनुमान जी को सोने का चढ़ावा नहीं चाहिए।
4: आज तक ब्यूरो,
6: भक्तों को प्रसाद मिले और भूखों को भोजन।
2: वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: सूर्य देव के राशि परिवर्तन से किस राशि को मिलेगा धन? सूर्य देव का राशि परिवर्तन किसको करेगा परेशान? और सूर्य देव का राशि परिवर्तन किसकी समस्याओं का करेगा समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

ट्रंप को मिला रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार। अमेरिकी संसद के निचले सदन में बिल पास, लिस्ट में भारत का भी नाम। आज पीएम मोदी का 76वां जन्मदिन। बीजेपी एक महीने तक चलाएगी सेवा संकल्प अभियान। अलग अलग शहरों में पार्टी के दिग्गज कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लाखों दिए जलाने की तैयारी। 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर शुल्क के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा। कहा, नियम वापस ले सरकार। वित्त मंत्री का जवाब, फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। नौकरी पेशा कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा। कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रति माह किया। 51,00,000 लोगों को फायदा होगा। और यमन के हूती विद्रोहियों ने देसी मिसाइल से सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को गिराने का दावा किया। वीडियो भी जारी किया।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि सूर्य देव के कन्या राशि में प्रवेश का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

26 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः 10:47 तक, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र शाम को 7:53 तक, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में। इसकी पूरी स्थिति क्या है? सूर्य देव 17 सितंबर को यानी आज कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कन्या राशि में सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत नहीं मानी जाती, क्योंकि सूर्य यहां नीचाभिलाषी हो जाते हैं, नीच राशि की तरफ जाने लगते हैं। सूर्य जब कन्या में प्रवेश करेंगे तो बुध के साथ हो जाएंगे और मंगल और शनि का प्रभाव उनके ऊपर बन जाएगा। सूर्य शनि मंगल और बुध का इन्वॉल्वमेंट, ये स्थिति बहुत शुभ नहीं है और इसका प्रभाव लोगों पर, देश दुनिया पर, अलग अलग राशियों पर 1 तक बना रहेगा और अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का गहरा असर पड़ेगा।

या उसका प्रभाव जीवन में ज्यादा दिखाई देगा। सूर्य देव के राशि परिवर्तन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। तो सूर्य देव आज कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और उनका प्रभाव अलग अलग राशियों पर अगले एक महीने तक दिखाई देगा। तो सूर्य देव के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, धन की स्थितियां बेहतर होंगी, धन लाभ के योग इनके लिए बन रहे हैं। वृषभ राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। आपके नजदीकी रिश्तों में विवाद हो सकता है, बेवजह की समस्या हो सकती है, सावधान रहिएगा। मिथुन राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से पारिवारिक अशांति हो सकती है, परिवार में दिक्कत आ सकती है और इस समय आपको चोट चपेट से सावधान रहना चाहिए। कर्क राशि, करियर से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान निकलेगा, करियर की समस्या आपकी हल होगी।

आपका मामला बढ़िया हो जाएगा। सिंह राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन परिवार में तनाव दिखा रहा है, तो परिवार में बेवजह के विवादों से बचें, चोट चपेट से इस समय सावधान रहने का प्रयास करें, चोट चपेट से बचाव करें। कन्या राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से आपको करियर में समस्या हो सकती है और सेहत को लेकर बहुत सतर्क रहिए, पेट में, हड्डियों में या इन्फेक्शन जैसी बीमारियां इस समय आपको परेशान कर सकती हैं। बाकी राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें भेज दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न हर्षिता ने हमें लिखा है, बेंगलोर से लिखती हैं। हर्षिता की जन्म तारीख है 30 नवंबर 1985। जन्म का समय रात में 8:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। हर्षिता कह रही हैं कि मैं बेंगलोर से अपनी नौकरी बदल करके दिल्ली या दिल्ली के आसपास जाना चाहती हूँ, चेंज ऑफ प्लेस करना चाहती हूँ और काफी समय से प्रयास कर रही हूँ। तो मेरा चेंज ऑफ प्लेस कब तक होगा? क्या मैं दिल्ली के आसपास या लखनऊ के आसपास पहुंच सकूंगी? हर्षिता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्थान परिवर्तन का, नौकरी में बदलाव का समय चल रहा है और ज्यादातर संभावना ये है कि अक्टूबर 2026 से अप्रैल 2027 के बीच में आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, आपका स्थान परिवर्तन होगा और वो आपके लिए लाभकारी होगा, मनचाहा स्थान परिवर्तन हो जाएगा। सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें और एक मोती, लगभग 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो हमने आपको बताया मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अब बाकी राशियों के बारे में जानते हैं। तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के लोगों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में लापरवाही मत करिएगा। सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपको आंखों में दिक्कत दे सकता है। इस समय अचानक पैसे की बर्बादी हो सकती है, धन का अपव्यय हो सकता

आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे, संपत्ति और धन का लाभ मिलता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। ये एक महीना वृश्चिक वालों के लिए सामान्यतः फायदे की सूचना दे रहा है। धनु राशि, सूर्य देव के राशि परिवर्तन की वजह से आपके करियर में इस समय महत्वपूर्ण बदलाव होगा और इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आप चाहें या ना चाहें, और स्थान परिवर्तन आगे चल करके आपके लिए लाभकारी रहेगा। मकर राशि, सूर्य का राशि परिवर्तन ऑफिस में तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए ऑफिस के कार्यों में सावधानी बनाए रखें और अगले एक महीने तक वाहन सावधानी से अगर चलाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुंभ राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचिएगा वरना मुश्किल काफी हो सकती है। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय, जैसे विवाह का निर्णय, करियर का निर्णय, ऐसा कोई बड़ा निर्णय इस समय मत लीजिएगा। मीन राशि, सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके करियर में प्रॉब्लम दे सकता है, आपके करियर में समस्या आ सकती है। खान पान के मामले में सावधानी रखिएगा क्योंकि पेट को लेकर, खान पान को लेकर इस समय आप बीमार पड़ सकते हैं। सूर्य देव के राशि परिवर्तन पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

के योग हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। राशि, पारिवारिक समस्या परेशान करेगी, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।

शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब आपको बताते हैं कि अगर सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि मेष राशि वालों के लिए राशि परिवर्तन अच्छा दिखाई दे रहा है। उसके अलावा वृश्चिक वालों के लिए, धनु वालों के लिए भी ये राशि परिवर्तन अच्छा है, कर्क के लिए भी अच्छा है। तो मेष, कर्क, वृश्चिक और धनु, इन चार राशियों के लिए राशि परिवर्तन अच्छा है। बाकियों के लिए राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है और मिथुन, तुला और कुंभ वालों के लिए ये राशि परिवर्तन ज्यादा निगेटिव है। तो क्या उपाय करें कि सूर्य के राशि परिवर्तन से दिक्कत ना हो। अगले एक महीने तक नियम बना लें, रोज सवेरे सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करिए। सुबह के समय ही जल देने के बाद सूर्य के मंत्र का जप करिएगा। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः या ओम घृणही सूर्याय नमः या ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। जो मंत्र आप जप सकें रोज सुबह जल देने के बाद जपिए। रोज सवेरे अगले एक महीने तक नियम बना लें, हरी सौंफ खाकर घर से निकलिएगा। और जिनके लिए राशि परिवर्तन अशुभ है, ऐसे लोग दो बातों का बहुत ध्यान रखेंगे, चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचेंगे। नौकरी और पैसे से संबंधित निर्णयों में सावधानी बनाए रखेंगे। देखिए, सूर्य जिस दिन राशि बदलते हैं उस अवसर को संक्रांति कहा जाता है। जैसे आज सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो आज है कन्या संक्रांति, क्योंकि सूर्य कन्या राशि में जाएंगे। सूर्य की संक्रांति जब भी हो, सूर्य कन्या में जाएं, तुला में जाएं, धनु में जाएं, संक्रांति वाले दिन किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप अन्न का और वस्त्र का दान करें तो आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी, आपके पाप कटेंगे और सूर्य देव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।

के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी।

होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, व्यर्थ की दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि बृहस्पतिवार के दिन मांसाहार नहीं करना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, ऐसा करने से पाप लगता है। क्या ऐसा है? देखिए, ये बात सही है कि बृहस्पतिवार के दिन को बहुत पवित्र और बहुत शुभ दिन माना जाता है, लेकिन वास्तव में हर दिन पवित्र है, हर दिन शुभ है। तो आप बृहस्पतिवार को नॉनवेज नहीं खाएंगे और शुक्रवार को खाएंगे तो आप पाप से बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पाप लगेगा तो रोज भी लगेगा। सोमवार का दिन शिव जी का, मंगलवार का हनुमान जी का, बुधवार का गणपति का, तो हर दिन तो देवी देवता का दिन है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि बृहस्पतिवार को नहीं खाऊंगा, मंगलवार को नहीं खाऊंगा क्योंकि पाप होता है, तो पाप रोज होता है, किसी एक दिन छोड़ने से आप पाप से नहीं बचेंगे। अगर आप खाइए तो फिर ये ढकोसला मत करिए कि मैं बृहस्पतिवार को नहीं खाता, मैं मंगलवार को नहीं खाता। इसलिए ये सब कहना कि ये दिन देवता का है, ये दिन पवित्र है, इस दिन नहीं खाऊंगा बाकी दिन खाऊंगा, ये उचित नहीं है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नंबर 5, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 6, धन लाभ के योग हैं। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। और नंबर 9, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य पहर में आज का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से संतान और शिक्षा के मामले में लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रख करके जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है
वाहन, भूमि, भवन, तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान।

वृश्चिक राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, तनाव चिंताएं कम हो जाएंगे। आज का दिन मंगलमय होगा। कुंभ राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा। सिंह राशि वालों को चिंताएं तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज गणेश जी की पूजा पीले फूलों से जरूर करिएगा और आज षष्ठी तिथि है, संतान प्राप्ति के लिए या

में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के उधमपुर से। इस समय जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकियों के मारे जाने की खबर है। उधमपुर के मजालता इलाके के सोहन में बीती रात सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इलाके में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने घेरेबंदी की। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों से सामना हुआ है। इस मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया गया है। दो आतंकी सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में ढेर किए गए हैं। ऑपरेशन अभी भी जारी है। आतंकियों के इस इलाके में छिपे होने की आशंका को देखते हुए सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। मुठभेड़ से जुड़ी और जानकारी का इंतजार है, लेकिन उधमपुर में सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इस एनकाउंटर में दो आतंकी मारे गए हैं। कमलजीत संधु हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलजीत, पूरी जानकारी दीजिए।
1: देखिए, सुरक्षा बलों की तरफ से जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी, इन्होंने मिलकर ऑपरेशन लॉन्च किया था। और आपको बता दें, इस एरिया में पहले ही से ही सस्पेक्ट किया जा रहा था कि जो आतंकी उनका मूवमेंट हो सकता है, उनकी गतिविधि है। और उसके बाद यहाँ पे कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और अब जानकारी मिल रही है कि दो आतंकी इसमें ढेर कर दिए गए हैं। और एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये जो बेल्ट है, जो एक फॉरेस्टेड बेल्ट माना जाता है, वहां पे इस तरह का घटनाक्रम होना, और खासतौर पर हमने देखा है जो जम्मू के क्षेत्र में, खासतौर पर उधमपुर का इलाका है, वहां पर जो टेरेन है बहुत मुश्किल है। और वहीं पे मजालता एरिया है जहां पे सस्पिशियस मूवमेंट देखा गया था। और अब एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है, जहां पे दो आतंकी हैं। और ऐसा जानकारी हमें मिल रही है कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है वो अब लगातार जारी है, और ऑपरेशन इस वक्त अपने लास्ट स्टेजेस पर है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत संधू तमाम जानकारी के लिए। तो उधमपुर इलाके में दो आतंकी मारे गए हैं। अभी इस पूरे इलाके में सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है। सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। अब आगे देखते हैं टॉप 100।

अमेरिकी संसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास हो गया है। हाउस में बिल के पक्ष में 262 और विरोध में 159 वोट पड़े हैं। इस बिल के जरिए ईरान को निशाना बनाकर व्यापक प्रतिबंध लगाने से जुड़ा है। इसे लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 नाम दिया गया है। इस बिल का सीधा असर भारत और चीन जैसे देशों पर पड़ सकता है, क्योंकि ये बिल सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को रूसी तेल गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैक्स लगाने का अधिकार देता है। ट्रंप अगले हफ्ते गल्फ लीडर्स के साथ ईरान पर बातचीत करेंगे, जिसमें ईरान के साथ जंग में अगले कदमों पर बातचीत की जाएगी। ट्रंप प्रशासन इसराइल को 2.8 अरब डॉलर के सैन्य समझौते के तहत 40,000 शक्तिशाली बम देने की तैयारी में है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पर रोक लगाई थी। यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। सऊदी अरब ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। हुती सैन्य प्रवक्ता ने एक्स पर जारी बयान में दावा किया कि सऊदी के F-15 मारिफ प्रांत के एयरपेस में सैन्य अभियान चला रहा था, इसी दौरान हुती लड़ाके ने उसे निशाना बनाया। हुतियों ने आरोप लगाया है कि सऊदी अरब ने पिछले एक सप्ताह में यमन के अलग अलग इलाकों में 450 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। खबरों के मुताबिक ओमान में अमेरिकी अधिकारियों के साथ ईरान समर्थित हुती नेताओं के बीच बातचीत के बाद अमेरिका ने यमन में सीधे सैन्य हस्तक्षेप न करने का फैसला लिया है। अफीम के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा भारत के प्रयासों का स्वागत किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी 76 साल के हुए। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर देशभर में कई कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी की जा रही है। मोदी के जन्मदिन के मौके पर देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाएगी बीजेपी। आज से 17 अक्टूबर तक चलेगा यह अभियान। पीएम के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मस्थली गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली निकाली जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह सुबह 9:30 बजे बाइक रैली को रवाना करेंगे। पीएम के जन्मदिन के मौके पर वाराणसी में होंगे कई कार्यक्रम। सीएम योगी और रक्षा मंत्री वडनगर के लिए सेवा संकल्प बाइक यात्रा को रवाना करेंगे। मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनके बचपन के दोस्त ने चिट्ठी लिखी, पीएम को बताया खुद कृष्ण और खुद को बताया सुदामा। 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर शुल्क के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा, कहा नियम वापस ले सरकार। राहुल के बयान पर वित्त मंत्रालय की ओर से जवाब, फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं है। गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी हंकार, कहा पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर, आज यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त है। योगी आदित्यनाथ का ऐलान, 19 सितंबर से 1,00,000 नई नौकरी की शुरुआत की जा रही है। सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रति माह के 51,00,000 लोगों को फायदा होगा। शहजाद भट्टी नेटवर्क पर बड़ा एक्शन, केंद्र ने यूएपीए के तहत घोषित किया आतंकवादी संगठन। नेटवर्क पर सीमा पार हथियार, विस्फोटक, मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का आरोप। युवा और छोटे अपराधियों को आतंकवाद की ओर उकसाने का भी आरोप है। यूपीआई पेमेंट चार्ज पर पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार से लगाई गुहार, 2,000 रुपए से अधिक की यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर से पूरी तरह छूट देने की मांग की है। जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है, 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आज से यूपी बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े की क्षेत्रवार बैठकों का दौर शुरू हो रहा है, चुनावी तैयारियों पर मंथन होगा। बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और रोडमैप पर भी मंथन संभव है। गुरुग्राम में टनल मामले में एसआईटी का गठन, एसीपी सहित 5 लोगों की बनाई गई एसआईटी की टीम, इसके अलावा पुलिस 3 रिक्रिएट भी कराएगी। तृणमूल कांग्रेस सिंबल पर जल्द फैसला ले सकता है चुनाव आयोग, आज दोनों गुटों को बैठक के लिए बुलाया गया। 6 अक्टूबर को 2 सीटों पर उपचुनाव होने। नई दिल्ली में असुरक्षित रिहायशी क्वार्टरों को खाली करने के निर्देश दिए गए, एनडीएमसी की तरफ से अब नोटिस चस्पा किया गया है। बीएसपी के पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव की मुश्किलें बढ़ी, ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में जांच शुरू कर दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव प्रचार के दौरान हुई 2 छात्र गुटों में झड़प, जमकर चले लात घूंसे डंडे, छात्र गंभीर रूप से घायल हुआ। झड़प के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल दिल्ली विश्वविद्यालय में तैनात की गई, मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद डीसीपी भी दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंची। सत्यनिकेतन हादसे के बाद एमसीडी का बड़ा एक्शन जारी है, एमसीडी ने 3 पीजी बिल्डिंग पर नोटिस लगाकर डेमोलिशन शुरू किया। अहमदाबाद में पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में माँ उमिया की महाआरती हुई, 1,000 लोग शामिल हुए।
इंदौर में मकान तोड़ते समय बड़ा हादसा हुआ, दीवार गिरने से चार महिला मजदूरों की मौत हो गई, पांच घायल हुए। हरियाणा में 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद, करनाल मंडी में 1509 किस्म की आवक तेज हो गई है। किसानों को 3500 से 4100 रुपए तक प्रति क्विंटल तक का भाव मिल रहा है। खरीद जल्द शुरू करने की मांग पर किसान संगठन नाराज है, करनाल में किसान नेता रत्नमान ने फैसले पर विरोध जताया है। फरीदकोट में शिरोमणी अकाली दल का बिजली संकट को लेकर के प्रदर्शन जारी, एसडीएम दफ्तर पर पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, किसानों को पर्याप्त बिजली देने की मांग की गई। शिरोमणी अकाली दल ने दावा किया कि अकाली बीजेपी की सरकार के दौरान पंजाब बिजली सरप्लस राज्य बना, बढ़ती मांग के मुताबिक नई क्षमता नहीं जोड़ी गई। एक्यूआईएस की विचारधारा से जुड़े मॉडल पर यूपी एटीएस की कार्रवाई, कोयंबटूर से मकसूद अली को गिरफ्तार किया। इंदौर में गणेश जुलूस के दौरान नाबालिग की हत्या, आरोपी गिरफ्तार किया गया। झांसी में डंपर से पशुओं से भरे ट्रक की जोरदार टक्कर हुई, चालक और चार पशुओं की मौत हो गई, ट्रक में सवार पांच लोग घायल हुए। आंध्र प्रदेश के विजयनगर में शादीशुदा महिला की हत्या, जंगल में बोरे में बंद मिला शव, चार साल के रिश्ते में विवाद के बाद प्रेमी पर हत्या का आरोप। अमृतसर में एम्बुलेंस की आड़ में नशा तस्करी का पर्दाफाश, ड्राइवर समेत 8 को गिरफ्तार किया गया। नांदेड़ में 12 साल की नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप, मां की शिकायत पर 28 साल का आरोपी गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना के मंचेरियल में पत्नी के घर लौटने से इनकार करने पर पति का हमला, नाक काटकर गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप। सूरत के सालासा टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग लगी, 25 दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अमृतसर में दिखा बदमाशों का आतंक, पुरानी रंजिश में की ताबड़तोड़ फायरिंग, एक युवक की मौत। प्रयागराज में पूर्व प्रधान पवन यादव हत्याकांड का जल्द हो सकता खुलासा, प्रधान पति और हिस्ट्री शीटर पर शक, आपसी रंजिश का शक। अजमेर में कार साइड में लेने के विवाद में जानलेवा हमला हुआ, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अमेठी के प्राथमिक विद्यालय पटरी में सहायक शिक्षक निलंबित, रसोईया से अश्लील टिप्पणी और अभद्रता समेत कई आरोप। कानपुर में विनीत मनोचा हत्याकांड, कोर्ट में शालू विशाल राजकिशोर की पेशी, कैमरे के सामने मुंह छुपाती नजर आई शालू, पुलिस रिमांड पर सुनवाई टली। महोबा में पत्नी को ले जाने आए ससुरालियों का तांडव देखने को मिला, पति और सास को पीटा, वायरल हुआ मारपीट का वीडियो। बेगूसराय में नई थमरा महिलाओं का शव मिलने का सिलसिला, 28 साल की अज्ञात महिला का शव मिला, हत्या कर शव फेंकने की आशंका। जयपुर में फैक्ट्री में भयंकर आग लगी, रोहित पॉली प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में उठी आग की लपटें। अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले फर्जी कॉल सेंटर सिंडिकेट पर ईडी की छापेमारी, पटियाला पुणे चंडीगढ़ के 4 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन, 3 कॉल सेंटरों में करीब 220 लोग मिले। मेरठ के कॉलेज के 2 छात्रों में हुई जमकर मारपीट, 5 लोग पुलिस की हिरासत में। गाजियाबाद की पार्श्वनाथ मैजिस्टिक सोसाइटी के फ्लैट में लगी आग, तीसरी मंजिल पर हादसा, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में पुलिस बूथ से 10 कदम दूर झपटमारी हुई, युवक युवती बाइक पर आए मोबाइल लूटकर फरार हो गए। जालंधर में 24 साल की लड़की ने 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की, पुलिस बोली परिवार के बयान के मुताबिक डिप्रेशन में थी लड़की। झांसी में बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर नातिन ने की नाना की हत्या, दोनों गिरफ्तार। इंदौर में जर्जर मकान गिरने से 3 महिलाओं की मौत, मकान तोड़ने का काम उसी दौरान चल रहा था जब यह हादसा हुआ। राजगढ़ में 16 साल के नाबालिग की हत्या का 24 घंटे में खुलासा, लव ट्रायंगल में खूनी वारदात, 2 आरोपी गिरफ्तार। संगरूर में नशे के खिलाफ मुहिम के दौरान 2 पक्षों में विवाद, सरपंच समेत कई लोग घायल हुए। गणेशोत्सव के तीसरे दिन लालबाग के राजा दरबार में भक्तों की कतार, बापा दर्शन और चरण स्पर्श के लिए दूर दूर पंडाल से आए श्रद्धालु। लालबाग के राजा दरबार में क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने भी लगाई हाजिरी, पत्नी संग लिया बापा का आशीर्वाद, सुख समृद्धि की प्रार्थना की। फडणवीस और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी लालबाग के राजा के दर्शन किए, माथा टेका, बापा का आशीर्वाद लिया। अकोला में सजा 90 साल पुराने मारवाड़ी प्रेस गणपति का भव्य दरबार, 15 फीट की गणेश प्रतिमा विराजमान, लकड़ी के महल की थीम पर तैयार। पंडाल में भक्तों को भगवान गणेश के जन्म से लेकर अष्टविनायक के दर्शन तक की मिल रही है झलक, दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं भक्त। मुंबई के वाशिम में भी अनेक स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं भगवान, सौंफ सुपारी इलायची से बनाई गई गणेश जी की आकर्षक मूर्ति। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर स्थित गणेश प्रतिमा ने खींचा सबका ध्यान, 21,000 पानीपुरी शैल से बनी बापा की यह प्रतिमा। सूरत के नानापुरा में अनोखी गणपति पंडाल चर्चा का विषय बनी, जलमग्न द्वारिका की थीम पर बना भव्य गणेश पंडाल। मुंबई में एक्टर सोहेल खान के घर गणपति उत्सव शामिल हुए कई सितारे, विसर्जन के दौरान जमकर डांस। गणपति उत्सव में हेलेन बहन अर्पिता का परिवार, अरबाज खान के बेटे भी नजर आए, सभी ने गणपति से सुख समृद्धि की कामना की।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: आगे आगे, करेक्ट करेक्ट।
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: एक तो एक
4: इश्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया
3: है। ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तो
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
9: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
10: लायन डेट नट बाइट्स।
11: SBI Celebrations Unlimited. Ye Ganeshotsav banega special with festive offers on car loan, gold loan, personal loan and loan against mutual funds.
12: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
13: GK Max.
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: GK Max. Best पुट्टी?
15: JK Wall Max.
13: Best paint?
15: JK Max.
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Max paints. JK Max paints. खुशियों के रंग।

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है। ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
3: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
4: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
5: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
6: अब मैं क्या ही बोलूं?
7: परिवार अटूट भरोसा।
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: इसमें कहीं दो मत नहीं है। आज तक का यहाँ तक प्रश्न है, एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहाँ पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं TV टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।

0: उत्तर प्रदेश के 32,000 से अधिक बेसिक स्कूलों में स्मार्ट सुविधाएं पहले से मिल रही हैं। इन स्कूलों में स्मार्ट टीवी, 3D एनिमेशन और डिजिटल कंटेंट के साथ क्लासरूम को स्मार्ट बनाया गया है। 133,000 से अधिक बेसिक स्कूलों में से भले 32,000 स्कूलों में ही सही, लेकिन यूपी में स्कूली शिक्षा को स्मार्ट बनाने की दिशा में योगी सरकार ने पहल जारी रखी है और अब इसी कोशिश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिसमें जेन अल्फा की स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए बेसिक स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में बदलने की तैयारी हुई है। 15 सितंबर को लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ कि प्रदेश के 14,429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालय अब स्मार्ट स्कूल बनेंगे। इसके लिए शुरुआती तौर पर 300 करोड़ की धनराशि मंजूर भी कर दी गई है। इससे बेसिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास बोर्ड, ICT लैब और डिजिटल संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। श्रीटॉन इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी को स्मार्ट क्लासेस का काम सौंपा गया है। इसमें हर स्कूल को 2,07,910 रुपए मिलेंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है कि विद्यार्थियों की संख्या और नामांकन के आधार पर स्मार्ट क्लास एवं ICT लैब की सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। सीएम योगी कहते हैं कि 2017 से पहले स्कूलों की जर्जर हालत को दुरुस्त करने का अभियान जारी रहेगा और बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए चलाए गए ऑपरेशन कायाकल्प का असर 2021 के बाद ऐसा हुआ कि यूपी में 32,000 से अधिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस चलती हैं, 15,000 से अधिक विद्यालयों में ICT लैब की सुविधा है, 1,129 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा भी दी जा रही है। प्रदेश में 261,000 से अधिक शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराए जा चुके हैं, लेकिन योगी सरकार की इन कोशिशों पर CJP सवाल खड़े करती है। 14,000 से अधिक स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए सिर्फ 300 करोड़ का बजट झांसा है।
1: आप बताइए, 300 करोड़ 14,000 प्लस स्कूलों के लिए, मतलब कि एक स्कूल को मिलेगा 2,00,000 रुपए। स्कूल में देश का फ्यूचर पढ़ने वाला है, वो 14,000 स्कूलों में 2,00,000 रुपए लगा के 300 करोड़ का झांसा दे रहे हैं।
0: दरअसल यूपी के चुनावी सीजन में CJP की टीम भी स्कूलों की सुध लेने में लगी है। सौरभ दास ने नोएडा के बिसरक इलाके में स्कूलों के दौरे किए, वहीं टीचर से बात की, बच्चों को उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और सुधार की जरूरतों वाले स्कूलों का सच सामने लाने की बात कही। हालांकि बाद में CJP ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्हें स्कूलों में नहीं घुसने दिया जा रहा है। नोएडा से भूपेंद्र सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: va.
1: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
1: हाँ, ओला ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: वो चार्ज हुआ यार।
0: ओला बैट किसका है?
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
7: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
9: जेके वॉल मैक्स
7: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड यूसीसी को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा एनडीए शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
2: क्या गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान यूपी के चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा? क्या 2027 में होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव का एपिसेंटर यूसीसी ही बनेगा? क्या 2027 की चुनावी बिसात को देखते हुए ही बीजेपी ने यूसीसी का मोहरा चला है? इसे ठीक से समझने से पहले जरा अखिलेश यादव का नया संदेश देख लीजिए। अखिलेश ने यूसीसी की नई परिभाषा दी है। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूसीसी मतलब अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस यूसीसी का विरोध करते हुए एक्स पर लिखा है, जनता समझ रही है भाजपा जिस यूसीसी की बात कर रही है दरअसल उसका फुल फॉर्म कुछ और है, यूसीसी इक्वल टू अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। अखिलेश ने जिस अंदाज में यूसीसी को परिभाषित किया है उससे साफ है कि समाजवादी पार्टी यूसीसी का खुलकर विरोध करने जा रही है और उतना ही साफ ये भी है कि बीजेपी यूपी में इसे जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश करेगी। योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली आए थे और खबर है कि यूसीसी पर उनके गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है। यूसीसी को यूपी में जल्द से जल्द लागू करने की बीजेपी की मंशा किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं यूपी में यूसीसी का आगाज होकर रहेगा।
3: यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे 2024 के घोषणा पत्र में और संविधान का अनुच्छेद 44 ये कहता भी है और ये हमारे नीति निर्देशक तत्व में भी शामिल है और माननीय गृहमंत्री जी ने आज कहा भी है। और निश्चित रूप से अगर महिलाओं के प्रति उनके अधिकारों के प्रति अगर उसे पूर्ण करना है, उन्हें सुरक्षा देनी है तो ये बहुत आवश्यक है। बाकी सरकार को निर्णय करना, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना, लेकिन आज गृहमंत्री जी ने जो बोला है वो कहीं ना कहीं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है, हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है। और निश्चित रूप से सामान्य नागरिक संहिता की बात हम लोग लंबे समय से करते रहे हैं और हमारे लिए हमारा कमिटमेंट है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। देश हमारे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए सामान्य नागरिक संहिता की बात भारतीय जनता पार्टी जनसंघ हमेशा उठाती रही है।
4: उत्तर प्रदेश ये प्रयास करेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मनसा है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरे। सरकार निश्चित तौर पे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले लागू करेंगे।
2: ये भी तय है कि यूपी में यूसीसी लागू होने की कोशिश होती है तो इसका विरोध भी तगड़ा होगा। मुस्लिम वोटों की चाहत में अखिलेश तो विरोध करेंगे ही, ओवैसी जैसे नेता भी सुर में सुर मिलाएंगे। मोदी सरकार धारा 370, तीन तलाक कानून, वक्फ कानून जैसे बड़े फैसले ले चुकी है। अब यूसीसी की बारी है और यूपी में इसे लागू करने की पूरी तैयारी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दो आतंकी ढेर। माजालता के सोहन इलाके में रात भर चला सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, इलाके में सख्त घेराबंदी।

2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर शुल्क के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा, कहा नियम वापस ले सरकार, वित्त मंत्री का जवाब, फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। ट्रंप को मिला रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार, अमेरिकी संसद के निचले सदन में बिल पास, लिस्ट में भारत का भी नाम।

कन्नड़ फिल्मों के दमदार अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। पीएम मोदी ने दी बधाई। पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी समेत 18 फिल्मी हस्तियों को सीबीएफसी में जिम्मेदारी।

0: सभी का मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सुबह के 8 बज गए हैं, देश दुनिया की सुपर हिट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं आपके सामने। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस बुलेटिन में क्या कुछ खास होने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, देश भर में क्या क्या आयोजन होने वाले हैं विस्तार से आगे आपको बताएंगे। बताएंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव से पहले एबीवीपी और एनएसयूआई में क्यों झड़प हुई है। वहीं कानपुर की खतरनाक सड़कों पर सावधान करने वाली खबर से भी आपको रूबरू कराएंगे। वहीं इसके अलावा बात होगी यूपीआई टैक्स, यूसीसी पॉलिटिक्स और इंदौर में छात्र गूंज की। साथ ही भारत पर 100% अमेरिकी टैरिफ वाले कानून की भी बात करेंगे। और आखिर में हूती विद्रोहियों की बात होगी जिन्होंने सऊदी में खौफ फैला रखा है। सबसे पहले सुपर एट में शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, जम्मू कश्मीर के उधमपुर से जो आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है और ये पाकिस्तानी आतंकी हो सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। अभी उनकी पहचान फिलहाल की जा रही है। ये आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं। आज सुबह सुबह सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, उधमपुर के जंगलों में 2 आतंकी मारे गए हैं। 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है उधमपुर के जंगलों में। अभी फिलहाल उनकी पहचान की जा रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि इनका कनेक्शन पाकिस्तान से हो सकता है या आतंकी पाकिस्तानी हो सकते हैं, जैश ए मोहम्मद से जुड़े इनके कनेक्शन हो सकते हैं। और आज सुबह सुबह ये खबर सामने आई है, सुबह सुबह सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। कमलजीत संधू हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। कमलजीत, अभी तक क्या अपडेट है, क्या इन दोनों आतंकियों की पहचान हो पाई है?
1: देखिए, ऐसा है कि पिछले कुछ समय में एक इनपुट आया था जिसके बाद ये कॉर्डन ऑफ सर्च ऑपरेशन लगाया गया था। सुवन इलाका है जो कि मजालता में पड़ता है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। आपको बता दें एक बहुत दुर्गम इलाका है, काफी दूर दराज है और वहीं पर ये पूरा ऑपरेशन हुआ है। और आपको बता दें ये ज्वाइंट ऑपरेशन है जहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी है। और खास तौर पे आपको बता दें कि यहाँ पे जो ऑपरेशन चला है उसमें 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जैश ए मोहम्मद से इनका लिंक बताया जा रहा है, फॉरेन टेररिस्ट भी हो सकते हैं। और अपने आप में ये जो एरिया है इतना वाइड स्प्रेड है और वहां पे इस तरह की जानकारी मिलना और उसके ऊपर जो इंटेलिजेंस को जनरेट करते हुए ये ऑपरेशन लॉन्च किया है उसमें एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। और आपको बता दें कि पिछले समय में जो पिछले साल पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से कई ऐसे ऑपरेशन किए गए हैं और लगातार ऑपरेशन चलने की वजह से ही इस तरह के ऑपरेशन में कामयाबी मिल पाई है। और अभी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस अभी जारी है, लेकिन ऐसा हमेशा बताया जा रहा है कि ये 2 आतंकी हैं वो जैश मोहम्मद के हो सकते हैं। और कई बार हमने देखा है कि जो जैश के टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तानी बेस्ड होते हैं या पाकिस्तानी ओरिजिन के होते हैं। अभी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जारी है।
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आगे बढ़ते हुए मिडिल ईस्ट की बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त वहां से बड़ी खबर आ रही है, हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। हूती सैन्य मीडिया विंग ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कि रात के आसमान में रोशनी के बाद जमीन पर जलता हुआ मलबा दिखाई दे रहा है। मलबे के एक हिस्से पर सऊदी अरब का झंडा नजर आ रहा है। हूती सैन्य प्रवक्ता यादा सरी ने दावा किया है कि सऊदी F-15 को निशाना बनाया गया। हालांकि वीडियो की जगह इसे कब रिकॉर्ड किया गया है इसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। भारी नुकसान के कारण विमान के मॉडल की भी तत्काल पुष्टि नहीं हो पाई है। एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ अपने सहयोगियों से मदद मांगी है। दरअसल सऊदी ने अपने रक्षा सहयोगियों से मदद की मांग की है हूती विद्रोहियों के खिलाफ। एक बड़ी जानकारी, सऊदी अरब ने अपने ही सहयोगियों से मदद की मांग की है हूती विद्रोहियों के खिलाफ। देखिए, क्योंकि सऊदी का जो मिसाइल इंटरसेप्टर स्टॉक है वो काफी ज्यादा कम हो रहा है, ऐसे में अपने ही सहयोगियों से मदद की मांग कर रहा है सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के खिलाफ मदद की मांग कर रहा है। मिसाइल एयर डिफेंस में ये मदद मांगी गई है। तो ये अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेरिकी संसद के निचले सदन ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास हो गया है। दरअसल हाउस में बिल के पक्ष में 262 और विरोध में 159 वोट पड़े और अब बिल पर राष्ट्रपति ट्रंप के दस्तखत करते ही ये कानून बन जाएगा। लिंडसे ओग्राहम सेक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 नाम वाले इस बिल का असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि बिल के पास होने के बाद ट्रंप को भारत पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाएगा। रूस से ज्यादा तेल खरीदने पर जिन देशों पर 100% टैरिफ का प्रस्ताव है उसमें भारत, चीन समेत 5 देश हैं।

0: वॉशिंगटन डीसी से हमारे सहयोगी रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, इस पर और अधिक जानकारी के साथ ये बताइएगा कि आखिर ये बिल है क्या, इसके बारे में विस्तार से बताएं।
1: देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि बिल है क्या। ये रशिया सैंक्शंस बिल जो है, ये सेंटर लिंसी ग्रहम जो अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे, उनका एक हम कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट था। और वो जब सेनेट में थे तो उन्होंने 500% टैरिफ से एक बिल ये लेके आए थे। और ऐसा माना जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ओवरटर्न हो गया तो उन्होंने काफी कोशिश की थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसको लेवरेज करे, लेकिन उस समय प्रेसिडेंट ट्रंप इंटरेस्टेड नहीं थे। और इनफैक्ट ये भी कहा जा सकता है अभी भी इतने इंटरेस्टेड नहीं थे इस बिल में। लेकिन जब जब सेनेटर लिंसी ग्रहम का निधन हो गया तो सेनेट के कॉलिग्स ने एक ट्रिब्यूट के तौर पे इस बिल को पास किया। और उस जिस जब बिल को पास किया गया तो 100% टैरिफ्स 500% से हटा के इसे 100% पे कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक इट वॉज नॉट इतना सीरियस नहीं था ये, ऐसा था कि चलिए इसे हम एक ट्रिब्यूट के तौर पे कर देते हैं। लेकिन क्योंकि जब सेनेट ने बिल पास कर दिया था करीब 2.5 महीने पहले और उसके बाद ये हाउस में आया, तो माना ये जा रहा था कि हाउस इस बिल को मिड टर्म इलेक्शन के बाद जो चुनाव होने वाले नवंबर में, उसके बाद देखेगा इसकी और कि क्या करना है कैसे करना है। लेकिन फ्रीडम कॉकस जो एक ग्रुप है हाउस में, उसने इसको जो है इसको फास्ट ट्रैक किया और जो प्रोसीजरल हर्डल्स थे हमने देखा पिछले दिनों में, उसे फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी इस बिल को आगे बढ़ाया गया। तो ये बिल 100% जो टैरिफ है वो अथॉरिटी देता है प्रेसिडेंट को कि वो जो भी चाइना के जो अमेरिका के रशिया से जो तेल खरीदते हैं और अमेरिका जिनसे नाराज है या हो सकता है उसके ऊपर टैरिफ्स लगाए। तो उसमें चाइना, इंडिया, टर्की, इस तरह के जो देश हैं जो उनसे ऑयल और गैस एनर्जी लेते हैं, वो उनके ऊपर बिल ये 100% टैरिफ लगा सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और आने वाले कोई भी राष्ट्रपति। तो मोटा मोटी बिल ये करता है। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है बताने के लिए कि ये कोई व्हाइट हाउस की तरफ से पुश नहीं था या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई पुश नहीं था कि वो ये चाहते थे। ये यूएस कांग्रेस ने एक एक्शन लिया है और क्योंकि अभी बिल पास हो गया तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस पर हस्ताक्षर करेंगे, ये लॉ बनेगा और फिर हमें देखना होगा कि इसे कैसे और कब यूज किया जाता है।
0: रोहित, अभी देखिए दिल्ली में ब्रिक्स बैठक हुई, उसके तुरंत बाद अमेरिकी संसद ने 100% टैरिफ वाला कदम उठाया। ये टाइमिंग आखिर क्या कह रही है, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति भी अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं।
1: देखिए, टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। टाइमिंग दो पर्सपेक्टिव से हम इसे देख सकते हैं। एक तो ये कि चीन के राष्ट्रपति अमेरिका आने वाले हैं अगले महीने, अगले हफ्ते, और जब अगले हफ्ते वो आएंगे यहाँ पे तो ऑब्वियसली एक लेवरेज के तौर पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूज कर सकते हैं इसे एक टूल के तौर पे दिखाने के लिए, जो हमेशा से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप करते आए हैं कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उसमें एक और ऑप्शन हो गया, अगर चीन के साथ निगोशिएट करनी है चीजों को, उनके साथ ट्रेड को लेकर वार्ता होने वाली है, एआई को लेकर बातें होने वाली है, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को लेकर बातें होने वाली है, तो कहीं ना कहीं एक नई एक वेपन है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास दिखाने के लिए कि देखिए अगर आप ये नहीं करते हैं, इस तरह के कंसेशन हमें नहीं देते तो मेरे पास ये एक और नया टूल है। तो हमें उस नजरिए से भी इसे देखना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कि अमेरिका में भी मिड टर्म्स चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, तो कांग्रेस के लोग जिनके चुनाव होने वाले हैं वो अमेरिकन ऑडियंस को, डोमेस्टिक ऑडियंस को भी ये बताना चाहते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में वॉर को खत्म करने के लिए। और उन्होंने अब एक नई अथॉरिटी दी है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट के ऊपर ये कहीं ना कहीं बन जाता है कि वो इस युद्ध को खत्म करें। और इस नई अथॉरिटी से आई थिंक कहीं ना कहीं एक तौर पे रशिया को मैसेज भेजा है और इसी को आई थिंक डोमेस्टिक ऑडियंस को बताया जाएगा कि देखिए हम कोशिश पूरी कर रहे हैं इस युद्ध को खत्म करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये दोनों लिहाजों से हमें देखना चाहिए इस बिल के पास होने की टाइमिंग को।
0: चलिए ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बात अमेरिकी टैरिफ की हो रही है, उसके बाद देश में लगने वाले यूपीआई चार्ज की कर लेते हैं, क्योंकि जिसने पूरे विपक्ष को रिचार्ज कर दिया है। यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। राहुल गांधी ने इसको लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं सरकार का कहना है कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम और मजबूत करने के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है।
2: यूपीआई से लेन देन पर लगे चार्ज को लेकर विवाद जारी है। एमडीआर लगाए जाने के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने यूपीआई पर लगे एमडीआर को तुरंत वापस लेने की मांग की है।
3: मोदी जी हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ही इज नाइदर लेफ्ट नॉर राइट, ही हैज डिसाइडेड टू लाई डाउन स्ट्रेट एंड प्रोस्ट्रेट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ही हैज पुट अ टैक्स ऑन एवरी सिंगल इंडियन पर्सन बाय टैक्सिंग यूपीआई and giving huge amount of money to the United States. Modi ji, please stop lying down in front of the United States. Have a spine, khade ho jaiye, aur UPI tax ko wapis lijiye.
2: विपक्ष भले ही एमडीआर को यूपीआई टैक्स कह के विरोध कर रहा है, लेकिन सरकारी सूत्रों का दावा है कि मर्चेंट पेमेंट पर यूपीआई ट्रांजैक्शन फीस का फैसला सोच समझ कर लिया गया है और इसे वापस नहीं लिया जाएगा। उधर सरकार की अपनी दलील है कि यूपीआई के वित्तीय सिस्टम को चलाने में भारी भरकम खर्च आता है। इस बीच यूपीआई एमडीआर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4% फीस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इस फ्रेमवर्क पर रोक लगाने की मांग की है। यूपीआई लेनदेन में चार्ज लेने का जो फैसला हुआ है उसमें पर्सन टू पर्सन यानी आपसी लेनदेन पर यूपीआई पहले की तरह ही मुफ्त है। रेलवे, इंश्योरेंस, ईंधन जैसी सेवाओं पर 5 रुपए प्रति लेनदेन शुल्क ही लगेगा। यूपीआई से हर महीने ऑटो पे भुगतान पहले की तरह मुफ्त रहेंगे। महीने में यूपीआई से 1,00,000 रुपए तक भुगतान पाने वाले दुकानदार दायरे में नहीं आएंगे। 2,000 रुपए से ऊपर के भुगतान पर लगने वाली फीस ग्राहकों पर नहीं डाली जा सकेगी। उधर आरबीआई ने भी यूपीआई पेमेंट में लगने वाले चार्ज का बचाव किया है। आज तक ब्यूरो।
0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी और पीएम के समर्थक उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज देश भर में कई आयोजन किए जा रहे हैं। वाराणसी से वडनगर तक बीजेपी समर्थकों में काफी उत्साह है। अहमदाबाद में जबरदस्त लाइटिंग की गई है, तो वहीं मेहसाणा से एक बाइक रैली भी निकलेगी जो कि वाराणसी तक जाएगी। इसके अलावा पूरी सैंड आर्ट भी बनाई गई है। इस सैंड आर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर अलग अलग आयोजन किए गए हैं। वाराणसी से वडनगर तक एक बाइक रैली का भी आयोजन किया गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी देश भर में सेवा संकल्प अभियान चला रही है। सबसे खास कार्यक्रम पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वाराणसी में रहेंगे। वाराणसी से वडनगर तक बाइक रैली निकाली जा रही है। इसमें 500 बाइकर बनारस के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से निकलेंगे और पीएम मोदी की जन्मभूमि वडनगर तक जाएंगे। बाइक यात्रा के लिए 500 नई बाइक बनारस पहुंच चुकी है। ये बाइक लखनऊ में खरीदी गई थी। सबसे पहले 51 बाइकर्स निकलेंगे, गंगा स्नान करेंगे और फिर वहां से गंगा जल लेकर बाबा विश्वनाथ की पूजा करेंगे। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक जनसभा करेंगे। उसी जनसभा से इस बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में पीएम मोदी के 25 साल के कार्यकाल को दिखाया गया है। गुजरात से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने तक का सफर दर्शाया गया है। आज तक ब्यूरो।
0: और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनावी सरगर्मी के बीच दो छात्र गुटों में बवाल है। दरअसल आज फैकल्टी गेट के पास लात घूंसे चले डंडे चलाए गए जिसमें एक छात्र घायल हो गया है।

0: कैंपस में भारी पुलिस बल तैनात है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। बात कर लेते हैं कानपुर की। कानपुर में सड़कों पर सावधान रहना काफी जरूरी है। कब कहां किस जगह मिल जाए कोई भी नहीं जानता, इसलिए अलर्ट रहिए। दरअसल ये तस्वीर आप देखिए, कानपुर के खुले सीवर में एक डिलीवरी बॉय बाइक समेत जाकर गिर गया। हादसा इतना भयानक था कि युवक की चीख सुनकर आसपास के लोग दौड़े। कड़ी मशक्कत के बाद उसको बाहर निकाला गया है। गनीमत रही कि युवक ने हेलमेट पहना था जिससे कि उसकी जान बच गई। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करीब 15 दिन पहले सीवर लाइन की मरम्मत तो कर दी गई लेकिन गड्ढे बंद नहीं किए गए, अंधेरे में स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदारों की इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर दिल्ली से महाराष्ट्र तक राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। गृहमंत्री अमित शाह के 2029 तक एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने के बयान के बाद विपक्ष हमलावर है। राज्य सरकार इसे जल्द लागू करने की तैयारी में है तो दूसरी तरफ विरोध के सुर भी तीखे नजर आ रहे हैं।
1: हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
2: सिविल कोड भाड़ में जाए तुम्हारा यूनिफॉर्म।
3: अमित शाह ने एनडीए बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की डेडलाइन तय की तो देश में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस से लेकर ओवैसी की एआईएमआईएम तक सब ने एक सुर में समान नागरिक संहिता का विरोध किया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते कह दिया कि यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ नया हथियार बनाने की तैयारी हो रही है।
2: ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि जो लोग हिंदू नहीं है उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू डिवोर्स एक्ट और इन तमाम ऐसे कानून का निफाद उन गैर हिंदू कौमों पर किया जाए। हम इसीलिए इस कानून की मुखालिफत करते हैं क्योंकि ये कानून भारत के आईन के खिलाफ है। और मुझे ये कहना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में करीब 21% के करीब आदिवासी हैं, उनको उससे मुस्तस्ना कर दिया गया, एग्जम किया गया और मध्य प्रदेश के 9% मुसलमानों पर इस तरह के काले कानून को नाफिद किया गया है।
3: वहीं महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि कमेटी की रिपोर्ट आते ही राज्य में यूसीसी की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वो असल में संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये कानून देश की विविधता को खत्म करने की एक कोशिश है।
4: देखिए, जब भी सरकार नंबर के जोर पर, बहुमत के जोर पर एक रूपता थोपने की कोशिश करेगी तो सरकार के अंदर से बगावत शुरू होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बगावत इसलिए भी शुरू हो रही है, उनके सहयोगी दल जो है उनकी बातों से खुद इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि वो भारत की विविधता में विश्वास रखते हैं। तो कांग्रेस ने तो हमेशा इस बात को कहा है कि आप ये देश अलग अलग रंग के फूलों से मिलकर के गुलदस्ता बनता है, आप सब कुछ एक रंग का क्यों कर देना चाहते हैं।
3: फिलहाल यूसीसी की मौजूदा स्थिति ये है कि ये उत्तराखंड और गोवा में अभी लागू है, मध्य प्रदेश, गुजरात और असम विधानसभा से पास हो गया है लेकिन अभी तक लागू नहीं है। अमित शाह ने कह दिया है कि एनडीए और बीजेपी शासित 21 राज्यों में साल 2029 तक यूसीसी हर हाल में लागू हो जाएगा। यूसीसी को लेकर छिड़ी ये बहस अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहने वाली, आने वाले दिनों में ये मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक एक बड़े सियासी संग्राम का रूप ले सकता है।
0: इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को 5 शर्तों के साथ मंजूरी मिल गई है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने आज से 29 सितंबर तक 12,000 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की है और सुरक्षा और जरूरी विभागों की अनुमति आयोजकों को खुद लेनी होगी। कांग्रेस ने अनुमति में देरी और करीब 10 लाख रुपए फीस को लेकर प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल गांधी का इंदौर आना बीजेपी के लिए अच्छा है, अब 29 सितंबर को होने वाले इस कार्यक्रम पर सबकी नजरें हैं। वहीं आज मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ लालबाग चौराहा के दर्शन किए। नितिन नवीन ने बापा का आशीर्वाद लेने के साथ ही

0: एकनाथ शिंदे के आवास पर जाकर भी बप्पा के दर्शन किए हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, एकनाथ शिंदे के घर पर गणपति पूजन भी नितिन नवीन ने किया। उससे पहले लालबाग चौराजा के दर्शन उन्होंने किए, जिसकी मान्यता काफी ज्यादा मुंबई में मानी जाती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ वो सिद्धि विनायक मंदिर भी पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने बप्पा का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की। ये सिद्धि विनायक मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं। और उसके बाद, इन सब के बाद नितिन नवीन के घर भी नितिन नवीन एकनाथ शिंदे के घर भी पहुंचे और वहां पर भी बप्पा का आशीर्वाद उन्होंने लिया। बात कर लेते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 की, जो कि कन्नड़ एक्टर अनंत नाग को दिया जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश पर भारत सरकार की ओर से इसका ऐलान किया गया है। उनकी इस यात्रा ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। अनंत नाग ने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जिसमें कि 250 से अधिक कन्नड़ फिल्में, कई हिंदी, तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम और अंग्रेजी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने थिएटर, समानांतर सिनेमा और टेलीविजन कार्यक्रमों में भी काम किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सेंसर बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का पुनर्गठन कर लिया है और मंत्रालय ने 18 सदस्यों वाले नए बोर्ड का ऐलान भी किया है। इस नई टीम में सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरों को शामिल किया गया है। इनमें एक्ट्रेस प्रीति, एक्टर सुनील शेट्टी, पंकज त्रिपाठी, टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली, पल्लवी जोशी और बंगाली सिनेमा के दिग्गज एक्टर प्रसेनजीत चटर्जी का नाम प्रमुख है। 3 बार के ग्रैमी अवार्ड विजेता संगीतकार रिकी केज, जाने माने निर्देशक प्रियदर्शन हंसराज हंस और नीला माधव पांडा शामिल हैं। चलिए अब सुपर 8 में वक्त हो गया फटाफट खबरों का। मिर्जापुर में रेलवे अंडरपास में फंसी बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा की गाड़ी, ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को कीचड़ से निकाला बाहर, घटना का वीडियो वायरल है। अहमदाबाद में पत्नी को पति के सामने टक्कर मारने वाला आरोपी 96 घंटे बाद राजस्थान से गिरफ्तार, हादसे के बाद बाइक छोड़कर हुआ था फरार। जमशेदपुर में ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप पहुंचे दो शातिर, 44 ग्राम सोना लेकर फरार, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी। गाजियाबाद में नकली सप्लीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़, जिम में जल्द बॉडी बनाने के लिए कम कीमत वाली दवाइयां जब्त। संगरूर में नशे के खिलाफ मुहिम के दौरान दो पक्षों में झड़प, सरपंच समेत कई लोग हुए घायल। मेरठ कॉलेज में दो छात्र गुटों के बीच भारी हंगामा, पुलिस के सामने एक दूसरे पर बरसाए लात घूंसे, जमकर की मारपीट। जालंधर के एक सोसाइटी में 24 साल की लड़की ने 14वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या, पुलिस ने बताई तनाव की वजह। हरिद्वार में स्वामी रामदेव ने बच्चों के साथ खेली कबड्डी, मैदान में उतरकर बच्चों को सिखाया कबड्डी खेल। इसी के साथ यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवार।
3: एक तो एक

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का? हाँ।
5: सब कैशलेस हो गया
6: है। हाँ। ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ, तो
6: चार्ज हुआ यार।
8: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
5: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
11: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
10: मतलब
11: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
5: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
11: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
1: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
12: गोल्डी लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
13: Oh no, बहुत बोर लग रहा है।
14: Take it, take it, date not bites.
15: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया Lion Dates Nut Bites.
14: Take it, Lion Date Nut Bites.
16: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
17: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
18: सोच बदलो और बैंक भी।
19: और वही कहाँ गए थे घूमने?
20: जीके मैक्स।
21: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
20: जेके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
21: जेके वॉल मैक्स।
20: बेस्ट पेंट?
21: जेके मैक्स।
20: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
1: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स,
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिन पर देश भर में 25 साल के नेतृत्व का जश्न। एक महीने तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान। वाराणसी वडनगर तक बाइक रैली। 25 लाख आशीर्वाद के दिए जलाएंगे नितिन नवीन।

सिलिकॉन से सिस्टम तक इकोसिस्टम के निर्माण पर मंथन। ट्रंप को मिला रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार। अमेरिकी संसद के निचले सदन में बिल पास। अब भारत पर भी 100% टैरिफ लागू कर सकती है यूएस। हजार से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर चार्ज के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा। कहा नियम वापस ले मोदी सरकार। अमेरिकी प्रेशर में फैसला, वित्त मंत्री का जवाब, इसके पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दो आतंकी ढेर। माजालता के सोहन इलाके में रात भर चला सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। इलाके में सख्त घेराबंदी।

जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, एनकाउंटर में दो आतंकियों को मार गिराया गया। इलाके से कुछ हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए। सेना को इस इलाके में संदिग्ध गतिविधियों के बारे में इनपुट मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कल रात एक बड़ा घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया था। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकियों की जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़े होने की आशंका। पीएम मोदी आज सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में 52 देशों की 600 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्देश्य भारत में सहयोग, इन्वेस्टमेंट, प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना। 50,000 विजिटर्स भी पहुंचने की उम्मीद। 76 साल के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर देशभर में कई कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी। पीएम के जन्मदिन के मौके पर देशभर में सेवा संकल्प अभियान चलाएगी बीजेपी। आज से 17 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। पीएम के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मस्थली गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली गृहमंत्री अमित शाह 9:30 बजे करेंगे रवाना। पीएम के जन्मदिन के मौके पर वाराणसी में होंगे कई कार्यक्रम। सीएम योगी और रक्षा मंत्री वडनगर के लिए सेवा संकल्प बाइक यात्रा को करेंगे रवाना। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनके बचपन के दोस्त ने लिखी चिट्ठी। पीएम को बताया कृष्ण, खुद को बताया सुदामा। 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर शुल्क के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा। कहा नियम वापस ले सरकार। राहुल के बयान पर वित्त मंत्रालय की ओर से जवाब, फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार। कहा पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर, आज यूपी दंगा और कर्फ्यू। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान, 19 सितंबर से 1,00,000 नई नौकरी की शुरुआत। सरकारी कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा। कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रति महीने किया। 51,00,000 लोगों को फायदा। शहजाद भट्टी नेटवर्क पर बड़ा एक्शन। केंद्र ने यूएपीए के तहत घोषित किया आतंकवादी संगठन। नेटवर्क पर सीमा पार हथियार, विस्फोटक और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का आरोप। युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद की ओर उकसाने का भी आरोप। यूपीआई पेमेंट चार्ज पर पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार से लगाई गुहार। 2,000 रूपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर से पूरी छूट देने की मांग। जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, 4 और आरोपी गिरफ्तार। आज से यूपी बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े की क्षेत्रवार बैठकों का दौर शुरू। चुनावी तैयारियों पर मंथन। बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और रोडमैप पर भी मंथन संभव। गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में एसआईटी का गठन। एसीपी सहित 5 लोगों की बनाई गई एसआईटी टीम। इसके अलावा पुलिस सीन रिक्रिएट भी कराएगी। टीएमसी सिंबल पर जल्द फैसला ले सकता है चुनाव आयोग। आज दोनों गुटों को बैठक के लिए बुलाया गया। 6 अक्टूबर को 2 सीटों पर उपचुनाव। नई दिल्ली में असुरक्षित रिहायशी क्वार्टर्स को खाली करने का निर्देश। एनडीएमसी की तरफ से नोटिस जारी। बीएसपी के पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव प्रचार के दौरान हुई 2 छात्र गुटों में झड़प पर जमकर चले लात, घूंसे और डंडे। 1 छात्र गंभीर रूप से हुआ घायल। झड़प के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल दिल्ली विश्वविद्यालय में तैनात। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद डीसीपी भी दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे। सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन जारी। एमसीडी ने 3 पीजी बिल्डिंग पर नोटिस लगाकर शुरू किया डिमोलिशन। अहमदाबाद में पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मां उमिया की महाआरती, हजारों लोग शामिल हुए। इंदौर में मकान तोड़ते समय बड़ा हादसा, दीवार गिरने की वजह से 4 महिला मजदूरों की मौत, 5 घायल। हरियाणा में 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद। करनाल मंडी में 1509 किस्म की आवक तेज। किसानों को 3,500 से 4,100 रूपये प्रति क्विंटल तक भाव।

खरीद जल्द शुरू करने की मांग पर किसान संगठन नाराज। करनाल में किसान नेता रत्नमान के फैसले पर जताया विरोध। फरीदकोट में शिरोमणि अकाली दल का बिजली संकट को लेकर प्रदर्शन। एसडीएम दफ्तर पर पंजाब सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। किसानों को पर्याप्त बिजली देने की मांग। शिरोमणि अकाली दल का दावा, अकाली बीजेपी सरकार के दौरान पंजाब बिजली सरप्लस राज्य बनी। वहीं बढ़ती मांग के मुताबिक नई क्षमता नहीं जुड़ी। AQIAS की विचारधारा से जुड़े मॉड्यूल पर UPATS की कार्रवाई। कोयम्बटूर से मकसूद अली गिरफ्तार। इंदौर में गणेश जुलूस के दौरान नाबालिग की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। झांसी में डंपर से पशुओं से भरे ट्रक की जोरदार टक्कर, चालक और चार पशुओं की मौत। ट्रक में सवार पांच लोग घायल। आंध्र प्रदेश में विजयनगरम में शादीशुदा महिला की हत्या कर दी गई। जंगल में बोरे में बंद मिला शव। चार साल के रिश्ते में विवाद के बाद प्रेमी पर हत्या का आरोप हुआ गिरफ्तार। अमृतसर में एम्बुलेंस की आड़ में नशा तस्करी का पर्दाफाश, ड्राइवर समेत आठ लोग गिरफ्तार। नांदेड़ में 12 साल की नाबालिग से यौन उत्पीड़न का आरोप, मां की शिकायत पर 28 साल का आरोपी गिरफ्तार। तेलंगाना के मंचेरियल में पत्नी के घर लौटने से इनकार पर पति का हमला, नाक पर काटकर गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप। सूरत के सालासर टेक्सटाइल मार्केट में भीषण आग लगी, 25 दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। अमृतसर में दिखा बदमाशों का आतंक, पुरानी रंजिश में की तोड़फोड़, ताबड़तोड़ फायरिंग भी की, एक युवक की मौत। प्रयागराज में पूर्व प्रधान पवन यादव हत्याकांड का जल्द हो सकता है खुलासा, प्रधान पति और हिस्ट्री शीटर पर शक, आपसी रंजिश का शक। अजमेर में कार साइड में लेने के विवाद में जानलेवा हमला, दो आरोपी गिरफ्तार। अमेठी के प्राथमिक विद्यालय पडरी में सहायक शिक्षक निलंबित, रसोईया से अश्लील टिप्पणी और अभद्रता समेत कई आरोप। कानपुर में विनीत मनोचा हत्याकांड, कोर्ट में शालू, विशाल और राजकिशोर की पेशी। कैमरे में सामने मुंह छुपाते नजर आए शालू, पुलिस रिमांड पर सुनवाई चली। महोबा में पत्नी को ले जाने आए ससुराल वालों का तांडव, पति और सास को पीटा गया, वायरल वीडियो। बेगूसराय में नहीं थम रहा है महिलाओं का शव मिलने का सिलसिला, 28 साल की अज्ञात महिला का शव मिला, हत्या कर शव फेंकने की आशंका। तो वहीं जयपुर में फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, रोहित पॉली प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में उठी आग की लपटें। अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले फर्जी कॉल सेंटर सिंडिकेट पर ईडी की छापेमारी। पटियाला, पुणे, चंडीगढ़ के चार ठिकानों पर सर्च। तीन कॉल सेंटर्स में करीब 220 लोग मिले। मेरठ में कॉलेज के दो छात्र गुटों में हुई जमकर मारपीट, पांच लोग हिरासत में लिए गए। गाजियाबाद की परशुनाथ नॉर्थ मजिस्ट्रिक सोसायटी के फ्लैट में लगी भीषण आग, तीसरी मंजिल पर हुआ हादसा, दमकल की तीन गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में पुलिस बूथ से 10 कदम दूर झपट मारी, युवक युवती बाइक पर आए और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। जालंधर में 24 साल की लड़की ने 14वीं मंजिल से कूद करके आत्महत्या, पुलिस बोली परिवार के बयान के मुताबिक डिप्रेशन में थी लड़की। झांसी में बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर नातिन ने की नाना की हत्या, दोनों गिरफ्तार। इंदौर में जर्जर मकान गिरने की वजह से तीन महिलाओं की मौत, मकान तोड़ने का चल रहा था काम, उसी दौरान हादसा। राजगढ़ में 16 साल के नाबालिग की हत्या का 24 घंटे में खुलासा, लव ट्रायंगल में खूनी वारदात, दो आरोपी गिरफ्तार। संगरूर में नशे के खिलाफ मुहिम के दौरान दो पक्षों में विवाद, सरपंच समेत कई लोग हुए घायल। गणेश उत्सव के तीसरे दिन लालबाग चौराहे दरबार में भक्तों की कतार, बप्पा दर्शन और चरण स्पर्श के लिए दूर दूर से पंडाल आए श्रद्धालु। लालबाग चौराहे दरबार में क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने भी लगाई हाजिरी, पत्नी संगलिया बप्पा का आशीर्वाद, सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की लालबाग चौराहे के दर्शन, टेका माथा, लिया बप्पा का आशीर्वाद। अकोला में सजा 90 साल पुराने मारवाड़ी प्रेस गणपति का भव्य दरबार, 15 फीट की गणेश प्रतिमा विराजमान, लकड़ी के महल की थीम पर तैयार किया गया पंडाल। पंडाल में भक्तों को भगवान गणेश के जन्म से लेकर अष्ट विनायक के दर्शन तक की कथा की झलक मिल रही है, दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं भक्त। मुंबई के वाशिम में भी अनोखे स्वरूप में भक्तों को दर्शन दे रहे हैं भगवान गणेश, सौंफ, सुपारी और इलायची से बनाई गई गणेश जी की आकर्षक मूर्ति। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पर स्थित गणेश प्रतिमा ने खींचा सबका ध्यान, 21,000 पानीपुरी शेल से बनी बापा की ये प्रतिमा। सूरत के नानपुरा में अनोखा गणपति पंडाल बना चर्चा का विषय, जलमग्न द्वारिका की थीम पर बना भव्य गणेश पंडाल। मुंबई में एक्ट्रेस सुहेल खान के घर पर गणपति उत्सव हुआ, शामिल हुए कई सितारे, विसर्जन के दौरान जमकर किया गया डांस। गणपति उत्सव में हेलेन बहन, अर्पिता का परिवार और अरबाज खान के बेटे भी नजर आए, सभी ने की गणपति की सुख समृद्धि की कामना। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा, विराट कोहली की टीम में वापसी। शुभमन की कप्तानी वाली वनडे टीम में जडेजा और मोहम्मद सिराज की भी वापसी, 27 सितंबर को त्रिवेंद्रम में खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला। वेस्ट इंडीज दौरे पर खेले जाने वाले पांच टी20 सीरीज के लिए भी टीम का ऐलान, वैभव सूर्यवंशी को टीम में मिली जगह, श्रेयस अय्यर को टीम की कमान। 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा पहला टी20 मुकाबला, रांची, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु में रहेंगे बाकी मुकाबले। अफगानिस्तान के खिलाफ आज खेला जाएगा तीसरा टी20 मुकाबला, कप्तान श्रेयस ने टीम में बदलाव के दिए संकेत, आज का मैच खेल सकते हैं वैभव सूर्यवंशी। अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा साल 2024 का दादा साहेब पुरस्कार, अनंत नाग ने कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और मराठी फिल्मों में किया काम।
अभिनेता अनंत नाग ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। मालगुड़ी डे से हुए हैं लोकप्रिय। 22 सितंबर को गुजरात के कावड़िया में किए जाएंगे सम्मानित। सरकार ने सेंसर बोर्ड का किया पुनर्गठन। 18 सदस्य नए सेंसर बोर्ड में। सिनेमा, टीवी, संगीत, कला जगत की कई हस्तियों को मिली जगह। सेंसर बोर्ड में नए सदस्यों में अभिनेता सुनील शेट्टी, अभिनेत्री प्रीति जिंटा को मिली जगह। नए सेंसर बोर्ड में एक्टर पंकज त्रिपाठी, टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली और बंगाली सिनेमा के एक्टर प्रसन्नजीत चटर्जी को मिली जगह। अमेरिकी संसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास हो गया है। हाउस में बिल के पक्ष में 262 और विरोध में 159 वोट पड़े। बिल रूस और ईरान को निशाना बनाकर व्यापक प्रतिबंध लगाने से जुड़ा। इसे लिंसो ग्राम सेंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 नाम दिया गया। इसका असर भारत और चीन जैसे देशों पर भी पड़ सकता है। ये बिल ट्रंप को रूसी तेल गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक आयात शुल्क लगाने का अधिकार देता है।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 17 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, प्रातः 10:47 तक। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, शाम को 7:53 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि।

कोई निर्णय ना लें। अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कर्क राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम टाल दें, परिवार में शांति बनाए रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

रहे हैं, करियर में लाभ होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नील।

आपके योग हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। राशि, पारिवारिक समस्या परेशान करेगी, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ काम बन जाएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी।

होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, व्यर्थ की दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा।
2: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
3: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आ गई।
4: अंडमान निकोबार आइलैंड तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए।
5: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका अभी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता।
6: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देंगी।
1: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज।

0: ये कदम जो हमारे इंडिजिनस हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है उसको तबाह करने की दिशा में चल रहा
1: है। कांग्रेस पार्टी झूठ फैला रही है, किसी भी व्यक्ति को कॉमन मैन को कोई भी 2000 रुपए तक कोई चार्ज नहीं देना होगा और किसी कस्टमर को नहीं देना होगा।
2: यूपीआई के 2000 से ज्यादा के लेन देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लागू करने के फैसले पर मचे सियासी घमासान के बीच RBI का बयान सामने आया है। RBI ने इस पर अपने बयान में कहा है, भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की लंबे समय की स्थिरता को मजबूत करने की दिशा में ये एक अहम कदम है। इससे UPI को देश भर में ग्राहकों और व्यवसायों के लिए आगे बढ़ने, नई सुविधाएं लाने और सेवाएं देने में मदद मिलेगी। इकोसिस्टम में शामिल सभी लोगों के बीच MDR का सही और उचित बंटवारा टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेप्टेंस नेटवर्क में लगातार निवेश को बढ़ावा देगा। इसे UPI को ज्यादा जगहों पर स्वीकार किए जाने, ग्राहकों की संख्या बढ़ाने और ट्रांजैक्शन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी में मदद मिल सकती है। कमोवेश यही बात फोनपे के CEO समीर निगम भी कह रहे हैं।
3: पूरा इंडस्ट्री आगे साथ में बढ़ पाएगा, सबके लिए जो है बहुत क्रिटिकल था ये। MDR के बिना जो है काफी तकलीफ हो रही थी पिछले खासकर की 3-4 साल से। वॉल्यूम इतना भाग रहा है, हम लोग को इतने सर्वर्स डालने पड़ रहे हैं और आजकल तो AI के जमाने में भी और भी ज्यादा रिस्क हो गया। साइबर सिक्योरिटी पे बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। पेमेंट्स जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का। मेरे हिसाब से बिगेस्ट बेनिफिशियरी एक्चुअली अल्टीमेटली कस्टमर ही होगा, उनके लिए कल भी फ्री था आज भी फ्री है।
2: UPI पर MDR को लेकर घमासान सरकार के ताजा फैसले से शुरू हुआ। सरकार ने मंगलवार को 2000 रुपए से ज्यादा के भुगतान पर 0.4% शुल्क लगाने की घोषणा की। ये शुल्क कारोबारियों को किए जाने वाले UPI भुगतान पर लगेगा। नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा। हालांकि खास बात ये है कि ग्राहकों से ये शुल्क नहीं लिया जाएगा, MDR केवल कारोबारियों के लिए देय होगा। साथ ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले भुगतान पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। कांग्रेस इस फैसले को अमेरिका के दबाव में उठाया गया फैसला बता रही है। भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन पेमेंट होता है। दूध, सब्जी, दवा खरीदना हो या ऑटो रेस्टोरेंट में भुगतान करना हो या फिर किसी को एक क्लिक में पैसे भेजना, UPI भारत के लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, जिसमें बड़े दुकानदारों से लेकर रेहड़ी पटरी वाले भी शामिल हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, अब 2000 रुपए से ऊपर के मर्चेंट UPI लेन देन पर MDR लगाया जा सकता है। इन ट्रांजैक्शंस की संख्या भले ही सिर्फ 5% हो, लेकिन UPI के कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू का करीब 65% इन्हीं में है। सरकार कहती है कि ग्राहक से कोई फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन दुकानदार पर लगने वाली फीस आखिर आएगी कहां से? कीमतों में जुड़कर ग्राहक की जेब से। अमेरिकी पेमेंट कंपनियां लंबे समय से भारत की जीरो MDR नीति का विरोध करती रही हैं। अब मोदी सरकार ने ठीक उसी दिशा में नीति बदलने का रास्ता खोल दिया है। ये बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भले ही जनता को 2000 रुपए तक के UPI पेमेंट पर कुछ भी नहीं देना होगा, लेकिन जिन दुकानदारों को देना होगा, क्या वो किसी दूसरी तरह जनता से ही नहीं वसूलेंगे? क्या वो कैश को बढ़ावा नहीं देंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या डिजिटल पेमेंट पर इसका असर नहीं होगा? आज तक ब्यूरो।
0: क्या आप मुझे बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको ये कदम जो हमारे इंडिजिनस हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है? क्योंकि अमेरिका को हमारा MDR रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
1: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जब दुनिया की डिजिटल फाइनेंशियल क्रांति की अनुगवाई भारत ने करी थी UPI के माध्यम से, तो राहुल गांधी के कहने पे पी चिदम्बरम ने ये कहा था कि क्या गरीब आदमी या इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता है? सो कांग्रेस हैज हिस्टोरिकली बीन एन ओपोनेंट ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और आज ये नाराज फूफा पार्टी झूठ फैला रही है। हर आम आदमी आज स्कैनर के माध्यम से पेमेंट कर रहा है और हर आम आदमी ही स्कैनर के माध्यम से ही पेमेंट करता रहेगा।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में 25 साल के नेतृत्व का जश्न। एक महीने तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान। वाराणसी वडनगर तक बाइक रैली। 25 लाख आशीर्वाद के दिए जलाएंगे नितिन नवीन। पीएम मोदी करेंगे सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन। सेमीकंडक्टर पर 52 देशों की 600 कंपनियों के साथ मेगा कार्यक्रम। सिलिकॉन से सिस्टम तक इकोसिस्टम के निर्माण पर मंथन। ट्रंप को मिला रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार। अमेरिकी संसद के निचले सदन में बिल पास। अब भारत पर भी 100% टैरिफ लगा सकता है यूएस।

स्पेशल में फैसला, वित्त मंत्री का जवाब, इसके पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दो आतंकी ढेर, मजालता के सोहन इलाके में रात भर चला सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, इलाके में सख्त घेराबंदी।

0: वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा भट। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज से बीजेपी शुरू कर रही है महीने भर का सेवा और संकल्प का कार्यक्रम। मोदी की जन्मभूमि और कर्मभूमि से दिखाएंगे विशेष रिपोर्ट। क्या भारत पर भी ट्रंप लगाएंगे 100% टैक्स? अमेरिकी संसद से मिला अधिकार, इस बड़ी खबर पर भी होगी बात। पश्चिमी एशिया में युद्ध के नए मोर्चे पर भी ले चलेंगे, जहां हूती ने सऊदी अरब के जेट को मार गिराने का दावा किया। ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वाराणसी से वडनगर तक की जश्न की खबर के साथ।
1: मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए हम दौड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें।
2: अहमार विकास यात्रा यही
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 76 साल के हो गए हैं। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा दिवस मना रही है। आज बीजेपी एक महीने के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। मुख्य आयोजन पीएम मोदी की जन्मभूमि वडनगर और कर्मभूमि वाराणसी में है। दोनों जगहों पर सेवा संकल्प बाइक यात्रा निकाली जाएगी। वडनगर से 250 बाइक में सवार होकर 500 लोग तकरीबन वाराणसी पहुंचेंगे और इसी तरह से वाराणसी से निकली बाइक यात्रा वडनगर में संपन्न होगी। बाइक यात्रा का समापन 7 अक्टूबर को होगा और इसी दिन सार्वजनिक सेवा में प्रधानमंत्री के 25 साल पूरे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आज देश भर में आशीर्वाद का दिया जलाया जाएगा। शाम को ये कार्यक्रम होगा। थोड़ी देर बाद गृहमंत्री अमित शाह वडनगर में शर्मिष्ठा तालाब पर महाआरती में शामिल होंगे।

0: गुजरात के चार शहरों की पवित्र नदियों का जल लेकर निकली कलश यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की जन्मभूमि वडनगर पहुंच गई है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज इसी जल से वडनगर के हाटकेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। वडनगर के हाटकेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीर देखिए, आज के आयोजन के लिए पूरी तरह सज धज कर तैयार है। हाटकेश्वर महादेव के जलाभिषेक के बाद बाकी जल शर्मिष्ठा झील में मिलाया जाएगा और फिर झील के पवित्र जल को 500 कार्यकर्ता 250 बाइकों पर सवार होकर वाराणसी ले जाएंगे, जहां काशी विश्वनाथ महादेव का जलाभिषेक किया जाएगा। वडनगर से निकलने वाली बाइक रैली को गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी शामिल होंगे।
1: देश के 1000 नवयुवान ये यात्रा में हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पहली बार 40,000 किलोमीटर की यात्रा करने वाले हैं और नरेंद्र भाई के दीर्घायु और तंदुरुस्त जीवन के लिए और आने वाले समय में देश की सेवा करते रहे, इसके लिए आशीर्वाद देने वाले हैं, शुभेच्छा देने वाले हैं।
0: बाइक रैली 10 राज्यों से गुजरेगी और 40,000 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। ये रैली 1195 गांवों से होकर गुजरेगी, जहां रास्ते में रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब पीएम मोदी की कर्म भूमि यानी वाराणसी की तस्वीर देखिए, एक लाइन से खड़ी 250 बाइक। आज दोपहर सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेवा संकल्प बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में शुरू होने वाली बाइक रैली पीएम मोदी की जन्मभूमि वडनगर में खत्म होगी।
2: ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। पूरे एक महीने का अभियान ये है जनता से जुड़ने का, और किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता की सेवा की है उसकी चर्चा जनता के बीच में करने का एक बृहद कार्यक्रम पार्टी ने बनाया है, प्रतिदिन का कार्यक्रम।
0: बाइक रैली से पहले 51 बाइकर्स ललिता घाट पर पहुंचेंगे। गंगा जल भरने के बाद डमरू दल और शंखनाद के बीच बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर गंगा जल से बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। वडनगर से मनीष मिस्त्री और वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो।
3: मेरे तीन सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं वडनगर से, समत वाराणसी से हैं और सुशांत दिल्ली से हैं। सबसे पहले ब्रजेश, आपका रुख करते हुए वडनगर में क्या कार्यक्रम है और क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मुख्य तौर पर बाइक रैली पर सबकी नजर है।
4: देखिए बिल्कुल, वडनगर जो है वो पीएम मोदी की जन्मस्थली है और यहाँ पे सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यहाँ मौजूद रहेंगे। ये जो है शर्मिष्ठा तालाब है जहाँ पे ये मुख्य कार्यक्रम होना है। थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे, एक महाआरती होगी तालाब की और उसके बाद उनका एक संबोधन रहेगा और फिर जो है यहाँ से ये तालाब का जल लेकर हाटकेश्वर मंदिर जाएंगे। वहां पे जो है हाटकेश्वर महादेव को दर्शन करेंगे वहां पे सभी नेता और उसके बाद जो है बाइक रैली का फ्लैग ऑफ होगा। वडनगर से वाराणसी की जो बाइक रैली है उसका फ्लैग ऑफ किया जाएगा और वडनगर से जो है सभी लोग यहां से निकलेंगे, उसी तरह वाराणसी में भी से जो बाइक रैली है उसका फ्लैग ऑफ करके यहां वडनगर आएगी। तो ये मुख्य प्रोग्राम जो है उसके बाद वडनगर में ही जो है स्वच्छता अभियान और साथ ही वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है वो केंद्रीय गृह मंत्री उसमें भी जुड़ेंगे और वडनगर रेलवे स्टेशन के जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन बिता था तो वो स्टेशन पे जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। तो इस तरह इसको जो है पूरी तरह से सेवा संकल्प अभियान नाम दिया गया है। हर वो तरीका जिससे जनता की भलाई हो उस अभियान को जो है वो इससे जोड़ा गया है और रास्ते में जहां जहां ये बाइक रैली जाएगी वहां पे युवा संवाद की बात हो, स्वच्छता अभियान की बात हो या फिर वृक्षारोपण की बात हो, सभी ऐसी चीजें जहां पे आम जनता जुड़ पाए उनको जोड़ने का प्रयास है और इसीलिए ये यात्रा जो है 20 दिन लंबी की गई है। 7 अक्टूबर को इस यात्रा का समापन होगा। तो मुख्य कार्यक्रम जो है वो वडनगर से शुरू हुआ है और शाम को केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में अहमदाबाद में कांकरिया तालाब पे जो है 1,00,000 आशीर्वाद के दिए जलाए जाएंगे प्रधानमंत्री की लंबी आयु के लिए और पूरे गुजरात में करीब 80,00,000 से ज्यादा ये दिए जलाए जाएंगे प्रधानमंत्री के लंबे आयुष्य के लिए।
3: ठीक है, समर्थ में सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। समर्थ, क्या वहां पर बाइक रैली की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि ये जो बाइक रैली है वडनगर से यहाँ वाराणसी तक और वाराणसी से वडनगर तक, ये सबसे रोचक है।
5: बिल्कुल नेहा, और यूपी का तो चुनाव भी नजदीक है, इसलिए एनडीए जो है एक खुले मन से सियासी संदेश भी देना चाह रहा है। सेवा संकल्प अभियान की बातचीत है, आज से शुरुआत हो रही है। बाइक रैली है, 500 के ऊपर बाइक्स जो है वो रुद्राक्ष सेंटर की पार्किंग में लग चुकी हैं, और जब प्रोग्राम यानी कि 12 बजे शुरू होगा उसके बाद राजनाथ सिंह और उसके और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत करेंगे। बड़ी बात यहां पर यह है, जो बीजेपी यानी कि एनडीए है, जो सहयोगी दल है वो भी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी रहेंगे, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेज पर रहेंगे और राजनाथ सिंह रहेंगे, उनके संबोधन भी होंगे। तो कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो एकजुटता का भी संदेश, सियासी संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए देने जा रहा है, जबकि चुनाव महज 5 से 6 महीना उत्तर प्रदेश के चुनाव में रह गया है। तो कहीं ना कहीं ये एकजुटता भी आज के स्टेज से दिखाई देगी। इसके अलावा काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए भी जाएंगे और वहां पर जो है तमाम पवित्र नदियों का जल एकत्रित हुआ है, जिसको कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ में अर्पित भी किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ राजनाथ सिंह भी रहने वाले हैं। इसके अलावा वाराणसी में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर ढोल नगाड़े बजाए जाएंगे, स्वागत गीत बजाए जाएंगे, जो फूल है उसके जरिए जो काशी नगरी है उसको सजाया भी गया है, रुद्राक्ष सेंटर में भी कार्यक्रम है, और दोपहर के बाद मुख्यमंत्री और राजनाथ सिंह अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर रवाना हो जाएंगे। लेकिन जिस तरह की जो बाइक रैली है, जिसकी जिम्मेदारी यूपी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर को मिली थी, उन्होंने पूरी परखाई चीजों को, क्योंकि देखिए बाइक रैली कहने को नहीं है, इसमें जो लोग जाएंगे वडनगर तक वो भी अलग अलग राज्यों से हैं। ऐसा नहीं है कि जो बाइक रैली है उसमें केवल यूपी के लोग हैं, उसमें बिहार के भी लोग हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के भी लोग हैं, मध्य प्रदेश के भी लोग हैं, खासकर युवा हैं। युवा पीढ़ी को भी कहीं ना कहीं इसके जरिए साधने का प्रयास किया जा रहा है। एक तो राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है एनडीए की एकजुटता के साथ, जिसमें सहयोगी दल आए हैं, चाहे उत्तर के हों, चाहे पश्चिम के हों, चाहे दक्षिण के हों, और दूसरा ये है कि जो बाइक रैली है उसमें युवा है, युवा पीढ़ी जो है उसको प्राथमिकता दी गई है। तो जिस तरह की जेंजी को लेकर माहौल चला उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बीजेपी सियासी संदेश भी देने की कोशिश काशी से कर रही है।
3: मैं लौटूंगी आपके पास। सुशांत मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सुशांत, दिल्ली में शाम का क्या कार्यक्रम है? जो दीया जलाओ प्रोग्राम है इसका आगाज कैसे होगा?
6: देखिए, प्रधानमंत्री का 76वां जन्मदिन है और ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से कई बड़े कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए 108 कुंडी हवन की आज शुरुआत जो है वो शुरुआत हुई है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो हवन की शुरुआत हो चुकी है। अब से थोड़ी देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो यहाँ पहुंचेंगी, खाटू श्याम मंदिर में के सामने मनोकामना करेंगी प्रधानमंत्री की लंबी उम्र को लेकर के, और उसके बाद श्रम भवन का उद्घाटन वो करेंगी, और उसके बाद ब्लड डोनेशन कैंप, और शाम को जो कर्तव्य पथ है वहां पर 1 लाख से ज्यादा दिए जो है वो जलाए जाएंगे प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को लेकर के। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में हवन कुंड जो है वो तैयार किए गए हैं। यहां पर हवन जो है वो शुरुआत हो चुकी है प्रधानमंत्री की लंबी उम्र को लेकर के, उनकी कामना को लेकर के, और ऐसे कई सारे कार्यक्रम जो है वो चलेंगे। आज से अगर कहा जाए तो सेवा संकल्प के तौर पर 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक कार्यक्रम ही कार्यक्रम दिल्ली सरकार करेगी। प्रधानमंत्री के कामों को लेकर के घर घर तक जाने का कार्यक्रम जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से रखा गया है। कई बड़े प्रोजेक्ट उनकी शुरुआत भी जो है वो इन्हीं 1 महीने के अंदर जो है वो की जाएगी, यानी 1 महीने तक प्रधानमंत्री का जन्मदिवस जो है वो पूरी दिल्ली भर के अंदर अलग तरीके से जो है वो मनाया जाएगा।
3: ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। तस्वीरें आने लगी है। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और सेहत की कामना करते हुए हवन यज्ञ किया। वहीं प्रयागराज के संगम तट पर आरती की गई। ये वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक कटआउट के साथ प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। जश्न का ये मौका है कार्यकर्ताओं के लिए। तो ऐसे में आज देश भर से ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी, जहां पर कहीं हवन यज्ञ किया जा रहा है, कहीं पर पूजा पाठ, और कहीं पर इसी तरीके से प्रसाद वितरण हो रहा है। ये प्रयागराज की तस्वीर है, जहां पर संगम के तट पर आरती की गई प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ। देश भर में आशीर्वाद का दिया जलाने का भी कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली से की जाएगी। वहीं अंबाला की तस्वीर देखिए, यहाँ पर नमो मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें यहाँ पर कई प्रतिभागी थे जिन्होंने मैराथन में हिस्सा लिया।
7: ऑल द रनर्स कीप ऑन एंजॉयिंग दिस रन, वी आर एट नमो मैराथन 2026।
3: और प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आज शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच पूरे देश में आशीर्वाद का दिया जलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सड़क किनारे एक महिला से आशीर्वाद का दिया खरीदा।
8: अच्छा अच्छा,
9: ये विधानसभा सर उत्तर है।
8: अच्छा, एक ही दोनों की अलग अलग है?
9: अलग
8: अलग, आप अलग हो अलग। अच्छा, हाँ पापा, तो अभी मालूम है ना मोदी जी के आशीर्वाद पर दिया जलाना है 17 तारीख के। अच्छा, चला तो दिया जलाना है ना, तो कैसे देता है?
10: 10 की

0: और ये वाला,
1: ये वाला 10 के 5,
2: ये 10 के 5।
0: अच्छा तो दोनों से ले बोले वाला देवा। ले दीपक करो जल्दी जल्दी करो, गाड़ी वाड़ी उधर सब रुक गए।
3: सर ये सर,
0: हाँ
3: झोला में डाल दीजिए।
0: ले ले, कितना कतक हो साफ बन के
1: बता जी।
0: और दे 500 और करो ना, 2500 कम से कम हो जाएगा, और 50 करो ना। 500 करो इसको, कितना हो आए?
3: तेरा कितना हो गया माँ?
0: ये दे रहा ना 500, कितना हो होगी 500 की और देना है।
3: चीना था?
0: अच्छा तो कहाँ ले आप मन?
2: श्याम नगर
0: ले। अच्छा अच्छा,
3: ये विधानसभा।
4: वही प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके बचपन के मित्रों ने शुभकामनाएं भेजी हैं। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री के दोस्तों ने, सुनिए।
5: वडनगर से हम सब मित्रों की टोली, नरेंद्र भाई और हम MN कॉलेज में पगर खानो पाड़ियो ये नाटक अमे साथे करेलो, अने नरेंद्र भाई बापू बनेला अने बधाय मे इनी साथे ज ये काम। हम नरेंद्र भाई बापू बने थे और हम सब उनके साथ में थे।
6: माइंड जो दिमाग है ना, वो दिमाग ऐसा है कि जो बात मगज में बैठती है कि मेरे को कर देगा, ये जो करके दिखाता है वो। फिर भी कोई नेता बाहर बदेशों में घूमता नहीं है, ये कोई देश बाकी रहा नहीं है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये 3 दिन का मेगा आयोजन है और इसका थीम है सिलिकॉन टू सिस्टम्स बिल्डिंग द इकोसिस्टम। 3 दिन तक यशोभूमि में जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, नेदरलैंड, सिंगापुर, स्वीडन जैसे देश के पवेलियन होंगे। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजन का शुभारंभ करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस से दुनिया भर के सेमीकंडक्टर और तकनीक कंपनियां एक मंच पर आ रही हैं। इस दौरान भारत में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। अब एक दिन पहले ही सेमिकॉन इंडिया से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकंडक्टर कंपनियों के CEO के साथ अहम मुलाकात की थी। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, कितनी देर बाद इसका शुभारंभ होगा?
7: लगभग 10:30 बजे इसका उद्घाटन होना है नेहा, और महत्वपूर्ण यह है कि 5वां एडिशन है सेमिकॉन इंडिया का, और 2021 में जब इसकी शुरुआत हुई 70,000 करोड़ के बजट के साथ एक इकोसिस्टम बनाने की बात हुई, और तब हमने कहा कि हम सेमीकंडक्टर में डिजाइन और फैब्रिकेशन पर बात करेंगे। लेकिन महज 5 सालों में आज हम एक पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं कि सैंड से सिलिकॉन बनाएंगे, सिलिकॉन से सिस्टम बनाएंगे, यानी अब मामला सिर्फ डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग तक नहीं है। और इसीलिए कल की जो मीटिंग थी वो महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बायोकॉन से लेकर फॉक्सकॉन दुनिया की जितनी बड़ी सेमीकंडक्टर यूनिट्स हैं उसको उनको हमने न्योता दिया और ये कहा है कि अब भारत में एक पूरा इकोसिस्टम है, यहां आप सिर्फ डिजाइन करके मैन्युफैक्चर ना करें बल्कि यही सैंड सिलिकॉन सिस्टम का जब इकोसिस्टम बनाएंगे भारत के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरत है। और इस तरह हमने देखा है ना कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है कैसे कुछ देश वेपनाइजेशन कर रहे हैं उसका, तो अब भारत में उस इकोसिस्टम को बनाने के बाद धीरे धीरे हम अपनी जरूरतें यहीं पर तैयार कर सकें, यहीं कंज्यूम कर सकें, और इसीलिए 5वां एडिशन बेहद महत्वपूर्ण। आप सोचिए कि 5 साल में 1,27,000 करोड़ तक का फंड ये जो है भारत सरकार दे रही है, और इसीलिए उन कंपनियों से कहा गया है कि ये निवेश के लिए सही मौका है। भारत सरकार अपॉर्चुनिटी भी देगी, सुविधाएं भी देगी, और इन सुविधाओं के साथ जो कुछ भी रिसोर्सेज चाहिए यही, यानी हम उत्पादक भी बनेंगे और उसी के साथ साथ हम उसका इस्तेमाल भी कर सकेंगे, यानी पूरे इकोसिस्टम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। नेहा
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के उधमपुर से, यहां पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया है। ये पाकिस्तानी आतंकी हो सकते हैं, अब इनकी पहचान की जा रही है। ये आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हो सकते हैं। आज सुबह सुबह सुरक्षा बलों को ये अहम कामयाबी मिली है, उधमपुर के जंगलों में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। मजालता इलाका जहां पर यह मुठभेड़ हुई है, लंबी चली इस मुठभेड़ के बाद 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। एनकाउंटर के बाद भारी मात्रा में हथियार भी इनसे बरामद किए गए हैं। जैश ए मोहम्मद के आतंकी हो सकते हैं, अभी फिलहाल इनकी पहचान की जा रही है। जंगलों में ये मुठभेड़ चली, ये वो इलाका हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं जहां पर इन 2 आतंकियों पर सुरक्षा बलों ने शिकंजा कसा। और अब रुक करेंगे अमेरिका का, क्योंकि अमेरिकी संसद के निचले सदन ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध

0: लगाने वाला बिल पास कर दिया है। हाउस में बिल के पक्ष में 262 और विरोध में 159 वोट पड़े। अब बिल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत करते ही ये कानून बन जाएगा। लिंसे ओग्राहम सेक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 नाम वाले इस बिल का असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि बिल के पास होने के बाद ट्रंप को भारत पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाएगा। रूस से ज्यादा तेल खरीदने पर जिन देशों पर 100% टैरिफ का प्रस्ताव है उनमें भारत चीन समेत 5 देश शामिल। और वॉशिंगटन डीसी से मेरे सहयोगी रोहित शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, ये बिल क्या है, इसको विस्तार से समझाइए, इसका किस तरह से असर भारत पर देखा जाएगा?
1: देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि बिल है क्या। ये रशिया सैंक्शंस बिल जो है, ये सेंटर लिंसी ग्राहम जो अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे, उनका एक हम कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट था। और वो जब सेनेट में थे तो उन्होंने 500% टैरिफ से एक बिल ये लेके आए थे। और ऐसा माना जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ओवरटर्न हो गया तो उन्होंने काफी कोशिश की थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसको लेवरेज करे, लेकिन उस समय प्रेसिडेंट ट्रंप इंटरेस्टेड नहीं थे। और इनफैक्ट ये भी कहा जाता था अभी भी इतने इंटरेस्टेड नहीं थे इस बिल में। लेकिन जब जब सेनेटर लिंसी ग्राहम का निधन हो गया तो सेनेट के कॉलीग्स ने एक ट्रिब्यूट के तौर पे इस बिल को पास किया। और उस जिस जब बिल को पास किया गया तो 100% टैरिफ 500% से हटा के इसे 100% पे कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक इट वॉज नॉट इतना सीरियस नहीं था, ये ऐसा था कि चलिए इसे हम एक ट्रिब्यूट के तौर पे कर देते हैं। लेकिन क्योंकि जब सेनेट ने बिल पास कर दिया था करीब 2.5 महीने पहले और उसके बाद ये हाउस में आया, तो माना ये जा रहा था कि हाउस इस बिल को मिड टर्म इलेक्शन के बाद जो चुनाव होने वाले नवंबर में उसके बाद देखेगा इसकी और कि क्या करना है कैसे करना है। लेकिन फ्रीडम कॉकस जो एक ग्रुप है हाउस में, उसने इसको जो है इसको फास्ट ट्रैक किया और जो प्रोसीजरल हर्डल्स थे हमने देखा पिछले दिनों में उसे फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी इस बिल को आगे बढ़ाया गया। तो ये बिल 100% जो टैरिफ है वो अथॉरिटी देता है प्रेसिडेंट को कि वो जो भी चाइना के जो अमेरिका के रशिया से जो तेल खरीदते हैं और अमेरिका जिनसे नाराज है या हो सकता है उसके ऊपर टैरिफ्स लगाए, तो उसमें चाइना, इंडिया, तुर्की, इस तरह के जो देश हैं जो उनसे ऑयल और गैस एनर्जी लेते हैं वो उनके ऊपर बिल ये 100% टैरिफ लगा सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और आने वाले कोई भी राष्ट्रपति। तो मोटा मोटी बिल ये करता है, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है बताने के लिए कि ये कोई व्हाइट हाउस की तरफ से पुश नहीं था या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई पुश नहीं था कि वो ये चाहते थे। ये यूएस कांग्रेस ने एक एक्शन लिया है और क्योंकि अभी बिल पास हो गया तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसे इस पर हस्ताक्षर करेंगे, ये लॉ बनेगा और फिर हमें देखना होगा कि इसे कैसे और कब यूज किया जाता है।
0: तो रोहित, हमने ये देखा कि दिल्ली में ब्रिक्स की बैठक हुई, उसके तुरंत बाद अमेरिकी संसद ने 100% टैरिफ वाला कदम उठाया। क्या ये टाइमिंग कुछ बयां करती है, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति भी अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं?
1: देखिए, टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। टाइमिंग दो पर्सपेक्टिव से हम इसे देख सकते हैं। एक तो ये कि चीन के राष्ट्रपति अमेरिका आने वाले हैं अगले महीने, अगले हफ्ते, और जब अगले हफ्ते वो आएंगे यहाँ पे तो ऑब्वियसली एक लेवरेज के तौर पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूज कर सकते हैं इसे एक टूल के तौर पे दिखाने के लिए, जो हमेशा से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप करते आए हैं कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उसमें एक और ऑप्शन हो गया। अगर चीन के साथ निगोशिएट करनी है चीजों को, उनके साथ ट्रेड को लेकर वार्ता होने वाली है, AI को लेकर बातें होने वाली है, सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन को लेकर बातें होने वाली है, तो कहीं ना कहीं एक वेपन है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास दिखाने के लिए कि देखिए अगर आप ये नहीं करते हैं, इस तरह के कंसेशन हमें नहीं देते तो मेरे पास ये एक और नया टूल है। तो हमें उस नजरिए से भी इसे देखना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कि अमेरिका में भी मिड टर्म्स चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, तो कांग्रेस के लोग जिनके चुनाव होने वाले हैं वो अमेरिकन ऑडियंस को, डोमेस्टिक ऑडियंस को भी बताना चाहते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में वॉर को खत्म करने के लिए। और उन्होंने अब एक नई अथॉरिटी दी है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट के ऊपर ये कहीं ना कहीं बन जाता है कि वो इस युद्ध को खत्म करें। और इस नई अथॉरिटी से आई थिंक कहीं ना कहीं एक तौर पे रशिया को मैसेज भेजा है और इसी को आई थिंक डोमेस्टिक ऑडियंस को बताया जाएगा कि देखिए हम कोशिश पूरी कर रहे हैं इस युद्ध को खत्म करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये दोनों लिहाजों से हमें देखना चाहिए इस बिल के पास होने की टाइमिंग को।
0: वहीं सऊदी अरब के खिलाफ हूती विद्रोहियों के हमले तेज हैं। लगातार हूती विद्रोही सऊदी अरब के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश में लगे हुए। बढ़ते तनाव के बीच हूती ने एक बड़ा दावा किया। दावों के मुताबिक हूती लड़ाकों ने सऊदी के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया है। इस दावे के साथ साथ हूती ने उससे जुड़ा वीडियो भी जारी कर दिया है।
2: युद्ध क्षेत्र में मलबे का ये ढेर और ये धधकती आग, हूती विद्रोहियों ने इस वीडियो को जारी किया है। हूती का दावा है कि ये सऊदी अरब का F-15 फाइटर जेट है जिसे उन्होंने मार गिराया। F-15 के मार गिराने के दावे से जुड़ा ये वीडियो देखिए। लड़ाकू विमान का पुर्जा मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। जहां तक फाइटर प्लेन के अवशेष बिखरे हैं वहां तबाही के निशान हैं। हथियारों से लैस हूती के विद्रोही F-15 के मार गिराने के बाद उसी के इर्द गिर्द जीत का जश्न मनाते दिख रहे हैं। कुछ लड़ाके विमान के मलबे पर खड़े होकर इसे कामयाबी बताते हुए सेलिब्रेट कर रहे हैं। सऊदी अरब के खिलाफ जारी हमलों के बीच ये सबसे नई तस्वीर है। हूती मिलिट्री मीडिया विंग ने ये वीडियो जारी किया है। जारी वीडियो में रात के अंधेरे में आसमान में रोशनी सी दिखती है, उसके बाद जमीन पर मलबा ही मलबा दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि विमान के विंग पर सऊदी अरब का झंडा लगा हुआ था, जिसे F-15 लड़ाकू विमान बताया जा रहा है, वो पूरी तरह तबाह हो चुका है। हालांकि पूरी तरह तबाह लड़ाकू विमान के मॉडल को सही तरीके से पहचाना नहीं जा सका। हूती के सैन्य प्रवक्ता याहया सरी ने एक दिन पहले ही दावा किया था कि हूती बलों ने यमन के मारी प्रांत के ऊपर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल कर सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया। याहया सरी ने यह भी दावा किया कि सऊदी के F-15 और टाइफून जेट्स ने इस सप्ताह पूरे यमन में 450 से अधिक हवाई हमले किए। उनमें ताइज, लाहिज, अलजौफ, हज्जा, मारिब और सादा के इलाके शामिल हैं। बढ़ते संकट के बीच तनाव कम करने के लिए अमेरिकी पहल हुई है। अमेरिकी राजनयिकों ने हूती प्रतिनिधियों से मुलाकात की। समाचार एजेंसी एक्सियोस से मिली जानकारी के मुताबिक ओमान के मस्कट में अमेरिकी दूतावास में यह मुलाकात हुई है। अमेरिकी राजनयिकों ने वीकेंड पर हूती प्रतिनिधियों से मुलाकात की और रेड सी में तनाव पर चर्चा की। आज तक ब्यूरो।
0: मुंबई में गणपति उत्सव की धूम है। कल बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन लाल बागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मौजूद रहे। लाल बागचा राजा के दर्शन के बाद नितिन नवीन एकनाथ शिंदे के आवास पर गए और वहां बप्पा के दर्शन किए। ये सिद्धि विनायक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहां पर भी दर्शन के लिए पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष, उनके साथ सीएम मौजूद रहे। ये पूरा कार्यक्रम उनका मुंबई का पूजा और दर्शन पर केंद्रित है, जिसमें लाल बागचा के दर्शन भी शामिल है। तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में 25 साल के नेतृत्व का जश्न, एक महीने तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान, वाराणसी वडनगर तक बाइक रैली, 25 लाख आशीर्वाद के दिए जलाएंगे नितिन नवीन। पीएम मोदी करेंगे सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन, सेमीकंडक्टर पर 52 देशों की 600 कंपनियों के साथ मेगा कार्यक्रम, सिलिकॉन से सिस्टम तक इकोसिस्टम के निर्माण पर मंथन। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार, अमेरिकी संसद के निचले सदन में बिल पास, अब भारत पर भी 100% टैरिफ लगा सकता है यूएस। 2000 से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट पर चार्ज के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा, का नियम वापस ले मोदी सरकार, अमेरिकी प्रेशर में फैसला, वित्त मंत्री का जवाब, इसके पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 आतंकी ढेर, मजालता के सोहन इलाके में रात भर चला सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन, इलाके में सख्त घेराबंदी। साढ़े 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। छिहत्तर साल के हुए प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन, पीएम के जन्मदिन के मौके पर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएगी बीजेपी, आज से 17 अक्टूबर तक चलेगा ये अभियान। पीएम के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मस्थली गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली का आयोजन होगा, गृहमंत्री अमित शाह सुबह 9:30 बजे करेंगे रवाना। पीएम के जन्मदिन के मौके पर वाराणसी में होंगे कई कार्यक्रम, सीएम योगी और रक्षा मंत्री वडनगर के लिए सेवा संकल्प बाइक यात्रा को करेंगे रवाना। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनके बचपन के दोस्तों ने लिखी चिट्ठी, प्रधानमंत्री को बताया कृष्ण, खुद को बताया सुदामा। पीएम मोदी आज सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे, इस कार्यक्रम में 52 देशों की 600 से ज्यादा कंपनियां हिस्सा लेंगी। सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्देश्य भारत में सहयोग, इन्वेस्टमेंट, प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना, 50,000 विजिटर्स की पहुंचने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया, इलाके में कुछ हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। सेना को इस इलाके में संदिग्ध गतिविधियों के बारे में इनपुट मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कल रात एक बड़ा घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकियों की जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़े होने की आशंका, एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। 2000 से ज्यादा की यूपीआई पेमेंट पर शुल्क के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा, का नियम वापस ले सरकार। राहुल के बयान पर वित्त मंत्रालय की ओर से जवाब, फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं है। गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार, का पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर था, आज यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान, 19 सितंबर से 1 लाख नई नौकरियों की होगी शुरुआत। सरकारी कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह किया है, 51 लाख लोगों को होगा फायदा। शहजाद भट्टी नेटवर्क पर बड़ा एक्शन, केंद्र ने यूएपीए के तहत घोषित किया आतंकवादी संगठन। नेटवर्क पर सीमा पार हथियार, विस्फोटक और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का आरोप, युवाओं छोटे अपराधियों को आतंकवाद की ओर उकसाने का भी आरोप। यूपीआई पेमेंट चार्ज पर पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार से लगाई गुहार, 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर से पूरी छूट देने की मांग की। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी की कार्रवाई, 4 और आरोपी गिरफ्तार। आज से यूपी बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े की क्षेत्रवार बैठक का दौर शुरू, चुनावी तैयारियों पर मंथन। बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और रोड मैप पर मंथन संभव। गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में एसआईटी का गठन, एसीपी सहित 5 लोगों ने बनाई गई एसआईटी टीम, इसके अलावा पुलिस सीन रिक्रिएट करेगी। टीएमसी सिंबल पर जल्द फैसला हो सकता है, ले सकता है चुनाव आयोग, आज दोनों गुटों की बैठक को बुलाया जाएगा, 6 अक्टूबर को 2 सीटों पर होगा उपचुनाव। नई दिल्ली में असुरक्षित रिहायशी क्वार्टर्स को खाली करने का निर्देश, एनडीएमसी की तरफ से नोटिस जारी किया गया। बीएसपी के पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव की मुश्किलें बढ़ी, ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव प्रचार के दौरान 2 छात्र गुटों में झड़प, जमकर चले लात घूंसे और डंडे। झड़प के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल दिल्ली विश्वविद्यालय में तैनात, मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद डीसीपी भी दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे। सत्य निकेतन के हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन जारी, 3 पीजी बिल्डिंग्स पर एमसीडी नोटिस लगाकर शुरू किया डिमोलिशन। अहमदाबाद ने पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन में मां उमिया की महाआरती, हजारों लोग शामिल हुए।
इंदौर में मकान तोड़ने समय बड़ा हादसा, दीवार गिरने से चार महिला मजदूरों की मौत, पांच घायल। हरियाणा में 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद, करनाल मंडी में 509 किस्म की आवक तेज, किसानों को 3,500 से ज्यादा 4,400 रुपए प्रति क्विंटल तक भाव। खरीद जल्द शुरू करने की मांग पर किसान संगठन नाराज, करनाल में किसान नेता रतन मान ने फैसले पर जताया विरोध। फरीदकोट में श्रोमणी अकाली दल का बिजली संकट को लेकर प्रदर्शन, एसडीएम दफ्तर पर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी। श्रोमणी अकाली दल का दावा, अकाली बीजेपी सरकार के दौरान पंजाब बिजली सरप्लस राज्य बना, बढ़ती मांग के मुताबिक नई क्षमता नहीं जुड़ी। AQIS के चार धारा से जुड़े मॉड्यूल पर UPATS की कार्रवाई, कोयम्बटोर से मकसूद अली गिरफ्तार। इंदौर में गणेश जुलूस के दौरान नाबालिग की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। झांसी में डंपर से पशु भरे ट्रक की जोरदार टक्कर, चालक और चार पशुओं की मौत समेत चार लोग घायल। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में शादीशुदा महिला की हत्या, जंगल में बोरे में मिला शव, चार साल के रिश्ते में विवाद के बाद प्रेमी पर हत्या का आरोप, हुआ गिरफ्तार। अमृतसर में एम्बुलेंस की आड़ में नशा तस्करी का पर्दाफाश, 8 गिरफ्तार। नांदेड़ में 12 साल की नाबालिग से यौन उत्पीड़न का मामला, मां की शिकायत पर 28 साल का आरोपी गिरफ्तार। तेलंगाना के मंचेरियल में पत्नी के घर लौटने से इनकार पर पति का हमला, नाक पर काटकर गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप। सूरत के सालासर टेक्सटाइल मार्केट में लगी भीषण आग, 25 दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अमृतसर में दिखा बदमाशों का आतंक, पुरानी रंजिश में ताबड़तोड़ फायरिंग, एक युवक की मौत। प्रयागराज में पूर्व प्रधान पवन यादव हत्याकांड का जल्द हो सकता है खुलासा, प्रधान पति और हिस्ट्री शीटर पर शक, आपसी रंजिश का शक। अजमेर में कार साइड में लेने के विवाद में जानलेवा हमला, 2 आरोपी गिरफ्तार। अमेठी के प्राथमिक विद्यालय पड़री में सहायक शिक्षक निलंबित, रसोइये से अश्लील टिप्पणी और अभद्रता समेत कई आरोप। कानपुर में विनीत मनोचा हत्याकांड में कोर्ट ने शालू विशाल और राजकिशोर की पेशी की, कैमरे के सामने मुंह छिपाती नजर आई शालू। महोबा में पत्नी को ले जाने आए ससुरालियों का तांडव, पति और सास को पीटा, वायरल हुआ मारपीट का वीडियो। बेगूसराय में नहीं थम रहा है महिलाओं का शव मिलने का सिलसिला, 28 साल की अज्ञात महिला का शव मिला, हत्या कर शव फेंकने की आशंका। जयपुर में फैक्ट्री में भीषण आग, रोहित पॉली प्रोडक्ट फैक्ट्री में उठी आग की लपटें। अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले फर्जी कॉल सेंटर सिंडिकेट पर ईडी की छापेमारी, पटियाला पुणे चंडीगढ़ के 4 ठिकानों पर सर्च, 3 कॉल सेंटर्स में 220 लोग मिले। मेरठ के कॉलेज के 2 छात्र गुटों में मारपीट, 5 लोग पुलिस हिरासत में। गाजियाबाद की पार्श्वनाथ नॉर्थ लॉजिस्टिक सोसाइटी के फ्लैट्स में लगी आग, तीसरी मंजिल पर हुआ हादसा, 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में पुलिस बूथ से 10 कदम दूर झपट मारी, युवक युवती बाइक पर आए और मोबाइल लूटकर फरार हुए। जलंधर में 24 साल की लड़की ने 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या की, पुलिस बोली परिवार के बयान के मुताबिक डिप्रेशन में थी लड़की। झांसी में बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर नाते ने की नाना की हत्या, दोनों गिरफ्तार। इंदौर में जर्जर मकान गिरने से 3 महिलाओं की मौत, मकान तोड़ने का चल रहा था काम, उसी दौरान हुआ हादसा। राजगढ़ में 16 साल की नाबालिग की हत्या का 24 घंटे में खुलासा, लव ट्रायंगल में खूनी वारदात। संगरूर में नशे के खिलाफ मुहिम के दौरान 2 पक्षों में विवाद, सरपंच समेत कई लोग घायल। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम में वापसी। शुभमन की कप्तानी वाली वनडे टीम में जडेजा और मोहम्मद सिराज की वापसी, 27 सितंबर को त्रिवेंद्रम में खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला। वेस्ट इंडीज दौरे पर खेले जाने वाले 5 T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, वैभव सूर्यवंशी को टीम में मिली जगह। 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा पहला T20 मुकाबला, रांची इंदौर हैदराबाद और बेंगलुरु में होंगे बाकी मुकाबले। अफगानिस्तान के खिलाफ आज खेला जाएगा तीसरा T20 मुकाबला, कप्तान श्रेयस ने टीम में बदलाव के दिए संकेत। अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा साल 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अनंत नाग ने कन्नड़ हिंदी तेलुगु तमिल मलयालम मराठी फिल्मों में काम किया है। अभिनेता अनंत नाग ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, मालगुड़ी डेज से हुए थे लोकप्रिय। सरकार ने सेंसर बोर्ड का किया पुनर्गठन, 18 सदस्य नए सेंसर बोर्ड में, सिनेमा टीवी संगीत कला जगत की कई हस्तियों को मिली जगह। सेंसर बोर्ड के नए सदस्यों में अभिनेता सुनील शेट्टी और अभिनेत्री प्रीति जिंटा को मिली जगह। नए सेंसर बोर्ड में एक्टर पंकज त्रिपाठी, टीवी एक्टर सुपारी गांगुली और बंगाली सिनेमा के एक्टर प्रसन्नजीत चैटर्जी को मिली जगह। अमेरिकी संसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास हो चुका है।
बिल रूस और ईरान को निशाना बनाकर व्यापक प्रतिबंध लगाने से जुड़ा इस एलियन से ओग्राम सेक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 का नाम दिया गया है। इसका असर भारत और चीन जैसे देशों में भी पड़ सकता है। ये बिल ट्रंप को रूसी तेल गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक आयात शुल्क लगाने का अधिकार देता है। ट्रंप अगले हफ्ते गल्फ लीडर्स के साथ ईरान पर बातचीत करेंगे, जिसमें ईरान के साथ जंग में अगले कदमों पर बात की जाएगी। ट्रंप प्रशासन इसराइल को 2.8 अरब डॉलर के सैन्य समझौते के तहत 40,000 शक्तिशाली बम देने की तैयारी में। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। हूती सैन्य प्रवक्ता ने एक्स पर जारी किए बयान में दावा किया कि सऊदी F-15 मारे प्रांत के एयर स्पेस में सैन्य अभियान चला रहा था, इसी दौरान हूती लड़ाकों ने उसे निशाना बनाया। पुतिन ने आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने पिछले एक सप्ताह में यमन के अलग अलग इलाकों में 450 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान में अमेरिकी अधिकारियों और ईरान समर्थित हूती नेताओं के बीच बातचीत के बाद अमेरिका ने यमन में सीधे सैन्य हस्तक्षेप न करने का फैसला किया है। अफीम के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ का भारत के प्रयासों का स्वागत है।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: आगे आगे।
3: अरे उधर
2: उधर गया। करेक्ट करेक्ट।
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
5: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
6: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
7: लायन डेट नट बाइट्स।
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जेके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: Baba.
1: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का
2: सब कैशलेस हो गया
1: है। हाँ ला भाई मेरा बैट,
3: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
4: चार्ज हुआ यार,
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
8: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the cool.

0: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी।
2: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहां तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहां पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: सो सॉरी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
5: ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड UCC को हमने इंट्रोड्यूस किया है और मुझे विश्वास है कि भाजपा NDA शासित 21 राज्यों में हम 2029 के पहले UCC को इंट्रोड्यूस करेंगे।
6: क्या गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान यूपी के चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा? क्या 2027 में होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव का एपिसेंटर UCC ही बनेगा? क्या 2027 की चुनावी बिसात को देखते हुए ही बीजेपी ने UCC का मोहरा चला है? इसे ठीक से समझने से पहले जरा अखिलेश यादव का नया संदेश देख लीजिए। अखिलेश ने UCC की नई परिभाषा दी है। UCC मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, UCC मतलब अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस UCC का विरोध करते हुए एक्स पर लिखा है, जनता समझ रही है भाजपा जिस UCC की बात कर रही है दरअसल उसका फुल फॉर्म कुछ और है, UCC इक्वल टू अंडरग्राउंड कम्युनल कॉन्स्पिरेसी। अखिलेश ने जिस अंदाज में UCC को परिभाषित किया है उससे साफ है कि समाजवादी पार्टी UCC का खुलकर विरोध करने जा रही है, और उतना ही साफ ये भी है कि बीजेपी यूपी में इसे जल्द से जल्द लागू करने की कोशिश करेगी। योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली आए थे और खबर है कि UCC पर उनके गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है। UCC को यूपी में जल्द से जल्द लागू करने की बीजेपी की मंशा किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं यूपी में UCC का आगाज होकर रहेगा।
7: यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे 2024 के घोषणा पत्र में और संविधान का अनुच्छेद 44 ये कहता भी है और ये हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल है और माननीय गृहमंत्री जी ने आज कहा भी है, और निश्चित रूप से अगर महिलाओं के प्रति उनके अधिकारों के प्रति अगर उसे पूर्ण करना है, उन्हें सुरक्षा देनी है तो ये बहुत आवश्यक है। बाकी सरकार को निर्णय करना, माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना, लेकिन आज गृहमंत्री जी ने जो बोला है वो कहीं ना कहीं हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है, हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा है, और निश्चित रूप से सामान्य नागरिक संहिता की बात हम लोग लंबे समय से करते रहे हैं और हमारे लिए हमारा कमिटमेंट है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। देश हमारे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए सामान्य नागरिक संहिता की बात भारतीय जनता पार्टी जनसंघ हमेशा उठाती रही है।
8: उत्तर प्रदेश ये प्रयास करेगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मनसा है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरे। सरकार निश्चित तौर पे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तर प्रदेश में हम सबसे पहले लागू करेंगे।
6: ये भी तय है कि यूपी में UCC लागू होने की कोशिश होती है तो इसका विरोध भी तगड़ा होगा। मुस्लिम वोटों की चाहत में अखिलेश तो विरोध करेंगे ही, ओवैसी जैसे नेता भी सुर में सुर मिलाएंगे। मोदी सरकार धारा 370, 3 तलाक कानून, वक्फ कानून जैसे बड़े फैसले ले चुकी है। अब UCC की बारी है और यूपी में इसे लागू करने की पूरी तैयारी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
9: संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है UCC से बताओ मुझे, कि निकाह नहीं होगा क्या? हमारा निकाह तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या? फेरे ही तो होंगे, क्या तमाशा बना रखा है? कुछ भी नहीं है।
10: छात्रों के मूवमेंट से डरी हुई सरकार के पास अब इसी तरह का कार्ड खेलने के अलावा और कोई चारा नहीं, और चुनाव में गिराने के लिए क्या है? नौकरियां वो दे नहीं पाए, स्टूडेंट्स जो है वो परेशान है, प्रोटेस्ट कर रहा है पूरे देश में जेंजी से लेके जेन अल्फा तक। तो सरकार के पास मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यही सब है राज्यों में। ये भारत जो है वो विविधताओं का देश है, भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना। आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहाँ चली जाएगी? तो गृहमंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों सबसे मिलकर के भारत बनता है, आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।
11: भैया मेरे राखी के बंधन को नींव, 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम, लो मिठाई भी खाओ।
12: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा थे,
11: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कह जाएंगे।
13: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा हैं।
14: हाँ बिल्कुल है, हम नाराज हैं।
11: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा हैं।
13: क्या बात कर रहे हैं,
11: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
13: अच्छा। सबसे अच्छे हुए।
15: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
16: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
17: इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में 25 साल के नेतृत्व का जश्न। एक महीने तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान। वाराणसी से वडनगर तक बाइक रैली। 25 लाख आशीर्वाद के दिए जलाएंगे नितिन नवीन। पीएम मोदी करेंगे सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन। सेमीकंडक्टर पर 52 देशों की 600 कंपनियों के साथ मेगा कार्यक्रम। सिलिकॉन से सिस्टम तक इकोसिस्टम के निर्माण पर मंथन। ट्रंप को मिला रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार। अमेरिकी संसद के निचले सदन में बिल पास। अब भारत पर भी मंडराया 100% टैरिफ का खतरा। 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर चार्ज के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा। कहा नियम वापस ले मोदी सरकार। अमेरिकी प्रेशर में फैसला। वित्त मंत्री का जवाब, इसके पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। वीडी सतीशन सरकार के 100 दिन पर इंडिया टुडे के केरलम राउंड टेबल में खुद मुख्यमंत्री से सुनिए सरकार का रोड मैप। दक्षिण की सियासत पर आज दिन भर केरलम के दिग्गज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह के साथ एक बार फिर से हाजिर है। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, वो 76 साल के हो गए हैं। इस मौके पर बीजेपी मेगा जश्न मना रही है। जन्मभूमि वडनगर से कर्मभूमि काशी तक का प्रोग्राम है। हम सीधे दोनों शहरों का रुख करेंगे, साथ ही रुख करेंगे सेमी कंडक्टर पर मेगा इवेंट का। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री सेमिकॉन का उद्घाटन करने वाले हैं, जहां एक ही मंच पर 52 देशों की 600 से ज्यादा कंपनियां मौजूद होंगी और बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संसद से अधिकार मिलने के बाद क्या 100% टैरिफ की तलवार लटक रही है भारत पर।
1: मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें।
2: अहोमार विकास यात्रा यही

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 76 साल के हो गए हैं। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मना रही है। आज बीजेपी एक महीने के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। मुख्य आयोजन पीएम मोदी की जन्मभूमि वडनगर और कर्मभूमि वाराणसी में है। दोनों जगह से सेवा संकल्प बाइक यात्रा निकाली जाएगी। वडनगर से 250 बाइकर और करीब 500 लोग उनमें सवार होकर वाराणसी पहुंचेंगे और इसी तरह वाराणसी से निकली बाइक यात्रा वडनगर में संपन्न होगी। तो बाइक यात्रा का समापन 7 अक्टूबर को होगा। इसी दिन सार्वजनिक सेवा में पीएम मोदी के 25 साल भी पूरे हो जाएंगे। तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज शाम देश भर में आशीर्वाद का दिया जलाया जाएगा। थोड़ी देर में गृहमंत्री अमित शाह वडनगर में शर्मिष्ठा तालाब पर महाआरती भी करेंगे। तो आपको बता दें कि आज जब उनका जन्मदिन है तो कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही सुबह से उनको शुभकामनाएं देने की शुरुआत भी हो चुकी है। अलग अलग नेता जो हैं वो अपने ट्विटर के जरिए उनको शुभकामना दे रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि एक तरीके से इसे मूवमेंट की तरह किया जाए। एक जो बाइक रैली शुरू की जा रही है वाराणसी से शुरू होकर के वडनगर तक, वडनगर से वाराणसी तक, इसके जरिए एक संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है लोगों को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। खास तौर पर मोदी मैजिक एक बार फिर से याद दिलाने की कोशिश है क्योंकि आने वाले चुनावों में एक बार फिर से बीजेपी को इस मोदी मैजिक की जरूरत रहेगी। हमारे सहयोगी बृजेश दोषी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आइए सीधा रुख करते हैं उन्हीं का, जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की तैयारी है। बृजेश बताइए क्या चल रहा है
1: वडनगर की मिट्टी से एक बच्चे की आवाज।
2: बिल्कुल, देखिए वडनगर पीएम मोदी की जन्मस्थली जिसका खूब महत्व आज के दिन के लिए रहता है और आज जो है यहाँ पे सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। शर्मिष्ठा तालाब जो है यहाँ पे हम मौजूद हैं और यहीं पे केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह अभी कुछ ही देर में संबोधन करेंगे। अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का संबोधन चल रहा है। आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि जो ये पूरा स्टेज बनाया गया है, तालाब के सामने आरती की जाएगी और आरती के बाद जो है वो यहाँ से इस तालाब का जल इकट्ठा करके हाटकेश्वर मंदिर में वहां पे जलाभिषेक किया जाएगा और जलाभिषेक के बाद जो है वो हाटकेश्वर मंदिर जलाभिषेक के बाद जो है यहाँ से वो बाइक यात्रा निकलेगी, उसके साथ वो जल वडनगर भेजा जाएगा। तो ठीक उसी तरह वडनगर से जो है वडनगर से वाराणसी ये जो जल भेजा जा रहा है तो वाराणसी से गंगा जल जो है वो यहाँ पे भेजा जाएगा। तो ये पूरी यात्रा जो है उसकी शुरुआत आज यहाँ से होने वाली है और कुछ ही क्षणों में वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री के कार्यकाल पे। प्रधानमंत्री की जो बातें हैं उसकी बात करेंगे। अभी एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की जो 12 साल की उपलब्धियां हैं वो गिनवा रहे हैं और अमित शाह जो है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी तब से उनके साथ है तो वो भी बात करेंगे किस तरह से उनका जो जीवन रहा है ये 25 साल का सार्वजनिक जीवन सर्वोच्च पद पर तो वो कैसा रहा और किस तरह से जनता के लिए उन्होंने हमेशा योजनाएं लाई है उसकी बात होगी।
0: जी बृजेश आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि एक तस्वीर और दिखा रहे हैं हम इस वक्त। ये दरअसल दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर से आ रही है जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री को आप देख सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर यज्ञ कर रही हैं। तो साफ एक बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन महज उनका एक व्यक्तिगत लैंडमार्क नहीं है, उनके लिए ही नहीं है, इसे बीजेपी के सभी नेता भी एक साथ एक मूवमेंट की तरह आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आइए हमारे सहयोगी सुशांत मेहरा भी आपके लिए एक रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, देखिए।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन सरकार की तरफ से कई कार्यक्रम जो है वो आज से शुरुआत की जा रही है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर की यहाँ तस्वीरें हैं जहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री 108 कुंडिया हवन के अंदर जो है वो शामिल हुई है। इसके बाद कई अलग अलग कार्यक्रम जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से रखे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना को लेकर के मुख्यमंत्री खाटू श्याम मंदिर पहुंची, वहाँ पूजा की और उसके बाद हवन में शामिल हुई है। उसके बाद श्रम भवन का जो है वो आज उद्घाटन करेंगी। उसके बाद अगर बात की जाए तो मेगा ब्लड डोनेशन कैंप जो है उसका आयोजन किया गया है और आज कर्तव्य पथ पर 1 लाख से ज्यादा दिए जो है वो आज जलाए जाएंगे और 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो पूरी दिल्ली में जो है वो किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के पिछले 25 साल के जो सेवा संकल्प के रूप में उनके कामकाज को जो है दिल्ली की जनता के बीच में घर घर तक ले जाने की कोशिश जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से की जाएगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कि पहुंची हैं इस वक्त हवन कुंड में शामिल होने के लिए। तस्वीरें जो है दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर से हैं। कैमरा पर्सन किशन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
0: तो आइए एक बार वापस चलते हैं वडनगर, जहां पर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग जगह की तस्वीरें हम लेकर आ रहे हैं ब्रजेश, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का ये जो जन्मदिवस है वो बीजेपी मना रही है, कार्यक्रम अलग अलग कर रही है, लेकिन ये एक मौका भी हो जाता है बीजेपी के लिए कि उससे अपना राजनीतिक संदेश भी आगे बढ़ा सके, क्योंकि मोदी मैजिक जो है वो हर चुनाव में उनके लिए काम करता आया है। तो कहीं ना कहीं ये मौका हो जाता है कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से उस मैजिक और मैसेज के साथ जोड़ने का।
2: बिल्कुल अंजलि, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा बीजेपी करती है और बीजेपी का और देश का आपका सबसे मजबूत चेहरा प्रधानमंत्री का है, सबसे लोकप्रिय चेहरा है, तो वो हमेशा मोदी मैजिक काम करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस यात्रा को इसीलिए जो है जश्न के तौर पर नहीं पर सेवा संकल्प अभियान नाम दिया गया है, ताकि जो है लोगों की सेवा, जो प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है लोगों का भलाई करने की जो बात वो हमेशा करते रहे, चाहे वो लाल किले से बात की हो या अपने चुनावी भाषणों में जब बात करते हैं तो वो हमेशा उस चीज को वो ध्यान रखते हैं जो ज्ञान की बात की थी, गरीब युवा, अन्नदाता और महिला। तो ये जो जो नारी शक्ति की जो बात थी ज्ञान की, तो वो चीजें जो हैं वो हमेशा जमीन से जुड़ी हुई है और उसी के साथ ये जनसेवा संकल्प, ये जो सेवा संकल्प अभियान है उसको जोड़ा गया है। बाइक यात्रा जब निकलेगी जो 10 राज्यों से होके निकलेगी, 1100 गांवों में जा रही है, तो वहां पे सभी युवाओं के साथ संवाद, वृक्षारोपण, सफाई अभियान, ये सारे
0: कार्यक्रम हैं। आप हमारे साथ बने रहे, थोड़ा हम सुनने की भी कोशिश करते हैं अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगहों में जो कार्यक्रम हो रहे हैं वहां क्या हो रहा है।

0: माँ आज मोहल्ले में सब दिए क्यों
1: तो ये
0: जला रहे हैं?
1: आशीर्वाद थे कि किस तरीके से देश के कोने कोने में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज हवन किया। आइए सुनिए कि उन्होंने क्या कहा।
2: वो रोशनी जिससे सर पे पक्की छत आई, घर में पानी आ गया।
3: आज पूजा अर्चना की, आपने हवन किया, और किस तरीके के कार्यक्रम दिल्ली सरकार के द्वारा आयोजित किए गए?
4: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और हम सब यहाँ पर 108 कुंडिया हवन अभी हमने संपूर्ण किया है। बाबा श्याम खाटू वालों के चरणों में हमने प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और देश सेवा में वो इसी तरीके से लगातार काम करते रहे, इसकी कामना की है। और यदि मैं इस तरीके से कहूँ कि प्रधानमंत्री जी आपको और क्या दें हम इसके सिवा कि आपने जो मार्गदर्शन हमारा किया है देश सेवा के लिए, जन सेवा के लिए, हम सब मिलकर के उस रास्ते को अपनाएं, उसका काम करें। और इसी से प्रेरित होकर के जो प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं कि जन सेवा में हमको काम करना चाहिए, आज हमने जो विभिन्न कार्यक्रम सरकार की ओर से रखे हैं उसमें एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप जिसमें हजारों लोग आज दिल्ली वासी जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इसी तरीके से हमने एक ऑर्गन डोनेशन का सरकार का पहली बार कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, उस पोर्टल को आज हम लॉन्च करेंगे और जिसकी पहली डोनर मैं स्वयं बनने वाली हूं। और इसी तरीके से आज दिन भर जो कार्यक्रम रहेंगे उनके साथ साथ अभी नमो श्रमिक केंद्र हम खोल रहे हैं जो कि हमारे इस राज्य के जितने भी श्रमिक भाई बहन हैं उनके लिए बहुत काम आने वाला है, सारी योजनाओं को सीधा सीधा उनसे जोड़ेगा। मोदी जी के जन्मदिन पे आज हम एक गाना भी लॉन्च करेंगे जो हमारे स्कूल के बच्चों ने बनाया है। और शाम को हर दिल्लीवासी अपनी मन से प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए एक सुभाशीष का दिया जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जलाएगा, आशीर्वाद का दिया प्रभु चरणों में, ये कामना करते हुए कि हमारे प्रधानमंत्री जी सदैव हमारे इस देश की सेवा करें और स्वस्थ जीवन और उनका समृद्ध भारत जो उनका सपना है उसको साकार करें। आज हम सब आशीर्वाद का दिया जलाएंगे, मैं स्वयं कर्तव्य पथ पे 125,000 दियों के साथ में जहां दिल्ली के लाभार्थी उन दियों को जलाएंगे उनके साथ रहूंगे।
1: रेखा गुप्ता को आइए, अब एक वीडियो जारी किया है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्म दिवस के मौके पर, उसे देखते हैं।
2: अंधियारों मिटा दियो,
0: लाइट तो इलेक्ट्रिशियन भैया लगाते हैं।
2: बाबरी जे रोशनी ना आई, वो रोशनी जिससे सर पे पक्की छत आई, घर में पानी आ गयो, गैस आ गई, तोरे बाबा की दवाई आई और तोरी ये खिलखिलाती हुई हंसी। कुकुलानी जी आशीष का दिया है।
0: आशीष का दिया मैं भी।

0: और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक वीडियो जारी किया, ये उसे देखते हैं।
1: घर छोड़कर, खुद की हितों को छोड़कर देश की सेवा में लगे, लंबे समय तक आरएसएस का काम किया, फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, मुख्यमंत्री बने, सबसे सफल मुख्यमंत्री बने, सबसे सफल प्रधानमंत्री बने और लॉन्गेस्ट टर्म सर्विंग राज्य का नेतृत्व करने वाले नेता बने।
2: पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कार्यकर्ता को इंस्टीट्यूशन बनाने का काम और सदस्यता को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम, संस्थागत करने का काम अगर किसी एक व्यक्ति ने किया है तो नरेंद्र मोदी।
1: मोदी जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति है, एक कर्मठ कार्यकर्ता है, संगठन का काम करते थे तब तो चुनाव की जिम्मेदारी लेते ही थे, मगर आज देश में कहीं पर भी चुनाव हो उस राज्य के कोई भी कार्यकर्ता से ज्यादा परिश्रम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। स्टेट्समैन जैसी छवि, हर समस्या को मानवीय अवगुणों से, मानवीय दुर्बलताओं से ऊपर उठकर सोचने का एक पद्धति समग्र विश्व और समग्र भारत में उनको अलग बनाकर रखा है। एक टीम लीडर के नाते समग्र देश का आगे नेतृत्व कर रहे हैं। एक निडर सेनापति पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को हताहत कर अपने जवान वापस आए। राजनीतिक संस्कार और शासन का दर्शन, इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति उन्होंने गुरु नानक देव जी के सेवा के संदेश और समर्थ रामदास स्वामी के उपभोग शून्य स्वामी के रूप में देश की जनता के साथ।
0: और आइए अब सीधा रुख करते हैं केरलम में हो रही इंडिया टुडे राउंड टेबल का।
3: दैट मे बी प्लस वन और माइनस वन। एक्चुअली 13 मिनिस्टर्स लॉस देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड वी क्रॉस 102। एक्चुअली माई target in my mind was 110 in my mind, but because of this selection of the candidates and other things, some other problems, we could not reach that 110.
4: So I'll tell you what, you have an alternate career. If you had lose your chief ministership, you can join India Today as their lead pollster. You can take over the task of polling. It's a very difficult task, but you can do polling instead of being chief minister for us.
3: I know that you may invite me for such post. That is why I told you that my target was 110, but I could not reach 110. So there is a task before me to reach that 110, my dream target. So I have to be here.

0: Yes, because there is the Western gods, there is a forest law, there is a paddy act, and there is CRZ. Most of our lands are regulated. And density of population is very high. To start some red industries is very difficult. But we studied about our advantages. We have 600 kilometer coastal line. We have 2 international seaports, 1 container terminal.
1: और आइए अब सीधा रुख करते हैं वडनगर का, जहां अमित शाह इस वक्त संबोधन कर रहे हैं।
2: उप मुख्यमंत्री गुजरात सरकार, बहन अनुप्रिया पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल पार्टी और मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरी साथी श्री जगदीश विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की श्री हेमांग जोशी, ये यात्रा के संयोजक है, और श्री रत्नाकर जी हमारे संगठन मंत्री है। इस सब की उपस्थिति में मैं आज मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर मोदी जी को और समस्त देशवासियों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। आज मेरा सौभाग्य है कि मोदी जी के जन्मदिन के दिन ही मैं इनके जन्म के पैतृक गांव में आया हूं। यहां पर पौराणिक काल से स्थित एक शिव मंदिर है, हटकेश्वर महादेव का शिव मंदिर। हटकेश्वर महादेव का शिव मंदिर सोलंकी युग से समग्र गुजरात के लिए श्रद्धा का केंद्र है। मैं आज हटकेश्वर महादेव के चरणों में मोदी जी के दीर्घायुष और स्वास्थ्य पूर्ण लंबे जीवन के लिए करबद्ध निवेदन करता हूं। मित्रों, आज कुछ क्षण के बाद यहां से एक यात्रा का शुभारंभ होगा। इस सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है और ये यात्रा निकलेगी वडनगर से वाराणसी तक। मोदी जी की जन्मभूमि से लेकर मोदी जी की कर्मभूमि तक, और ये यात्रा हटकेश्वर महादेव के प्रांगण से निकलकर काशी विश्वनाथ के चरणों तक पहुंचेगी। और ये यात्रा में 7 राज्य हमारे 300 और 300 वाराणसी से आज ही निकलेंगे। 600 बाइकर्स 7 राज्य को कवर करते हुए अनेकानेक गांवों में ये 25 साल के मोदी जी के काम का संदेश पहुंचाते हुए निकलेंगे। ये 25 साल मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मोदी जी का जन्मदिन है, मगर 7 अक्टूबर को वो दिन है जिस दिन मोदी जी राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में 25 साल पूर्ण करेंगे। मित्रों, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक किसी भी राजनेता ने 25 साल तक राज्य के मुखिया और देश के मुखिया के रूप में सेवा देने का रिकॉर्ड नहीं बनाया है। मोदी जी एकमेव नेता है जिन्होंने 25 साल तक लगातार जनादेश को प्राप्त कर हर चुनाव में विजय प्राप्त कर जनता के आशीर्वाद प्राप्त कर ये काम किया है। ये देश के सार्वजनिक जीवन में बहुत बड़ी बात है, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी दलों ने तय किया है कि इस अवसर को देश भर की जनता के साथ ले जाएंगे। कुछ लोग जो वक्र दृष्टा होते हैं उन्होंने कहा क्या जरूरत है, मैं आज उनको कहना चाहता हूं मोदी जी का जीवन ऐसा जीवन है जो भारत के हर बालक को, हर किशोर को और हर युवा को इसका परिचय कराना जरूरी है कि आने वाले दिनों में इससे सैकड़ों नरेंद्र मोदी निकले और भारत को अपने जगह पे पहुंचाए। हमने जो कल्पना रखी है 2047 में पूर्ण विकसित भारत की, वो कल्पना की पूर्ति के लिए अनेक ऐसे युवा चाहिए, अनेक ऐसे किशोर चाहिए, अनेक ऐसे बालक चाहिए जो आने वाली 3 पीढ़ी तक नरेंद्र मोदी के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर भारत प्रथम के मंत्र को सफलता के साथ करे। ये भावी पीढ़ी की प्रेरणा के लिए ये कार्यक्रम बना है। मैं गुजरात में भी नरेंद्र मोदी जी के साथी था, जब संगठन का काम करते थे तब भी था, सरकार के मुख्यमंत्री मंत्री बने तब भी था, भारत में जब वो प्रधानमंत्री बने तब भी मैं संगठन का अध्यक्ष और बाद में उनके मंत्री के रूप में काम करता हूं। मैं आज देश को ये व्यक्ति के लिए बताना चाहता हूं, मैंने लगातार संगठन का काम करते थे तब तक, आज तब से लेकर आज तक उनको नजदीक से देखा है, मगर मैं बात करूं, ये आदमी एक भी दिन की छुट्टी लिए बगैर 25 साल तक अहर्निश देश सेवा में लगा रहा है। गरीबों की सेवा, पिछड़ों की सेवा, दलितों की सेवा, आदिवासियों की सेवा, इस सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन निभाया है। एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जहां 16 घंटे से 18 घंटे लगातार काम काम काम काम करना। मैंने बहुत सारे लोग देखे कि काम स्वयं बहुत करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते भी हैं, उनका भी सम्मान है, मगर मोदी जी ने न केवल खुद काम किया, करोड़ों की भारतीय जनता पार्टी की फौज को भी राष्ट्र प्रथम के नारे के साथ जोड़ने का काम किया। व्यक्तिगत जीवन की उनकी सादगी, इसकी कोई झोल नहीं है, मूल्य कोई मेल नहीं खाता है किसके। आज भी 25 साल सत्ता में रहने के बाद देश में कोई उनके परिजनों के 5 नाम बोल नहीं सकता है, ऐसा राजनेता शायद ही देश को भविष्य में भी कभी मिले। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, 25 साल के सार्वजनिक जीवन में इनके कुर्ते पर एक भी दाग नहीं लगा है। इनके विरोधी भी, विपक्ष वाले भी मोदी जी पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। इतने दलदल में रहकर कमल की तरह जल कमलवत, न जल छूता है न कीचड़ छूता है, एक साफ सुथरा भ्रष्टाचार विहीन उन्होंने जीवन दिया है। जैसा मैंने कहा, परिवार को कोई नहीं जानता है, इसलिए ये वाक्य एक प्रकार से अधूरा है। मोदी जी के परिवार को पूरा देश जानता है, क्योंकि मोदी जी ने भारत को ही अपना परिवार माना है, 140 करोड़ लोगों को ही अपना परिवार माना। सज्जन शक्ति का संगठन, सम्मान और उनको साथ लेने का पहली बार आजादी के बाद अगर किसी ने प्रयास किया तो नरेंद्र मोदी जी ने। मित्रों, मैं गृह मंत्री बना तब से देख रहा हूं नजदीक से, पद्म पुरस्कार जो होते, पहले दिल्ली के गलियारों में से 2-4 सिफारिश के पत्र लेकर पद्म पुरस्कार प्राप्त करते थे। आज जिस प्रकार के कर्तृत्ववान लोगों को अनेक क्षेत्रों में, अनेक राज्यों में, अनेक तहसीलों में लोगों के लिए काम करने वाले लोगों को पद्म पुरस्कार प्राप्त होता है, सत्शक्ति, सज्जन शक्ति का इससे बड़ा सम्मान कोई हो नहीं सकता जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, इस छोटे से गांव में, गरीब गांव में जन्मे, दारुण गरीबी के बीच में बचपन बिता और वो दारुण गरीबी के बीच में बचपन बीतने के बाद भी जरा भी किसी भी प्रकार की कुंठा को पाले बगैर पूरा समाज का सम विकास होना चाहिए, विकास सर्वस्पर्शीय होना चाहिए, सर्वसमावेशक होना चाहिए, इसकी कल्पना इन नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति ने देश के सामने रखी। किसी भी प्रकार का ना जाति का बैकग्राउंड है, ना राजनीतिक बैकग्राउंड है, अपने दम पर एक तेजस्वी ध्रुव तारे की तरह ये व्यक्ति आज देश की राजनीति के आसमान में चमकता है, दुनिया की राजनीति के आसमान में चमकता है, वो उनके कर्तृत्व का ही परिणाम है। उन्होंने खुद दारुण गरीबी को देखा है। देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए उनका 12 साल का प्रधानमंत्री का कार्यकाल एक सुवर्ण युग के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि 12 ही साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के बाहर निकालने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया। 80 करोड़ लोग तीन पीढ़ी से जिस चीज की राह देख रहे थे, हमें घर मिल जाए, घर में शौचालय हो, घर में नल हो, बिजली हो, हमारे घर में खाने पीने की सुविधाएं हो, हमारे इलाज की व्यवस्था हो जाए, एक 12 साल में 80 करोड़ लोगों को घर देने का काम, घर में बिजली देने का काम, नल से जल देने का काम, हर व्यक्ति प्रति व्यक्ति प्रतिमा 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम, 5 लाख तक का इलाज पहुंचाने का काम, शौचालय पहुंचाने का काम और गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। इनके 25 साल और 12 साल प्रधानमंत्री के कार्यकाल के वो गरीब कल्याण के सालों के रूप में इतिहास को स्वर्णिम अक्षरों से इसका उल्लेख करना पड़ेगा। 12 साल जो मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, ये भारत साल के रूप में उसको देखना पड़ेगा। भारत को सुरक्षित बनाने के 12 साल के रूप में इसको देश की जनता आने वाले दिनों में देखेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत को विश्व में सर्वप्रथम बनाने की शुरुआत करने वाले 12 साल के रूप में 12 साल को देखा जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें भी आज हम दुनिया में बहुत आगे निकल चुके हैं, पूरी दुनिया इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करती है। मित्रों, भारत के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के समकक्ष लाने के लिए बहुत सारे काम किए हैं, मगर सबसे बड़ा काम किया है, मैं 2010 से लेकर 2013 तक दिल्ली में रहा था, देश भर का दौरा करता था, मैंने देखा था 2013 तक देश की जनता में गहरी निराशा थी, चहू और भ्रष्टाचार के मामले उजागर होते थे, आंतरिक सुरक्षा का थौर ठिकाना नहीं था, बाहरी सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं थी, सबको लगता था देश कहां जाएगा। और आज 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 26 में 140 करोड़ भारतीय ये उत्साह और संकल्प के साथ, एक आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में समग्र विश्व में भारत सर्वप्रथम होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता का सामूहिक आत्मविश्वास खड़ा करना ये किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी कसौटी है, और वो भी तब जब जनता गहरी निराशा में डूबी हो। उन्होंने गहरी निराशा के गर्त से जनता को बाहर निकालकर नरेंद्र मोदी जी ने जनता को आत्मविश्वास से लवरेज कर 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत की यात्रा के साथ जोड़ने का काम किया। मित्रों, जब एक गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब पानी, वन बंधु कल्याण योजना, सागर खेडू कल्याण योजना, कर्फ्यू मुक्त गुजरात, औद्योगिक विकास और वाइब्रेंट गुजरात का मॉडल, जीरो ड्रॉप आउट रेशियो वाला राज्य, शिक्षा का हब, 24 घंटा गांवों में बिजली पहुंचाने की देश में सबसे पहले शुरुआत, कृषि विकास के लिए किसान के घर पर जाकर उसको सभी लाभ पहुंचाने की शुरुआत, और लगातार जब तक मुख्यमंत्री रहे वो लगातार 8% से ज्यादा कृषि विकास दल केवल और केवल गुजरात ने प्राप्त किया। न्यू एज इकोनॉमी का फाउंडेशन और सुशासन का गुजरात मॉडल, ये सारी चीजों को गुजरात में जमीन बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं दो चीजों का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचाना, मैं पहले भी संगठन का काम करता तो गांव में जब जाते थे, गांव वाले कहते थे भैया लंबी चौड़ी बात मत करो, शाम को खाने के समय पर बिजली हो जाएगा, मगर शाम को खाने के समय नहीं, मोदी जी ने 24 घंटा बिजली गांव में पहुंचाई। ये सिर्फ सुविधा का सवाल नहीं है, बिजली पहुंचते ही व्यापार पहुंचा, बिजली पहुंचते ही शिक्षा पहुंची, बिजली पहुंचते ही स्वास्थ्य पहुंचा, बिजली पहुंचते ही इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा, और ग्रामीण विकास देखते देखते देखते ग्रामीण विकास के क्षेत्र में गुजरात सबसे ऊपर पहुंच गया। और मित्रों, इसके कारण शहरों के प्रति जो दौड़ थी वो भी रुकी, शहरों में झोपड़पट्टी की संख्या भी बहुत कम हुई। और दूसरा काम है सागर खेडू योजना और वन बंधु कल्याण योजना। उन्होंने कहा था कि विकास सर्वस्पर्शीय होना चाहिए, सर्वसमावेशी होना चाहिए। सर्वस्पर्शीय से मतलब था हर क्षेत्र को छूने वाला विकास, और सर्वसमावेशी से मतलब था सबका समावेश करने वाला विकास। गुजरात में विकास, हमारे वन बंधु, हमारे आदिवासी जहां रहते थे वहां तक नहीं पहुंचा था, सागर किनारे के गांवों तक नहीं पहुंचा था। उन्होंने दो बड़ी योजनाएं बनाकर गुजरात में विकास को सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशी बनाया, और आशावंत जिलों की रचना कर आज वही मॉडल को उन्होंने देश के सामने रखा है। मित्रों, गुजरात को मॉडल बना था 2013 तक, उसके ही आधार पर देश ने उनको 2014 में देश का प्रधानमंत्री चुनने का काम किया। लंबे समय के बाद, 3.5 दशक के बाद देश को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली और इसके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हुए, और वहां से ये परिवर्तन की यात्रा शुरू हुई। मित्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति में जो असमंजस थी उसको नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया, और देश में घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार के जो मामले थे एक सुशासन के रूप से उसको समाहित भी किया और कंट्रोल कर एक साफ सुथरा शासन देने का काम किया। और पहली बार लाल किले की प्राचीर से किसी प्रधानमंत्री ने अपने आप को प्रधान सेवक कहकर संविधान की भावनाओं को उजागर करने का काम किया। भाइयों बहनों, जब मोदी जी शासन में आए तो पैरालिसिस, पॉलिसी पैरालिसिस था, इसकी जगह उन्होंने सुस्पष्ट नीतियों को लाया, और आज इसी का कारण है कि भारत फ्रेजाइल 5 से दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थतंत्र बना है। और 25 वर्ष के राष्ट्रीय सामर्थ्य और विश्वास के शासन के कारण ही विश्व का विश्वास, देश की जनता का विश्वास उन्होंने जीता है। 25 साल में इनके नेतृत्व में कोई चुनाव हारे बगैर लगातार विजय विजय विजय मिलती है। ये जो वक्र दृष्टा कहते हैं जनता साथ में नहीं है, उनको मैं कहना चाहता हूं जनता के साथ के सबसे बड़ा परिचायक जनमत होता है, और नरेंद्र मोदी जी ने जनमत का विश्वास हमेशा हासिल किया है। अभी उनका आखिरी गढ़ बचा था बंगाल में, वहां पर भी ध्वस्त कर वहां भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार की। और देश भर में नहीं, दुनिया भर में अनेकों सर्वे में ६८% के अप्रूवल रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। दुनिया के 36 देशों ने उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको दिया है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि शायद वो विश्व में पहले ऐसे नेता है जिनको 36 देशों ने अपने नागरिक सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है। आज इनके नेतृत्व में एनडीए की 22 राज्यों में सरकार है, लोकसभा में 318 सांसद है, राज्यसभा में 152 सांसद है, 2500 से ज्यादा विधायक है, 250 से अधिक विधान परिषद के सदस्य है, देश के 72% भूभाग और 76% आबादी पर आज भाजपा और हमारे एनडीए के साथियों का जनता का दिया हुआ विश्वास के आधार पर शासन कर रहे हैं। परफॉर्मेंस, आउटकम और डिलीवरी को देश की जनता ने पहली बार, विकास की भी बात करता हूं, जीएसटी कभी देश को स्वप्न लगता था, नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी पर धरातल पर उतारकर एकीकृत कर व्यवस्था कर हमारे आर्थिक विकास को आगे बढ़ा है। जैम ट्रिनिटी, जनधन, आधार और मोबाइल के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को उन्होंने संभव बनाया है। बैंकिंग सुधार से सारे सार्वजनिक बैंक आज मुनाफे में है, एक जमाने में घाटे में चल रहे थे। एफडीआई और पीएलआई के कारण भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुआ है। सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की गति दुनिया आश्चर्यचकित होकर देख रही है। हवाई अड्डे पहले 75 थे, आज 150 है। पीएम गति शक्ति ने इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को समन्वित, तकनीक आधारित और समयबद्ध करने का काम किया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया ने युवाओं के लिए अनेक अवसर खोले हैं और सीमावर्ती कनेक्टिविटी ने सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया है। धारा 370 हटाना, ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, सीए को इंट्रोड्यूस करना, भारतीय न्याय संहिताओं को इंट्रोड्यूस करना, नक्सल मुक्त देश बनाना, 14 से अधिक नॉर्थ ईस्ट में शांति समझौते करना और सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। और आज उन्हीं के कारण जम्मू कश्मीर, नक्सल प्रभावित क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट ये विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं। नारी शक्ति का सम्मान, सेना, पुलिस, विज्ञान, स्टार्टअप, ड्रोन और खेल में महिलाओं के अवसर बढ़े हैं। अभी विपक्ष के नेता रोक कर बैठे हैं, मगर मुझे विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में संसद में और विधानमंडलों में 33% मातृशक्ति का आरक्षण होके ही रहेगा, उसमें किसी को भी अविश्वास करने की जरूरत नहीं है। एकलव्य विद्यालय, पीएम जनमन, वाइब्रेंट विलेज और बस्तर ये आज आदिवासी कल्याण के मुख्य स्तंभ बने हैं। नया संसद सब भवन बनाना, सेंगोल को वहां रखना, इसने राष्ट्रीय चेतना को जागरूक किया है। चंद्रयान, आदित्य L1 और शिव शक्ति पॉइंट ने अवकाश में भारत के दबदबे को आगे बढ़ाया है और वन रैंक वन पेंशन और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद निर्मित कर हमने सुरक्षा तैयारियों को बहुत आगे बढ़ाया है और रक्षा के क्षेत्र का निर्यात भी बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ रहा है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। मैं आज इनके जन्मदिन के अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का जीवन, उसको अगर दो शब्दों में व्याख्यायित करना है तो दो ही शब्द है, भारत प्रथम। भारत माता की आराधना के लिए, भारत माता के सभी संतानों के कल्याण के लिए और भारत के भूभाग को समग्र विश्व में सम्मान दिलाने के लिए इन्होंने पूरा जीवन खर्च किया है। शरीर का कण कण और जीवन का क्षण क्षण भारत माता को समर्पित किया है। किसी को अपना नहीं माना, पूरे देश को अपना मानकर सभी को अपना मानने की एक नए राजनीतिक संस्कृति को उन्होंने शुरू किया है। मैं आज इनके जन्मदिन के अवसर पर और ये सेवा संकल्प यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप शतायु होइए अच्छे स्वास्थ्य के साथ देश का नेतृत्व करते रहिए और देश को दुनिया में सर्वप्रथम बनाने का अभियान का मजबूत नींव आपके हाथ से डले, ये हम सब के लिए देशवासियों की अपेक्षा है। ईश्वर आपको बहुत बहुत शक्ति दे। वंदे मातरम।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपकी।
1: तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को, जो कि इस कार्यक्रम में जो वडनगर में आयोजित किया जा रहा है वहां पर अपना संबोधन दे रहे थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने महा आरती भी की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस वक्त ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त सेमीकॉन इंडिया 2026 में मौजूद है, जो भारत का एक सेमीकंडक्टर सेक्टर का एक खास इवेंट है जिसमें 52 देशों की 600 कंपनियां मौजूद रहेंगी। वहीं तीसरी तस्वीर एक और दिखा रहे हैं हम आपको, जो बीजेपी के अलग अलग नेता अलग अलग जगहों पर जश्न या अलग अलग इवेंट आयोजित कर रहे हैं। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: बहुत टायर्ड हो गई।
7: No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
8: लायन डेट नट बाइट्स।
9: आगे आगे।
10: अरे उधर उधर।
9: करेक्ट करेक्ट।
11: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
12: एक तो एक
13: इश्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
7: पापा,
8: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
9: सब कैशलेस हो गया है। हाँ,
10: ला भाई मेरा बैट।
11: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
12: चार्ज हुआ यार।
13: बैट किसका है?
14: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट
7: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
9: जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
6: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
7: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
8: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
9: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
10: अब मैं क्या ही बोलूं?
11: परिवार अटूट भरोसा।
12: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: आज तक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर सबसे बड़ी सभा।
3: आज का बैटलफील्ड 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है।
4: इमीडिएट बालापुर मान जाइए, अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आनी।
5: अंडमान निकोबार आइलैंड तो जरूर हमको उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए।
6: जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका भी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता।
7: कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा, भारत की सेनाएं उसका जवाब देगी।
2: आज तक देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ी आवाज़।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: In association with
4: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, Signature Finest Cardamom Seeds, E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: क्या आप मुझे बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको? ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है, उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि अमेरिका को हमारा MDR रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था, और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
6: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जब दुनिया की डिजिटल फाइनेंशियल क्रांति की अनुगवाई भारत ने करी थी UPI के माध्यम से, तो राहुल गांधी के कहने पे पी चिदम्बरम ने ये कहा था कि क्या गरीब आदमी या इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता है। सो कांग्रेस हैज हिस्टोरिकली बीन एन ओपोनेंट ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और आज ये नाराज फूफा पार्टी झूठ फैला रही है। हर आम आदमी आज स्कैनर के माध्यम से पेमेंट कर रहा है, और हर आम आदमी स्कैनर के माध्यम से ही पेमेंट करता रहेगा।
7: पता नहीं ये सरकार क्या कर रहे हैं, इनके पॉलिसी क्या हैं, क्या सोचते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। अचानक से कोई नियम या कुछ थोप दिया जाता है, फिर जनता पर जब उसकी आदत लग जाती है, जनता उसके आदि हो जाते हैं, फिर उसे बदल दिया जाता है। अगर इसमें भी इतना टैक्स थोप देंगे 2000 के ऊपर के पेमेंट पर, तब तो आने वाले समय में जनता काफी क्राइसिस में आ जाएगी। इमीडिएटली इसे बंद करना चाहिए, जो भी निर्णय है ये बिल्कुल गलत निर्णय है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
8: नहीं, UPI में तो ऐसा है कि भाई 2000 तक जो व्यापारी लोग होते हैं वो 2000 तक उसकी सीमा है, और उसमें कोई मतलब और ज्यादा पैसा ले रहे, इसी तरह का राहुल गांधी का आरोप है, वो इसमें तथ्य नहीं है। कोई सरकार ने अभी निर्णय ऐसा लिया भी नहीं है। वो किसी व्यापारी को और किसी लोगों को तकलीफ देने की भूमिका हमारी बिल्कुल नहीं है।

0: 76वें जन्मदिन पर देश भर में 25 साल के नेतृत्व का जश्न, एक महीने तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान। वाराणसी से वडनगर तक बाइक रैली, 25 लाख आशीर्वाद के दिए जलाएंगे बीजेपी अध्यक्ष।
1: वडनगर से अमित शाह ने देश को बताया मोदी का मतलब, कहा 36 देशों से सर्वोच्च सम्मान हासिल करने वाले वो विश्व के इकलौते नेता अपने दम पर ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं नरेंद्र भाई। रेखा गुप्ता ने किया हवन।
0: दिल्ली के यशोभूमि में पीएम मोदी ने किया सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन। सेमीकंडक्टर पर 52 देशों की 600 कंपनियों के साथ मेगा कार्यक्रम। सिलिकॉन से सिस्टम तक इकोसिस्टम के निर्माण पर मंथन।
1: ट्रंप को मिला रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार। अमेरिकी संसद के निचले सदन में बिल पास। अब भारत पर भी बन रहा है 100% टैरिफ का खतरा।

0: स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज एक और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाद।
1: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर खबर से। बीजेपी देश भर में जोर शोर से इसे मना रही है। सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर में भी बाइक रैली निकाली जा रही है और इस मौके पर अमित शाह वहां पर मौजूद थे। उन्होंने पीएम मोदी को बधाई दी और कहा कि पीएम ने 25 साल का बेदाग सार्वजनिक जीवन जिया है। पीएम मोदी देश कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है और ये तस्वीरें जो हैं वो एक महाआरती जो वहां पर आयोजित की गई थी उस

दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं नितिन नवीन की, जिन्होंने रक्तदान किया है। आज रक्तदान के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं, दिल्ली में भी एक शिविर है और नितिन नवीन रक्तदान करेंगे और शाम को वो दिए जलाएंगे जिन्हें आशीर्वाद

0: पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर देशभर में 25 साल के नेतृत्व का जश्न। देशभर में कई जगहों पर समर्थकों ने किया कई कार्यक्रमों का आयोजन। पीएम के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मस्थली गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली। गृहमंत्री अमित शाह करेंगे रवाना। अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए गिनाई पीएम मोदी की उपलब्धियां। 25 साल की छवि को बताया बेदाग। कहा मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार माना। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र और धार्मिक नगरी काशी में बटुक ब्राह्मणों ने किया विशेष गंगा पूजन। प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना। पीएम मोदी के जन्म दिवस के मौके पर दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। 108 कुंडीय हवन में हुई शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में 52 देशों की 600 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्देश्य भारत में सहयोग, इन्वेस्टमेंट, प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना। 50,000 विजिटर्स भी पहुंचने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में कुछ हथियार और गोला बारूद भी मिले। सेना को इस इलाके में संदिग्ध गतिविधियों के बारे में इनपुट मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कल रात एक बड़ा घेरा और तलाशी अभियान शुरू कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकियों की जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़े होने की है आशंका। एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है।
1: 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर शुल्क के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा। का नियम वापस ले सरकार। राहुल के बयान पर वित्त मंत्रालय की ओर से जवाब। फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी की चुनावी हुंकार। कहा पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर, आज यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान, 19 सितंबर से 1,00,000 नई नौकरियों की शुरुआत। सरकारी कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा। कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह किया। 51,00,000 लोगों को फायदा। शहजाद भट्टी नेटवर्क में बड़ा एक्शन। केंद्र ने यूएपीए के तहत घोषित किया आतंकवादी संगठन। नेटवर्क पर सीमा पार हथियार, विस्फोटक और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का आरोप। यूपीआई पेमेंट चार्ज पर पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार से लगाई गुहार। 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर एनडीआर से पूरी छूट देने की मांग। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। 4 और आरोपी गिरफ्तार। आज से यूपी बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े की क्षेत्रवार बैठकों का दौर शुरू। चुनावी तैयारियों पर मंथन।
0: बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और रोड मैप पर भी मंथन संभव। गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में एसआईटी का गठन। एसीपी सहित 5 लोगों की बनाई गई एसआईटी टीम। इसके अलावा पुलिस सीन रिक्रिएट भी कराएगी। टीएमसी सिंबल पर जल्द फैसला ले सकता है चुनाव आयोग। आज दोनों गुटों को बैठक के लिए बुलाया गया है। 6 अक्टूबर को 2 सीटों पर उपचुनाव। नई दिल्ली में असुरक्षित रिहायशी क्वार्टरों को खाली कराने का निर्देश। एनडीएमसी की तरफ से नोटिस जारी किया गया। बीएसपी के पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में केस दर्ज कर शुरुआत की। दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव प्रचार के दौरान हुई 2 छात्र गुटों में झड़प। जमकर चले लात, घूंसे और डंडे। एक छात्र गंभीर रूप से हुआ घायल। झड़प के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल दिल्ली विश्वविद्यालय में तैनात। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद डीसीपी भी दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे। सत्यनिकेतन हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन जारी। एमसीडी ने 3 पीजी बिल्डिंग पर नोटिस लगाकर शुरू किया डेमोलिशन। अहमदाबाद में पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मां उमिया की महाआरती। हजारों लोग शामिल हुए। इंदौर में मकान तोड़ते समय बड़ा हादसा। दीवार गिरने से 4 महिला मजदूरों की मौत, 5 घायल।
1: सूरत में स्वास्थ्य विभाग और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 8 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार। बिना मान्य मेडिकल डिग्री चला रहे थे क्लिनिक। पुलिस ने डमी मरीज भेजकर की कार्रवाई। बिहार के खगड़िया में शराब माफिया के घर छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। घरवालों और समर्थकों ने घेर कर लाठी डंडे से किया हमला, कई जवान चोटिल। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में गणेश मंडपा में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप। आग लगने के कारणों की हो रही है जांच। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, डीयू के स्टूडेंट्स ने कार से चार युवकों को कुचला, दो की मौत, दो गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के नासिक में कुत्तों के आतंक पर अनोखा विरोध, नेता ने नगर पंचायत अधिकारी के दफ्तर में छोड़े कुत्ते, कई महीनों से लापरवाही का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन के दौरान जमकर हंगामा। कानपुर के सरकारी अस्पताल में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का मामला, डॉक्टर की जगह ड्राइवर ने संभाली ओपीडी। बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद पर हमले के विरोध में प्रदर्शन, डीएम ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। डीएम ऑफिस में रोके जाने पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की, पुलिस ने लाठियां चलाकर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। गोरखपुर में डंपर की चपेट में आने से 17 वर्षीय युवक की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने डंपर में लगाई आग।
0: यूपी के बांदा में चंद्रावल नदी की धारा में बहा मासूम, इलाज कराने ले जा रही थी मां, गोताखोर और एनडीआरएफ बच्ची की तलाश में जुटा। कानपुर नगर निगम की बड़ी लापरवाही, सड़क पर खुले पड़े सीवर के गड्ढे में गिरा डिलीवरी बॉय, गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित प्रसिद्ध आंबोली झरने पर विशाल सांप गिरने से मची अफरा तफरी, अचानक हुई इस घटना से लोगों में दहशत। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान मस्जिद और मदरसे पर पत्थर फेंके जाने के बाद तनाव, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। भोपाल में सनकी युवक ने मचाया आतंक, शादी से इनकार पर युवती के घर फेंका पेट्रोल बम, मंगेतर को भी दी धमकी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हरियाणा के झज्जर में दादरी रोड बाईपास स्थित एक दुकान में आग लगने से हड़कंप, फिलहाल किसी जानहानि की खबर नहीं। हैदराबाद के संगारेड्डी में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 6 बच्चों की मौत। गाजियाबाद में नकली दवाओं का बाजार का भंडाफोड़, 50 लाख की फर्जी सप्लीमेंट्स और संदिग्ध दवाओं की खेप बरामद। जालना में खुले में मास्क की बिक्री पर महानगर पालिका का एक्शन, 14 दुकानें सील, खुले में मास्क बेचने वालों का सामान जब्त।
1: वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा विराट कोहली की टीम में वापसी। शुभमन की कप्तानी वाली वनडे टीम में जडेजा और मोहम्मद सिराज की वापसी, 27 सितंबर को ट्रिवेंड्रम में खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला। वेस्ट इंडीज दौरे पर खेले जाने वाले 5 टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, वैभव सूर्यवंशी को टीम में मिली जगह, श्रेयस अय्यर को टीम की कमान। 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा पहला टी20 मुकाबला, रांची, इंदौर, हैदराबाद, बेंगलुरु में होंगे बाकी मुकाबले। अफगानिस्तान के खिलाफ आज खेला जाएगा तीसरा टी20 मुकाबला, कप्तान श्रेयस ने टीम में बदलाव के दिए संकेत, आज का मैच खेल रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा साल 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अनंत नाग ने कन्नड़, हिंदू, तेलुगु, तमिल, मलयालम और मराठी फिल्मों में किया है काम। अनंत नाग ने 300 से ज्यादा फिल्मों में किया है काम, मालगुडी डे से हुए लोकप्रिय। सरकारी सेंसर बोर्ड का किया पुनर्गठन, 18 सदस्य नए सेंसर बोर्ड में, सिनेमा, टीवी, संगीत, कला जगत की कई हस्तियों को मिलेगी जगह। सेंसर बोर्ड के नए सदस्यों में अभिनेता सुनील शेट्टी, अभिनेत्री प्रीति जिंटा को मिली जगह। नए सेंसर बोर्ड में एक्टर पंकज त्रिपाठी, टीवी एक्टर रूपाली गांगुली और बंगाली सिनेमा के एक्टर प्रसन्नजीत चैटर्जी को मिली जगह।
0: अमेरिकी संसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास हुआ, हाउस में बिल के पक्ष में 262 और विरोध में 159 वोट पड़े। बिल रूस और ईरान को निशाना बनाकर व्यापक प्रतिबंध लगाने में जुड़ा, इसे लिंसे ओग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 का नाम दिया गया। इसका असर भारत और चीन जैसे देशों पर भी पड़ सकता है। ये बिल ट्रंप को रूसी तेल गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक आयात शुल्क लगाने का अधिकार देता है। ट्रंप अगले हफ्ते गल्फ लीडर्स के साथ ईरान पर बातचीत करेंगे, जिसमें ईरान के साथ जंग में अगले कदमों पर बात की जाएगी। ट्रंप प्रशासन इसराइल को $2.8 अरब के सैन्य समझौते के तहत 40,000 शक्तिशाली बम देने की तैयारी में है, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लगाई थी रोक। यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है, सऊदी अरब ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। हुती सैन्य प्रवक्ता ने एक्स पर जारी बयान में दावा किया कि सऊदी F-15 मरीब प्रांत में के एयर स्पेस में सैन्य अभियान चल रहा था, इसी दौरान हुती लड़ाकों ने उसे निशान बनाया। हुतियों ने आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने पिछले एक सप्ताह में यमन के अलग अलग इलाकों में 450 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान में अमेरिकी अधिकारियों और ईरान समर्थित हुती नेताओं के बीच बातचीत के बाद अमेरिका ने यमन में सीधे सैन्य हस्तक्षेप न करने का किया फैसला। अफीम के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा भारत के प्रयासों का स्वागत।
1: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के संसदीय चुनाव में लोगों से मतदान करने की अपील की, कहा आगामी संसदीय चुनाव में मतदान करना यूक्रेन में रूस के युद्ध के समर्थन का पैमाना है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत दक्षिणी यूक्रेन पर किया बड़ा हमला, कीव में मौजूद एक गोदाम को बनाया निशाना। हुती विद्रोहियों ने मक्का पर किसी भी तरह की मिसाइल या ड्रोन हमले से किया इनकार, हुती प्रवक्ता के मुताबिक हमले सऊदी अरब के तेल ठिकानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री को बड़ी बात कही, बोले हॉर्मुज फिर से खोलने के लिए सभी पक्ष उठाएं प्रभावी कदम। अमेरिकी प्रतिबंधों में राहत मिलने के बाद बेलारूस की सरकार से रिहा किए गए 25 राजनीतिक कैदी। अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष में हथियार तैनात किए जाने पर रूसी सरकार का सामने आया बड़ा बयान, बोले अंतरिक्ष में हमलावर हथियारों की तैनाती रोकने के लिए कानूनी समझौता जरूरी है। यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने यूरोपीय सुरक्षा परिषद बनाने का दिया प्रस्ताव। यूरोपीय यूनियन की चीन पर बढ़ती निर्भरता को लेकर ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने सख्त कदम उठाने की बात कही, अक्टूबर तक समाधान निकालने की संभावना। भारतीय नौसेना को टक्कर मारने वाला पाकिस्तानी नौसेना का जहाज PNS हुनैन हुआ बुरी तरह क्षतिग्रस्त। यूरोपीय यूनियन समर्थित हेग की अदालत के कोसोवा के पूर्व राष्ट्रपति हाशिम थाची को सुनाई गई 25 साल की सजा, फैसले के खिलाफ जनता ने जताया विरोध।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 76 साल के हो गए हैं। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा दिवस मना रही है और इस मौके पर देश भर में महाआरती, रक्तदान शिविर, हवन पूजन और बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। अमित शाह सहित तमाम नेताओं और मंत्रियों ने पीएम मोदी को बधाई संदेश भेजा है। कार्यकर्ता जोश में दिखाई दे रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। मेगा जश्न की शुरुआत हो चुकी है वडनगर के साथ, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम का आगाज किया। वहीं नितिन नवीन ने रक्तदान शिविर में रक्त देकर हिस्सा लिया।
1: तो वडनगर में आज गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे, उन्होंने वहां पर लोगों को संबोधित भी किया और कहा कि आने वाली 3 पीढ़ियों के लिए ये अब लक्ष्य होगा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते पर चले। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के काम करने की क्षमता, उनको मिले सम्मानों के बारे में कहा और बताया कि उनके जैसा कोई नेता नहीं हुआ है। ये तस्वीरें हम आपके लिए वडनगर की ही लेकर आ रहे हैं, जिस वक्त वहां पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। इसके बाद उन्होंने वहां पर महाआरती की, जो शर्मिष्ठा तालाब है उसमें, उसके सामने महाआरती की। वहां से तालाब से पानी लेकर वाराणसी तक ले जाया जाएगा। एक बाइक रैली होगी जहां से महाअभिषेक किया जाएगा उस पानी के साथ।

0: तस्वीर वडनगर गुजरात की, जहां से शुरू हो रहा है आज का मेगा इवेंट और इसकी शुरुआत की है गृह मंत्री अमित शाह ने, जो वहां पर पहुंचे थे। और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल होने आए, उनका स्वागत वहां पर डमरुओं के साथ किया गया। आज जो कार्यक्रम किए जाएंगे वो प्रधानमंत्री मोदी की जन्मभूमि वडनगर जो गुजरात में है, वहां से लेकर वाराणसी जो उनकी कर्मभूमि है वहां तक आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों और शहरों में भी प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, फिर वो रक्तदान शिविर हो या फिर हवन पूजन हो।
1: पावन यात्रा ने प्रस्थान करवा माटे एक भारत श्रेष्ठ भारत ना शिल्पी अने गृहमंत्री अने देश ना प्रथम सरकार मंत्री
2: से कई कार्यक्रमों का आगाज हो चुका है। शुरुआत वडनगर से हुई जहां पर गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के सीएम के साथ नजर आए, साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी एकनाथ शिंदे भी इस उपलक्ष्य पर मौजूद रहे। यहां पर बाइक रैली की शुरुआत की गई जो वडनगर से वाराणसी तक जाएगी और एक बाइक रैली वाराणसी से वडनगर तक पहुंचेगी। कई बाइक सवार इसमें हिस्सा ले रहे हैं, बताया जा रहा है तकरीबन 500 बाइक सवार इस बाइक रैली में हिस्सा लेने वाले हैं। ये जन्मदिन का अवसर दरअसल एक मेगा इवेंट के तौर पर प्लान किया गया है, देश भर में इसमें कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कहीं पर कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर भी इस पूरे जन्मदिन के जश्न में हिस्सा ले रहे हैं। अभी ये वडनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़े इवेंट की तैयारी कर ली गई है। स्टेज पर इस वक्त तमाम गणमान्य मौजूद हैं और यहीं से आगाज किया जाएगा। देखिए झंडे आ चुके हैं, बाइक रैली को झंडा दिखाया जाएगा, ये फ्लैग ऑफ की तैयारी है और इसके बाद ही बाइक रैली शुरू हो जाएगी। देखिए भारत माता की जय का उद्घोष आप सुन रहे हैं। सेवा संकल्प अभियान, और सेवा संकल्प अभियान दरअसल एक महीने चलने वाला है। ये मेगा इवेंट बीजेपी का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर से शुरुआत इसकी हो रही है।
0: तो करीब 250 बाइक्स जिन पर सवार रहेंगे करीब 500 लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता युवा जो इस बाइक रैली में हिस्सा ले रहे हैं। फ्लैग ऑफ का वक्त आ गया है, फ्लैग ऑफ खुद आप देख सकते हैं गृह मंत्री के हाथों से हो रहा है। ये सारी बाइक्स एक एक करके निकल रही हैं वहां से, लंबा सफर तय करेंगी, वाराणसी तक जाएंगी। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर को लेकर बीजेपी में कहीं ना कहीं से एक तरीके से नया उत्साह भरने की कोशिश है। आने वाले चुनाव भी हैं जिस दौरान नया जोश काम आएगा, कार्यकर्ताओं का एकजुट होना, उनके अंदर नई ऊर्जा आना ये काम आएगा। और ये बाइक रैली का समापन होगा वाराणसी में, तो अहम इसलिए भी क्योंकि अब यूपी के चुनाव भी जल्द ही आने वाले हैं, ऐसे में वाराणसी तक जा रही ये रैली अहम हो जाती है। तो आइए सुन लीजिए कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है जहां तक ये रैली जाने वाली है।
3: भगवान विश्वकर्मा की आज पावन जयंती है, वहीं दूसरी ओर नए भारत के शिल्पी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज पावन जन्मदिन है। मैं बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरा से श्री विश्वकर्मा पंचायत मंदिर में भगवान विश्वकर्मा के पावन चरणों में नमन करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस पावन जन्मदिन के अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से जन्मदिन की हृदय से बधाई देते हुए नए भारत और विकसित भारत की उनकी संकल्पना को उनके नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी साकार होते हुए देखेंगे, इस विश्वास के साथ उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना बाबा गोरखनाथ और भगवान विश्वकर्मा से करता हूं।
2: रुकना होगा यहां से ब्रेक के लिए, फौरन हो गया हाजिर, टिकते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर किधर
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
7: AU सोच बदलो और बैंक भी।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: और वही कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
4: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: विमल बोलो जुबां केसरी।
8: इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहां तक प्रश्न है। एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहां पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं।

0: कांग्रेस और विपक्षी दलों का दावा है कि यूपीआई पर 2000 रुपये से ज्यादा के लेन देन को एमडीआर के दायरे में लाने की आशंका इसलिए चिंता बढ़ा रही है क्योंकि उनके मुताबिक आम लोगों के लिए बैंकिंग सेवाएं पहले ही महंगी हो चुकी हैं। आज बैंकिंग से जुड़ी कई सेवाओं पर ग्राहकों को अलग अलग तरह के चार्ज देने पड़ते हैं। डेबिट कार्ड या एटीएम की सालाना फीस करीब 150 से 300 रुपए तक हो सकती है। दूसरे बैंक के एटीएम से तय मुफ्त सीमा के बाद कैश निकालने या ट्रांजैक्शन करने पर करीब 21 से 23 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लग सकता है। खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने पर कुछ बैंकों में अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है। ब्रांच में भी तय सीमा से ज्यादा लेन देन करने पर चार्ज लग सकता है। निजी बैंकों में न्यूनतम बैलेंस की शर्त पूरी नहीं करने पर 100 से 500 रुपए तक का शुल्क लगाया जा सकता है। चेक बाउंस होने पर भी बैंक के नियमों के मुताबिक 150 से 600 रुपए तक का चार्ज हो सकता है। मोबाइल एसएमएस अलर्ट, अतिरिक्त चेकबुक और बैंक के जरिए किए जाने वाले एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस जैसे लेन देन पर भी अलग अलग शुल्क हो सकते हैं। यहां तक कि कुछ बैंक खाते को बंद करने के लिए भी चार्ज लेते हैं। विपक्षी दलों का एक और दावा है कि 2014 के बाद बैंकिंग सेवाओं से जुड़े शुल्कों में बढ़ोतरी हुई। उनके मुताबिक एसएमएस अलर्ट, एटीएम ट्रांजैक्शन, न्यूनतम बैलेंस, ब्रांच ट्रांजैक्शन और डेबिट कार्ड जैसे चार्ज पहले की तुलना में बढ़े हैं। दूसरे बैंक के एटीएम से मुफ्त लेन देन की सीमा भी अब तय है। हालांकि बैंकिंग शुल्क बैंक, खाते के प्रकार और सेवा के नियमों के हिसाब से अलग अलग होते हैं, इसलिए हर ग्राहक पर एक जैसे चार्ज लागू नहीं होते। अब यूपीआई के 2000 रुपये से ज्यादा के लेन देन पर एमडीआर का मुद्दा कितना असर डालता है, ये आने वाले नियमों और उनके लागू होने के तरीके पर निर्भर करेगा। फिलहाल बहस इसी पर है कि डिजिटल पेमेंट बढ़े लेकिन उसका अतिरिक्त बोझ आम ग्राहक पर ना आए।
1: ये अजमेर के कांग्रेसी पार्षद हैं। अजमेर के नगर निकाय चुनाव में मुकाबला बराबरी पर क्या छूटा, इन पार्षदों की बल्ले बल्ले हो गई। कांग्रेस ने अपने पार्षदों को टूट के डर से रिजॉर्ट में ठहराया है, यानी कि इनकी बाड़े बंदी की जा रही है। रिजॉर्ट में इनके लिए मनोरंजन के तमाम साधन पेश किए गए हैं। मकसद है इन पर निगाह रखना, इनकी पहरेदारी करना। साथ ही ने घुट्टी पिलाई जा रही है कि लिफाफे आएंगे, पैसों का लेन देन होगा, लेकिन उसमें फंसना नहीं है।
2: 36 साल में अजमेर का विकास कुछ भी नहीं हुआ। भ्रष्टाचारी निगम था पूरा, मेयर भ्रष्टाचार थे, भ्रष्टाचारी थे, और साथ ही जो कहते हैं कि साहब ये स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है, नील है। तो 500 करोड़ की योजना थी सेवन वंडर्स की, चाहे वो फूड कोर्ट थी, सब मतलब पैसा का बर्बादी हुई है। अब अजमेर का चहुमुखी विकास होगा।
1: कांग्रेस का ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। कांग्रेस बसों में भरकर अपने पार्षदों को खरीद फरोख्त के दायरे से दूर ले जा रही है, इस डर से कि उनके पार्षदों में सेंध ना लग जाए।
3: पैसे का लेन देन होता है, लिफाफे बढ़ते हैं, वो सब आप दूर करेंगे। साथियों, मैं एक बात आपको बता दूं कि मैंने कल भी परसों भी यही कहा था कि अनुशासन सबसे बड़ा है। आपको किसी भी हालत में, चाहे कोई भी हो, आपको आज से लेके 21 तारीख तक कहीं नहीं जाना है, न मोबाइल यूज करना है, न किसी से बात करनी है।
1: अजमेर में कांग्रेस को अपने पार्षदों की सुरक्षा करनी पड़ रही है, तो फतेहपुर में बीजेपी ने बसों में भरकर अपने पार्षदों को होटल लाकर उनकी बाड़ेबंदी कर दी। कुछ ऐसी ही स्थिति अलवर की भी है, जहां किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। यहां भी बीजेपी कांग्रेस दोनों को अपने पार्षदों के टूटने का खतरा सता रहा है, लिहाजा यहां भी पार्षदों की जबरदस्त बाड़ेबंदी की जा रही है। शरद कुमार, जयपुर आज तक।

0: 10 साल के हो गए हैं। बीजेपी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर सेवा दिवस मना रही है। आज बीजेपी एक महीने के कार्यक्रम की शुरुआत कर चुकी है। मुख्य आयोजन प्रधानमंत्री की जन्मभूमि वडनगर और कर्मभूमि वाराणसी में, दोनों जगहों पर सेवा संकल्प बाइक यात्रा निकाली जाएगी।
1: वडनगर में 250 बाइक में सवार होकर 500 लोग वाराणसी पहुंचेंगे और इसी तरह वाराणसी से निकली बाइक रैली वडनगर में संपन्न होगी। बाइक यात्रा का समापन 7 अक्टूबर को होगा। इसी दिन सार्वजनिक सेवा में पीएम मोदी के 25 साल पूरे हो जाएंगे। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर आज शाम देशभर में आशीर्वाद का दिया जलाया जाएगा।
2: चौदह में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 26 में 140 करोड़ भारतीय ये उत्साह और संकल्प के साथ, एक आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में समग्र विश्व में भारत सर्वप्रथम होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता का सामूहिक आत्मविश्वास खड़ा करना ये किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी कसौटी है, और वो भी तब जब जनता गहरी निराशा में डूबी हो। उन्होंने गहरी निराशा के गर्त से जनता को बाहर निकालकर नरेंद्र मोदी जी ने जनता को आत्मविश्वास से लवरेज कर 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत की यात्रा के साथ जोड़ने का काम किया।
0: इस बीच तीन जगहों की तस्वीरें देखिए। जन्मभूमि वडनगर में जहां पर जश्न की शुरुआत बाइक रैली के साथ हो चुकी है, कर्मभूमि वाराणसी जहां पर आरती और पूजा का आयोजन है, वहीं धर्मभूमि उज्जैन में दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। समर्थ में सहयोगी जुड़ गए हैं सीधे वाराणसी से हमारे साथ। समर्थ, वहां पर भी बाइक रैली का आगाज हो चुका है क्या?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उसे लेकर सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत है, और इस वक्त मैं जिस बाइक पर मौजूद हूं, ये बाइक जाएगी सीधे वाराणसी से वडनगर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
0: ठीक है, आप रुकेंगे, सीधे आपको ले चलेंगे सेमिकॉन कॉन्क्लेव में जहां पर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं।
4: थैंक यू। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, जितेंद्र प्रसाद जी, उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स, सीईओस, डेलीगेट्स, और वर्चुअली हमारे साथ सैकड़ों यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स के, भारत के भविष्य ऐसे मेरे नौजवान साथियों, यहां उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में आए हुए उत्साहित नौजवानों, देवी और सज्जनों, सेमिकॉन इंडिया का ये 5वां एडिशन हो रहा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। विदेश से जो अतिथि आए हैं, मैं उनका भारत में विशेष स्वागत करता हूं। साथियों, आज विश्वकर्मा जयंती का दिवस भी है। मैं सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है, और संयोग देखिए, आज से ही सेमिकॉन इंडिया की शुरुआत हो रही है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है। फ्रेंड्स, विकसित भारत बनाने के लिए हर देशवासी एक कमिटमेंट के साथ जुटा है। अगर हम बीते 15 दिनों की ही देखें, सिर्फ मैं 15 दिनों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, तो अंदाजा लगता है कि भारत किस दिशा में किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी सितंबर में ठीक 10 दिन पहले मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ। इसमें एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी के जरिए इंक्लूसिव फाइनेंस पर चर्चा हुई। इसी दौरान भारत में करीब 3000 किलोमीटर का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया। ये मैं सितंबर के 10 दिन की बात कर रहा हूं दोस्तों, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। इससे देश में फ्रेट मूवमेंट तेज होगा, लॉजिस्टिक बेहतर होगा और मैन्युफैक्चरिंग को भी नई ताकत मिलेगी। साथियों, इसी कालखंड में, इसी सितंबर में ही भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है। और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है। यानी एक तरफ भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, दूसरी तरफ दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है। साथियों, भारत की इन उपलब्धियों के बीच सेमिकॉन इंडिया का यह आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसका पहला एडिशन 2022 में हुआ था और तब से हम हर वर्ष मिलते हैं, लेकिन हर वर्ष हमारी चर्चा का विषय बदलता गया है। जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की थी, इसके बाद के एडिशंस में बात आगे बढ़ी, अगले एडिशंस में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे, फाइल पर साइन से लेकर शिलान्यास की बातें होने लगी। पिछले साल हमने पायलट लाइन्स और टेस्ट चीफ पर चर्चा शुरू की, कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप्स देश और दुनिया के कस्टमर्स तक पहुंचना शुरू हुई है और अभी अभी मोहाली और सूरत में दो और प्लांट्स में कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। फ्रेंड, किसी भी देश के लिए इतने कम समय में यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। ये सेक्टर ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री लगाई और काम पूरा हो गया। इसमें टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बनाने में दशकों लगते हैं। दुनिया में जहां भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बने हैं वहां ये पूरा इकोसिस्टम दशकों की मेहनत के बाद तैयार हुई है। लेकिन भारत ने आपके सहयोग से चिप डिजाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल इकोसिस्टम, टेस्टिंग कैपेबिलिटी हो, इन सभी पर एक साथ काम किया और सफलता हासिल करके दिखाई है। हमारी इस यात्रा में बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स आप सभी इंडस्ट्री लीडर्स रहे हैं। आप भारत की सफलता के पिलर्स हैं। आप हमारी इस जर्नी के पार्टनर्स हैं। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है। लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चलते हुए हमने इस सेक्टर में और भी रिफॉर्म्स किए हैं। अब इंटरनेशनल कंपनीज भी हमारे स्टार्टअप के साथ इंडियन डिजाइन कंपनीज और ओसीआई ओन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। यानी पॉलिसीज हो, फंड्स हो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, आपके प्रोजेक्ट की सफलता के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हर कदम भारत सरकार उठा रही है। साथियों, हमारा प्रयास है कि भारत में फैबलेस कंपनीज की ग्रोथ हो और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का क्रिएशन भी भारत में ही हो। अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनाने हो, सिलिकॉन फोटोनिक्स को इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना हो, एआई एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सब जरूरी है और इस दिशा में हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसके लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो तैयारी हो चुकी है। सप्लाई चेन की मजबूती पर भी भारत का बहुत अधिक फोकस है। इसके लिए अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। यहां जो इक्विपमेंट कंपनीज के लीडर्स हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी इसका लाभ उठाने में पीछे मत रहिएगा। केमिकल, गैसेस और मटेरियल्स के लिए उसके लीडर्स के लिए भी भारत में सुनहरा अवसर उनका इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं कि पूरा इकोसिस्टम एक साथ ग्रो करे। इसके लिए डिमांड पाइपलाइन भी तैयार है। अभी तक 12 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल चुका है और नेक्स्ट फेज में ये दायरा और बढ़ेगा। साथियों, भारत में आप सभी के लिए एक और एडवांटेज यूथ का है, टैलेंटेड स्किल्ड मैनपावर का है। आज हमारे पास इंजीनियरिंग टैलेंट का बहुत बड़ा पूल है। भारत में हजारों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और भारत हर साल लाखों इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। एक बार मुझे अमेरिका की एक कंपनी के सज्जन मिलने आए थे, तो बोले हमारे यहां अगर इंजीनियर्स के लिए भर्ती करना चाहें, उनको बुलाएं, तो एक कमरे में आ जाए, इतने लोग आते हैं। और बोले हिंदुस्तान में बुलाए तो फुटबॉल का मैदान भी छोटा पड़ जाता है। ये ताकत है भारत की। और साथियों, चीप डिजाइनिंग के लिए तो बहुत बड़े पैमाने पर स्किलिंग का काम चल रहा है। अभी मुझे यहां आने से पहले यहीं पर कैंपस में इंडस्ट्री से जुड़े कुछ युवा साथियों से मैंने मुलाकात भी की है, सारे स्टूडेंट्स से। इन स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी डिजाइन की गई चिप्स उपहार में दी है। हमारी सरकार 1,00,000 इंजीनियरिंग छात्रों को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए ट्रेन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। और अभी आपको बताया गया, इसमें से 70,000 से ज्यादा नौजवानों को ट्रेनिंग दी भी दे चुके हैं हम लोग। इतना बड़ा टैलेंट पूल आप सभी के लिए भी एक तरह से गोल्ड माइन से कम नहीं है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच मैं आज युवाओं से भी आह्वान करूंगा, जो यंग टैलेंट्स भारत में रिसर्च कर रहे हैं वे आगे आएं, जो युवा विदेशों में रिसर्च कर रहे हैं वे भी भारत में एडवांस टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट से जुड़े। मैं इंडस्ट्री लीडर से आग्रह करता हूं, आप देश में R&D को लीड करें। इसमें इंडस्ट्री का भी फायदा है और भारत की युवा शक्ति को भी इससे ताकत मिलेगी। साथियों, आगे बढ़ती हुई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। आप सभी उनसे परिचित हैं। सालों तक आपकी इंडस्ट्री में लोग ट्रांजिस्टर की साइज की बात करते थे। जैसे जैसे ट्रांजिस्टर छोटे हुए, कंप्यूटिंग उतनी ही फास्ट और एफिशिएंट होती गई। आज भी ये सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से इस इंडस्ट्री के सामने कुछ नए सवाल भी खड़े हुए हैं। बीते दो वर्षों में ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की ग्रोथ 20% से ज्यादा रही है और इस ग्रोथ में बहुत बड़ा एआई से पैदा हुई डिमांड का है। यानी आज अगर आप एआई पर काम कर रहे हैं तो चुनौतियां सिर्फ ये नहीं है कि चिप के अंदर क्या है, बल्कि चुनौती ये भी है कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मेमोरी को प्रोसेसर के और करीब लगाना हो, कई सारी चिप्स को इस तरह जोड़ना हो कि वे मिलकर एक ही सिस्टम की तरह काम करें, बिना किसी डिले के बहुत बड़ी मात्रा में डेटा यहां से वहां पहुंचाना हो, हीट और पावर को मैनेज करना हो, ऐसी अनेक चुनौतियां सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने है। इन चुनौतियों के बीच दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई और भरोसेमंद, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, नई और भरोसेमंद लोकेशंस की भी जरूरत सबसे ज्यादा हो रही है। और भारत, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत इसके लिए खुद को लगातार तैयार कर रहा है। साथियों, आज की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने एक और बड़ा विषय एनर्जी सिक्योरिटी का भी है। एआई के लिए जो चिप बन रही हैं, उनका इस्तेमाल एआई डेटा सेंटर्स में हो रहा है। इन डेटा सेंटर्स में हजारों हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे जैसे एआई का विस्तार होगा, कंप्यूटिंग पावर की जरूरत भी उसी गति से बढ़ेगी, और कंप्यूटिंग पावर जितनी बढ़ेगी बिजली की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। इसलिए पावर सेक्टर में निवेश भी बहुत जरूरी है। हमारे प्लांट जहां है वहां पर समय पर बिजली मिले, जरूरत के समय जरूरत की मात्रा में मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत आज पावर सेक्टर में भी बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। बीते दशक में हमारी इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट से बढ़कर 160 गीगावाट से ज्यादा हो गई है, 2 से 160। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला गया है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर भी काम कर रहे हैं। बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। फ्रेंड्स, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। कुछ वर्ष पहले ही हमारे संविधान को 75 साल हुए हैं। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है। और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एस्पिरेंस आपके सामने है और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन के लिए मेरी ढेर शुभकामनाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
5: आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आत्मनिर्भरता के इस महायज्ञ में पूरे विश्व को एक नया विश्वास देने और भारत के सामर्थ्य को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए आपका भी हम अनंत आभार व्यक्त करते हैं। Your vision has turned raw ambition into global leadership. Ladies and gentlemen, put your hands together one more time for the leader who is shaping our tech future, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi.
6: तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे और दुनिया पर भारत का भरोसा बढ़ा है। यंग एनर्जी को आगे आने की उन्होंने अपील भी की और उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर का दूसरा फेज जारी है, कैसे भारत को आगे ले जाना है और उसमें युवाओं की अहमियत कितनी ज्यादा हो जाती है, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में हम कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, इंडस्ट्री लीडर में भारत कैसे विकास पिलर के तौर पर काम कर रहा है, यह जानकारी पीएम मोदी की तरफ से की गई। और आइए 12 बजे 12 रिपोर्टर की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर थोड़ी देर में वाराणसी से सेवा संकल्प बाइक यात्रा रवाना होगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाराणसी पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर तो आप देख रहे हैं, पूजा पाठ चल रहा है, काशी विश्वनाथ मंदिर है। 250 बाइक से भारतीय जनता युवा मोर्चा, इनके 500 कार्यकर्ता पीएम मोदी की कर्मभूमि वाराणसी से उनकी जन्मभूमि वडनगर पहुंचेगी और वडनगर से वाराणसी भी होगी। 7 अक्टूबर को ये यात्रा वडनगर में खत्म होगी और ये वही दिन है जब सार्वजनिक सेवा में पीएम मोदी 25 साल पूरे कर लेंगे। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो देश के अलग अलग हिस्सों में मेगा जश्न मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप ये देखिए लड्डू खिलाए जा रहे हैं और यहां पर आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता और ये जो वो युवा हैं जो बाइक से भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो वडनगर तक जा रहे हैं तो उनको मिठाई खिलाते हुए, लड्डू देते हुए, लड्डू का प्रसाद देते हुए, चिराग पासवान भी आप यहां पर देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री को, सभी युवाओं को ये प्रसाद वितरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76 साल के हुए हैं, बीजेपी का बेगा जश्न और वाराणसी से वडनगर, वडनगर से वाराणसी जो बाइक यात्रा निकाली जा रही है उसकी तैयारी हो चुकी है और देखिए इसका समापन जो ये यात्रा है जो वाराणसी से आज निकल रही है ये वडनगर कब पहुंचेगी, 7 तारीख को। 7 तारीख को आप समझिए कि पूरे 25 साल पूरे हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ये सार्वजनिक सेवा में पीएम मोदी के 25 साल पूरे होंगे। समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बात कर लेते हैं उनसे। समर्थ, ये बताइए वाराणसी से क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, यात्रा निकलने वाली है और उसको लेकर क्या खास इंतजाम है?
3: हिमांशु, देखिए सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत बनारस में आज से हो रही है और जो बाइक्स हैं वो लग चुकी हैं। पहले आपको मैं कलश दिखाऊंगा, ये कलश देखिए यहाँ पर लग चुके हैं, जितनी पवित्र नदियां हैं उत्तर प्रदेश की उनसे ये जल इकट्ठा किया जा रहा है और इस तरह से प्रतीकात्मक तौर पर इस तरह के कलशों में भरकर ये वडनगर जाएगा। इसमें गंगा, यमुना, बेतवा आदि जो नदियां हैं वो इस तरह के प्रतीकात्मक कलशों में, एक नहीं है कई सारे कलश आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। इसके अलावा एक यहाँ पर LEDs लगा दिए गए हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा आदि जो है है, नारे वो दिए गए हैं। इसके अलावा जो बाइक्स हैं वो आपको मैं दिखाऊं, 500 बाइक्स जो हैं वो लगकर यहाँ तैयार हो गई हैं, जिनकी चर्चा सबसे अधिक थी। आप देखें तस्वीरों में अगर, तो ये वो बाइक्स हैं जो यहाँ पर लग चुकी हैं। इनमें एक एक हेलमेट दिए गए हैं और आगे पीछे यानी कि दो लोग एक बाइक पर सवार होंगे, 500 लोग कुल मिलाकर जाएंगे। और अगर पीछे तक दिखाइए, कैमरामैन संजय से कहूंगा पीछे तक दिखाइए, एक वाइट फ्रेम दिखाइए, इतनी 500 बाइक्स हैं। ये वडनगर तक जाने वाली ये बाइक्स हैं। और आप समझे, मैं अगर खुद इस पे सवार हूं, आगे आइए जरा सा, आगे से दिखाइए एक बार, क्योंकि सामने क्या है, रुद्राक्ष सेंटर है जहां मुख्यमंत्री आ रहे हैं और राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं और वेंकैया नायडू, कुल मिलाकर ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू पहुंच रहे हैं। और ये जो बाइक्स है जिस पर मैं सवार हूं इस वक्त, ये बाइक्स यानी कि ये हेलमेट्स, इस तरह के हेलमेट्स यहाँ दिए गए हैं, ये यहाँ से बाई रोड चलेंगी और सीधे जाएंगी वडनगर, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्म भूमि से जाएंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मभूमि तक। जो जानकारी यहाँ पर मिली है, जगह जगह खाने पीने की व्यवस्था होगी, क्या इंतजाम होंगे वो भी समझेंगे। और बड़ी बात यहाँ पर यह है, एक डाइवर्सिटी दिखाई गई है, यानी कि सामने एलईडी दिखाई एक बार, सामने जिस तरह की एलईडी यहाँ लगी हुई है, उसके अलावा तमाम इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर। तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो भी इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं भारी संख्या में। सामने दिखाइए कि किस तरीके से बलून जो है वो लगा दिए गए हैं, काफी पुख्ता पुलिस व्यवस्था भी है, लगातार पुलिस की गश्त इस पूरी जगह पर हो रही है, चप्पे चप्पे पर बनारस में आज पुलिस लगी हुई है। राजनाथ सिंह ऑलरेडी बनारस पहुंचे हुए हैं, जैसा कि तस्वीरों में देखा, काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे हैं और कुल मिलाकर भगवान शिव को जल अर्पित किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर। और यहां पर आपको दिखाऊंगा, तो ये है रुद्राक्ष का वो सेंटर, यहां पर आप देखें तो यहां पर अलग तैयारियां की गई हैं, यहां पर कई बलून्स लगा दिए गए हैं, सेवा संकल्प अभियान जो है आज रुद्राक्ष सेंटर का पूरा थीम दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कार्य किए हैं वो दिखाए गए हैं, यहां पर आप दिखा दें तो सेवा संकल्प अभियान 25 वर्षों के अविरल सेवा का सम्मान, ये थीम दिया गया है। और छोटे छोटे बच्चे महिलाएं सब यहां पर देखिए, इस तरीके के बलून्स हैं, कुछ इस प्रकार प्रधानमंत्री का जो जन्मदिन है वो वाराणसी में मनाया जा रहा है। और ये देखिए परिवार है, क्या नाम है आपका?
7: मेरा नाम हुमा बानो है, मैं काशी की रहने वाली हूँ और आज माननीय मोदी जी का जन्मदिन मैं बड़े उत्साह से मना रही हूँ। और काशी की मुस्लिम बहनों भी इस चीज को लेकर बड़े खुश हैं, उत्साहित है कि माननीय मोदी जी ने जो ट्रिपल तलाक जैसी समस्या का अंत किया है, इससे बहुत काफी मतलब खुश हैं हम महिलाएं। और हम भी आगे चाहते हैं कि हमारी कुछ समस्या और है जो माननीय मोदी जी दोबारा हमारे सांसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री
3: मुख्यमंत्री योगी और राजनाथ सिंह आएंगे यहाँ पर, मुलाकात करने का मन है सामने से?
7: मैं तो एक बार मिल भी चुकी हूँ माननीय योगी जी से, और फिर भी इच्छा है कि एक बार मैं माननीय योगी जी से फिर मैं मिलूं।
3: तो हर समुदाय के लोग जो हैं वो एकत्रित हुए हैं, क्योंकि ये वाराणसी है, यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम तहजीब है वो भी जानी जाती है। ये रुद्राक्ष सेंटर दिखाएं जरा, यहाँ पर भी पूरी तैयारी है और यहीं पर वो 12 बजे से मुख्य कार्यक्रम होना है कुछ देर में, जब योगी आदित्यनाथ, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं यूपी के, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले जो है जो तैयारियां हैं वो पुख्ता प्रशासन और पुलिस के तरफ से कर ली गई हैं। लेकिन सबसे जो मुख्य आकर्षण है, ये देखिए बीजेपी के भी आपको यहाँ पर तमाम जो है वो झंडे यहाँ पर नजर आएंगे, कुछ इस तरह की तैयारियां यहाँ पर पूरी पुख्ता कर ली गई हैं। लेकिन बड़ी बात ये है ना कि सबसे जरूरी, जो सबसे आकर्षण का केंद्र है वो बाइक्स हैं, जो संकल्प यात्रा निकल रही है। आप समझ लीजिए कि इतने राज्यों से होती है,
6: बिल्कुल वो तस्वीरें आपने बहुत अच्छे से समझाई हैं, दिखाई हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे समर्थ। वहीं से पहले पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचार्य आश्रम और श्री शास्त्रार्थ महाविद्यालय के 76 बटकों ने 76 लीटर केसर जल और दूध से माँ गंगा का अभिषेक किया। और ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर 76 बटकों का आपको दिखाई दे रहा हूँ और ये 76 लीटर केसर जल और दूध से माँ गंगा का अभिषेक कर रहे हैं।
8: मोदी का 76वां जन्मदिवस इस बार इसलिए बेहद खास है क्योंकि उनके 25 वर्ष सार्वजनिक जीवन में बिताने के बाद सार्वजनिक जीवन के नाम समर्पित करने का ये 25वां वर्ष है। और यही कारण है कि उनके अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशीवासी बेहद ही खास और अनोखे अंदाज में उनका जन्मदिवस मना रहे हैं। इस समय हमारी मौजूदगी वाराणसी के अहिल्याबाई घाट पर है, जहां 76 वेद पाठी बटकों के द्वारा शंखनाद करते हुए और अपने प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद की तस्वीर के साथ डमरू वादन के साथ माँ गंगा और काशी विश्वनाथ से प्रार्थना की जा रही है। उनकी दीर्घायु की, उनके स्वस्थ जीवन की, ताकि प्रधानमंत्री यूं ही निरंतर देश की सेवा करते रहे और काशी वासियों का साथ उनके साथ पूरी तरह बना हुआ है।
6: और देखिए 12:12 रिपोर्टर में अगली जो रिपोर्ट है वो वडनगर से। पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनकी जन्मभूमि वडनगर से वाराणसी के लिए सेवा संकल्प बाइक रैली को रवाना किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई, 250 बाइक पर सवार 500 सेवा यात्रियों को रवाना किया। अब इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह शर्मिष्ठा झील पर महाआरती में शामिल हुए। वहां से पैदल वो हटकेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के बाद बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई गई।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पे आज उनके जन्मस्थली वडनगर से कर्मभूमि वाराणसी तक जो है वो बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरी झंडी दिखाई, साथ ही एनडीए ने जो है अपनी अपनी शक्ति बताई है। आज एनडीए के दो घटक दल जो साथी सहयोगी है, एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, दोनों यहां पे मौजूद रहे और ये पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री की जनसेवा की बात की, किस तरह प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन को सुधारा। खुद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश को ऐसा नेता मिलना मुश्किल है जिसने जो है वो परिवार को छोड़कर देश को अपना परिवार बनाया और देश के लिए काम किया। ये जो बाइक यात्रा निकली है, ये बाइक यात्रा जो है वो शर्मिषा तालाब का जल लेकर काशी पहुंचेगी और गंगा जल और साथ ही काशी विश्वनाथ में जो है वो चढ़ाया जाएगा। तो ये एक जन्मभूमि से कर्मभूमि तक का कनेक्शन स्थापित किया गया, साथ ही युवाओं को जोड़कर युवाओं को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी भाजपा के द्वारा की जा रही है।
1: अब इस मौके पर गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से क्या कहा गया वो भी हम आपको दिखाते हैं।
2: मैं आज हाटकेश्वर महादेव के चरणों में मोदी जी के दीर्घायुष और स्वास्थ्य पूर्ण लंबे जीवन के लिए करबद्ध निवेदन करता हूं। मित्रों, आज कुछ क्षण के बाद यहां से एक यात्रा का शुभारंभ होगा। इस सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है और ये यात्रा निकलेगी वडनगर से वाराणसी तक। मोदी जी की जन्मभूमि से लेकर मोदी जी की कर्मभूमि तक और ये यात्रा हाटकेश्वर महादेव के प्रांगण से निकलकर काशी विश्वनाथ के चरणों तक पहुंचेगी। और ये यात्रा में 7 राज्य हमारे 300 और 300 वाराणसी से आज ही निकलेंगे। 600 बाइकर्स 7 राज्य को कवर करते हुए अनेकानेक गांवों में ये 25 साल के मोदी जी के काम का संदेश पहुंचाते हुए निकलेंगे। ये 25 साल में इसलिए कह रहा हूं कि आज मोदी जी का जन्मदिन है, मगर 7 अक्टूबर को वो दिन है जिस दिन मोदी जी राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में 25 साल पूर्ण करेंगे।
1: और देखिए 12:12 रिपोर्टर में अगली जो रिपोर्ट है वो है दिल्ली से, और इस मौके पर दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर में भी 108 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया जो आप इस वक्त देख रहे हैं, और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस यज्ञ में आहुति दी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 76वां जन्मदिन है और ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से कई कार्यक्रम जो है वो आज से शुरुआत की जा रही है। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर की यहाँ तस्वीरें हैं जहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री 108 कुंडिया हवन के अंदर जो है वो शामिल हुई है। इसके बाद कई अलग अलग कार्यक्रम जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से रखे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना को लेकर के मुख्यमंत्री खाटू श्याम मंदिर पहुंची, वहां पूजा की और उसके बाद हवन में शामिल हुई है। उसके बाद श्रम भवन का जो है वो आज उद्घाटन करेंगी। उसके बाद अगर बात की जाए तो मेगा ब्लड डोनेशन कैंप जो है उसका आयोजन किया गया है और आज कर्तव्य पथ पर 1,00,000 से ज्यादा दिए जो है वो जलाए जाएंगे और 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है वो पूरी दिल्ली में जो है वो किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के पिछले 25 साल के जो सेवा संकल्प के रूप में उनके कामकाज को जो है दिल्ली की जनता के बीच में घर घर तक ले जाने की कोशिश जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से की जाएगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कि पहुंची हैं इस वक्त हवन कुंड में शामिल होने के लिए, तस्वीरें जो है दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर से हैं। कैमरा पर्सन किशन के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।
1: तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर शहर शहर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी रक्तदान शिविर में रक्तदान करने पहुंची और ये रक्तदान करते वक्त तस्वीर आपके सामने, और भी कई लोगों ने रक्तदान किया इस दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में अलग अलग जगह पर अलग अलग शहर में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
4: सेवा भाव के जरिए
3: पूरी दिल्ली सरकार और कैबिनेट जो है वो इस वक्त रक्तदान जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में, जहां पर आपको दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, उनके साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर रविंदर इंद्रराज भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद सभी जो मंत्री है वो इस वक्त रक्तदान शिविर में पहुंचे और एक मेगा कार्यक्रम जो है वो आज किया गया है प्रधानमंत्री को लेकर के, जन्मदिन दिवस को लेकर के। सुबह हवन और उसके बाद श्रम भवन और उसके बाद रक्तदान शिविर और शाम को लगभग 1.25 लाख दिए जो है वो पूरे कर्तव्य पथ पर जो है वो जलाए जाएंगे। ये त्यागराज स्टेडियम की ये तस्वीर है, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से दिल्ली के तमाम अलग अलग जो हॉस्पिटल्स हैं उनके डॉक्टर्स के द्वारा यहाँ पर मेगा कैंप जो है वो लगाया गया। लगभग 3,000 डोनर्स के द्वारा ब्लड जो है वो डोनेट किया गया, उनको सर्टिफिकेट्स और उनको डोनर कार्ड भी जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के जो है त्यागराज स्टेडियम में, जहां पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी जो है वो आपको नजर आएंगे। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से मेगा कैंप किया होगा, लेकिन ये एक बड़े स्केल पर अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के मौके पर जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से मेगा ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो किया गया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर जो है ब्लड डोनेट करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन किशन के साथ सुशांत नारायण, दिल्ली आज तक।
1: तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता आशीर्वाद का दिया जलाएंगे। आज शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच ये आयोजन होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उज्जैन के रामघाट में दीप प्रज्वलित करेंगे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज पूरे मध्य प्रदेश में दीपोत्सव का आयोजन है। इसका प्रमुख आयोजन मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाले उज्जैन में होगा, जहां तकरीबन 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। शाम 7 बजे से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होने वाले हैं। इससे पहले इंदौर में बड़ा आयोजन रखा गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कई हितग्राहियों को निःशुल्क उनकी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन का तोहफा दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इसके बाद शाम को तकरीबन 5:30 बजे नितिन नवीन उज्जैन हेलीपैड पे आएंगे और वहां से सीधे रामघाट पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले शिप्रा आरती की जाएगी और उसके बाद 25 लाख दिए जला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा।
1: और आइए बात करते हैं सेमिकॉन इंडिया की। थोड़ी देर पहले पीएम मोदी ने सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। अब ये तीनों दिनों का मेगा आयोजन है और इसका थीम है सिलिकॉन टू सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। नरेंद्र मोदी की तरफ से इसमें बताया गया कि भारत और कैसे तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है और इसमें युवाओं की कितनी अहमियत है, युवाओं का किरदार कितना खास इसमें रोल अदा करता है। यहां पर युवाओं से बात भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और देश को आगे और कैसे विकसित किया जा सकता है, तो ऐसे में कई सुझाव भी लिए गए।
5: मोबाइल के चिप से लेकर के शिप, रक्षा संसाधन, सैटेलाइट, हर उस चीज के लिए सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ती है। भारत का बाजार बड़ा है तो उसकी जरूरतें भी बड़ी है और ऐसे में आत्मनिर्भरता समय की मांग है। उसी मांग को देखते हुए भारत में इस सेमीकंडक्टर सेमिकॉन इंडिया का 5वां संस्करण हो रहा है। इस 5वें संस्करण की बुनियाद दरअसल ये है कि सिलिकॉन से लेकर के सिस्टम, एक इकोसिस्टम बनाने तक भारत अब आत्मनिर्भरता को अपनाएगा और सेमीकंडक्टर न सिर्फ भारत में तैयार होंगे बनेंगे बल्कि हम उसकी खपत भी करेंगे और दुनिया को भी वो तकनीक हम देंगे। ये इकोसिस्टम का समय है। 5 साल में 70,000 से लेकर के 1,27,000 करोड़ तक का बजट इस बात को दिखाता है कि सरकार प्रतिबद्ध है सेमीकंडक्टर को में इस क्षेत्र में भारत को दुनिया के उन अग्रणी देशों की सूची में पहुंचाने के लिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जब सेमीकंडक्टर बनाने वाली तमाम सीईओ के साथ मुलाकात की तो ये कहा कि ये समय भारत में निवेश के लिए अनुकूल है, बेहतर है और इस समय का अगर फायदा उठाया गया है तो बेहद कम समय में भारत अपनी विशेषज्ञता, उसकी जरूरतें, उसका बाजार और उसके यहाँ की जो मेहनत है, जो वर्कफोर्स है, वो भारत को बहुत आगे ले जा सकती है।
1: और 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। विनोद तावड़े मिशन 2027 पर उत्तर प्रदेश दौरे पर है और खबर यह है कि वो अवध और

0: चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी के यूपी प्रभारी विनोद तांबड़े अपने तीसरी बार दौरे पर हैं और इस बार दौरे पर हैं जिसमें पूर्वांचल, अवध और प्रयागराज शामिल है। यहां पर वो क्षेत्रीय नेताओं से लेकर जो कार्यकर्ता है जमीन के उनसे तक मिलेंगे। इस बार गोरखपुर में रहेंगे, साथ ही साथ अयोध्या और प्रयागराज, जहां पर वो उन कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, जमीनी मैप तैयार करेंगे और विनोद तांबड़े द्वारा सीधे संदेश दिया जाएगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव जीता जाए, जिसको लेकर ये बैठक और दौरा बहुत अहम माना जा रहा है। यानी रूट लेवल से लेकर टॉप लेवल तक पेच भी कसे जाएंगे, साथ ही साथ सभी को जीत का मूल मंत्र दिया जाएगा।
1: और बहुत लंबे वक्त से बंगाल में और देश भर में एक सवाल उठा हुआ है कि असली टीएमसी कौन। इस सवाल का आज जवाब मिल सकता है, आज इस पर चुनाव आयोग सुनवाई करेगा। और पूरी खबर बता रहे हैं आज तक संवाददाता अनुपम मिश्रा।
2: तृणमूल पार्टी के सिंबल और कंट्रोल की लड़ाई अब निर्णायक दौर में आ चुकी है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के रितोब्रतो ग्रुप और ममता बनर्जी गुट के बीच पार्टी सिंबल को लेकर लड़ाई चल रही है और चूंकि रेजीनगर और नंदीग्राम का उपचुनाव होना है, ऐसे में अब फैसले की घड़ी आ गई है। चुनाव आयोग ने दोनों ही पार्टियों को आज बुलाया है दिल्ली। रितोब्रतो गुट के 5 सदस्यों की टीम दिल्ली के लिए निकल चुकी है, जहां 3 बजे उनकी मुलाकात चुनाव आयोग के साथ होगी। वहीं 4 बजे का समय दिया गया है ममता बनर्जी के गुट को और इसके बाद चुनाव आयोग फैसला करेगा कि पार्टी का जो सिंबल है वो किसके पास जाता है।
1: अब 12 बजे 12 रिपोर्टर में अगली जो बड़ी खबर है वो जम्मू कश्मीर के उधमपुर से, जहां सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया और ये पाकिस्तानी आतंकी हो सकते हैं। हालांकि अभी इनकी पहचान की जा रही है, ये आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हो सकते हैं। आज सुबह सुबह सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, उधमपुर के जंगलों में एक ऑपरेशन चला और इस ऑपरेशन में 2 आतंकी ढेर हुए।
3: उधमपुर के ब्रातल इलाके में सुरक्षा बलों को तब एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टुकड़ी, जिसमें स्पेशल पैरा फोर्सेस के जवान, राष्ट्रीय राइफल्स, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे, सस्पिशियस गतिविधि दिखी और उसके बाद एक मुठभेड़ हुई। काफी कम समय तक मुठभेड़ चली और इसमें जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। अभी उनकी शनाख्त की कोशिश जारी है। वहीं भारी असला, जिसमें AK-47 राइफल, ग्रेनेड और बाकी सामान भी मौके से बरामद हुआ है। पिछले काफी समय से इस पूरे इलाके को छाना जा रहा था, क्योंकि लगातार खुफिया एजेंसीज के इनपुट थे कि जैश का एक ग्रुप जो है मजाल्टा, जो जनरल एरिया है, जंगल का इलाका है, वहां उनकी मूवमेंट जो है ट्रैक हुई है और उसके बाद से लगातार तलाशी अभियान चल रहे थे और फाइनली कल देर रात जो है कामयाबी मिली। आज सुबह सवेरे से सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में अभी चल रहा है।
1: अब 12 बजे 12 रिपोर्टर में जो अगली रिपोर्ट है वो गुरुग्राम हिट एंड रन केस पर एसआईटी की जांच में कई खुलासे हुए हैं और क्या है वो खुलासे, ये आपको बता रहे हैं संवाददाता अंशुल से।
4: गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में गुरुग्राम पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया है। इस एसआईटी की तफ्तीश में कुछ नए सुराग सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि कल्याण बासला अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ उस वक्त गाड़ी में मौजूद था जब यह पूरा हादसा हुआ। ये लोग रात भर एक क्लब में पार्टी करके वहां से निकले थे और सेक्टर 53 मेट्रो स्टेशन के आसपास ये पहली बार सिया और उसके दोस्तों से मिले। उसके बाद इनके बीच में नोकझोंक हुई और करीब 2 किलोमीटर तक सिया के पीछे एक हाई स्पीड चेज किया और सेक्टर 56 मेट्रो स्टेशन क्रॉस करते ही उसे पीछे से टक्कर मारकर वहां से फरार हो गए। गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज, करीब 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज अपने पास ले ली है और उस सीसीटीवी फुटेज में से कुछ अहम सुराग भी निकले हैं। इसके अलावा सिया की बाइक पे जो गोप्रो लगा था उसमें भी जितनी देर की वीडियो रिकॉर्डिंग है वो भी सिया से गुरुग्राम पुलिस ने ले ली है। बताया जा रहा है कि लवनीश बासला, जो कि आगे वाली सीट पर बैठा था, यही वो शख्स था जिसने कल्याण को थोड़ा और भड़काया और ये कहा कि वो सिया का पीछा करे और उसे ठोक कर वहां से फरार हो जाए, जिसके बाद ये पूरा हादसा होता है। गुरुग्राम पुलिस अब आने वाले दिनों में बाकी जो 2 लोग गाड़ी में मौजूद थे उन्हें भी नोटिस सर्व करेगी और उन्हें भी ये पूरी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए गुरुग्राम बुलाया जाएगा।
1: यार रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसें, इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: SBI Celebrations Unlimited. Ye Ganeshotsav banega special with festive offers on car loan, gold loan, personal loan and loan against mutual funds.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट फुटी।
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट।
5: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
7: जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।

0: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
5: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
6: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
7: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
8: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
9: अब मैं क्या ही बोलूं?
10: परिवार, अटूट भरोसा।
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। Signature Finest Silver Elaichi, a premium product from Dilbagh Group.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: In association with
2: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds.
3: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
4: Patliputr ki pavan dhara se uthega siyasat ka sabse bada shor, janata ke sabse bade sawal, Mukhyamantri Samrat Chaudhary ke saath. Panchayat aaj tak 18 सितंबर सिर्फ आज तक पर।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन पर कई भव्य आयोजन। भटक ब्राह्मणों ने मां गंगा का 76 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक किया। शंखनाद कर गंगा आरती की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र के लिए संगम पर विशेष प्रार्थना और गंगा आरती की गई। नागर साधुओं ने डमरू बजाकर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। नमामि गंगे की टीम ने मां गंगा को 76 मीटर की चुनरी चढ़ाई। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सिविल अस्पताल में मरीजों को फल बांटे। रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। अयोध्या में महापौर के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल। पीएम मोदी के जन्मदिन पर काशी से वडनगर तक मेगा बाइक यात्रा। 250 बाइक्स पर 500 बाइकर्स शामिल। सीएम योगी ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। बोले, हमें पूरा भरोसा और विश्वास है कि उनके नेतृत्व में विकसित भारत का सपना जल्द ही साकार होगा। वाराणसी में आयोजित सेवा संकल्प अभियान में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हुए शामिल। कहा, उनकी सोच देश को विकास की राह पर आगे लेकर जाने की। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे मामले पर बड़ा एक्शन। एनएचएआई ने पीएनसी इंफ्राटेक को 3 साल के लिए बैन किया। अलीगढ़ में करणी सेना नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लगवाए जय भीम के नारे। सवर्ण महापंचायत में विवादित टिप्पणी से भड़का आक्रोश। आज से यूपी बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े की क्षेत्रवार बैठकों का दौर शुरू। चुनावी तैयारियों पर मंथन। बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर और चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और रोड मैप पर भी मंथन संभव। बीएसपी के पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में केस दर्ज कर लिया है। जांच शुरू। यूपी के बांदा में चंद्रावल नदी की धारा में बहा मासूम। इलाज कराने ले जा रही थी मां। गोताखोर और एनडीआरएफ बच्चे की तलाश में। कानपुर नगर निगम की बड़ी लापरवाही। सड़क पर खुले पड़े सीवर के गड्ढे में गिरा डिलीवरी बॉय, गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बुलडोजर एक्शन के दौरान हंगामा। कानपुर के सरकारी अस्पताल में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया। डॉक्टर की जगह ड्राइवर ने संभाली ओपीडी, मरीजों को लिखी दवाएं। यूपी के बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद पर हमले के विरोध में प्रदर्शन। डीएम ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। डीएम ऑफिस में जाने से रोके जाने पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की। पुलिस ने लाठियां चलाकर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। गोरखपुर में डंपर की चपेट में आने से 17 वर्षीय युवक की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने डंपर में आग लगा दी।

0: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर वैसे तो पूरे देश में बीजेपी समर्थक उत्सव मना रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी रौनक कुछ ज्यादा ही है और सबसे ज्यादा उत्साह वाराणसी में देखा जा रहा है। कहीं हवन पूजन हो रहा है, कहीं 76 बटकों के साथ 76 लीटर दूध से गंगा जी में दुग्धाभिषेक हो रहा है, कहीं मंत्रोच्चार के साथ शुभकामनाएं दी जा रही हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर काशी विश्वनाथ महादेव से लेकर कामना पूर्ण हनुमान मंदिर और कामाख्या के शांतिकेश्वर महादेव मंदिर तक धार्मिक अनुष्ठानों की झड़ी सी लगी हुई है। उधर प्रयागराज में गंगा तट पर अनुष्ठान प्रार्थना किए गए और लखनऊ में तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल में भी दीपोत्सव की तैयारी है। इसके अलावा वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भी आज एक बड़ा राजनीतिक उपक्रम भी शुरू हो रहा है, जिसमें 250 बाइक्स पर 500 बीजेपी कार्यकर्ता 2000 किलोमीटर की यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसके अलावा देश की तमाम पवित्र नदियों के जल से बना एक बड़ा कलश भी प्रतीकात्मक तौर पर इस यात्रा में शामिल है, जो बाइक रैली के साथ 2000 किलोमीटर की यात्रा तय करके वाराणसी से वडनगर जाएगा।
1: मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू जी नायडू और श्री चिराग जी पासवान एलजेपी के नेता और श्री पंकज जी चौधरी यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग यहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए काशी विश्वनाथ का आए थे और विधिवत पूजा अर्चन का कार्य संपन्न हुआ है। और हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वह दीर्घायु करें।
2: बाबा से ही प्रार्थना की है कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु उन्हें प्राप्त हो और लंबे समय तक भारत का नेतृत्व उनके हाथों में रहे, जिससे भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विकसित भारत की संकल्पना उनके नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी देख सकें और उनके शिष्य नेतृत्व में भारत दुनिया की नंबर एक अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़े।
0: और देखिए, जिस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से बाइक रैली निकलने वाली है, वहां हमारे संवाददाता मौजूद हैं, समर्थ श्रीवास्तव। समर्थ, कितना वक्त और है इस बाइक रैली को निकलने में और क्या तैयारियां हो रही है वहां पर अभी?
3: हिमांशु, अभी अभी कुछ देर पहले यहां से राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी गेट के जरिए अंदर पहुंचे हैं और आप देखिए जयघोष जो है वो अभी भी यहां सुनाई पड़ रहा है। सामने बना एक एग्जीबिशन है जहां पर कुल मिलाकर चीजें हुई थी और यहां पर आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरीके से ये एग्जीबिशन लगी है। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, यहां पर अभी राजनाथ सिंह भी आए थे और टाइट पुलिस सिक्योरिटी के बीच में सब तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। चहलकदमी यहां बढ़ गई है क्योंकि कुछ ही देर में यहां से बाइक रैली को भी रवाना किया जाएगा। इसके अलावा जो बाइकर्स, देखिए कहां से आए आप लोग?
4: प्रयागराज से आए।
3: प्रयागराज से?
4: जी जी।
3: आप कहां से?
4: प्रयागराज।
3: तो ये देखिए बाइकर्स जो है, कहां जाना है?
4: प्रयागनगर
3: जाएंगे?
4: नहीं।
3: तो ये देखिए वडनगर के लिए तैयारी पूरी है, बाइकर्स जो है वो एक एक कर यहां पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आप लोग का स्वागत किया, कहां से हैं आप लोग?
4: प्रयागराज से।
3: देखिए अलग अलग प्रयागराज से है, कोई वाराणसी से है, कोई मध्य प्रदेश से है। जिन बैग्स को ये लिए रहेंगे हम वो भी आपको दिखाते हैं। सफेद रंग का इनको एक बैग दिया गया है, इस तरीके के जो बैग्स हैं ये इनको ट्रैवल के लिए दिए गए, यानी कि जो यात्रा है वो काफी लंबी होने वाली है, इसकी वजह से ये बैग्स हैं। जहां पीएम मोदी का एक तस्वीर यहां बना हुआ है, नीचे जनसेवा से देश सेवा लिखा हुआ है और यहां पर वाराणसी से बड़नगर सेवा यात्रा है। इस बैग में क्या कुछ है वो भी आपको हम दिखाते हैं। इस बैग में हमने टी शर्ट्स हैं, ये देखिए आप, तीन टी शर्ट्स इसमें दी गई है जिसमें पीएम मोदी का लोगो लगा हुआ है। इसमें दो जैकेट्स दी गई है और एक वाटर बॉटल दिया गया है। ये इस तरीके का जो वाटर बॉटल है वो दिया गया है क्योंकि देखिए यात्रा काफी लंबी है और ऐसे में ये सारी चीजें इन यात्रियों को, इन बाइकर्स को कहीं ना कहीं मदद करेंगी। इस वजह से ये व्हाइट थीम, देखिए टी शर्ट जो है इनकी वो भी व्हाइट है, जो ये थीम दिया गया है ये भी व्हाइट है। तो इस तरह के तमाम जो बैग्स हैं आप देखिए यहां पर आ चुके हैं और इन बैग्स को कहीं ना कहीं एक एक यात्री को यहां पर एक बाइकर्स को सौंपेंगे। और राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है देश के, वो अभी यहां पहुंचे, एग्जीबिशन को देखा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचे और पीएम के बर्थडे की शुरुआत।
5: हर समस्या का समाधान करना भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई, महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए, बेटी को कोख में ही ना समाप्त कर दिया जाए इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन शुरू किए, बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाने लगे तो शौचालय ना होने की वजह से स्कूल ना छोड़े, इसके लिए करोड़ों शौचालय बनाए, बेटी की शिक्षा जारी रहे इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना में इतना ज्यादा ब्याज दिया, बेटी अगर सैनिक स्कूल जाना चाहे तो उसके लिए हमने सैनिक स्कूल के द्वार खोल दिए, बेटी बड़ी होकर कुछ अपना काम कर सके इसके लिए बिना गारंटी लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू की, मां बनने के बाद भी वो अपनी नौकरी जारी रख सके इसके लिए मातृत्व अवकाश में वृद्धि की, बेटी को गांव में कमाई के नए अवसर मिले इसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलने वाली सहायता में रिकॉर्ड वृद्धि की गई, बेटी को रसोई में लकड़ी का धुआं ना सहना पड़े इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया, बेटी को पानी के इंतजाम में परेशानी ना होना पड़े इसके लिए हमने हर घर नल से जल देने की योजना शुरू की, बेटी को अंधेरे में ना रहना पड़े इसके लिए हमने सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया, बेटी पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी छिपाए नहीं इसलिए हमने उसे आयुष्मान कार्ड की ताकत दी, बेटी को बैंकों का लाभ मिले इसके लिए जनधन योजना के तहत बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले, बेटी का घर की संपत्ति पर भी अधिकार हो इसके लिए पीएम आवास के घरों में उसे संयुक्त भागीदारी दी। साथियों, बंगाल के लोगों की एक बड़ी पीड़ा ये भी रही है कि बीते 12 वर्षों में केंद्र की ऐसी कई योजनाओं का लाभ यहां समय पर नहीं पहुंच पाया, इससे गरीब परिवारों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अब भाजपा सरकार में इन रुकी हुई योजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाया गया है। जैसे एक उदाहरण पीएम आवास योजना का है, बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद 50 लाख से ज्यादा ऐसे नए गरीब परिवारों की पहचान की गई है जिनको पीएम आवास योजना के पक्के घर दिए जाएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना को भी यहां लागू किया गया है। हर लंबित योजना, हर अटकी हुई परियोजना अब बंगाल में नई गति पकड़ रही है और इसमें बंगाल की महिलाओं का, यहां के लोगों का आशीर्वाद भाजपा के साथ है। इसलिए मैं बहुत विश्वास से कहता हूं, आमरा एक संगे गोड़बो नोतुन बंगला, हम सब मिलकर बनाएंगे नया बंगाल। साथियों, देश ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, मुझे विश्वास है बंगाल की माताएं बहनें विकास की यात्रा को इसी तरह नई गति देंगी। विकसित बंगाल के सामर्थ्य से विकसित भारत का संकल्प और मजबूत होगा। साथियों, आप सभी का स्नेह, आपका आशीर्वाद हमें निरंतर सेवा की प्रेरणा देता है। एक बार फिर आप सभी को अन्नपूर्णा दिवस की बहुत बहुत बधाई, विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुभकामनाएं बधाई दी गई। उन्होंने ये भी बताया कि हर अटकी योजना बंगाल में शुरू हो चुकी है और बंगाली में उन्होंने बोलते हुए कहा कि अब हमें एक नया बंगाल बनाना है। अब देखिए, एक कार्यक्रम चल रहा है वाराणसी टू वडनगर, वडनगर टू वाराणसी। अब इस पूरे आयोजन का बड़ा आकर्षण बाइक रैली है जो वाराणसी से वडनगर तक जा रही है। अब उसमें उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के लोग बुलाए गए हैं, उन्हें स्पेशल किट भी दी गई है। हमारे संवाददाता ने उन बाइकर से बात भी की है।
3: बाइकर्स आज जा रहे हैं सेवा संकल्प अभियान के थ्रू, वो हमारे साथ हैं। आप लोग बताइए, आप लोग आज जा रहे हैं वडनगर के लिए, कितना उत्साहित?
4: हम लोग टोटल 25 लोग हैं बिहार से। नितिन नवीन जी के राज्य से हम लोग हैं और हमें बहुत गर्व फील हो रहा है कि हम नरेंद्र मोदी जी के
3: काफी लंबा रास्ता है।
6: हाँ, लेकिन हम लोग में पूरा एक्साइटमेंट है और मोदी जी के लिए और अपने लिए, अपने भारत के भविष्य के लिए हम लोग ये संकल्प लिए हैं और 20 दिनों का यात्रा पूरा करके हम लोग वाडनगर जाएंगे और भगवान से यही कामना करते हैं कि मोदी जी को लंबी आयु दे।
3: हाँ, कहाँ से?
4: नवादा,
6: बिहार से।
4: भोजपुर से।
3: आप कहाँ से? बिहार से। आप कहाँ से?
7: हम लोग अयोध्या से हैं।
3: अयोध्या से जी। आप यहाँ काशी नगरी में आए हैं, महादेव की नगरी रामनगरी से हैं?
7: जी बिल्कुल। हम लोग यहाँ जो है मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आए हैं। हम लोग यहाँ से उनके शहर काशी से वडनगर तक एक यात्रा निकाल रहे हैं
3: बाइकर्स के लिए।
4: हाँ,
3: बाइकर्स जो है ना वो ये इस तरीके के बैग्स को ले जाएंगे जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर बनी हुई है, यहाँ पर सेवा यात्रा लिखी हुई है। आइए देखते हैं इस बैग में क्या कुछ है इनके जरिए। ये बैग है,
4: मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। इसमें देखिए, इसमें टी शर्ट है जो कि देखिए सेम
3: दो चार टी शर्ट है ना।
4: हाँ, दो चार टी शर्ट है। हाँ। और सेम कलर के टी शर्ट ऐसा मिल रहे हैं कि आपको
3: वाटर बॉटल है।
4: हाँ, वाटर बॉटल है।
3: ये क्या है?
4: ये आई थिंक इट्स अ जैकेट।
8: जैकेट है रात के लिए।
3: रात के लिए। और क्या कुछ है इसमें? ये क्या है?
8: जैकेट।
3: ये भी जैकेट है।
8: ये जैकेट ही है।
3: तो ये सब चीजें बाइकर्स के साथ लगातार रहेंगी।
8: लगातार ये
3: हमने आपको दिखाया किस तरीके से बाइकर्स एक्साइटेड हैं और वो इस तरीके के बैग्स लेकर रवाना कुछ देर में यहाँ से वडनगर के लिए हो रहे हैं। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, काशी आज तक।
0: तो पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर देश भर में समर्थक जश्न मना रहे हैं। यूपी में वाराणसी में खास तैयारी है ही, आप देख ही रहे हैं। लेकिन वाराणसी से दूर प्रयागराज में आज एक और जगह उत्सव का माहौल है और वो जगह है लूकरगंज, जहां माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने फ्लैट्स में पीएम मोदी का जन्मदिन दीपावली की तरह मनाने की तैयारी है।

0: देश भर में पीएम मोदी के समर्थक उनके जन्मदिन को उत्साह की तरह मना रहे हैं। पूजा, हवन, आरती, प्रसाद, दिया, गीत, शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ है। लेकिन इन तमाम शुभकामनाओं और उत्सवों के बीच एक तैयारी प्रयागराज में भी चल रही है। यह है प्रयागराज के लूकरगंज का इलाका और यह वही परिसर है जहां माफिया अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों के लिए फ्लैट्स बनाए गए थे। इस बार यहां पीएम मोदी के जन्मदिन पर सामूहिक दीपोत्सव की जबरदस्त तैयारी है।
1: जन्मदिन मनाएंगे प्रधानमंत्री जी।
2: कितनी खुशी होगी?
1: बहुत खुशी, खुशी अब आवास मिलेगा, अभी से बड़ा और क्या चाहिए। अब जिसको आवास मिल जाए, छत मिल जाए, उसे बड़ा खुशी और क्या होना चाहिए।
2: यहाँ पे खुशी तो ये है कि जब हम यहाँ पे निवास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाम के आवास में निवास कर रहे हैं, तो हम लोगों को खुशी तो बहुत होगी कि उनका जन्मदिन है, तो हम लोग बहुत धूमधाम से मनाए।
3: बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। शाम को 6 बजे यहाँ प्रोग्राम है, सब लोग जुट रहे हैं, हम लोग गाजा बाजा के साथ मनाएंगे।
0: हालांकि इन फ्लैट्स की चाबी 2023 में ही गरीब परिवारों को सौंपी जा चुकी थी, लेकिन दिलचस्प पहलू यह है कि पीएम मोदी 76 साल के हो चुके हैं और यहां पूरे 76 फ्लैट्स हैं जहां उत्सव की तैयारी है।
4: इन फ्लैट्स पर अब दिया जलने जा रहा है, दीपोत्सव मनने जा रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, ऐसे में लोग अब एक बड़ा मैसेज देने जा रहे हैं, यानी कि माफिया की जमीन पर दिवाली और सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव।
0: हालांकि इलाके के बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह इसे चुनावी स्टंट मानने को तैयार नहीं। सिद्धार्थनाथ सिंह कहते हैं कि 76 फ्लैट्स में रहने वाले गरीब परिवारों ने ही दीपोत्सव की पेशकश की थी।
5: उनका विशेष मुझे फोन आया कि विधायक जी, हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर हम हर घर में दिया जलाएं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा दिया हम पहुंचा रहे हैं, साथ साथ उनको मिठाई भी दे रहे हैं और वो बहुत खुश हैं। शाम को 7 बजे आप देखिएगा कैसे जगमगाता है और कैसे दिवाली का स्वरूप मिलता है प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देने के लिए।
6: सच ये है कि आप हर तरह का वो काम करते हैं जिससे कि इस उत्तर प्रदेश में कमनल जो व्यवहार है वो बढ़े। आप सांप्रदायिकता के नायक हो सकते हैं, आप कभी समाजवाद के, समता के, करुणा के, ममता के, संविधान के नायक नहीं हो सकते।
5: बताइए, उस 76 घर में मुसलमान भी हैं। कहीं राजनीति कर रहे होते तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का जो नारा दिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वो हम पूरा कैसे करते हैं? तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कैसे हो गई? अरे आपका नारा ही सांप्रदायिक है, PDA, उसको आप परिवर्तित करते रहते हैं अखिलेश जी, वो नारा ही आप में सांप्रदायिक है। अभी आप देखिएगा चुनाव आते आते अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के सब लोग टोपी और लुंगी पहन के घूम रहे होंगे।
0: समाजवादी पार्टी से कम्युनल सियासत का चेहरा करार दे रही है और आरोप लगा रही है कि माफिया से जमीन मुक्ति के बहाने यूपी सरकार ने चुनिंदा कार्रवाई में अतीक के कब्जे से जमीन छुड़ाने का दिखावा किया।
4: वही जगह है जो कभी प्रयागराज में आतंक का पर्याय थी, या यूं कहें उसका जीता जागता उदाहरण। भारतीय जनता पार्टी इस मामले को अब सियासी तौर पर आगे ले जाना चाहती है और एक मैसेज देना चाहती है कि बीजेपी की सरकार में माफियाओं की जगह नहीं है। तो वहीं समाजवादी पार्टी इसे केवल हेडलाइन मेकिंग और ध्रुवीकरण की राजनीति करार देती है और सवाल करती है कि बाकी लोगों पर आखिर कार्रवाई कब होगी।
6: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इलाहाबाद की प्रयागराज की जमीन कब्जा से मुक्त करा रहे हैं। उसी प्रयागराज में बहुत सारे और कब्जाधारी हैं जो उनके द्वारा संरक्षित हैं। बनारस की जमीनें किसने कब्जा की रखी है, चंदौली की जमीनें किसने कब्जा कर रखी है, जौनपुर की जमीन किसने कभी उनके संरक्षित अपराधी ने कब्जा कर रखा है, मिर्जापुर की जमीन किसने सबसे ज्यादा कब्जा कर रखा है।
0: वैसे प्रयागराज में अतीक के कब्जे से मुक्त जमीन पर जस्ट का चुनावी कनेक्शन इसलिए भी है क्योंकि यूपी के चुनाव में माफिया और अपराध का मुद्दा सीएम योगी लगातार उठा रहे हैं और अतीक से लेकर मुख्तार तक को समाजवादी पार्टी का चेहरा ठहराकर शासन का फर्क भी बता रहे हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
7: और यहाँ पर वक्त चला बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
8: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: क्या आप
1: चीज
0: मुझे
1: नहीं है।
0: बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको ये कदम, जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है, उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है? क्योंकि अमेरिका को हमारा MDR रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था, और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
1: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जब दुनिया की डिजिटल फाइनेंशियल क्रांति की अगुवाई भारत ने करी थी यूपीआई के माध्यम से, तो राहुल गांधी के कहने पे पी चिदम्बरम ने ये कहा था कि क्या गरीब आदमी या इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता है। सो कांग्रेस हैज हिस्टोरिकली बीन एन ओपोनेंट ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और आज ये नाराज फूफा पार्टी झूठ फैला रही है। हर आम आदमी आज स्कैनर के माध्यम से पेमेंट कर रहा है, और हर आम आदमी ही स्कैनर के माध्यम से ही पेमेंट करता रहेगा।

0: यूपीआई से लेन देन पर लगे चार्ज को लेकर विवाद जारी है। एमडीआर लगाए जाने के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने यूपीआई पर लगे एमडीआर को तुरंत वापस लेने की मांग की है।
1: मोदी जी हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ही इज नाइदर लेफ्ट नॉर राइट। ही हैज डिसाइडेड टू लाई डाउन स्ट्रेट एंड प्रोस्ट्रेट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ही हैज पुट अ टैक्स ऑन एवरी सिंगल इंडियन पर्सन बाय टैक्सिंग यूपीआई एंड गिविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू द यूनाइटेड स्टेट्स। मोदी जी प्लीज स्टॉप लाइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। हैव अ स्पाइन, खड़े हो जाइए और यूपीआई टैक्स को वापस लीजिए।
0: विपक्ष भले ही एमडीआर को यूपीआई टैक्स कह के विरोध कर रहा है, लेकिन सरकारी सूत्रों का दावा है कि मर्चेंट पेमेंट पर यूपीआई ट्रांजैक्शन फीस का फैसला सोच समझ कर लिया गया है और इसे वापस नहीं लिया जाएगा। उधर सरकार की अपनी दलील है कि यूपीआई के वित्तीय सिस्टम को चलाने में भारी भरकम खर्च आता है। इस बीच यूपीआई एमडीआर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4% फीस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इस फ्रेमवर्क पर रोक लगाने की मांग की है। यूपीआई लेनदेन में चार्ज लेने का जो फैसला हुआ है उसमें पर्सन टू पर्सन यानी आपसी लेनदेन पर यूपीआई पहले की तरह ही मुफ्त है। रेलवे, इंश्योरेंस, ईंधन जैसी सेवाओं पर 5 रुपए प्रति लेनदेन शुल्क ही लगेगा। यूपीआई से हर महीने ऑटो पे भुगतान पहले की तरह मुफ्त रहेंगे। महीने में यूपीआई से 1,00,000 रुपए तक भुगतान पाने वाले दुकानदार दायरे में नहीं आएंगे। 2,000 रुपए से ऊपर के भुगतान पर लगने वाली फीस ग्राहकों पर नहीं डाली जा सकेगी। उधर आरबीआई ने भी यूपीआई पेमेंट में लगने वाले चार्ज का बचाव किया है। आज तक ब्यूरो।
2: पता नहीं ये सरकार क्या कर रहे हैं, इनके पॉलिसी क्या हैं, क्या सोचते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। अचानक से कोई नियम या कुछ थोप दिया जाता है, फिर जनता पर जब उसकी आदत लग जाती है, जनता उसके आदि हो जाते हैं, फिर उसे बदल दिया जाता है। अगर इसमें भी इतना टैक्स थोप देंगे 2000 के ऊपर के पेमेंट पर, तब तो आने वाले समय में जनता काफी क्राइसिस में आ जाएगी। अब इमीडिएटली इसे बंद करना चाहिए। जो भी निर्णय है ये बिल्कुल गलत निर्णय है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
3: नहीं, यूपीआई में तो ऐसा है कि भाई 2000 तक जो व्यापारी लोग होते हैं वो 2000 तक उसकी सीमा है और उसमें कोई मतलब और ज्यादा पैसा ले रहे, इसी तरह का राहुल गांधी का आरोप है, वो इसमें तथ्य नहीं है। कोई सरकार ने अभी निर्णय ऐसा लिया भी नहीं है। वो किसी व्यापारी को और किसी लोगों को तकलीफ देने की भूमिका हमारी बिल्कुल नहीं है।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में 25 साल के नेतृत्व का जश्न। एक महीने तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान। वाराणसी से वडनगर तक बाइक रैली। योगी और राजनाथ ने की विश्वनाथ मंदिर में पूजा। वडनगर से अमित शाह ने देश को बताया मोदी का मतलब। कहा 36 देशों के सर्वोच्च सम्मान हासिल करने वाले वो विश्व के इकलौते नेता हैं। अपने दम पर ध्रुव तारे की तरह चमक रहे नरेंद्र भाई। रेखा गुप्ता ने किया हवन।

उद्घाटन पर बोले पीएम, भारत में अवसर और टैलेंट का लाभ उठाए दुनिया, सप्लाई चेन पर फोकस, सेमीकंडक्टर पर 52 देशों की 600 कंपनियों का मेगा इवेंट। ट्रंप को मिला रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार, अमेरिकी संसद के निचले सदन में बिल पास, अब भारत पर भी मंडराया 100% टैरिफ का खतरा। वीडियो में सलाम और इंशाल्लाह बोलने वाली पश्चिम बंगाल की लेडी आईपीएस बुशरा बानो के तबादले पर सियासी भूचाल, महबूबा मुफ्ती ने सीएम शुभेंदु पर सा निशाना, बताया मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। शुरुआत करें नॉन स्टॉप 100 के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

प्रधानमंत्री के 76वें जन्मदिन पर देश भर में 25 साल के नेतृत्व का जश्न। देश भर में कई जगहों पर समर्थकों ने किया कई कार्यक्रम का आयोजन। पीएम के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मस्थली गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली गृहमंत्री अमित शाह ने किया रवाना। शाह ने सभा को संबोधित करते हुए गिनाई प्रधानमंत्री की उपलब्धियां। 25 साल की छवि को बताया बेदाग काम। मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार माना है। पीएम के संसदीय क्षेत्र धार्मिक नगरी काशी में बटुक ब्राह्मणों का विशेष गंगा पूजन। प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के मौके पर दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। 160 कुंडीय हवन में हुई शाम। वाराणसी में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कई भव्य आयोजन। बटुक ब्राह्मणों ने मां गंगा का 76 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक किया। शंखनाद कर गंगा आरती की। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र के लिए संगम पर विशेष प्रार्थना और गंगा आरती की गई। नागा साधु ने डमरू बजाकर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। नमामि गंगे की टीम ने मां गंगा को 76 मीटर की चुनरी चढ़ाई। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सिविल अस्पताल मरीजों को फल बांटे। रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। अयोध्या में महापौर के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर काशी से वडनगर तक मेगा बाइक यात्रा। 250 बाइक्स पर 500 बाइकर सवार हुए। सीएम योगी ने भी प्रधानमंत्री को दी जन्मदिन की बधाई। बोले हमें पूरा भरोसा और विश्वास है कि उनके नेतृत्व में विकसित भारत का सपना जल्द पूरा होगा। वाराणसी में आयोजित सेवा संकल्प अभियान में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हुए शामिल। कहा उनकी सोच देश को विकास की राह पर आगे ले जाने की है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे मामले पर बड़ा एक्शन। एनएचएआई ने पीएनसी इंफ्राटेक को 3 साल के लिए बैन किया। अलीगढ़ में करनी सेना नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लगवाए जय भीम किनारे। सवर्ण महापंचायत में विवादित टिप्पणी से भड़का आक्रोश। प्रधानमंत्री ने यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में 52 देशों की 600 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। सेमीकॉन इंडिया 2026 का उद्देश्य भारत में सहयोग इन्वेस्टमेंट प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना। 50,000 विजिटर्स की पहुंचने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर किया। हथियार और गोला बारूद बरामद। सेना के इस इलाके में संदिग्ध गतिविधियों के बारे में इनपुट था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने कल रात एक बड़ा घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकियों की जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़े होने की आशंका। 2000 से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट पर शुल्क के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी का मोर्चा। का नियम वापस ले सरकार। राहुल के बयान पर वित्त मंत्रालय की ओर से जवाब। फैसले के पीछे कोई विदेशी दबाव नहीं है। गोरखपुर में सीएम योगी के चुनावी हुंकार का पहले एसपी और कांग्रेस सरकार में अपराध और डर। आज यूपी दंगा और कर्फ्यू मुक्त। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान 19 सितंबर से 1 लाख नई नौकरियों की शुरुआत। सरकारी कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा। कैबिनेट ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 प्रतिमाह किया। 51 लाख लोगों को होगा फायदा। शहजाद भट्टी नेटवर्क पर बड़ा एक्शन। केंद्र ने यूएपीए के तहत घोषित किया आतंकवादी संगठन। नेटवर्क पर सीमा पार हथियार विस्फोटक और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का आरोप। यूपीआई पेमेंट चार्ज पर पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार से लगाई गुहार। 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर से पूरी छूट देने की मांग। जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई। 4 और आरोपी गिरफ्तार। यूपी बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े की आज से क्षेत्रवार बैठक का दौर शुरू। चुनावी तैयारियों पर मंथन। बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा। आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और रोडमैप पर मंथन संभव। गुरुग्राम हिट एंड रन मामले में एसआईटी का गठन। एसीपी सहित 5 लोगों की बनाई गई एसआईटी टीम। इसके अलावा पुलिस सीन रिक्रिएट कराएगी। टीएमसी सिंबल पर जल्द फैसला ले सकता है चुनाव आयोग। आज दोनों गुटों की बैठक के लिए बुलाया गया। 6 अक्टूबर को 2 सीटों पर उपचुनाव। नई दिल्ली में असुरक्षित रिहायशी क्वार्टर्स को खाली करने का निर्देश। एनडीएमसी की तरफ से नोटिस जारी। बीएसपी के पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव की मुश्किल बढ़ी। ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के जुड़े मामलों में केस दर्ज कर जांच शुरू की। डीयू चुनाव प्रचार के दौरान 2 छात्र गुटों में झड़प। जमकर चले लाठ डंडे। 1 छात्र गंभीर रूप से घायल।
झड़प के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल दिल्ली विश्वविद्यालय में तैनात। मामले गंभीरता को देखते खुद डीसीपी पीडीयू पहुंची। सत्र के तनाव के बाद एमसीडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। 3 पीजी बिल्डिंग्स पर नोटिस लगाकर डिमोलिशन शुरू। अहमदाबाद में पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में मां उमिया की महाआरती, हजारों लोग शामिल। इंदौर में मकान तोड़ते समय बड़ा हादसा, दीवार गिरने से 4 महिला मजदूरों की मौत, 5 घायल। बांदीपुरा जिले के गुरेज में तलाइल घाटी के ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, दिखा प्रकृति का सुंदर नजारा। हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम, मनाली में हो रही है जमकर बर्फबारी, सैलानी ले रहे हैं खुशनुमा मौसम का आनंद। लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी, 12 लाचा दर्रे से घेपन पीक तक बिछी सफेद बर्फ की चादर। पहाड़ों में बिछी बर्फ की सफेद चादर, बारिश और गिरते तापमान ने लाहौल स्पीति के मौसम का रंग पूरी तरह से बदल दिया है। सिखों के पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब में बदला मौसम, सीजन की पहली बर्फबारी। सूरत में स्वास्थ्य विभाग और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 8 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, बिना मान्य मेडिकल डिग्री चला रहे थे क्लिनिक, पुलिस ने डमी मरीज भेजकर की कार्रवाई। बिहार के खगड़िया में शराब माफिया के घर छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, घरवाले और समर्थकों ने घेर कर लाठी डंडों से किया हमला। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में गणेश मंडपम में अचानक भीषण आग से हड़कंप, आग लगने के कारणों की जांच जारी। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, डीयू के सूर्य ने कार से 4 युवकों को कुचला, 2 की मौत, 2 घायल। महाराष्ट्र के नासिक में कुत्तों के आतंक का अनोखा विरोध, नेता ने नगर पंचायत अधिकारी के दफ्तर में छोड़े कुत्ते, कई महीनों से लापरवाही का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के झांसी महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन के दौरान जमकर हंगामा। कानपुर के सरकारी अस्पताल में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का मामला आया सामने, डॉक्टर की जगह ड्राइवर ने संभाली ओपीडी, मरीजों को लिखी दवाएं। यूपी के बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद पर हमले के विरोध प्रदर्शन, डीएम ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। डीएम ऑफिस में जाने से रोके जाने पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की, लाठियां चलाकर कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खदेड़ा। गोरखपुर में डंपर की चपेट में आने से 17 वर्षीय युवक की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने डंपर में लगाई आग। यूपी के बांदा में चंदावल नदी की धारा में बहा मासूम, में लाश कराने ले जा रही थी मां, गोताखोर और एनडीआरएफ बच्चे की तलाश में जुटी। कानपुर नगर निगम की बड़ी लापरवाही, सड़क पर खुले पड़े सीवर में गड्ढे में गिरा डिलीवरी बॉय, गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र सिंधु दुर्ग स्थित प्रसिद्ध अंबोली झरने पर विशाल सांप गिरने से मची अफरा तफरी, घटना से लोगों में दहशत। कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ के गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान मस्जिद और मदरसे में पत्थर फेंके जाने के बाद तनाव। भोपाल में संघ की युवक ने मचाया तंग, शादी से इनकार पर युवती के घर फेंका पेट्रोल बम, मंगेतर को दी धमकी, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के झज्जर में दाजी रोड बाईपास स्थित एक दुकान में आग लगने से हड़कंप, फिलहाल किसी जनहानि की खबर नहीं। हैदराबाद के संगारेड्डी में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 6 की मौत। गाजियाबाद में नकली दवाओं का बाजार का बंडाफोड़, 50 लाख की फर्जी सप्लीमेंट और संदिग्ध दवाओं की खेप बरामद। जालना में खुले में मास्क की बिक्री पर महानगर पालिका का एक्शन, 14 दुकानें सील, खुले में मास्क बेचने वालों का सामान जब्त। नवगछिया में केंद्रीय मंत्री के नहीं पहुंचने पर राघोपुर के ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। ग्रेटर नोएडा में रोड रेज का खौफनाक मामला, नशे में धुत कार सवारों ने बाइक चालक को मारी टक्कर। गाजियाबाद में स्कूल वैन बेकाबू होकर सड़क के नीचे गिरी, बाल बाल बचे 4 बच्चे, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जयपुर परकोटे के बाजार में भीषण अग्निकांड, चपेट में आई 20,000 दुकानें, 3 घंटे बाद आग पर काबू। आग के चपेट में आए प्रतिष्ठानों में कपड़ों के गोदाम, प्लास्टिक का सामान, चूड़ी बैंगल्स की दुकानें शामिल, बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामान होने के कारण आग तेजी से फैली। मिर्जापुर में पति ने लाश में पैसे देने से किया इनकार तो पत्नी गंगा में कूदी, 12 घंटे बाद 40 मीटर दूर नाविकों ने सुरक्षित बचाया। पाराच चंद्रपुर में मुंबई और शिरडी अगर अद्भुत पलन, सिविल लाइन साहब ने गणेश मंडल में मुंबई के लाल बागचा राजा और शिरडी साईं बाबा के दर्शन। सूरत में भक्ति के साथ दिखा विकास का संदेश, वंदे मातरम ट्रेन की थीम पर बना अनोखा गणेश पंडाल। गणेशोत्सव में आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में दिखा विघ्नहर्ता की भव्य प्रतिमा। उड़ीसा दौरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, देवगढ़ में गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडाल का किया दौरा। तमिलनाडु के कुडलोर में विनायक चतुर्थी के समापन पर बंगाल की खाड़ी में हुआ गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा विराट कोहली टीम में शामिल।
शुभमन गिल कप्तानी वाली वनडे टीम में जडेजा और मोहम्मद सिराज की वापसी 27 सितंबर को ट्रिवेंड्रम में खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला। वेस्ट इंडीज दौरे पर खेले जाने वाले 5 T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान, वैभव सूर्यवंशी को टीम में जगह। 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा पहला T20 मुकाबला, रांची इंदौर हैदराबाद बेंगलुरु में होंगे बाकी मुकाबले। अफगानिस्तान के खिलाफ आज खेला जाएगा तीसरा T20 मुकाबला, कप्तान श्रेयस ने टीम में बदलाव के दिए संकेत। आज करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की दायरा हो रही रिलीज से मेघना गुलजार ने किया है डायरेक्ट। कुणाल खेमू की फिल्म वाइफ भी बॉक्स ऑफिस पर दिखाई कमाल, फिल्म में कुणाल खेमू, प्रीति जिंटा। लव स्टोरीज का तीसरा सीजन लॉन्च, इसमें 4 अलग कहानियां हैं जो प्यार, नजदीकी और आधुनिक रिश्तों की पेचीदगियों को दिखाती हैं। भारत में रेलवे टिकट के बड़े घोटाले पर आधारित वेटिंग है नाम की सीरीज अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हो रही है रिलीज। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया सीजन शुरू होने की घोषणा, 26 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर शुरू होगा शो का 5वां सीजन। अमिता अनंतनाग को मिलेगा साल 2024 का दादा साहब पुरस्कार, अनंतनाग ने कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और मराठी फिल्मों किया है काम। अमिता अनंतनाग ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, मालगुडी डेज से हुए थे लोकप्रिय। सरकार ने सेंसर बोर्ड का किया पुनर्गठन, 18 सदस्य नई सेंसर बोर्ड में सिनेमा, टीवी, संगीत, कला जगत की कई हस्तियां शामिल। सेंसर बोर्ड के नए सदस्यों में अभिनेता सुनील शेट्टी और नेत्री प्रीति जिंटा को मिली जगह। नए सेंसर बोर्ड में एक्टर पंकज त्रिपाठी, टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली और बंगाली सिनेमा के एक्टर प्रसन्नजीत चटर्जी शामिल। अमेरिकी संसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास हो चुका है। बिल रूस और ईरान को निशाना बनाकर व्यापक प्रतिबंध लगाने से जुड़ा है, इसे लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 नाम दिया गया है। इसका असर भारत और चीन जैसे देशों पर पड़ सकता है। ये बिल ट्रंप को रूसी तेल गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक आयात शुल्क लगाने का अधिकार देता है। ट्रंप अगले हफ्ते गल्फ लीडर्स के साथ ईरान पर बातचीत करेंगे, जिसमें ईरान के साथ जंग में अगले कदम पर बात की जाएगी। ट्रंप प्रशासन इसराइल को $2.8 अरब के सैन्य समझौते के तहत 4,000 शक्तिशाली बम देने की तैयारी में है। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। हूती सैन्य प्रवक्ता ने एक पर जारी बयान में दावा किया कि सऊदी F-15 मारिब प्रांत के स्पेस में सैन्य अभियान चला रहा था। हूती ने आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने पिछले एक सप्ताह में यमन के अलग अलग इलाकों में 450 से ज्यादा हवाई हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान में अमेरिकी अधिकारियों और ईरान समर्थित हूती नेताओं के बीच बातचीत के बाद अमेरिका ने यमन से सीधे सैन्य हस्तक्षेप न करने का फैसला किया है। अफीम के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर ट्रंप ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा भारत के प्रयासों का स्वागत है।

0: जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आतंकियों को ढेर किया है। ब्रतल इलाके में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन सोहन के तहत घेराबंदी की। खुफिया जानकारी के आधार पर ब्रतल इलाके में आतंकियों की मौजूदगी का पता चला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने रात में अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। हालांकि मारे गए आतंकियों की पहचान और उनके किसी संगठन से जुड़े होने की जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई। मीर फरीद में सहयोगी जुड़ गए हैं सर तमाम जानकारी के साथ। मीर, किस आतंकी संगठन से जुड़े हो सकते हैं, इस बारे में कोई अभी तक इनपुट आया?
1: नेहा, ये बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए और पिछले 6 से 7 दिन से लगे हुए थे सुरक्षा बल, सेना के स्पेशल फोर्सेस, राष्ट्रीय राइफल्स, पुलिस, सीआरपीएफ और मजाल्टा का जो इलाका है, पहला ऐसा ऑपरेशन नहीं है। दूसरा ऑपरेशन इस साल का फरवरी में भी बिल्कुल ऐसे ही ऑपरेशन में 2 जैश के आतंकियों को ढेर किया था। इस बार भी इनपुट था कि 2 से 3 है इस इलाके में, उनकी मूवमेंट ट्रेस हो रही थी और कल शाम में गोली चली है। कल देर रात गोली चली और कुछ देर तक मुठभेड़ हुई। सुबह पहली जब रोशनी आई, सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और 2 लाशें वहां से मिली। दोनों नॉन लोकल हैं और जैश ए मोहम्मद के हैं। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि कश्मीर टाइगर्स, जो कि एक शैडो प्रॉक्सी आउटफिट है जैश ए मोहम्मद का, उसी से इनका ताल्लुक है। बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद भी बरामद हुआ है और जैसे मैंने कहा कि खुफिया इनपुट्स आ रहे थे, इनकी लगातार मूवमेंट ट्रेस हो रही थी। इस एरिया को ट्रांजिट रूट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। मजाल्टा इलाका है उधमपुर का, पहाड़ी इलाका है, काफी दुर्गम इलाका है और इसीलिए ऑपरेशन जो था काफी सेंसिटिव था और मुश्किलें काफी ज्यादा थी। लेकिन दोनों को जो है घेर के मुठभेड़ हुई और इनको जो है मार गिराया गया। अभी आइडेंटिटी और इनकी शनाख्त जो है देखी जा रही है कि नाम क्या है, कोई बड़े कमांडर हैं, लेकिन ये जरूर है कि नॉन लोकल हैं और दोनों का ताल्लुक जो है कश्मीर टाइगर्स से। इससे पहले भी कश्मीर टाइगर्स के कई सारे जो आतंकी हैं वहां मारे गए हैं और उन्हें हमले भी किए हैं सुरक्षा एजेंसीज पे। इस बार भी पुख्ता इनपुट था, लेकिन इलाका बहुत बड़ा था, दायरा बहुत बड़ा था सर्च का और पिछले 7 दिन से लगातार जो है सीनियर ऑफिसर वहां कैंप कर रहे थे और चप्पे चप्पे को जो है खंगाला जा रहा था और फाइनली जो है कामयाबी मिली है जब इन दोनों को ढेर किया गया है। अभी भी इनपुट्स हैं कि शायद एक और हो सकता है और उसकी तलाश भी चल रही है और पूरे इलाके को जो है छान मारा जा रहा है। जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर थोड़ी देर में वाराणसी से सेवा संकल्प बाइक यात्रा शुरू होगी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। बाइक रैली को रवाना करने से पहले सीएम योगी, राजनाथ सिंह और चिराग पासवान ने काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। साथ ही बाइक रैली पर रवाना होने से पहले सेवा यात्रियों को सम्मानित किया गया। 250 बाइक से भारतीय जनता युवा मोर्चे के 500 कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की कर्मभूमि वाराणसी से उनकी जन्मभूमि वडनगर पहुंचेंगे। 7 अक्टूबर को यह यात्रा वडनगर में सम्पन्न होगी। ये वही दिन है जब सार्वजनिक सेवा में प्रधानमंत्री 25 साल पूरे कर लेंगे। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने गुजरात में सीएम पद की शपथ ली थी। वाराणसी से मेरे सहयोगी समर जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। समर, इस वक्त वहां पर क्या कार्यक्रम चल रहा है?
2: नया, इस वक्त हम रुद्राक्ष सेंटर पर हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है और जो युवा बीजेपी कार्यकर्ता हैं उन्होंने स्वागत ही योगी योगी के नारे लगाकर किया है। राजनाथ सिंह का भी स्वागत हुआ है और आपको दिखाऊं मैं रुद्राक्ष के बाहर का माहौल इस वक्त। तो यहाँ पर लोग जो है वो गुब्बारे लेकर खड़े हुए हैं और जैसे ही यहाँ पर मुख्यमंत्री और राजनाथ सिंह बाहर आएंगे, इस गुब्बारे को उड़ाकर कहीं ना कहीं फ्लैग ऑफ किया जाएगा। उन बाइक्स को, जो बाइक्स 500 के ऊपर लोगों को ले जाएगी यहाँ वाराणसी से वडनगर, और मौसम भी बनारस का इस वक्त जो है खुशनुमा हो चला है और उसी के चलते ये जो गुब्बारे हैं आप देखें तो ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तमाम जो लोकल बीजेपी की लीडरशिप है वो आपको सामने यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, जिन्होंने दिन रात एक कर ये पूरा कार्यक्रम बनाया है, कैसे कार्यक्रम की रूपरेखा होगी। और ये वो स्थान आपको मैं दिखाऊंगा जहां से बाइक्स जो हैं वो निकलेंगी। आपको मैं ले चलता हूं सामने की ओर भी, जहां पर ये बाइक्स खड़ी हैं इस वक्त 500 के ऊपर ये बाइक्स हैं जो यहां से कुछ ही क्षणों में निकलेंगी जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्लैग ऑफ करेंगे। ये देखिए सामने की तस्वीर आपको दिखाऊं, ये तमाम बाइक्स हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या क्या है, बाइक के साथ सेफ्टी भी है। सेफ्टी क्या है, सेफ्टी हेलमेट्स है, जितनी बाइक्स उतने हेलमेट्स। ये देखिए यहाँ हेलमेट्स का

0: और पीछे भी यहाँ पर सेवा संकल्प अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर यहाँ पर असंख्यों आपको अलग अलग तरह के हेलमेट दिखाई पड़ेंगे। क्यों दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि अगली तस्वीर है वो इन बाइक्स की है। जब बाइक से चलेगा कोई तो वो इन बाइक्स पर बैठने से पहले इन हेलमेट्स को अपने सिर पर लगाएंगे, जिससे कि जो है सेफ्टी उनकी बड़ी रहे। लंबा रूट है बनारस से लेकर वडनगर का, तो इस वजह से ये पूरी
1: तैयारी रोकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बोल रहे हैं
2: 2047 तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने की प्रार्थना करता हूं। मैं इस अवसर पर इस समारोह के अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी का, आप सभी काशीवासी और प्रदेशवासियों की ओर से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। हेड ऑफ द स्टेट के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सेवा संकल्प के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं 7 अक्टूबर 2026 को। 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ली थी और तब से बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे चरेवेती चरेवेती के इस मंत्र के साथ उन्होंने अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाया। अपने तप से, अपने परिश्रम से, अपनी साधना से और आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में उनकी गौरवशाली यात्रा हम सब 140 करोड़ भारतवासियों को एक नए भारत का दर्शन करा रहा है। एक ऐसा भारत जिस पर हम सब गौरव की अनुभूति कर सकते हैं, एक ऐसा भारत जो सुरक्षित है, एक ऐसा भारत जो दुनिया से आंख मिलाकर के बात करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका है। मित्रों, उसी सेवा संकल्प को स्मरणीय बनाने के लिए आज से दो यात्रा प्रारंभ हो रही है। एक यात्रा जहां से आज से 75 वर्ष पहले एक सामान्य परिवार में मोदी जी ने गुजरात में जन्म लिया, वडनगर। वडनगर गुजरात का एक पौराणिक गांव और कस्बा है, हजारों वर्षों की विरासत को अपने साथ समेटे हुए। गुजरात की पावन नदियों के जल को लेकर के वहां से 25-25 बाइक में 10 यात्राएं वहां से चलेंगी और काशी से उत्तर प्रदेश की 10 पावन नदियों के जल को लेकर के 10 यात्राएं भिन्न भिन्न मार्गों से होते हुए वडनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा काशी के महत्व को उन 10 राज्यों तक पहुंचाते हुए और वडनगर की यात्रा को उन

0: राज्यों तक पहुंचाते हुए बड़नगर में भगवान हाड़केश्वर महादेव के मंदिर से चल करके वहां की पावन जल को लेकर के और काशी में बाबा विश्वनाथ के प्रसाद को लेकर के उत्तर प्रदेश की पवित्र नदियों के जल को लेकर के यहां का पवित्र जल हाड़केश्वर महादेव को अर्पित होगा और गुजरात की पावन नदियों का जल बाबा विश्वनाथ को समर्पित होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत को आगे बढ़ाने वाली यात्रा आज हम शुभारंभ कर रहे हैं और इसमें सहभागी बन रहे हैं। मैं सबसे पहले इस यात्रा का हिस्सा बनने वाले इन सभी युवाओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अपना समय इस यात्रा के लिए उपलब्ध करवाया है। लेकिन यह यात्रा आज से 7 अक्टूबर तक चलेगी, लेकिन हमेशा स्मरणीय भी रहेगी, हमेशा स्मरणीय बनेगी। हर दिन यात्रा में, हर यात्रा को हर दिन 4 बड़े कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पे करने हैं। सेवा संकल्प के अभियान के साथ जुड़ना है, लेकिन याद करिए एक यात्रा आज से 75 वर्ष पहले जो बड़नगर से प्रारंभ हुई, एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में, विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में वह यात्रा, मोदी जी की भी वह यात्रा आज देशवासी और दुनियावासी देख रहे हैं। 25 वर्ष पहले वही सेवा की इसका संकल्प लेकर के जो यात्रा मोदी जी ने गुजरात से प्रारंभ की, वह यात्रा आज भारत का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा जो इस यात्रा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार न हो। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि 140 करोड़ का भारतवासी 25 वर्ष के मोदी जी के सेवा संकल्प की इस यात्रा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी रहा है।
1: रुक रहे हैं एक्चुअली से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर, सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
5: आगे आगे, अरे उधर उधर, करेक्ट करेक्ट,
6: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
7: SBI Celebrations Unlimited. Ye Ganeshotsav banega special with festive offers on car loan, gold loan, personal loan and loan against mutual funds.

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
8: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
7: विमल बोलो जुबां केसरी।
9: पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ। पंचायत आज तक 18 सितंबर, सिर्फ आज तक पर।

कांग्रेस और विपक्षी दलों का दावा है कि यूपीआई पर 2000 रुपए से ज्यादा के लेन देन को एमडीआर के दायरे में लाने की आशंका इसलिए चिंता बढ़ा रही है क्योंकि उनके मुताबिक आम लोगों के लिए बैंकिंग सेवाएं पहले ही महंगी हो चुकी हैं। आज बैंकिंग से जुड़ी कई सेवाओं पर ग्राहकों को अलग अलग तरह के चार्ज देने पड़ते हैं। डेबिट कार्ड या एटीएम की सालाना फीस करीब 150 से 300 रुपए तक हो सकती है। दूसरे बैंक के एटीएम से तय मुफ्त सीमा के बाद कैश निकालने या ट्रांजैक्शन करने पर करीब 21 से 23 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज लग सकता है। खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने पर कुछ बैंकों में अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है। ब्रांच में भी तय सीमा से ज्यादा लेन देन करने पर चार्ज लग सकता है। निजी बैंकों में न्यूनतम बैलेंस की शर्त पूरी नहीं करने पर 100 से 500 रुपए तक का शुल्क लगाया जा सकता है। चेक बाउंस होने पर भी बैंक के नियमों के मुताबिक 150 से 600 रुपए तक का चार्ज हो सकता है। मोबाइल एसएमएस अलर्ट, अतिरिक्त चेकबुक और बैंक के जरिए किए जाने वाले एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस जैसे लेन देन पर भी अलग अलग शुल्क हो सकते हैं। यहां तक कि कुछ बैंक खाते को बंद करने के लिए भी चार्ज लेते हैं। विपक्षी दलों का एक और दावा है कि 2014 के बाद बैंकिंग सेवाओं से जुड़े शुल्कों में बढ़ोतरी हुई। उनके मुताबिक एसएमएस अलर्ट, एटीएम ट्रांजैक्शन, न्यूनतम बैलेंस, ब्रांच ट्रांजैक्शन और डेबिट कार्ड जैसे चार्ज पहले की तुलना में बढ़े हैं। दूसरे बैंक के एटीएम से मुफ्त लेन देन की सीमा भी अब तय है। हालांकि बैंकिंग शुल्क बैंक खाते के प्रकार और सेवा के नियमों के हिसाब से अलग अलग होते हैं, इसलिए हर ग्राहक पर एक जैसे चार्ज लागू नहीं होते। अब यूपीआई के 2000 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर एमडीआर का मुद्दा कितना असर डालता है ये आने वाले नियमों और उनके लागू होने के तरीके पर निर्भर करेगा। फिलहाल बहस इसी पर है कि डिजिटल पेमेंट बढ़े लेकिन उसका अतिरिक्त बोझ आम ग्राहक पर न आए।

0: बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ हिट एंड रन मामले में बड़ी खबर आ रही है जिसमें दूसरा आरोपी दानिश फरार बताया जा रहा है। ये कल की घटना है जिसमें शाहनवाज गिरफ्तार किया गया था, मुख्य आरोपी ये है। थोड़ी देर बाद शाहनवाज की कोर्ट में पेशी होनी है। ये हिट एंड रन मामला जिसका फुटेज सामने आने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई थी और उसके थोड़ी देर बाद शाहनवाज को गिरफ्तार किया गया था। अब उसकी कोर्ट में आज पेशी होनी है। दूसरा आरोपी दानिश अब तक फरार है, उसके साथ ही वो कार में सवार था। महिला की कंप्लेंट के बाद पुलिस ने ये एक्शन लिया था। यही वो फुटेज है जो वायरल हुआ था जिसमें दूर तक इस महिला को सड़क पर खदेड़ा गया। कार दानिश चला रहा था, माफ कीजिएगा, कार शाहनवाज चला रहा था और उसी ने इस महिला को इस तरीके से कार में घसीटा। और आशीष मेरे सहयोगी ने बातचीत की है यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष अपर्णा यादव से, सुनिए बातचीत।
1: अपर्णा यादव इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, सेवा संकल्प का दिन भी है, इस तरीके से आज पहुंची थी टीवी अस्पताल में। आज सेवा संकल्प है, पूरी तरीके मनाया जा रहा प्रधानमंत्री मोदी।
2: आज बहुत बड़ा दिन है और ये बड़े मुझे लगता है सौभाग्य की बात है सबके लिए, पूरे देश के लिए, कि हमें ऐसे कर्मनिष्ठ आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य प्राप्त है। इस देश को जो है उन्होंने जो है बहुत आगे ले जाने का काम किया है और उनका यह जन्मोत्सव जो है हम एक सेवा संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं और उसी के तहत आज मैं इस अस्पताल में आई हूँ।
1: आप इससे पहले भी हमने देखा कई केजीएमयू के मामले रहो, कई आपने मामले उठाए महिला आयोग में भी, चूंकि आप जिम्मेदारी से महिलाओं के बात रखती हैं। कल एक मामला आया जिसमें एक महिला को कार से कुचलने की कहा गया, शाहनवाज नाम का व्यक्ति है, उसमें अरेस्ट किया गया पुलिस ने, आपने भी उसका संज्ञान लिया है, क्या उसमें आप करने वाले?
2: देखिए, उसको ऑलरेडी अरेस्ट करा दिया गया है और दूसरा विषय ये कि जो है समस्त रूप से जो भी इस पूरे प्रकरण के पीछे है, क्योंकि दिस वाज नॉट ओनली अ प्रीमा फेसी हिट एंड रन केस, ये तो अनइक्वली जो है हमने इसको डील किया है, उसको पुलिस अरेस्ट कर चुकी है जिसने ये किया था। गाड़ी उस व्यक्ति की नहीं थी, उस व्यक्ति ने जो भी झूठ वूट बोला है, जो मुझे प्राइमा फेसी पता चला है, तो इसकी हम लोग जांच करवाएंगे और इसके पीछे भी अगर कोई गुट शामिल है जो धर्मांतरण करा रहा है या कोई इस प्रकार के लोग हैं जहां पर हिंदू लड़कियां टारगेट हो रही हैं, तो उनका भी पर्दाफाश होगा। ऐसे आपने बहुत सारे केसेस देखे, केजीएमयू सबसे बड़ा, आपने तो खुद ही भी कवर किया उसको, झांगुर केस बहुत बड़ा था, तो इस तरह से हो सकता है इस तरह के केस में भी कुछ ऐसे संदिग्ध लोग हों।
1: महिला आयोग इसका स्वतः संज्ञान लेकर,
2: हमने लिया और अरेस्ट हो गया वो लड़का और हम फिर इसके तह तक जाएंगे।
1: इसमें जो पीड़िता है वो हिंदू है, जिस तरीके से बताया गया, नाम बदलकर उसके साथ बातचीत की गई, कई और लोग भी इसमें शामिल थे, क्या उनके लिए भी तफ्तीश?
2: बिल्कुल, देखिए उस महिला की जो पीड़ा है उसको एड्रेसल के ही तौर पे उसको अरेस्ट किया है। अब तो उससे ही पता चलेगा कि उसने क्यों किया ये सब, क्या उसके कारण थे, और लोग शामिल हैं कि नहीं, कितना बड़ा ग्रुप इन्वॉल्व है, यहाँ का ही लड़का है कि कहीं और बाहर का है, कितने लोग उसमें और स्टेट्स के शामिल हैं, कहीं विदेशी लोग तो नहीं लगे हुए हैं इस पे। तो ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि इस पे और भी ज्यादा डेप्थ में जाने से खुलासा होगा,
1: ट्रैप हो सकती है और भी लड़कियां इसमें।
2: आई एम प्रीटी श्योर, जैसे उस डॉक्टर रमीज मलिक के उसमें ट्रैप्ड थी लड़कियां और उसके जब एसटीएफ ने जांच करी तो उसके लैपटॉप पर से जो है बड़ा 17 लड़कियों का जो है, और वो सारी की सारी लड़कियां 17 लड़कियां हिंदू थी।
0: आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। आशीष, किस आधार पर यह कहा जा रहा है कि धर्मांतरण का एक बड़ा रैकेट हो सकता है? क्या अपर्णा यादव को इस तरह की कोई इनपुट्स हैं, कोई साक्ष्य है जिसके आधार पर ये कह रही हैं कि ये स्टैंड अलोन मामला नहीं है, इस तरह से हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है, क्या कह रही है पुलिस?
1: देखिए, आयोग ने जिस तरह से दावे किए हैं, अपर्णा यादव ने साफ तौर से पीड़िता से भी बातचीत की हुई है और कहीं ना कहीं उनके पास जो इनपुट्स हैं जो पीड़िता से शेयर किए गए होंगे उसमें साफ ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो शहनवाज है जिसका नाम है और जो हिंदू लड़की है वो शुरुआत से ही कहीं ना कहीं अनआइडेंटिफाइड नेम से जुड़े थे, जिसके बाद से ही बाद में भले ही लड़की को पता चला कि वो शहनवाज है। और इसको लेकर ऐसा कि कई ग्रुप में लोग हैं, क्योंकि उसका दोस्त जैसे कि दानिश अभी भी फरार है उस तरीके से देखा गया, तो कई ऐसे लोग ग्रुप में हैं जो कि उसके साथ में हैं। तो और कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो ट्रैप हुई हैं उसकी जांच भी आयोग अलग से कर रहा है, साथ ही साथ पुलिस के पास तो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस उसमें एक एक करके जांच ये कर रही है कि इस ग्रुप में और कितने लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हिट एंड रन का केस ना होकर सीधे तरीके से यह भी माना जा रहा है कि कहीं और भी लड़कियां तो जो पीड़िता जैसी हैं वो इसके ग्रुप में ट्रैप ना हुई हो, क्योंकि इस एंगल पर भी जांच की जा रही है। वहीं हिंदू रक्षा परिषद हो या अलग अलग अपर्णा यादव, जिस तरीके से वो खुद ही इस मुद्दे को उठाकर कह रही कि इसमें बड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए और जिसको लेकर वो खुद भी जांच करवा रही है। तो एक तरफ से तो ये हिट एंड रन हो गया कि लड़की को मारने की कहा जा रहा था, दूसरी तरफ आप देखिए कि इसमें नाम बदलकर जिस तरीके से रखा गया उसको लेकर भी काफी ज्यादा अब और जांच हो रही है। उस जांच में
0: आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच विश्व हिंदू रक्षा परिषद नाम के हिंदू संगठन ने लखनऊ पुलिस से मुलाकात कर इस मामले में एक ज्ञापन सौंप दिया है और बड़ी साजिश के आरोप लगाए हैं। संगठन का आरोप है कि एक पूरा गैंग है, इसमें कई गैंग के लोग शामिल हो सकते हैं। संगठन ने धर्मांतरण के आरोप में कार्रवाई की मांग की है। आशीष मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष से बातचीत करेंगे। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने इस पूरे मामले में जब ज्ञापन सौंपा उसके बाद क्या कुछ कहा, सुनिए।
3: स्थिति में आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डीसीपी पूर्वी कार्यालय पर आज मैडम को मैं ये ज्ञापन देने आया था। ज्ञापन का प्रक्रिया क्या है कि उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि उच्च स्तरीय जांच होगा तो जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में आपने देखा होगा, इसी तरह से आपने देखा आगरा में पुलिस आयुक्त दीपक कुमार जी द्वारा एक छोटे से प्रकरण में हम लोग उनसे टेलीफोन पर बात किए तो वो आपको बताना चाहूंगा। तीन प्रदेशों से सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई जबकि छोटा प्रकरण था, और ये तो बहुत बड़ा प्रकरण है। ये कई हिंदू लड़कियों को हिंदू बन करके और इसने फंसाया होगा, इसके पीछे विदेशी ताकत भी हो सकती है।
0: और अब खबर चीन और अमेरिका के युद्ध वाले दांव की।

दुनिया के अलग अलग देशों की माने अपनी ताकत बढ़ाने की होड़ सब में लगी हुई है। अमेरिका ने अंतरिक्ष में हथियार तैनात करने का खुलासा किया तो चीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सामने आया है कि चीन दुनिया का पहला अंडर वाटर ड्रोन मदरशिप बना रहा है और ये एक ऐसी मदरशिप है जिसके भीतर चार विशालकाय सबमरीन यानी पनडुब्बियां हैं जो मानव रहित होंगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर हुआ खुलासा बेहद चौंकाने वाला है।

0: एक ऐसा जहाज जो बेहद विशाल है, जो सबमरीन ड्रोन से लैस है और जो बेहद घातक है। जब समंदर की गहराई में क्रू के कमांड वाली पनडुब्बियों को जवाब देने के लिए चीन की बड़ी तैयारी चल रही है, चीन एक अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप बना रहा है। ऐसा अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप जो घातक हथियारों वाले 4 सबमरीन से लैस होगा। ऐसे सबमरीन जो पूरी तरह से अनमैन्ड होंगे, स्वचालित होंगे, उन सभी को अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप से चीन समंदर में लड़ाई के दौरान इस्तेमाल कर सकेगा। ऐसे समय में जब युद्ध के दौरान ड्रोन का दमखम पूरी दुनिया ने माना है, बगैर सैनिकों की जान गवाए जमीनी और आसमानी लड़ाई में दुश्मन देश को तबाह करने के लिए ड्रोन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब समंदर की लड़ाई के लिए चीन ड्रोन के घातक इस्तेमाल की तैयारी को अंजाम देने में जुटा है। चीन की समंदर वाली इस बड़ी तैयारी की सच्चाई तब सामने आई जब अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस कंपनी वेंटोर ने एक तस्वीर जारी की। ये तस्वीर है हुडोंग जोंगहुआ शिपयार्ड की, जहां एक लाल जहाज बनते हुए दिख रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा यही लाल जहाज चीन का अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप बताया जा रहा है। ये दुनिया का पहला अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप है। अब तक किसी भी देश को ऐसी कामयाबी नहीं मिली है। डिफेंस एक्सपर्ट चीन के अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप को लेकर हैरान है। उनका अनुमान है कि ये बिना क्रू वाले जहाज हजारों मील तक हथियार ले जा सकते हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज अनक्रूड अंडरसी व्हीकल कहा जा रहा है। तमाम देशों की पारंपरिक पनडुब्बियों से हटकर है ये चीन की अनमैन्ड सबमरीन। सोचिए, जिस दौर में दुनिया के तमाम बड़े देश क्रू वाली सबमरीन से अपनी सामरिक ताकत पर इतराते हैं, उस दौर में अब चीन का ये नया दांव दुनिया को हैरान करने वाला है। अब आपको बताते हैं कि चीन के अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप की क्या क्या खासियत है। इस जहाज की लंबाई करीब 205 मीटर और चौड़ाई 27 मीटर है। इसके पिछले हिस्से में करीब 55 मीटर लंबा और 13 मीटर चौड़ा वेट वेल है, जिसके जरिए ऑटोनॉमस सबमरीन समंदर में उतर सकेंगी। वेट वेल के आगे बंद हैंगर है, जहां 4 अनमैन्ड सबमरीन रखी जा सकती हैं।
1: देखिए, समुद्री शक्ति संतुलन में चीन आगे निकल रहा है और ये देखना होगा कि अब वो आक्रामक नीति अपना रहा है। अपनी तकनीकी का इस्तेमाल करके वो अंडरवाटर मानव रहित ड्रोन का जो प्रयोग कर रहा है, जिसकी रिपोर्ट आ रही है लगातार, इससे पूरे ईस्ट एशिया से लेकर के आसियान कंट्रीज और भारत, जो पूरा इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन का पूरा रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है। अब चीन के पास एक अपर हैंड सिचुएशन होगी, जिससे वो बार्गेनिंग पावर की कैपेसिटी डेवलप करके, चाहे वो ईस्ट चाइना सी हो या साउथ चाइना सी हो, जहां पर वो उसके जो एग्रेसिव पोस्टिंग हमेशा रहती है, जैसे फिलीपींस हो, जापान हो, इस तरह के जो देश हैं जो परेशान रहते हैं या उनके जहाजों पर चीन कभी ब्लॉकिंग, कभी ब्लॉकेट करता है, कभी आक्रमण करता है, तो अब अंडरवाटर ड्रोन से एक समुद्र के अंदर युद्ध की स्थिति बनने का खतरा है। और इस पर जो वैश्विक एक कंट्रोल या वैश्विक एजेंसीज हैं, उन्हें नजर रखनी होगी।
0: अनमैन्ड सबमरीन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ड्रोन के अंदर क्रू के लिए जगह लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम की जरूरत नहीं। शंघाई के इस शिपयार्ड में चीन इससे पहले विशालकाय युद्धपोत बना चुका है, जो जमीन और पानी दोनों पर आक्रमण कर सकते हैं। अब अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप बनाने वाला चीन पहला देश बन गया है। चीन की इस तैयारी का खुलासा पहली बार पिछले साल जनवरी में ही हो गया था। बड़ी खबर यह है कि चीन ने साउथ चाइना सी के हैनान द्वीप के तट पर मानव रहित पनडुब्बियों का परीक्षण भी कर लिया है, यानी पनडुब्बियां तैयार हैं और अब बस उन्हें विशाल जहाज के अंदरूनी हैंगर में फिट करना बाकी है। जानकार कह रहे हैं कि कोई भी इंसान और कितनी भी बड़ी रिसर्च इस तरह की ड्रोन मदरशिप की कल्पना नहीं कर सकती। आज तक ब्यूरो।
2: चीन की तैयारी तो आपने देख ली, और अब आपको दिखाते हैं अमेरिका का घातक प्लान। चीन के समंदर वाली तैयारी के बीच अमेरिका अब चांद तक लड़ाई लड़ने के मूड में है।
3: क्या अब चांद तक लड़ाई की तैयारी में है अमेरिका? आखिर क्या चाहता है अमेरिका? ट्रंप का वो घातक प्लान क्या है? अंतरिक्ष तक लड़ाई के हथियारों की तैनाती से हर कोई सन्न है। उसी की अगली कड़ी है चांद के करीब लड़ाई की तैयारी। अब बात चांद पर पहुंचने की नहीं। अमेरिका चांद पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को कई बार उतार चुका है, लेकिन अब बात उससे आगे की है। अमेरिका चांद के करीब लड़ाई का मन बना रहा है। 2 दिन पहले अमेरिका ने खुलासा किया था कि उसने ऑर्बिट में हथियारों की तैनाती कर दी है। अब ट्रंप के सैन्य सलाहकार का नया बयान आया है, कहा है कि अमेरिकी सैनिकों को चंद्रमा के आसपास लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। ट्रंप के सैन्य सलाहकार का यह बयान अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती की घोषणा के ठीक बाद आया है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन ने कहा है कि अमेरिकी सेना को अभी खुद को ढालना चाहिए ताकि वो समुद्र की तलहटी से लेकर सिसलूनर स्पेस यानी धरती और चंद्रमा के बीच के हिस्से में लड़ने, टिके रहने और जीतने के लिए तैयार रहे। ट्रंप सरकार ने हाल के दिनों में अंतरिक्ष में लड़ाई को लेकर अहम फैसले किए हैं। 2019 में ट्रंप के बनाए स्पेस फोर्स को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसी स्पेस फोर्स के सेक्रेटरी ट्रॉय मिंक ने खुलासा किया है कि अमेरिका ने ऑन ऑर्बिट स्पेस कंट्रोल वेपन्स तैनात किए हैं। सुपर पावर अमेरिका के इस ऐलान से पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने यह भी कहा है कि यह हथियार अंतरिक्ष में अमेरिकी सैन्य बलों को दुश्मन की कार्रवाई से बचाने और उसका मुकाबला करने के लिए है।
4: अभी अमेरिका ने क्या किया, क्या ये लीगल है? हाँ, लीगल तो है, करना नहीं चाहिए था, मॉरली गलत है। लेकिन अगर आप जो ट्रीटी के शब्द देखो तो आर्टिकल 4 में, जैसे मैंने पहले बताया है, उसमें सिर्फ लिखा है कि न्यूक्लियर वेपन्स और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। इसका मतलब बाकी की उन्होंने कोई बात नहीं की है। तो ये जो स्पेस रेस हो जाएगी, ये मैं समझता हूँ एक बहुत खतरनाक चीज है विश्व के लिए। ये सिर्फ मेजर पावर्स की बात नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए है। और अगर इस प्रकार की स्पेस वॉर अगर शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ आगे वाले दिन बहुत कठिन हो जाएंगे।
3: चिंताएं कई हैं, सवाल उठना लाजमी है कि आखिर स्पेस में हथियारों की होड़ क्यों? लेकिन अमेरिका ने अभी इसके कई तथ्यों का खुलासा नहीं किया है। स्पेस फोर्स का कहना है कि उसके पास ऑर्बिट में मौजूद स्पेस कंट्रोल वेपन्स हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य बलों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। हालांकि हथियारों की सही संख्या, उसके प्रकार या उसकी तैनाती की जगह की जानकारी देने से इनकार किया गया है। अमेरिका के इस कदम के बाद रूस और चीन ने चिंता जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है, कहा है कि चीन अंतरिक्ष में किसी भी तरह की सैन्य होड़ या उससे युद्ध क्षेत्र में बदलने की कोशिश का कड़ा विरोध करता है।
5: 中国一贯坚持和平利用外空、维护外空安全、反对外空武器化、战场化和军备竞赛。我们敦促美方停止在外空扩军备战，以实际行动维护全球战略稳定。
3: अमेरिका के स्पेस वेपन्स को लेकर कुछ ऐसी ही चिंता रूस ने भी जताई है। रूस ने कहा है कि अंतरिक्ष को किसी भी हथियार से मुक्त रखना चाहिए। तमाम चिंताओं के बीच अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ शुरू होने का नया खतरा है।
4: मिलिट्राइजेशन बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन स्पेस के ऊपर हथियार नहीं डाले थे। अब हथियार आगे हैं, ये पहली बार आगे हैं, और मैं समझता हूँ अब ये एक रेस अलग से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने किया है। अब यकीन मानिए रूस और चीन भी साथ जाएंगे, वो भी करेंगे, और रूस और चीन करेंगे तो भारत भी जरूर है, भारत पीछे नहीं रहेगा इसमें।
3: अमेरिका पहले भी अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने को लेकर लगातार काम करता रहा है। रूस, चीन और भारत समेत कई अन्य देश भी स्पेस में अपनी ताकत बढ़ा चुके हैं, जिनका इस्तेमाल सैन्य संचार, निगरानी और नेविगेशन से जुड़े सैटेलाइट को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन अब अंतरिक्ष में हथियारों की अमेरिकी तैनाती के बाद फिर से नई चिंता बढ़ चुकी है। आज तक ब्यूरो
2: रुकेंगे यहाँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, देखते रहेंगे आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
9: AU सोच बदलो और बैंक भी।
10: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स।
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
13: जेके वॉल मैक्स
14: बेस्ट पेंट,
15: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
14: जेके मैक्स पेंट्स,
13: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
15: संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है यूसीसी से, बताओ मुझे, कि निकाह नहीं होगा क्या हमारा? निकाह तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या? फेरे ही तो होंगे, क्या तमाशा बना रखा है? कुछ भी नहीं है।
16: छात्रों के मूवमेंट से डरी हुई सरकार के पास अब इसी तरह का कार्ड खेलने के अलावा और कोई चारा नहीं। और चुनाव में गिराने के लिए क्या है, नौकरियां वो दे नहीं पाए, स्टूडेंट्स जो है वो परेशान है, प्रोटेस्ट कर रहा है पूरे देश में, जेंजी से लेके जेन अल्फा तक। तो सरकार के पास मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यही सब है राज्यों में। ये भारत जो है वो विविधताओं का देश है, भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना। आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहाँ चली जाएगी? तो गृहमंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों सबसे मिल करके भारत बनता है। आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं, एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: विधानसभा का चुनाव घोषणा होने के पहले हमने कह रखा है कि 1,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी यूपी के अंदर उपलब्ध करवाएंगे।
3: जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वादों और घोषणाओं की रफ्तार भी जोर पकड़ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए दिन बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, कभी कैबिनेट में लिए गए फैसलों के जरिए तो कभी सार्वजनिक मंच से। यानी कि यूपी में बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। एक तरफ सरकार की ओर से ऐलान पर ऐलान हो रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी भी आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। संगठन स्तर पर रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूपी में बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और इस हफ्ते उनकी कई मंथन बैठक है। 17 और 18 सितंबर को गोरखपुर में, 19 और 20 सितंबर को अयोध्या में, 21 और 22 सितंबर को प्रयागराज में तावड़े सीधे जमीनी स्तर पर फीडबैक लेने वाले हैं। चर्चा संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों पर होगी। एक तरफ बीजेपी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ आरएसएस भी पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर उतर आया है। संघ और बीजेपी की अहम समन्वय बैठक हुई है। ये बैठक लखनऊ के बंथरा स्थित एक रिजॉर्ट में हुई। बैठक का फोकस अवध कानपुर में तैयारियों पर रहा। बैठक में संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने जमीनी फीडबैक लिया। आपको पता हो कि चुनावी अभियानों और बीजेपी को जीत दिलाने में संघ की हमेशा अहम भूमिका रही है। यूपी चुनाव में भी संघ एड़ी चोटी का जोर लगाने जा रहा है। समन्वय बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें संघ के सह सरकारीवाह अरुण कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे। बीजेपी की चुनावी कामयाबी में उसकी तैयारियों का बड़ा रोल रहा है और इस बार भी यूपी में वो तैयारियों को अभी से देख रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन

0: पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में 25 साल के नेतृत्व का जश्न। एक महीने तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान। वाराणसी से वडनगर तक बाइक रैली। योगी और राजनाथ सिंह ने की विश्वनाथ मंदिर में पूजा। वडनगर से अमित शाह ने देश को बताया मोदी का मतलब। का 36 देशों से सर्वोच्च सम्मान हासिल करने वाले वो विश्व के इकलौते नेता। अपने दम पर ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं नरेंद्र भाई। रेखा गुप्ता ने भी किया हवाल। दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी। भारत में अवसर और टैलेंट का लाभ उठाए दुनिया। सप्लाई चेन पर फोकस। सेमीकंडक्टर पर 52 देशों की 600 कंपनियों का मेगा इवेंट। ट्रंप को मिला रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार। अमेरिकी संसद के निचले सदन में बिल पास। अब भारत पर भी मंडराया 100% टैरिफ का खतरा। वीडियो में सलाम और इंशाल्लाह बोलने वाली पश्चिम बंगाल की लेडी आईपीएस बुशरा बानो के तबादले पर सियासी भूचाल। महबूबा मुफ्ती ने सीएम शुभेंदु पर साधा निशाना। बताया मुसलमानों के खिलाफ एजेंडा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत।
0: नमस्कार, आप देखिए आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। दो बच्चों के और न्यूज रूम लाइव में एक बार फिर से हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। तो हमेशा जैसे करते हैं न्यूज रूम लाइव में आज कौन सी खबरें हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले आज बात किस पर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से क्या मेगा इवेंट इस पर आयोजित किया गया है। वडनगर से वाराणसी, वाराणसी से वडनगर कैसे बाइक रैली निकाली जा रही है उसकी हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। क्या तैयारियां की गई हैं। दूसरी हम आपको बताएंगे कि कैसे सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जा रही हैं, कैसे पोस्ट किए जा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तीसरी जो बड़ी खबर हो रही है वो हम आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों का खात्मा करने की तैयारी कर ली गई है। ऑपरेशन की ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाएंगे कैसे आतंक पर प्रहार किया गया। और ठीक आधे घंटे बाद यानी 2:30 बजे हम आपको दिखाने जा रहे हैं मिशन सेमीकंडक्टर, मोदी का पावर मंत्र क्या रहने वाला है। ये सारी खबरें आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से जुड़ी खबर।

0: तो धूमधाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से खास तैयारियां भी की गई है, मेगा इवेंट एक तरह से बना दिया गया है। कई तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, वो तस्वीरें आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या खास तैयारियां यहां पर की गई हैं। सबसे पहले देखिए, वाराणसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, हवन पूजन होता है, फिर जो बड़े बड़े लड्डू तैयार किए जाते हैं वो लड्डू कार्यकर्ताओं को खिलाए जाते हैं, प्रसाद वितरण में दिग्गज जुटे हुए थे, वो दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं। अब वडनगर में अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वडनगर में है और रक्तदान से लेकर और भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली में रक्तदान होता है, सेवा संकल्प, अब नितिन नवीन वहां पर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो रक्तदान करते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता हैं वो भी हवन पूजन करते हैं, उन्होंने भी रक्तदान किया और नशा मुक्त मैराथन भी चलाया गया है। अम्बाला में ये मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी, उनकी तरफ से नशा मुक्त मैराथन चलाया गया है और लोगों को जागरूक किया गया है कि आप नशे से दूरी बना के रखें, क्योंकि नशा यानी जिंदगी तबाह। तो मोदी 76 साल के हो चुके, वडनगर से वाराणसी मतलब कर्मभूमि से जन्मभूमि और जन्मभूमि से कर्मभूमि बाइक रैली निकल रही है, जिसमें 250 बाइक पर 500 कार्यकर्ता 20 दिन में सफर तय करेंगे, 2000 किलोमीटर रोज 100 किलोमीटर चलेंगे और 7 तारीख को वो वाराणसी से निकलकर वडनगर पहुंचेंगे, यानी कर्मभूमि से जन्मभूमि। तो जैसा आपको बताया कि कर्मभूमि से जन्मभूमि बाइक रैली निकलेगी, 250 बाइक से 500 कार्यकर्ता जगह जगह रुकेंगे, जाएंगे और फिर बताएंगे कि क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं। अब ये वाराणसी की आप तस्वीरें देखिए, वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, अब यहां पर ये तस्वीर खास क्यों बताई जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, चंद्रबाबू नायडू भी आपको दिखाई देते हैं मुख्यमंत्री। अब ये बाइकें जो तैयार हैं, जिनकी पूजन भी किया गया है, नंबर भी इनको दिया गया है, 1, 2, 3, 4 ऐसे 250 नंबर तक ये बाइकें तैयार हैं और इन 250 बाइकों पर 500 कार्यकर्ता वाराणसी से निकलकर पहुंचेंगे वडनगर। 2000 किलोमीटर का सफर ये तय किया जाएगा। समर्थ श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सुबह से हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं वाराणसी से कि क्या क्या वहां पर हो रहा है। समर्थ, ये बताइए, जो कर्मभूमि से लेकर जन्मभूमि तक की जो यात्रा शुरू होने वाली थी बाइक पर, क्या वो निकल चुकी है, अभी वहां क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं?
1: हिमांशु, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और वाराणसी में इस वक्त इंद्रदेव भी मेहरबान है, क्योंकि आसमान से इस वक्त जो बूंदाबांदी है वो शुरू हो गई है और कुछ ही क्षणों में यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्लैग ऑफ करेंगे 500 बाइक्स के जत्थे को, जो सेवा संकल्प अभियान के संदेश को उनकी कर्म भूमि यानी कि वाराणसी से जन्मभूमि ले जाएगा गुजरात। तस्वीरों में अगर मैं आपको दिखाऊं तो माहौल यहां पर देखें और समझें कि ये इस वक्त पूरा स्टेज सेट हो चुका है। सामने आपको तमाम गुब्बारे दिखाई पड़ेंगे, कार्यकर्ता दिखाई पड़ेंगे, पुलिस सिक्योरिटी दिखाई पड़ेगी और कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचने वाले हैं और ये जो आप स्पेस देख रहे हैं यहीं से वो बाइक यात्रा जो है वो निकलेगी, जो बाइकर्स है 500। दिलचस्प बात यह है कि ये बाइकर्स अलग अलग राज्यों से हैं, तो कहीं ना कहीं जो डाइवर्सिटी का एक संदेश दिया जा रहा है यहां से, और एनडीए में इस वक्त जो मंच है वो भी बहुत गौर करने वाला है। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में महज 6 महीने का समय रह गया है, एनडीए दिखा रहा है कि किस तरीके से एकजुटता है। बिहार से चिराग पासवान उस स्टेज पर नजर आ रहे हैं, आपको नायडू साहब नजर आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह दिख रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी दिख रहे हैं। अब देखिए, बारिश यहां पर तेज हो रही है धीरे धीरे, लेकिन शंखनाद जो है वो अभी भी मैं यहां पर सुन पा रहा हूं। सामने रुद्राक्ष है, वो सेंटर है जहां पर ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है और कुछ ही क्षणों में यहां पर मुख्यमंत्री और राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनसे भी हम बात करने की वहां कोशिश करते हैं। काफी बारिश के बीच में इस वक्त ये कार्यक्रम यहां पर थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, फ्लैग ऑफ होना है। 500 लोग जत्थे में यहां निकलेंगे, उनके लिए हेलमेट्स भी यहां पर तैनात कर दिए गए हैं, रख दिए गए हैं और ये जत्था यहां बनारस से निकलकर सीधे जो है गुजरात जाएगा, तो वहां से एक जत्था निकलकर यहां आने वाला है। तो बारिश भले हो रही हो वाराणसी में, लेकिन एक बात तो साफ है, जो उत्साह है वो कम होने का नाम यहां नहीं ले रहा है, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे देखिए लोग अपने अपने शेड ढूंढकर यहां पर थोड़ा बारिश से बचने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उत्साह पूरा है और उस उत्साह का इंतजार कुछ ही क्षणों में खत्म होगा जब यहां से फ्लैग ऑफ होंगी वो बाइक्स। हमने उन लोगों से बात की, उन बाइकर्स से, वो काफी उत्साहित हैं, उनको एक डाक दिया जा रहा है जिसमें उनके लिए व्यवस्थाएं हैं, जगह जगह फूड पॉइंट्स बनाए गए हैं। तो इस तरह की तस्वीरें फिलहाल वाराणसी से देखने को मिल रही है, कितनी भी बारिश हो कितनी भी आंधी पानी हो जाए, लेकिन जो उत्साह है उसमें फिलहाल वाराणसी में कमी तो नहीं देखने को मिल रही है। जी हिमांशु,
0: अच्छा समर्थ, ये सारी तस्वीरें तो आपने दिखाई, लेकिन आपने बताया कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए हैं जो इस बाइक रैली में शामिल होंगे, जो 20 दिन तक 2000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए वाराणसी से वडनगर पहुंचेंगे। उनसे जब आपने बात की तो उनका क्या कहना था, उनकी उनके अंदर इस वक्त कैसा भाव आ रहा था क्योंकि 20 दिन के लिए वो निकलने वाले हैं?
1: हिमांशु बहुत दिलचस्प, मेरा सवाल यही था कि इतना लंबा जर्नी बाइक से कैसे पूरा करने वाले हैं। उनके अंदर उत्साह था, वो कह रहे थे हम तो इंतजार कर रहे थे कि हम कैसे उनका प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना सके और एक कहीं ना कहीं एक भूमिका निभा सके, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री प्रदेश के आ जाए, राजनाथ सिंह आ जाए, वो तो सब जानते हैं कि आएंगे क्योंकि बड़ा बड़ा दिवस है, लेकिन एक आम जो नागरिक है, खासकर जो युवा है, जो प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो करता आया है, वो कैसे इस यज्ञ में आहुति दे सकता है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है ये बाइक यात्रा जो यहां से निकल कर जाएगी। बारिश हो रही है लेकिन कुछ देर में आप इसी बारिश में यहीं इसी जगह से बाइक्स को निकलते हुए देखेंगे कि किस तरीके से जो बाइक्स हैं वो यहां से निकलेंगी सीधे गुजरात के लिए। चंद्रबाबू नायडू स्टेज पर थे, उन्होंने तमाम बातें प्रधानमंत्री को लेकर कही हैं। मुख्यमंत्री देखिए अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं कि किसी भी क्षण यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। सामने की तस्वीर एक बार दिखा दें, अगर आप यहां से जूम कर पाए तो वो तस्वीर दिखा दें कि किस तरीके से रंग बिरंगे गुब्बारों से स्वागत होना है। एंट्री पॉइंट पे जो बोर्ड लगा हुआ है उसको भी देख लें कि सेवा संकल्प अभियान जो है उसका बोर्ड लगा हुआ है, प्रधानमंत्री की तस्वीर यहां बनी हुई है। तो कुछ क्षण में राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं देश के, वो यहां पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचेंगे और यहां पर जो है फ्लैग ऑफ किया जाएगा उन बाइक्स को जो यहां से निकलकर सीधे जाएंगी गुजरात, यानी कि कर्मस्थली से निकलकर जन्मस्थली से, तो वहीं वहां से भी जो जन्मस्थली है वहां से भी चलकर बाइक्स आएंगी यहां पर। संदेश साफ है कि प्रधानमंत्री या यूं कहें बीजेपी ये चाहती है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को जो जनता की सेवा के को लेकर योजनाएं रही हैं या जो कार्य रहे हैं प्रधानमंत्री के, वो सब धरातल पर उतरे। ये बाइक जब समझिए अन्य राज्यों से होती हुई पहुंचेंगी गुजरात तो कितना भयानक सियासी संदेश भी जाएगा क्योंकि चुनाव भी नजदीक है।
0: ऐसे में आप बने रहिए और भी कई तस्वीरें बताएंगे। जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इंतजार किया जा रहा है, तो आपसे कुछ ही देर पहले उनसे भी बातचीत की गई, तो उन्होंने क्या कहा कि किस तरह से सेवा संकल्प अभियान चलाया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, वो आपको सुनाते हैं।
2: मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू जी नायडू और श्री चिराग जी पासवान एलजेपी के नेता और श्री पंकज जी चौधरी यहां के प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग यहां पर पूजा अर्चन करने के लिए काशी विश्वनाथ का आए थे और विधिवत पूजा अर्चन का कार्य संपन्न हुआ है और हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वह दीर्घायु करें।
3: बाबा से ही प्रार्थना की है कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु उन्हें प्राप्त हो और लंबे समय तक भारत का नेतृत्व उनके हाथों में रहे, जिससे भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विकसित भारत की संकल्पना उनके नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी देख सकें और उनके यशस्वी नेतृत्व में भारत दुनिया की नंबर एक अर्थव्यवस्था की तरफ तेजी के साथ आगे बढ़े।
0: तो तस्वीरें तो आपने देखी, अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही है, ये तस्वीरें आप देखिए। देखिए प्रसाद वितरण हुआ, हवन पूजन हुआ, रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, 108 कुंडीय महायज्ञ भी किया गया दिल्ली में, और वहीं पर जो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उन्होंने रक्तदान भी किया। अब अम्बाला में देखिए शपथ दिलाई गई कि नशा छोड़ दीजिए, नशा मुक्ति अभियान चलाया गया अम्बाला में और कई बड़ी हस्तियां भी यहां पर शामिल हुई। तो देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में इसी तरह के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सेवा संकल्प अभियान इसका नाम दिया गया है और ये कई दिनों तक भी चलेगा और इसको लेकर पूरी तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई है। अब वाराणसी से वडनगर और वडनगर से वाराणसी, देखिए 2000 किलोमीटर का सफर है वो तय किया जाएगा, 250 बाइक पर 500 कार्यकर्ता ये सफर तय करेंगे। इस दौरान वो रुकते हुए जाएंगे और रुकते हुए जहां कहीं गांव में रुकेंगे या फिर कस्बे तहसील से होते हुए जाएंगे, वहां पर 25 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उससे पहले मुख्यमंत्री रहे और फिर वो प्रधानमंत्री बने तो क्या क्या काम हुआ, क्या क्या विकास हुआ, वो सारी जानकारी दी जाएंगी कि आम लोगों का जीवन कैसे बेहतर बनाने की तैयारी सरकार की तरफ से की गई है। 2047 का लक्ष्य पूर्ण विकसित भारत का रखा गया है, उसको लेकर क्या रोड मैप है, ये रुकते हुए लोगों को बताते हुए जाएगा। तो ये तो आपने हमने आपको बताया कि कर्मभूमि से जन्मभूमि यानी वाराणसी से वडनगर, अब वडनगर से वाराणसी भी रैली निकलेगी और वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं और अमित शाह वहां पहुंचते हैं तो वो पहले वो पूजन करते हैं, आरती करते हैं और ये वो तस्वीरें आप देखिए, यही वो तस्वीरें हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आरती करते हैं, पूजा करते हैं और उसके बाद वो वहां पर संबोधित भी करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपने मन की बात रखते हैं और शर्मिष्ठा झील पर ये महाआरती की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब वहां से पैदल वो हटकेश्वर मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना वहां पर होती है और फिर बाइक रैली को उन्होंने हरी झंडी दिखाई।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पे आज उनके जन्मस्थली वडनगर से कर्मभूमि वाराणसी तक जो है वो बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरी झंडी दिखाई, साथ ही एनडीए ने जो है अपनी अपनी शक्ति बताई है। आज एनडीए के दो घटक दल जो साथी सहयोगी है एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल दोनों यहां पे मौजूद रहे और ये पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री की जनसेवा की बात की, किस तरह प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन को सुधारा। खुद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश को ऐसा नेता मिलना मुश्किल है जिसने जो है वो परिवार को छोड़कर देश को अपना परिवार बनाया और देश के लिए काम किया। ये जो बाइक यात्रा निकली है, ये बाइक यात्रा जो है वो शर्मिष्ठा तालाब का जल लेकर काशी पहुंचेगी और गंगा जल और साथ ही काशी विश्वनाथ में जो है वो चढ़ाया जाएगा। तो ये एक जन्मभूमि से कर्मभूमि तक का कनेक्शन स्थापित किया गया, साथ ही युवाओं को जोड़कर युवाओं को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी भाजपा के द्वारा की जा रही है।
0: तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वडनगर पहुंचे थे और वडनगर पर उन्होंने संबोधित भी किया, क्या कहा इस सेवा संकल्प अभियान को लेकर वो आपको सुनाते हैं।
5: मैं आज हटकेश्वर महादेव के चरणों में मोदी जी के दीर्घायुष और स्वास्थ्य पूर्ण लंबे जीवन के लिए करबद्ध निवेदन करता हूं। मित्रों, आज कुछ क्षण के बाद यहां से एक यात्रा का शुभारंभ होगा। इस सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है और ये यात्रा निकलेगी वडनगर से वाराणसी तक। मोदी जी की जन्मभूमि से लेकर मोदी जी की कर्मभूमि तक और ये यात्रा हटकेश्वर महादेव के प्रांगण से निकलकर काशी विश्वनाथ के चरणों तक पहुंचेगी और ये यात्रा में 7 राज्य हमारे 300 और 300 वाराणसी से आज ही निकलेंगे। 600 बाइकर्स 7 राज्य को कवर करते हुए अनेकानेक गांवों में ये 25 साल के मोदी जी के काम का संदेश पहुंचाते हुए निकलेंगे। ये 25 साल में इसलिए कह रहा हूं कि आज मोदी जी का जन्मदिन है, मगर 7 अक्टूबर को वो दिन है जिस दिन मोदी जी राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में 25 साल पूर्ण करेंगे।
0: तो देखिए, अलग अलग जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, आयोजित किए जा रहे हैं। आपने देखा कि वडनगर से भी कार्यक्रम हुआ जहां पर गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई। 250 जो कार्यकर्ता थे, अब वो 250 बाइकों पर 500 कार्यकर्ता निकले हुए हैं। अब दिल्ली में भी इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित हुआ, दिल्ली में 108 कुंडिया यज्ञ हुआ, लेकिन उससे पहले आपको उज्जैन लिए चलते क्योंकि उज्जैन में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव से जुड़े हुए और वहां से रवीश पाल हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवीश, जरा बताइए क्या विशेष तैयारियां आज वहां पर हो रही हैं, आज हो क्या रहा है उज्जैन में?
6: देखिए, मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा आयोजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर, वो उज्जैन में हो रहा है। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी है और यही वो शहर है जहां पे महाकाल महालोक का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था साल 2022 में। और अब अगर देखें, आज 25 लाख दिए उज्जैन के रामघाट पे जलाए जाने की तैयारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं ऐसे ही एक ब्लॉक के बीच में खड़ा हूं। ऐसे जो ब्लॉक है, हर ब्लॉक पे ऐसे 250 दिए हैं और ऐसे 8 सेक्टर कुल बनाए गए हैं जहां पर कुल 25 लाख दिए रखे गए हैं। आप देखिए तस्वीरों में सामने, ये पूरा रामघाट का जो इलाका है ये इस वक्त दियों से अटा पड़ा हुआ है। जिस जगह पे इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वो यहाँ पे मौजूद होंगे। सबसे पहले वो दिया जलाएंगे और उसके बाद शाम को 7 बजे हुटर बजेगा और हुटर बजने के साथ ही 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स जो हैं वो इन दियों को एक साथ जलाएंगे और उस वक्त ये छटा देखने लायक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो जन्मदिन है इसे सेवा संकल्प अभियान के तौर पर देखा जा रहा है और उसी के तहत ये पूरी तैयारी है। देखिए सामने वो नाम है जिसमें नितिन नवीन और मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले बैठेंगे और जब दिए जलेंगे इस रामघाट पे 25 लाख दिए तो नाव में बैठ करके मुख्यमंत्री जो है इस पूरे इस क्षेत्र का अवलोकन करेंगे। सामने आप देखिए नरसिंह घाट है, सामने आप जो देख रहे हैं वहां पर भी दिए लगे हैं और ऐसे ही तकरीबन 15 किलोमीटर का इलाका है शिप्रा नदी के तट का जहां पे अलग अलग घाटों पे ये कार्यक्रम होना है। सामने आप देख सकते हैं उज्जैन कलेक्टर है डॉक्टर रोशन सिंह जो लगातार मुआयना कर रहे हैं, तैयारी का जायजा ले रहे हैं। उनसे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितना बड़ा मैन पावर जो है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कार्यक्रम कितना बड़ा है। लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए उज्जैन कलेक्टर डॉक्टर रोशन सिंह। सर कितना बड़ा आज का आयोजन है ये और मैन पावर को देखें या फिर वॉलंटियर्स की संख्या को देखें, क्या तैयारी है सर?
7: जी जैसा आप देख पा रहे हैं 30 लाख के आसपास जो है दिए लगाए गए हैं और भव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा शाम को 7 बजे। जैसे ही सायरन बजेगा उसके साथ ही जो है दीयों का प्रज्वलन शुरू हो जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति रहेगी और लगभग 30,000 से अधिक वॉलंटियर्स ने अपना पंजीयन कराया है और सारे वॉलंटियर्स अपने हाथों से दीपों का प्रज्वलन करेंगे और लगभग 20 से 25 मिनट में सारे दिए जो है प्रज्वलित हो जाएंगे और भव्य दीपोत्सव का यहाँ पे माहौल होगा। उसके बाद आतिशबाजी

0: इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये कार्यक्रम आज उज्जैन में होने वाला है। ये मुख्यमंत्री का शहर भी है उज्जैन, तो ऐसे में प्रशासन भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है कि जो जन्मदिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पूरी तरीके से भव्य रहे। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन जो है वो फिलहाल यही केंद्र बिंदु रहने वाला है, उज्जैन का यही रामघाट, जहां पे शाम 7 बजे हूटर बजने के साथ ही 25 लाख दीयों को जलाने की तैयारी है।
1: और बिल्कुल खास तैयारियां तो यहां पर की गई हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में भी विशेष इंतजाम किए गए। दिल्ली में खाटू श्याम मंदिर पर 108 कुंडिया यज्ञ भी हुआ, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी पहुंची। और आपको देखेंगे बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी आपको दिखाई देंगे। और सिर्फ यज्ञ तक सीमित नहीं था, ये जो आप देख रहे हैं ये खाटू श्याम मंदिर, वहां पर ये विशेष पूजन किया गया। और दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर में 108 कुंडिया यज्ञ का आयोजन किया गया। और इसके बाद फिर और भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इतने में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तो थी, उनके साथ में कैबिनेट के कई मंत्री भी शामिल थे, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल थे। अब देखिए यही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अभी दिल्ली में थे, अब शाम को कहां पहुंचेंगे, उज्जैन पहुंचेंगे, उज्जैन के रामघाट, जहां से अभी कुछ देर पहले आप रवीश पाल की रिपोर्ट देख रहे थे। तो वहां पर आशीर्वाद दिया जो कार्यक्रम है वो दीप जलाए जाएंगे और मुख्यमंत्री मोहन यादव उस वक्त उनके साथ में रहेंगे। लेकिन अभी ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये दिल्ली की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी का जो मेगा जश्न हो रहा है ये देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राज्यों में आयोजित किया जा रहा है। और यहां पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।

0: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
1: और वही कहाँ गए थे घूमने?
0: जीके मैक्स।
2: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
0: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
0: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
0: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।
9: In association with
10: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
11: पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ। पंचायत आज तक, 18 सितंबर, सिर्फ आज तक पर।

0: राजस्थान में टूरिज्म का भले ही ऑफ सीजन चल रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ रिजॉर्ट और होटल फुल। राजस्थान के पार्षद स्विमिंग पूल में चिल कर रहे हैं, तो कहीं परिवार का जन्मदिन मनाने के लिए सबको रिजॉर्ट में बुला ले रहे हैं। देर रात तक गीत संगीत की महफिल चल रही है। नाली पानी सड़क बिजली के लिए संघर्ष कर रही जनता को पसीने पसीने छोड़कर पुष्कर के रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल में मजे कर रहे हैं। ये ब्यावर के कांग्रेस के पार्षद हैं। 9 सितंबर को वोटिंग के बाद से ही इन्हें रिजॉर्ट में बंद कर दिया गया है। दौसा के महुआ नगरपालिका में जीते ये बीजेपी के पार्षद हैं, जो जयपुर के जामवारागढ़ में रिजॉर्ट में महुआ के विधायक राजेंद्र मीणा की बेटी के जन्मदिन की पार्टी में शरीक हो रहे हैं। इस पार्टी में आशीर्वाद देने बाड़ेबंदी में ही कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आए। राजस्थान के 309 निकाय चुनाव में से बीजेपी को 85 निकाय में बहुमत मिला है, तो कांग्रेस को 45 निकाय में स्पष्ट बहुमत मिला है। बाकी 5 नगर निगम, 18 नगर परिषद और 122 नगर पालिकाओं में चाबी निर्दलियों के हाथ में है। 34 निकायों में तो निर्दलियों ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसे में पार्टी नेताओं को डर था कि कहीं जीतने वाले पार्षदों पर दूसरे दलों की नजर ना पड़ जाए और बोर्ड बनाने के समय कोई खेला ना हो जाए। इसी आशंका के चलते प्रत्याशियों को अलग अलग होटलों में ठहराया गया। मतदान के बाद पार्षद अपने वार्ड में जनता के बीच कम और होटल की चारदीवारी में ज्यादा नजर आए। सबसे ज्यादा खतरा अजमेर के कांग्रेस के पार्षदों को, जिन्हें 4 दिनों में 4 होटल बदलने पड़े और आखिर में इन्हें कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक के बेंगलुरु में ले जाना पड़ा। अजमेर के कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी हमारे पार्षदों को तोड़ने में लगी है। होटलों में पार्षदों की आवभगत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लजीज पकवान खिलाए जा रहे हैं, मौज मस्ती का भी पूरा इंतजाम है, ताकि वफादारी निभाने के समय ये भाग न जाए। जयपुर में तो बीजेपी ने बहुमत मिलने के बाद भी पार्षदों को 30 किलोमीटर दूर बगलू के होटल में बंद कर रखा है। गेट पर ताला बंद है। किसी की पत्नी प्रसाद लेकर पहुंच रही है, तो किसी का बेटा दवाई लेकर आ रहा है।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में 25 साल के नेतृत्व का जश्न। एक महीने तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान। वाराणसी से वडनगर तक बाइक रैली। योगी और राजनाथ ने की विश्वनाथ मंदिर में पूजा। वडनगर से अमित शाह ने देश को बताया मोदी का मतलब का। 36 देशों से सर्वोच्च सम्मान हासिल करने वाले वो विश्व के एक लौते नेता अपने दम पर ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं नरेंद्र भाई। रेखा गुप्ता ने भी दिल्ली में किया हवन। दिल्ली के यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी, भारत में अवसर और चैलेंज का लाभ उठाए दुनिया। सप्लाई चेन पर फोकस, सेमीकंडक्टर पर 52 देशों की 600 कंपनियों का मेगा इवेंट। असली टीएमसी की लड़ाई का आज हो सकता है फैसला। पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर चुनाव आयोग करेगा सुनवाई। दोनों गुटों को बुलाया गया उपचुनाव से पहले फैसले की घड़ी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 आतंकियों को ढेर करने के बाद पहाड़ और जंगल का चप्पा चप्पा छान रहे हैं सुरक्षा बल। रात भर चला ऑपरेशन। जैश से था दहशतगर्दों का कनेक्शन।

देखिए बुलेटिन के इस हिस्से में बात करेंगे भारत के सेमिकॉन मिशन की। सेमिकॉन मिशन 2026 उसकी शुरुआत हो चुकी है और तमाम देशों के दिग्गज इसमें जुड़े हुए हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मजबूत करने के लिए ये एक अभियान चलाया जा रहा है और अब इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसकी शुरुआत की गई है सेमिकॉन इंडिया 2026 की। और माइक्रोचिप की ताकत, चिप से शिप तक आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को यहां पर रखा गया है कि कैसे भारत को आगे मजबूती की तरफ ले जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताया कि युवाओं को कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि जब चिप की बात करते हैं तो आजकल हर चीज में हथियार, डीआरडीओ, सुरक्षा हर जगह चिप का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में किसी देश की उन्नति अब इस बात पर तय होती है कि वहां का सेमीकंडक्टर क्षेत्र कितना मजबूत है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।

0: सेमी कंडक्टर, हिंदी में कहे तो अर्धचालक, आम बोलचाल में इसे चिप कहते हैं। एक छोटी सी चिप जिस पर दुनिया की तकनीक टिकी हुई है। ये मोबाइल फोन, ये लैपटॉप, ये कैमरे, इनका आधार क्या है? एक चिप ही तो है, वही चिप जिसे सेमी कंडक्टर कहते हैं। आज दुनिया उसी की है जिसके पास सेमी कंडक्टर की ताकत है। एक मामूली सी चिप की ताकत कितनी है, इसको ऐसे समझिए कि 21वीं सदी की विश्व व्यवस्था में असली ताकत इस बात से तय होती है कि उस देश की माइक्रोचिप यानी सेमीकंडक्टर कितनी ताकतवर है। ताइवान जैसा छोटा सा देश सेमीकंडक्टर का हब है और यही उसकी ताकत है, वरना चीन कब का उसे हजम कर गया होता। फोन की स्क्रीन से कार के इंजन तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देश की रक्षा प्रणाली तक, सब कुछ एक छोटे से सेमीकंडक्टर पर टिका है। आज की स्थिति ये है कि सेमीकंडक्टर के मामले में भारत दूसरे देशों पर निर्भर है और इसी निर्भरता को आत्मनिर्भरता में बदलने के लिए भारत ने 2021 में शुरू किया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 3 दिनों तक सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया गया है। इस बार के सेमिकॉन की थीम है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। मकसद साफ है कि भारत में सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम तैयार करना है।
1: सेमिकॉन इंडिया 5 का जो मंच है वो सज चुका है। दरअसल इसी के साथ शुरुआत होती है भारत के उस चैप्टर 2 की, यानी जो भूमिका हमने रखी थी कि सिर्फ चिप का फैब्रिकेशन डिजाइन, और अब हम बात करेंगे भारत में चिप बनाए जाने के लिए। ये वो साल है जब भारत में सेमीकंडक्टर कंपनियां चिप बनाने की ओर आगे बढ़ चुकी हैं, और आज हम उस समय उस मोड़ पर हैं जहां इस बात के बारे में विचार कर रहे हैं कि भारत के बने हुए वो चिप क्या हम सिर्फ भारत के बाजारों तक ही सीमित रखेंगे या उसे दुनिया तक पहुंचाना होगा।
0: 3 दिनों तक चलने वाले सेमिकॉन की शुरुआत पीएम मोदी की स्पीच से हुई। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का पूरा प्लान सामने रखा।
2: बिना किसी डिले के बहुत बड़ी मात्रा में डेटा यहां से वहां पहुंचाना हो, हीट और पावर को मैनेज करना हो, ऐसी अनेक चुनौतियां सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने है। इन चुनौतियों के बीच दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई और भरोसेमंद, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, नई और भरोसेमंद लोकेशंस की भी जरूरत सबसे ज्यादा हो रही है। और भारत, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत इसके लिए खुद को लगातार तैयार कर रहा है।
0: सेमिकॉन 2026 में दुनिया भर से आए दिग्गज अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये सम्मेलन सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम कवर करेगा, जिनमें शामिल हैं विनिर्माण और प्रौद्योगिकी, एआई और डिजिटल परिवर्तन, सप्लाई चेन प्रबंधन, उत्पादन और डिजाइन, स्टार्टअप और नवाचार।
2: भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चलते हुए हमने इस सेक्टर में और भी रिफॉर्म्स किए हैं। अब इंटरनेशनल कंपनीज भी हमारे स्टार्टअप के साथ इंडियन डिजाइन कंपनीज और ओसीआई ओन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं।
0: इस बार के सेमिकॉन में 52 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इनमें 240 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, निवेशक, शोधकर्ता तथा स्टार्टअप हिस्सा ले रहे हैं। सेमिकॉन में 6 देशों के पवेलियन बनाए गए हैं। भारत के 10 राज्यों की सरकारों ने अपना पवेलियन बनाया है, जिसमें सेमीकंडक्टर तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। सेमीकंडक्टर की इस रेस में भारत ने देर से कदम जरूर रखा, लेकिन अब रफ्तार बढ़ाने की कोशिश तेज है। लक्ष्य सिर्फ दूसरे देशों से चिप मंगाने का नहीं, बल्कि डिजाइन से लेकर निर्माण और पैकेजिंग तक अपनी पूरी चिप वैल्यू चेन तैयार करने का है। तकनीक के इस दौर में जिस देश के पास चिप की ताकत और मजबूत इकोसिस्टम होगा, दुनिया उसके पीछे चलेगी। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: देखिए, सेमीकंडक्टर को लेकर आपने ये समझ लिया कि कितनी इसकी अहमियत है, ये कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज इसी बात से तय किया जाता है कि किसी देश में माइक्रोचिप कितनी मजबूत है, तो उससे उसकी ताकत भी देखी जाती है। लेकिन भारत की स्थिति क्या है? आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भारत अपनी सेमीकंडक्टर हब में कितना मजबूत हुआ है, कैसे चिप बनाता है, और जो जरूरी सामान चाहिए होता है वो कहाँ से मिलता है। तो वो एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं।

0: भारत में सेमीकंडक्टर के मामले में आज की स्थिति ये है कि अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाना पड़ता है। बेंगलुरु नोएडा में कुछ टेक कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन जरूर करती हैं, लेकिन उत्पादन किसी दूसरे देश में होता है। भारत में मोबाइल फोन यूजर करोड़ों में है। मोबाइल की रीढ़ यानी सेमीकंडक्टर विदेश से आती है। सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने सोचना तो बहुत पहले शुरू किया था, लेकिन असल में काम हुआ साल 2021 में। कहने को साल 2007 में भारत ने अपनी सेमीकंडक्टर नीति बनाई, लेकिन मिशन मोड में काम शुरू हुआ 2021 में, जब भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की। भारत का विजन और मिशन स्पष्ट है कि सेमीकंडक्टर के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना है।
1: दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जो रेयर अर्थ मिनरल को वेपनाइज कर चुके हैं, और ऐसे में बदलती जियोपॉलिटिक्स परिस्थितियों के चलते उसका खामियाजा भारत जैसे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ता है। अब ऐसा भी नहीं है कि सेमीकंडक्टर या इस तरह को चिप बनाने के लिए पूरी निर्भरता सिर्फ और सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल पर है, बल्कि इसकी प्राथमिक जरूरत सिलिकॉन है। ये और बात है कि उसकी प्रोसेसिंग में जो जटिलताएं हैं उसमें रेयर अर्थ मिनरल की जरूरत होती है, लेकिन भारत के पास जो तकनीक है, जो दक्षता है, जो संसाधन है, इन्हीं संसाधनों के जरिए फिर चाहे वो सेमीकंडक्टर फेज वन हो या फेज टू हो, जिसके जरिए हमने 10 सालों में वो मुकाम छुआ है कि आज भारत में वो कंपनियां तैयार हो रही हैं।
0: आज के समय में सेमीकंडक्टर की जरूरत लगभग हर तकनीक में है, फिर चाहे मोबाइल फोन हो, वाहन हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। भारत को सेमीकंडक्टर की भारी जरूरत है, क्योंकि भारत का बाजार बड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। रोजमर्रा के कामकाज में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है, इसलिए भारत को सेमीकंडक्टर की सबसे अधिक जरूरत है।
2: सरकार के इन प्रयासों के बीच मैं आज युवाओं से भी आह्वान करूंगा, जो यंग टैलेंट्स भारत में रिसर्च कर रहे हैं वे आगे आए, जो युवा विदेशों में रिसर्च कर रहे हैं वे भी भारत में एडवांस टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट से जुड़े। मैं इंडस्ट्री लीडर से आग्रह करता हूं, आप देश में R&D को लीड करें। इसमें इंडस्ट्री का भी फायदा है और भारत की युवा शक्ति को भी इससे ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत को चिप से लेकर शिप तक हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की माने तो सेमीकंडक्टर में भारत के पास पहले से ही कुछ बढ़त है। दुनिया के लगभग 20% चिप डिजाइन इंजीनियर्स भारत में मौजूद हैं। ये इंजीनियर एम्बेडेड सिस्टम और सिस्टम इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हैं।
2: और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है, तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एस्पिरेंस आपके सामने है और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
0: युद्धों और वैश्विक तनावों के बीच उलझी दुनिया में क्रिटिकल रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा है। जिन देशों के पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वो उसको हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देश सप्लाई चेन को प्रभावित करते हैं, जिससे दुनिया भर में तकनीक महंगी हो जाती है।
1: 3 दिनों के सेमीकॉन इंडिया में 52 देशों के कुल 600 प्रतिनिधि समझे हिस्सा ले रहे हैं। कई सारे ऐसे देश चाहे कोरिया, जापान, मलेशिया, जिनके स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये सिर्फ वो तकनीक भारत के सामने, दुनिया के सामने रखने नहीं आए हैं जिनमें उनकी दक्षता है, बल्कि उसी के साथ साथ भारत के जो प्लेयर्स हैं सेमीकंडक्टर क्षेत्र के, उन्हें उनसे सीखने को मिलेगा। न सिर्फ यहाँ विचारों का आदान प्रदान है, बल्कि भारत ये भी सीख सकता है कि अपनी उन्नत तकनीक, अपने संसाधनों को वो दुनिया की तकनीक के साथ कैसे मैच कर सकता है। और इसीलिए जब सेमीकॉन इंडिया का ये 5वां एडिशन होता है, तो अपने आप ये भारत की उस उभरती ताकत को बताता है कि जिस सेमीकंडक्टर की हमारी निर्भरता 10 साल पहले तक दुनिया पर थी, वो धीरे धीरे कम करने के लिए हम बेहद तेजी से उस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
0: 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू हुआ था। सेमीकॉन 1 के लिए 76,000 करोड़ का बजट रखा गया। 2022 में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया। 2023 के बाद बड़े पैमाने पर फैब पैकेजिंग और टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने लगी। मई 2026 तक देश में 12 फैब पैकेजिंग यूनिट और 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए। फरवरी 2026 में गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर का कमर्शियल उत्पादन शुरू हो चुका है। जुलाई 2026 में सेमीकॉन 2.0 के लिए सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए की घोषणा की।
3: देखिए, अब सेमीकंडक्टर की बात चल रही है तो इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है कि भारत ने अपने विजन में इसको शामिल किया है। जो अभी तक असंभव लग रहा था, अब वो भारत उस विजन पर काम कर रहा है।
4: मोदी जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात की तो बहुत से लोग आए और बोले, यह कैसे हो सकता है? भारत में सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री कैसे लग सकती है? कुछ ने तो यह भी कह दिया कि यह करने की जरूरत ही क्या है। कुछ लोगों ने यह भी कह दिया, और आपको यह जानकर खुशी होगी कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमने पिछले साल देश की पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बना ली है। मेरे बहनों भाई,
3: तो देखिए, बार बार इस बात का जिक्र होता है और विशेषज्ञ ये कहते हैं कि किसी भी देश की मजबूती ताकत ये देखा जाता है कि वो तकनीक में कितना मजबूत है, सेमीकंडक्टर चिप में कितना मजबूत है। और ऐसे में सेमीकंडक्टर चिप की जब बात की जाती है तो ये बनती कैसे है, इसका आधार क्या होता है? अब ये आपके मन में सवाल चल रहा होगा, कौन से देश हैं जो इस पूरे सेक्टर को लीड कर रहे हैं, तो वो भी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
5: आखिर ये सेमीकंडक्टर है क्या? एक छोटी सी चिप इतनी जरूरी क्यों है? आइए एकदम आसान शब्दों में बताते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए बिजली और उस बिजली को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। सेमीकंडक्टर चिप इसी काम को अंजाम देती है। ये चिप एक तरह से डिवाइस का दिमाग होती है जो डिवाइस को बताती है कि कब क्या और कैसे करना है।
1: वैसे तो आपके वीडियो गेम में, आपके मोबाइल फोन में या हर वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं, चिप उसका सबसे छोटा हिस्सा होता है, लेकिन उसको बनाने में इतनी जटिलताएं होती है, इतनी भारी भरकम तकनीक और मशीनरी की जरूरत होती है कि इसे तैयार करने में और या इस तरफ आगे बढ़ने में दुनिया के कई सारे देशों को संघर्ष करना पड़ा। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी ये है कि वो अपनी बढ़ती मांग को, हमारे अगर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के इस्तेमाल बढ़ रहे हैं, हम तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आखिर पीछे क्यों रहे? और इसीलिए आप देखेंगे कि जो भारतीय कंपनियां हैं वो भी क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं।
5: अब सवाल है कि ये चिप बनती किस चीज से है? तो इसकी शुरुआत होती है सिलिकॉन से। सिलिकॉन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में सिलिका और कई खनिजों में पाया जाता है। इसे बेहद शुद्ध करके एक पतली गोल प्लेट बनाई जाती है जिसे सिलिकॉन वेफर कहा जाता है। यही वेफर आगे चलकर चिप का आधार बनता है।
1: वैसे तो मोबाइल या,
3: और आइए बात करते हैं पॉल्यूशन के सॉल्यूशन की।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: तो आज तक और दिल्ली सरकार के संयुक्त अभियान से प्रदूषण से निपटने के कई तरीकों पर नए नए आविष्कार भी सामने आ रहे हैं। अब आज हम आपको एक ऐसा अनूठा डिवाइस बताने जा रहे हैं या दिखाने जा रहे हैं जो बारिश के मौसम में स्मार्ट तरीके से काम करता है।
8: मेरा नाम राजन हांडा है और मैं MRH टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ। ये जो प्रोडक्ट आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसको फिल्टर क्यूब बोलते हैं। ये फोर्स्ड एयर सर्कुलेशन के टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल किया जाता है। ये रोड की डस्ट को देखती है, स्मोक को देखती है। उसके अलावा कुछ जो गैसेज हैं जैसे NO2 है या SO2 है जो कि हार्मफुल होती हैं, ये उसको भी कैप्चर करती है। 60-70% की रिडक्शन आ जाती है इससे, जिससे कि एक नॉर्मल सिटीजन को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सारा सामान जो इसके अंदर लगता है वो चाहे इंजीनियर जर्मनी में हुआ है लेकिन मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रहा है, असेंबल इंडिया में हो रहा है। इससे इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत रीजनेबल हो जाती है और इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है और सर्विसिंग भी बहुत बढ़िया हो जाती है।
9: आई एम प्रियंका मनोचा, फाउंडिंग टीम ऑफ MRH टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एंड ऑन माय राइट इज प्रणव कौशिक फ्रॉम आवर पार्टनर कंपनी मैन एंड हमल, एंड ही इज स्टीवन, अनदर एम्प्लॉय कॉलीग फ्रॉम मैन एंड हमल. So together we bring to you the pollution ka solution that you see behind us, which is called as filter cube.
10: Is ek machine se jo aap mere piche dekh rahe hain, hum almost 17,500 meter cube of clean air every hour deliver karte hain. If you want to understand it in liters, or if I want to give you a perspective of it, ek cricket stadium ke andar jitni hawa bhar sakti hai, utni hawa har ghante ye ek machine clean karke area mein dalti hai. तो ऐसी मल्टीपल मशीन से अब हम यूज करते हैं. सो व्हाट वी ट्राई टू डू, एक हम एक क्लीन एयर जोन क्रिएट करते हैं उस एरिया के लिए, ताकि वहां का जो लोकलाइज पोल्यूशन है वो लोगों के ब्रीदेबल लिमिट्स में आ जाए.
11: ये डिवाइस इतनी इंटेलिजेंट है, जब बारिश होती है दिस डिवाइस स्विचेस ऑफ, मीनिंग व्हेन इट रेन्स वी डोंट वांट द एयर प्यूरिफायर्स टू बी वर्किंग. सो द डिवाइस स्विचेस ऑफ ऑन इट्स इटसेल्फ व्हेन इट्स रेन्स, एंड ऑल्सो व्हेन द रेन स्टॉप्स द डिवाइस स्विचेस ऑन इट्स ओन. ऑल्सो अपने पास एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड रहेगा, मीनिंग व्हेन वी हैव 100 इंस्टॉलेशंस एट डिफरेंट प्लेसेस, कनॉट प्लेस, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, कई सारी एरिया में हम लगा सकते हैं, तब हम एक एरिया में कैसा परफॉर्म कर रहा है उसका भी डैशबोर्ड हम दे सकते हैं. वी कैन गिव यू डेटा ऑन एवरी प्रोडक्ट लेवल, जोन लेवल, एंड ऑल्सो एज ए सिटी लेवल.
3: यहां पर वक्त चला बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक.
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच.

0: क्या आप
1: इक्कीस
0: मुझे
1: में।
0: बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको? ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है, उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि अमेरिका को हमारा एमडीआर रेजिम नहीं पसंद आ रहा था। अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था, और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
1: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जब दुनिया की डिजिटल फाइनेंशियल क्रांति की अनुगवाई भारत ने करी थी यूपीआई के माध्यम से, तो राहुल गांधी के कहने पे पी चिदम्बरम ने ये कहा था कि क्या गरीब आदमी या इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता है। सो कांग्रेस हैज हिस्टोरिकली बीन एन ओपोनेंट ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और आज ये नाराज फूफा पार्टी झूठ फैला रही है। हर आम आदमी आज स्कैनर के माध्यम से पेमेंट कर रहा है, और हर आम आदमी स्कैनर के माध्यम से ही पेमेंट करता रहेगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। दो आतंकियों को ढेर सुरक्षा बलों की तरफ से कर दिया गया है। खुफिया जानकारी सुरक्षा बलों को मिली थी कि ब्रतल इलाके में आतंकियों का मूवमेंट देखा गया है और उसके बाद जब इस इलाके की घेराबंदी की गई तो आतंकियों से मुठभेड़ होती है और दो आतंकियों को ढेर कर दिया। इन दोनों आतंकियों के बारे में जानकारी मिली है कि इनके तार जैश मोहम्मद से जुड़े हुए हो सकते हैं।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: है कि 1,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी यूपी के अंदर उपलब्ध करवाएंगे।
1: जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वादों और घोषणाओं की रफ्तार भी जोर पकड़ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए दिन बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, कभी कैबिनेट में लिए गए फैसलों के जरिए तो कभी सार्वजनिक मंच से। यानी कि यूपी में बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। एक तरफ सरकार की ओर से ऐलान पर ऐलान हो रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी भी आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। संगठन स्तर पर रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूपी में बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और इस हफ्ते उनकी कई मंथन बैठक है। 17 और 18 सितंबर को गोरखपुर में, 19 और 20 सितंबर को अयोध्या में, 21 और 22 सितंबर को प्रयागराज में तावड़े सीधे जमीनी स्तर पर फीडबैक लेने वाले हैं। चर्चा संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों पर होगी। एक तरफ बीजेपी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ आरएसएस भी पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर उतर आया है। संघ और बीजेपी की अहम समन्वय बैठक हुई है। ये बैठक लखनऊ के बंथरा स्थित एक रिजॉर्ट में हुई। बैठक का फोकस अवध कानपुर में तैयारियों पर रहा। बैठक में संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने जमीनी फीडबैक लिया। आपको पता हो कि चुनावी अभियानों और बीजेपी को जीत दिलाने में संघ की हमेशा अहम भूमिका रही है। यूपी चुनाव में भी संघ एड़ी चोटी का जोर लगाने जा रहा है। समन्वय बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें संघ के सह सरकारी वाह अरुण कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे। बीजेपी की चुनावी कामयाबी में उसकी तैयारियों का बड़ा रोल रहा है और इस बार भी यूपी में वो तैयारियों को अभी से देख रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री पर सियासी घमासान जारी है। दिशा के पिता सतीश सालियान तत्कालीन उद्धव सरकार और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिसके बाद से महायुति सरकार भी आदित्य ठाकरे पर निशाना साध रही है। लेकिन आदित्य ठाकरे ने आखिरकार दिशा की मौत मिस्ट्री मामले में अपने ऊपर लगाए जा रहे गंभीर आरोपों पर सोशल मीडिया पर खुलकर अपना पक्ष रखा है। आदित्य ने लिखा, मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और न ही उन्हें जानता हूँ। पिछले 6 सालों से कुछ लोग जानबूझकर और बिना किसी सबूत के इस दुखद मामले से मेरा नाम जोड़कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बदनाम करने का ये अभियान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जोरदार टीवी डिबेट और मीडिया ट्रायल से सच्चाई नहीं बदलती। इस केस की जांच दोबारा आगे बढ़ने दें।
1: इसके पहले उन्होंने और एक झूठा डिफेंस लिया था कि जिस दिन दिशा की डेथ हुई उस दिन मैं तो मुंबई में नहीं था, मैं डोंबिवली में था, मेरे नाना जी की डेथ हुई थी। वो भी झूठा निकला क्योंकि दिशा का डेथ हुआ 8 जून को, उनके नाना जी 14 जून तक जिंदा थे। तो ये हैबिचुअल झूठ बोलने वाले लोगों को बेवकूफ समझने वाले, लोगों को गुमराह करने वाले ऐसे लोग है।
0: 11 सितंबर को सीबीआई ने इस केस में एफआईआर दर्ज की है। दिशा के पिता सतीश सालियन की शिकायत में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे, एक्टर डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, रोहन रॉय के नाम शामिल हैं। आज तक के पास सीबीआई की एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है। सतीश सालियान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख पर भी सच छिपाने का आरोप लगाया है। इसके साथ जांच में शामिल कई पुलिस अफसरों और पूर्व अधिकारियों की भूमिका की जांच की भी जरूरत बताई गई है, जिसमें सचिन वाजे, परमवीर सिंह और डीसीपी विशाल ठाकुर का नाम है। पिछले शुक्रवार को दिशा के पिता सतीश सालियान ने सीबीआई अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या की गई थी।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

इस साल के नेतृत्व का जश्न, एक महीने तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान, वाराणसी से वडनगर तक बाइक रैली, योगी और राजनाथ सिंह ने की विश्वनाथ मंदिर में पूजा। वडनगर में अमित शाह ने देश को बताया मोदी का मतलब का, 36 देशों में सर्वोच्च सम्मान हासिल करने वाले वो विश्व के एक लौते नेता, अपने दम पर ध्रुवतारे की तरह चमकते रहे हैं नरेंद्र मोदी, रेखा गुप्ता ने किया हवन। दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन पर बोले पीएम मोदी, भारत में अवसर और टैलेंट का लाभ उठाए दुनिया, सप्लाई चेन पर फोकस, सेमीकंडक्टर पर 52 देशों की 600 कंपनियों का मेगा इवेंट। असली टीएमसी की लड़ाई को आज हो सकता है फैसला, पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर चुनाव आयोग करेगा सुनवाई, दोनों गुटों को बुलाया गया उपचुनावों से पहले फैसले की घड़ी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दो आतंकियों को ढेर करने के बाद पहाड़ और जंगलों का चप्पा चप्पा छान रहे हैं सुरक्षा बल, रात भर चला ऑपरेशन, जैश से था दहशतगर्दों का कनेक्शन।

0: नमस्कार, 3 बजे के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 100 शहर 100 खबरों के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में 25 साल के नेतृत्व का जश्न। देश भर में कई जगहों पर समर्थकों ने किया कई कार्यक्रमों का आयोजन। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मस्थली गुजरात के वडनगर में भी से लेकर वाराणसी तक बाइक रैली निकाली गई। गृह मंत्री अमित शाह ने किया रवाना। अमित शाह ने सभा को संबोधित करते हुए गिनाए प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियां। 25 साल की छवि को बताया विदा। कहा, मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार माना है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र और धार्मिक नगरी काशी में बटुक ब्राह्मणों ने किया विशेष गंगा पूजन। प्रधानमंत्री मोदी की दीर्घायु की कामना भी की। पीएम मोदी के जन्म दिवस के मौके पर दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। 108 कुंडनीय हवन से हुई शामिल। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कई भव्य आयोजन किए गए। बटुक ब्राह्मणों ने मां गंगा के 76 लीटर दूध से दूध अभिषेक किया है। शंखनाद कर गंगा आरती भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनकी लंबी उम्र के लिए संगम पर विशेष प्रार्थना और गंगा आरती भी की गई। नागा साधुओं ने जंबू बजाकर प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। नमामि गंगे की टीम ने मां गंगा के 76 लीटर की चुनरी भी चढ़ाई। लखनऊ में उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सिविल अस्पताल में मरीजों को फल बांटे। रक्तदान शिविर का उद्घाटन भी किया। अयोध्या में महापौर के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। पीएम मोदी के जन्मदिन पर काशी के वडनगर तक मेगा बाइक रैली की गई है। 250 बाइकर्स पर 500 बाइकर्स में शामिल। सीएम योगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को दिया जन्मदिन की बधाई। बोले, हमें पूरा भरोसा है कि विश्वास है कि उनके नेतृत्व में विकसित भारत का सपना जल्द साकार होगा। वाराणसी में आयोजित सेवा संकल्प अभियान में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी हुए शामिल। कहा कि उनकी सोच देश को विकास की राह पर आगे लेकर जाने की है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे मामले पर बड़ा एक्शन। एनएचएआई ने पीएनसी इंफ्राटेक को 3 साल के लिए बैन कर दिया है। अलीगढ़ में करनी सेना के नेता दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। लगाए जय भीम के नारे। स्वर्ण महापंचायत में विवादित टिप्पणी से भड़का आक्रोश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 52 देशों के 600 से ज्यादा कंपनियों ने हिस्सा लिया है। सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्देश्य भारत में सहयोग इन्वेस्टमेंट प्रतिभा विकास को बढ़ाना है। 50,000 विजिटर्स भी इसमें पहुंचने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन हुआ। एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया गया। इलाके के कुछ हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। सेना को इस इलाके में संदिग्ध गतिविधियों के बारे में इनपुट मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने रात एक बड़ा घेरा डाला और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मारे गए आतंकियों जैश ए मोहम्मद संगठन से जुड़े होने की आशंका। एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। बालाघाट में 30 बच्चों की मौत पर राहुल गांधी ने फिर एमपी सरकार को साधा है निशाना। कहा कि मध्य प्रदेश सरकार आज भारत की सबसे भ्रष्ट और सबसे कुशासित सरकार है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर जोरदार हमला। कहा कि बीजेपी का जो भी निर्माण का काम होता है वो पूरा होने से पहले ही गिर जाता है। दिल्ली एसआईआर में अनियमितताओं के आरोपों पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 22 सितंबर को इसमें सुनवाई होगी। अमेरिकी 100% टैरिफ बिल पर भारत का 2 टूक जवाब। कहा कि ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ईशा सालियान के पिता ने आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख को 500 करोड़ रुपए का मानहानी नोटिस भी भेजा है। नोटिस में दोनों के कुछ बयानों पर आपत्ति जताई गई है। शहजाद भट्टी नेटवर्क पर बड़ा एक्शन लिया गया। केंद्र ने यूएपीए के तहत घोषित किया गया आतंकी संगठन। नेटवर्क पर सीमा पार हथियार, विस्फोटक और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया गया। युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद की ओर उकसाने का भी आरोप है। यूपीआई पेमेंट चार्ज पर पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने सरकार से लगाई है गुहार। 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर एमडीआर से पूरी छूट देने की मांग की गई है। जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले पर सीआईडी ने अपनी बड़ी कार्रवाई की है। चार और आरोपी गिरफ्तार किए गए। आज से यूपी बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े की क्षेत्रवार बैठकों का दौर शुरू हो गया। चुनावी तैयारियों पर मंथन किया जा रहा है। बैठक में संगठन की मौजूदगी स्थित कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति और रोड मैप पर भी मंथन संभव है। गुरुग्राम हिटेंडन मामले पर एसआईटी का गठन कर दिया गया। एसीपी सहित पांच लोगों की बनाई गई है एसआईटी टीम। इसके अलावा पुलिस सीन रिक्रिएट भी कराएगी। टीएमसी के सिंबल पर जल्द फैसला ले सकता है चुनाव आयोग। आज दोनों गुटों को बैठक में बुलाया गया। 6 अक्टूबर को दो सीटों पर उपचुनाव भी है। नई दिल्ली में असुरक्षित रिहायशी क्वार्टर्स को खाली कराने का निर्देश दिया गया है। एनडीएमसी की तरफ से नोटिस जारी किए गए। केएसपी के पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव की मुश्किलें बढ़ी हैं। ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव प्रचार के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई। जमकर चले लात खूंसे और डंडे। एक छात्र गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। झड़प के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल दिल्ली विश्वविद्यालय में तैनात कर दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद डीसीपी भी दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। सत्यनिकेतन हादसे के बाद एमसीडी का एक्शन जारी है। एमसीडी ने 3 पीजी बिल्डर्स को नोटिस जारी कर दिया और डिमोबिलेशन के लिए नोटिस भी दिया गया है। अहमदाबाद के पीएम में पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर मां उमिया की महाआरती। हजारों लोग इसमें शामिल हुए। इंदौर में मकान तोड़ते समय बड़ा हादसा हुआ। दीवार गिरने से 4 महिला मजदूरों की मौत हो गई है। 5 लोग घायल है। बांदीपुरा जिले के गुरेज में तोलाई घाटी में ऊंचे इलाकों में मौसम ने पहली बार बर्फबारी दिखी। दिखा प्रकृति का सुंदर नजारा। हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। मनाली में हो रही है जमकर बर्फबारी। सैलानी ले रहे हैं खुशनुमा मौसम का आनंद। लाहौल स्पीति में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बारलाचा में दर्रे पर और बिछी है सफेद चादर। बारिश और गिरते तापमान से बढ़े ही ठंड। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मनी महेश यात्रा पर मौसम की मार पड़ी है। बारिश और बर्फबारी के बीच प्रशासन ने लगाई है अस्थायी रोक। सुरक्षा पर जोर दिया गया है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में भी मौसम ने बदला है अपना मिजाज। सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। सूरत में स्वास्थ्य विभाग और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 8 फर्जी डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए। बिना मान्य मेडिकल डिग्री चला रहे थे क्लिनिक। पुलिस ने डमी मरीज भेजकर की है कार्रवाई। बिहार के खड़िया में शराब माफिया के घर छापेमारी कर पहुंची टीम और उत्पाद विभाग ने इस मौके पर कई चीजें भी बरामद की हैं। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में गणेश मंडप में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने के कई कारणों की जांच जारी है। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। डीयू के स्टूडेंट ने कार से 4 युवकों को कुचल दिया। हादसे में 2 की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में कुत्तों के आतंक पर अनोखा विरोध। नेता ने नगर पंचायत अधिकारी के दफ्तर में छोड़े कुत्ते। कई महीनों से लापरवाही का आरोप भी लगाया गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। बुलडोजर एक्शन के दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। कानपुर के सरकारी अस्पताल में मरीजों की जिंदगी में खिलवाड़ करने का मामला सामने आया। डॉक्टर की जगह ड्राइवर ने संभाली ओपीडी। मरीजों को लिखी दवाएं। यूपी के बाराबंकी में चंद्रशेखर आजाद पर हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। डीएम ऑफिस के अंदर जाने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। डीएम ऑफिस में जाने रोकने से पहले पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने लाठियां चलाकर कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। गोरखपुर में डंपर की चपेट में आने से 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने डंपर में लगाई आग। यूपी के बांदा में चांदावल नदी की धारा में बहा मासूम। इलाज कराने ले जा रही थी मां। कोथाकुर और एनडीआरएफ के बच्चों की तलाश जारी रखी हुई है। कानपुर नगर निगम की बड़ी लापरवाही। सड़क पर खुले पड़े सीवर के गड्ढे में गिरा डिलीवरी बॉय गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित प्रसिद्ध ओंबोली झरने में विशाल सांप गिरने से मची अफरा तफरी। अचानक इस घटना से लोगों में दहशत फैल गई। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान मस्जिद और मदरसों पर पत्थर फेंकने के बाद तनाव हुआ है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। भोपाल में सन के युवक ने मचाया आतंक, शादी से इनकार कर युवती के घर फेंका पेट्रोल बम, मंगेतर को भी धमकी दी है, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा के झज्जर में दादरी रोड बाईपास पर स्थित एक दुकान में आग लगने से झटकंप मच गया, फिलहाल किसी जनहानि की खबर नहीं है। हैदराबाद के संगारेडी में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया, तालाब में डूबने से 6 बच्चों की मौत हो गई। गाजियाबाद में नकली दवाओं का बाजार का भंडाफोड़ हुआ, 50 लाख के फर्जी सप्लीमेंट और संदिग्ध दवाओं की खेप बरामद की गई। झालना में खुले में मांस की बिक्री पर महानगरपालिका का बड़ा एक्शन हुआ, 14 दुकानों को सील कर दिया गया, खुले में मांस बेचने वालों को सामान भी जब्त कर लिया गया। नवगछिया में केंद्रीय मंत्री ने नहीं पहुंचने पर राधोपुर में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, लोगों ने फाड़े हैं पोस्टर। ग्रेटर नोएडा में रोडरेज के खौफनाक मामला सामने, नशे में धुत कार सवार ने बाइक चालक को टक्कर मारने के बाद उससे मारपीट भी की। गाजियाबाद में स्कूल की वैन बेकाबू होकर सड़क से नीचे गिर गई, बाल बाल बचे 4 बच्चे, सामने आया सीसीटीवी फुटेज। जयपुर पर कोठे में बाजार में भीषण अग्निकांड हुआ, आग की चपेट में आई 20 से ज्यादा दुकानें, 3 घंटे के बाद आग पर पाया गया काबू। आग की चपेट में आए प्रतिष्ठानों में कपड़ों की गोदाम, प्लास्टिक का सामान और चूड़ी बैंगल्स की दुकानें शामिल थी, बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामान होने के कारण आग तेजी से फैलती चली गई। मिर्जापुर में पति ने इलाज के लिए पैसे देने से इनकार किया तो पत्नी गंगा में कूद गई, 12 घंटे बाद 40 किलोमीटर दूर नाविकों ने सुरक्षित बचाया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मुंबई और शिरडी अद्भुत मिलन हुआ है, सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल में मुंबई के लाल बाग जा राजा को शिरडी साईं बाबा के दर्शन हुए। सूरत में भक्ति के साथ दिखा विकास का संदेश, वंदे भारत ट्रेन में थीम पर बना अनोखा गणेश पंडाल। गणेशोत्सव में आंध्र प्रदेश में प्रकाशम जिले में दिखा विघ्नहर्ता की भव्य प्रतिमा, 2 लाख से ज्यादा पेन से बनाई गई है बाप्पा की मूर्ति। ओडिशा दौरे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, देवगढ़ में गणेश उत्सव में दौरान गणेश पंडालों का भी दौरा किया। तमिलनाडु के कुडलोर में विनायक चतुर्थी के समापन पर बंगाल की खाड़ी में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, पूरी श्रद्धा के साथ शामिल हुए भक्त। अमेरिकी संसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास हो गया है, हाउस में बिल के पक्ष में 262 और विरोध में 159 वोट पड़े। बिल रूस और ईरान को निशाना बनाकर व्यापक प्रतिबंध लगाने का जुड़ा हुआ है, इसे लिंडसे ओग्रहन सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट के नाम से 2026 के नाम से जाना जाएगा। इसका असर भारत और चीन जैसे देशों पर भी पड़ सकता है, यह बिल ट्रंप और रूसी तेल गैस कंपनियों के खरीद वाले देशों पर 100% तक आयात शुल्क लगाने का अधिकार देता है। ट्रंप अगले हफ्ते गल्फ लीडर्स के साथ ईरान पर बातचीत करेंगे, जिसमें ईरान के साथ जंग के अगले कदमों पर भी बातचीत हो जाएगी। ट्रंप प्रशासन इसराइल को 2.8 अरब डॉलर के सैन्य समझौते के तहत 40,000 शक्तिशाली बम देने के लिए तैयार हुए हैं, पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लगाई थी इस पर रोक। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोही ने सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया, बाकी सऊदी अरब ने इसकी दावे की पुष्टि नहीं की है। हूती सैन्य प्रवक्ता ने एक्स पर जारी किया है अपना बयान, उन्होंने कहा कि सऊदी F-15 मरी प्रांत के एयरबेस में सैन्य अभियान चला रहा था, इसी दौरान हूती लड़ाकों ने उसे निशाना बनाया। हूती ने आरोप लगाया कि सऊदी अरब ने पिछले एक सप्ताह में यमन में अलग अलग इलाकों में 450 से ज्यादा हवाई हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान में अमेरिकी अधिकारियों और ईरान समर्थित हूती नेताओं के बीच बातचीत के बाद अमेरिका ने यमन से सीधे सैन्य हस्तक्षेप न करने का किया है फैसला। अफीम के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर ट्रंप ने की है प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा कि भारत ने प्रयासों का स्वागत है। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया, रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम में होगी वापसी। शुभम गिल की कप्तानी वाली वनडे टीम में जडेजा और मोहम्मद सियाज की भी वापसी होगी, 27 सितंबर को त्रिवेंद्रम में खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला। वेस्टइंडीज दौरे पर खेले जाने वाले 5 T20 सीरीज के लिए भी टीम का ऐलान कर दिया गया, वैभव सूर्यवंशी को टीम में मिली है जगह, श्रेयस अय्यर को भी टीम की कमान सौंपी गई है। 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा पहला T20 मुकाबला। रांची, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु में होंगे बाकी के मुकाबले। अफगानिस्तान के खिलाफ आज खेला जाएगा तीसरा T20 मुकाबला। कप्तान श्रेयस की टीम में बदलाव के दिए संकेत। आज का मैच खेल सकते हैं वैभव सूर्यवंशी। अभिनेता अनंत नाग को मिलेगा साल 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अनंत नाग ने कन्नड़, हिंदू, तेलुगु, तमिलनाडु और मराठी फिल्मों में काम किया है। अभिनेता अनंत नाग के 300 से ज्यादा फिल्मों में किया है काम। मालगुडी डेज से हुए लोकप्रिय। 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में किया जाएगा सम्मान। सरकार ने सेंसर बोर्ड का किया है पुनर्गठन। 28 सदस्य टीम में सिनेमा, टीवी, संगीत, कला जगत की कई हस्तियों को शामिल किया गया है। सेंसर बोर्ड के नए सदस्यों में अभिनेता सुनील शेट्टी, अभिनेत्री प्रीति जिंटा को भी जगह मिली है। नए सेंसर बोर्ड में एक्टर पंकज त्रिपाठी, टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली और बंगाली सिनेमा के एक्टर प्रसन्नजीत चटर्जी को भी शामिल किया गया है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माह।
1: चले खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी का मेगा सेवा संकल्प अभियान चल रहा है। इंदौर में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस मौके पर रोड शो भी किया और शाम को आशीर्वाद के दिए कार्यक्रम में भी शामिल हुए। काशी में से हुगली तक नदिया जलमार्ग भी होगी। सेवा संकल्प और आस्था के इस अभियान में प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन दिवस के मौके पर बीजेपी का बड़ा संदेश भी दिया गया।
2: सर्वप्रथम देश के प्रधान सेवक को उनके यश जन्मदिन पर बधाई देता हूं, दीर्घायु होने की कामना करता हूं, यशस्वी होने की कामना करता हूं। साथ ही साथ आज उनके जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में हमारा जो अभियान चल रहा है सेवा संकल्प अभियान का, उस अभियान का शुरुआत आज हो रहा है। आज रक्तदान के माध्यम से देश भर में हजारों भाजपा कार्यकर्ता रक्तदान महादान के इस पूरे अभियान की शुरुआत कर रहे हैं और हम सभी का सौभाग्य है कि आज इस रक्तदान महादान कार्यक्रम में हम सब सम्मिलित हुए हैं। साथ ही साथ पूरे देश में आज ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके जीवन में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पिछले 12 वर्षों में और हम कह सकते हैं कि 25 वर्षों का जो उनका तप और तपस्या रहा उसके कई एक के जीवन में बदलाव आया है। मैं तो ये मानता हूँ केवल जीवन में ही नहीं लाखों करोड़ों भारतवासियों के सोच में भी बदलाव आया है।
1: हमारे साथ हमारे सहयोगी रविश पाल सिंह भी जुड़ गए। रविश पाल सिंह, देखिए लगातार ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप जहां पे मौजूद है किस तरीके का आयोजन है खासतौर पे और अभी कैसी तैयारियां हैं बीजेपी की, क्योंकि देश भर में आज इस संकल्प यात्रा को या फिर आप इस कैसे बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
3: जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो अभी आप रोड शो की तस्वीरें देख रहे हैं ये इंदौर की है। दरअसल आज दो बड़े कार्यक्रम हैं मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन

0: नितिन नबीन जो है वो खुद यहां पहुंचे हैं, उन्हीं के हाथों से आज 30,000 जो लोग हैं हितग्राही हैं उनके मकानों की उनकी संपत्तियों का मुफ्त रजिस्ट्रेशन आज होने वाला है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के करीब 50,00,000 परिवारों को राहत होगी, जिनमें से 30,000 आज इंदौर और उसके आसपास के लोग हैं। और उससे पहले, क्योंकि नितिन नबीन का ये पहला दौरा है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, तो ये जो दौरा हो रहा है एयरपोर्ट से लेकर के कार्यक्रम स्थल तक जो गांधीनगर में बना हुआ है वहां तक ये पूरा रोड शो है, जहां पे तकरीबन 100 से ज्यादा मंच तैयार किए गए हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से। यहां से तकरीबन 5 बजे नितिन नबीन हेलीकॉप्टर के जरिए उज्जैन आने वाले हैं, और दूसरा बड़ा कार्यक्रम आज उज्जैन में है, जहां पे शाम 7 बजे करीब 25,00,000 दीयों को जलाने की तैयारी है। उज्जैन के रामघाट समेत आसपास का जो पूरा इलाका है वहां 25,00,000 से ज्यादा दीये तैयार किए गए हैं। नितिन नबीन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये दोनों वहां मौजूद रहेंगे, और उनकी मौजूदगी में ये दीपोत्सव वहां रखा जाएगा। तैयारी इसी तरीके की है कि 25,00,000 दीये जो है वो उज्जैन और रामघाट के आसपास, और उसके अलावा 10,00,000 दिए उन घरों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यानी 2014 से लेकर अब तक जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जिन लोगों को मिला है उन हितग्राहियों के घर पर भी ये दिए जलने। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो अकेले उज्जैन में ही आज करीब 35,00,000 दिए जलने की तैयारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पे। तो रोड शो से इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसके बाद हितग्राहियों को मुफ्त पंजीयन की सुविधा, और फिर मध्य प्रदेश के धार्मिक राजधानी कहे जाने वाले उज्जैन में दीपोत्सव के साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का ये कार्यक्रम जो है वो मध्य प्रदेश में आज समाप्त होगा। तो इसी के लिए नितिन नबीन आज मध्य प्रदेश दौरे पर भी हैं। कल उनका सुबह जो है भस्म आरती का कार्यक्रम है महाकाल मंदिर में, और उससे पहले आज वो रात तक अलग अलग आयोजनों में शामिल होंगे जो सेवा से संकल्प अभियान के तहत रखे गए हैं इंदौर और उज्जैन में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविश पाल सिंह, हमारे सहयोगी। देखिए हमें बता रहे थे किस तरीके से सेवा संकल्प अभियान या फिर इस कार्यक्रम का पूरा आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, और आज नितिन नबीन यानी बीजेपी के अध्यक्ष का आज ये पहला मध्य प्रदेश का दौरा भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त, एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: आगे आगे।
6: अरे उधर
5: उधर किधर?
6: करेक्ट करेक्ट।
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
9: SBI Celebrations Unlimited. Ye Ganeshotsav banega special with festive offers on car loan, gold loan, personal loan and loan against mutual funds.
10: Aur bhai kahan gaye the ghumne?
11: GK Max.
12: Waise Rohan, padhai mein kaisa hai?
11: GK Max. Best putty?
13: JK Wall Max.
11: Best paint?
13: JK Max.
11: Baaki sab sawalon ka pata nahi, lekin most beautiful walls ke liye sirf JK Max paints. JK Max paints. Khushiyon ke rang.
14: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।

0: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।
1: पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ पंचायत आज तक 18 सितंबर सिर्फ

0: आज तक पर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
4: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: विमल बोलो जुबां केसरी।
5: यूपीआई से लेन देन पर लगे चार्ज को लेकर विवाद जारी है। एमडीआर लगाए जाने के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने यूपीआई पर लगे एमडीआर को तुरंत वापस लेने की मांग की है।
6: मोदी जी हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ही इज नाइदर लेफ्ट नॉर राइट। ही हैज डिसाइडेड टू लाई डाउन स्ट्रेट एंड प्रोस्ट्रेट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ही हैज पुट अ टैक्स ऑन एवरी सिंगल इंडियन पर्सन बाय टैक्सिंग यूपीआई एंड गिविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू द यूनाइटेड स्टेट्स। मोदी जी Please stop lying down in front of the United States. Have a spine, खड़े हो जाइए और UPI tax को वापस लीजिए।
5: विपक्ष भले ही MDR को UPI tax कह के विरोध कर रहा है, लेकिन सरकारी सूत्रों का दावा है कि मर्चेंट पेमेंट पर UPI ट्रांजैक्शन फीस का फैसला सोच समझ कर लिया गया है और इसे वापस नहीं लिया जाएगा। उधर सरकार की अपनी दलील है कि UPI के वित्तीय सिस्टम को चलाने में भारी भरकम खर्च आता है। इस बीच UPI MDR का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4% फीस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इस फ्रेमवर्क पर रोक लगाने की मांग की है। यूपीआई लेन देन में चार्ज लेने का जो फैसला हुआ है, उसमें पर्सन टू पर्सन यानी आपसी लेन देन पर यूपीआई पहले की तरह ही मुफ्त है। रेलवे, इंश्योरेंस, ईंधन जैसी सेवाओं पर 5 रुपए प्रति लेन देन शुल्क ही लगेगा। यूपीआई से हर महीने ऑटो पे भुगतान पहले की तरह मुफ्त रहेंगे। महीने में यूपीआई से 1,00,000 रुपए तक भुगतान पाने वाले दुकानदार दायरे में नहीं आएंगे। 2,000 रुपए से ऊपर के भुगतान पर लगने वाली फीस ग्राहकों पर नहीं डाली जा सकेगी। उधर RBI ने भी UPI पेमेंट में लगने वाले चार्ज का बचाव किया है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में 25 साल के नेतृत्व का जश्न। एक महीने तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान। वाराणसी से वडनगर तक बाइक रैली। योगी और राजनाथ ने विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। वडनगर से अमित शाह ने देश को बताया मोदी का मतलब का। 36 देशों से सर्वोच्च सम्मान हासिल करने वाले विश्व के इकलौते नेता। दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन पर बोले पीएम, भारत में अवसर और टैलेंट का लाभ उठाए दुनिया। सप्लाई चेन पर फोकस। सेमीकंडक्टर पर 52 देशों की 600 कंपनियों का मेगा इवेंट। असली टीएमसी की लड़ाई का आज हो सकता है फैसला। पार्टी के नाम और सिंबल को लेकर चुनाव आयोग करेगा सुनवाई। दोनों गुटों को बुलाया गया उपचुनाव से पहले फैसले की घड़ी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 आतंकियों को ढेर करने के बाद पहाड़ और जंगल का चप्पा चप्पा छान रहे सुरक्षा बल। रात भर चला सर्च ऑपरेशन। जैश से था दहशतगर्दों का कनेक्शन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरें असरदार। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथन। तृणमूल कांग्रेस के घास के साथ फूल वाले चुनाव चिन्ह पर जारी झगड़े में आज चुनाव आयोग अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। ये फैसला इसलिए संभव है क्योंकि पार्टी के विरोधी गुटों ने 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए इसी चुनाव चिन्ह पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। निर्वाचन आयोग के सूत्रों के मुताबिक आयोग ने आज की बैठक में टीएमसी के दोनों गुटों को मौजूद रहने के लिए कहा है। चुनाव आयोग ने पहले टीएमसी के बागी नेता ऋतव्रत बैनर्जी गुट को और फिर ममता बैनर्जी के तृणमूल खेमे को अपनी दलीलें और दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजी नगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। दोनों सीटों पर नामांकन और चुनाव प्रक्रिया से पहले सिंबल को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, कब तक ये आदेश आ सकता है पार्टी सिंबल को लेकर?
2: दरअसल ऐसा है कि अभी 3 बजे बागी ऋतव्रत बनर्जी गुट के लोगों को निर्वाचन आयोग ने मुलाकात के लिए बुलाया है और ये कहा है कि स्पेशल जो मीटिंग चल रही है इसी मुद्दे पर, इस मीटिंग में उन्हें भी हाजिर रहने को कहा गया है और ममता बनर्जी गुट को 4 बजे का समय दिया गया है। यानी दोनों गुटों को बुलाया गया है और आज उम्मीद लग रही है कि 5 से 6 बजे के बीच जैसे ही ये सुनवाई पूरी हो जाएगी, इसके बाद 6 से 7 बजे के बीच लग रहा है कि एक अंतरिम आदेश आएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि जो उपचुनाव है इन दोनों ऑप्शन हैं, उनको क्या चुनाव चिन्ह मिलेगा, क्या जो जोड़ा फूल है वो फ्रीज हो जाएगा, दोनों को टेम्पररी अलग अलग चुनाव चिन्ह मिलेंगे। तो ये एक अंतरिम आदेश आने की उम्मीद लग रही है। निर्वाचन आयोग के सूत्र भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि एक अंतरिम आदेश आएगा ताकि जो उपचुनाव है वो अच्छे से संपन्न हो जाए और फिर एक विस्तृत आदेश बाद में आएगा जो बाकी चीजों पर लागू होगा।
0: इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो 2 सीटों पर उपचुनाव होना है तब तक तो ये फैसला आ ही जाएगा, लेकिन इस फैसले के अगर मायने ममता बनर्जी के पक्ष में होते हैं तो उपचुनाव पर क्या असर होगा?
2: इसमें देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि फैसला तो नहीं है, ये तो आदेश आएगा, अंतरिम आदेश आएगा जो कुछ समय के लिए होगा, तदर्थ होगा, और जब विस्तृत आदेश आएगा उसमें पता चलेगा कि दोनों पार्टियों को क्या तृणमूल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नाम को फ्रीज कर दिया गया है अंतिम आदेश के लिए, या फिर दोनों को ये जो जोड़ा फूल का चिन्ह है वो किसी भी गुट को ना दिया जाए। और उसके बाद जब फाइनल आदेश आएगा तो उसमें ये पता होगा कि दोनों में से किसी को ये चुनाव चिन्ह नाम और निशान किसी को मिल रहे हैं या फिर उन्हें नई पार्टी ने जैसे लोक जनशक्ति पार्टी थी उसमें दोनों पार्टियों को अलग अलग नाम लेने को कहा गया। शिवसेना में भी दोनों पार्टियों को अलग अलग नाम बदले, कुछ बदलाव के साथ नाम रखने को कहा गया, यानी मूल नाम जब्त कर लिया गया, लेकिन जो चुनाव चिन्ह है वो शिंदे ग्रुप को दिया गया। तो अब इसमें ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि निर्वाचन आयोग का अंतिम फैसला क्या होता है और अभी तो अंतरिम आदेश की प्रतीक्षा है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन का जश्न।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी का मेगा सेवा संकल्प अभियान जारी है। जन्मभूमि वडनगर से लेकर कर्मभूमि काशी तक पूजा हवन सेवा संकल्प अभियान चल रहा है। काशी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी ने मंदिर में पूजा अर्चना की, पीएम के लिए प्रार्थना की, तो वडनगर में गृहमंत्री ने भक्ति भाव से पूजा की, बाइक रैली को काशी के लिए रवाना किया। वाराणसी में अब से कुछ ही देर बाद ये बाइक रैली रवाना होगी, जिसमें 250 बाइक्स शिरकत करेंगे। 500 युवा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की कर्मभूमि से उनकी जन्मभूमि वडनगर पहुंचेंगे। 7 अक्टूबर को इसका समापन होगा। शाम को आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम होगा। काशी से हुगली तक नदियां जगमगाएंगी। सेवा संकल्प और आस्था के इस अभियान में पीएम के 76वें जन्मदिन पर बीजेपी का ये बड़ा संदेश। तो आज जन्मदिन का असर है और देश भर में जश्न का प्लान है। आम लोगों से लेकर बड़े चेहरों तक सब इस जश्न में भागीदार रहेंगे। बीजेपी से मेगा आयोजन की तरह बना रही है। पीएम मोदी की जन्मभूमि गुजरात से वडनगर उनकी कर्मभूमि तक, यूपी के वाराणसी तक जश्न का तांता लगा हुआ है। कहीं हवन पूजन हो रहा है, कहीं बाइक रैली हो रही है, रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
1: वाराणसी में योगी राजनाथ ने पूजा अर्चना की। पूरे विधि विधान से पूजन और अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान में दक्षिण से चंद्रबाबू नायडू आए थे और बिहार से चिराग पासवान आए थे। ये पूजन इसलिए खास था कि इसका आयोजन पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर किया गया था। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में बीजेपी की ओर से कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें से एक ये भी था।
2: सब लोग यहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए काशी विश्वनाथ का आए थे और विधिवत पूजा अर्चन का कार्य संपन्न हुआ है। और हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वह दीर्घायु करें।
3: बाबा से ही प्रार्थना की है कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु उन्हें प्राप्त हो और लंबे समय तक भारत का नेतृत्व उनके हाथों में रहे, जिससे भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विकसित भारत की संकल्पना उनके नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी देख सकें।
1: राजनाथ सिंह ने वाराणसी में बाइक रैली को भी हरी झंडी दिखाई, जो वाराणसी से वडनगर तक जाएगी।
4: बाइकर्स आज जा रहे हैं सेवा संकल्प अभियान के थ्रू, वो हमारे साथ है। आप लोग बताइए, आप लोग आज जा रहे हैं वडनगर के लिए, कितना उत्साहित?
5: टोटल 25 लोग हैं बिहार से। नितिन नवीन जी के राज्य से हम लोग हैं और हमें बहुत गर्व फील हो रहा है कि हम नरेंद्र मोदी जी के
4: काफी लंबा रास्ता है।
5: हाँ, लेकिन हम लोग में पूरा एक्साइटमेंट है और मोदी जी के लिए और अपने लिए, अपने भारत के भविष्य के लिए हम लोग ये संकल्प लिए हैं और 20 दिनों का यात्रा पूरा करके हम लोग वडनगर जाएंगे और भगवान से यही कामना करते हैं कि मोदी जी को लंबी आयु दे।
1: वाराणसी मोदी की कर्मभूमि है, वो यहाँ के जनप्रतिनिधि है। वाराणसी से उनका खास नाता भी है, इसलिए वाराणसी में जन्मदिन पर कार्यक्रमों की धूम रही। 76 साल पूरे होने पर 76 बटकों ने गंगा में दुग्धाभिषेक किया।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्म दिवस इस बार इसलिए बेहद खास है क्योंकि सार्वजनिक जीवन में उनके 25 वर्ष पूर्ण होने पर संकल्प सेवा अभियान के रूप में ये पूरा अभियान एक महीने तक चलेगा और मौका इतना खास हो तो उनके संसदीय क्षेत्र में उनकी जनता कैसे इसको पीछे मनाने में रह सकती है। यही वजह है कि आज वाराणसी के इस अहिल्याबाई घाट पर कुल 76वें पाठी ब्राह्मणों के द्वारा उनका विशेष पूजन और अनुष्ठान करते हुए माँ गंगा और बाबा काशी विश्वनाथ से प्रार्थना की जा रही है। दुग्धाभिषेक किया जा रहा है, माँ गंगा का जलाभिषेक किया जा रहा है।
1: मोदी के कर्मभूमि की तस्वीरें तो आपने देखी, अब आपको मोदी की जन्मभूमि वडनगर ले चलते हैं। जागरण मंत्री अमित शाह खुद मौजूद थे। अमित शाह ने वडनगर में बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई। वडनगर में अमित शाह ने एक सभा को संबोधित किया और पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां गिनाई।
7: 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 26 में 140 करोड़ भारतीय ये उत्साह और संकल्प के साथ एक आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में समग्र विश्व में भारत सर्वप्रथम होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता का सामूहिक आत्मविश्वास खड़ा करना ये किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी कसौटी है, और वो भी तब जब जनता गहरी निराशा में डूबी हो। उन्होंने गहरी निराशा के गर्त से जनता को बाहर निकालकर नरेंद्र मोदी जी ने जनता को आत्मविश्वास से लवरेज कर 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत की यात्रा के साथ जोड़ने का काम किया।
1: उधर दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने रक्तदान किया और पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामना दी।
8: देश के प्रधान सेवक को उनके यश जन्मदिन पर बधाई देता हूं, दीर्घायु होने की कामना करता हूं, यशस्वी होने की कामना करता हूं। साथ ही साथ आज उनके जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में हमारा जो अभियान चल रहा है सेवा संकल्प अभियान का, उस अभियान का शुरुआत आज हो रहा है। आज रक्तदान के माध्यम से देश भर में हजारों भाजपा कार्यकर्ता रक्तदान महादान के मंत्र से इस पूरे अभियान की शुरुआत कर रहे हैं।
1: दिल्ली के श्याम खाटू मंदिर में पीएम मोदी के जन्मदिन पर हवन कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई।
9: दिल्ली के खाटू श्याम मंदिर की यहाँ तस्वीरें हैं, जहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री 108 कुंडिया हवन के अंदर जो है वो शामिल हुई है। इसके बाद कई अलग अलग कार्यक्रम जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से रखे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना को लेकर के मुख्यमंत्री खाटू श्याम मंदिर पहुंची, वहाँ पूजा की और उसके बाद हवन में शामिल हुई है। उसके बाद श्रम भवन का जो है वो आज उद्घाटन करेंगी। उसके बाद अगर बात की जाए तो मेगा ब्लड डोनेशन कैंप जो है उसका आयोजन किया गया है, और आज कर्तव्य पथ पर 1 लाख से ज्यादा दिए जो है वो जलाए जाएंगे।
1: दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ समर श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक।
0: वहीं वडनगर से पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनकी जन्मभूमि वडनगर से वाराणसी के लिए सेवा संकल्प बाइक रैली को रवाना किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर 250 बाइक सवार यहां से रवाना हुए। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह शर्मिष्ठा झील पर महाआरती में शामिल हुए। वहां से पैदल वो हटकेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के बाद बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई।
10: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पे आज उनके जन्मस्थली वडनगर से कर्मभूमि वाराणसी तक जो है वो बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हरी झंडी दिखाई, साथ ही एनडीए ने जो है अपनी शक्ति बताई है। आज एनडीए के दो घटक दल जो साथी सहयोगी है, एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, दोनों यहां पे मौजूद रहे और ये पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री की जनसेवा की बात की, किस तरह प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन को सुधारा। खुद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश को ऐसा नेता मिलना मुश्किल है जिसने जो है वो परिवार को छोड़कर देश को अपना परिवार बनाया और देश के लिए काम किया। ये जो बाइक यात्रा निकली है, ये बाइक यात्रा जो है वो शर्मिष्ठा तालाब का जल लेकर काशी पहुंचेगी और गंगा जल और साथ ही काशी विश्वनाथ में जो है वो चढ़ाया जाएगा। तो ये एक जन्मभूमि से कर्मभूमि तक का कनेक्शन स्थापित किया गया, साथ ही युवाओं को जोड़कर युवाओं को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी भाजपा के द्वारा की जा रही है।
0: वही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज शाम उज्जैन में होंगे, वहां एक भव्य कार्यक्रम होना है, वहां की तैयारियों का जायजा लिया। मैं सहयोगी ने देखिए,
11: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वो उज्जैन में हो रहा है। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी है और यही वो शहर है जहां पे महाकाल महालोक का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था साल 2022 में। और अब अगर देखें, आज 25 लाख दिए उज्जैन के रामघाट पे जलाए जाने की तैयारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं मैं ऐसे ही एक ब्लॉक के बीच में खड़ा हूं। ऐसे जो ब्लॉक है, हर ब्लॉक पे ऐसे 250 दिए हैं और ऐसे 8 सेक्टर कुल बनाए गए हैं जहां पर कुल 25 लाख दिए रखे गए हैं। आप देखिए तस्वीरों में सामने, ये पूरा रामघाट का जो इलाका है ये इस वक्त दियों से अटा पड़ा हुआ है। जिस जगह पे इस वक्त हम मौजूद है, यहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वो यहां पे मौजूद होंगे। सबसे पहले वो दिया जलाएंगे और उसके बाद शाम को 7 बजे हुटर बजेगा और हुटर बजने के साथ ही 25 1000 से ज्यादा वॉलंटियर जो हैं वो इन दियों को एक साथ जलाएंगे और उस वक्त ये छटा देखने लायक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो जन्मदिन है इसे सेवा संकल्प अभियान के तौर पे देखा जा रहा है और उसी के तहत ये पूरी तैयारी है। देखिए सामने वो नाम है जिसमें नितिन नवीन और मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले बैठेंगे और जब दिए जलेंगे इस रामघाट पे 25 लाख दिए तो नाव में बैठ करके मुख्यमंत्री जो है इस पूरे इस क्षेत्र का अवलोकन करेंगे। सामने आप देखिए नरसिंह घाट है, सामने आप जो देख रहे हैं वहां पर भी दिए लगे हैं और ऐसे ही तकरीबन 15 किलोमीटर का इलाका है शिप्रा नदी के तट का जहां पे अलग अलग घाटों पे यह कार्यक्रम होना है। सामने आप देख सकते हैं उज्जैन कलेक्टर हैं डॉक्टर रोशन सिंह जो लगातार मुआयना कर रहे हैं, तैयारी का जायजा ले रहे हैं। उनसे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कितना बड़ा मैन पावर जो है, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कार्यक्रम कितना बड़ा है। लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए उज्जैन कलेक्टर डॉक्टर रोशन सिंह। सर कितना बड़ा आज का आयोजन है ये और मैन पावर को देखें, यहाँ पे वॉलंटियर्स की संख्या को देखें, क्या तैयारी है सर?
12: जी जैसा आप देख पा रहे हैं 30 लाख के आसपास जो है दिए लगाए गए हैं और भव्य दीपोत्सव का आयोजन होगा शाम को 7 बजे। जैसे ही सायरन बजेगा उसके साथ ही जो है दीयों का प्रज्वलन शुरू हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति रहेगी और लगभग 30,000 से अधिक वॉलंटियर्स ने अपना पंजीयन कराया है और सारे वॉलंटियर्स अपने हाथों से दीपों का प्रज्वलन करेंगे और लगभग 20 से 25 मिनट में सारे दिए जो है प्रज्वलित हो जाएंगे और भव्य दीपोत्सव का यहाँ पे माहौल होगा। उसके बाद आतिशबाजी होगी और पुराने जितने रिकॉर्ड्स हैं वो सारे आज टूटने वाले हैं और शाम को 7 बजे जो है पूरा कार्यक्रम आयोजित होगा।
0: और राजनाथ सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या कुछ कहा सुनिए।
13: आप जानते हैं ऐसा कहा भी जाता है कि जिंदगी लंबी ही नहीं बड़ी भी होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, हम सब उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं और जहां तक जिंदगी के बड़े होने का सवाल है मेरे साथियों, तो हम मोदी जी ने अपने व्यक्तित्व, नेतृत्व और कर्तृत्व से इसे हासिल कर ही लिया है और आज जिस यात्रा की शुरुआत हो रही है यह सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यह यात्रा नहीं है बल्कि मोदी जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि से यह जोड़ने की यात्रा है। और साथियों एक और काशी है जहां से मोदी जी के सार्वजनिक जीवन को एक नई ऊर्जा मिली है और गंगा माता का आशीर्वाद मिला है। दूसरी ओर वडनगर है जहां उन्हें पूजनीय हीराबेन मां का आशीर्वाद मिला और संस्कारों की नींव भी वहीं उन्हें प्राप्त हुई है और इन दोनों जगहों को जोड़ने का एक माध्यम चुना गया है वह है त्रिवेणी का जल। किस तरह त्रिवेणी में 3 धाराएं मिलकर साथियों आप जानते हैं एक हो जाती हैं, उसी तरह बड़नगर के संस्कार, काशी का आशीर्वाद और मोदी जी का सेवा का संकल्प यह एक धारा बन गया है।
0: प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने जन्मदिन पर पीएम को शुभकामनाएं दी।
14: प्रधानमंत्री जी का यह जन्म दिवस हम सबको जन सेवा की प्रेरणा देता है और दिल्ली सरकार उनके दिखाए हुए रास्ते पर उनके मार्गदर्शन में हमेशा आगे बढ़ते हुए इस काम को करेगी। आज हम मोदी जी को समर्पित करते हुए हमारे स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए हुए एक बर्थडे सॉन्ग, एक गीत का भी लॉन्चिंग करेंगे जो हमारे बच्चों की ओर से उनको उपहार है, उनकी सौगात है। और शाम के समय पूरी दिल्ली हमारा हर एक एक लाभार्थी अपने घर आंगन में आशीर्वाद का दिया जला करके मोदी जी को शुभाशीष देंगे, शुभकामनाएं देंगे। हमारी पूरी टीम, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, सभी लोग जनता के साथ रहते हुए कहीं ना कहीं सेवा के प्रकल्पों पे आशीर्वाद का दिया जला करके प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देंगे।
0: खबरें असरदार में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
16: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
17: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
18: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
19: सोच बदलो और बैंक भी।
20: Huh? ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
21: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
20: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
22: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
23: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
22: विमल बोलो जुबां केसरी।
24: संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है यूसीसी से बताओ मुझे, कितने का नहीं होगा क्या हमारा निकाय तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या, फेरे ही तो होंगे, क्या तमाशा बना रखा है, कुछ भी नहीं है।
25: छात्रों के मूवमेंट से डरी हुई सरकार के पास अब इसी तरह का कार्ड खेलने के अलावा और कोई चारा नहीं। और चुनाव में गिनाने के लिए क्या है, नौकरियां वो दे नहीं पाए, स्टूडेंट्स जो है वो परेशान है, प्रोटेस्ट कर रहा है पूरे देश में जेंजी से लेकर जेन अल्फा तक। तो सरकार के पास मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यही सब है राज्यों में। ये भारत जो है वो विविधताओं का देश है, भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना। आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहाँ चली जाएगी। तो गृहमंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों सबसे मिल करके भारत बनता है। आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: विधानसभा का चुनाव घोषणा होने के पहले हमने कह रखा है कि 1,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी यूपी के अंदर उपलब्ध करवाएंगे।
3: जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वादों और घोषणाओं की रफ्तार भी जोर पकड़ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए दिन बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, कभी कैबिनेट में लिए गए फैसलों के जरिए तो कभी सार्वजनिक मंच से। यानी कि यूपी में बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। एक तरफ सरकार की ओर से ऐलान पर ऐलान हो रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी भी आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। संगठन स्तर पर रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूपी में बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और इस हफ्ते उनकी कई मंथन बैठक है। 17 और 18 सितंबर को गोरखपुर में, 19 और 20 सितंबर को अयोध्या में, 21 और 22 सितंबर को प्रयागराज में तावड़े सीधे जमीनी स्तर पर फीडबैक लेने वाले हैं। चर्चा संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों पर होगी। एक तरफ बीजेपी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ आरएसएस भी पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर उतर आया है। संघ और बीजेपी की अहम समन्वय बैठक हुई है। ये बैठक लखनऊ के बंथरा स्थित एक रिजॉर्ट में हुई। बैठक का फोकस अवध कानपुर में तैयारियों पर रहा। बैठक में संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने जमीनी फीडबैक लिया। आपको पता हो कि चुनावी अभियानों और बीजेपी को जीत दिलाने में संघ की हमेशा अहम भूमिका रही है। यूपी चुनाव में भी संघ एड़ी चोटी का जोर लगाने जा रहा है। समन्वय बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें संघ के सह सरकारीवाह अरुण कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे। बीजेपी की चुनावी कामयाबी में उसकी तैयारियों का बड़ा रोल रहा है और इस बार भी यूपी में वो तैयारियों को अभी से देख रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: 71वें जन्मदिन पर देश भर में 25 साल के नेतृत्व का जश्न, एक महीने तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान, वाराणसी से वडनगर तक बाइक रैली, योगी और राजनाथ ने की बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा। वडनगर से अमित शाह ने देश को बताया मोदी का मतलब, कहा 36 देशों से सर्वोच्च सम्मान हासिल करने वाले वो विश्व के इकलौते नेता हैं, अपने दम पर ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेखा गुप्ता ने किया हवन। दिल्ली की यशो भूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत में अवसर और टैलेंट का लाभ उठाए दुनिया, सेमीकंडक्टर पर 52 देशों की 600 कंपनियों का मेगा इवेंट। असली टीएमसी की लड़ाई का आज हो सकता है फैसला, पार्टी के नाम और निशान पर चुनाव आयोग जारी कर सकता है अंतरिम आदेश, दोनों गुटों से सुनवाई। टाटा सन्स के चेयरमैन बने रहेंगे एन चंद्रशेखरन, बोर्ड सदस्यों ने पक्ष में किया वोट, तीसरी बार 5 साल के लिए बढ़ा कार्यकाल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।
3: ट्रंप का बयान, ईरान से थमेगा घमासान, मिडिल ईस्ट में डटा रहेगा अमेरिका, वेंस का ऐलान, हुतियों से ट्रंप की डील, अमेरिका को अभयदान, इसराइल को देगा 2000 पाउंड वाले 60,000 बम, भेज रहा प्रलय का सामान, युद्ध रोकने के लिए अमेरिका में पास 100% टैरिफ का प्लान, कीव पर रूसी बमबारी, रोस्तोव पर यूक्रेन के हमले से भड़का संग्राम।
0: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। ईरान से सीधी जंग में अमेरिका अब तक 38 अरब डॉलर थूक चुका है, इसके बावजूद ईरान है कि घुटने नहीं टेक रहा है और अमेरिका घुटने नहीं टिका पाया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ईरान 4 से 5 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। अब बड़ी खबर यह है कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति मैदान छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान के साथ जंग अंत की ओर बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा दावा किया कि उनकी ईरान से सीधी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ईरान के साथ युद्ध बंद करने की जो बातचीत है वो कामयाब हो पाएगी। विस्तार से सुनिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति इस युद्ध को अंतिम पड़ाव में मान रहे हैं और कह रहे हैं उनकी सीधी बात अब ईरान से हो रही है, सुनिए।
4: They want to make a deal, and we'll see how that works out. They're very much wanting to make, Iran is very much wanting to make a deal. We'll see how that works out.
0: महत्वपूर्ण बात यहां यह है कि ईरान पूरी तरह से खामोश है। ईरान अभी भी अपने शर्तों पर अड़ा है और ईरान का कहना है जितना उसका नुकसान हुआ है 28 फरवरी से लगातार और उससे पहले जब पिछले वर्ष का युद्ध हुआ था, उसे उसका मुआवजा चाहिए। उसको जितनी उसकी संपत्ति जब्त की गई है, जितना उसका पैसा दुनिया के अलग अलग बैंकों में रोक कर रखा गया है, वो सारा पैसा उसे वापस चाहिए। परमाणु हथियारों पर इस समय वो वादा नहीं कर रहा है और साफ कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा उसका अधिकार है। होर्मुज में टैक्स वसूलने पर भी ईरान अड़ा हुआ है, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान चाहता है कि किसी भी सूरत में डील हो जाए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप उस सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं जो अब तस्वीरों में दुनिया के सामने आ रही है। अमेरिकी मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान युद्ध में बुरी तरह घिरा पाया है। तमाम न्यूज वेबसाइट्स में अब मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर तबाही की तस्वीरें साझा की जा रही हैं। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरफोर्स बेस पर ईरान के हमलों में क्षतिग्रस्त हुए बोइंग E3 सेंट्री विमान की बिना तारीख वाली तस्वीर अब सार्वजनिक हो गई है। दरअसल ये 4,200 करोड़ रुपए का एवैक्स यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जिसे उड़ता हुआ रेडार कहा जाता है। इसके अलावा कुवैत में भी जो कैंप ब्यूरिंग है उसमें ईरान के हमले के बाद बिना तारीख वाली तस्वीरें अब साझा की गई है। कुवैत के इसी कैंप में ईरान के हमले में नष्ट हुए ट्रेलर की बिना तारीख वाली तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। सऊदी अरब में जो नुकसान हुआ, कुवैत में जो नुकसान हुआ, कुवैत के इसी कैंप में ईरान के साथ अमेरिकी संघर्ष के दौरान नष्ट हुई कार की यह तस्वीर अब अगर आप देखिए तो कुवैत के कैंप आरिफ जान में ईरान के हमले में क्षतिग्रस्त हुई इमारत की भी अब बिना तारीख वाली तस्वीरें साझा की गई हैं, जिस इमारत में दरअसल अमेरिका के सैनिक रह रहे थे। और अब अगर आप 28 फरवरी के बाद से लेकर पूरी तस्वीर देखें तो अमेरिका को जबरदस्त नुकसान हुआ है। हम आपको चार अलग अलग तस्वीरों से मध्य पूर्व में इस वक्त के जो ताजा हालात हैं उसकी सच्चाई दिखाते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हाल में ईरान के खिलाफ जंग से अब बाहर निकल जाना चाहते हैं और इसी मकसद से वो अगले मंगलवार को अमेरिका में खाड़ी देशों के नेताओं से मिलने वाले हैं। ये मुलाकात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के इतर होगी और इसी बैठक में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी भाग लेने के लिए पहुंच रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी अलग मुलाकात हो। हालांकि अब तक मुलाकात तय नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को तय करना है कि ईरान के हमलों से तबाह हुए अपने ठिकानों के बीच वो खाड़ी में पहरेदारी आखिर किस तरह करेंगे। उनकी नौसेना पर खतरा है, उनकी वायुसेना पर खतरा है, उनके सैनिकों पर खतरा है। फिलहाल सऊदी हूथी मोर्चे पर भी जंग भड़क गई है और बहुत तेज भड़क रही है। खबर यह है कि अमेरिका ने हूथी विद्रोहियों के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया है जिसके तहत हूथी विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले अमेरिका के जो जहाज हैं, चाहे वो मालवाहक जहाज हो या युद्धपोत हो, उन पर हमला नहीं करेंगे। अमेरिका हूथी हमलों से निपटने में सऊदी अरब की मदद नहीं कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने यह बहाना बनाया कि हूथी अमेरिका से लड़ना नहीं चाहते। आकलन यह है कि वो दूसरा मोर्चा भी नहीं खोलना चाहते। वो ईरान के विरुद्ध स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना ध्यान दे रहे हैं, अभी वो बाबल मंदब में दूसरा मोर्चा नहीं खोलना चाहते। वैसे कहावत यही है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और यही दाव अमेरिका इस समय खेल रहा है। बड़ी खबर इस समय आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जहां कह रहे हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका अब जंग को खत्म करने की तैयारी में है या ये जंग खत्म होने वाली है, वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति ट्रंप के नंबर टू जेडी वैंस कह रहे हैं कि अमेरिका मध्य पूर्व में बना रहेगा, डटा रहेगा। जेडी वैंस ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका मध्य पूर्व से निकला तो दुनिया भर में तेल का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। जेडी वैंस की यह राय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी के एक तरह से ठीक उलट है, जो कई बार कह चुके हैं कि मध्य पूर्व की सुरक्षा अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है, खाड़ी देश अपनी सुरक्षा खुद करे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको सुनवाते हैं कि जेडी वैंस की राय कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति की राय से बिल्कुल उलट है।
5: I would say to anybody who's frustrated right now is the alternative here, which is the United States effectively says to the Middle East, you're on your own, would mean necessarily a worldwide energy crisis so long as the Iranians keep on shooting and chipping, which we know that's exactly what they would do. So
0: अमेरिका अपने हितों को कैसे सुरक्षित करता है, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच एक सीक्रेट डील हो गई है। यह डील ओमान में एक गुप्त बैठक के दौरान हुई जिसमें हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के जहाजों पर हमला न करने का भरोसा दिया, बशर्ते अमेरिका भी उन पर हमला न करे। ओमान की मध्यस्थता से मस्कट में जो अमेरिका का दूतावास है उसमें यह गोपनीय बैठक हुई और इसमें एक सीक्रेट डील के तहत हूथियों ने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग को सुरक्षित रास्ता देने का आश्वासन ही नहीं वादा किया। उन्होंने वादा किया कि वो मध्य पूर्व की जंग को लाल सागर तक नहीं ले जाएंगे और बाबल मंदब का रास्ता जो स्वेज कैनाल की ओर जाता है उसको खुला रखना पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है।

बड़ी खबर, अमेरिका के जहाजों पर हमला न करने का आश्वासन या वादा किया है समय हूथी विद्रोहियों ने, और यही कारण है कि सऊदी अरब ने जब अमेरिका से मदद मांगी तो अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशंस करने से इनकार कर दिया। हालांकि अमेरिका ने यह जरूर कहा कि वो इंटेलिजेंस असेसमेंट यानी ISR इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस, हूथी विद्रोही किस तरह और किस जगह से वार कर रहे हैं वो सऊदी अरब पर, यह जानकारी अमेरिका देने को तैयार है, लेकिन अमेरिका सीधे तौर पर हमला नहीं करेगा। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि वो क्या क्या शर्तें हैं जिन पर अमेरिका और हूथी विद्रोहियों के बीच एक समझौता हुआ है, और यह अदन की खाड़ी से लेकर बाबल मंदब और लाल सागर की तरफ जाता रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने जो सीक्रेट डील की है, मस्कट में अमेरिका के दूतावास में यह सीक्रेट डील हुई है, इस तरह की खबरें अमेरिका के ही मीडिया में अब साझा की जा रही है। हूथियों के वार्ताकार अब्दुल सलाम इस बैठक में शामिल थे। अमेरिका की ओर से यह कहा गया कि US शिपिंग को या अंतरराष्ट्रीय शिपिंग को निशाना नहीं बनाना चाहिए बाबल मंदब के इलाके में। डोनाल्ड ट्रंप, JD वैंस हूथियों के संपर्क में लगातार रहे, और यह बड़ी बात है क्योंकि उस समय उनकी कोशिश यह थी कि ईरान के खिलाफ जब अमेरिका का युद्ध चल रहा है तो ईरान की मदद के लिए हूथी विद्रोही न आए, और अमेरिका के मालवाहक जहाज या अमेरिका के युद्धपोत स्वेज कैनाल का रास्ता पार करते हुए यहां से सुरक्षित बाबल मंदब का रास्ता लेते हुए अरब सागर में आ सके। सऊदी अरब के जहाजों को इस तरह से छूट नहीं मिली है, जो छूट मिली है केवल अमेरिका के जहाजों को मिली है और इंटरनेशनल शिपिंग को, यानी चीन हो, भारत हो, दुनिया भर के अन्य देश हो जिनके जहाज हिंद महासागर से लाल सागर पार करते हुए स्वेज कैनाल पार करने जाए तो उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सऊदी अरब के जहाज, चाहे वो ऑयल टैंकर्स हो या गैस शिपिंग हो, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन से जो सामान आ रहा है उसको नहीं छोड़ा जाएगा। हूथियों से आश्वासन के बाद डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा बयान इस समय सामने आया है। बातचीत ओमान की राजधानी मस्कट में हुई थी और अमेरिका के दूतावास के अंदर यह बातचीत हुई थी। तो हूथी विद्रोहियों से जंग लड़ रहे सऊदी अरब को अभी भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर कल की बात करें तो हूथी विद्रोहियों ने सऊदी अरब के लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि एक F-15 उन्होंने मार गिराया है। अब उन्होंने गिराए गए विमान का वीडियो जारी किया है। यह विमान 16 सितंबर को उस वक्त मार गिराया गया जब वो यमन के मरिब प्रांत के ऊपर हूथियों के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा था। मारा गया जो विमान है ये F-15 SA विमान है। ये दरअसल अमेरिका की वायुसेना का में रहा स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान है। मलबे के विश्लेषण से जो सैन्य डेटाबेस के मुताबिक जानकारी आई है, विमान का जो टेल नंबर है वो 5529 था, 5529, जिससे इसी साल फरवरी में सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो में भी प्रदर्शित किया गया था। दरअसल ये 2 सीटों वाला अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है F-15 SA स्ट्राइक ईगल, जिसे उड़ाने के लिए एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर की आवश्यकता होती है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने अभी तक विमान में क्रैश होने या फिर पायलटों की स्थिति के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। हालांकि हवाई हादसों के अनुभवों और स्थानीय खुफिया इनपुट्स के मुताबिक विमान के हवा में नष्ट होने के बाद दोनों पायलटों के बचने की संभावना, उसका आकलन इस समय बेहद कम किया जा रहा है, क्योंकि हूथियों ने मलबे के चारों ओर जश्न मनाते हुए बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है। हूथी सैन्य प्रवक्ता याहया सरी ने दावा किया कि उन्होंने विमान को निशाना बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर निर्मित यानी यमन में ही निर्मित वायु रक्षा मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन ये सब जानते हैं कि ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर लगातार लाल सागर के गुप्त समुद्री रास्ते के जरिए हूथियों को एडवांस मिसाइल पार्ट्स, ड्रोन और तकनीक की तस्करी कराता आ रहा है। लेकिन यह एक बड़ा नुकसान है सऊदी अरब के लिए, एक लड़ाकू विमान का मारा गिराया जाना और पायलटों की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। सऊदी अरब के लिए संकट की एक घड़ी, और इसमें एक और बुरी खबर उनके लिए आ रही है। सऊदी अरब के पास अपनी रक्षा के लिए जो मिसाइल इंटरसेप्टर्स हैं उसका खजाना अब लगभग खाली हो चुका है। सऊदी अरब ने फ्रांस, ब्रिटेन, यहां तक कि पाकिस्तान और मिस्र से
एयर डिफेंस में मदद मांगी है। हूथी विद्रोहियों की मिसाइलें और ड्रोन लगातार सऊदी अरब के शहरों को निशाना बना रहे हैं। कल सऊदी अरब ने हूथी विद्रोहियों पर पवित्र शहर मक्का के ऊपर एक ड्रोन हमला करने का आरोप लगाया। ये सऊदी अरब ने हूथी विद्रोहियों पर आरोप लगाया था। हालांकि हूथी विद्रोहियों ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया, लेकिन सऊदी अरब के दूसरे शहरों पर उनके हमले जारी हैं और हूथी विद्रोही भी इस बात को मान रहे हैं कि वो पाक मक्का को तो नहीं लेकिन और शहरों को, रक्षा ठिकानों को और ऑयल के पाइपलाइंस को निशाना बना रहे हैं, तेल की पाइपलाइनों का उनको लगातार निशाना बना रहे हैं। इस बीच अमेरिका से एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका की संसद के निचले सदन ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाले बिल को पास कर दिया है। हाउस में बिल के पक्ष में 262 वोट पड़े और विरोध में 159 वोट पड़े। अब बिल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत करते ही यह कानून बन जाएगा। इसका नाम लिंडसे ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 है। इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि बिल के पास होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को भारत पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाएगा। रूस से ज्यादा तेल खरीदने पर जिन देशों पर 100% तक टैरिफ का प्रावधान है उनमें भारत, चीन समेत कुल मिलाकर 5 देश हैं। ये बिल ईरान के कच्चे तेल को खरीदने वाले देशों पर भी लागू होते हैं। इसके निशाने पर मुख्य तौर पर चीन है, जो चोरी छिपे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार करके ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीदता है। यह बिल अंतिम हस्ताक्षर के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच गया है, जिसके बाद यह तुरंत काबू, ये बिल कानून बनकर लागू कर दिया जाएगा।

भारत ने भी साफ कर दिया है कि भारत जो भी करेगा वो भारतीयों के हित को देखते हुए 140 करोड़ भारतीयों को हित को मद्देनजर रखे हुए करेगा। लेकिन आइए अब हम आपको समझाते हैं कि दरअसल इसका असर भारत पर किस तरह से पड़ सकता है। 100% टैरिफ बिल पास, भारत पर क्या असर होगा? टैरिफ ऑटोमेटिक नहीं है, तुरंत कोई नुकसान नहीं होगा, ये चाहे कानून बन जाए लेकिन इस कानून को भी लागू करना होगा। पहली बात, भारत पर तुरंत 100% टैरिफ लागू नहीं होगा, ये राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर करने के बाद अधिकार उनके पास होगा कि वो कब किस देश पर और कितना टैरिफ लागू करते हैं। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है, एक अधिकार है। अब उनके पास यह अधिकार है, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यानी USTR, US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, पहले लक्षित देशों की सूची बनाएंगे और उसके बाद उन देशों को रूसी तेल आयात कम करने या अमेरिका के साथ बातचीत के लिए 18 दिनों का समय दिया जाएगा। 180 दिन दिए जाएंगे रूसी तेल को कम करने के लिए और 180 दिनों का समय उन्हें दिया जाएगा। अच्छा, इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी। प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने क्या कहा? ट्रंप को भारत पर दबाव बनाने का एक मजबूत हथियार ऐसा को दिया गया है, ऐसा आकलन है। भारत अपने 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, यह कहा है भारत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने। भारत वैश्विक बाजार में कीमतों और उपलब्धता के आधार पर अपने फैसले लेता रहेगा। हालांकि यह जरूर कहा जा रहा है कि नए कानून के पास हो गए ट्रंप को कोर्ट या संसद के हस्तक्षेप के बिना भारत पर दबाव बनाने का एक बेहद मजबूत कानूनी हथियार मिल सकता है, यह कहा जा रहा है। लेकिन भारत ने साफ किया है कि भारत वही करेगा जो भारत के हित में होगा। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और यह है रूस ईरान पर पाबंदी लगाने वाला। अमेरिका मध्य पूर्व में अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी के हाथ और मजबूत कर रहा है। अमेरिका इसराइल को 2000 पाउंड के 40,000 बम देने की एक योजना बना रहा है। हाल ही में आई अमेरिका युद्ध विभाग यानी पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बाइडेन सरकार की ओर से लगाई गई रोक को हटाते हुए इसराइल को 2.8 अरब डॉलर का एक नया हथियार पैकेज बेचने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी अधिकारियों की ओर से संसद को भेजी गई अनौपचारिक जानकारी के मुताबिक इस पैकेज में कुल मिलाकर 40,000 भारी बम हैं, जिनमें से हर एक का वजन 2000 पाउंड यानी लगभग 900 से 1000 किलोग्राम है। इनके अलावा 20,000 BLU-117 बम भी दिए जाएंगे। यह दरअसल Mark 84 का ही एक आधुनिक रूप है, MK-84 का, जिसको एक तरह से जिस पर थर्मल कोटिंग होती है ताकि इसे नौसेना के जहाजों पर सुरक्षित तरीके से स्टोर भी किया जा सके। इसके अलावा डील में 20,000 बंकर बस्टर वॉरहेड्स भी शामिल हैं, जिन्हें बमों के आगे फिट किया जाता है ताकि वो कंक्रीट की भी अगर मोटी परत हो या भूमिगत सुरंग हो उन्हें भेद सके और फिर उनमें विस्फोट हो। इस पूरे सौदे का जो अधिकांश खर्च है ये अमेरिका के टैक्सपेयर्स की जेब से ही जाएगा, क्योंकि पूरा खर्च अमेरिका की सरकार के फॉरेन मिलिट्री फाइनेंसिंग FMF कार्यक्रम के तहत इसका वहन किया जाएगा। और यही वजह है कि इस फैसले का अमेरिका में भी डेमोक्रेट्स जो है खासतौर पर वो विरोध कर रहे हैं। रक्षा जानकारों के मुताबिक इसराइल इन 40,000 भारी भरकम बमों का इस्तेमाल मुख्य तौर पर तीन बड़े मोर्चों पर कर सकता है। एक गाजा, सुरंगों को तबाह करने के लिए, दूसरा लेबनान और तीसरा ईरान। इससे पहले वो इसका इस्तेमाल कर भी चुका है। रक्षा पत्रिका ग्लोब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी मात्रा, इतनी बड़ी मात्रा में 2000 पाउंड के बमों को स्टॉक करने का इसराइल का एक मुख्य उद्देश्य ईरान के साथ संभावित सीधे और बड़े हवाई युद्ध की तैयारी करना है। गाजा में इसराइल को हमास की ओर से जमीन के नीचे बनाए गए सैकड़ों किलोमीटर लंबे सुरंगों को पूरी तरह नष्ट करना उसका उद्देश्य है। इस मोर्चे पर इसराइल 2000 बंकर बस

0: सकता है। ये बम कंक्रीट की कई फीट मोटी सुरक्षा परतों को चीरकर सुरंगों के भीतर जाकर फिर ब्लास्ट करते हैं, जिससे सुरंग पूरी तरह से जमींदोज हो जाती है। लेबनान में हिजबुल्ला के पहाड़ी बंकरों को यह निशाना बनाने की कोशिश है। लेबनान के पहाड़ी इलाकों में, खासतौर पर विशेष रूप से दक्षिणी लेबनान और बेरूत के जो उपनगर है उसमें हिजबुल्ला के जो मजबूत कंक्रीट के बंकर है उसमें मिसाइल लॉन्चिंग पैड अंडरग्राउंड है, उन्हें तबाह करने की यह रणनीति है। अगर ईरान से सीधी जंग हुई तो ईरान के भीतर पहाड़ों को खोदकर बहुत गहरी परमाणु अनुसंधान केंद्र और बैलिस्टिक मिसाइल डिपो को उड़ाने में भी ये बम काम आ सकते हैं। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
6: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
7: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
8: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
5: इसीलिए सेनको इंडिया का
9: अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRF।
6: अब मैं क्या ही बोलूं?
10: परिवार अटूट भरोसा।
11: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
12: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
13: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपिवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
12: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपिवा डायबिटीज जूस।
14: और वही कहाँ गए थे घूमने?
15: जीके मैक्स।
16: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
15: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
16: जेके वॉल मैक्स
15: बेस्ट पेंट,
16: जेके मैक्स।
15: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
17: जेके मैक्स पेंट्स।
15: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
1: इन एसोसिएशन विद
2: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स,
3: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।

पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ। पंचायत आज तक 18 सितंबर, सिर्फ आज तक पर।

आखिर ये सेमीकंडक्टर है क्या? एक छोटी सी चिप इतनी जरूरी क्यों है? आइए एकदम आसान शब्दों में बताते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए बिजली और उस बिजली को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। सेमीकंडक्टर चिप इसी काम को अंजाम देती है। ये चिप एक तरह से डिवाइस का दिमाग होती है, जो डिवाइस को बताती है कि कब क्या और कैसे करना है। अब सवाल है कि ये चिप बनती किस चीज से है? तो इसकी शुरुआत होती है सिलिकॉन से। सिलिकॉन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में सिलिका और कई खनिजों में पाया जाता है। इसे बेहद शुद्ध करके एक पतली गोल प्लेट बनाई जाती है, जिसे सिलिकॉन वेफर कहा जाता है। यही वेफर आगे चलकर चिप का आधार बनता है। इसको ऐसे समझिए कि सिलिकॉन से वेफर, वेफर से सर्किट, सर्किट से ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से चिप और सबसे अंत में टेस्टिंग और पैकेजिंग। इतने स्टेप से गुजरने के बाद सेमीकंडक्टर चिप तैयार होती है। यही वजह है कि चिप बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। चिप बनाने वाली फैक्ट्री में धूल का एक बेहद छोटा कण भी उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इन फैक्ट्रियों में बेहद साफ वातावरण और बेहद सटीक मशीनों की जरूरत होती है। सेमीकंडक्टर की पूरी दुनिया को अगर देखें तो चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका इसके बड़े केंद्र हैं। इन देशों के पास चिप बनाने की फैक्ट्रियां, तकनीक और पूरी सप्लाई चेन मौजूद है। लेकिन जब बात सबसे आधुनिक और अत्याधुनिक चिप बनाने की आती है, तो ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनकर सामने आता है। दुनिया के बड़े देश सेमीकंडक्टर को सिर्फ कारोबार का हिस्सा नहीं, बल्कि अपनी तकनीकी और रणनीतिक ताकत मान रहे हैं। क्योंकि आज जिस मोबाइल को हम हाथ में लेकर घूमते हैं, जिस कार में सफर करते हैं और जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उन सब की असली ताकत उस छोटी सी चिप में छिपी है, जो ताइवान, चीन या अमेरिका की बनी है। भारत भी अब इन सेमीकंडक्टर बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। भारत के सेमीकॉन मिशन का विजन है कि पूरा इकोसिस्टम भारत में तैयार किया जाए। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।

का जश्न एक महीने तक चलेगा, सेवा संकल्प अभियान। योगी और राजनाथ ने की विश्वनाथ मंदिर में पूजा, पुतिन और नेतन्याहू ने भी दी बधाई। वडनगर से अमित शाह ने देश को बताया मोदी का मतलब, कहा 36 देशों से सर्वोच्च सम्मान हासिल करने वाले वो विश्व के इकलौते नेता है, अपने दम पर ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं नरेंद्र भाई। रेखा गुप्ता ने किया हवन। दिल्ली में सेबिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान, भारत में अवसर और टैलेंट का लाभ उठाए दुनिया। सेमीकंडक्टर पर 52 देशों की 600 कंपनियों का मेगा इवेंट। असली टीएमसी की लड़ाई का आज हो सकता है फैसला, पार्टी के नाम और निशान पर चुनाव आयोग दे सकता है अंतरिम आदेश, दोनों गुटों की सुनवाई। टाटा सन्स के चेयरमैन बने रहेंगे एन चंद्रशेखरन, बोर्ड सदस्यों ने पक्ष में लिया वोट, तीसरी बार 5 साल के लिए बढ़ा कार्यकाल।

0: आप देख रहे हैं रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। इस समय बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू में रोहिंग्या शरणार्थियों को हटाने की प्रक्रिया सरकार ने बड़े पैमाने पर शुरू की है और सरकार के कड़े रुख और जमीन के मालिकों द्वारा झुग्गियां खाली करने के नोटिस के बाद अब यह प्रक्रिया और तेज हो गई है। बरसों से अवैध तरीके से बसे रोहिंग्या अब जमीन को खाली करके जा रहे हैं, उनसे जमीन खाली कराई जा रही है। जम्मू प्रशासन ने उन मकानों और जमीन के मालिकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जिन्होंने रोहिंग्याओं को अपनी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से बसाया हुआ था। एक तरह से वहां पर पूरी डेमोग्राफी बदली जा रही थी। कानूनी कार्रवाई और जुर्माने के डर से अब जमीन के मालिक खुद रोहिंग्याओं से जगह खाली करवा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां बता चुकी हैं कि जम्मू जैसे संवेदनशील स्थान में अवैध रोहिंग्या एक गंभीर खतरा है। वो इससे पहले सेना पर हुए आतंकी हमले, सेना के कैंपों पर हुए आतंकी हमले की अगर बात करें संजुआन मिलिट्री स्टेशन की, तो दीवार से सटे इलाके में गैर कानूनी तरीके से रोहिंग्या रह रहे थे। आतंकवादी और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान उनका फायदा उठा रहे थे। ऐसे में जम्मू में रोहिंग्याओं ने अपनी झुग्गियां हटाना शुरू कर दिया है और अब हजारों की संख्या में रोहिंग्याओं ने अपना सामान बांधा, झुग्गियां छोड़ी। आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट ग्राउंड जीरो पर है जम्मू के नरवाल इलाके में। ऐसे कुछ रोहिंग्याओं से उन्होंने बात की, दिखाते हैं आपको नरवाल से सुनील जी भट्ट की यह खास रिपोर्ट।
1: जम्मू जिला प्रशासन ने रोहिंग्याओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दी है। दरअसल जम्मू में रोहिंग्या मुसलमान जिन प्लॉट्स में झुग्गियों में रहते हैं उन प्लॉट के मालिकों को जम्मू जिला प्रशासन ने नोटिस भेजे हैं और उनसे ये कहा है कि जो रोहिंग्या उनके प्लॉट्स में झुग्गियों में रहते हैं उनको तुरंत वहां से हटा दिया जाए, यानी कि झुग्गियां हटा दी जाए और रोहिंग्याओं को भी वहां से हटा दिया जाए। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के नरवाल इलाके में। ये एक रोहिंग्याओं की एक बस्ती है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं वो अपनी झुग्गियां अब यहां से हटा रहे हैं। जिस प्रकार से जम्मू जिला प्रशासन ने जो प्लॉट के जो मालिक है यहां के जिन प्लॉट्स में झुग्गियों में रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं उन प्लॉट के मालिकों को ये सख्त निर्देश दिए हैं कि वो तुरंत रोहिंग्याओं को यहां से हटाएं। उसके बाद जो प्लॉट के मालिक है उन्होंने यहां से रोहिंग्याओं को कहा है कि वो यहां से निकल जाए। अब आप देख सकते हैं कि जो रोहिंग्या मुसलमान यहां जम्मू के नरवाल इलाके में रह रहे हैं उनको यहां से हटाया जा रहा है। वो स्वयं जो रोहिंग्या मुसलमान है स्वयं अपनी झुग्गियां यहां से हटा रहे हैं और जम्मू जिला प्रशासन ने सभी लोगों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो रोहिंग्या मुसलमानों को न तो एज ए किराएदार अपने घरों में रखें न तो अपने प्लॉट्स में उनको झुग्गियां बनाने दें। तो ये बड़ी कार्रवाई हुई है यहां पर जम्मू में। अगर हम देख सकते हैं कि जम्मू जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है और अगर हम देखें तो रोहिंग्या मुसलमानों की जो उपस्थिति है यहां जम्मू में वो कई बार उस बड़ा मुद्दा बना है। यहां पर जो कई सामाजिक संगठन है उन्होंने कई बार ये कहा है कि कहीं ना कहीं इनकी जो उपस्थिति है वो यहाँ पर एक राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है। जम्मू में कब से रह रहे हैं?
2: जम्मू में हमने आया था 2006 में आया था हमने।
1: 2006 में?
2: 2006
1: में। 20 बरस
2: ज्यादा हो गया था।
1: यहाँ कैसे पहुँचे?
2: वो तो माँ बाप के साथ आया था हमने, ऐसे वो तो इतना नहीं पता, मैं छोटा था बिल्कुल।
1: यहाँ जम्मू में कैसे पहुँचे आप?
3: ये पहुँचा था हमें पहले उधर आया था जो हमारे देश का हालत बहुत बुरा है, आपको जानता होगा न्यूज में। फिर उधर आया तो जो बॉर्डर का बंदा ना उधर ऐसा आया बॉर्डर में पहुंच गया,
1: पार कर दिया,
3: बॉर्डर पार कर गया।
1: पहले कहाँ, बांग्लादेश गए?
3: नहीं गया नहीं, उधर से आया। तो
1: फिर कहाँ, बंगाल आए? पश्चिम बंगाल?
3: पश्चिम बंगाल वो कलकत्ता हो।
1: तो वहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे?
3: ऐसे ट्रेन में।
1: ऐसे रह रहे यहाँ पे कितने बरस से?
2: यहाँ पे 13-14 साल हो गए। यहाँ पे 13-14 साल हो गए। यहाँ 13 साल हो गया।
1: 13 वर्ष हो गए। यहाँ आप जम्मू में कैसे आए?
2: जम्मू में मैं बर्मा से आया।
1: कैसे पहुँचे यहाँ?
2: यहाँ पैदल गाड़ी में आ गया,
1: बॉर्डर पार करके।
2: हाँ।
1: यहाँ पहले कहाँ गए? बंगाल पहुँचे थे?
2: बंगाल नहीं है, बंगाल ना नहीं रहती है, सीधा बर्मा, बर्मा से आया।
1: कहाँ के रहने वाले?
4: बर्मा की।
1: कब से यहाँ रह रहे जम्मू?
4: जम्मू में 2017 से।
1: 2017 यहाँ कैसे पहुँचे आप?
4: हम पहुँचे, हमारे साथ और भी कोई आया इसलिए हम भी उनके साथ साथ आए।
1: नहीं, जम्मू ही क्यों आया?
4: वो जम्मू है कौन, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश, हमें नहीं पता। जब से परेशानी हम निकलने पड़े, बताने कहाँ कहाँ पहुँच गया।
1: क्या कि जो मालिक है उनको नोटिस दिया गया है और उनको कहा गया है कि ये यहाँ की जो झुग्गियाँ हैं ये खाली करवाई जाए, इसीलिए यहाँ पर जो रोहिंग्या है वो अपना सामान निकाल रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।
0: अच्छा, प्रश्न यहाँ ये उठता है कि जम्मू जैसे संवेदनशील इलाके में ही क्यों, हिंदू बहुल इलाकों में ही क्यों, और सेना के ठिकानों के पास या सुरक्षा बलों के ठिकानों के पास ही क्यों? और ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं। और किस समय ये बसाए गए, ये एक और बड़ा प्रश्न है। जिन लोगों ने इन्हें बसाया अब वो कन्नी काट रहे हैं। ये जो रोहिंग्या हैं यहां पर म्यांमार से बंगाल होते हुए जम्मू तक पहुंच गए, भारत सरकार रोहिंग्याओं को आधिकारिक रूप से शरणार्थी नहीं मानती, बल्कि उन्हें अवैध अप्रवासी मानती है। जम्मू में रह रहे अधिकांश रोहिंग्याओं के पास वैध पासपोर्ट या वीजा नहीं है। रोहिंग्या लोगों का आने का जो सिलसिला है ये 1996 के बाद शुरू हो गया था, लेकिन 2008 और 2010 के बीच म्यांमार में जो रखाइन प्रांत है वहां की हिंसा के बाद रोहिंग्या बांग्लादेश के रास्ते भारत में दाखिल हुए। लेकिन सोचिए कहां, बांग्लादेश से बंगाल होते हुए पहुंचे भी कहां, तो जम्मू। या अगर केरल की बात करें वहां पर भी नौसेना के ठिकानों के पास, कर्नाटक की बात करें सुरक्षा बलों के ठिकानों के पास। देख, दलालों का नेटवर्क है और वो सस्ती मजदूरों के नाम पर इन्हें ले आते हैं और सैन्य ठिकानों के पास बसा देते हैं। 2012 से 17 के बीच म्यांमार में सैन्य अभियानों के बाद इनकी संख्या तेजी से बढ़ी भारत में आने की। जम्मू के बाहरी इलाकों में बड़ी झुग्गी बस्तियां बन गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 6000 से 10000 रोहिंग्या जम्मू में बस गए। चूंकि जम्मू कश्मीर एक संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र है, खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई कि इन अवैध अप्रवासियों का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी तत्व और आतंकी संगठन छिपने के लिए, इंटेलिजेंस या टोह लेने के लिए कर सकते हैं या कर रहे हैं। पुलिस ने कई रोहिंग्याओं को फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड, यहां तक कि वोटर आइडेंटिटी कार्ड बनवाने के आरोप में भी गिरफ्तार किया। स्थानीय संगठनों का आरोप है कि जनसंख्या संतुलन को प्रभावित करने के उद्देश्य से रोहिंग्याओं को जम्मू के हिंदू बहुल इलाकों में, संजुआन मिलिट्री स्टेशन है बहुत बड़ा, बठिंडी, नरवाल, भगवती नगर, खासतौर पर इन इलाकों में बसाया जा रहा है। अब प्रशासन के आदेश के बाद अब उन इलाकों के मकान मालिक या प्लॉट मालिक इनसे वो इलाका खाली करा रहे हैं। लेकिन अब ये कहां जाएंगे, कहां बसेंगे, सुरक्षा एजेंसियों को नजर रखने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि ये बड़ी चिंता की बात है कि ये सैन्य इलाकों में क्यों आए। एसपी वैद ने इनको हटाने की प्रक्रिया की सराहना की है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं।
5: प्रशासन ने अच्छा काम किया, यही पहले हो जाना चाहिए था। और जो जिन्होंने रोहिंग्यास को जगह दी थी उनको कहा कि आप खाली करवाइए, क्योंकि इनकी असल जगह तो कंटेनमेंट सेंटर्स में होनी चाहिए, जनरल पॉपुलेशन में मिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, कंटेनमेंट सेंटर्स पहले बने हुए थे, हीरानगर जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ इस तरह का कंटेनमेंट सेंटर है। जब तक इनको पुशबैक का अरेंजमेंट नहीं हो जाता, ये आम जनता में मिक्स नहीं होने चाहिए, उसका खतरा बना रहेगा।
6: प्रशासन जो कदम उठाया लेकिन काफ़ी देर कर दी, और 1996-98 के करीब ये लोग आने बसे, और 2016 में भी आए। कांग्रेस के लोग तो यहाँ पे पावर में नहीं थे, बीजेपी सत्ता में थी और वहाँ पे वाजपेयी साहब थे, किस ट्रीटी के तहत आए? और हमें लगता है कि अगर राजनाथ सिंह जी या जितनी एजेंसीज हैं, अमित शाह, इनको हमारी रियासत के लिए खतरा लगता है तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, कोई रास्ते में रुकावट आने वाला नहीं। देश पहले है, सुरक्षा पहले है, उसके बाद बात की बातें हैं। लेकिन हमें लगता है कि करते करते काफ़ी देर इन्होंने कर दी।
7: गृह मंत्रालय, गृह मंत्री जी शुरू से ही इस बात को लेकर सख्ती से उन्होंने संज्ञान लिया है कि देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी गैर भारतीय गैर कानूनी तरीके से नहीं रहना चाहिए। वो पाकिस्तानी हो, वो बांग्लादेशी हो, वो रोहिंग्या हो, म्यांमार का हो, वो कैसे इन्फिल्ट्रेट कर किया, किन लोगों ने शेल्टर दिया, कौन लोग उसको लेके आए और किस मानसिकता से वो रह रहा है, तो बड़ा ही एक प्लान्ड तरीके से जिस तरीके से गृह मंत्रालय जी ने ये मूव चलाई है ये सराहनीय है। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर ही नहीं, देश भर के अंदर जहाँ भी इलीगल बांग्लादेशी रह रहे हैं, रोहिंग्याज रह रहे हैं, उनके ऊपर धरपकड़ होनी बड़ी जरूरी है।
0: और अब बात करते हैं लखनऊ हिट एंड रन मामले की। कल लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क के सामने एक कार में एक लड़की को घसीटने की तस्वीरें सामने आई थी। जो आरोपी था शाहनवाज, उसे हिरासत में ले लिया गया है। अब आज तक पर पीड़िता ने अपनी आपबीती बताई है। पीड़िता से आज तक संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की।
8: उस वीडियो के पीछे क्या कहानी थी पहले तो बताइए, फिर हम बैकग्राउंड में पूछेंगे कि किस तरीके से ये चीज हुई।
9: जनेश्वर सुबह 4:30 या 6 के बीच में हम और मेरी छोटी सिस्टर थी और बुआ जी स्कूटी से चाय पीने गए थे, और शहनबाज, मुझे सच में नहीं पता था कि वहां पे ही होगा या आएगा ऐसा कुछ। शहनबाज और इनका एक दोस्त था दानिश, और इनके साथ में दो लड़कियां भी थी, यहाँ तक चाय पी रही थी। ये बहुत टाइम से मेरे साथ रिलेशनशिप में था, ठीक है, तो मतलब दो लड़कियां थी। मैंने इससे पूछना चाहे कि वो लड़कियां कौन है, इतने में ही मुझसे चिल्लाने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये वो सब बोलने लगा, ठीक है। फिर इसका दोस्त तो ये दानिश दोनों जो थे ना वो कार में बैठ गए आके, ठीक है, और मतलब जो लड़कियां तो थी दोनों वो अलग पीछे वाले गेट से वो उधर चली गई, ठीक है। दोनों आए तो मुझसे मतलब चिल्लाने लगा, मैंने मतलब भागने लगे कार लेके, तो मैं सामने से इसे रोकना चाहूं कि मुझे बता के जाओ, ये रुका नहीं। उसके बाद ही मुझसे गाड़ी चढ़ा के मेरे ऊपर से, और फिर मेरा हाथ शीशे की तरफ इसने मुझे बुलाया, हाथ में अभी भी चोट है, स्वेलिंग भी है, देख लीजिए आप सब लोग, हाँ निशान पड़ा है। शीशे में मेरा पूरा हाथ दब गया था, मैं ऐसे करके हाथ निकालना चाह रही थी लेकिन शीशा ऐसे करके लॉक था, वो निकल नहीं पा रहा था,
8: इसने फंसा लिया,
9: फंस गया था, ठीक है। तभी तो मैं घसटी हूँ, एकदम से घसीटते हुए ले गया, फिर अचानक से इसने शीशा ऐसे किया, तब मेरा हाथ निकला, तब हम गिर गए, ठीक है।
8: आपने रोकने की कोशिश की लेकिन
9: हाँ, इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। ये गाड़ी इनके दोस्त दानिश जो साथ में था शहनवाज का दोस्त, उसने ये बोल के बोला है कि इसे आज मार दो, सामने से आया कुछ भी करे मार दो, वहां शीशे में दब गया दबने दो, मार के चलो साली को मार दो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। इनके दोस्त दानिश ने शहनवाज को बोला, जो मैं ना तो तभी मैं और जिद में आके सामने सामने कहा मार दो, ऐसे किसी को आप मार रहे हैं तो ये गलत चीज है ना। बाई चांस अभी हम बच गए, मेरे कितनी सारी चोटें आई आप देख लो, पूरा ये यहाँ हम दिखा नहीं सकते हैं, इतना सब कुछ हुआ है, ये सब चीजें बहुत सारी। मैं आपको चोट का वीडियो देखेंगे, ऐसी ऐसी जगह है आप खुद देख लीजिएगा। उसके बाद आप मुझे अगर बाय चांस यहाँ पे कोई और लड़की होती वो क्या करती बेचारी, अगर पीछे से हम अगर हट बेहोश पड़े थे वहां पे, मेरी सिस्टर थी और मेरी बुआ जी ने और वहां पे जो एक दो लोग मौजूद थे, ये स्पीड में गाड़ी भगाते हुए, यहाँ तक कि चांस भी नहीं दिया कोई गाड़ी पकड़ा, इतनी स्पीड में ये गाड़ी लेके गए, आप वीडियो में खुद दे सकते हैं जो वायरल हुआ है, ठीक है, लेके गए। बाय चांस अगर पीछे से कोई कार वगैरह आ जाती या मेरा मैं पहिए के नीचे वैसे भी आ गई थी समझो, आ जाता गलती से मेरा सर मर जाती या नहीं मर जाती, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता।
0: और अपना नाम आयुष बताकर शाहनवाज ने एक लड़की से इस तरह से मित्रता करके उसे धोखा दिया, अब इसकी पड़ताल हो रही है। इस खबर पर रहेगी नजर, लेकिन अब रुख करते हैं चीन से आ रही एक बड़ी खबर की। दुनिया की बड़ी बड़ी नौसेनाएं अब उन पनडुब्बियों पर इतरा रही हैं जिन्हें इंसान चला रहे हैं, लेकिन चीन ने वो कर दिखाया जिससे दुनिया में हड़कंप है। द टेलीग्राफ ने खुलासा किया है कि चीन दुनिया का पहला अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप बना रहा है। यह ऐसा मदरशिप है जिसके अंदर एक नहीं दो नहीं 4 विशालकाय सबमरीन यानी मानव रहित पनडुब्बियां हैं, अंडरवाटर सबमर्सिबल्स, यानी चीन के सैनिकों को युद्ध में बलि चढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके मानव रहित सबमर्सिबल या सबमरीन हजारों किलोमीटर दूर तक नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। चीन का यह जो मदरशिप है शंघाई के एक शिपयार्ड में बन रहा है, जिसकी तस्वीर चुपके चुपके अमेरिकी खुफिया कंपनी ने सैटेलाइट से खींची। उस तस्वीर में लाल रंग का एक जहाज दिख रहा है जो अभी बनी रहा है। शंघाई के शिपयार्ड में चीन इससे पहले विशालकाय युद्धपोत बना चुका है, और ऐसे युद्धपोत जो जमीन और पानी दोनों पानी से जमीन पर और पानी से पानी में आक्रमण करने की क्षमता रखते हैं। अब चीन दुनिया का वो पहला देश बन रहा है जो इतना बड़ा मानव रहित मदरशिप बना रहा है जिसमें मानव रहित पनडुब्बियां हो। एक छोटा सा ब्रेक, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए अब देखते रहिए आज तक।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
2: क्या आप मुझे बताइए, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मजबूत कदम लगेगा आपको? ये कदम जो हमारे इंडिजिनस, हमारे होम ग्रोन डिजिटल पेमेंट का इकोसिस्टम है उसको तबाह करने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि अमेरिका को हमारा एमडीआर रेजिम नहीं पसंद आ रहा था, अमेरिका हम पर दबाव डाल रहा था, और हो सकता है हम अमेरिका के सामने कान पकड़ के माफी मांग रहे हैं ये करके कि साहब हमने ब्रिक्स का समिट यहाँ ऑर्गेनाइज के लिए, हमें माफ कर दो, लो हम आपके लिए कर देते हैं। ये वही है, उसके अलावा कुछ नहीं।
3: कांग्रेस पार्टी एक नाराज फूफा पार्टी बन चुकी है, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जब दुनिया की डिजिटल फाइनेंशियल क्रांति की अनुगवाई भारत ने करी थी यूपीआई के माध्यम से, तो राहुल गांधी के कहने पे पी चिदम्बरम ने ये कहा था कि क्या गरीब आदमी या इस देश का आम आदमी कभी डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता है। सो कांग्रेस हैज हिस्टोरिकली बीन एन ओपोनेंट ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और आज ये नाराज फूफा पार्टी झूठ फैला रही है। हर आम आदमी आज स्कैनर के माध्यम से पेमेंट कर रहा है, और हर आम आदमी स्कैनर के माध्यम से ही पेमेंट करता रहेगा।
4: पता नहीं ये सरकार क्या कर रहे हैं, इनके पॉलिसी क्या है, क्या सोचते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। अचानक से कोई नियम या कुछ थोप दिया जाता है, फिर जनता पर जब उसकी आदत लग जाती है, जनता उसके आदी हो जाते हैं, फिर उसे बदल दिया जाता है। अगर इसमें भी इतना टैक्स थोप देंगे 2000 के ऊपर के पेमेंट पर, तब तो आने वाले समय में जनता काफी क्राइसिस में आ जाएगी। इमीडिएटली इसे बंद करना चाहिए, जो भी निर्णय है ये बिल्कुल गलत निर्णय है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
5: नहीं, यूपीआई में तो ऐसा है कि भाई 2000 तक जो व्यापारी लोग होते हैं वो 2000 तक उसकी सीमा है, और उसमें कोई मतलब और ज्यादा पैसा ले रहे, इसी तरह का राहुल गांधी का आरोप है, वो इसमें तथ्य नहीं है। कोई सरकार ने अभी निर्णय ऐसा लिया भी नहीं है। वो किसी व्यापारी को और किसी लोगों को तकलीफ देने की भूमिका हमारी बिल्कुल नहीं है।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।

सेमी कंडक्टर, हिंदी में कहे तो अर्धचालक, आम बोलचाल में इसे चिप कहते हैं। एक छोटी सी चिप जिस पर दुनिया की तकनीक टिकी हुई है। ये मोबाइल फोन, ये लैपटॉप, ये कैमरे, इनका आधार क्या है? एक चिप ही तो है, वही चिप जिसे सेमी कंडक्टर कहते हैं। आज दुनिया उसी की है जिसके पास सेमी कंडक्टर की ताकत है। एक मामूली सी चिप की ताकत कितनी है, इसको ऐसे समझिए कि 21वीं सदी की विश्व व्यवस्था में असली ताकत इस बात से तय होती है कि उस देश की माइक्रोचिप यानी सेमीकंडक्टर कितनी ताकतवर है। ताइवान जैसा छोटा सा देश सेमीकंडक्टर का हब है और यही उसकी ताकत है, वरना चीन कब का उसे हजम कर गया होता। फोन की स्क्रीन से कार के इंजन तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देश की रक्षा प्रणाली तक, सब कुछ एक छोटे से सेमीकंडक्टर पर टिका है। आज की स्थिति ये है कि सेमीकंडक्टर के मामले में भारत दूसरे देशों पर निर्भर है और इसी निर्भरता को आत्मनिर्भरता में बदलने के लिए भारत ने 2021 में शुरू किया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 3 दिनों तक सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया गया है। इस बार के सेमिकॉन की थीम है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। मकसद साफ है कि भारत में सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम तैयार करना है। 3 दिनों तक चलने वाले सेमिकॉन की शुरुआत पीएम मोदी की स्पीच से हुई। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का पूरा प्लान सामने रखा। सेमीकॉन 2026 में दुनिया भर से आए दिग्गज अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये सम्मेलन सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम कवर करेगा, जिनमें शामिल हैं विनिर्माण और प्रौद्योगिकी, एआई और डिजिटल परिवर्तन, सप्लाई चेन प्रबंधन, उत्पादन और डिजाइन, स्टार्टअप और नवाचार। इस बार के सेमीकॉन में 52 देशों के 600 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इनमें 240 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, निवेशक, शोधकर्ता तथा स्टार्टअप हिस्सा ले रहे हैं। सेमीकॉन में 6 देशों के पवेलियन बनाए गए हैं। भारत के 10 राज्यों की सरकारों ने अपना पवेलियन बनाया है, जिसमें सेमीकंडक्टर तकनीक का प्रदर्शन किया जाएगा। सेमीकंडक्टर की इस रेस में भारत ने देर से कदम जरूर रखा, लेकिन अब रफ्तार बढ़ाने की कोशिश तेज है। लक्ष्य सिर्फ दूसरे देशों से चिप मंगाने का नहीं, बल्कि डिजाइन से लेकर निर्माण और पैकेजिंग तक अपनी पूरी चिप वैल्यू चेन तैयार करने का है। तकनीक के इस दौर में जिस देश के पास चिप की ताकत और मजबूत इकोसिस्टम होगा, दुनिया उसके पीछे चलेगी। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।

0: पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में 25 साल के नेतृत्व का जश्न। एक महीने तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान। योगी और राजनाथ ने की विश्वनाथ मंदिर में पूजा। पुतिन और नेतन्याहू ने भी दी बधाई। वडनगर में अमित शाह ने देश को बताया मोदी का मतलब। कहा 36 देशों से सर्वोच्च सम्मान हासिल करने वाले वो विश्व के इकलौते नेता। अपने दम पर ध्रुव तारे की तरह चमक रहे हैं नरेंद्र मोदी। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन पर पीएम मोदी का आह्वान। भारत में अवसर और टैलेंट का लाभ उठाए दुनिया। सेमीकंडक्टर पर 52 देशों की 600 कंपनियों का मेगा इवेंट। असली टीएमसी की लड़ाई का आज हो सकता है फैसला। पार्टी के नाम और निशान पर चुनाव आयोग दे सकता है अंतरिम आदेश। दोनों गुटों की सुनवाई। भारतीय यूथ कांग्रेस ने शुरू किया मेरी डिग्री का क्या अभियान। एक साल में सभी सरकारी नौकरियों को भरने का सरकार को अल्टीमेटम। पीएम आवास को घेरने की भी चेतावनी।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल भारत की सियासत में अमेरिका की चर्चा पर है, और वो चर्चा दो कारणों से है। ताजा तो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को यह ताकत मिल गई है कि रूस से तेल खरीदने वाले देश पर 100% टैरिफ लगा देंगे। अब भारत तो लगातार रूस से तेल खरीद ही रहा है, आगे भी लेने के दावे भी कर रहा है, तो खतरा यह है कि कहीं ट्रंप भारत पर भी 100% टैरिफ नहीं लगा देंगे। और दूसरा विवाद यूपीआई वाला है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि यूपीआई पर जो 0.4% का मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR लगाया गया है, वो ट्रंप के दबाव में ही लगाया गया है ताकि फोन पे वाले वॉलमार्ट और गूगल पे को मुनाफा हो सके। कांग्रेस के नेता हवाला दे रहे हैं कि अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिपोर्ट में 0 MDR पर नाराजगी जताई गई थी, और इसीलिए अब चार्ज लगाया जा रहा है। जबकि सरकार ने बाकायदा इसी अगस्त में संसद से कानून पारित किया है जिसमें वित्त विभाग की संसदीय समिति की 32वीं रिपोर्ट का आधार भी बताया गया है, और उस कमिटी में कांग्रेस के भी 5 सांसद सदस्य हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट में कोई डिसेंट नोट नहीं डाला, यानी कोई विरोध नहीं किया है, बल्कि समिति ने यह भी माना कि यूपीआई को सरकारी अनुदान पर चलाना संभव नहीं है और उसे अपना एक रेवेन्यू मॉडल लाना होगा। अब सरकार कह रही है कि आम आदमी पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन हकीकत यही है कि आखिरी बोझ आम आदमी पर ही पड़ने वाला है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स जैसी कारोबारी संस्था और व्यापारी संगठन भी इस बात का विरोध जता रहे हैं। खुदरा कारोबारी भी शिकायत कर रहे हैं, इससे नकदी को बढ़ावा मिलेगा, टैक्स चोरी को बढ़ावा मिलेगा, टुकड़ों में पेमेंट जैसी हरकतें बढ़ जाएंगी। और इन्हीं दलीलों के साथ कांग्रेस पार्टी अब यूपीआई पर लगाए गए 0.4% MDR को वापस लेने की मांग कर रही है, क्योंकि सुनने में यह आ रहा है कि सिर्फ 0.4% है, लेकिन भारत में सालाना 314 लाख करोड़ रुपए का यूपीआई लेन देन होता रहा है। 0.4% 1.25 लाख करोड़ से भी अधिक होता है। तो आज के दंगल में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं।
1: तीन दिनों से तबाही मची है, सरकार सफाई देकर परेशान है, PIB ने बताया, वित्त मंत्रालय ने बताया, NPCI ने कई बार बताया, फाइनेंशियल सर्विसेज वाले फैक्स दे रहे हैं, दर्जनों डिबेट्स हो गई, लेकिन विपक्ष मानता नहीं। पहले विरोध किया, फिर विदेशी दबाव बनाया, फिर नियम वापसी की मांग की, और अब मनमाने फैसले का आरोप पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार ने अमेरिकी दबाव में फैसला लिया, और गौरव गोगोई कहते हैं कि जब संसदीय समिति की बैठक हुई तो वित्त मंत्रालय के पास यूपीआई पर टैक्स के कोई ठोस प्रस्ताव नहीं थे। मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR की जरूरत पर सवाल पूछा गया, लेकिन जवाब नहीं थे। ये गौरव गोगोई लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता हैं और अपने दल के बाकी 5 और सांसदों के साथ वित्त विभाग के संसदीय मामलों की समिति के सदस्य हैं। इस समिति की 32वीं रिपोर्ट के पेज नंबर 23 पर साफ लिखा है कि बिना MDR के UPI चलना मुश्किल है। पेज नंबर 78 पर लिखा है कि UPI के लिए अपना रेवेन्यू मॉडल तैयार करना होगा। और 12 मार्च को ये रिपोर्ट उस समिति ने दी थी जिसमें कांग्रेस की ओर से पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, प्रमोद तिवारी, किशोरी लाल और के गोपीनाथ, ये सभी सांसद उस कमेटी के सदस्य हैं जिनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने आदेश निकाला है। और रिपोर्ट में खुद स्टैंडिंग कमेटी ने माना था कि सरकारी इंसेंटिव डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की लागत का सिर्फ 11% ही कवर करते हैं। ऐप डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, फ्रॉड का पता लगाना, सेटलमेंट, KYC और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगातार फंडिंग की जरूरत होती है। तो ये आरोप सच नहीं कि कांग्रेस की जानकारी मंजूरी के बिना 0.4% MDR लागू हुआ। इसके बाद जब लोकसभा में 6 अगस्त 2026 को टैक्सेशन एंड अदर लॉज बिल पर चर्चा हो रही थी तो विपक्षी सांसद शोर मचा रहे थे, ध्वनि मत से बिल पारित हुआ था। इसी तरह 10 अगस्त को भी बिल पर चर्चा के समय विपक्षी आसन के सामने शोर मचा रहे थे और बिल पारित हो गया था। और तभी जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि ये संशोधन बिल US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स की 2026 की रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें UPI और रुपए के मुफ्त होने की आलोचना की गई है, और उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने वीजा और मास्टर कार्ड जैसे अमेरिकी पेमेंट प्लेटफॉर्म को बाहर कर दिया है। जयराम रमेश ने सवाल उठाए थे कि क्या ट्रंप के दबाव में UPI को कमजोर करना चाहते हैं और डिजिटल पेमेंट सेक्टर को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलना चाहते हैं। अमेरिका की USTR की पेज नंबर 272 पर कहा गया था कि NPCI के रुख से अमेरिकी कंपनियों को बराबरी का मौका नहीं मिल रहा। अमेरिका ने थर्ड पार्टी एप्स को UPI सिस्टम में 30% के कैप का विरोध किया था। हालांकि 30% का कैप अभी तक लागू नहीं किया गया। हाल ये है कि अमेरिका की वॉलमार्ट वाला फोन पे और गूगल वाला गूगल पे भारत की 80% से अधिक UPI पेमेंट मार्केट पर कब्जा कर चुकी है। हालांकि इसमें से कुछ चार्ज वो बैंक भी वसूलेंगे जिनके खाते से पेमेंट हो रहे हैं। और भी अनुमान के मुताबिक 7-8 हजार करोड़ रुपए का सालाना फायदा गूगल पे फोन पे को हो सकता है और ऐसा ही फायदा पेटीएम जैसी भारतीय पेमेंट ऐप्स को भी हो सकता है। सरकार ये भी दलील देती है कि इन देसी ऐप्स को चलाने के लिए सरकारी सब्सिडी का रेवेन्यू मॉडल नहीं चल सकता क्योंकि पिछले साल फोन पे का सालाना खर्च 9,394 करोड़ रुपए था जिसमें सर्वर और डेटा सेंटर्स पर 2,800 करोड़ रुपए, बैंकों और गेटवे को 1,688 करोड़ रुपए, बाकी सॉफ्टवेयर क्लाउड क्लाइंट सपोर्ट सब मिलाकर 500 करोड़ रुपए खर्च हुआ था और ये तब था जब एक तिहाई मार्केट पर फोन पे का कब्जा है। अमेरिका के सामने चुनौती बनी हुई है कि अगर भारत में थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप्स पर 30% का कैप लग गया तो भारतीय बाजार पर उनका एकाधिकार सीमित हो सकता है और तब वॉलमार्ट और गूगल जैसी कंपनियों का मुनाफा भी एक तिहाई तक सिमट सकता है। इसके साथ ही पेटीएम जैसी भारत की देसी थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप्स को सर्वाइवल का बड़ा मौका मिल सकता है क्योंकि अब 0.4% MDR लागू होने का फायदा उन्हें भी मिलेगा। आज तक ब्यूरो।
0: तो सरकारी सूत्रों से ये भी खबर आ रही है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि अब इसे रोल बैक नहीं किया जाएगा। ये पॉलिसी के तहत जो MDR लगाने की बात हो रही है, जिस तरीके से गैजेट नोटिफिकेशन निकला है, उसे वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि इससे आम जनता की जेब ढीली हो सकती है क्योंकि मर्चेंट एक बार फिर कैश इकोनॉमी की तरफ ढकलने की कोशिश करेंगे। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल होंगे। कांग्रेस पर बीजेपी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि जब स्टैंडिंग कमेटी में इसकी चर्चा हो रही थी, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस पे, तब कांग्रेस के सांसदों ने विरोध क्यों नहीं किया, जबकि कांग्रेस कहती है कि कोई पुरजोर चर्चा नहीं हुई है, महज कहा गया था लेकिन उस पर कोई आगे बात नहीं बढ़ी थी। उस पर भी हम पूछेंगे। दीप्ति तनेजा इकोनॉमिस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स है, वो भी चर्चा में शामिल होंगी और उसके साथ साथ आशुतोष भी चर्चा में शामिल होंगे। तीन सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, क्या सचमुच में अमेरिकी दबाव में UPI पर MDR लगाने का आरोप सियासी है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि दरअसल ये बात पहले से तय हो रही थी, जबकि अमेरिकी कंपनियों को इसका नुकसान भी हो सकता है जब 30% का कैप लगेगा, जो भारतीय पेमेंट अथॉरिटी की तरफ से कहा गया है। दूसरा सवाल, क्या UPI पर चार्ज वाला कानून बनाने के पहले कांग्रेस के सांसदों की इस रिपोर्ट में सहमति थी? कांग्रेस के सांसद इस बात को नहीं मान रहे हैं लेकिन उसके बावजूद सवाल ये कायम रहता है। और तीसरा सवाल, क्या 100% टैरिफ की ताकत मिलने के बाद भारत पर ट्रंप का दबाव बढ़ने का खतरा है? क्योंकि इससे पहले भी ट्रंप कई बार ये धमकी दे चुके हैं, जबकि भारत की तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया है कि देश के इंटरेस्ट में, एनर्जी इंटरेस्ट में रशिया से तेल वो खरीदते रहेंगे। चर्चा शुरू करते हैं। सैयद जफर इस्लाम, सबसे बड़ा सवाल यही है, किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस बारे में पूरी जानकारी थी कि UPI पर MDR लगाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है?
2: देखिए, दो अहम समय में कांग्रेस की भूमिका रहनी चाहिए थी और रही भी है। पहले तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, उसमें ये डिस्कशन हुआ, चर्चा हुआ। मैं खुद एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूं, मैं जानता हूं कि जब कोई चीज चर्चा में आती है तो सबको मौका मिलता है, चाहे वो कोई भी मेंबर हो, अपोजिशन का हो या गवर्नमेंट का पार्टी का हो, लेकिन सबको मौका मिलता है अपनी अपनी बातें रखने का। इस पूरे में जितने भी उनके दिग्गज लोग हैं, जो फाइनेंस इकोनॉमी समझने वाले लोग, उसमें चिदम्बरम भी हुए, मनीष तिवारी हुए, गोगोई साहब जैसे लोग हैं जो उसमें थे, उपस्थिति थी और उन्होंने इसको बजाते समझा और इस बात को सराहा कि सस्टेनेबिलिटी के लिए, UPI की सस्टेनेबिलिटी के लिए एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जहां पर तीन चीजें हैं। एक तो प्लेटफॉर्म जो उसमें इन्वेस्टमेंट होता है, उसकी लागत आती है, उसको मेंटेनेंस होता है, डेवलपमेंट होता है, इनोवेशन होता है, सस्टेनेबिलिटी होती है, उसके लिए थोड़ा जो खर्चा चाहिए, पहले जो है फ्री, एब्सोल्युटली फ्री था और उसको लेकिन सस्टेनेबल थोड़ा करने के लिए कुछ लागत चाहिए। आगे बहुत सारे एक्सपैंड किया जा रहा है, नई टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी तो उसके लिए थोड़ा खर्चा चाहिए। तो सभी लोगों ने सोचा कि कंज्यूमर को बिल्कुल इसको कोई भार ना पड़े कंज्यूमर पे, लेकिन मर्चेंट पे बहुत थोड़ा सा भार पड़े। वो भी सारे कैलकुलेशन करिएगा तो आप देखिएगा, चाहे 2000 से कम वाले जो है वो ट्रांजैक्शन जो है 96% होते हैं। अगर वॉल्यूम टर्म में देखें ये नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पे वॉल्यूम टर्म में देखें तो 65% जो है वो होते हैं जो 2000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन होते हैं। उसमें भी देखिए पी टू पी में जो है लगभग 70-75% पी टू पी होते हैं वैसे ही फ्री है, तो लगभग 20% ट्रांजैक्शन पे चार्जेस लगेंगे और उसको भी कैप कर दिया गया है। बहुत सारे सर्विसेज को कैप कर दिया 5 रुपए में, उसको 300 रुपए में कैप कर दिया गया है, तो उससे जो है बहुत मिनिमम जो है एमडीआर से जो आगे की जो सस्टेनेबिलिटी के लिए जो खर्चा चाहिए वो सस्टेनेबिलिटी के लिए खर्चा चाहिए। ये बिल्कुल अनफाउंडेड है, गलत है, बेतुका है कि अमेरिका के दबाव में किया है। भाई आप एक प्लेटफॉर्म चला रहे हैं तो उसमें लागत आती है कि नहीं? 20,000 करोड़, 20,700 करोड़ की लागत आती है।
3: एक एक करके
2: का खर्चा तो कौन बियर करेगा? बैंक बियर करते हैं।
3: एक एक करके जाएंगे, एक एक करके जाएंगे। देखिए आप
2: छोटी सी बात, बैंक बियर करते हैं,
3: एक एक करके जाएंगे। जफर इस्लाम जी एक नहीं नहीं एक एक एक एक करके जाएंगे। अमेरिका के आरोप पर तो मैं आऊंगा, पहले तो आपका पहला जो स्टैंडिंग कमेटी को लेकर जो आरोप है कांग्रेस पार्टी पर उसको जरा निपटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप दरअसल बीजेपी आलोक शर्मा जी ये कहने की कोशिश कर रही है कि आप जो कह रहे हैं कि किसी से बात ही नहीं की गई, सीधे सीधे डायरेक्टली
2: आकर बात कर लो उसके बारे में, नोटिफिकेशन निकाला गया, बात कर लो क्या है।
3: जफर इस्लाम जी मैं एक एक करके इस मुद्दे पर
2: मैं दो चीज पहले तो दो पॉइंट बोला
3: आलोक शर्मा जी से ये पूछना जरूरी है ना।
2: हाँ इसी मुद्दे पर, इसके मुद्दे पर दूसरी बात, दूसरा पहलू नहीं रखा मैंने, दूसरा पहलू नहीं रखा, वो भी रख ले फिर आप आलोक भाई से पूछ लीजिएगा।
3: आप इसी मुद्दे पर बोले,
2: पहलू भी है कि इसी एक बार तो ये
3: इसी मुद्दे पर बोले, इसी मुद्दे पर बोले, बाकी चीजें तो रिपीट हो रही है।
2: हाँ
3: स्टैंडिंग कमेटी का डिस्कशन पे, स्टैंडिंग कमेटी,
2: स्टैंडिंग कमेटी में, हाँ स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन डिबेट सब कुछ हुआ और इनकी जानकारी में थी और इन लोगों ने सराहा और उसको अप्रूव किया एक तरह से। और दूसरी बात कि ये पार्लियामेंट में भी चर्चा में आया बिल के तौर पे, जब पार्लियामेंट में चर्चा में तो ये भाग गए, इसलिए कि इनको जानकारी थी कि भाई ये तो सही है, तो कंज्यूमर पे कोई भार नहीं पड़ने वाला है तो चलो इसको ठीक है। लेकिन आज सिर्फ ये जान रहे हैं कोई मुद्दा नहीं है, ठोस मुद्दा, तो इसको जनता के बीच में कैसे गुमराह करने का काम है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। अफसोस की बात है कि उनके जो पढ़े लिखे जो बहुत सारे काबिल नेता हैं जिनको अर्थशास्त्र जानते हैं और उनको इकोनॉमी की जानकारी है, वो लोग राहुल गांधी जी को ब्रीफ नहीं कर रहे। आलोक भाई ही ब्रीफ कर देते अगर चिदम्बरम जी नहीं कर रहे, इनको भी अच्छी समझ है, कर देते कि भाई इसमें कोई भार नहीं पड़ रहा है, ये तो सिर्फ लोगों
3: जनता के मन में संदेह क्यों है। जफर इस्लाम जी
2: राहुल गांधी को
3: उसके लिए सरकार कैसे रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है उस पर मैं अलग से आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन जरा पहले स्टैंडिंग कमेटी का वाला मामला निपटा लेते हैं, क्योंकि ये इस मामले को लेकर खुद गौरव गोगोई और उसके बाद मनीष तिवारी दोनों सांसद जो इस स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस के मेंबर है उन्होंने इस बारे में अपनी भूमिका रखी हुई है। कुल मिलाकर आलोक शर्मा जी जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसके पेज नंबर 23 पर साफ लिखा है कि बिना चिदम्बरम भी है उसमें, बिना एमडीआर के यूपीआई चलना मुश्किल है। पेज नंबर 78 पर पन्ने पर लिखा है कि यूपीआई के लिए अपना एक रेवेन्यू मॉडल तैयार करना होगा और उसके साथ साथ इसी रिपोर्ट पर यह भी लिखा हुआ है कि सरकारी इंसेंटिव डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की लागत सिर्फ 1.1% कवर करते हैं और इसीलिए ऐप डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी और फ्रॉड का पता लगाना, बाकी सारी चीजें, इस सब के लिए फंडिंग की जरूरत होती है। ये सारी बातें इस रिपोर्ट पे लिखी हुई थी, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ये दावा क्यों कर रही है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और उसके बाद का बिल लाया गया, अमेंडमेंट बिल लाया गया, उस वक्त भी पार्लियामेंट के भीतर कोई चर्चा नहीं हो पाई थी। आलोक शर्मा
4: देखिए दो विषय साहिद जी आपने लिए, पहला तो ये कि सराहा कुछ सांसदों ने इस चीज को, अगर कोई भी सराहने वाली कोई भी बाइट आपके पास हो या सैयद जफर इस्लाम जी के पास हो तो वो जरूर चलनी चाहिए। कोई एक स्टेटमेंट किसी न्यूज़पेपर में कि कांग्रेस के सांसदों ने उसको सराहा, पहला पॉइंट। 21 दिन तक संसद नहीं चलने दी, इन लोगों ने मोदी जी और अमित शाह जी संसद से भाग गए क्योंकि बच्चों का इशू चल रहा था। जब आप संसद में आएंगे ही नहीं तो चर्चाएं कैसे होंगी। तीसरी चीज देखिए, जिस समय पर जीएसटी लगाया था दूध दही और तमाम चीजों के ऊपर, मक्खन छाछ के ऊपर, तब भी इन्होंने कहा था कि वहां पर तो बैठे थे वो फाइनेंस मिनिस्टर्स जो कांग्रेस के शासन के हैं, लेकिन सबने फिर मना किया। गैर भाजपाई तमाम फाइनेंस मिनिस्टर्स ने कहा था कि जीएसटी में हमने इसके ऊपर सहमति नहीं दी। तो झूठी सरकार, जेब कतरी सरकार। अगर ये बात थी, देखिए एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना या कहीं से पैसा अरेंज करना एक पॉइंट होता है, दूसरी चीज कि आप जनता के ऊपर उस चार्ज का बर्डन डाल दें ये अलग चीज होती है। किसी चीज को भी सस्टेनेबल बनाना, सस्टेनेबल तो उसको आरबीआई के थ्रू भी बनाया जा सकता था, सस्टेनेबल तो उसको सरकार की सब्सिडी से भी बनाया जा सकता था, और सस्टेनेबल तो ऑलरेडी बजट में जब 11,000 करोड़ से ज्यादा रखे तो सस्टेनेबिलिटी की तो बात ही नहीं। आपने कहीं पर भी रिपोर्ट में लिखा हो कि चार्जेस हम लगाएंगे 0.4% और 2000 के ट्रांजेक्शन से ऊपर और उस पर कांग्रेस के सांसदों के दस्तखत हों, तो कांग्रेस उसके लिए तुरंत अभी इसी समय हम खेद व्यक्त करेंगे कि भाई गलती हो गई हमसे। लेकिन अगर अभी तक इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट होता तो पब्लिक डोमेन में आ जाता। मेरी दो लोगों से, छह जो फोटो आज तक पर चल रहे हैं, दो लोगों से मेरी भी बात हुई, उन्होंने कहा केवल एक डिस्कशन आया था और ये सरकार बहुत कुछ छुपा कर करती है। नोटबंदी का किसी को नहीं पता चला था, महामानव आए थे और उसके बाद आरबीआई को नहीं पता था, आरबीआई के तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स उन्होंने कहा कि हमें ही नहीं पता चला था कि नोटबंदी में क्या क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए, ट्रेड डील होने से पहले ही, ट्रेड डील लागू होने से पहले ही सरेंडर प्रधानमंत्री ने और ज्यादा सरेंडर कर दिया है और उसको लागू कराना शुरू कर दिया है। राम मंदिर के डकैत हैं साहिल जी, राम मंदिर के डकैतों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। अभी जब अगर हमने सहमति थी तो 6 तारीख को जयराम रमेश जी ने संसद में विरोध क्यों किया, फिर उस समय पर कोई सांसद बीजेपी से क्यों नहीं बोला कि भाई आपके मेंबर्स की तो सहमति है इसमें, तब तो कोई नहीं बोला। जयराम रमेश जी ने ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियली इसका विरोध किया, साथ के साथ निर्मला सीतारमन जी ने उसको इस लायक नहीं समझा।
5: आलोक जी, मैं एक लाइन आपको पढ़कर सुना दूं, आलोक जी एक लाइन में आपको पढ़कर सुना दूं उस रिपोर्ट की जो आप मांग कर रहे हैं, जो फाइनेंस स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस की जो रिकमेंडेशन है उसकी मैं लाइन आपको पढ़कर सुना देता हूं, ठीक है? कहां कंफ्यूजन है वो बात भी क्लियर हो जाएगी। देखिए, मैं कोट अनकोट इंग्लिश में लाइन ये पढ़कर सुनाता हूं क्योंकि ये रिपोर्ट इंग्लिश में मेरे पास यहां पर आई हुई है। इस रिपोर्ट की जो लाइन है वो ये है, द कमिटी वुड लाइक टू एम्फसाइज दैट एस्टैब्लिशिंग अ वायबल रेवेन्यू मैकेनिज्म, कोई एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए, रेवेन्यू मैकेनिज्म इज क्रिटिकल टू एंश्योरिंग द UPI ecosystem achieves financial sustainability without perpetually straining the government exchequer। यानी सरकार कब तक इस पर खर्चा करती रहेगी? UPI की ecosystem को मजबूत बनाने के लिए revenue source हमें develop करना चाहिए। इस बात पर standing committee on finance में सभी सांसदों ने, जो भी member है उसके, उन्होंने ये report submit की है।
4: अब इसमें आता हूं, इसमें देखिए
5: यानी प्रपोज किया है कि ये होना चाहिए,
4: वायबल रेवेन्यू सोर्स, 3 शब्द है मेनली, वायबल वर्ड है,
5: रेवेन्यू मैकेनिज्म,
4: वायबल मैकेनिज्म, वायबिलिटी क्या केवल जनता के ऊपर बोझ डाल के ही वायबिलिटी आएगी? क्या उसमें क्लेरिफिकेशन था कि हम 0.4% करेंगे? ये 0.6% क्यों नहीं है? ये 0.2% क्यों नहीं है? क्या कोई फाइनेंस की रेवेन्यू की कोई किसी भी रूप में कोई कमेटी इन्होंने बनाई, टेक्निकल कमेटी? क्या किसी टेक्निकल कमेटी की कोई रिकमेंडेशन वहां फाइनेंस कमेटी में रखी गई? कोई चीज नहीं रखी गई, सब कुछ अंधेरे में रखा, केवल एक सेंटेंस लिखकर कि वायबिलिटी होनी चाहिए इसकी। अरे भाई, बजट में अगर ऑलरेडी आपने रख रखा है,
2: मुझे 10 सेकंड चाहिए,
4: दबाव में आप कर रहे हैं। अब इसके दो प्रभाव हैं सीधे सीधे, या तो इसका जो सीधा प्रभाव है वो ये है कि जो आप मर्चेंट की बात कर रहे हैं, मर्चेंट अपने दामों को बढ़ाएगा, वो अपने जेब से तो पैसा देगा नहीं। एक तरफ 10% के करीब WPI जा रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, महंगाई ऑलरेडी सर पर है, इससे और महंगाई बढ़ेगी। और इसमें एक चीज और है साहिल जी, बहुत बड़ी बड़ी चालाकी से इन्होंने क्या किया है कि आगे का रास्ता भी खोल दिया है। अभी तो केवल ये 2000 के कैप लगा के छोड़ दी कि 2000 से नीचे तक का नहीं करेंगे, लेकिन अब पार्लियामेंट में डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अब NPCI जो है वो हेड करेगी और कमेटी जो है वो डिसाइड कर लेगी, सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी जो है वो केवल डिसाइड करेगी, कल को 2000 से नीचे पर भी आ जाएंगे। अभी इतना बड़ा फिगर जो आपने बताया आज तक पे कि 2025-26 में 314 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन है और उसमें से 2000 एंड अबाउ जो है वो 207 लाख करोड़ है, लगभग 65% वॉल्यूम का। तो ये बहुत बड़ा खेल है सरकार के जेब में, सरकार की जेब में
2: जाएगा
4: और ये सीधा सीधा अमेरिका के दबाव में काम हुआ है, अमेरिका का दबाव पिछले कई महीनों से क्या कई सालों से था।
5: ये जो अमेरिका के दबाव की बात आप यहां पर आलोक शर्मा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस बात को लेकर हम आगे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सैयद जफर इस्लाम, इस बात का स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। ये बात ठीक है कि स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस में इस बात का जिक्र था कि हमें एक रेवेन्यू सोर्स जनरेट करना चाहिए जिसके वजह से यूपीआई का इकोसिस्टम सस्टेनेबल हो, यानी यह सुझाव था। ये 0.4% का आंकड़ा आया कहां से, जरा इसका जवाब दे दीजिएगा। ये कहां से तय हुआ, किस तरीके से तय हुआ? क्योंकि मनीष तिवारी अब ये कह रहे हैं कि अगर उस आंकड़े के साथ किसी रिपोर्ट के आधार पर अगर वो फाइनेंस कमेटी के सामने अगर मामला आता तो उसका कांग्रेस के सांसद विरोध करते। तो ये आंकड़ा कहां से आया वो जरा बता दीजिए प्लीज।
2: देखिए पहली बात तो ये स्टैंडिंग कमेटी की बात, ये कह रहे बाहर में कोई बाइट देता, स्टैंडिंग कमेटी के डिस्कशन के बाद कोई भी बाहर में इस तरह की चर्चा नहीं करता है, सिर्फ बाद में जब पब्लिक होता है, बिल आता है तो उसमें जो आता है सबके सामने आता है, रिपोर्ट आती है। तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि उस वक्त इस बात से, इस बात की चर्चा की गई कि सस्टेनेबिलिटी के लिए हमें प्रावधान बनाने चाहिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी लाने चाहिए और वो उसको वो प्रोविजन करना चाहिए। ये सबकी सहमति थी कि वो सस्टेनेबल मॉडल होना चाहिए। अब सस्टेनेबिलिटी के लिए तो वो कमिटी है, जब चर्चा में आया पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ने इसको ऑथराइज किया कमिटी को, जैसे आज बहुत सारे बोर्ड अप्रूव करते हैं कि भाई चेयरमैन विल डिसाइड, कमिटी विल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डिसाइड और ग्रुप ऑफ बोर्ड ऑफ
5: डायरेक्टर्स।
2: तो
5: ये बात कोई ऐसे भी कह सकता है कि आप घर में डिस्कस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि छत खराब है, छत ठीक करनी है हमें, लेकिन अचानक आपको पता चलेगा कि करोड़ों रुपए खर्च करके छत ठीक किया जा रहा है। भाई कोई उसका कोई डेटा रखना चाहिए ना कमेटी के सामने।
2: ऐसा नहीं है,
5: काम बढ़ाएंगे इस तरीके से करेंगे,
2: नहीं नहीं नहीं,
5: तभी जाकर वो
2: ठोस। नहीं नहीं, एक मिनट, अरे भाई वही तो बता रहा हूं, ये वही चर्चा करने के बाद वो कॉम्पिटेंट कमिटी जो है स्टीयरिंग कमिटी, उसने जो चर्चा की और जो बहुत मिनिमल उसमें था कि बहुत मिनिमल जो चार्जेस होने चाहिए, वो आपके पार्लियामेंट में भी डिस्कशन में आया कि बहुत छोटा सा चार्जेस होगा जिससे कि कंज्यूमर को
4: नहीं,
2: अरे भाई पार्लियामेंट डिस्कशन में आया था आपका, अरे बहुत छोटा चार्जेस क्वांटिफाई नहीं किया, छोटे चार्जेस, मिनिमल चार्जेस, नहीं मिनिमल चार्जेस, और वो चार्जेस जो है सस्टेनेबिलिटी, एक मिनट, एक सस्टेनेबिलिटी के लिए चाहिए। दूसरी बात, आप जो अभी 65% जो ट्रेड है उसका पूरा जो P2P देखिए उसमें कहते हैं जो 2000 के वॉल्यूम से 2000 से ज्यादा के हैं, तो P2P में तो 100% फ्री है, तो एक्चुअल कितना परसेंट पे लग रहा है, तो लगभग 19-20% जो ट्रेड है वॉल्यूम वाइज 19%

0: से उनको हमने बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा है, कंज्यूमर फिर मर्चेंट को भी प्रोटेक्ट करके रखा है, बहुत मिनिमल चार्जेस मर्चेंट के लिए भी, और जो इन्वेस्टर्स है या फिर जो इकोसिस्टम में है, चाहे बैंक हो, चाहे एनपीसीआई हो, चाहे फिनटेक कंपनीज है, उनके भी इन्वेस्टमेंट एंडलेसली नहीं हो, इसलिए कि उनकी भी सीमा होती है एंडलेसली, सर्विस प्रोवाइडर को भी कुछ चार्जेस होने चाहिए ताकि वो सस्टेन करे। आप देखिए एक छोटी सी बात, साहिल जी आपको पता है कि यूपीआई एक प्लेटफॉर्म, जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है, पेमेंट सिस्टम है, वो अब दुनिया में हर जगह एक्सेप्टेबल हो रहा है। अब उसको रोबस्ट बनाने के लिए क्या उसमें डेवलपमेंट के लिए, उसके इनोवेशन के लिए पैसा चाहिए कि नहीं? क्या ये भी कमिटी नहीं लिखा
1: इस बात पे? कोई दो राय नहीं है
0: सरकार से, नहीं
1: जो अंग्रेजी में कहते हैं कि देयर आर नो फ्री लंचेस,
0: सरकार पे
1: कोई भी चीज तो लिखा है कमिटी से नहीं चल सकती, खास करके टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो या बाकी सारी फाइनेंशियल सिस्टम्स हो या फाइनेंशियल जो सर्विसेज दी जाती है वो फ्री लंचेस की तरह नहीं चल सकती। ये बात बिल्कुल साफ है। अगर इस तरीके से बैंक या पेमेंट सिस्टम्स, फाइनेंशियल सिस्टम्स पैसा नहीं ले रही है तो अलग तरीके से उसमें लेगी। आलोक शर्मा जी, ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे, आपको ये अमेरिका का आरोप कहां से लग रहा है? नहीं, आप मुझे इस बात का, उसमें इस बात को भी जिक्र कर दीजिए, ये अमेरिका वाला एंगल कहां से आ रहा है?
2: मैं फिर कहूंगा, क्योंकि अमेरिका का चाहे वो गूगल पे हो और चाहे फोन पे हो, इनका कितना शेयर है आज तक ने कल बड़े विस्तार से बताया अपने एक शो में कि किस तरह से 80-85% जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस का जो तरीका है वो इन दो कंपनियों के माध्यम से हो रहा है, और वहां से दबाव था, इसमें कोई दो राय नहीं।
1: एक छोटा डिटेल मिस कर रहे हैं आप जी। जो यूएस की ट्रेड रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में इस बात का साफ जिक्र किया गया है कि नेशनल पेमेंट जो कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा है कि दिसंबर महीने से 30% का कैप लगेगा। यानी जो अमेरिकन कंपनीज है, गूगल पे या फोन पे, जो 80% ट्रांजेक्शन उनके जरिए होते हैं, उनको वो मंजूर नहीं है, 30% का कैप लग सकता है।
2: साहिल भाई, मैं उस पर आना ही चाह रहा था,
1: कहीं ना कहीं वो एक साथ ही चीजें हो रही
2: है। यूएस की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट 2026 की है वो क्लियरली बताती है। और दूसरी एक चीज और है, जो पेटीएम है, पेटीएम का शेयर पिछले 6 महीने में 1,000 रुपए से बढ़कर 1,800 रुपए हो गया, जबकि बाकी सारे शेयर का बैंड बजा हुआ है। तो इसमें कहीं ना कहीं पेटीएम को ये इन्फॉर्मेशन भी लीक की गई थी कि हम इस तरह से यूपीआई के ऊपर आने वाले समय में 0.4% इस तरह से टैक्स लगाने, चार्ज लगाने जा रहे हैं। आप देखिए पेटीएम का शेयर किस तरह से बढ़ा, ये लुटेरी सरकार है, रेलवे के टिकट से लेकर जो सीनियर से
0: ये तो आप देखिए अनफाउंडेड रिपोर्ट्स
1: पे शेयर बढ़ा तो उसमें दिक्कत क्या है?
0: बेसलेस एलिगेशन, हर चीज में एलिगेशन। अरे कुछ सब्सटेंशिएट करिए ना, सब्सटेंशिएट कीजिए, किस तरह से आप बोल सकते हैं इस तरह के एलिगेशन?
2: पहले से ही इंफॉर्मेशन लीक की गई है,
0: शेयर का प्राइस, वो तो निवेशक निवेश कर रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, ये मार्केट डायनामिक से ज्यादा खरीदा तो बढ़ गया प्राइस।
2: और हमने कहा था पेटीएम का मतलब पे टू मोदी।
0: अरे भाई, किसी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए आपको एक निवेशक चाहिए, और निवेशक अगर खरीदता है तो उसमें हम और आप क्या करेंगे? ये मार्केट डायनामिक्स है, डिमांड सप्लाई है,
1: थोड़ा आगे बढ़ाइए,
0: उसके बेसिस से बढ़ता है।
2: आशुतोष को समझ आ गया है कि भारत
1: जी, आशुतोष आज
0: के गलत तरह के दिक्कत क्या है साहिल जी, कि ये झूठ पे झूठ पे आधारित इनके सारे आर्गुमेंट रहते हैं, फैक्ट से
1: ठीक है, जरा
0: सच्चाई से दूर इनके सारे आर्गुमेंट रहते हैं, ठीक है,
1: जरा बाकी मुझे जरा आशुतोष जी को इस चर्चा में लाना है, दीप्ति जी को भी इस चर्चा में लाना है। नहीं, एक मिनट आलोक जी, आशुतोष जी, जो मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए सरकार की भूमिका इसमें बिल्कुल साफ है। मुझे नहीं पता कि ये 2,000 रुपए की डेडलाइन कहां से सरकार लेकर आई है। ये बात भी ठीक है कि जो बाकी 2,000 रुपए से ऊपर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें 66% ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, लेकिन वो जो 66% ट्रांजैक्शन है उसमें पर्सन टू मर्चेंट जिस पर ये एमडीआर लगेगा वो महज 30% है, और उससे सरकार को आमदनी होगी, जो पेमेंट कंपनी है, क्योंकि सरकार अब फिलहाल उसके लिए पैसा दे रही है। ये सब बातें ठीक है, मैंने जैसे पहले कहा कि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करनी है, सिस्टम सुधारनी है, तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, बैंकिंग सिस्टम में सुधार के लिए बैंक जिस तरीके से चार्जेस करती है वो सारी चीजें होती रहेगी। बात यह नजर आ रही है आशुतोष जी कि कहीं ना कहीं जैसे सरकार बार बार ये कहती रही कि इथेनॉल मिलाने से 20% इथेनॉल मिलाने से आपके इंजन में कोई शिकायत नहीं होगी, ज्यादा खराब नहीं होता है आपका इंजन, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज भी लोगों के मन में इस बात को लेकर संदेह क्यों है कि आखिरकार

0: जो भी पैसे बढ़ेंगे, जो भी चार्ज लगेगा, वो ट्रांसफर किया जाएगा उनके पास। इसका कारण आपको क्या नजर आता है
1: साहिल? देखिए, सबसे पहली बात यह कि जो तमाम जो मर्चेंट एसोसिएशन है, उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया है कि हम इसको ट्रांसफर करेंगे और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इसको। आज के अखबारों में सारी खबरें, कई एसोसिएशन ने स्पष्ट तौर पर कहा है, कुछ एसोसिएशन तो सुप्रीम कोर्ट भी चली गई है। तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। आज आप किसी भी आम आदमी से पूछ लेंगे, वो इसका जवाब आपको दे देगा, मर्चेंट भी जवाब देगा। लेकिन साहिल, मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक जो 48 घंटा 48 आवर्स, उसको ध्यान रखिएगा, 48 आवर्स का एक फॉर्मूला है, ये महज इत्तफाक है, मुझे नहीं मालूम ये 48 आवर्स का क्या है। अमेरिकन सेनेट 7 अगस्त को पास करती है रशियन ऑयल बिल लिंडसे ग्राहम का, 7 अगस्त सेनेट से पास होता है 24 और 11 के वोट से, यानी ओवरवेलमिंगली पास हो जाता है। अगले 48 घंटे के अंदर यानी 10 अगस्त को भारत के पार्लियामेंट में यूपीआई एमडीआर का बिल पास हो जाता है 48 घंटे के अंदर, आप ध्यान देंगे इस बारे में। उसके बाद 17 सितंबर को पीपल्स द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इस बिल को पास करती है और अमेरिका के राष्ट्रपति को कह देती है कि आप 100% तक बिल लगा सकते हैं, आप पेनल्टी लगा सकते हैं। उसके ठीक 48 घंटे पहले 15 सितंबर को भारत में यूपीआई पर एमडीआर लगा दिया जाता है। अब ये महज इत्तफाक है या क्या है, मुझे नहीं मालूम कि 7 अगस्त को सेनेट से पास होता है, 10 अगस्त को इंडिया
0: तो का पार्लियामेंट इसको पास। फिर वो जो स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस में जो डिस्कशन हुआ, स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस में जिस तरीके से ये सजेस्ट किया गया, सुझाव दिया गया कि इस तरीके के रेवेन्यू जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए, वो स्रोत ढूंढने चाहिए सरकार को और उस पर काम होना चाहिए ताकि ये सस्टेनेबल हो सके ये इकोसिस्टम। तब तो कोई किसी अमेरिकन कांग्रेस में इस तरीके का कानून पारित नहीं होने वाला था
1: साहिल। अभी कल के अखबारों में खबर छपी है कि सोर्स हवाले से खबर छपी है कि यूपीआई एमडीआर पर लगाने के लिए पिछले 5 साल पहले सरकार ने फैसला कर लिया था कि एमडीआर लगेगी। ये सोर्स बेस्ड स्टोरी है, एनडीटीवी पे साफ तौर पे छपी है, अगर कोई कहेगा तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखिए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक ट्वीट है, कितने तारीख को, 11 जून 2025 का, एक साल पहले, स्पेकुलेशन एंड क्लेम दैट एनडीआर विल बी चार्ज ऑन यूपीआई ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटली फॉल्स, बेसलेस एंड मिसलीडिंग। सच बेसलेस एंड सेंसेशन क्रिएटिंग स्पेकुलेशन कॉजेज नीडलेस अनसर्टेनिटी, फियर एंड सस्पिशन अमंग आवर सिटीजन। द गवर्नमेंट रिमेंस फुल्ली कमिटेड टू प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट वाया यूपीआई।
0: सर ये तो
1: 5 साल पहले तय हो गया था।
0: सर यूएसटीआर की रिपोर्ट 2018 से आप देखिए आशुतोष जी, यूएसटीआर की रिपोर्ट में हर साल 2018 से हर साल 0% एमडीआर का यूएसटीआर में हमेशा विरोध रहा है। अमेरिका कभी नहीं चाहता था कि 0% एमडीआर हो ताकि उनकी कंपनियों को कंपटीशन यहां पर फेस करना पड़े। ये बात तो साफ पहले दिन से नजर आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद 0% एमडीआर इसलिए रखा गया था ताकि डिजिटल ट्रांजैक्शन के तरफ लोग जाए। और आज आरबीआई के पूर्व गवर्नर है, उन्होंने एक लेख लिखा है और उसमें साफ शब्दों में कहा है कि फॉर्मल इकोनॉमी में लाने के लिए इन डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत अहम साबित हुए, इसका फायदा रहा है, ये भी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं।
1: देखिए, लेख लिखना, सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाना, ये अलग चीज है। लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना, लोगों को भरोसे में लेना और फिर पॉलिसी बनाना अलग चीज है। मैं क्यों ये बात बार बार कह रहा हूं, भारत की तरीके से, भारत की तरीके से ब्राजील के पास पिक्स सिस्टम है। अमेरिका ने ब्राजील को धमकी दी, ब्राजील उसके सामने नहीं झुका, उस पर 25% का टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया। इंडोनेशिया का एनपीजी है, उस पर उन्होंने धमकी दी, वो थोड़ा झुकने को तैयार हो गया है। वियतनाम का एनएपीएस है, जो फिलहाल उसको भी धमकी दी गई है। चाइना का यूनियन पे है, उसको भी धमकी दी गई है। गल्फ कंट्रीज, उनको भी धमकी दी गई है। यानी ये अमेरिका की कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के माध्यम से न केवल उनके क्रेडिट कार्ड की जो कंपनीज है मास्टर एंड वीजा, उनको नुकसान हो रहा है, इसलिए वो कहता है कि भारत में जो ट्रेड बैरियर्स लगे हुए हैं वो अमेरिकन कंपनी के हिसाब से नहीं है। और उसके पहले अगर मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल 2025 को भारत ने गूगल टैक्स हटा लिया था 6% को, जो अमेरिका बार बार कह रहा। उसके बाद आप इंडो यूएस ट्रेड डील होती है, जिसमें यहां से सामान अमेरिका जाएगा तो 18% का टैक्स, वहां से आएगा था 0% का टैक्स। क्या यह महज इत्तफाक है? देयर इज अ सेट पैटर्न। और उसके बाद अमेरिका का सेनेटर ब्लूमेंथल कहता है कि इंडिया एंड चाइना हैज टू क्लीन अप देयर आप सेनेटर सीधे सीधे अमेरिका को धमकी दे
0: ठीक
1: रहा
0: है
1: है।
0: दीप्ति तनेजा, दीप्ति तनेजा पहले आप जवाब दीजिए क्योंकि ये सवाल कुछ आशुतोष यहां पर उठा रहे हैं टाइमिंग को लेकर, लेकिन उसके बाद जफर इस्लाम जी इस बात का भी जवाब चाहिए, ये 30% का कैप कब तक होल्ड करेगा? ये किक इन हो रहा है दिसंबर महीने से, लेकिन कब तक होल्ड कर पाएगा? क्योंकि उस पर भी दबाव आने वाला है, उस पर भी यूएसटीआर की रिपोर्ट में बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले दीप्ति तनेजा, उसके बाद जफर इस्लाम।
2: जी नमस्कार साहिल जी, क्योंकि आशुतोष जी ने टाइमिंग की बात करी तो उन्होंने आपको हवाला दिया कि 7 अगस्त को ये बिल की बात हुई और 10 अगस्त को फिर इसके बारे में हुई चर्चा, तो ये उससे पहले ये भूल गए हैं कि जो उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को पार्लियामेंट में चर्चा होती है, वो ये नहीं बता रहे हैं कि ये कोई चर्चा अचानक से तो हुई नहीं थी। जिस दिन ओम बिरला जी ने पूरा मानसून सेशन का प्लान बताया था तो उसमें ऑलरेडी ये पहले से था, तो ये जो 7 अगस्त और आपको 48 घंटे का खेल खिला रहे थे उससे पहले जो 5 दिन का खेल था वो आशुतोष जी बहुत कन्वीनियंटली मिस कर गए। दूसरा, इन्होंने जो 5 साल पहले की रिपोर्ट का हवाला दिया कि इसके ऊपर 0 MDR को लेकर, लेकिन उस रिपोर्ट में जो लिखा हुआ था कि इवेंचुअली कि इसके ऊपर चार्ज लगेगा, इवेंचुअली वर्ड आशुतोष जी बताना भूल गए। फिर उसके बाद मैं बात कर रही हूँ, अलोक जी ने जो बोला कि वायबल, उन्होंने इस बात का तो जिक्र कर दिया कि उस रिपोर्ट में ये नहीं लिखा हुआ कि वो कह रहे हैं कि वायबल रेवेन्यू मैकेनिज्म सिस्टम की बात है, ये बात वो भूल गए हैं जब उस रिपोर्ट में साहिल जी अभी आपने ही पढ़ी थी कि विदाउट परपेचुअली फंडिंग बाय द गवर्नमेंट, तो अगर गवर्नमेंट फंड नहीं करेगी तो कहां से वो फंडिंग होगी? आप जो बात कर रहे हो कि वायबल रेवेन्यू मैकेनिज्म सिस्टम, तो कौन सा रेवेन्यू वायबल मैकेनिज्म सिस्टम होता है? सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम ही तो होगा, गवर्नमेंट ने तो परपेचुअली उसको नहीं करना है, उसी पे सारे कांग्रेस के लोगों ने साइन किया है। तो ये सारा जो खेल है ये जगलरी ऑफ वर्ड्स की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अमेरिका के दबाव की बात है। क्योंकि मैं अगर बात करूं तो आशुतोष जी की अपनी बात का ही जवाब है कि अगर सो कॉल्ड झुक ही गया था भारत तो फिर कल पारित नहीं होना चाहिए
0: था ना। इस बात का रैशनल, इस बात का रैशनल भी मुझे बता दीजिएगा जफर इस्लाम जी के पास जाने से पहले, कि जो अभी एनसीपीआई का जो हम बता रहे हैं ना दिसंबर महीने से किक इन होगा, 30% का जो कैप लग जाएगा, ये फैसला तो 2020 का है, ये लागू करने के लिए 6 साल का इंतजार क्यों किया गया? ये फैसला अभी का तो है नहीं, ये पहले ही फैसला लिया जा चुका है, ये होल्ड पे क्यों रखा हुआ था? इसके पीछे का कारण हम क्या दे सकते हैं?
2: देखिए साहिल जी, सिर्फ 30% कैप की बात नहीं है, बात तो ये भी हो गई थी कि एमडीआर लगने चाहिए, बट वो जो एक इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट होता है, जैसे कि इंडिपेंडेंस के बाद हम अपने अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए किया गया था, टैरिफ्स हाई रखे हुए थे, हमने इंपोर्ट ड्यूटीज हाई रखी हुई थी, तो उस तरीके से सिस्टम को किक इन करने के लिए, सिस्टम को रोबस्ट बनाने के लिए ये तरीका था। क्योंकि अगर मैं सिर्फ नैरेटिव्स की बात करूं और जो आरोप घटे जा रहे हैं उसकी बात करूं, तो आलोक जी ने तो अभी आपको पेटीएम के उसके ऊपर ही कह दिया, वो तो इनसाइडर ट्रेडिंग का भी हवाला यहां पे दे चुके हैं, वो तो सेबी के
0: क्वेश्चन, नैरेटिव तो इस बात को लेकर भी हो सकता है कि हमारे पास कोई उस तरीके का सस्टेनेबल सिस्टम नहीं था जिस तरीके से गूगल पे या फोन पे बनाया गया था। हमने अपना ऐप बनाया लेकिन उसको जिस तरीके से ताकत देनी चाहिए थी वो लाने में समय लगा, हम उस लेवल प्लेइंग फील्ड पर ही नहीं पहुंच पाए थे जिसके वजह से वो 30% का जो कैप है वो किक इन कर पाए, हम वो लागू कर पाए, ये भी तो उसका कारण हो सकता है अगर नैरेटिव की बात करनी है तो।
2: वही तो इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट है साहिल जी, क्योंकि अभी पहले अपने सिस्टम को रोबस्ट करेंगे तभी तो उसके बाद किक इन करेंगे ना, दूसरे को तभी तो आप रिस्ट्रिक्ट करोगे जब आप पहले अपने सिस्टम को रोबस्ट करोगे। तो ये तो जो आपकी सारी बात है और जो मैं भी बोल रही हूँ, तो आशुतोष जी और आलोक जी की तो सारी बात उससे नेगेट ही हो जाती है। तो इट इज नॉट अबाउट अमेरिकन दबाव, इट इज अबाउट सिस्टम को पहले एक सुचारू तरीके से चलने देना, लोगों को उसकी यूज टू होना, उसको रोबस्ट बनने देना और फिर उसको वायबल
0: बनाना। 394 करोड़ की लागत है, इतने में तो भीम पे ऐप जो है हमारा सैयद जफर इस्लाम जी, ये तो उसको लागत दे सकते थे ना, पेमेंट कंपनी की लागत देख लीजिएगा जरा। जी आशुतोष जी आप बोलिए, उसके बाद जफर इस्लाम।
1: साहिल मेरा सवाल इस बात को लेकर यह है कि सरकार बार बार आत्मनिर्भर भारत की बात करती, स्वदेशी भारत की बात करती है, वोकल फॉर लोकल की बात करती है। जब भीम पे को लाया गया था तब कहा था बड़ा रिवोल्यूशनरी है, लेकिन आज की तारीख में फोन पे 48.9% मार्केट कमांड करती है भाई साहब, गूगल पे 37.7%, टुगेदर दे कंबाइंड 86.6%, यानी वॉलमार्ट और गूगल 86, तो ये भीम पे का क्या हुआ? सरकार ने इसको क्यों नहीं प्रमोट करने दिया? सरकार ने कैसे विदेशी कंपनियों को
0: 0.8% 0.8% ये आंकड़ा
1: तो
0: है बीप
1: भारत
0: पे का,
1: तो
0: जीरो पॉइंट एट
1: सरकार ने
0: परसेंट
1: वॉलमार्ट वॉलमार्ट और गूगल को हमारे हमारा जो यूपीआई सिस्टम है इस पर डोमिनेट और मिंगलिंग क्यों करने दिया? ये क्या ये आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है? पूरी विदेशी कंपनियों का कब्जा हो गया इसके ऊपर। भीम पे कहां है?
0: फिनटेक में जो बाकी सरकारी कंपनी जो भारतीय कंपनियां आई है उसको लेकर भी शायद सरकार का प्लान हो सकता है। लेकिन सैयद जफर इस्लाम जवाब दीजिए इसका, भीम पे को मजबूत बनाते तो आज इतनी बहस करने की जरूरत नहीं होती।
3: देखिए साहिल,
0: कहां वॉलमार्ट रहता और कहां पर गूगल पे रहता?
3: देखिए साहिल जी, जो नहीं साहिल जी, देखिए ऐसा है, इस तरह के प्लेटफॉर्म बनाने में बाकी लोगों की सहायता जो है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ऐसा नहीं कि एक दिन में अनाउंस कर दिया आत्मनिर्भर हो गया। जाहिर है उसको उसके लिए अपने आप को रोबस्ट बनना पड़ता है और अपने आप में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना होना चाहिए, जो नो हाउ है, टेक्नोलॉजी नो हाउ है वो भी होना चाहिए। और साथ साथ जो मार्केट डायनामिक्स है उसको भी ध्यान रखते हुए ये टाइमलाइन जो डिस्कस जो भी निर्धारित किया जाता है, कोई आइसोलेशन में कोई डिसीजन नहीं होता है, उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, बहुत सारे डायनेमिक्स होते हैं और उसको ध्यान रखते हुए जो बेस्ट इंटरेस्ट होता है देश के हित में उसका उसको उसको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपने पूछा कि कब तक ये जो है किक इन करने के बाद कब तक लास्ट करेगा, मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि देखिए जो भारत के हित में होगा, भारत के फायदे के लिए होगा, अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए होगा, अपने यहां के लोगों के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए होगा, वो हम बराबर करते रहेंगे। हम किसी दबाव में, ये जो कांग्रेस पार्टी बार बार इस तरह की बेतुकी बातें और एलिगेशन पे एलिगेशन करती रहती है वो उसमें ना कोई सच्चाई है, लेकिन हम कोई आइसोलेशन में तो ऑपरेट नहीं करते हैं ना,
0: आपकी भाषा जो है ना
3: नहीं ऑपरेट करता है।
0: वो स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस ने जो रेवेन्यू सोर्स को लेकर जो जो लाइन का इस्तेमाल किया था उस तरीके की है। मैं स्पेसिफिक आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा।
3: आपका क्या स्पेसिफिक सवाल है, कब तक लास्ट करेगा? बिल्कुल उस वक्त तक लास्ट करेगा जब तक बराबर लास्ट करेगा और हमारे देश के हितों के लिए लास्ट करता है।
4: साहिल जी
0: जी
3: मैंने कहा था कि ये इट इज ऑलवेज ड्रिवन बाय जो हमारे देश का जो इंटरेस्ट है उसको सेफ गार्ड करने के लिए, तो वो जब तक कोई भी चेंजेस, कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी चेंजेस लाने उसी वक्त लाया जाएगा जिससे हमारे देश को फायदा हो, देश के हितों का कहीं ना कहीं
0: शर्मा जी जवाब देने
3: के लिए
0: हमारी सिस्टम बदली।
3: आज मैं इस वक्त नहीं कह सकता हूँ कि किस तरह
4: शब्द इस्तेमाल किया कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये आइसोलेशन में नहीं हो रहा है।
0: एक एक
4: हम भी यही कह रहे हैं कि सब आइसोलेशन में नहीं हो रहा है।
0: और एक लाइन में जोड़ दूं आलोक शर्मा जी, उसका भी जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी एक सूत्र के तौर पर इस बात को मानती है कि ये इकोसिस्टम आत्मनिर्भर होनी चाहिए, उसका अपना एक रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए, सिर्फ सरकारी पैसे डालकर ये इकोसिस्टम नहीं चलनी चाहिए, इस बात को तो कम से कम मानती है ना?
4: देखिए मुझे लगता है कि 10 साल 12 साल में मोदी सरकार के पास एक ही चीज थी बताने के लिए, यूपीआई। उसको भी आप सोचें कि जनता की जेब के ऊपर कैंची चला के उसको चलाएंगे तो इस सरकार के पास बताने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। फिर थोड़े दिन बाद ही अडानी चलाता हुआ नजर आएगा, आप देख लेना।
3: साहिल जी ये बार बार जो झूठ फैला रहे हैं, जब बार बार कह रहे हैं कि कंज्यूमर को इस पर कोई भार नहीं पड़ने वाला, तो फिर ये बात कैसे उठ रही है? नहीं नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, एलिगेशन लगा रहे हैं भाई, बार बार यही तो कह रहा हूँ कि एंड यूजर कंज्यूमर
4: जो देता हूँ
3: उसका तो कोई भार नहीं लगने वाला है
4: भाई। दो तीन तर्क में देता हूँ,
3: नहीं तो कैसे आप कैसे बोल सकते हैं? जेब काट किसी की जेब नहीं कट रही है, आप राहुल गांधी जी और आप सब लोग झूठ देश को गुमराह कर रहे हैं। पहले तो आप सब बोल रहे हैं, नहीं देश को गुमराह मत कीजिए ना, हकीकत बोलिए ना कि ये
0: समय खत्म हो रहा है, लास्ट मिनट आलोक शर्मा जी 30 सेकंड आपका टाइम खत्म करिए।
4: बताइए कि अगर पार्लियामेंट्री कमेटी में सब कुछ तय हो गया था या डिस्कशन हो गया था तो 10 तारीख को निर्मला सीतारमन ने फ्लोर ऑफ द हाउस क्यों कहा कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा?
0: सैयद जफर
4: सबसे बड़ी जवाब दी जाती है,
0: जवाब दीजिए।
4: उसके बाद दूसरी चीज, एक मिनट
3: देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि जो आम नागरिक, उपभोक्ता या कंज्यूमर या एंड यूजर, उसको कोई भार नहीं पड़ रहा, मैं फिर से कह रहा हूं। लेकिन आप क्यों बार बार एंड यूजर की बात कर रहे हैं या कंज्यूमर की बात कर रहे हैं? कंज्यूमर को बिल्कुल आइसोलेट
0: नहीं,
3: देखिए सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस यूजर है और कंज्यूमर है।
0: कंज्यूमर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस बात का डर है कि कई मर्चेंट्स, कई ट्रेडर्स इस बात को शुरुआत कर सकते हैं। एक मिनट,
4: देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह
0: आज की स्थिति में कई ट्रेडर एसोसिएशन इस बात का जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं, मुंबई में भी हमने कई ट्रेडर्स एसोसिएशन से बात की है, उनका यह कहना है कि ट्रेडर्स जो है, जो दुकानदार है, वो कहेंगे कि दो हजार के ट्रांजैक्शन करिएगा। कई दुकानदार ये भी कहना शुरू कर देंगे कि भाई कैश दे दीजिएगा, हम इसके चक्कर में नहीं फंसना चाहते। लेकिन उसके बावजूद भी इस बात का जोर दिया जा रहा है, इस बात को लेकर कि एक फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी होने के लिए इस तरीके के ट्रांजैक्शंस की जरूरत पड़ेगी और यूपीआई का भी इस्तेमाल उसके लिए किया जाएगा। तो दोनों तरफ से इस बात को लेकर चिंता है और चर्चा भी है, इस पर हम नजर रखेंगे। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेगी, आप देखते रहिए आज तक।

मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।

0: आगे आगे उधर
1: उधर
0: करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints.
9: JK Maxx Paints.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
3: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
6: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
7: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
6: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
8: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते।
9: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
8: विमल बोलो जुबां केसरी।
10: पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ। पंचायत आज तक 18 सितंबर, सिर्फ आज तक पर।

0: उफ, ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायबिटीज जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायबिटीज जूस।
2: यूपीआई से लेन देन पर लगे चार्ज को लेकर विवाद जारी है। एमडीआर लगाए जाने के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने यूपीआई पर लगे एमडीआर को तुरंत वापस लेने की मांग की है।
3: मोदी जी हैज अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ही इज नाइदर लेफ्ट नॉर राइट। ही हैज डिसाइडेड टू लाई डाउन स्ट्रेट एंड प्रोस्ट्रेट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। ही हैज पुट अ टैक्स ऑन एवरी सिंगल इंडियन पर्सन बाय टैक्सिंग यूपीआई एंड गिविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू द यूनाइटेड स्टेट्स। मोदी जी प्लीज स्टॉप लाइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। हैव अ स्पाइन, खड़े हो जाइए और यूपीआई टैक्स को वापस लीजिए।
2: विपक्ष भले ही एमडीआर को यूपीआई टैक्स कह के विरोध कर रहा है, लेकिन सरकारी सूत्रों का दावा है कि मर्चेंट पेमेंट पर यूपीआई ट्रांजैक्शन फीस का फैसला सोच समझ कर लिया गया है और इसे वापस नहीं लिया जाएगा। उधर सरकार की अपनी दलील है कि यूपीआई के वित्तीय सिस्टम को चलाने में भारी भरकम खर्च आता है। इस बीच यूपीआई एमडीआर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 2000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4% फीस को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने इस फ्रेमवर्क पर रोक लगाने की मांग की है। यूपीआई लेन देन में चार्ज लेने का जो फैसला हुआ है, उसमें पर्सन टू पर्सन यानी आपसी लेन देन पर यूपीआई पहले की तरह ही मुफ्त है। रेलवे, इंश्योरेंस, ईंधन जैसी सेवाओं पर 5 रुपए प्रति लेन देन शुल्क ही लगेगा। यूपीआई से हर महीने ऑटो पे भुगतान पहले की तरह मुफ्त रहेंगे। महीने में यूपीआई से 1,00,000 रुपए तक भुगतान पाने वाले दुकानदार दायरे में नहीं आएंगे। 2,000 रुपए से ऊपर के भुगतान पर लगने वाली फीस ग्राहकों पर नहीं डाली जा सकेगी। उधर आरबीआई ने भी यूपीआई पेमेंट में लगने वाले चार्ज का बचाव किया है। आज तक ब्यूरो।
4: विधानसभा का चुनाव घोषणा होने के पहले हमने कह रखा है कि 1,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी यूपी के अंदर उपलब्ध करवाएंगे।
5: जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वादों और घोषणाओं की रफ्तार भी जोर पकड़ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए दिन बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, कभी कैबिनेट में लिए गए फैसलों के जरिए तो कभी सार्वजनिक मंच से। यानी कि यूपी में बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। एक तरफ सरकार की ओर से ऐलान पर ऐलान हो रहा है, तो दूसरी तरफ पार्टी भी आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। संगठन स्तर पर रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूपी में बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और इस हफ्ते उनकी कई मंथन बैठक है। 17 और 18 सितंबर को गोरखपुर में, 19 और 20 सितंबर को अयोध्या में, 21 और 22 सितंबर को प्रयागराज में तावड़े सीधे जमीनी स्तर पर फीडबैक लेने वाले हैं। चर्चा संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों पर होगी। एक तरफ बीजेपी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ आरएसएस भी पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर उतर आया है। संघ और बीजेपी की अहम समन्वय बैठक हुई है। ये बैठक लखनऊ के बंथरा स्थित एक रिजॉर्ट में हुई। बैठक का फोकस अवध कानपुर में तैयारियों पर रहा। बैठक में संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने जमीनी फीडबैक लिया। आपको पता हो कि चुनावी अभियानों और बीजेपी को जीत दिलाने में संघ की हमेशा अहम भूमिका रही है। यूपी चुनाव में भी संघ एड़ी चोटी का जोर लगाने जा रहा है। समन्वय बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें संघ के सह सरकारी वाह अरुण कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे। बीजेपी की चुनावी कामयाबी में उसकी तैयारियों का बड़ा रोल रहा है और इस बार भी यूपी में वो तैयारियों को अभी से देख रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
6: हम 2029 के पहले यूसीसी को इंट्रोड्यूस करेंगे।
7: यूनिफॉर्म सिविल कोड, भाड़ में जाए तुम्हारा यूनिफॉर्म।
2: अमित शाह ने एनडीए बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की डेडलाइन तय की तो देश में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस से लेकर ओवैसी की एआईएमआईएम तक सब ने एक सुर में समान नागरिक संहिता का विरोध किया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते कह दिया कि यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ नया हथियार बनाने की तैयारी हो रही है।
7: यह कानून इसलिए बनाया गया ताकि जो लोग हिंदू नहीं है उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू डिवोर्स एक्ट और इन तमाम ऐसे कानून का निफाद उन गैर हिंदू कौमों पर किया जाए। हम इसीलिए इस कानून की मुखालिफत करते हैं क्योंकि यह कानून भारत के आईन के खिलाफ है। और मुझे ये कहना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में करीब 21% के करीब आदिवासी हैं, उनको उससे मुस्तस्ना कर दिया गया, एग्जम किया गया और मध्य प्रदेश के 9% मुसलमानों पर इस तरह के काले कानून को नाफिद किया गया है।
2: वहीं महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि कमेटी की रिपोर्ट आते ही राज्य में यूसीसी की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि जो लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वो असल में संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि ये कानून देश की विविधता को खत्म करने की एक कोशिश है। फिलहाल यूसीसी की मौजूदा स्थिति यह है कि ये उत्तराखंड और गोवा में अभी लागू है, मध्य प्रदेश, गुजरात और असम विधानसभा से पास हो गया है लेकिन अभी तक लागू नहीं है। अमित शाह ने कह दिया है कि एनडीए और बीजेपी शासित 21 राज्यों में साल 2029 तक यूसीसी हर हाल में लागू हो जाएगा। यूसीसी को लेकर छिड़ी ये बहस अब सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहने वाली, आने वाले दिनों में ये मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक एक बड़े सियासी संग्राम का रूप ले सकता है।
8: संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है यूसीसी से, बताओ मुझे, कि निकाह नहीं होगा क्या हमारा? निकाह तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या? फेरे ही तो होंगे, क्या तमाशा बना रखा है? कुछ भी नहीं है।
9: छात्रों के मूवमेंट से डरी हुई सरकार के पास अब इसी तरह का कार्ड खेलने के अलावा और कोई चारा नहीं। और चुनाव में गिराने के लिए क्या है, नौकरियां वो दे नहीं पाए, स्टूडेंट्स जो है वो परेशान है, प्रोटेस्ट कर रहा है पूरे देश में, जेंजी से लेके जेन अल्फा तक। तो सरकार के पास मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यही सब है राज्यों में। ये भारत जो है वो विविधताओं का देश है, भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना। आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहाँ चली जाएगी? तो गृह मंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों सबसे मिलकर के भारत बनता है। आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं, एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: तो यूपीआई में एमडीआर को लेकर अब सियासत भी जोरदार चल रही है, आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, लेकिन किसी भी अफवाहों पर विश्वास मत रखिएगा क्योंकि 96% यूजर्स पर किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लगने वाला और बाकी जो चार्ज लगेगा उस पर भी कैप लगाया जा चुका है। तो इस पर हम नजर बनाए रखेंगे। दंगल में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह बोल के साथ देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में 25 साल के नेतृत्व का जश्न। एक महीने तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान। विदेशों से भी बधाई संदेश का तांता। फीसदी टैरिफ वाले अमेरिकी कानून पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध। अलग अलग स्रोतों से जारी रहेगी ऊर्जा खरीद। यूपी में हाईवे को लेकर अखिलेश ने सीएम योगी को घेरा। कहा बीजेपी सरकार में निर्माण बाद में पूरा होता है, वो पहले गिरने लगता है। बोले वो हर लेन देन पर लेंगे टैक्स। भारतीय यूथ कांग्रेस ने शुरू किया मेरी डिग्री का क्या अभियान। एक साल में सभी सरकारी नौकरियों को भरने का सरकार को अल्टीमेटम। प्रधानमंत्री आवास को घेरने की भी चेतावनी। और टाटा सन्स के चेयरमैन बने रहेंगे एन चंद्रशेखरन। बोर्ड सदस्यों ने पक्ष में किया वोट। तीसरी बार 5 साल के लिए बढ़ा कार्यकाल।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मोदी जी का जीवन ऐसा जीवन है जो भारत के हर बालक को और हर युवा को इसका परिचय कराना जरूरी है कि आने वाले दिनों में इससे सैकड़ों नरेंद्र मोदी निकले।

भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की बॉटम 5 इकोनॉमी में नहीं बल्कि दुनिया की टॉप 4 इकोनॉमी में भारत दुनिया के अंदर मजबूती के साथ आगे खड़ा है।

0: वैसे जन्मदिन तो मनाता नहीं हूँ, लेकिन आज आपने मेरे जन्मदिन को चीट कर दिया।
1: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 76वां जन्मदिन है, वो आज बीजेपी के लिए बड़े राजनीतिक संदेश पहुंचाने का दिन बनकर जरूर आया है। पार्टी ने आज से एक महीने तक चलने वाले बीजेपी के सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी है। दरअसल आज हम पटना में मौजूद है। पटना में बहुत बड़ा कॉन्क्लेव आज तक का होने वाला है कल, और सभी को उस पंचायत का इंतजार रहेगा। और इसीलिए पटना के स्टूडियो से आप हमारा ये हल्ला बोल कार्यक्रम आज देख रहे हैं। लेकिन जिस सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत की बात हम कर रहे हैं, इसका पहला और बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी की जन्मभूमि वडनगर और कर्मभूमि वाराणसी के को कनेक्ट करने के संदेश के साथ शुरू हुआ। आज गृहमंत्री अमित शाह वडनगर में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मैं जन्मभूमि में उनके आया हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री के संघर्षों की बात की, उन्होंने वहां से लेकर वाराणसी तक पूरा संदेश जाने की बात की। 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी के सीएम से पद पर जारी सफर के अब 25 साल पूरे हो रहे हैं, और इसी बहाने पार्टी अपने एनडीए सहयोगियों के साथ मिलकर जनसंपर्क का बड़ा कार्यक्रम शुरू कर चुकी है। सवाल यह है कि मोदी के आसरे बीजेपी का यह राजनीतिक मिशन विपक्ष के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? आशीर्वाद के दिए से क्या बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा? मोदी एट 76, पहले यह रिपोर्ट देखिए।

0: जन्म भूमि से कर्म भूमि तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके को बीजेपी एनडीए के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने इसे भारत संपर्क का अभियान बना डाला। पहले वाराणसी में काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन किया गया, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मौजूद थे। उधर वडनगर के विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मौजूद रही। वाराणसी से वडनगर और वडनगर से वाराणसी तक 300 बाइकर्स की यात्रा निकली है। 7 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी के सीएम से पीएम पद पर जारी सफर के 25 साल पूरे हो रहे हैं। ये 600 बाइकर्स देश के 7 राज्यों से गुजरकर मोदी के 25 साल के कामों का संदेश गांव-गांव पहुंचाने वाले हैं।
1: जनता का सामूहिक आत्मविश्वास खड़ा करना ये किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी कसौटी है, और वो भी तब जब जनता गहरी निराशा में डूबी हो। उन्होंने गहरी निराशा के गर्त से जनता को बाहर निकालकर नरेंद्र मोदी जी ने जनता को आत्मविश्वास से लवरेज कर 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत की यात्रा के साथ जोड़ने का काम किया।
2: जहां तक जिंदगी के बड़े होने का सवाल है मेरे साथियों, तो हम मोदी जी ने अपने व्यक्तित्व, नेतृत्व और कर्तृत्व से इसे हासिल कर ही लिया है। और आज जिस यात्रा की शुरुआत हो रही है, यह सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यह यात्रा नहीं है, बल्कि मोदी जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि से यह जोड़ने की यात्रा है। जिस तरह त्रिवेणी में 3 धाराएं मिलकर, साथियों आप जानते हैं, एक हो जाती हैं, उसी तरह बड़नगर के संस्कार, काशी का आशीर्वाद और मोदी जी का सेवा का संकल्प, यह एक धारा बन गया है। और यही धारा भारत माता की सेवा के संकल्प को लगातार आगे बढ़ा रही है।
0: 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक बीजेपी सेवा संकल्प अभियान चला रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन इंदौर में रोड शो पर निकले। इंदौर में नितिन नवीन ने अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत रक्तदान से की। इसके अलावा बीजेपी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, बड़े नेता, कार्यकर्ता पूरे देश में अलग अलग तरीके से सेवा संकल्प अभियान में जुटे रहे।
3: 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने शपथ ली थी, और तब से बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे, चरेवेती चरेवेती के इस मंत्र के साथ उन्होंने अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 76वें जन्म दिवस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत बड़े नेताओं, सेलिब्रिटीज और आम लोगों के शुभकामना संदेश आ रहे हैं। पीएम मोदी को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुभकामना दी, और जो तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है वो ब्रिक्स समिट के दौरान भारत मंडपम में बनाए गए रामनाथ स्वामी मंदिर के बैकड्रॉप की है। उधर खुद प्रधानमंत्री मोदी सेमिकॉन इंडिया 2026 इवेंट समेत कुछ सरकारी कार्यक्रमों से जुड़े।
4: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
5: कहने से पहले सुन लेता है।
0: प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्म दिवस पर बीजेपी देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम भी मना रही है। कुल मिलाकर पीएम का जन्मदिन उत्सव मनाने और राजनीतिक संदेश का मौका बनकर आया है। आज तक ब्यूरो और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। अनुराग जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर बना रहे हैं। पहले तो चाहेंगे हमारे दर्शकों को जरा इसके बारे में बताएं कि किस मकसद से

0: कार्यक्रम को किया जा रहा है, और उसी के साथ आपका अनुभव प्रधानमंत्री के साथ कुछ ऐसा, या जो आपने उनके पूरे सफर में सबसे बड़ी चीज जो देखी है या हाई पॉइंट देखा है या सबसे बड़ा अचीवमेंट आप बताना चाहें।
1: अंजना जी, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके 76वें जन्मदिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। कोई व्यक्ति इतना लोकप्रिय कैसे हो सकता है और निरंतर सत्ता में कैसे रह सकता है, कई प्रश्न उठते हैं। मुझे लगता है उसके कई कारण हैं कि जमीन से जुड़े रहना, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री होते हुए भी जब दिन रात देश के गरीबों के बारे में सोचते हैं, देश के कल्याण के बारे में सोचते हैं और राष्ट्रहित सर्वोपरि जिनके लिए है, वो सदा लोगों के दिलों में बसेंगे। ज्यादातर लोग तो उनके मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के दौर की बात करते हैं, ज्यादातर प्रधानमंत्री बनने के बाद की ही बात करते हैं। कोई कहेगा कि उनको सबसे ज्यादा दुनिया के देशों के सर्वोच्च राष्ट्र सम्मान मिले। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं अंजना जी, मेरी उनसे मुलाकात 1995-96 में पहली बार हुई। वो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे, उस समय तो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, लेकिन उस समय भी वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को बार बार यही कहते थे, भाई आप राजनीति में आए हैं तो देश के कल्याण के लिए आए हैं, पार्टी को आगे बढ़ाना है लेकिन कुल मिला के सत्ता में आके देश के लिए काम करना है। उस समय भी उतने ही अनुशासित थे, सुबह पानी कब चाहिए, अखबार कब चाहिए, चाय कब चाहिए, प्रोग्राम कितने समय पे शुरू हो, लोगों को कैसे ज्यादा सुना जाए, लोगों की सुनकर उन पे काम कैसे किया जाए। और जब मैं उनके साथ वित्त राज्य मंत्री बना और कोविड का दौर आया, तो उस समय भी उनका पहला निर्णय यह था कि देश के गरीबों को अनाज सबसे पहले मिलना चाहिए, भूखा कोई ना मरे। दूसरा यह था कि देश का उद्योग बंद नहीं होना चाहिए, बैंकों से उनको पैसा कैसे ज्यादा मिले उसकी गारंटी मोदी की सरकार कैसे दे। 34 लाख करोड़ का पैकेज बनाकर उद्योग भी बंद नहीं होने दिए और बैंकों को भी बचाया, और ये कहते थे कि दुनिया भर का कोई भी प्रेशर आए हमें धैर्य नहीं खोना है, हमें कोविड के बाद भी देश को आगे बढ़ाना है। तीसरा उन्होंने कहा कौन कौन से ऐसे सेक्टर है जहां पे भारत निर्भर है दुनिया पर, चाहे वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, हम रक्षा उपकरण इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद शुरू करेंगे, कोल गैसिफिकेशन से लेके हम क्रिटिकल मिनरल्स की ओर कैसे आगे जाएं उसकी ओर नीतियां लेकर आए, स्पेस सेक्टर को कैसे खोला जाए ताकि हम स्पेस के क्षेत्र में एक नई इंडस्ट्री को खड़ा कर पाए और भारत की जरूरतों को पूरा कर पाए। अंजना जी, इस व्यक्ति की ये खासियत है कि जहां एक और गरीब के कल्याण की बात करेगा तो दूसरी ओर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, स्पेस सेक्टर की बात करेंगे। अगर वो रैली करके भी आए तो वापस आकर कोई ना कोई बड़ी योजना पे काम कर रहे होंगे। जो व्यक्ति 24 घंटे देश के लिए समर्पित हो, जो अपनी मां की मृत्यु के बाद भी उनको अग्नि देने के 2 घंटे के अंदर वापस बंगाल के लिए काम शुरू कर दे, देश के लिए काम शुरू कर दे, तो इतना समर्पण भाव जिसके लिए होगा, उनके लिए लोग अपने घरों में दिए क्यों नहीं जलाएंगे, उनकी दीर्घायु की कामना क्यों नहीं करेंगे, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि वो व्यक्ति ने पिछले कई सालों से दिवाली अपने घर पर अपने परिवारजनों के साथ नहीं मनाई, बॉर्डर पर देश के सैनिकों के साथ मनाई है। आपदा के समय उन्होंने अवसर ढूंढे हैं देश के लिए, और जहां देश में विपत्तियां आई, आपदा आई, वहां पर सबसे आगे मदद करने के लिए गए, चाहे वो गुजरात में भूकंप आया हो या देश में कोविड आया हो, मोदी जी ने देश के लोगों के साथ सदा खड़े रहने का काम किया है।
0: उनके पूरे राजनीतिक सफर में अगर अनुराग जी आप देखें तो कई बार बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो गुजरात के या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर हाल के दिनों में हमने देखा आंदोलन हुए, कई लोगों ने उनके खिलाफ बोला, आवाजें उनके खिलाफ उठाई, विपक्ष उनको लगातार घेरता रहा, चाहे एज सीएम एज पीएम। इस पूरे दौर में आपका सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन उनको लेकर क्या रहा और आपको क्या लगता है क्या है उनका सबसे बड़ा, उनकी यूएसपी क्या है या फिर क्या ऐसे चैलेंजेस है जो आपको लगता है आए और उन्होंने उसका मुकाबला किया?
1: पहला मुझे लगता है कि वो धैर्य नहीं खोते। ज्यादातर देखा जाए अगर आपके चैनल पे भी कोई डिबेट करता है, चार लोग उल्टा सीधा बोलते तो आपको भी लगता है मैं कहां इसको कैसे चुप कराऊं, यानी कि आपका जो अपना विषय आप उससे भटक जाती हैं। मोदी भटकते नहीं है, मोदी जी को जो करना है वही करेंगे। दूसरा, उसको जो उनके खिलाफ गलत भी बोले, आपने तो कहा उनकी आलोचना, आलोचना नहीं, उनका अपमान भी

0: किया गया, गाली तक निकाली गई, मौत का सौदागर, हत्यारा और गंदी नाली का कीड़ा, न जाने क्या क्या बोल दिया गया उनके लिए। उन्होंने उसको अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, अपने पक्ष में लोगों को खड़ा कर दिया। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तीसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स। अभी आंदोलन भी हुआ तो उसके समय कैसे युवाओं से बात करनी है, रात के 12 बजे खुद वीडियो, सेल्फी वीडियो बना के पोस्ट करते हैं, और ऐसा लगा कि जैसे युवा इंतजार कर रहे थे कि मोदी कुछ बोले और हम सुने। 400 मिलियन व्यूज, 40 करोड़ व्यूज आ जाए, ये अपने आप में अभूतपूर्व था। तो इनकी एक विशेषता है कि दूसरा जो कहता है एजेंडा, उसको तय नहीं करना। जैसे आजकल आप लोग चर्चा करते हैं कि अगर टैरिफ वॉर में भारत का क्या होगा, ये तो हम पिछले 2 साल से सुन ही रहे हैं। क्या मोदी जी ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को नहीं देखा? बिल्कुल देखा। क्या फिशरमैन के लिए जो बाजार बंद कर दिए गए, तो क्या क्या हमारे फिशरमैन का नुकसान हुआ? नहीं, उनके नए सेक्टर को खोल दिया गया। तो मैं यही कहना चाहता हूं, भारत की आज सबसे बड़ी ताकत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे व्यक्ति को भारत के लोगों ने तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना। इसीलिए 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए, इसीलिए हमारी आज ग्रोथ रेट 7.8% दुनिया की सबसे तेजी से साथ बढ़ने वाले देश है, इसीलिए हमारे एयरपोर्ट 74 से बढ़कर 160 हो गए, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ पक्के मकान मिल गए, 3 करोड़ और मिलने वाले हैं। इसीलिए हर सेक्टर को अगर आप देखेंगे, मैं गिनाना नहीं चाहता योजनाओं को, वहां पर हमने वो किया जो शायद 60 साल में नहीं हो पाया था। अंजना जी, ये तभी होता है जब आप पॉलिसी मेकिंग में, पहले तो पॉलिसी पे बहुत ध्यान देते हैं कि क्या कार्यक्रम लाना है, फिर उसके क्रियान्वयन पर, उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पे काम करते हैं। ये मोदी की खासियत है, वो इतना टाइम इस पे डिवोट करते हैं योजना लाने से पहले और योजना को लागू करने पर, इसलिए उनकी योजनाएं सफल हो रही हैं, इसलिए लोगों को लाभ मिल पा रहा है।
1: कुछ ऐसा निजी अनुभव जो अनुराग जी आप शेयर करना चाहें आज के दिन?
0: निजी अनुभव इतना कि अभी मेरे पिताजी थोड़ा चेकअप कराने के लिए किसी अस्पताल में गए थे, तो उनको पता चल गया होगा। तो देश के प्रधानमंत्री के पास तो दुनिया भर के लोगों का नहीं ध्यान रह सकता, लेकिन उन्होंने जैसे मैं मिलने गया तो उन्होंने कहा, क्या धूमल जी पीछे बीमार थे अस्पताल के, तुमने बताया नहीं? मैंने कहा, नहीं सर, वो चेकअप करवाने गए थे। तो उन्होंने हालचाल उनका पहले पूछा, यानी कि आप उनसे बात कुछ और करने गए, किसी और विषय पे आपने चर्चा करनी है, लेकिन वो आपके व्यक्तिगत यानी कि आपके परिवार के लोगों के बारे में पूछते हैं, आपका बेटा क्या कर रहा है, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और दूसरी, वो अपने आप को नहीं थोपते, वो आपको सुनते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए शायद लोगों के दिलों में बसे हुए हैं।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुराग ठाकुर जी आज तक पर हमारे पास आने के लिए और
0: आपका
1: हमारे
0: आभार।
1: साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज देश भर में अलग अलग, जी धन्यवाद। आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर हो रहा है। हमारे कई सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे जो रिपोर्टर्स इस वक्त जुड़ रहे हैं उसमें रवीश पाल हमारे संवाददाता उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ ब्रजेश दोषी अहमदाबाद से जुड़ गए हैं और अतुल तिवारी भी अहमदाबाद से ही हमारे साथ जुड़ गए हैं। अन्य मेहमान भी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराएं, लेकिन इससे पहले कि अपने रिपोर्टर्स के पास चलें, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री, इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, आपसे भी पहला प्रश्न यही होगा कि आप ये जो आशीर्वाद का दिया आज पूरे देश में कार्यक्रम बीजेपी मना रही है, क्या मकसद है इसका और किस तरह से समझाएंगे और इस आज के दिन का महत्व किस तरह से देख रही है बीजेपी?
2: देखिए अंजना जी, अगर नरेंद्र मोदी जी 25 साल से एक कर्मयोगी के रूप में निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, और इन 25 वर्षों से जनता के आशीर्वाद से काम कर रहे हैं, और चाहे गुजरात को विकास के मुकाम पे बढ़ाया और आज भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाया, आर्थिक, सामरिक, हर क्षेत्रों में, डिजिटल, तो अगर किसी व्यक्ति ने इतना काम किया है बिना एक दिन छुट्टी लिए, तो 25 साल पूरे हुए हैं तो एक आशीर्वाद का दिया बनता है कि नहीं बनता है? यही तो कार्यक्रम है। मैं भी पटना में आया हूं, अभी जाऊंगा उस आशीर्वाद दिया के कार्यक्रम में। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि जरा आप 13 के स्थिति को याद करिए, आप तो बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या थी देश की स्थिति? फ्रेजाइल 5, कब भारत डूबेगा पता नहीं है, भ्रष्टाचार, अनिश्चितता, पॉलिसी पैरालिसिस, वहां से निकल करके आज भारत कहां से कहां पहुंच गया? क्या वो डिजिटल भारत है, या वो जनधन अकाउंट है, या वो जैम ट्रिनिटी है, या वो सड़कों को का बनना है, या हर गांव में बिजली है, या सुरक्षा में आतंकवादियों की पिटाई है, या फिर 3 तलाक है, या फिर राम मंदिर का बनना है, या फिर आर्टिकल 370 समाप्त होना है, और भारत की आर्थिक व्यवस्था तमाम चुनौतियों के बाद 7.8% है, भारत दुनिया के मतलब बिगेस्ट इकोनॉमी बन गया है। और अभी जो ब्रिक्स हुआ तो आपने देखा क्या कहते थे लोग, जो खान मार्केट गैंग, कि मोदी जी फॉरेन पॉलिसी क्या जानते हैं। आज उनकी इतनी शानदार फॉरेन पॉलिसी मैनेजमेंट है कि पूरी दुनिया भारत का सत्कार कर रही है। तो किसी ने निस्वार्थ भाव से काम किया और ईमानदारी से किया है, तो आज के दिन उनको आशीर्वाद मिल रहा है और मिलना चाहिए भी।
1: अच्छा, अब ये बताइए कि उनका राजनीतिक जीवन आपने पूरा देखा है और एक नहीं कई दशकों से देखा है, सीएम थे तब भी और जब अटल जी की सरकार थी तब भी आपने मंत्री थे, आपने काम किया, मोदी सरकार में आप मंत्री थे, उनके जीवन, उनके राजनीतिक जीवन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जो 25 साल का उनका सफर रहा है?
2: समर्पण, संघर्ष और सेवा, बस 3 शब्द। अगर वो हिमालय में गए थे केदारनाथ में तो भक्ति का समर्पण था। शायद उनको निर्देश मिला कि तुम नीचे जाओ, तुम्हें देश के लिए काम करना है, और उस यात्रा में काफी संघर्ष भी करना पड़ा उनको, आपको मालूम है, संघ के प्रचारक बने, बाकी काम किया, लेकिन वहां से चलते हुए वो पहले योग्य मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने। और आज अंजना जी आपने पूछा है तो मैं बता दूं, मैं कई मामलों में उनका वकील भी रहा हूं। दिल्ली में काफी ताकतें थी ना कांग्रेस पार्टी की और वामपंथियों की कि मोदी जी को फंसाओ किसी प्रकार से। आज मैं पूरी जिम्मेवारी से आपसे कहना चाहूंगा, और पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस तो सारी सीमा पार कर गए थे कि मोदी जी को फंसाना है। लेकिन देखिए, जब पूरा जांच हुई, एसआईटी बनी, आप इस बात को याद करिए कि मोदी जी को 12 घंटे पूछताछ किया गया एक मुख्यमंत्री को, फिर भी उन्होंने सब कुछ सहा, क्योंकि उनको विश्वास था अपने अंदर। और आप पटना में आई है ना, तो जरा आपको याद कराऊं, 2013 में जो पटना में हुंकार रैली थी, आपको याद है कि नहीं याद है? 8-10 लाख लोग थे, बम चल रहे थे यहां पर, हम लोग थे मंच पर, लगा कि कब जाएंगे, नहीं है। और वहां व्यक्ति आता है, उनको रोकने की पूरी कोशिश थी, और पूरे बोल्डली कहते हैं शांति से जाओगे, कोई संघर्ष नहीं करोगे, हमें हिंदू मुसलमान नहीं लड़ना है, हमें रोटी के लिए लड़ना है। मैं, हम लोग की आंख में आंसू आ गए थे अंजना, वो जो विजन था उनका, इतना तनाव। हाँ, और आज मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं, अनुमति दीजिए, आप दे रही हैं क्या? जब मैं देश का आईटी मंत्री बना
1: जी,
2: तो घूम रहा था अपने विभाग में,
1: हाँ,
2: तो उन्होंने कहा कि सर आपको एक चीज दिखानी है। वो बहुत मुझे सेंसिटिव रूम में ले गए जहां बहुत सेंसिटिव चीजें रहती हैं। तो जो आतंकवादी मारा गया था पटना स्टेशन पर बम को अपने बेल्ट में बांधते समय, आपको मालूम ही है वो कहानी, तो उससे कुछ उसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स मिले थे, वो वहां रखा हुआ था। उन्होंने कहा आपको हम दिखाना चाहते हैं, आइए देखिए, मोदी जी की तस्वीर, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, और उसके बाद स्वर्गीय सुशील मोदी और रविशंकर की तस्वीर, और बाकी बीजेपी के नेताओं की, ये तक फॉलो किया गया था, तुमको यहां यहां टारगेट करना है। लेकिन जाको राके साइया मार सके न कोए। तो आज 25 साल हुए हैं, तो मुझे लगा कि इन विषयों को आज रिकाउंट करूं क्योंकि आप ही पटना में और मैं पटना का सांसद हूं, तो हुंकार रैली में जिस तरह से मोदी जी ने अकेले संभाला 8-10 लाख क्राउड को, बम चल रहा है, लोग डरे हुए हैं, कहा डरो नहीं, और तब इतिहास बनता है। तो जब ऐसे प्रभावी नेता है ना, तो गर्व होता है उन पर, बहुत गर्व होता है
1: सरकार चलाने के।

0: सरकार चलाने के तौर पर जब आप नरेंद्र मोदी को पूरा देश आंकता है, दुनिया आंकती है, आपकी नजर में क्या है उनकी उपलब्धि एज लीडर ऑफ द गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री के तौर पर?
1: देखिए, संघ में एक गीत हम लोग गाते हैं और संघ के प्रचारक रहे हैं, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो एकमात्र तेरा वैभव अमर रहे मां, भारत दुनिया की बड़ी ताकत बने, आर्थिक ताकत, सामरिक ताकत, टेक्नोलॉजिकल ताकत। और जिस तरह से अंधन जी, आज को फिर आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, डिजिटल इंडिया इतना सफल होगा, गरीब आदमी डिजिटल पेमेंट करेगा, मोबाइल से गूगलिंग करेगा, सर्फिंग करेगा, कभी सोचा था क्या आपने? आज देखिए तो सच्चाई होगा कि नहीं। और आज के दिन मैं स्मरण कराना चाहता हूं, जब कोरोना आया था तो मोदी जी ने कहा हम भारत का वैक्सीन बनाएंगे और सब जगह पहुंचाएंगे। उस समय कुछ नहीं था ना, ये पूरे जो ऑक्सीजन वगैरह, याद करिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलती थी कि नहीं चलती थी। और उस समय मोदी जी ने हम लोग को निर्देश दिया, मैं उस समय संचार आईटी मंत्री था और पीएमओ के लोग थे और बाकी लोग थे, कि इस बात की चिंता करो कि भारत के हर नागरिक के मोबाइल फोन पर ये संदेश हो, आपको कोरोना का पहला टीका कब लगेगा, दूसरा कब लगेगा और बूस्टर डोज कब लगेगा। बड़ा काम था, उनकी सोच थी, हुआ, देखा आपने, याद करिए, शायद आपके पास भी संदेश आया होगा। ये मोदी जी की सोच होती है, जैसे कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स, ये करके दिखाओ और दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। इसलिए मैं एक बहुत चुनौती भरे समय की बात कर रहा हूं। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस तरह से हमला किया गया पहलगाम में, आपने मोदी जी को भी बिजली देखा क्या? शांत रहे ना, इसे बिहार में कहा कि इसका जबरदस्त बदला लिया जाएगा और करके दिखा दिया ना। आज हमारे लिए सबसे गर्व की बात होती है अंजना जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाल चौक, रविशंकर प्रसाद जी, जी जी हाँ, लाल चौक पर तिरंगा फहराना, और ये वाकई सबके लिए गर्व की बात है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किरेन रिजिजू जी, अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम इस वक्त आयोजित कर रही है, सबसे पहले तो चाहते हैं उसके बारे में आप बताएं, और प्रधानमंत्री के आज के जन्मदिन को बीजेपी किस तरह से देख रही है और एक बड़ा संदेश देने की जो कोशिश है वो संदेश क्या है? चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन रविशंकर जी मुझे लगता है कि हमारे साथ बने हुए हैं और वो हमें बता रहे थे कि उनकी क्या उपलब्धियां हैं और क्या कुछ उन्होंने हासिल किया है, वो नजर, उनकी नजर में प्रधानमंत्री का क्या है। देखिए, बहुत सारी लेकिन आलोचना का भी सामना करना पड़ा है, अगर आप देखें तो बहुत सारे जो करीब से जब आप किसी की जिंदगी को देखते हैं तो ऊपर नीचे बहुत कुछ होता है। जो अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपकी नजर में हाईएस्ट पॉइंट, जब आपने उनको बहुत प्रसन्न देखा हो या बहुत खुश देखा हो, हाईएस्ट पॉइंट क्या रहा?
1: देखिए, पहले आपको मैं एक बात बता दूं, मैंने उनके अचीवमेंट की बात की ना, तो वैभव, वैभव मतलब भारत के विकास की बात मैंने की थी। उनको मालूम है कि इस देश को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना है तो एक करके दिखाएंगे हम। जो आपने बात कही ना, तो मुझे एक ही दृश्य याद आ रहा है अंजना जी, तेरा को याद करिए, शायद आप भी रही होंगी, रामलीला ग्राउंड में भाजपा के राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, जहां मोदी जी नेता के रूप में प्रस्तावित होने के बाद आए थे, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम था। वहां उन्होंने क्या कहा था, अगर मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं एक ऐसा भारत बनाने की कोशिश करूंगा जहां आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी। अभी हम लोग मंच पर थे, बिल्कुल क्या है, आईटी इंडिया टुडे प्लस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू आईटी इंडिया टुमारो। अब एक सूत्र में उन्होंने अपने भविष्य की पूरी योजना बता दी, और आज देखिए

0: ये पिछले 14 से लेकर के 26 में आज भारत दुनिया की एक डिजिटल ताकत बनकर उभरा है कि नहीं, चाहे वो टिकटिंग हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोर्ट में सुनवाई हो, चाहे वो आपके स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो डिजिटल पेमेंट हो, चाहे वो जनधन आधार मोबाइल पर उनके अकाउंट में हजार लाखों करोड़ भेजने की बात हो बिचौलियों से अलग, यह है गुड गवर्नेंस।
1: जी देखिए, इसी के साथ साथ एक और चर्चा इस बात को लेकर होती है कि भाई आलोचना भी विपक्ष उनका करा है, जिस पर मैं सबसे सवाल पूछ रही हूं कि विपक्ष में आलोचना, चाहे वो सीएम थे तब, पीएम है तब, आंदोलन राजधानी दिल्ली में हुआ जिसमें प्रधानमंत्री पर सीधा अटैक भी हुआ, उसे आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, छात्रों ने कुछ कहा तो उनकी चिंता सुनना है, और मोदी ने कहा रात में ही कि मैं सुनूंगा, और आपने देखा कितने प्रोएक्टिव निर्णय लिए गए। आज उनको रिकाउंट करने की जरूरत नहीं, चाहे एग्जाम के सुधार की बात हो, पेपर लीक की बात हो, ये सब उन्होंने किया, और उन्होंने बच्चों से डायरेक्टली इंटरेक्ट भी किया, और जो कुछ बच्चे दिग्भ्रमित होकर या दिग्भ्रमित करवाकर उनके खिलाफ अपशब्द बोले, तो बाद में उन्होंने माफी भी मांगा। मोदी ने कहा जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं, एक ये सोच है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज तक पर, और इस कार्यक्रम के बारे में और जो बीजेपी संदेश देना चाह रही है उस पर जानकारी देने के लिए। अब अपने सहयोगियों के पास लिए चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त रवीश पाल जुड़ गए हैं उज्जैन से। रवीश, सबसे पहले आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। इस वक्त उज्जैन की भी तस्वीरें हम दर्शकों को अपने दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, क्या वहां पर हो रहा है वो आप हमें बताएं, उसके बाद हम चलेंगे ब्रजेश दोषी अहमदाबाद से, अतुल तिवारी भी उनके पास है, और अनुपम हमारे साथ कोलकाता से भी जुड़ रहे हैं, पटना की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले रवीश आपसे शुरुआत कर
2: बिल्कुल, और ये जो जगह है जिस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये अब से कुछ देर बाद करीब 25 लाख दियों की रोशनी से जगमग होने वाला उज्जैन का रामघाट है। मध्य प्रदेश में आज शाम 7 से 8 बजे के बीच में दीपोत्सव होना है, और जो सबसे बड़ा आयोजन है, जो प्रमुख आयोजन है, वो उज्जैन में होना है, जो कि धार्मिक राजधानी है मध्य प्रदेश की। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तकरीबन रामघाट का जो 15 किलोमीटर का इलाका है पूरा, वो इस वक्त दियों से भरा हुआ है, बस इंतजार हो रहा है शाम के 7 बजने का, और 7 बजे ही यहाँ पे एक साथ 25 लाख दियों को जलाने की तैयारी अब शुरू हो गई है। दियों में तेल डाला जा चुका है, आप तस्वीरों में अगर आप देखें तो ऐसे ही हर ब्लॉक में करीब 250 दिए हैं, और ऐसे करीब 15 किलोमीटर तक के पूरे ब्लॉक है जहाँ पे ये दिए जलने हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आने वाले हैं, साथ ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन, वो भी साथ में यहाँ मौजूद रहेंगे। और ये जो सामने आप मंच देख रहे हैं, दीप प्रज्वलन के बाद जो मुख्यमंत्री हैं और तमाम दूसरे अतिथि हैं, वो सामने मंच पे जाकर के यहाँ पे एक भजन संध्या रखी गई है प्रधानमंत्री के सेवा संकल्प जन्मदिन पे, जो सेवा संकल्प अभियान है उसके लिए, और फिर आखिर में यहाँ पे आतिशबाजी होनी है। तो जो सबसे बड़ा आयोजन अगर देखा जाए तो आज मध्य प्रदेश का, वो यही उज्जैन में हो रहा है, मुख्यमंत्री का शहर है, और साथ ही में अगर देखा जाए तो नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला दौरा है, तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उनका उज्जैन में होना, महाकाल के दर्शन, भस्म आरती में उनका भाग लेना, और 25 लाख दियों के साथ इस भव्य दीपोत्सव का साक्षी बनना। तो तैयारी पूरी हो गई है, इंतजार बस मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का हो रहा है।
1: अतुल, आप बताइए आप क्या देख रहे हैं?
3: बिल्कुल, देखिए मेरी मौजूदगी अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पर है, जहां 6 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पहुंचना था, लेकिन कुछ देरी जरूर से हो रही है क्योंकि बारिश भी यहां पे थोड़ी देर पहले शुरू हुई थी। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यहां पे पहुंच चुके हैं, मेयर की मौजूदगी है, थोड़ी ही देर में अमित शाह यहां पे पहुंचेंगे, जहां पे पूजन किया जाएगा, महाआरती भगवान जगन्नाथ की जाएगी। खास करके भगवान जगन्नाथ की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भगवान जगन्नाथ में एक अटूट विश्वास वर्षों से रहा है, क्योंकि जब भी रथ यात्रा होती है, तब रथ यात्रा के दौरान खास करके जब वो मुख्यमंत्री थे तब सुबह उनकी मौजूदगी यहाँ पे रहती थी, पहिंद विधि वो करते थे, लेकिन जब से वो पीएम भी बन गए उसके बाद से भी प्रधानमंत्री जो रथ यात्रा होती है उसके अगले दिन यहाँ पे उनका एक विशेष प्रसाद भी भगवान के चरणों में चढ़ाया जाता है। साथ ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो रथ यात्रा के दिन भी उनकी मौजूदगी सुबह 4 बजे मंगला आरती में रहती है, और आज के विशेष दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है तब आज के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचेंगे और एक आरती यहां पे करेंगे। जी
1: अनुपम के पास चलते हैं कोलकाता। अनुपम क्या हो रहा है वहां पर?
4: जेंजना देखिए मैं इस वक्त हुगली नदी के किनारे हूँ, घाट पर हूँ, और मेरे पीछे आप देख सकती हैं तरह तरह से लाइटों को सजाया गया है, लाइटों सजाया गया है, जो पानी की बोट्स होती हैं, लॉन्च होती हैं, उनको भी लाइटिंग से सजाया गया है। यहाँ पर पीछे हावड़ा ब्रिज भी आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी पीछे उस पर भी लाइटिंग की गई है। तो ये जो पूरा गंगा के घाट, हुगली के घाट का इलाका है, यहाँ पर अभी थोड़ी देर में 1,00,000 दिए जलाए जाएंगे। हालांकि बारिश हो रही है लगातार, इस वजह से ई दियों का इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी अभी अपना वक्तव्य रख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी यहां पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन थोड़ी देर पहले ही उन्होंने किया है। आतिशबाजी हुई है इसी जगह पर कोलकाता के आसमान में, हालांकि बारिश लगातार पड़ रही है, अभी थोड़ी हल्की है बारिश, लेकिन और इसी वजह से ई दियों का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। और इस पूरे गंगा घाट को बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया गया है, और ये जो कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है ये इस महीने तो पूरा चलेगा ही, अक्टूबर में भी 10 तारीख को महालया है, उसके पहले तक ये पूरा कार्यक्रम कोलकाता में विभिन्न जगहों पर होगा, जहां पर ड्राइंग प्रतियोगिता, दिए जलाना और भी काफी कुछ कार्यक्रम, आंगनवाड़ी में भी इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। तो काफी लंबा चौड़ा कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत आज हो रही है गंगा किनारे कोलकाता में, हुगली नदी के ठीक किनारे से।
1: बिल्कुल अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी तो तमाम बैठे ही हुए हैं। नीलांजन मुखोपाध्याय, मुझे बताने में इन लोगों ने देरी कर दी, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। नीलांजन मुखोपाध्याय ने तो किताब भी लिखी है, विजय त्रिवेदी भी बहुत करीब से पॉलिटिक्स को कवर करते रहे हैं, जिसमें अटल एरा भी कहा जा सकता है और मोदी एरा भी कहा जा सकता है। नीलांजन जी आपके साथ शुरुआत करते हैं, आप किस तरह से देखते हैं उनके पूरे सफर को?
5: देखिए जहां तक मोदी जी का 2001 से लेके अभी तक का जो सफर है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक नो फिनोमिनल पीरियड है हिंदुस्तान की राजनीति का। जो पीरियड है 2001 से लेके 2026, एक बहुत लंबा समय का काल है। इस पूरे पीरियड में मुख्यमंत्री के तौर पर और बाद में प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने पूरा कवर किया, तो उनके कई सारे एरियाज में पार्टी के ऊपर, संघ परिवार के अंदर रिश्तों में, सरकार की पॉलिसीज में, पहले मुख्यमंत्री के तौर पर और उसके बाद में प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी रोल ट्रांसफॉर्मेटिव रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई सारे, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था जो बातें अनुराग ठाकुर जी और बाद में रविशंकर प्रसाद जी बोल रहे थे। जाहिर सी बात है कि वो उनके जो पार्टी की तरफ से जो चीजें हैं उनको ज्यादा हाईलाइट करेंगे, जिसमें अचीवमेंट्स की बात करेंगे, लेकिन अचीवमेंट्स के साथ साथ मतलब कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम जैसे लोग जो हैं, हम आप जो, हमारा काम है विश्लेषण करने का, हम कहेंगे इन चीजों को और बेहतर किया जा सकता था। हिंदुस्तान में, भारत में नौकरी की एक समस्या है। हम लोग अक्सर बोलते हैं सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है, लेकिन इसका दूसरा देखने का तरीका तो ये भी है कि 80 करोड़ लोगों को इसलिए राशन दिया जा रहा है क्योंकि इनके परिवारों को बेसिक 2 टाइम की रोजी रोटी खरीदने की इनमें कैपेसिटीज नहीं है, तो वो एक तरह से शॉर्टकमिंग रही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, अभी अभी ब्रिक्स खत्म हुआ, कि हिंदुस्तान की जो इमेज है वो एक काफी ट्रांसफॉर्मेटिव पोजीशन पे पहुंची है। और मजेदार बात यह है कि हिंदुस्तान ने एंटागोनिस्टिक फोर्सेस को बैलेंस किया है, एक तरफ अमेरिका है और दूसरे तरफ रूस और चाइना है, एक तरफ इजराइल भी है और दूसरी तरफ ईरान भी है, तो इन सबको बैलेंस करते हुए चला है। कई साल पहले मुझे याद है कि जब नॉन अलाइंड के बारे में जयशंकर जी को पूछा गया था कि नॉन अलाइंड पॉलिसी क्या हुआ छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा था कि वी आर नॉट नॉन अलाइंड एनीमोर, वी आर मल्टी अलाइंड। तो तब समझ में नहीं आया था कि क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन अब ये चीजें दिख रही हैं, तो इसका आगे जाके क्या इम्पैक्ट होगा वो हमको और देखना पड़ेगा। लेकिन जो जो इक्विवेलेंस है सबको ठीक तरह से एक ही तरीके से हैंडल करना, वो मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है।
1: और भी मेरे मन में सवाल है मुझे, मैं चूंकि जो किताब आपने लिखी है मैंने उसका एक बड़ा हिस्सा पढ़ा भी है, तो बहुत सारी बातें जो आपने लिखी है मैं आपके पास भी त्रिवेदी जी आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार समर्थ के पास चलते हैं। समर्थ, वाराणसी से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था वहां पर तो काफी अंधेरा हो भी गया है, तो देखिए यही कहते हैं जब आप भारत के अलग अलग हिस्सों में जाएं तो कहीं पर अभी अंधेरा होने का इंतजार किया जा रहा है और कहीं कहीं पर बिल्कुल जैसे वाराणसी में एकदम अंधेरा है। समर्थ, आज गृहमंत्री ने कहा था कि वडनगर से वाराणसी तक, और हमने देखा कैसे बड़े बड़े पहुंचे थे आज वाराणसी।
6: बिल्कुल अंजना, और क्यों ना हो भाई, प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है, तो काशी के लिए वो बेटे ही हैं, सांसद हैं, प्रधानमंत्री हैं। मैं इस वक्त अंजना नमो घाट पर हूँ, एक तरफ पतित पावनी माँ गंगा है जो मेरे सामने तेज प्रवाह में बह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है आज माहौल बनारस में अयोध्या जैसा है, क्योंकि ये जो दिए है ना, ये दिए यहाँ पर लग गए हैं, असंख्यों दिए जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर लाए गए हैं, लगाए गए हैं, और बच्चों ने बकायदा काफी मेहनत की है इन दियों को यहाँ बिछाने के लिए। वाइट फ्रेम यहाँ से दिखाएं एक बार और पूरा दर्शकों को यहाँ से दिखाएं कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पर नमो घाट पर दिए लगा दिए गए हैं। बड़ी बात यह है कि एक तरफ तो ये दिए जो हैं वो जगमगा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस जन्मदिन पर, क्योंकि जिस घाट से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ ये घाट भी एक गिफ्ट है पीएम मोदी का वाराणसी को, ये घाट बनाया पीएम बनवाया ही पीएम मोदी ने है, और सामने की तरफ अगर आप देखें तो ये घाट का दूसरा हिस्सा है जहां पर कुछ क्षण में गंगा आरती शुरू होने वाली है, तो गंगा आरती हो, एक दीपोत्सव जैसा माहौल हो, प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन हो, और तमाम देखिए महिलाएं भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की मैं कोशिश करता हूँ, थोड़ा आइए करीब मेरे साथ। यहाँ पर देखिए तमाम महिलाएं भी हैं जो यहाँ फोटोशूट भी चल रहा है, फोटोज क्लिक की जा रही है। पीएम मोदी का आज जन्मदिन है, कुछ कहेंगे आप लोग? पीएम मोदी का आज जन्मदिन है, आप लोगों ने दिए वगैरह बिछाए हुए हैं पूरे, क्या कहेंगी? अच्छा आप लोग साथ हैं, तो देखिए साउथ से भी यहाँ पर लोग हैं जो हिंदी नहीं समझते, लेकिन भारी संख्या में यहाँ पर अंजना लोग आए हुए हैं, और फ्रेम दिखाइए सामने का कि किस तरीके से दिए जो है बिछा दिए गए हैं। तमाम जो युवा हैं वो इस पूरे कार्य में लगे थे काफी देर से, और अब आखिरकार ये सुंदर खूबसूरत नजारा नमो घाट से दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा करीब लेकर चलते हैं जहां पर दिए जो है वो लगाए जा रहे हैं यहाँ पर पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर। काफी युवा भी देखिए यहाँ इकट्ठा है, आइए युवा पीढ़ी से थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं फटाफट कि आखिर उनका क्या कहना है इस सुंदरता के साथ इन लोगों ने सजाया है। अरे आप लोग बताइए, आप लोग बहुत देर से मैं देख रहा हूँ सजा रहे हैं, पीएम मोदी का जन्मदिन है, क्या कहेंगे आप?
7: बस मैं पीएम मोदी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा उनके जन्मदिन के।
6: जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहेंगे, कैसा है बड़ा सुंदर आप लोगों ने सजा दिया पूरा?
7: वो बस हम लोगों की मेहनत, हम लोगों की यूनिटी है।
6: पीएम मोदी का बर्थडे है, आप लोग युवा हैं, जेन जी जेन अल्फा है शायद आप तो, हाँ क्या कहेंगे मोदी जी से?
8: मोदी जी से हम बोलेंगे कि उनका बर्थडे है तो उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं उनके बर्थडे के लिए।
6: अच्छा आप कैसे विश करेंगे पीएम मोदी को?
9: पीएम मोदी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हमारे देश का बहुत अच्छे से विकास कर रहे हैं,
6: वाराणसी का,
9: वाराणसी का बहुत अच्छे से विकास कर रहे हैं। आज नमो घाट पे कुछ नहीं हुआ करता था, आज कितना भीड़ है।
6: बिल्कुल भीड़ तो है,
9: हाँ तो आज 100-1000 की भीड़ है लगभग, और पहले 100-200।
6: कहना है कि वाराणसी में टूरिज्म बढ़ा है,
8: ये सब जितने उत्सव हम लोग मना रहे हैं मोदी जी के बर्थडे के लिए मना रहे हैं, ये सब दीपक हम लोग।
6: देखिए ये जैन अल्फा है, जल्दी से अलग अलग तरह की भले होते हैं, लेकिन ये
1: ठीक है। त्रिवेदी जी एक कमेंट जल्दी से आपसे, उसके बाद मैं ऋतिक भालकर के पास मुंबई चलूंगी, आप किस तरह से देख रहे हैं उनके पूरे सफर को?
10: अंजना जी एक तो बधाई,
1: चैलेंजेस को
10: बधाई और शुभकामनाएं। आपने रविशंकर जी को, अनुराग जी से बात की, तो प्रधानमंत्री के जो काम है उस पर बात की है, नीलांजन जी ने बात की, नीलांजन जी बहुत लंबे समय से देखते रहे, हम भी रहे। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को मैं एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स के तौर पर देखता हूं। जितनी बातें हम लोग कन्वेंशनल पॉलिटिक्स में देखते रहे, आप भी और हम सब लोग भी, नीलांजन भी, उससे अलग तरीके से दिल्ली को देख लें, तो दिल्ली में आप एलीट पॉलिटिक्स में रहे हैं, D4 क्लब जो दिल्ली का चलता था भारतीय जनता पार्टी का, उस क्लब को देख लें, खान मार्केट गैंग जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती रही वो क्लब रहा, उस सबको तोड़ के भारतीय जनता पार्टी जो दो MPs और दो जातियों की पार्टी मानी जाती थी ब्राह्मण बनी की, उसको पूरे देश की सभी जातियों सभी वर्गों की पार्टी बना देने का काम। दूसरी बात, अडवाणी जी जिस बात का जिक्र करते हैं जिसके लिए मैं कहता हूं कि वो कहते हैं कि मोस्ट क्रिटिसाइज्ड मैन है नरेंद्र मोदी, जिसको कोई ऐसा नहीं है जिसने क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन उन सबसे पार करके वो यहां पहुंचे। दूसरी बात, संकल्प उनका एक बड़ा वो मंत्र मैं समझता हूं कि वो संकल्प करते हैं, उसे आप जिद भी कह सकते हैं बहुत सारे लोग, और उसको पूरा करने के लिए जिस हद तक जा सकते हैं वहां तक वो जाने की कोशिश करते हैं, छोटी बातों का ध्यान रखते हैं और बड़े सपने दिखाते हैं। तो ये एक पैराडॉक्स भी हो सकता है, कंट्राडिक्शन भी हो सकता है, लेकिन वो छोटी छोटी बातें जो शौचालय की बात हो, घरों की बात हो, स्वच्छता की बात हो, और दूसरी तरफ बड़े सपने देश के दिखाने के लिए। नीलांजन जी ने जिस बात का जिक्र किया वो बहुत महत्वपूर्ण है कि नॉन अलाइन से मल्टी अलाइन डिप्लोमेसी पर हम आए हैं, और जहां एक जमाने में हम किसी को CIA का एजेंट कहते थे, किसी को KGB का कहते थे, आज सबके सबके साथ हम खड़े हुए हैं, अमेरिका के साथ भी हैं, रूस के साथ भी हैं, चीन के साथ भी, और ब्रिक्स में तो ईरान के साथ भी है, UAE के साथ भी है, और सऊदी अरब के साथ भी है। तो ये जो मल्टी अलाइन डिप्लोमेसी है उसने भी हिंदुस्तान की रफ्तार को बदला है, हिंदुस्तान की जो और तमाम तरीके की जो ज़रूरतें हैं उनको बदला। तो मैं उनको नरेंद्र मोदी को एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियंस के तौर पर देखता हूं, जो जो चीज़ें हम नहीं सोचते या सोचते कि ऐसा होना मुश्किल है, उन सब रास्तों पर वो चलने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी बातें हो सकती है जिन पर हम लोग उनकी आलोचना कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि जिस पर नहीं की जा सकती हो, लेकिन एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन के तौर पे मैं उन पर ध्यान देता हूं।
1: ऋतिक, मुंबई में क्या हो रहा है जल्दी से दिखाएं।
11: जी बिल्कुल, देखिए वाराणसी के माँ गंगा के नमो घाट से लेकर मुंबई के अरबी समंदर तक पूरे देश में हम पीएम मोदी के जन्मदिन का जश्न मनाते लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फिलहाल मैं मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के सामने हूँ और यहाँ पर जो दिए जलाए जा रहे हैं वो दिए इस तरह से जलाए जा रहे हैं जो मोदी जी ने जो काम किया है उसकी सराहना किस तरह से लोगों में की जाए। ऑपरेशन सिंदूर का ये जो चित्र है हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, और खास बात यह है कि जो युवा वर्ग है, जो जेंजी है, वो इसे बनाते हुए गेटवे ऑफ इंडिया पर नजर आ रहे हैं। उन्हीं से बात करके जानने की कोशिश करते हैं, बताइए किस तरह से जश्न होगा, क्योंकि यहाँ पर और पूरे देश में इसी तरह का माहौल देखने को मिल रहा है।
12: सबको बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटमेंट है कि मोदी का बर्थडे, और सब जश्न मनाने के लिए बहुत एक्साइटेड है, तो उसी हिसाब से सब किया जाएगा।
11: जेंजी खास तौर पर बताया जा रहा था कि प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, नाराज है, लेकिन आप भी जेंजीज है, आपका क्या कहना है आज के दिन पर?
12: बस जैसा था वैसा सब अच्छा चला, उसके बाद इसके लिए हम लोग ने सोचा कि सब अच्छा हो इसके वजह से।
11: क्या कहेंगे?
13: मैं तो हम लोग स्टार्टिंग से कर रहे हैं लेकिन अभी काम चालू है थोड़ा सो।
11: ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों?
13: ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि लाइक वो मोदी जी ने प्लान किया था, एग्जीक्यूट किया था, इसलिए
11: देश के लिए बहुत ही मतलब प्राउड मोमेंट।
13: हाँ, देश के लिए तो ऑब्वियसली प्राउड मोमेंट है, हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट है कि हम इंडियन हैं।
11: तो हम देख रहे हैं अंजना किस तरह से यहाँ पर जेंजी शरीक हुए हैं इस जश्न में, और दिया जलाया जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर का।
1: नीलांजन जी, द मैन द टाइम्स नरेंद्र मोदी पर आपने एक किताब भी लिखी, और आपने उस पूरी किताब में मैंने काफी पहले उसे पढ़ा था लेकिन जितना मुझे याद आ रहा है उसमें ज्यादातर आपने इस बात की चर्चा उस किताब में की है कि कैसे मदर इंडिया को इवोक करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जब वो माँ भारत माँ बनती है तो उसे बचाने के लिए पुत्र चाहिए, एंड देन वो अपने आप को पोजिशन करते हैं कि कैसे वो एक लाइक सन ऑफ द सॉयल है। वहां से लेकर आज उनकी विचारधारा को जब आप समझने की कोशिश करते हैं नीलांजन जी, तो आपको क्या क्या बदलाव दिखता है? मेरे सवाल का पहला हिस्सा, क्या संघ की ही इस विचारधारा को वो आगे ले जाते हुए आपको दिखाई देते हैं, और बड़े पैमाने पर आज वो विचारधारा कितनी सार्थक उनके चुनावों के लिए रह रही है, राजनीतिक चुनावी रणनीति के लिए रह रही है? नीलांजन जी
5: देखिए, अंजना जी, सबसे पहले तो मोदी जी के बारे में ये कहना पड़ेगा कि वो एक तरह से उन्होंने सिंबलिज्म, पॉलिटिक्स ऑफ सिंबलिज्म में एक तरह से कि पीएचडी हासिल की है। पूरा का पूरा जो उनका जो भाषण है जो देते हैं वो हिंदुस्तान के मेरे ख्याल से सबसे अच्छे मतलब ओरेटर्स में से रहे हैं। मैं तो यहां तक मानता हूं कि उनकी ओरेटरी शायद वाजपेयी जी से भी बेटर मैं बोलूंगा, क्योंकि वाजपेयी जी के भाषणों में पॉजेस बहुत होते थे। मोदी जी की जो जो भाषण होते हैं वो एक तरह से रिलेंटलेसली चलता रहता है। तो मैं कई बार कल्पना करने की कोशिश करता हूं कि वो अपने भाषणों के, खासतौर से उनमें जिनमें टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जैसे कि ऑफिशियल पोजीशंस में उनको करना पड़ता है, ऑफिशियल फंक्शंस में करना पड़ता है, लेकिन जो पॉलिटिकल भाषण है उसमें जिस तरह से बात करते हैं तो कितनी क्लैरिटी और कितने आगे तक की होती है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो आप पूछ रहे हैं कि क्या चेंज हुआ है, डेफिनेटली बहुत चेंज हुआ है, क्योंकि उनमें मेच्योरिटी बहुत बड़ी है, मतलब चीजों को हैंडल करने की स्थिति। मुझे नहीं पता कि मोदी जी ऑफ 2001 क्या वो पहलगाम जैसे इंसिडेंट को टैकल कर पाते, हमें नहीं पता कि किस लेवल पे वो करते उसको टैकल। अगर हम पीछे मुड़ के जाएं तो गोधरा की हैंडलिंग, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो भक्त हैं, वो भी कह सकते कि शायद कुछ एस्पेक्ट जो हैं उनको वो बेहतर हैंडल कर सकते थे। इससे कम से कम ये इंश्योर होता कि उनपे जो लगातार जो क्रिटिसिज्म होता रहा, उस समय की मीडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और ऑपोजिशन तो खैर थी ही, तो उसको कम किया जा सकता था। तो ये सब तमाम चीजें जो है मोदी जी के बारे में देखने को मिलता है। जहां तक आपने दूसरी बात बोली संघ के बारे में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संघ की राजनीति को अगर किसी ने आगे बढ़ाया है, मैं तो यही कहूंगा कि उस वहां तक बढ़ाया है जो जो आरएसएस के नेताओं ने कभी उसको आर्टिकुलेट नहीं किया था। अब जैसे डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इसके बारे में अब 1979-80 के ऑनवर्ड जब से मतलब असम का आंदोलन चल रहा था, तब से आरएसएस के लोग बोलते आ रहे थे। बाला साहेब देवरस के बारे में मुझे पता है कि उन्होंने कहा था कि जो असम से जो आते हैं उनको रिफ्यूजी और इन्फिल्ट्रेटर में हमको फर्क करना चाहिए। तो इस तरह की बातें वो करते थे, और वो धीरे धीरे जैसे बीजेपी डेवलप हुई तो उनके भी उसमें आई। लेकिन एक कमीशन बनाना, डेमोग्राफिक कमीशन जिसकी स्टडी हो रही है, उसका रिपोर्ट अभी कुछ ही महीनों के अंदर आने वाला लगता है, तो उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो एक तरह से 2029 के पहले हम एक तरह से मेगा प्रोग्राम्स देख रहे हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि डिलिमिटेशन की बात चल रही है, साथ ही उसके साथ
1: बिल्कुल बिल्कुल
5: विमेंस
1: बिल्कुल।
5: रिजर्वेशन
1: मैं
5: की
1: लौट
5: बात
1: रही
5: चल
1: हूँ
5: रही है।
1: निलंजन जी आपके पास। एक बार मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त तस्वीरें दिल्ली से आ रही हैं, और पीयूष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी दिखाई दे रही है तस्वीरों में, और दीप जलाए जा रहे हैं। क्या हो रहा है, तस्वीरें दिखाइए, बताइए।
14: जो सवाल आप दीप प्रज्वलित आप लोग कर रहे हैं, जब आप उनको
15: जी बिल्कुल अंजना, इस वक्त सीधी तस्वीरें दिल्ली के कर्तव्य पथ से आप देख पा रहे हैं, जहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची है और दीप प्रज्वलन का जो काम है वो शुरू हो गया है। सीधी तस्वीरें जिसमें आशीर्वाद का दिया, इस पूरे कार्यक्रम का नाम रखा है सिर्फ आशीर्वाद का दिया, और वो दिया इस वक्त यहाँ पर प्रज्वलित किया जा रहा है। ये कर्तव्य भवन का मेन स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर नई और पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग्स है, यहाँ पर सेवा तीर्थ है, यहाँ पर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, उसके बीच में ये स्थान है जहाँ पर एक बड़ा सा जगह है जहाँ पर आशीर्वाद का दिया लिखा गया है, दियों का इस्तेमाल करके, और उस जगह पर रेखा गुप्ता पहुंची और आप तस्वीरों में देखिए कैसे वो इस वक्त दिया जलाती हुई नजर आ रही है। मैं आपको चारों तरफ की तस्वीरें भी दिखा देता हूँ, आप देखिए उनके साथ साथ दिल्ली वासी भी काफी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और इसी तरह के कार्यक्रम जो है वो दिल्ली के अलग अलग कोनों में भी किए जा रहे हैं। रेखा गुप्ता इस वक्त आशीर्वाद का दिया का एक दीप, उसका जो हिस्सा है उसको जलाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, और एक बार मैं चारों तरफ का आपको नजारा दिखा दूं। ये विजय चौक के ठीक सामने का इलाका है, मेरे पीछे नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है जहाँ पर राष्ट्रपति भवन भी जाता है, और मेरे दाहिने और पुरानी और नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, और मेरे बाएं और सेवा तीर्थ है, ये वो जगह है अंजना जहाँ से पिछले 12 से 13 सालों में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए और यहीं पर आशीर्वाद का दिया जलाने के लिए दिल्ली के लोग पहुंचे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता फिर से यहां पर पहुंची हुई है। कुछ देर पहले वो तैयारियों का जायजा लेने के लिए आई थी और आज यहां पर तैयारी की गई है। लगभग 1,25,000 दीयों को जलाने की, आप देखिए कैसे यहाँ पर जो लोग हैं वो लाइन से यहाँ पर जो दिए लगे हुए हैं उनको इस वक्त यहाँ पर जलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी शुरुआत दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की और दिल्ली के अलग अलग कोनों से यहाँ पर लोग पहुंचे और अपने हाथ में दिया लेकर यहाँ पर दिया जला रहे हैं और न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग कोनों में इसी तरह के दीपों का प्रज्वलन किया जा रहा है। आशीर्वाद का दिया यानी कि आशीर्वाद मिले और बेहतर तरीके से काम करें इसको लेकर प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तरह के आशीर्वाद के दिए जैसे कार्यक्रम से उनको और बल मिलता है। तो 25 साल का जो उनका कार्यकाल है पब्लिक लाइफ में वो 7 अक्टूबर को पूरा होने वाला है लेकिन उससे पहले आज उनका जन्म दिवस है और इसी जन्म दिवस के उपलक्ष पर आप देखिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली के कर्तव्य पथ से दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली वासी दिया जलाते हुए नजर आ रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम का जो कुछ लीड कर रहे हैं वो है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। जैसे मैंने आपको बताया कि ठीक मेरे दाहिनी ओर जो सेवा तीर्थ है अंजना ये वही जगह है जो अब प्रधानमंत्री का नया कार्यालय है और इसी कार्यालय से हमने कई बड़े बड़े फैसले होते हुए भी देखे हैं और इसी सेवा तीर्थ के सामने वो नई बिल्डिंग भी है। एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो आपको दिखा दे, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी है जहां पर जब प्रवेश किया था नरेंद्र मोदी ने तो सबसे पहला फैसला लिया था महिला आरक्षण बिल पास करने का और उसके बाद से कई ऐतिहासिक फैसले लिए जा चुके हैं लेकिन उसी बिल्डिंग के साथ में पुरानी पार्लियामेंट की भी बिल्डिंग है जहाँ पर जहाँ से धारा 370 को खत्म किया गया था। तो ये वो जगहें हैं जहाँ पर हम मौजूद हैं जहाँ से बड़े बड़े फैसले नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुए हैं और आज जब उनका जन्मदिन है तो आशीर्वाद का दिया पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता कई लोगों के साथ मिलकर उनका जन्मदिवस मना रहे हैं और एक पूरा महीना सेवा पखवाड़ा की तैयारी है। मोदी @25 कार्यक्रम का नाम भी है और इस पूरे महीने में जो जानकारी मिली उसके हिसाब से कई कार्यक्रम होने वाले हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता बाइक रैली निकालेंगे, अलग अलग जिलों में जाएंगे, लोगों की समस्या सुनेंगे और सेवा पखवाड़ा के तहत उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो एक महीना भर का ये कार्यक्रम चलने वाला है लेकिन आज इस कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली के कर्तव्य पथ से हो रही है, माफ कीजिएगा, कर्तव्य पथ से हो रही है और रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर दीप जलाती हुई नजर आ रही है। कई जो दिल्ली के अलग अलग कोनों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और इस दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उज्जैन में मौजूद हैं, राजनाथ सिंह बनारस में थे जहाँ से उन्होंने बाइक रैली का अनावरण किया जो बनारस से चलकर वडनगर तक जाएगी। वडनगर में गृह मंत्री अमित शाह थे तो अलग अलग तरह के कार्यक्रम जन कल्याण से जुड़े हुए कार्यक्रम जो है इन पूरे एक महीने में किया जाएंगे और एक महीने तक ये बड़ा कार्यक्रम देश भर में चलाया जाएगा।
14: जी हां, मुख्यमंत्री जी भी अपने आशीर्वाद का दिया जलाने के लिए
1: बिल्कुल। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दिल्ली में, मुख्यमंत्री तो वहां पर है ही, अन्य लोग भी काफी पहुंच रहे हैं। तो क्या है अगर आप पूरा बताएं, पूरे कर्तव्य पथ के लिए कहा गया था। ऐश्वर्या पालीवाल भी एक हिस्से से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है। ऐश्वर्या आप दिखाइए वहां पर क्या हो रहा है।
16: देखिए अंजना, जहां हम खड़े हैं कर्तव्य पथ, जब इसका नाम बदला गया था तो हमने देखा था कि कई सारे जो लोग हैं विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने उंगली उठाई थी और कहा था नाम क्यों बदला जा रहा है। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ किया था कि अगर हमें लोगों ने चुनकर भेजा है तो इसीलिए चुना है ताकि हम अपना कर्तव्य करें और हमारा जो एंड गोल है वो ये है कि आम जनता को मदद मिलनी चाहिए और उसी के लिए आज आपको यहां पर इतने सारे जो दिए हैं, मैं आपको बताऊं यहां पर लगभग 1.5 लाख दिए एक समय पर जलाए जा रहे हैं और ये जो प्रज्वलित दिए हैं जो आपको दूर तक नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे दिए इसीलिए जलाए गए हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक वादा किया था आज से 12 साल पहले और लोगों से जो वादा किया था गुजरात के लोगों से आज से 25 साल पहले उसको उन्होंने पूरा किया है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि अब समय आ चुका है कि एक बार फिर से घर घर जाके लोगों को बताया जा सके किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कार्य किया है और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के जितने जितने भी अन्य नेता हैं उन सब ने भी यही काम बोला है और यही काम शुरू भी किया है कि घर घर जाके लोगों को बताया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से पॉलिसी के अंदर बदलाव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा देश की जनता से किया था आज से 12 साल पहले 2014 में, जब उन्होंने ये कहा था कि मैं बदल के रहूंगा देश को, नीतियों को बदलूंगा और ये मेक श्योर करेगी भारतीय जनता पार्टी कि आप लोग जो हैं आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज हो। और देखिए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि घर घर जाके वो ये भी बताएंगे कि जो पॉलिसी चेंज हो रहा है उसका एक बड़ा गोल है 2047, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो पॉलिसी चेंज अभी होगा उसके बाद धीरे धीरे करके इंडिया एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन हो जाएगा। और हम जिस तरीके से यहां दिए जलते हुए देख रहे हैं अंजना, ये महज 100 मीटर दूर है नई संसद की बिल्डिंग से। संसद की बिल्डिंग में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार रखा था तो झुके थे, अपना सिर झुकाया था और कहा था कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, जो वादा मैंने देश के लोगों से किया है और जो भरोसा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया है उसको पूरा किया जाएगा। आपने देखा होगा कैसे दिन भर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो नेता हैं वो देश के अलग अलग कोनों के अंदर थे। एक बाइक रैली भी चालू की गई है, ये बाइक रैली जो है ये एंड होगी वाराणसी में, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा के सांसद हैं और जो मैसेज दिया जा रहा है बीजेपी के द्वारा वो मैसेज ये है कि हमने जो आपको वादा किया था हम उस वादे पर अडिग हैं और हम अपना कार्य उसी तरीके से आगे करते रहेंगे। पूरा का पूरा कर्तव्य पथ जो है इस समय जिस तरह से दिवाली होती है अंजना वैसे जगमगा चुका है। यहां पर हजारों की भीड़ है यहां पर और हर कोई एक एक दिया जला रहा है और सबका मानना है कि जो वादा किया गया था वो वादा पूरा किया है। और इसके बावजूद इसके अलावा आगे जैसे जैसे समय बीतेगा और सारी पॉलिसीज के अंदर बदलाव होगा। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें भी बदलाव आने वाले समय के अंदर आपको नजर आएगा। देखिए नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जो अब ऑफिसेज को खाली करके कर्तव्य भवन बनाया गया है वो भी जगमगाता हुआ नजर आ रहा है और कर्तव्य पथ जो नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिया था वहां पर इस समय एक छोटी सी दिवाली सी मनाई जा रही है।
1: बिल्कुल। और पीयूष आप जहां पर मौजूद हैं थोड़ा मुझे लगता है नेट साउंड भी सुना सकते हैं अपने दर्शकों को। पीयूष आप जहां पर मौजूद हैं आप एक बार फिर से दिखाइए कि वहां इस वक्त क्या हो रहा है। ये अहमदाबाद की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं और इस वक्त हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि इस मंदिर में उनको पहुंचना था। अतुल अगर हमारे साथ जुड़े तो उनके पास फिर लिए चलिएगा। एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने पहले वडनगर में भी आज सुबह में किया था और अब शाम में वहां पर ये कार्यक्रम करने पहुंचे हैं। इससे पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब दिल्ली में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे।
17: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची है और करिए करिए करिए करिए जलाइए। आशीर्वाद कर दिया और वो दिया इस वक्त यहाँ पर प्रज्वलित किया जा रहा है। ये कर्तव्य भवन का मेन स्टार्टिंग पॉइंट है।
1: ऐश्वर्या तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गृह मंत्री ने भी 2-3 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सुबह में ही हमने देखा वडनगर में वो थे, एकनाथ शिंदे भी वहां पर शामिल हुए और अब शाम में फिर वो मंदिर वहां पर पहुंचे हैं और इधर दिल्ली में तो ये कार्यक्रम चल ही रहा है।
16: जी अंजना देखिए गृहमंत्री अमित शाह ने जो बाइक रैली का जो इस बाइक रैली को स्टार्ट किया था वो बाइक रैली देश भर में होगी और उस जो एंड होगी वो होगी वाराणसी में। वाराणसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कर्म भूमि कहा है और उन्होंने ये कहा था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि आज का जो दिन है आपको सोसाइटी को वापस देने का दिन है। 50,000 ब्लड डोनेशन कैंप्स आज देश भर में लगाए गए हैं, लाखों की संख्या के अंदर भंडारे लगाए गए हैं और उसका कारण यही है कि बीजेपी का मानना है कि जब आपको इस तरीके का मैंडेट लोगों ने दिया है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोगों की अपेक्षाएं और इच्छाएं और जिस तरीके के एस्पिरेशंस इस समय लोगों के हैं उनको पूरा करें। जिस तरीके से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे हम डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की बात करें, गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, वो सभी सुबह से अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और ये जो पूरा कार्यक्रम तय किया गया है अगले एक महीने तक ये चलता रहेगा। लेकिन आज इसकी खासियत ये है कि बीजेपी ये बताना चाहती है और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद बोल चुके हैं कि आपका काम है लोगों की सेवा करना, इसीलिए जो पीएमओ है उसका नाम बदल के सेवा तीर्थ रखा गया है। आपका काम है कि आप कर्तव्य करें, इसीलिए हम इस समय कर्तव्य पथ पर खड़े हैं। और जिस तरीके का भरोसा देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिखाया है, उसको आपको किस तरीके से फुलफिल करना है और उस पर कैसे अडिग रहना है, इन सब बातों की चर्चा हमने आज सुनी नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट। बीजेपी का यह मानना है कि पॉलिसी चेंजेस की अगर हम बात करें, वो जिस तरीके से पॉलिसी चेंजेस कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हमारी और आपकी जेब पर, हमारी और आपकी जेब में ज्यादा पैसा होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी ज्यादा होनी चाहिए और कहीं ना कहीं भारत को ये बताना होगा कि वो ग्लोबल लीडर के तौर पर किस तरीके से इमर्ज कर रहा है। और यही सब देखिए, हम लोग जब खुश होते हैं, जब हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसका कारण यही है कि हम बताते हैं कि किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, तो किस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। ये दिए जो हैं इस समय उसी का सिंबल है। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि हमने आज देश भर में देखा किस तरीके से एक उत्सव सा मनाया जा रहा है। और गृहमंत्री अमित शाह भी गुजरात के अंदर, जो जन्मभूमि है गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो सुबह से ही एक के बाद एक वहां पे फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि ये एक बार फिर से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेगा और जो आगामी चुनाव है उस पर भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों का एक असर आपको आने वाले दिनों में नजर आएगा। अंजना,
1: बिल्कुल। तो आज गृहमंत्री अमित शाह ने वहां कहा भी था कि वडनगर से लेकर वाराणसी तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। और इसी कड़ी में अलग अलग हमारे सहयोगी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम अहमदाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अहमदाबाद में इस वक्त गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। हमारे रिपोर्टर अहमदाबाद से जैसे जुड़े हमें बताइएगा, ताकि अलग अलग जगहों से जब हम कवरेज कर रहे हैं तो तमाम रिपोर्टर्स को आप जोड़ लें ताकि उनके पास चले और वो बता सके कि इस वक्त तस्वीरों में क्या हो रहा है। ये जन्मभूमि से कर्मभूमि तक का अभियान हम चला रहे हैं, ये गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था। इसी के साथ आशीर्वाद का दिया, ज्यादातर जो मंत्री वगैरह बीजेपी के शामिल हो रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आज देश प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से आशीर्वाद दे रहा है और गुजरात तो वाकई उनकी कर्मभूमि है। अतुल, क्या हो रहा है बताएं?
18: अतुल आपको अगर हमारी आवाज आ रही है, काफी शोर वहां पर चल रहा है, लेकिन अगर आपको हमारी आवाज आ रही है जरा बताइए क्या हो रहा है वहां पर।
1: रवीश पाल हमारे साथ जुड़ गए। रवीश, आप बताइए उज्जैन में इस वक्त क्या हो रहा है? उस वक्त शाम होने का, सूरज ढलने का इंतजार था, क्या चल रहा है इस वक्त?
2: देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दीप प्रज्वलित कर दिया है, हमने आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री ने जैसे ही दिया जलाया यहाँ पे,
18: मेरे ख्याल से नेटवर्क का इशू है वहां पर। जरा करीब करीब हर शहर में, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रोग्राम किया जा रहा है। रेखा गुप्ता की ये तस्वीरें और ये अहमदाबाद की तस्वीरें, अमित शाह इसमें हम देख सकते हैं कि अमित शाह उस मंदिर में वहां पर पहुंचे थे। अतुल तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है, क्या आप देख सकते हैं वहां पर और किस मंदिर में यहां पर अमित शाह वहां पर पहुंचे बताएं?
2: ये दिए जले हुए सामने आप देखिए, 25 लाख दिए हैं जो सामने आप देख रहे हैं, इन दियों को जलाया गया है और लोग एक एक करके जला रहे हैं।
18: मुझे मुझे लगता है कि अतुल तिवारी से हमारी बातचीत नहीं हो पाएगी, अतुल तिवारी से हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में ये जश्न वहां पर मनाया जा रहा है। कोलकाता में आप देख सकते हैं कि हजारों दिए वहां पर जलाए गए, पटना में भी गंगा किनारे पर इस तरीके से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा गया है। उज्जैन में अभी थोड़ी देर पहले रवीश बता रहे थे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर आए थे और वहां पर भी दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। वाराणसी की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अहमदाबाद से खास करके जहां पर गृहमंत्री अमित शाह वहां पर इस मंदिर में पहुंचे थे, आशीर्वाद के दिए इस नाम से ये कार्यक्रम चल रहा है। ब्रिजेश दोषी इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद से लाइव जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश, जरा ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को बताइए, किस मंदिर में यहाँ पर अमित शाह वहां पर है और ये दीप प्रज्वलन का वहां पर कार्यक्रम?
19: देखिए, जगन्नाथ मंदिर जो है वहाँ पे हमेशा अमित शाह जो है वो पूजा करते हैं, दिवाली के टाइम पे भी परिवार के साथ वहाँ विशेष पूजा अर्चन करते हैं, तो उसका एक अलग महत्व है। और वहीं से वो अब यहाँ जहाँ हम खड़े हैं कांकरिया लेक परिसर, तो कांकरिया में 1,00,000 दिए जलाए जाएंगे, आशीर्वाद के दिए जो नाम दिया गया है। तो अहमदाबाद में अलग अलग स्पॉट है, यहाँ पे जो है 1,00,000 दिए जलाए जा रहे हैं, अटल ब्रिज पे जो है 76,000 दिए हैं, तो इस तरह जो है अहमदाबाद शहर में भी 12 से 14 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। उसके अलावा कुल बात करें गुजरात की, तो गुजरात में कुछ 88 लाख दिए जो है वो आशीर्वाद के दिए जलाए जाएंगे। ये पूरा कार्यक्रम जो है वो किया गया है, बीजेपी के सभी बड़े नेता जो है इसमें शिरकत करेंगे, सभी लोग मौजूद रहेंगे यहाँ पे, केंद्रीय गृह मंत्री और साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सूरत में रहेंगे, तो हर जगह एक साथ ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी हम कांकरिया लेक परिसर में है और यहीं पे थोड़ी देर में केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे और यहाँ पे 1,00,000 दिए जलाए जाएंगे।
18: कुल मिलाकर रंजना, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस कार्यक्रम को सामने रख रही है, प्रधानमंत्री मोदी 25 साल से लगातार मुख्यमंत्री और उसके बाद 12 साल से प्रधानमंत्री, 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके बाद 12 साल प्रधानमंत्री, एक लंबा समय सत्ता में, और वो भी तब जब वो सीधे मुख्यमंत्री बने, उससे पहले वो कभी भी किसी पद पर ना कभी उन्होंने चुनाव लड़ा था। गुजरात में भुज में जो भूकंप हुआ उसके बाद में वहां पर सत्ता परिवर्तन बीजेपी के भीतर हुआ, केशुभाई पटेल को हटाकर वहां पर नरेंद्र मोदी को वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर वहां पर जब लाया गया था, उसके बाद से लगातार उनकी पारी यहां पर चल रही है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए सेलिब्रेशन की बात है, क्योंकि वो अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर, अपनी छवि के बलबूते पर बीजेपी को लगातार सत्ता के भीतर रखा, और आज की स्थिति में पूरे देश में 22 राज्यों में बीजेपी की अपनी सरकार यहां पर हम नजर देख सकते हैं।
1: अगर गुजरात की पूरी उनका जो सफर रहा है, वहां से सीधा आप राजधानी दिल्ली पहुंचिए, तो वो साल था 2013, गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको कैंपेन कमिटी का अध्यक्ष घोषित किया गया। कई सारी उस समय बातें चल रही थी, बताया गया कि सुषमा जी भी चाहती थी, वो नहीं आ रही हैं बहुत, लेकिन इस सबके बीच राजनाथ सिंह ने बाकायदा ये ऐलान वहां पर किया, और बाहर आकर अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जो मैं भी वहां पर मौजूद थी मुझे याद है। और फिर दूसरी तरफ आप देखिए कि साथ के साथ उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, गृहमंत्री अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जाता है, और भारतीय जनता पार्टी 71+2 73 के प्रचंड जनादेश के साथ उत्तर प्रदेश की धरती पर ऐसी जीत दर्ज करती है जो आज तक उसके बाद भी वो वापस दोहरा नहीं पाए हैं। तो ये जो जोड़ी है वो भी अपने आप में गुजरात से लेकर दिल्ली तक चली, तो 2013-14 का वो पूरा कैंपेन कमेटी का उनका अध्यक्ष बनना, प्रभारी बनना उत्तर प्रदेश का, अमित शाह को अमित शाह के नेतृत्व में वहां पर चुनाव लड़ना, और उन सब के बीच ऐसी परफॉर्मेंस जिसके जरिए जबरदस्त जनादेश बीजेपी लाई। लेकिन साल 2019 में फिर एक जब जनादेश ऐसा आता है जो कि प्रचंड जनादेश ही कहलाएगा, क्योंकि 303 पहुंच जाती है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद अमित शाह अध्यक्ष पद छोड़ते हैं, अध्यक्ष उनको बनाया गया जब ये जीत मिली, और गृहमंत्री ने राजनाथ सिंह और अमित शाह दोनों की बहुत प्रशंसा की थी, उनको अध्यक्ष पार्टी का बनाया जाता है उनके परफॉर्मेंस की वजह से। वहीं दूसरी तरफ फिर आता है साल 2019, फिर उनको गृहमंत्री का वो पद लेते हैं, और ठीक वही फॉर्मूला जो गुजरात में चल रहा था, सीएम प्लस एचएम, यहां पर पीएम प्लस एचएम, और वहां अध्यक्ष का पद जो है वो छोड़ देते हैं और वो एचएम बन जाते हैं। और ये जगन्नाथ मंदिर है जमालपुर अहमदाबाद में, जहां पर अक्सर गृहमंत्री अमित शाह जाते हैं, उसी जगन्नाथ मंदिर में है वो मौजूद हैं इस वक्त।
18: मुझे एक बार फिर 2002 लेकर जाना है, क्योंकि 2002 में पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे और किसी सत्ता के पद पर पहली बार मोदी नरेंद्र मोदी विराजमान हुए थे। फरवरी में बाय इलेक्शन में राजकोट से वो चुनाव जीतते हैं, लेकिन 2002 के दिसंबर में जब बाय इलेक्शन बाकायदा जनरल इलेक्शन होते हैं गुजरात के भीतर में, तब वहां पर था मणिनगर से वो चुनाव जीतते हैं। तब पहली बार मैंने नरेंद्र मोदी को देखा था जब उनका इंटरव्यू किया था आज तक ने उस वक्त। मुझे अभी भी याद है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ये चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके सामने कई चुनौतियां थी, पार्टी के अंदर से भी उनके सामने चुनौती थी। उस तरीके से देखा जाए तो वो नए थे पार्टी में, इतने बड़े पद पर सीधे गुजरात में जितने बाकी बड़े नेता है उनके सामने सीधे नरेंद्र मोदी को लाकर वहां पर मुख्यमंत्री बनाया गया था, और सामने भी उनके सामने जो शंकर सिंह वाघेला कांग्रेस की तरफ से थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता रह चुके हैं। तो ऐसी लड़ाई से उनकी दरअसल राजनीतिक पारी शुरू हुई मुख्यमंत्री के तौर पर, जो यहां तक आकर पहुंची। 2019 के बाद हमने देखा कि लगातार वो सत्ता में बने हुए हैं।
1: अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम, कोलकाता में क्या हो रहा है?
4: जी अंजना, बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको हावड़ा ब्रिज, जो आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज है, वो किस तरीके से सजाया गया है वो आपको मैं दिखा रहा हूं। क्योंकि अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, तो इस बार बड़े पैमाने पर ये आयोजन किया गया है, सेवा संकल्प आयोजन किया गया है, और गंगा के तट को बहुत अच्छे से सजाया गया है। 1,00,000 दियों से, ई दियों से सजावट की गई है। ये जो विभिन्न जो लॉन्च होते हैं, जो स्टीमर्स होते हैं, उन पर आप देख सकती हैं सजावट जो की गई है। ये ठीक हुगली नदी का नारा है, कोलकाता के बीचों बीच बाजे कदमतला घाट है जहां पर विसर्जन भी होता है दुर्गा पूजा का। कुछ दिनों बाद विसर्जन हम देख पाएंगे यहां पर, तो उसी जगह पर यह सजावट की गई है। उसके आसपास का पूरा जो घाट है वो सजाया गया है। यहां पर दिए, ई दिए सजाए गए हैं, स्टीमर्स हैं, और हावड़ा ब्रिज को, जो आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज है, उसको लाइटों से उसकी साज सज्जा की गई है। तो फिलहाल ये आज का जो कार्यक्रम है यही कार्यक्रम है। इसके थोड़ी देर बाद धीरे धीरे और भी कई कार्यक्रम शुरू होंगे, खासतौर पर काफी दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम है। लेकिन आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ठीक इसी जगह पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, और चारों ओर गंगा के किनारों को दियों से सजा दिया गया है।
1: गंगा घाट को दियों से सजाया गया है। समर्थ वाराणसी से जुड़ गए हैं। समर्थ, आप दिखाइए तस्वीरें। कुछ देर पहले तो लोग दिया जला रहे थे।
6: बिल्कुल अंजना, फिलहाल दिए जो है, दिए प्रज्वलन पूर्ण हो चुका है, और इस वक्त जो है नमो घाट के नजारे कुछ वैसे ही हैं जैसे दिवाली के दौरान अयोध्या रामनगरी के होते हैं। आज क्योंकि एक तरीके से दिवाली कही जाएगी, जो गंगा मैया के बेटे हैं, यानी कि जो उन्होंने कहा एक दफा कि जो है माँ गंगा ने बुलाया है, वो यहाँ सार्थक होता, जीवंत होता दिखाई पड़ रहा है। कि किस तरीके से गंगा जी की घाट, यानी कि गंगा जी एक तरफ है नमो घाट में मेरे ठीक इस तरफ, और उसी के इर्द गिर्द यहाँ पर ये जो दिए हैं वो बिछा दिए गए हैं। आप तस्वीरों में देखें तो इस तरीके से खूबसूरती से इस तरह से तमाम दियों को यहाँ पर जला दिया गया है, इन्हें प्रज्वलित किया गया है, और कुछ इस तरीके से काशी जो है, तो एक तरफ जो है गंगा आरती भी चल रही है। आइए थोड़ा सा करीब लेकर चलते हैं, यहाँ पर तमाम परिवार भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो यहाँ पर इस जगह का, इस इवेंट में सहभागिता दे रहे हैं, और वो मेन एरिया है जहां पर दिए प्रज्वलन है। ओम स्वास्तिक, अलग अलग डिजाइन से जो बच्चे हैं उन्होंने ये दिए प्रज्वलित किए हैं प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर। ये देखिए, ये जो है स्वास्तिक है, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं तस्वीरों में कि ये देख सकते हैं, ये एक तरीके से स्वास्तिक की तरह इसको यहां बना दिया गया है। और इसके अलावा पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहां पर ओम की प्रकृति की तरह बना हुआ है, तो जो ओम का सिंबलाइज किया है यहां पर, वो भी यहां पर दिखाई पड़ रहा है। तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग भांति से यहां पर दियों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। हमने देखा कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जब वहां मौजूद थे तो बाइक्स निकली थी, और अब ये मनमोहक दृश्य है। एक बार वाइड फिल्म दिखा दीजिए दर्शकों के लिए कि एक तरफ गंगा की वो घाट, एक तरफ माँ गंगा की वो आरती, तो दूसरी तरफ ये देखिए छोटे छोटे बच्चे परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। आइए इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक परिवार है, कैसा महसूस कर रही है यहाँ पर, कैसा लग रहा है?
20: बहुत अच्छा लग रहा है।
6: तो प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी
20: है। हाँ, मोदी जी का जन्मदिन है।
6: अच्छा, सांसद है आप क्या?
20: हाँ,
21: माननीय सांसद हैं मोदी जी। 76 ईयर ओल्ड का जन्मदिन आज मनाया गया है, और आज इधर जन्मदिन मनाया जा रहा है, इधर बगल में गंगा आरती आपकी हो रही है, और ही भव्यता को
0: सोने पर सुहागा।
21: हाँ, सोने पर सुहागा हो रहा है। और आपको आज तो ये भी हमारे 17 तारीख को आज मनाया जा रहा है उधर।
0: तो भाई साहब को मजा आ रहा है?
21: हाँ, इनको अच्छा लग रहा है। हाँ
0: ये खूबसूरती है काशी की, अविनाशी काशी, महादेव की नगरी काशी, और प्रधानमंत्री मोदी का इम्पैक्ट ये है इस काशी में कि आप रैंडमली किसी से भी यहाँ बात कर लीजिए, कोई परिवार हो, मैंने भी कुछ देर पहले बच्चों से बात की, और रैंडमली बात कर ले तो जो भाव निकल कर सामने आता है, और वो क्यों ना हो, क्योंकि पिछले 2014 से अगर आप देखें, जब से वो एमपी बने, जो बदलाव बनारस ने देखा है, जो विकास देखा है, और जिस घाट से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये पूरी घाट का विकास अगर आप यहाँ देखें, ये हेलीपैड का एरिया, और सामने की तरफ नमो घाट है, और वहां गंगा आरती चल रही है। पहले गंगा आरती कुछ ही स्थानों पर होती थी, अब जो है अधिक स्थानों पर होती, तो ये बदलाव है, बदलाव की बयार है जो समय के साथ हुई है। देव दीपावली आप देखती किस तरीके से मनाते हैं यहाँ पर, तो ये प्रधानमंत्री मोदी की नजर बनारस में हमेशा रहती है, छोटे से छोटा काम होता है। अभी बाढ़ आई,
18: हजारों साल से चली आ रही हिंदू संस्कृति का शहर वाराणसी जाना जाता है अंजना, कितना बड़ा गेम चेंजर माना गया था 2014 में। ये देखिए, ये तस्वीरें यहां पर गंगा घाट की तस्वीरें वाराणसी के, ये उज्जैन की तस्वीरें हैं दरअसल। लेकिन अंजना, कितना गेम चेंजर था ये कि एक पश्चिम भारत से एक नेता आता है और वो चुनाव लड़ते समय, लोकसभा का चुनाव लड़ते समय वाराणसी सिलेक्ट करता है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उज्जैन में मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और वहां पर दिया जलाने का उनका कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। कितनी अहम बात थी कि वडोदरा में, वडोदरा से वो चुनाव लड़ रहे थे और उसके साथ साथ दूसरा चुनाव क्षेत्र वाराणसी उन्होंने चुना, और उसके बाद वाराणसी से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं 2019 और 2024।
1: बहुत बड़ी बात थी वो, इसलिए क्योंकि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर गृहमंत्री अमित शाह हो, उनको एक बात क्लियर था कि उत्तर प्रदेश जो है यहीं से रास्ता निकलता है भारत का, और दिल्ली का जो रास्ता है
18: सत्ता का रास्ता,
1: बिल्कुल सत्ता का रास्ता, और ऐसे में उत्तर प्रदेश को अपनी कर्म भूमि बनाना शायद उस रणनीति का एक बहुत ही सफल सोचा समझा हिस्सा था, और वही कारगर साबित हुआ, क्योंकि वाराणसी से आप सिर्फ वाराणसी नहीं, आप उत्तर प्रदेश के कोने कोने को छू लेते हैं, आप अलग अलग जगहों को छू लेते हैं, उन तमाम श्रद्धालुओं को छू लेते हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर आते हैं, जो बाबा के पास पहुंचते हैं, मतलब सब हर हिंदू कभी ना कभी वहां पर जाने की जरूर सोचता है कि भाई हमको बनारस जाना है। अब उस बनारस से ही अगर आप चुनावी रणभूमि बना ले तो आप सबके साथ एक संपर्क साध लेते हैं, और वो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी मुझे लगता है, जो कि 2013-14 में जिसने भी फाइनलाइज की कि वहां से उनको चुनाव लड़ना,
18: और उसी उत्तर प्रदेश के जिम्मेदारी जो है अमित शाह को दी गई थी एज अ जनरल सेक्रेटरी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के, और वहीं से दरअसल राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने की शुरुआत यहां पर हुई थी, और इसीलिए जो वाराणसी में हो रहा है वो जरूरी है। लेकिन जहां से ये पूरी यात्रा शुरू हुई उस अहमदाबाद की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि जगन्नाथ मंदिर जो वहां पर है, वहां पर गृहमंत्री अमित शाह और उनके साथ साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, वहां पर हम देख सकते हैं हर्ष संघवी जो मुख्यमंत्री है गुजरात के, वो भी आप देख सकते हैं, और वहां पर वो आरती वहां पर करें, और दूसरी तस्वीरें उज्जैन की जहां पर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पर गए।
1: तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन वडनगर से वाराणसी तक और उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, तो ऐसा नहीं है, अगर आप देखिए तो गांधी परिवार ने भी अगर इलाहाबाद को चुना कि भाई इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है, वहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीतते थे, चुनाव लड़ते थे, लाल बहादुर शास्त्री वहां से लड़े, रायबरेली चुनती है इंदिरा गांधी, तो एक पूरा जो सिलसिला रहा है उत्तर प्रदेश से कैसे अपनी चुनावी रणभूमि बनाने का, वो एक बहुत, आप अमेठी से राजीव गांधी लड़ते रहे, तो इससे आप देख सकते हैं कि हालांकि बाकी जो नेता जो पीएम बने उसमें चौधरी चरण सिंह बागपत से थे ही, लखनऊ से वाजपेयी जी लड़ते रहे, इस चंद्रशेखर बलिया से, तो हालांकि ये लोग थे उस जगह के, लेकिन अगर आप अन्य ऐसे परिवारों को देखें तो गांधी परिवार से एक पूरी लंबी लिस्ट है जिसमें इलाहाबाद से लेकर रायबरेली अमेठी को चुना गया अपने चुनावी क्षेत्र के लिए, वैसे ही नरेंद्र मोदी ने वाराणसी चुना।
3: स्वयं सेवक,
1: चूंकि वाराणसी पर इतना फोकस भी है, और देखिए एक बहुत मुझे लगता है कि आंदोलन के बाद सबसे बड़ी जो परीक्षा इस सरकार के लिए है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान होगी, और यूपी का चुनाव भी करीब है, ऐसे में एक नजरिया इसको देखने का ये भी हो सकता है कि इस मौके पर बीजेपी अपना एक संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में है।
18: समर्थ, अगर आपको आवाज आ रही है, अंजना ये पूछ रही है कि क्या वाराणसी के जरिए क्या संदेश, क्योंकि आप पहली चुनौती इस कार्यक्रम के बाद होगी वो उत्तर प्रदेश के भीतर ही होगी।
6: बिल्कुल साहिल और अंजना, ये एक बात साफ है कि आज जिस तरीके से एनडीए का शक्ति प्रदर्शन स्टेज पर हुआ, आप देखें ना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर से पश्चिम दक्षिण सब साथ लिया, पासवान, चिराग पासवान बिहार से आ गए, वहां पर जो है नायडू साहब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी आ गए, और सब एक तरीके से एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले संजय निषाद का एक प्रकरण हुआ, उन्होंने भी अब वापस में एक तरीके से पलटी मार ली है। अगर आप बनारस की बात करें तो ये तो एक अध्यात्म का एक ऐसा क्षेत्र है प्रधानमंत्री मोदी को, जिसने हमेशा अग्रसर किया है, तो ये जिस तरीके से दिया प्रज्वलन है, गंगा आरती है, तमाम चीजें हैं, एक वोटर के भी दिमाग में जहन में एक चीज जाती है। अगर आप यहीं की बात कर ले बनारस की, जो डेवलपमेंट 14 के बाद से हुआ, मैं एक परिवार से ही बात कर रहा था, रैंडमली मैंने उनके माइक लगाया और उनसे रैंडमली मैंने पूछा, तो एक जो रैंडम थॉट निकल कर सामने लोगों के आता है वो ही आगे चलकर चुनाव में वोट में तब्दील होता है। हमने पहले भी देखी है ये सारी चीजें, और यूपी का चुनाव भी नजदीक आ रहा है।
18: बात यह है कि एक कार्यक्रम बीजेपी का है, प्रधानमंत्री मोदी की राजनीतिक यात्रा के 25 साल सत्ता में आने के बाद की, उसका जश्न एक तरीके से बीजेपी यहां पर बना रही है, लेकिन सहयोगी पार्टियों के नेता भी और सहयोगी पार्टियों के अध्यक्ष भी इसमें शामिल किए गए हैं। चिराग पासवान का जिक्र किया गया, एकनाथ शिंदे वहां पर वडनगर पहुंचे थे, यहां पर चंद्रबाबू नायडू वहां पर पहुंचे थे, और महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया पर यह कार्यक्रम हो रहा है।
1: एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाने की कोशिश है कि भाई ये एनडीए के सारे सहयोगी भी, क्योंकि ये वाकई एक ऐसा वक्त है जब शायद भारतीय जनता पार्टी को, अगर आज की ही जेन जी

0: जी बिल्कुल अंजना, देखिए गेटवे ऑफ इंडिया के सामने हम देख रहे हैं किस तरह से आशीर्वाद का दिया जलाया जा रहा है पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर, और यहाँ पर मौजूद सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता ही नहीं लेकिन खास तौर पर जेंजीज भी इसमें शरीक होते नजर आ रहे हैं। नेता अतुल शाह हमारे साथ है, क्या है ये, मतलब जेंजी काफी दिखाई दे रहे हैं? कहा
1: बिल्कुल जेंजी दिखाई देगा, क्योंकि 25 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है मोदी जी का, उन्होंने क्या नहीं किया।
0: और ऑपरेशन सिंदूर क्यों,
1: ये क्यों नहीं ऑपरेशन सिंदूर, जब पहलगाम में इतनी बड़ी चीज हुई तो वहां जाके ठोक के मारेंगे, ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये लोग भूले नहीं है और दुनिया भी नहीं भूली है, पाकिस्तान भी नहीं भूला है, और पहलगाम का हमने, और आगे कोई हिम्मत नहीं करेगा। और विकसित भारत साथ में आज देश कहाँ के कहाँ पहुंच गया, जब मैं छोटा था गैस के लिए टेलीफोन के लिए एमपी की चिट्ठी, आज सबको सब कुछ मिल रहा है, गरीबों को गैस है, वहाँ पर डेवलपमेंट है, यूपीआई है, क्या नहीं है, तो वहाँ जाके ठोक के मारेंगे, ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये लोग भूले नहीं है और दुनिया भी नहीं भूली है, पाकिस्तान भी नहीं भूला है, और पहलगाम का हमने, और आगे कोई हिम्मत नहीं करेगा। और विकसित भारत साथ में आज देश कहाँ के कहाँ पहुंच गया, जब मैं छोटा था गैस के लिए टेलीफोन के लिए एमपी की चिट्ठी, आज सबको सब कुछ मिल रहा है, गरीबों को गैस है, वहाँ पर डेवलपमेंट है, यूपीआई है, क्या नहीं है।
2: बिल्कुल, तो तस्वीरें आप मुंबई से लेकर देख रहे हैं अलग अलग जगहों की, बीजेपी अलग अलग कार्यक्रम ये कर रही है। एक बार फिर से अगर समर्थ के पास चलें, समर्थ आपसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि काफी प्लानिंग के साथ किया होगा, अगर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, यहाँ हमने देखा वडनगर में जहां पर गृहमंत्री थे वहां पर एकनाथ शिंदे पहुंचते हैं, तो पूरा एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है पहले से।
3: अंजना देखिए, यूपी के साथ ये है कि जातीय गोलबंदी भी बहुत जरूरी है, और विपक्ष जिस तरीके से पीडीए के नारे के साथ सामने आया है, बीजेपी उसकी कार्ड भी ढूंढ रही है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाशिव पुराण में गए थे, रायबरेली के ऊंचा हार में मनोज पांडे के द्वारा वो कराई गई। अब जो सनातन है बनाम सियासी गोलबंदी का भी एक मुकाबला उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रहा है। अब आज की अगर आप बात कर ले, तो मैं स्टेज की बात अभी कर रहा था, नेता भले अलग राज्य के हों या अलग जगह से हों, उनका जाति जो है वो जाति समीकरण भी बीजेपी साधने में बहुत माहिर है, हमने ये पुराने चुनावों में देखा है, चाहे पुराना आपका 17 का चुनाव रहा हो, 22 का इलेक्शन रहा हो, और अब 27 का विधानसभा का चुनाव सामने आ रहा है। तो ऐसे में जातीय गोलबंदी जो विपक्ष की है, उसका उसी की भाषा में कैसे जवाब दिया जाए, और दूसरा सनातन के जरिए जो महाप्रहार ऐसा किया जाए कि विपक्ष के पास उसका जवाब ना हो। अगर आप मुख्यमंत्री की पिछले एक महीने की रैलियों को देख लें, या यूं कहें जो उनके इवेंट्स होते हैं, उनके जो बयान हैं, उनके जवाब अगर विपक्ष दे तो फंसे, ना दे तो फंसे, तो कुल मिलाकर विपक्ष के पास ये बोलने के अलावा कुछ नहीं बचा कि सांप्रदायिक मामलों में हम नहीं बोलेंगे, या बीजेपी सांप्रदायिक मामलों को जानकर आगे बढ़ाती है। अब होता क्या है कि वोटर के दिमाग में क्या जा रहा है, क्या वो उसके लिए लिटरली सांप्रदायिक मामले हैं, अगर है तो उसका वोट।
2: उदय महुरकर लंबे वक्त तक इंडिया टुडे ग्रुप के साथ भी काम कर चुके हैं, और हमारे मैगजीन को लंबे वक्त तक उन्होंने गुजरात में देखा है, वो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और ऑथर है, फॉर्मर सीआईसी हैं, उन्होंने किताब लिखी सेंटर स्टेज इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस,
4: और कई सालों तक अहमदाबाद से उन्होंने रिपोर्टिंग की है। प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री बनते हुए और उसके बाद मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की तरफ उनकी जो यात्रा रही अहमदाबाद से दिल्ली तक, उसमें भी उदय बाहुरकर वो भी काफी नजर।
3: ना दे तो फंसे, तो कुल मिलाकर विपक्ष के पास ये बोलने के अलावा कुछ नहीं बचा कि सांप्रदायिक मामलों में हम नहीं बोलेंगे, या बीजेपी सांप्रदायिक मामलों को जानकर आगे बढ़ाती है। अब होता क्या है कि वोटर के दिमाग में क्या जा रहा है, क्या वो उसके लिए लिटरली सांप्रदायिक मामले हैं, अगर है तो उसका वोट।
2: उदय महुरकर लंबे वक्त तक इंडिया टुडे ग्रुप के साथ भी काम कर चुके हैं, और हमारे मैगजीन को लंबे वक्त तक उन्होंने गुजरात में देखा है, वो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और ऑथर है, फॉर्मर सीआईसी हैं, उन्होंने किताब लिखी सेंटर स्टेज इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस,
4: और कई सालों तक अहमदाबाद से उन्होंने रिपोर्टिंग की है। प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री बनते हुए और उसके बाद मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की तरफ उनकी जो यात्रा रही अहमदाबाद से दिल्ली तक, उसमें भी उदय बाहुरकर वो भी काफी नजदीकी से उदय बाहुरकर ने देखी हुई, उनके पूरे हुए इसलिए या कोई और कारण आप देखते हैं उसमें?
5: नहीं देखिए, हर साल आयोजन तो होता ही है उनके जमे ही है, लेकिन 12 साल में जो प्रगति हुई, देखिए आप चाइना का ले लीजिए, ठीक है, 3400 किलोमीटर की बॉर्डर है हमारी चाइना के साथ में, और हमेशा जो पिछली सरकार

0: रही थी, वो डरती थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में इस बॉर्डर पे, क्योंकि इतना एक चाइना का इतना इतना प्रेशर था हमारे पे। आज पहली बार हम आज हम पहली बार जो आज पहली बार हम मिकल से गए 50 साल के अंदर, हम बिना रोक टोक हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारी साइड के जो बॉर्डर है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप हो रहा है। आप विदेश नीति देखें, विदेश नीति के अंदर मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी से अच्छा काम कोई कर नहीं सकता था, लोग कितनी भी उनकी टीका करें। आप देखिए इतना बड़ा काम किया, G20 में उन्होंने पहली बार अफ्रीकन नेशन, अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाया, एसोसिएट मेंबर। अफ्रीकन देशों का लोगों ने सिर्फ उपयोग ही किया है, जो सो कॉल्ड सुपर पावर्स हैं, वो अमेरिका हो, वो चाइना हो।
1: ठीक है उदय जी, देखिए आज आज आज जो स्थितियां हैं उस पर तो चर्चा लंबा चलता ही है। थोड़ा अपने शुरुआती दिनों से कुछ बताइए, आप क्या परिवर्तन देखते हैं उनकी पूरी शख्सियत में, उनका पूरा जो सफर रहा है सीएम टू पीएम वाला, क्या देखते हैं आप उसमें, जब वो और कुछ ऐसा जो आपने करीब से देखा हो जो हमारे दर्शकों के लिए नया हो।
0: देखिए मैंने उनको बहुत करीब से देखा है, मैं उनको 39 साल से जानता हूँ, 39 ईयर्स से, उसमें 37 ईयर से बिल्कुल करीब से जानता हूँ, क्योंकि वो ऐसे नेता थे जो हमेशा संपर्क में रहते थे। तो मैं मानता हूं कि उनके पास विजन है, उनके पास रिजोल्यूशन है, उनके पास एक मक्कम था जिसको बोलते हैं वो है। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने की बारी आई, उस टाइम पे लोगों ने कहा कि भाई ये गुजरात नहीं है भारत, उस टाइम पे मैंने ये कहा था कि गुजरात से भी अच्छा काम वो नेशनल स्टेज पे करेंगे। ये बात आज सही साबित होती है। बात करें गुजरात के दिनों की, तो उनकी दृष्टि, उनका देखने का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। जैसे कि उन्होंने देखा, मैं एक स्कूल का दाखिला दूंगा आपको, स्कूल में उस टाइम पे बेटियां कम आती थी, तो उन्होंने एक शाला प्रवेशोत्सव नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर पहली बार गांव में जाके 2 दिन रहते थे और बेटियों के मां बाप को कहते थे कि आप स्कूल में भेजिए। उसमें से क्या बात निकल के आई, उसमें से यह बात निकल के आई कि जो शौचालय है गांव के अंदर वो एक ही है। जो जो बेटे को नहीं भेजते थे, उनके ज्यादातर मां बाप ये चाहते थे कि बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए अलग शौचालय हो। ये उनके एक विजन है। दूसरा, एक बार वो स्विट्जरलैंड गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे रिवर फ्रंट बड़ा अच्छा था, रिवर फ्रंट। वहां से वापस आए वो, हमारे जो कमिश्नर थे आईपी गौतम, म्युनिसिपल कमिश्नर, बड़े ईमानदार अच्छे ऑफिसर थे, उनको बुलाया उन्होंने। उन्होंने कहा देखो गौतम, मुझे यहाँ पे जो काकरिया तालाब है हमारे यहाँ, बड़ा हिस्टोरिकल तालाब है, 600 साल पुराना है, 500 साल पुराना है, तो इसको मुझे बढ़िया रिवर फ्रंट के रूप में डेवलप करना है, लेकिन हमें कॉपी नहीं करनी है। तो फिर रिसर्च किया गया और जकार्ता का रिवर फ्रंट जो है उसमें अच्छा माना गया हमारे स्थिति के लिए। तो यहां से 3 ऑफिसर
2: नहीं, एक और एक चीज उदय आपसे ये जाना चाहेंगे, उदय माहुरकर आपसे और एक चीज जाना चाहेंगे कि खास करके गुजरात में 2002 में जब वो सत्ता में आए, उससे पहले जब उनको पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस वक्त गुजरात भुज के भूकंप से गुजर रहा था, उसके बाद जो स्थिति वहां पर थी गुजरात में, रिहैबिलिटेशन से लेकर वो सारी चीजों से जूझ रहे थे, उसके बाद गुजरात में दंगे हुए, लंबे समय तक गुजरात की छवि पर उसका एक असर रहा, लेकिन उसके बाद वाइब्रेंट गुजरात के जरिए उन्होंने धीरे धीरे अपनी छवि बदलना शुरू किया। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा हमने, उसके बाद वही मॉडल लेकर 2014 में वो विकास का मॉडल देश के सामने रखा,
0: वाइब्रेंट गुजरात भी है,
2: तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने
0: समय बड़ा जो उन्होंने काम किया वो था 24 घंटे डोमेस्टिक पावर सप्लाई देने का, जो आज 20 से 24 घंटे डोमेस्टिक पावर सप्लाई पूरे देश में आता है, उसके जनक श्री नरेंद्र मोदी हैं। और वो कैसे हुआ, उसको मैं विटनेस हूं कैसे हुआ। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जब 2002 में चुन के आ गए, उन्होंने कहा कि मुझे एक रास्ता अपनाना है विकास का, तो उन्होंने मीटिंग बुलाई ऑफिसरों की, उनको कहा कि मुझे भाई 24 घंटे डोमेस्टिक सप्लाई पावर सप्लाई करना है, मतलब घर के अंदर बिजली 24 घंटे आनी थी। तो एक छोटा सा ऑफिसर था, उसने ये कहा कि साहब इसका रास्ता एक ही है कि 2 फीडर लाइन हर एक गांव में डाल दी जाए। अभी जो फीडर लाइन है उसमें से जो एग्रीकल्चरल पर्पस का जो पावर है वो भी ड्रॉ होता है और डोमेस्टिक का भी ड्रॉ होता है, और जो पावर कट लगता है वो लगता है एग्रीकल्चरल पावर एग्रीकल्चरिस्ट को, क्योंकि उसमें पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, डोमेस्टिक पावर कंजम्पशन बहुत कम होता है, तो उसको जो दूसरे ऑफिसर आए थे उस छोटे ऑफिसर उन्हें शांत कर।
3: उत्तराखंड वासियों की ओर से उनके दीर्घायु रहने के, उनके स्वस्थ रहने के और चिरकाल तक लंबे समय तक उनका नेतृत्व देश को मिलता रहे, इसके लिए माँ यमुना से प्रार्थना करता हूँ, माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ, हमारे बाबा केदार, भगवान बद्री विशाल, सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और साथ ही आज ये जो यमुना जी का आज घाट हमारे प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर आज जिसका लोकार्पण हुआ है, ये हरिपुर यमुना घाट जो कभी पौराणिक काल में एक भव्य शहर हुआ करता था, यहाँ माँ गंगा की जैसे आरती होती थी, आज से लगभग 4 साल पहले इसका हमने एक स्वप्न देखा, एक संकल्प लिया कि माँ यमुना के पुराने वैभव को पुनः वापस लौटाएंगे, इस क्षेत्र में भी वैसे ही पूजा होगी, वैसे ही आरती होगी, और चूंकि ये जौनसार भावर का मुख्य द्वार भी है, चारधाम यात्रा भी यहाँ से शुरू होती है, आज मुझे खुशी है कि आज इसके पहले चरण के घाटों का माँ यमुना जी के यहाँ पर लोकार्पण हो गया है, आज शुभारंभ हो गया है, साथ ही माँ यमुना जी की प्रतिमा का भी अनावरण हो गया है। आने वाले समय में ये स्थान हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए, दर्शन करने वालों के लिए, तीर्थयात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप।
1: तो तमाम राज्यों में, तमाम शहरों में ये इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है। आइए आपको पीयूष के पास एक बार फिर से लिए चलते हैं। पीयूष, मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हो रही थी, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, इस वक्त क्या हो रहा है?
4: जी अंजना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ कुछ दिल्ली के सांसद भी मौजूद थे, वो सब फिलहाल इस दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के बाद जा चुके हैं, लेकिन ये पूरा इलाका जगमगा चुका है अलग अलग दीपों के माध्यम से। आप देखिए लगभग 1,25,000 दिए जल रहे हैं, और ये देखिए जो ये जो श्रेणी दिख रही है आपको, जो श्रृंखला दिख रही है दीयों की, ये दर्शाता है कि कैसे एक दिवाली जैसा माहौल पूरे इस इलाके में हो गया हो, और 1, 2, 3 कम से कम 4 से 5 पंक्तियां सिर्फ दीप जले हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे, और ये जो दीप है वो जल रहे हैं सेवा तीर्थ के ठीक सामने, और सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का नया कार्यालय है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर लिखी हुई है, सेवा तीर्थ नागरिक देवो भवा, यानी कि नागरिक देव देव के समान, और उनके लिए काम प्रधानमंत्री पिछले काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि वो नागरिकों को देव की तरह पूछते हैं, लेकिन उन्हीं के दफ्तर के ठीक सामने आज दिल्ली वासी पहुंचे, भारी संख्या में यहां पर पहुंचे और 1,00,000 से ज्यादा दिए जलाकर आशीर्वाद का दिया इसका नाम रखा, और एक बड़ा पोस्टर भी यहां पर लगा हुआ है, मैं उसकी भी एक बार आपको झलक दिखा दूं। देखिए यहां पर लिखा है सेवा के 25 साल, सुशासन, गरीब कल्याण, राष्ट्र निर्माण, आशीर्वाद का दिया, जिसने जीवन संवारा उसे आशीर्वाद हमारा। तो जिसने जीवन संवारा उसे आशीर्वाद हमारा, इस मैसेज के साथ दिल्लीवासी यहां पर पहुंचे और आशीर्वाद का दिया उन्होंने यहां पर जलाया है, और 1,00,000 से ज्यादा दिए यहां पर जले हैं। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है अंजना, कि जिस जगह पर ये कार्यक्रम हुआ, इससे पहले भी हम जब चर्चा कर रहे थे, मैंने इस बात का जिक्र किया था कि कैसे ये वो जगह है जिसने कई पिछले काफी लंबे समय से इतिहास बनते हुए देखा है, ये वो जगह है जहां पर कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई, कई सरकारें आई और कई सरकारें चली गई, लेकिन पिछले 3 टर्म से मोदी सरकार का जो दबदबा रहा है वो देखते बनता है। ठीक मेरे पीछे जो जगह है ये नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है, इससे पहले जो सरकारें रही, और हालांकि कुछ दिनों पहले तक भी यहां पर 4 बड़े मंत्रालय थे, लेकिन अब इनका इनमें जो ऑफिस थे वो शिफ्ट होके नए ऑफिस में चले गए, कर्तव्य भवन बन चुके हैं और वहां पर ही ऑफिस शिफ्ट हो गए हैं। साथ ही साथ यहां पर 2 पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी आपको दिख रही है, एक पुरानी और एक नई। जो नई बिल्डिंग है यहां पर हमने एक इतिहास बनते हुए देखा है, बड़े बड़े बिल पास होते हुए देखे हैं, पुरानी बिल्डिंग से हमने आर्टिकल 370 के अलावा कई बड़े बड़े कानूनों को रद्द होते हुए भी देखा है। तो बड़े फैसले इसी जगह से लिए गए हैं, और पिछले 12 साल से ज्यादा का समय हो गया है जब संसद में प्रवेश किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस वक्त शीश झुकाया था उसकी सीढ़ियों पर संसद भवन की, और आज जब 12 साल से ज्यादा का समय उनका हो गया और 25 साल वो 7 अक्टूबर को जब पूरा कर लेंगे, उसी के उपलक्ष में दिल्ली वासी भारी संख्या में यहाँ पर उमड़ पड़े और लगभग 1,25,000 दिए जो है वो जलाए गए और इस पूरे इलाके में जो दीप जल रहे हैं उससे पूरा इलाका जगमगा उठा है और ये दीप सेवा तीर्थ के ठीक सामने जल रहे हैं और एक मैसेज दिल्ली वालों की तरफ से प्रधानमंत्री को दिया गया है कि हम ये आपको और आशीर्वाद देने के लिए दिया जला रहे हैं। और आपको याद होगा आज दिन में प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट भी लिखा था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम मनाया जा रहा है इससे उनको और ताकत मिलती है ताकि वो देशवासियों के लिए और बेहतर तरीके से काम कर सके। तो अलग अलग कार्यक्रम होने जा रहे हैं, आज से इसकी शुरुआत है।
2: अभी एक महीने तक जिक्र उदय यहां पर कर रहे थे,
4: बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग लोगों तक पहुंचेंगे।
2: एक महीने तक ये कार्यक्रम इसी तरीके से चलते रहेंगे, लेकिन जिसका जिक्र उदय माहुरकर भी कर रहे थे अंजना, कि पहली बार हम देख रहे हैं कि जो पिछले डेढ़ महीने में हम अलग अलग तरीके की घटनाएं हमने देखी, जंतर मंतर से लेकर अभी जो यूपीआई के यूपीआई पे जो चार्ज लगेगा एमडीआर का उसको लेकर भी जिस तरीके से बात हो रही है, उस बीच इतना बड़ा आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनकी सारी सहयोगी दल उसमें शामिल हो रहे हैं, तमाम मुख्यमंत्री उसमें शामिल हो रहे हैं, तमाम पार्टियों के अध्यक्ष उसमें शामिल हो रहे हैं, एक नई ताकत इस देश में बीजेपी को दिखाने की जरूरत लग रही है।
1: मुंबई से जुड़ गए हैं ऋतिक।

0: आज मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दीर्घायु होने की कामना करते हुए यह दिया जलाया है और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह दीर्घायु हों, वह स्वस्थ रहें और विकसित भारत के लक्ष्य को तक ही प्राप्त किया जा सके।
1: हम सब इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर हैं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का पावन जन्मदिन 25 दिसंबर 2025 को इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण सरदेय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से निर्मित और उन्हीं के कर कमलों से लोकार्पित भी हुआ है। मैं आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर यहाँ के माननीय लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों के साथ, आशीर्वाद के इस पेय के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प के साथ हम सब जुड़ने के लिए राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर लाखों की संख्या में जगमगाते हुए दीपक उन संकल्पों के साथ जुड़ने का आह्वान कर रहा है। प्रधानमंत्री जी को उनके पावन जन्मदिन की हार्दिक बधाई और उनके इस राष्ट्र रक्षा के इस अभियान में, विकसित भारत के इस अभियान में जुड़ने वाले सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन।
2: आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं और हम सभी भारतीय अपने प्रधान सेवक के लिए आशीर्वाद का दिया जला रहे हैं। यह दिया उनके दीर्घायु, स्वास्थ्य और देश के लिए उनके निरंतर सेवा भाव का प्रतीक है। मोदी जी ने देश को मजबूती, विकास और आत्मनिर्भरता का नया पथ दिखाया है। उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है। भगवान उन्हें शक्ति दे ताकि वो भारत को विकसित बनाने की यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। मोदी जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
3: विजय त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय जी, कैसे देखेंगे आप 25 साल की यात्रा और उसके बाद बीजेपी जिस तरीके से इसे नेशनल इवेंट की तरह पेश कर रही है?
4: साहिल, बीजेपी वैसे भी उत्सव धर्मी पार्टी है, वो हर कार्यक्रम को उत्सव के तौर पे बदलती है। और प्रधानमंत्री जी का 25 साल का आपने भी देखा, हम लोगों ने देखा, अंजना ने भी देखा। 2001 से मुझे याद है कि वहाँ पर जो हुआ, भूकंप हुआ, और उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी मिलती है। और आपने जो इलेक्शंस का जिक्र किया, वो उन्होंने, वो भी एक बड़ा रिस्क का काम था। उन्होंने अर्ली इलेक्शंस अनाउंस करवाए थे 2002 में, जुलाई में विधानसभा को भंग करके दिसंबर में इलेक्शंस हुए थे। वो भी एक बड़ा रिस्क था क्योंकि उससे पहले कुंभ हुआ था और उसके बाद वहाँ पर दंगे हुए थे, उसके बाद लगातार कार्यक्रम हुआ। आज जो कार्यक्रम हो रहा है वो बड़ा कार्यक्रम है। बीजेपी का ये स्टाइल ऑफ वर्किंग भी है, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग भी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी चुनौतियाँ कम नहीं हैं। पिछले 3 महीने बड़े मुश्किल निकले सरकार के, और आने वाला वक्त जो है यूपीआई को लेकर या खासतौर से महिला बिल को लेकर, डिलिमिटेशन को लेकर भी सरकार के पास बड़ी चुनौतियां हैं। उसको वो कैसे पार करेगी, ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का चुनाव का जिक्र बार बार हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव का जो 2024 का नतीजा है, वो झटका जो है अभी शायद भारतीय जनता पार्टी के दिलो दिमाग से निकला नहीं है। और सिर्फ विकास से चुनाव जीता जाता हो ये वहाँ पर दिखाई देता है, तो वो चुनौतियाँ अभी हैं। मैं आज सुबह देख रहा था कि अखिलेश जी ने अपना रथ पीडीए करके चला दिया है, और उसमें पीडीए में आखिर में ब्रैकेट में उन्होंने लिखा अल्पसंख्यक मुस्लिम। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव कहाँ जाने वाला है, वो चुनौतियाँ भी भारतीय जनता पार्टी के पास होंगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पॉलिटिकल पैराडाइम बदल दिया पूरा का पूरा। जो 60 साल 70 साल हम लोग माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते थे, उसको पूरी तरह से बदल कर एक नए पॉलिटिकल पैराडाइम पर आज देश है जहां पर
3: यही दिलचस्प तस्वीर है विजय जी, ये जो दिए जलाए जा रहे हैं ना कोलकाता से लेकर मुंबई तक
4: जी,
3: और यहाँ पर हरियाणा में भी हमने देखा, उसके साथ साथ कर्नाटक में भी हमने देखा, वहां पर चंद्रा बाबू नायडू भी वहां पर आंध्र प्रदेश में हमें उसी दिखाई दे रहे हैं, दिया हाथ में लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वडनगर जा रहे हैं बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, जो कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री मोदी के नरेंद्र मोदी के 2014 में नेशनल स्टेज पर आने के बाद एक पॉलिटिकल जो डेफिनेशन है कई सारी चीजों की वो पूरी तरीके से बदल गई है, पॉलिटिकल भाषा पूरी तरीके से बदल गई है, सूत्र सारे बदल गए हैं, राजनीति किस तरीके से खेली जानी चाहिए यही तो विस्तार पूरा दिखाता है।
4: बिल्कुल ठीक बात है। और एक और बड़ा बदलाव ये भी हुआ कि गठबंधन की सरकारों का दौर हमने देखा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर है और मोटे तौर पर उसे गठबंधनों की जरूरत नहीं है। आज वैसे 240 के साथ उनको जरूरत है, लेकिन जब नहीं थी जरूरत तब भी उन्होंने अपने सहयोगी दलों को साथ रखा। दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति में जहां गठबंधन के लिए सहयोगी दलों की जरूरत है वहां उनकी परवाह नहीं की गई, तो वो जो एक राजनीति में बड़ा अंतर दिखाई देता है वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। आज जो सारा कार्यक्रम हो रहा है, वैसे तो ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का हो सकता था केवल, लेकिन उन्होंने अपने सभी सहयोगी दलों को बुलाने की कोशिश की और दिखाने की भी कोशिश की कि वो सब लोग उनके साथ हैं। हालांकि नीतीश कुमार जी की अनुपस्थिति मुझे थोड़ी सी खल रही है कि क्या वजह है कि वो नहीं है, किस वजह से यहाँ पर नहीं है, और जनता दल यूनाइटेड के लोग इस पूरे कार्यक्रम में नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू वहां पर मौजूद होना अपने आप में एक बड़ी बात है। चिराग पासवान जो अभी तक कभी कभी खुश रहते हैं कभी नाराज होते हैं वो भी वहां पर लगातार दिखाई दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि उसके जो सभी सहयोगी दल हैं छोटे से छोटे सहयोगी दल भी उसके साथ रहें, ये भारतीय जनता पार्टी को ताकत देती है और उत्तर प्रदेश के चुनावों में ये बड़ी मदद उनको करने वाली है कि जो छोटे छोटे सहयोगी दल हैं वो भी हर ब्लॉक को किस तरह से अपनी मदद कर सकते हैं। अनुप्रिया पटेल भी वहां पर दिखाई दे रही हैं, तो वो जब उनको बराबर बड़े नेताओं के साथ उनका मंच मिलता है तो वो ज़्यादा ताकत के साथ एक पार्टी को सहयोग देने में मदद करते हैं। ये नहीं है कि वो एक बरगद के वृक्ष के नीचे छोटी छोटी पार्टियों के तौर पर खड़े रहे, उनको पूरा सम्मान दिया जाता है, वो सम्मान जो है ना उनको शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़े रखने में ताकत देता है, ऐसा मुझे लगता है। जो आज विपक्ष को जरूरत है वहां हम लोग याद ही नहीं आता कि कौन सा विपक्ष के साथ सहयोगी दल आज है कि नहीं है, और जो है उनकी नाराजगी उनकी खुशी उनका साथ होना वो भी दिखाई नहीं देता है, तो उस सब को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है, इतना चुनौती भरा चुनाव भी हो सकता है कि वहां पर क्या जो कास्ट सेंसस है, जो 2024 में आरक्षण का मुद्दा था, वो भूत या वो मुद्दा कहीं फिर से खड़ा तो नहीं होगा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा बचने की कोशिश करती है।
5: और अब देखिए असम से भी तस्वीरें आने लगी हैं, तो हेमंत बिस्व शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं, तो इससे आप कल्पना कर सकते आदित्यनाथ उधर उत्तराखंड से लेकर हेमंत बिस्व शर्मा इधर मुंबई से तस्वीरें पूरे भारत में। आइए इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं महासचिव भारतीय जनता पार्टी की पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त लाइव हमारे साथ आज तक पर जुड़ रही हैं। स्मृति जी पहला सवाल जिसके दो हिस्से हैं, पहला हिस्सा तो यही है कि आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम जो बीजेपी पूरे देश में आयोजित कर रही है, इसमें आपका लक्ष्य क्या है, क्या संदेश देने की कोशिश है, और इसी के साथ प्रधानमंत्री के पूरे 25 साल के सत्ता में जो उनका सीएम और पीएम के रूप में सफर है उस पर और उनके पूरे राजनीतिक जीवन पर क्या कहना चाहेंगे आप?
6: अंजना जी, हमारे देश का स्वभाव और संस्कार रहा है कि जब किसी का जन्मदिन हो तो हम ना सिर्फ शुभेच्छा देते हैं, जो उम्र में बड़े होते हैं वो ना सिर्फ आशीर्वाद देते हैं बल्कि छोटे उनकी अच्छी लंबी आयु अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो आशीर्वाद का दिया इस स्वरूप में मुझे लगता है हमें लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक और साथ में देश का हर वो नागरिक जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र को समृद्ध संपन्न और भी सुदृढ़ होते देख रहा है वो आशीर्वाद निश्चित रूप से देना चाहते हैं और वो इस कार्यक्रम में अपने आप को जोड़ रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं।
5: उनके सफर को कैसे आप देखती हैं उनका पूरा, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर उसके बाद पीएम के तौर पर 25 साल ये और उनका जो राजनीतिक सफर रहा?
6: मेरा ये सौभाग्य रहा कि जब वो मुख्यमंत्री गुजरात थे तब मैं गुजरात से राज्यसभा की सांसद रही, तो मैंने मुख्यमंत्री का उनका एक कार्यकाल स्वयं देखा जिसमें उन्होंने न सिर्फ आज जब आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की बातें हम सबके मुख से प्रस्फुटित होते हुए देखती हैं, तो मिशन मंगलम की मैं याद दिलाती हूँ जिसमें उन्होंने गुजरात में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक उत्थान और सामाजिक समन्वय की वहां पर नींव रखी। अगर मैं देखूं कि आज जब वो बात करते हैं इनोवेशन की, स्टार्टअप्स की, तो गुजरात में आई हब नाम की उन्होंने एक व्यवस्था शुरू की जिसमें गुजरात में उस वक्त मुख्यमंत्री के नाते वो चाहते थे कि इनोवेटिव और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जितनी भी कंपनियां हैं स्वदेशी उनको प्रोत्साहन सरकार दे। उन्होंने कई आयाम ऐसे भी रखे जिसमें गुणों का उत्सव मनाया जा सके, तो अगर शाला के बाहर जो लर्निंग आउटकम है उसके संदर्भ में भी उन्होंने गुणोत्सव के कार्यक्रम के माध्यम से एक शुरुआत की जिसका हमें एक प्रतिबिंब उनके राष्ट्रीय नेतृत्व में दिखा। तो मुझे लगता है 25 साल के निरंतर संविधानिक सेवा जो है अपने आप में देश में न सिर्फ एक इतिहास रच पाई है बल्कि साथ ही अगर आप प्रशासनिक ढांचे में उनका योगदान देखें तो वो योगदान अपने आप में भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए।
3: स्मृति जी, प्रधानमंत्री मोदी का जो राजनीतिक सफर देखे तो ये हमेशा दिखाई देता है कि उन्होंने अपने आप को हमेशा रीइन्वेंट किया हुआ है। पहले एक प्रचारक के तौर पर, फिर राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर, और उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री के तौर पर। उस रीइन्वेंशन को आप किस तरीके से देखती है, एक? और दूसरा, मुझे आपका एक पॉडकास्ट याद है, उसमें आपने ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर डज नॉट चिल, जरा उसके बारे में बताइए कि कैसे निरंतर वो इस he doesn't have a time to chill, he doesn't have a time to chill, तो ये इसके बारे में भी बताइए कि आपने जब इसका जिक्र किया
6: मुझे लगता है आप इसको
3: निरंतर इस तरीके से 25 साल हम देखते हैं।
6: आप जिसको रीइन्वेंशन कहते हैं वो जो जो जिम्मेदारी दायित्व पर रहते हैं उसके अनुरूप अपने आप को ढालते हैं, तो प्रचारक का उनका जो जीवन रहा उससे तो मैं मुखातिब नहीं हुई हूँ, उससे मेरा परिचय नहीं था, लेकिन हाँ निश्चित रूप से जहां जहां उनको दायित्व मिला संगठन में अथवा सरकार में उन्होंने कभी भी सत्ता के दृष्टिकोण से उस दायित्व को नहीं देखा, उन्होंने सेवा के दृष्टिकोण से उस दायित्व को देखा है। और वो कभी भी ये नहीं कहते अपने आप को कि मैं सत्ता में हूँ, वो कहते हैं मैं सेवा में हूँ। तो अगर तीन शब्दों का मैं इस्तेमाल कर पाऊं उनकी 25 साल की इस यात्रा को कहीं ना कहीं अलंकृत करने के लिए तो वो तीन शब्द होंगे सेवा, संवाद और राष्ट्र के प्रति समर्पण। तो ये तीन शब्द ऐसे हैं जो मुझे लगता है चाहे वो प्रचारक के रूप में रहे हों, मुख्यमंत्री के रूप में रहे हों या प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन एक सत्य यह है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में जो विकास के नए मायने गढ़े जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेसिटी अपने राज्य की अपने राष्ट्र की बढ़ाना, तो मुझे लगता है कि उस संदर्भ में उनका एक योगदान अपने आप में एक चर्चा का विषय एक्सक्लूसिवली आपके चैनल पे होना चाहिए।
5: एक चलते चलते लाइटर नोट पे एक हल्का सा सवाल कर रही हूँ, छोटा सा जवाब दीजिएगा। ऐसा लग रहा है जैसे जो हाल के दिनों में कई बार पीएम को डायरेक्टली भी टारगेट किया गया तो बीजेपी और पूरा एनडीए आज जेंजी की भाषा में कहें तो फ्लेक्स करता हुआ दिखाई दे रहा है।
6: मैं इतना ही कहूंगी कि आप चाहे किसी भी चैनल पे होना चाहिए।
5: एक चलते चलते लाइटर नोट पे एक हल्का सा सवाल कर रही हूँ, छोटा सा जवाब दीजिएगा। ऐसा लग रहा है जैसे जो हाल के दिनों में कई बार पीएम को डायरेक्टली भी टारगेट किया गया तो बीजेपी और पूरा एनडीए आज जेंजी की भाषा में कहें तो फ्लेक्स करता हुआ दिखाई दे रहा है।
6: मैं इतना ही कहूंगी कि आप चाहे किसी भी जेनरेशन के रहे हो, यू वुड वांट अ प्राइम मिनिस्टर डेडिकेटेड टू नेशनल सर्विस।
5: आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए
6: मौका मौका अच्छा है और उस मौके में मैं उसको वार्ता की श्रेणी को और नीचा नहीं करना चाहती, बट थैंक यू फॉर द कॉन्वर्सेशन।
3: थैंक यू,
5: धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: आगे आगे
10: उधर
9: उधर
10: करेक्ट करेक्ट
9: मिल गया।
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Papa!
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया
2: है। हाँ, ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: बिल्कुल चार्ज हुआ यार।
6: ला बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: एक तो एक
9: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
3: Oh no, बहुत बोर लग रहा है।
4: Take a date, not bites.
5: No added sugar, preservative के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर। दुनिया
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में दीपोत्सव, काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए, 25 साल के नेतृत्व का भी जश्न। सौ फीसदी टैरिफ वाले अमेरिकी कानून पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध, अलग अलग स्रोतों से जारी रहेगी ऊर्जा खरीद। यूपी में हाईवे को लेकर अखिलेश ने सीएम योगी को घेरा, कहा बीजेपी सरकार में निर्माण बाद में होता है, वो गिरने पहले लगता है, बोले अब वो हर लेन देन पर लेंगे टैक्स। टाटा सन्स के चेयरमैन बने रहेंगे एन चंद्रशेखरन, बोर्ड सदस्यों ने पक्ष में किया वोट, तीसरी बार 5 साल के लिए बढ़ा कार्यकाल। और सोनीपत में पिटबुल का आतंक, 6 महीने के बच्चे पर झपटा खूंखार कुत्ता, सीसीटीवी में कैद खौफनाक वारदात, अस्पताल में मासूम की हालत नाजुक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में दीपोत्सव देखा जा रहा है। काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से लेकर उज्जैन तक लाखों लाख दिए जगमगाए हैं। आपको बता दें कि 25 साल के नेतृत्व का भी जश्न मनाया जा रहा है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और रेखा गुप्ता। हवन पूजन, साथ ही साथ दीपोत्सव, भगवान की आरती, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर दीपोत्सव और दियों से काशी जगमगा गई है। अलग अलग तरह की आतिशबाजी के इंतजाम पहले ही किए गए थे, लाखों लाख दिए जलाए गए हैं। और आपको बता दें कि 25 साल के नेतृत्व का भी आज जश्न मनाया जा रहा है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उज्जैन की तस्वीरें हैं। तो महाकाल की नगरी को बहुत ही खूबसूरत लाइट्स के साथ सजाया गया है, आतिशबाजी यहां पर की गई है और हजारों दिए यहां पर भी प्रज्वलित किए गए।
1: सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा रहा, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा रहा, लहरों पर विजय लिखे वो हौसला हमारा हो।

0: आत्मनिर्भर भारत का परचम हमारा।
1: 76वें जन्मदिन पर देश भर में दुआओं के दिए जल रहे हैं। जन्मभूमि वडनगर से कर्मभूमि वाराणसी तक उत्सव ही उत्सव है।
2: बाबा से ही प्रार्थना की है कि वे स्वस्थ रहें।
1: संघर्ष से लेकर सत्ता तक के साथ ही साथ हैं।
3: हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वह दीर्घायु करें।
4: देश के प्रधान सेवक को उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूँ।
5: We are country is proud of him।
1: सेवा, संकल्प, समर्पण, सिद्धि के मंत्र लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हवन, रक्तदान, बाइक रोड शो, जश्न, बधाइयां, शुभकामनाएं, सबकी अपनी भावनाएं हैं, क्योंकि ये दिन है पीएम मोदी के जन्मदिन का और ये उपहार है उनके चाहने वालों के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। 76 साल की उम्र, 25 साल का राजनीतिक सफर और देश के विकास की एक लंबी यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76 वर्ष के हो गए। उनके सार्वजनिक राजनीतिक जीवन के भी 25 वर्ष पूरे हुए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक उनके नेतृत्व में देश में और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को नई दिशा मिली। गरीब कल्याण से लेकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तक उनके कार्यकाल में लिए गए फैसलों ने करोड़ों भारतीयों के जीवन और देश की दिशा को प्रभावित किया है। 25 साल के इस राजनीतिक सफर में पीएम मोदी ने सिर्फ सत्ता की जिम्मेदारी नहीं संभाली बल्कि विकसित भारत का एक नजरिया भी सामने रखा।
1: ऐसी चमचमाती धूप में ये लाखों लोग आशीर्वाद देने के लिए क्यों आते हैं? सिर पर सिर्फ प्रेम है, प्रेम है।
2: मैं ये सम्मान उन भारतीयों को समर्पित करता हूं जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन में बदला।
3: इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है।
4: जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने, और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर।
5: देश ने बता दिया है कि उसे विवाद नहीं, विकास चाहिए, विभाजन नहीं, विश्वास चाहिए।
6: हम आज की नहीं बल्कि अगले 25-50 साल की जरूरतों के मुताबिक देश को तैयार कर रहे हैं। 2047 जब आजादी के 100 साल हो गए ना, विकसित भारत बना के रहना है दोस्तों।
2: मोदी की गारंटी है। भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। मोदी एक पड़ाव पर पहुंचकर जश्न मनाकर संतुष्ट होने वालों में से नहीं है। एक लक्ष्य प्राप्त होता है तो मैं उससे भी बड़े लक्ष्य की तैयारी में जुट जाता हूं।
7: बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया।
8: चुनौतियां लगातार बदलती हैं, कभी दुनिया के बदलते समीकरण, कभी अर्थव्यवस्था पर संकट, कभी विकास की रफ्तार और कभी बदलते जनादेश की चुनौतियां। याद ये रखा जाता है कि जवाब कैसे दिया गया।
9: 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 26 में 140 करोड़ भारतीय ये उत्साह और संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में समग्र विश्व में भारत सर्वप्रथम होगा।
10: हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वह दीर्घायु करें, वह आजीवन स्वस्थ रहें और साथ ही साथ भारत के विकसित भारत के लक्ष्य को ताकि प्राप्त किया जा सके।
11: बाबा से ही प्रार्थना की है कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु उन्हें प्राप्त हो और लंबे समय तक भारत का नेतृत्व उनके हाथों में रहे।
12: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल, दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व में आज भारत आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत के संकल्प की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
8: 12 वर्ष से निरंतर जारी कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी कई चुनौतियां आईं, कुछ जो विरासत में मिली, कुछ जो समय के साथ बढ़ी और कुछ भविष्य के पटल पर दिखी। जवाब नीतियों और नए रास्तों से दिया गया जिनसे देश की सूरत भी बदली, राजनीति की सीरत भी बदली।
13: मैं छोटे और आसान लक्ष्य लेकर चलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं देश के लिए बड़े लक्ष्य रखता हूं और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देता हूं। और ये केवल बातें नहीं है, ये हमारे संकल्प है।
8: चुनौती अविश्वास और युद्धों से घिरी दुनिया की तरफ से आई जवाब भारत की नीति ने दिया।
2: हमारे विचारों की विविधता के साथ साथ ब्रिक्स सहयोग के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता भी स्पष्ट रूप से सामने आई है। आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग, तीनों में सुधार आवश्यक है।
8: चुनौती सुपर पावर्स के साथ शक्ति संतुलन की आई तो जवाब भारत की कूटनीति ने दिया।
2: दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है।
8: चुनौती आर्थिक मोर्चे पर आई तो दुनिया ने देखा भारत के सामर्थ्य।
2: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही है। उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
8: विकास के रास्ते में भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियों ने चुनौतियां पेश की तो जवाब देश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से मिला। राजनीतिक मोर्चे पर चुनौती बहुमत के आंकड़ों से मिली तो जवाब हरियाणा, महाराष्ट्र से लेकर असम, पश्चिम बंगाल को जीत कर दिया गया।
14: नरेंद्र मोदी जी का जीत है।
15: हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूँ, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है।
16: प्रधानमंत्री जी का जो फार्मूला है, सबका साथ सबका विकास, उत्तर प्रदेश उसी राह आगे बढ़ गया।
17: पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, बदला नहीं बदलाव की बात होनी चाहिए।
8: जब युवाओं से संवाद की चुनौती सामने आई तो जवाब युवाओं के अंदाज और मिजाज के हिसाब से तैयार हुआ।
18: हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं।
8: 25 वर्ष सरकार के मुखिया के तौर पर सेवा भाव में बीते, जिनमें 12 वर्ष देश के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की पूर्ति में बीते और यात्रा निरंतर जारी है। उम्र का 76वां पड़ाव है, लेकिन नई नीति और राजनीति की नई रीति दोनों पर कायम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
0: देश के विकास का वो पैमाना जो नजर आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी रेलवे नेटवर्क, सड़कों का निर्माण, पुलों का बनना। पीएम मोदी की लीडरशिप में किस तरीके से उन चुनौतीपूर्ण इलाकों में भी इस तरह का विकास दिखा जो अब तक अछूते थे, ये अपने आप में एक उपलब्धि है, एक मिसाल है।

0: प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कार्यकाल में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर काम हुआ। सड़क हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो या बंदरगाह, फोकस सिर्फ निर्माण पर नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों को तेज और बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने पर रहा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ, नई ट्रेनें शुरू हुई तो हाई स्पीड कॉरिडोर का भी निर्माण हुआ।
1: तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक वंदे भारत तमाम खूबियों से संपन्न है।
0: अप्रैल 2026 तक देश में 162 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। जनवरी 2026 में वंदे भारत स्लीपर भी शुरू हुई। 60 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें लंबी दूरी की किफायती यात्रा को आसान बना रही हैं। 508 किलोमीटर लंबा मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर बन रहा है, जिसे 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए तैयार किया जा रहा है।
2: ड्राइवर साहब, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी अपने आप रुक रही है। देखिए, अपने आप स्पीड कम हो रहा है और ये देखिए, ये स्पीड दिखा रहा है इसमें, इतने तक अलाउड है इसमें। और
0: रेलवे की सुरक्षा के लिए स्वदेशी कवच सिस्टम शुरू किया गया, जो खतरा होने पर अपने आप ब्रेक लगा सकता है। अब तक 3,103 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच लगाया जा चुका है, जबकि 24,427 किलोमीटर पर काम जारी है।
1: जब रेल जैसा कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त होता है तो देश सशक्त होता है। इससे देश के सामान्य नागरिक को लाभ होता है, देश के गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ होता है।
0: सड़कें अब सिर्फ शहरों को जोड़ने का माध्यम नहीं, व्यापार, उद्योग और लोगों की आवाजाही की रफ्तार बढ़ाने का आधार बन गई। भारत के पास आज करीब 63.73 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। 2014 में राष्ट्रीय राजमार्ग करीब 91,000 किलोमीटर थे। मार्च 2026 तक ये बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर से ज्यादा हो गए। 4 लेन और उससे ज्यादा वाले राष्ट्रीय राजमार्ग भी 18,371 किलोमीटर से बढ़कर 45,516 किलोमीटर हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ मैदानों में सड़क बनाना नहीं है, पहाड़ों और सीमावर्ती इलाकों में भी बड़े प्रोजेक्ट पूरे हुए। ऐसे दुर्गम इलाकों को पुलों से जोड़ा गया जो सोचा भी नहीं जा सकता था। चिनाब ब्रिज का निर्माण हुआ, नदी से 359 मीटर ऊपर बना यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण सिर्फ इंजीनियरिंग की चुनौती तक सीमित नहीं था बल्कि असंभव सा दिखता था, लेकिन आज ये जम्मू कश्मीर के रेल नेटवर्क को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की अहम कड़ी है। वहीं पम्बन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है, जो रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। करीब 2.07 किलोमीटर लंबे इस पुल में 72.5 मीटर लंबा लिफ्ट स्पैन लगा है, जो जरूरत पड़ने पर ऊपर उठता है ताकि बड़े जहाज नीचे से गुजर सकें।

0: ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज, ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी के 12 सालों में पहाड़ों को काटकर सुरंगों का निर्माण हुआ, जो रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सोनमर्ग सुरंग हर मौसम में कश्मीर से लद्दाख की ओर संपर्क को आसान बनाती है। सुदर्शन सेतु ओखा और बेट द्वारका को जोड़ता है। मैत्री सेतु त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ता है। अटल सुरंग रोहतांग दर्रे को बाईपास कर मनाली और लाहौल स्पीति को हर मौसम में जोड़ती है। धौला सादिया पुल ने असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच स्थायी सड़क संपर्क मजबूत किया।
0: अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह लद्दाख देश के बाकी हिस्सों से हमेशा जुड़े रहेंगे, प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे। इस टनल से मनाली और केलांग के बीच इसकी दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी।
1: आसमान के रास्ते भी कनेक्टिविटी मजबूत हुई। देश के छोटे शहरों को भी फ्लाइटों से जोड़ने का काम हुआ। 2014 में देश में 74 परिचालन एयरपोर्ट थे। 2026 में इनकी संख्या बढ़कर 165 हो गई। उड़ान योजना ने छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की और 2014 के बाद 25 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट मंजूर हुए। इनमें जेवर, नवी मुंबई, मोपा और कन्नूर जैसे एयरपोर्ट शामिल है। शहरों में मेट्रो नेटवर्क की लंबाई भी 248 किलोमीटर से बढ़कर 1155 किलोमीटर से ज्यादा हो गई। मेट्रो बनाने की रफ्तार करीब 0.68 किलोमीटर प्रति महीने से बढ़कर लगभग 6 किलोमीटर प्रति माह हुई।
0: हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें।
1: इंफ्रास्ट्रक्चर की दूसरी बड़ी ताकत है ऊर्जा। पश्चिम एशिया में ईरान अमेरिका युद्ध के कारण तनाव के दौरान भारत की ऊर्जा सुरक्षा के सामने चुनौती केवल कच्चे तेल की कीमतों की नहीं बल्कि आपूर्ति बाधित होने के जोखिम की भी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने ऊर्जा आयात को कुछ चुनिंदा देशों पर निर्भर रखने के बजाय नए स्रोतों और आपूर्तिकर्ताओं के दायरे को बढ़ाया।
0: एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। एक तरफ हमने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से तेल और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की, दूसरी तरफ हमने रिन्यूएबल एनर्जी में ऐतिहासिक निवेश बढ़ाया।
1: भारत अब 41 देशों से कच्चा तेल, एलएनजी और एलपीजी हासिल करता है, जबकि पहले ये संख्या सिर्फ 27 देशों की थी। यानी भारत ने ऊर्जा आयात के नेटवर्क में 14 नए स्रोत जोड़े। इसका सीधा फायदा ये हुआ कि हॉर्मुज जैसे किसी एक क्षेत्र में युद्ध, समुद्री मार्ग में रुकावट या किसी एक देश से आपूर्ति घटने की स्थिति में भारत के पास दूसरे विकल्प तैयार हुए। घरेलू ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलाव आए। बिजली की कमी 4.2% से घटकर 2025-26 में सिर्फ 0.03% रह गई। ग्रामीण इलाकों में औसत बिजली उपलब्धता 12.5 घंटे से बढ़कर 22.6 घंटे प्रतिदिन हो गई। इसी के साथ भारत की ऊर्जा क्षमता भी बढ़ी। मार्च 2026 तक देश की स्थापित बिजली क्षमता 532.74 गीगावाट पहुंच गई। ऊर्जा बदलाव का असर घरों तक भी पहुंचा। 2014 में एलपीजी की पहुंच करीब 55.9% थी, 2026 में ये 107.2% तक पहुंच गई। एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 14.51 करोड़ से बढ़कर 33.39 करोड़ हो गई। इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा के क्षेत्र में विकास के जरिए भारत ने इन 14 सालों में कनेक्टिविटी, बिजली, परिवहन और ऊर्जा सुरक्षा की तस्वीर बदलने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं।
2: दुनिया में शक्ति का संतुलन बदल रहा है और बदलते रिश्तों के बीच भारत के सामने चुनौतियां भी आती रहीं। एक तरफ अमेरिका पश्चिमी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी,

0: अमेरिका पश्चिमी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी, दूसरी तरफ रूस और चीन जैसे देशों के साथ रिश्तों का संतुलन। हाल ही में ब्रिक्स के मंच पर भी यह नजर आया। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करता रहा, तो ईरान, यूएई और अरब को शांति वार्ता के लिए भी साथ लेकर आया।
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। यदि हमारा भविष्य साझा है तो उसके निर्माण का अधिकार भी साझा होना चाहिए। ग्लोबल साउथ को रूल टेकर से रूल शेपर बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
2: ब्रिक्स के मंच से निकली ये तस्वीरें पीएम मोदी की विदेश नीति की गवाह हैं। एक मंच पर आमने सामने ऐसे देश जिनके बीच तनाव है, संघर्ष है, युद्ध की स्थिति है, लेकिन दिल्ली में ब्रिक्स के मंच पर बातचीत भी हुई, हाथ भी मिले और संवाद का रास्ता भी खुला। इसके पीछे दिखती है भारत की वो कूटनीति जिसमें रिश्ते किसी एक खेमे तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में एक तरफ अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी है तो दूसरी तरफ रूस के साथ लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते, ईरान के साथ भी संवाद है तो यूएई और सऊदी अरब के साथ भी मजबूत संबंध है।
1: हम एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और कंसेंसस से आगे बढ़ते हैं। हम किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने का की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले।
2: ब्रिक्स के मंच पर इस नीति की एक बड़ी तस्वीर 2026 में दिल्ली में दिखाई थी। 11 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से मुलाकात की। सिर्फ दो हफ्ते के भीतर दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात थी। मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए संवाद और कूटनीति पर जोर दिया। अगले दिन 12 सितंबर को मोदी ने यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद से भी मुलाकात की। भारत और यूएई ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बात की और फिर दिल्ली में वही हुआ जो इस पूरी कूटनीति को समझने के लिए अहम है। ब्रिक्स समिट के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद की आमने सामने मुलाकात हुई। ये दोनों नेताओं के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद सबसे उच्च स्तरीय मुलाकातों में से एक थी। दोनों ने रिश्तों को बेहतर करने और तनाव कम करने की दिशा में बात की। यानी भारत खुद ईरान से बात कर रहा था, यूएई से बात कर रहा था और उसी मंच पर दोनों के बीच बातचीत की गुंजाइश भी बनी। लेकिन तस्वीर यहाँ खत्म नहीं होती। ब्रिक्स के मंच पर सऊदी अरब भी मौजूद था, यानी पश्चिम एशिया के तीन अहम खिलाड़ी ईरान, यूएई और सऊदी अरब, और इन सब के साथ भारत के अपने अपने रिश्ते हैं। यही भारत की कूटनीतिक ताकत का एक पहलू है, हर देश से अपने हितों के आधार पर संबंध और मतभेदों के बावजूद संवाद। फिर आया ब्रिक्स का सबसे बड़ा टेस्ट। क्या इतने अलग अलग हितों वाले देश पश्चिम एशिया के मुद्दे पर एक साझा भाषा खोज पाएंगे? 12 सितंबर को ब्रिक्स का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन सामने आया। इसमें पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता जताई गई और शांति, संवाद, कूटनीति और तनाव कम करने की जरूरत पर जोर दिया गया। घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। यानी दिल्ली में सिर्फ ब्रिक्स की बैठक नहीं हुई, दिल्ली ने अलग अलग देशों के बीच बातचीत के लिए एक साझा मंच भी दिया और यही प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की एक अहम तस्वीर है। रिश्ते किसी एक देश या एक खेमे तक सीमित नहीं। अमेरिका से साझेदारी, रूस से संवाद, ईरान से रिश्ते, खाड़ी देशों से रणनीतिक साझेदारी और हर रिश्ते में भारत का अपना राष्ट्रीय हित।
0: प्रधानमंत्री मोदी अमूमन आपदा में अवसर की बात करते हैं। हमने अलग अलग क्षेत्रों में तो आपको दिखाया, लेकिन राजनीति में जब एक चुनौती सामने आती है तो उस चुनौती का सामना वो कैसे करते हैं वो आपको 2024 से लेकर 26 के दरमियान नजर आ जाएगा।

अब 2024 का आम चुनाव याद करिए, जब दावा 400 पार का था, लेकिन बीजेपी 2014 के बाद से पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। हालांकि एनडीए को बहुमत मिला और ऐतिहासिक तीसरी बार एनडीए की सरकार देश में बनी, पर नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उसके बाद अपनी पार्टी को प्रेरित करके उसका नेतृत्व करते हुए हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में एक के बाद एक अपनी पार्टी को जीत हासिल करवाते ले गए, ये दिखाता है कि किस तरीके से वो चुनौतियों को उपलब्धि में परिवर्तित कर देते हैं।

0: राजनीति में चुनौतियां रोज ही ललकारती हैं, लेकिन 2024 के आम चुनावों में बीजेपी बहुमत की रेखा भी पार नहीं कर पाएगी। ऐसी चुनौती के बारे में पीएम मोदी सहित किसी ने भी सोचा नहीं था। एक चर्चा छिड़ गई कि क्या मोदी हैं तो अब सब कुछ मुमकिन नहीं रहा।
1: हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है, उनको कहा गया कि आप राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आ सकती।
2: अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी।
0: विपक्ष के दावों में मोदी मैजिक बीती बात हो गया। सहयोगी दलों के साथ सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री के सामने सवाल आया कि अब कड़े और बड़े फैसले कैसे लेंगे। पीएम मोदी ने जो जवाब दिया वो चुनौती को स्वीकार करने जैसा ही था।
3: मोदी कड़े और बड़े फैसले लेता है क्योंकि उसे 140 करोड़ भारतीयों के सपने पूरे करने हैं।
0: इसके बाद जो हुआ उसने सभी विश्लेषकों को चौंका दिया। सिर्फ कुछ महीनों में पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपने अंदरूनी सिस्टम को रिकैलिब्रेट किया, सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाया और किसी तूफान की तरह वापसी की। 2024 से जारी हुआ प्रचंड जीत का सफर 2026 में भी जारी है। 2024 में ही जिस हरियाणा में मोदी मैजिक को लगभग खत्म मान लिया गया था, वहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 90 में से 48 सीटें जीतकर जीत और सरकार की हैट्रिक लगाई। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी 2024 में ही हुए, इनमें भी मोदी फैक्टर चला और महायुति ने कुल 288 में से 237 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की। 2024 में दिल्ली का विधानसभा चुनाव हुआ, यहां बीजेपी 27 साल से सत्ता से बाहर थी। पीएम मोदी ने खुद प्रचार की कमान संभाली। कुल 70 में से बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। 2025 में ही बिहार विधानसभा चुनाव हुए, यहां भी मोदी का जादू चला और विपक्ष की हालत पतली से बहुत पतली हो गई। कुल 243 में से एनडीए ने 202 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत पाया। 2026 में बीजेपी ने असम में भी जीत की हैट्रिक लगाई और इसी साल पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अभूतपूर्व जीत हासिल की। ममता के रूप में विपक्ष का सबसे मजबूत गढ़ ढहा दिया। कुल 294 में से 208 सीटें जीतकर पहली बार बीजेपी की सरकार बनी।
3: बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है।
0: बीजेपी में यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव भी काफी चर्चा में रहे। यहां भी बीजेपी ने 7 सीटें जीती और हाल ही में राजस्थान के निकाय चुनावों में भी बीजेपी ने परचम लहराया।
4: द लोकल बॉडी इलेक्शंस, जो स्थानीय निकायों के चुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है।
0: 2024 के आम चुनावों में लगे झटके के बाद से 2026 तक तमाम चुनावों में जीत का सिलसिला जारी है। अब आगे 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की नई चुनौती तैयार है।
5: तीसरे कार्यकाल का आधा समय बीतते बीतते पीएम मोदी के सामने न्यू जेनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की चुनौती भी आई। उन्होंने नई पीढ़ी के आक्रोश और उम्मीदों को किसी अभिभावक की तरह समझा, संवाद की कोशिश की, यहां तक कि अपने मंत्रियों और सांसदों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से न्यू जेनरेशन के साथ कनेक्ट होने की महत्वपूर्ण सलाह दी।
0: नई पीढ़ी सवाल करती है, जवाब और जवाबदेही चाहती है। सोशल मीडिया के दौर में अचानक युवाओं का एक आंदोलन खड़ा हुआ और देश की राजनीति के लिए चुनौती बन गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ के साथ इस चुनौती को भी संवाद के एक अवसर में बदल दिया।
3: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
0: ये एक बड़ी चुनौती थी कि युवाओं तक बात किस अंदाज में और किन अर्थों में जा रही है, लेकिन पीएम मोदी का वीडियो जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया तो वो और चर्चा में आ गया। इसके बाद वो युवाओं के बीच भी गए और अपना संदेश उन तक पहुंचाया और उनके मन की बात को भी समझा।
3: हमारे जो नौजवान अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनकी कोचिंग का ध्यान सरकार खुद रखेगी। साथियों, भारत के नौजवानों को एआई में पारंगत होना उतना ही जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों की पीढ़ी एआई के लिए तैयार हो, इसलिए जरूरी है कि हमारे पास देश और दुनिया की इंडस्ट्री के लिए एआई को समझने वाले और एआई का इस्तेमाल करने वाले युवा हो।
0: प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया से यूनिवर्सिटी कैंपसों तक गए और अपने मंत्रियों, सांसदों से युवाओं के बीच जाने और सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने को भी कहा। लेकिन युवाओं से संवाद जुलाई में हुए युवाओं के आंदोलन से शुरू हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषणों में यहाँ तक कहा कि लाल किले से भी युवा शक्ति का कई बार उल्लेख किया गया। परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से भी वो युवाओं से जुड़ते रहे हैं। मार्च 2024 में उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात की। मार्च अप्रैल 2024 में ही उन्होंने गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठक की। जून 2024 में बनारस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात की। जनवरी 2026 में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम हुआ, इसमें 50 लाख युवाओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात भी कही और उनके विचार और सुझाव लिए।
3: मन गर्व से भर जाता है कि मेरा देश का नौजवान सोचने में कितना तेज गति से आगे जा रहा है।
0: युवाओं के साथ संवाद की चुनौती को समझते हुए ही पीएम मोदी ने इसे सिर्फ चुनावों के एक मुद्दे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि युवाओं की रोजमर्रा की सोच को समझते हुए उनकी पीढ़ी के साथ आ रहे सामाजिक बदलावों को भी आत्मसात किया और अपनी पॉलिसीज बनाई। नई पीढ़ी सवाल पूछने में संकोच नहीं करती, वो सरकार से उपलब्धियों का हिसाब भी पूछती है। नौकरी, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, एआई, अवसर और भविष्य को लेकर अपनी अपेक्षाएं भी रखती है। ऐसे में सरकार के लिए युवाओं से जुड़ना सिर्फ प्रचार का सवाल नहीं, विश्वास और संवाद का सवाल भी है। मोदी सरकार की ओर से इसका एक जवाब दिखाई दे रहा है। युवाओं को सुनने के लिए नए मंच, युवाओं तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया सहित नए माध्यम और पार्टी संगठन से लेकर सरकार तक डिजिटल संवाद पर बढ़ता जोर। चुनौती नई पीढ़ी की बदलती सोच को समझने की थी। पीएम मोदी ने इसे राष्ट्र निर्माण के अपने संकल्प की एक अहम प्रक्रिया से जोड़ दिया। 76 वर्ष की उम्र में भी उन्हें इंस्टाग्राम रील्स या फेसबुक मैसेजेस से परहेज नहीं, बल्कि ये उनके लिए सरल माध्यम है नई पीढ़ी तक पहुंचने का।
5: दुनिया इस समय दो बड़े युद्ध से जूझ रही है। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध थमा नहीं, इसराइल, अमेरिका, ईरान के बीच जो युद्ध छिड़ा, 6 महीने पूरे होने के बाद भी वहां कोई समाधान दिख नहीं रहा है। युद्ध का सीधा असर पड़ता है अर्थव्यवस्था पर और अर्थव्यवस्था को ऐसे संकट के दौर से बाहर निकालना, मजबूत रखना एक बहुत बड़ी चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के अब तक के कार्यकाल के भीतर ही दुनिया ने कोरोना महामारी भी देखी, जिसका असर आर्थिक रूप से बहुत बड़ा पड़ा पूरे विश्व पर। भारत ने इन सब के बावजूद अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को कमोवेश बचाए रखा और हाल ही में देश में विकास दर 7.8% रही।
0: अप्रैल से जून 2026 की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही। ये आंकड़ा ऐसे समय आया जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध, ऊर्जा संकट और व्यापारिक तनाव बना हुआ है। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे पर निवेश का रास्ता चुना। दूसरी तरफ देश में उत्पादन बढ़ाने, कारोबार को आसान बनाने और निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया।
3: दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही है, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना है।
0: वैश्विक संकटों ने यह साफ कर दिया कि दूसरे देशों पर निर्भरता संकट के समय असुरक्षा लाती है। इसी वजह से मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत घरेलू उत्पादन बढ़ाने की नीति पर जोर दिया।
6: आज हर हाथ में स्मार्टफोन है, दुनिया के बड़े से बड़े फोन ब्रांड आज भारत को अपना बेस बना रहे हैं। मेड इन इंडिया स्मार्टफोन दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है।
0: सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी भारत ने इसी रणनीति को आगे बढ़ाया। 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें 1.64 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो रहा है। भारत अब अपना सेमीकंडक्टर उद्योग खड़ा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: साथियों, आप जानते हैं सेमीकंडक्टर्स में स्पीड मैटर करती है। फाइल से फैक्ट्री का समय जितना कम होगा, जितना कम पेपर वर्क होगा, वेफर वर्क उतना जल्दी शुरू हो पाएगा।
0: सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और डिजिटल ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दिया। हर ऐसे परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का अभियान शुरू किया जिनके पास बैंक खाता नहीं था। आज जन धन खातों की संख्या 59 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जिनमें लगभग 56% खाते महिलाओं के नाम पर हैं। जीएसटी को लागू करना आसान नहीं था। केंद्र और राज्यों के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही थी। राज्यों को मिलने वाले राजस्व को लेकर भी चिंता थी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्यों को साथ लाया गया और लंबे विचार विमर्श के बाद सहमति बनी। आखिरकार जीएसटी लागू हुआ। सबसे बड़ा बदलाव आया यूपीआई के जरिए। इसको दुनिया भर में सराहा गया। नकदी पर निर्भरता को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल भुगतान को लेकर आया गया। 2016-17 में यूपीआई के जरिए सालाना सिर्फ 1.78 करोड़ लेन देन होते थे, जो 2025-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ हो गए। आज यूपीआई 11 देशों में संचालित है और दुनिया के रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में इसकी हिस्सेदारी करीब 50% है।
3: भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान ही दुनिया ने ऐसी महामारी देखी जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की नींव हिला दी। कोरोना के दौरान फैक्ट्रियां बंद हुई, कारोबार ठप हुए, रोजगार प्रभावित हुआ और सप्लाई चेन टूट गई। भारत के सामने चुनौती थी कि लोगों की जान बचाने के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, छोटे कारोबारियों और किसानों को आर्थिक सहारा भी दिया जाए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कर्मियों और देशवासियों को एकजुट करते हुए टीम इंडिया की भावना के साथ इस संकट का सामना किया। भारत ने स्वदेशी टीकों का विकास और निर्माण किया। देश में 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराकें दी गईं। भारत ने 150 से अधिक देशों को भी सहायता पहुंचाई।
5: अभी के लिए हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
2: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
3: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
4: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
5: लायन डेट नट बाइट्स।
6: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
7: पापा।
8: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का?
9: सब कैशलेस हो गया है।
8: हाँ। ला भाई मेरा बैट।
9: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
8: चार्ज हुआ यार।
10: बैट किसका है?
11: टाटा AIG है तो भरोसा है।
12: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है। जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल 2-in-1 बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट,
5: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: चलो
2: मैं
1: अरे आजकल की लड़कियां प्लेन चला रही हैं। चलो
3: सखी उड़ ले अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट
1: भाई जल्दी सीख गई
2: कल से प्लेन चलाना सीखूंगी
3: स्वाद सपनों का
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा
5: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप
6: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर
7: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू साथ में लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री इंश्योरेंस तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
5: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
4: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
6: बोलो ना बेटा, क्या चाहिए?
7: जूस या सोडा, डाले या आटा, बोले ना बेटा क्या लेगा अभी फॉर यू फ्राई माय भेजा।
8: इसे कैसे दिलाऊं मजा भगवान?
9: ये लो बस।
10: मजा! अनमोल मजा, असली मजा तो यही है।
11: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स,
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: विधानसभा का चुनाव घोषणा होने के पहले हमने कह रखा है कि 1,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी यूपी के अंदर उपलब्ध करवाएंगे।
4: जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वादों और घोषणाओं की रफ्तार भी जोर पकड़ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए दिन बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, कभी कैबिनेट में लिए गए फैसलों के जरिए तो कभी सार्वजनिक मंच से। यानी कि यूपी में बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। एक तरफ सरकार की ओर से ऐलान पर ऐलान हो रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी भी आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। संगठन स्तर पर रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूपी में बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और इस हफ्ते उनकी कई मंथन बैठक है। 17 और 18 सितंबर को गोरखपुर में, 19 और 20 सितंबर को अयोध्या में, 21 और 22 सितंबर को प्रयागराज में तावड़े सीधे जमीनी स्तर पर फीडबैक लेने वाले हैं। चर्चा संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों पर होगी। एक तरफ बीजेपी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ आरएसएस भी पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर उतर आया है। संघ और बीजेपी की अहम समन्वय बैठक हुई है। ये बैठक लखनऊ के बंथरा स्थित एक रिजॉर्ट में हुई। बैठक का फोकस अवध कानपुर में तैयारियों पर रहा। बैठक में संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने जमीनी फीडबैक लिया। आपको पता हो कि चुनावी अभियानों और बीजेपी को जीत दिलाने में संघ की हमेशा अहम भूमिका रही है। यूपी चुनाव में भी संघ एड़ी चोटी का जोर लगाने जा रहा है। समन्वय बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें संघ के सह सरकारीवाह अरुण कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे। बीजेपी की चुनावी कामयाबी में उसकी तैयारियों का बड़ा रोल रहा है और इस बार भी यूपी में वो तैयारियों को अभी से देख रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन है और इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों की ओर से आशीर्वाद का दिया अभियान चलाया गया। काशी से लेकर कच्छ तक और दिल्ली से लेकर उज्जैन तक प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए दिए जलाए गए। बीजेपी के सेवा संकल्प अभियान के तहत जगह जगह रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान चलाया गया। दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने दिए जलाने और कार्यक्रमों के खर्च पर सवाल खड़े किए हैं।

0: अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के भव्य यशोभूमि से सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का सबसे नया और सबसे भरोसेमंद ठिकाना बताया है। लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए के बजट वाले सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत भारत सिर्फ चिप्स खरीदेगा नहीं बल्कि देश के भीतर ही चिप डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन, टेस्टिंग हो, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, इसका पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है।
1: दुनिया में जहां भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बने हैं वहां ये पूरा इकोसिस्टम दशकों की मेहनत के बाद तैयार हुई है, लेकिन भारत ने आपके सहयोग से चिप डिजाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इन सभी पर एक साथ काम किया।
0: और इसके बाद आपको अमेरिका का दोहरा मापदंड दिखाएंगे। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों से एक ऐसा बिल पास हुआ है जो भारत जैसे देशों पर 100% तक का भारी भरकम टैरिफ लगाने की ताकत अमेरिकी राष्ट्रपति को देता है। अमेरिका की दलील है कि इससे रशिया की जंग की फंडिंग रुक जाएगी। ये वही अमेरिका है जो अभी दो दिन पहले यूक्रेन से कह रहा था कि रशिया के रिफाइनरी और डीजल डिपो पर हमले रोक दिए जाएं, क्योंकि इससे ग्लोबल मार्केट में तेल की किल्लत हो रही है। बात सिर्फ रूसी तेल की नहीं है, अमेरिकी चालबाजियों की फेहरिस्त अब लंबी होती चली जा रही है। दशकों तक अमेरिका ने खाड़ी देशों के साथ पेट्रो डॉलर डील का खेल खेला, यानी तुम डॉलर में तेल बेचो हम तुम्हें सुरक्षा की गारंटी देंगे। लेकिन खबर है कि अमेरिका ने उसी सऊदी के कट्टर दुश्मन हूती विद्रोहियों से बैक चैनल डील कर ली है। शर्त यह है कि हूती लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर निशाना ना साधे, बदले में अमेरिका सऊदी अरब की मदद नहीं करेगा।

0: जिस फाइटर जेट को अमेरिका अचूक और अजेय बताकर पूरी दुनिया को बेचता रहा, क्या वो सुपर पावर की साख डुबो रहा है? हुती विद्रोहियों का बहुत बड़ा दावा है। उन्होंने दावा किया है कि सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को उन्होंने मार गिराया। इतना ही नहीं, ईरान भी कई बार F-15 विमानों को गिराने का दावा कर चुका है। समुद्र की गहराइयों में चाइना के एक गुप्त प्लान ने दुनिया को हैरान कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों से चाइना की सीक्रेट मदरशिप का पता चला है, जिसे ड्रोन सबमरीन तैनात करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस मदरशिप के से एक साथ दर्जनों मानव रहित ड्रोन सबमरीन्स को लॉन्च किया जा सकेगा, जो बिना किसी इंसानी मदद के दुश्मन के जहाजों पर नजर रखने, जासूसी करने, पलक झपकते ही हमला करने में सक्षम होंगी। पहले चोर घर में घुसकर डाका डालते थे तो लोगों ने दरवाजों पर आधुनिक ताले जड़ दिए, लेकिन अब ना कोई दरवाजा टूटता है ना कोई ताला। अब चोरी, लूट, डाका सब आपकी जेब में रखे फोन के जरिए ऑनलाइन हो रहा है। महाराष्ट्र में साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड आर्मी मैन की जिंदगी भर की कमाई पर डाका डाल दिया। सिर्फ एक फर्जी पेंशन वेरिफिकेशन ऐप डाउनलोड करवाई और 3 घंटे के अंदर 9 ट्रांजैक्शंस किया, 28,70,000 रूपये साफ कर दिए। उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका की सेना का युद्धाभ्यास 2026 जारी है और इस बार आतंकवाद के खात्मे के लिए मैदान में सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि हाईटेक रोबोटिक डॉग्स और एडवांस ड्रोन्स भी उतरे। इमारत में छिपे आतंकियों का सफाया करना हो या दुर्गम पहाड़ियों पर खुफिया निगरानी, रोबोटिक डॉग्स पलक झपकते लोकेशन क्लियर कर। महाराष्ट्र के नाशिक से विरोध प्रदर्शन की एक ऐसी तस्वीर आई है जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान गुस्साए लोगों ने बोरे में कुत्ते को भरकर नगर पंचायत के चीफ ऑफिसर की टेबल पर छोड़ दिया। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अफसर को नोटों की माला पहनाने की भी कोशिश हुई, जिसके बाद दफ्तर में हंगामा हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में आज अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने के बाद चांदी के दाम तेजी से टूटे, वहीं सोना भी अब तक के ऊंचे स्तर से काफी नीचे फिसल चुका है। आखिर बाजार में अचानक बड़ी गिरावट क्यों आई है? अमेरिका के फेडरल रिजर्व का फैसला इसकी वजह है या मजबूत होता डॉलर और मुनाफा वसूली? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अमेरिका रशिया से यूरेनियम खरीदता है, प्लूटोनियम खरीदता है, न्यूक्लियर रिएक्टर रशिया से खरीदता है, हर साल लगभग $6 बिलियन यानी 57,000 करोड़ रुपए का व्यापार करता है, और जो यूक्रेन से यह कहता है कि वो रशिया की तेल रिफाइनरीज पर हमले ना करे, वही अमेरिका और उसके नेता आखिर दूसरे देशों को ये उपदेश क्यों देने लगते हैं कि उन्हें रशिया से कच्चा तेल नहीं खरीदना चाहिए? रशिया के साथ व्यापार करने का मतलब है यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देना। आप खुद सोचिए, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका रशिया के साथ व्यापार करे तो इससे यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा नहीं मिलता, और वो भी यूरेनियम खरीदे, प्लूटोनियम खरीदे, वो पैसा युद्ध में नहीं जा रहा है। लेकिन अगर भारत या कोई अन्य देश तेल खरीदे तो यह पैसा युद्ध के लिए जा रहा है। अमेरिका इन तमाम देशों पर कड़े प्रतिबंध लगाने की धमकी देने लगता है और इस बार भी यही कर रहा है। आज हम आपको इस पूरे मुद्दे पर एक ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जो अमेरिका की दबाव बनाने की रणनीति, उसके एकतरफा फैसलों और रशिया के साथ उसके खुद के व्यापार को लेकर गंभीर सवाल उठाती है। देखिए,
1: The question is now on agreeing to the motion to concur. All members will record their votes by electronic device. This is a 15-minute vote.
2: ये तस्वीरें अमेरिकी संसद की हैं, जिसने 16 सितंबर को एक बेहद सख्त कानून पारित किया। इस कानून का नाम है लिंडसे ओग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026। और इसका मकसद है रूस के कच्चे तेल और गैस के व्यापार पर आर्थिक चोट पहुंचाना और उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता को कमजोर करना। यानी जिन देशों ने अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से कच्चा तेल और गैस खरीदना बंद नहीं किया, उन देशों को इसकी सजा देने के लिए अमेरिकी संसद ने इस कानून को पारित किया है।
3: We can support Ukraine. We can hold Russia accountable. And we can protect the American people.
2: ये बिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये कानूनी शक्ति देता है कि वो रूस से तेल और गैस खरीदने वाले दुनिया के शीर्ष 5 बड़े देशों पर 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं और इस टैरिफ को दंडात्मक यानी सजा के रूप में वसूला जाने वाला टैरिफ बताया गया है। इन 5 देशों में भारत, चीन, हंगरी, स्लोवाकिया और अजरबैजान शामिल हैं। ये वो देश हैं जो मौजूदा वक्त में रूस से सबसे ज्यादा तेल और गैस खरीद रहे हैं। अगर ये टैरिफ भारत पर लगता है तो अमेरिका में भारत का जितना भी सामान निर्यात होता है वो सीधे सीधे दोगुना महंगा हो जाएगा और इसकी सबसे बड़ी मार भारतीय व्यापारियों पर पड़ेगी और अमेरिका में भारत का निर्यात तेजी से सिकुड़ने लगेगा।
4: To Vladimir Putin, we have your number. Your economy is reeling. We're going to throttle your war machine. China and India, to you, you better clean up your act, buy your oil and gas somewhere else.
2: अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद इस बिल को अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा और ट्रंप के हस्ताक्षर करते ही यह पूर्ण रूप से कानून बन जाएगा। हालांकि इस कानून को लेकर 3 बातें समझना बेहद जरूरी हैं। पहली बात, इसे पूरी दुनिया वेपनाइजेशन ऑफ टेररिस्ट बता रही है, यानी इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब अमेरिकी संसद किसी देश के युद्ध को रोकने के लिए टैरिफ को हथियार बना रही है, जबकि ये ग्लोबल ट्रेड यानी WTO के नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसा है। दूसरा, इस कानून को भारत अमेरिका रिश्तों के लिए टाइम बम जैसा माना जा रहा है, क्योंकि ये कानून ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की अंतिम दौर की बातचीत चल रही थी। और तीसरा, ये कानून अमेरिकी दबाव का एक मुखौटा भी हो सकता है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि 100% टैरिफ का आंकड़ा एक अधिकतम सीमा यानी सीलिंग है, ना कि ऑटोमेटिक टैक्स। राष्ट्रपति ट्रंप के पास इसे पूरी तरह माफ करने या कम करने का भी अधिकार रहेगा, इसलिए कई विश्लेषक इसे अमेरिका की एक दबाव बनाने की रणनीति यानी प्रेशर टैक्टिक्स मान रहे हैं, ताकि भारत को रूस से दूर किया जा सके या भारत से कोई एक तरफा व्यापार समझौता कराया जा सके, जबकि भारत इस दबाव के सामने बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए साफ कहा है कि भारत अपने 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और बाजार के हिसाब से तेल खरीदना जारी रखेगा। साथ ही भारत ने चेतावनी भी दी है कि वो अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। यानी भारत ने अमेरिका के इस कानून को सिरे से खारिज कर दिया है और हम ये स्थिति साफ करके चल रहे हैं कि अगर भारत को रशिया के कच्चे तेल की जरूरत होगी तो देश हित में हम ये आयात जारी रखेंगे। इस बिल का नाम अमेरिका के दिवंगत नेता लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है, जिनका निधन इसी साल 11 जुलाई को हुआ था। ये वही नेता थे जिन्होंने इस पूरा कानून का आइडिया दिया और यहाँ तक कहा कि रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले भारत और चीन जैसे देशों पर 500% का टैरिफ लगा देना चाहिए। ये आइडिया भी उन्होंने तब दिया

0: मीडिया और सार्वजनिक मंचों से लगातार भारत के खिलाफ कई बयान दे रहे थे। उन्होंने ये तक कहा था कि अगर भारत, चीन और ब्राजील रशिया से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो रशिया को दिया गया उनका पैसा ब्लड मनी यानी खून से सना हुआ पैसा माना जाएगा। इन्हीं बयानों के बीच उन्होंने भारत को डराने के लहजे में आर्थिक तबाही की धमकी दी थी और क्रश योर इकोनॉमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। और सोचिए ये सब क्यों हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा है। लेकिन कड़वा सच ये है कि रशिया और भारत के व्यापार पर एतराज जताने वाला यही अमेरिका खुद रशिया के साथ अपना आयात निर्यात जारी रखता है। पिछले साल 2025 में अमेरिका और रशिया के बीच लगभग 6 बिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में आज के हिसाब से 57,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जो 2024 के मुकाबले लगभग 15% ज्यादा था। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले साल में अमेरिका के रशिया के साथ कुल व्यापार करीब 15% बढ़ गया। लेकिन अमेरिका में किसी ने वहां के पैसे को ब्लड मनी यानी खून से सना पैसा नहीं कहा। यह भी तब हुआ जब रशिया से अमेरिका को फर्टिलाइजर्स का निर्यात 38% बढ़ा, यूरेनियम और प्लूटोनियम का व्यापार 61% बढ़ा और न्यूक्लियर रिएक्टर्स और मशीनरी का व्यापार 12% बढ़ा। आज बड़ा सवाल यही है कि जब अमेरिका खुद रशिया से व्यापार करता है और इसे वो अपने राष्ट्रहित में जरूरी मानता है तो वो भारत रशिया के व्यापार पर यही सोच क्यों नहीं रखता।
1: राष्ट्रपति पुतिन, दिलचस्प बात तो ये है ना कि अगर आप प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को देखें, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि भारत तो कच्चा तेल खरीद रहा है रूस से और वही फंड कर रहा है इस पूरे युद्ध को। आप डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, उनके व्यक्तित्व को कैसे समझाएंगे?
2: मैं कभी अपने सहयोगियों का चरित्र चित्रण नहीं करता, उनका भी नहीं जिन्होंने मेरे साथ काम किया, और खास तौर पर राष्ट्राध्यक्षों का तो बिल्कुल नहीं। मेरे विचार में ये आकलन उस देश के नागरिकों को करना चाहिए जिन्होंने उन्हें वोट देकर सत्ता सौंपी। जहां तक भारत की ओर से रूस से ऊर्जा संसाधनों की खरीद की बात है तो मैं साफ कर दूं कि अमेरिका अब भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए हमसे परमाणु ऊर्जा की खरीद करता है। इनमें अमेरिका में चल रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूरेनियम भी शामिल है। तो अगर अमेरिका खुद अपनी ऊर्जा जरूरतें रूस के जरिए पूरी करता है तो फिर भारत की खरीद को लेकर उन्हें आपत्ति क्यों है? इस विषय पर गहन अध्ययन की जरूरत है और हम इसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से चर्चा के लिए भी तैयार है।
0: अमेरिका एक तरफ तो भारत को अपना सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार बताता है और दूसरी तरफ भारत पर ऐसे कानून थोपने की कोशिश करता है जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप है और ना ही किसी भी देश के लिए न्याय संगत है। और यही कारण है कि जब अमेरिकी संसद से यह बिल पास हुआ तो भारत के विदेश मंत्रालय ने बेहद कड़े शब्दों में इसे गैर कानूनी और अमित्रतापूर्ण यानी अनफ्रेंडली कदम बताया और साफ कह दिया कि भारत किसी की धमकी में आए बिना अपने 140 करोड़ लोगों के हितों की रक्षा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
1: क्या आप यकीन करेंगे कि जिस अमेरिका ने रशिया पर सैकड़ों प्रतिबंध लगाए हुए हैं उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी के बाद बहामाज में हुई पार्टी का खर्च रशिया से जुड़े कारोबारी उमर क्रेमलेव ने उठाया था? और आरोप यही है कि ये वही रूसी कारोबारी है जो राष्ट्रपति पुतिन के काफी करीबी है। आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर रशिया पर अमेरिका द्वारा जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनके पीछे की असली कहानी क्या है और इस कहानी में कितनी बड़ी ट्रेजेडी छिपी है।
0: ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने रशिया से कच्चा तेल और गैस खरीदने वाले देशों के खिलाफ टैरिफ को अपना हथियार बनाया है। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ऐसा 4 बार कर चुका है। पिछले साल भी अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ इन्हीं वजहों से लगाया था और अब भी वो कुछ नया नहीं कर रहा है। अमेरिका बार बार अपने कड़े प्रतिबंधों को जायज ठहराने के लिए यूक्रेन युद्ध को आधार बनाता है। ये कहता है कि यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए वो रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन हकीकत में इन प्रतिबंधों के पीछे एक दूसरी कहानी है। इन प्रतिबंधों के पीछे पहला और सबसे असली कारण है अमेरिकी तेल का बाजार बढ़ाना, यानी

0: अमेरिकी तेल की मोनोपोली और उसका मार्केट शेयर। किसी भी बाजार का सीधा नियम यही होता है कि अगर आप अपने सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी को मुख्य बाजार से बाहर कर देंगे तो आपकी मोनोपोली अपने आप मजबूत हो जाएगी। और अमेरिका अभी यही कर रहा है, उसने प्रतिबंध लगाकर रूस को सीधे सीधे इस बाजार से बाहर किया हुआ है। इन प्रतिबंधों की दूसरी वजह है पेट्रो डॉलर साम्राज्य की रक्षा। दुनिया का ज्यादातर तेल आज भी अमेरिकी डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है और इसे पेट्रो डॉलर व्यवस्था कहते हैं। लेकिन रूस और चीन जैसे देश लगातार तेल के व्यापार को अपनी स्थानीय मुद्राओं या अन्य मुद्राओं में करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर रूस बिना किसी पाबंदी के दुनिया को तेल बेचता और डॉलर को दरकिनार करता है तो अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। और इसी चीज को देखते हुए अमेरिका उन देशों पर दबाव बनाता है जो डॉलर के अलावा किसी और मुद्रा में बड़ा व्यापार करने की कोशिश करते हैं। और यहां भारत भी रशिया से नेशनल करेंसी में तेल और गैस खरीद रहा है।
1: हेलो मिस्टर पेस्कोव, थैंक यू फॉर दिस इंटरेक्शन एंड इट्स नाइस दैट यू हैव कॉल्ड दिस सेशन टेलिंग द अनटोल्ड, सो वी आर काउंटिंग ऑन दैट। डोनाल्ड ट्रंप द अमेरिकन प्रेसिडेंट सेज ब्रिक्स इज अ फोरम अगेंस्ट द डॉलर। You yourself mentioned how 90% of the payments that Russia is doing with other BRICS countries has now moved on to national currency. There are other countries also within BRICS without sanctions who have opted for cross-border national currency payment systems. Why does Russia or BRICS shy away from openly claiming de-dollarization? And how would you respond to the allegation that BRICS is a forum against the dollar that Donald Trump often talks about?
2: Thank you. It's a very interesting question.
3: यह बहुत दिलचस्प सवाल है। खैर, मैं फिर से दोहराऊंगा। BRICS किसी के खिलाफ नहीं है। BRICS तो अपने सदस्य देशों के राष्ट्रीय हितों के लिए है और रूस भी BRICS देशों में से एक है। रूस से अमेरिकी डॉलर और यूरो इस्तेमाल करने का अधिकार छीन लिया गया था। ये पूरी दुनिया के लिए रिजर्व करेंसी है और अमेरिका ने हमें इस रिजर्व करेंसी का इस्तेमाल करने के अधिकार से वंचित करने का फैसला किया, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी खुद की करेंसी क्यों ना इस्तेमाल करें। क्या इसकी कीमत अमेरिकी डॉलर के बराबर है? नहीं, कुछ हद तक तो यह उससे भी बेहतर है। और हमने अलग अलग देशों को नेशनल करेंसी इस्तेमाल करने का प्रस्ताव देना शुरू किया। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम डॉलर के खिलाफ हैं और हम किसी डी डॉलरलाइजेशन पॉलिसी का दावा भी नहीं करना चाहते। हम बस वही कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए बेहतर है। तो मैं ये कहूंगा कि असल में अमेरिका ही डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी करेंसी रिजर्व करेंसी बनी रहे तो आप कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जैसा मैंने बताया। तो अमेरिका अमेरिकी डॉलर पर भरोसा खत्म कर रहा है और जितना ज्यादा भरोसा खत्म हो रहा है उतना ही भरोसा नेशनल करेंसी की तरफ बढ़ रहा है। तो यही प्रक्रिया है और यही इस प्रक्रिया का स्वरूप है।
2: More trust is going in favor of national currencies. So this is the process and this is the nature.
3: और जाहिर है सभी देश वही कर रहे हैं।
0: यहाँ बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अगर अमेरिका को रूस से इतनी ही दिक्कत है तो उसने रूस का तेल पूरी तरह बंद क्यों नहीं करवा दिया? लेकिन हकीकत में यहीं पर अमेरिका की असली आर्थिक चालाकी समझ में आती है। अगर रूस का तेल पूरी तरह बाजार से गायब हो जाए तो दुनिया में तेल की भारी कमी हो जाएगी। इससे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल से $200 प्रति बैरल तक जा सकती हैं, जिससे अमेरिका और पूरी दुनिया में भयानक महंगाई और मंदी आ जाएगी। इसीलिए अमेरिका और उसके सहयोगियों ने G7 प्राइस कैप नीति अपनाई। इसके तहत रूस को तेल बेचने की अनुमति तो है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि रूस $60 प्रति बैरल से ज्यादा कीमतों पर तेल का निर्यात नहीं कर सकता। इससे बाजार में तो तेल की सप्लाई बनी रहती है और वैश्विक कीमतें भी नियंत्रण में रहती हैं, लेकिन रूस को उस तेल पर कोई बड़ा प्रॉफिट मार्जिन यानी मुनाफा नहीं मिलता जो उसे सुपर पावर बनाने की ताकत रखता है। और चौथा बड़ा कारण है पश्चिमी देशों की सर्विस मोनोपोली। दुनिया के पास तेल भले हो, लेकिन उस तेल को समंदर के रास्ते एक देश से दूसरे देश भेजने के लिए जहाजों का बीमा और बड़े शिपिंग टैंकरों की जरूरत होती है। इस पूरी शिपिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर 90% नियंत्रण अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की कंपनियों का है। अमेरिका ने नियम बनाया है कि जो भी जहाज रूसी तेल को तय प्राइस कैप से महंगे दाम पर ले जाएगा, उसे पश्चिमी कंपनियां इंश्योरेंस नहीं देंगी। इस सर्विस मोनोपोली का इस्तेमाल करके भी अमेरिका तेल के बाजार में अपनी मोनोपोली बनाता है, और ये बात दुनिया समझ ही नहीं पाती कि इन प्रतिबंधों का असली खेल यूक्रेन युद्ध को रोकना नहीं है, बल्कि इनका असली खेल रशिया को तेल बाजार से बाहर कर देना है, और उसके सामने ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश है कि वो भविष्य की तकनीकों में निवेश करने के लिए पैसा न जुटा पाए और वैश्विक महाशक्ति की दौड़ में हमेशा पीछे रहे। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर यूक्रेन युद्ध अकेला इसका कारण होता तो अमेरिका खुद भी रशिया से व्यापार बंद कर देता, और व्यापार ही क्यों। पिछले हफ्ते अमेरिका ने यूक्रेन से कहा था कि वो रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना न बनाए, और इसके बाद रशिया ने अमेरिका को इसके लिए धन्यवाद दिया था। इससे पहले ये खबर भी आई थी कि राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी के बाद बहामास में हुई पार्टी का खर्च रूस से जुड़े कारोबारी उमर क्रेमलेव ने उठाया था, जो राष्ट्रपति पुतिन के करीबी है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने बेटे की शादी की पार्टी में रूस के कारोबारी से पैसा खर्च करवा देते हैं, खुद रशिया के साथ व्यापार कर लेते हैं, लेकिन भारत को उसके राष्ट्रहित में फैसले लेने पर 100% टैरिफ लगाने का कानून थोप देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
1: अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे फैसले लेकर अमेरिका अपनी कैसी क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता दुनिया में बना रहा है। वो खुद रशिया से व्यापार करता है, लेकिन भारत और चाइना जैसे देशों पर रशिया से कच्चा तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाने की धमकी देता है। और अब आप ये भी खबर भी देखिए जो सऊदी अरब से आ रही है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस और रॉयटर्स का दावा है कि अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की थी। ये बहुत बड़ा दावा है रॉयटर्स और एक्सियोस का कि अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों, जो कि एक आतंकी संगठन है जो अपने आप को रेजिस्टेंस फोर्स कहता है, उन हूती विद्रोहियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की थी, जिसमें यह तय हुआ कि अगर हूती विद्रोही अमेरिकी जहाजों पर हमला नहीं करेंगे तो अमेरिका भी हूती के खिलाफ युद्ध में सऊदी अरब की कोई मदद नहीं करेगा। यानी जिस सऊदी अरब ने अमेरिका के लिए अपना कच्चा तेल जो है वो आज तक सिर्फ डॉलर में बेचा, उसी सऊदी अरब के साथ अमेरिका ने खेला कर दिया है, और अब यह खबर पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। देखिए,
0: हूती के हमले सऊदी अरब की नींद उड़ाए हुए। सऊदी अरब को लगा था कि हूती के खिलाफ अमेरिका, पाकिस्तान और तुर्की जैसे दोस्त मदद के लिए आएंगे। उन्होंने बोला भी कुछ कुछ वैसा ही था, लेकिन जब हूती के साथ उसकी असली जंग शुरू हुई है तो सऊदी अरब का सच से सामना हो गया है। उसे समझ में आ गया है कि उसे बचाने कोई नहीं आएगा, वो भी नहीं जो डिफेंस डील करके उसका पैसा ऐंठने के लिए उसका दोस्त बने थे, और वो भी नहीं जो सऊदी के तेल के चक्कर में उसकी सुरक्षा देने का दावा करते नहीं थकते। अभी एक हफ्ता पहले सऊदी अरब ने अमेरिका से हूती के खिलाफ मदद मांगी थी। उसने अमेरिका से हूती के ठिकानों पर हमला करने की अपील की थी, लेकिन अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया था यह सऊदी को तब समझ में नहीं आया था, लेकिन अब इस पर एक बड़ा खुलासा हो गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप सरकार और हूती के बीच एक सीक्रेट डील हो गई है। अमेरिकी न्यूज वेब पोर्टल एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक डील ये हुई है कि हूती लाल सागर और बाबल मंदेब के पूरे समुद्री मार्ग पर अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को निशाना नहीं बनाएंगे, और इसके बदले में अमेरिका यमन में हूती के ठिकानों पर हमले नहीं करेगा, यानी सऊदी अरब का साथ नहीं देगा। दावा है कि अमेरिकी अधिकारियों और हूती नेताओं के बीच ये सीक्रेट मीटिंग पिछले हफ्ते ओमान की राजधानी मस्कट में हुई थी, और खास बात यह है कि ये मीटिंग अमेरिकी दूतावास के अंदर हुई थी। इससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी बांस ये पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका हूती के संपर्क में है। हूती के हमलों के खिलाफ सऊदी अरब की मदद न करने के पीछे अमेरिका के पास यही एक वजह है, वो अपने और अपने मित्र देशों के जहाजों को नुकसान से बचाना चाहता है। हॉर्मुज पर अमेरिका ईरान जंग की वजह से वैसे ही दुनिया में कच्चे तेल का 20% व्यापार प्रभावित हो रहा है। एक एक कंटेनर को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका

की सेना को पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। युद्ध से पहले जहां 140 जहाज प्रतिदिन निकलते थे, युद्ध के बाद यह संख्या 14 पहुंच गई। अब अगर ऐसे में हूती ने बाबल मंदेब और लाल सागर में जहाजों पर हमले शुरू कर दिए तो हालात ज्यादा खराब हो जाएंगे और दुनिया का 12% कच्चे तेल का व्यापार और प्रभावित होने लगेगा। हॉर्मुज युद्ध की वजह से इस मार्ग पर जहां पहले 70 जहाज प्रतिदिन गुजरते थे, अब ये संख्या 26

0: की संख्या 26 हो गई है और अगर हूती ने भी हमले शुरू कर दिए तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इस खतरे को भांपते हुए ही अमेरिका ने हूती से डील की ताकि व्यापार प्रभावित न हो, और डील का फायदा यह हुआ है कि हूती ने लाल सागर और बाबल मंदेब में केवल सऊदी जहाजों और सऊदी का तेल ले जाने वाले जहाजों को टारगेट करने की बात कही। हूती नेताओं का दावा है कि यमन पर सऊदी अरब की नाकेबंदी और सैन्य कार्रवाई की वजह से ही उनके जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि अमेरिका से तो साल 2025 से ही उनका सीजफायर चल रहा है, और हूती और अमेरिका के इस डील की कहानी साल 2023 से ही शुरू हो जाती है, जब हमास के आतंकियों ने इसराइल में नरसंहार किया था। हमास के इस हमले के बाद इसराइल ने उनके खिलाफ एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इसराइल हमास युद्ध में यमन के हूती ने फिलिस्तीन का साथ देने का ऐलान किया था। युद्ध में मदद के नाम पर हूती ने लाल सागर और बाबल मंदेब में इसराइल से जुड़े जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए थे। हूती के इन हमलों की वजह से लाल सागर का पूरा समुद्री मार्ग खतरे में आ गया था। साल 2023 में हूती के इन हमलों ने अमेरिका और कई अन्य देशों को परेशान करके रखा था। बड़े स्तर पर समुद्री व्यापार प्रभावित हो रहा था। इस वजह से अमेरिका और ब्रिटेन ने साल 2024 में हूती के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन इसके बावजूद हूती ने लाल सागर में अपने हमले बंद नहीं किए। साल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका ने मार्च में हूती के खिलाफ एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम था ऑपरेशन रफ राइडर। इस ऑपरेशन के तहत करीब 2 महीने तक यमन में हूती के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। अमेरिका के इन हमलों से हूती ठंडे पड़ गए। वो अमेरिकी हमलों को रुकवाना चाहते थे। इस मौके का फायदा ओमान ने उठाया। उसने 6 मई 2025 को अमेरिका और हूती के बीच युद्ध विराम करवा दिया। ये किसी तरह का लिखित युद्ध विराम नहीं था। इसमें ये तय हुआ था कि अमेरिकी सेना हूती के ठिकानों पर बमबारी नहीं करेगी और हूती अमेरिका और अन्य देशों के जहाजों को निशाना नहीं बनाएंगे। हालांकि इस डील में इसराइल शामिल था। यानी हर बार अमेरिका ने अपना फायदा देखा। इसराइल हमास युद्ध में भी अमेरिका तभी मैदान में उतरा जब अमेरिकी जहाजों पर हूती ने हमले शुरू किए। उससे पहले वो भी कुछ नहीं कर रहा था। और ठीक उसी तरह से जब सऊदी अरब और हूती के बीच जंग शुरू हुई है तो अमेरिका ने हूती पर हमला करने से इनकार कर दिया, क्योंकि व्यापार प्रभावित हो सकता है। दोनों ही मामलों में अमेरिका ने अपना फायदा देखा और दोस्ती यारी को साइडलाइन कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि क्या कभी अजेय और अचूक माना जाने वाला अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान अब फेलियर 15 बन रहा है। हूती का दावा है कि उसने भी सऊदी अरब का F-15 लड़ाकू विमान मार गिराया है। उसने इसके मलबे की तस्वीरें, मिसाइल हमले का एक वीडियो सब जारी किया है, जबकि सऊदी अरब ने इन दावों की अब तक कोई पुष्टि नहीं की है। यह दावा भी ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसी साल अप्रैल में ईरान ने भी अमेरिकी F-15E को मार गिराने का दावा किया था, और अमेरिकी F-15 को लेकर दूसरी घटनाओं ने भी इस विमान के अजेय होने पर सवाल खड़े किए थे। तो आखिर जिस F-15 को दशकों तक दुनिया का सबसे भरोसेमंद और घातक लड़ाकू विमानों में गिना गया, उसकी मुश्किल क्या है और क्यों ये फाइटर जेट अब अमेरिका से लड़ाकू विमान खरीदने वाले देशों को परेशान कर सकता है, उसके लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखें।

ये तस्वीरें देखकर सऊदी अरब ने सिर पकड़ लिया होगा और अमेरिका मुंह छिपाकर बैठ गया होगा। जिस फाइटर जेट का मलबा आप देख रहे हैं उसे अमेरिका दुनिया के सबसे खतरनाक और हाईटेक फाइटर जेट्स में से एक बताता था। ये अमेरिकी फाइटर जेट F-15 का मलबा है जिसे हुतियों ने मार गिराया है। सोचिए, अमेरिका का हाईटेक फाइटर जेट हुती जैसे लड़ाकों ने मार गिराया जिनके पास हाईटेक हथियार भी नहीं है। हुती का दावा है कि उन्होंने यमन के मारिब में सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया। हुती नेताओं ने तो F-15 गिराने की तस्वीरें जारी करके सऊदी अरब और अमेरिका का मजाक उड़ाया है। हुती नेता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा कि F-15 के मलबे की तस्वीरें इसलिए जारी की गई हैं ताकि पश्चिमी देश सऊदी अरब की बातों में आकर उनसे लड़ने न पहुंच जाएं। सऊदी अरब अपने इस फाइटर जेट के गिराए जाने से बहुत परेशान है। वो परेशान इसलिए है क्योंकि F-15 उसकी एयरफोर्स के पास मौजूद सबसे ताकतवर जेट था और हुती द्वारा उसे मार गिराना उसकी एयरफोर्स के लिए शर्मनाक है। सऊदी अरब के पास कुल 283 फाइटर जेट हैं, जिनमें 231

0: केवल F-15 फाइटर जेट ही हैं। सऊदी अरब 1975 से ही अमेरिका से F-15 फाइटर जेट खरीद रहा है और समय समय पर उन्हें अपग्रेड भी करा रहा है, और आज जब युद्ध के मैदान में इसकी जरूरत पड़ी तो हूती जैसे लड़ाकों ने उसे मार गिराया। सऊदी अरब के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है कि वो अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट के दम पर हूती को हराने की योजना बना रहे हैं और हूती उसी फाइटर जेट को मार गिरा रहे हैं। सऊदी के पास हूती पर हवाई हमले करने के लिए फाइटर के विकल्प बहुत कम हैं। सऊदी को लगा था कि अमेरिका का ये फाइटर जेट उसके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने इसको लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। अमेरिका का दावा है कि F-15 को हवाई लड़ाई में आज तक कोई नहीं गिरा पाया है, और ये अभी तक सही माना जाता है, क्योंकि F-15 को हवाई लड़ाई में नहीं बल्कि जमीन से हमला करके गिराया गया है। F-15E एक ट्विन इंजन मल्टी रोल ऑल वेदर फाइटर जेट है, जिसे एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर चलाते हैं। इसीलिए F-15 अमेरिकी एयरफोर्स का भी एक फ्रंट लाइन फाइटर जेट है, जिसे अटैक मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। F-15 से 10,000 किलोग्राम तक के हथियार ले जाए जा सकते हैं, और इसमें लेजर गाइडेड बम, एयर टू एयर मिसाइल और GPS गाइडेड हथियार भी शामिल हैं। F-15 की रफ्तार 2900 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है, और इसकी एक खासियत ये भी है कि वो रात के समय में भी कई टारगेट का पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक करके हमला कर सकता है। इसकी इसी खासियत की वजह से कई देशों ने अमेरिका से ये फाइटर जेट खरीदा है। इस वक्त F-15 फाइटर जेट इसराइल, सऊदी अरब, सिंगापुर, कतर और जापान के पास हैं। इसराइल और सऊदी के पास F-15E हैं और जापान के पास F-15J। वहीं सिंगापुर और कतर जैसे देश इसका अपग्रेडेड वर्जन F-15EX ईगल 2 इस्तेमाल करते हैं। हालांकि F-15 की बेजोड़ काबिलियत के बावजूद युद्ध के मैदान में ये कई बार नाकाम रहा है। हाल के दिनों में ही कई F-15 गिराने का दावा किया गया है। इसी साल अप्रैल में ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने दावा किया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने एक F-15 को ध्वस्त कर दिया। ये F-15E था, जो 2-सीटर फाइटर जेट था। मार्च में भी ईरान ने एक F-15 मार गिराने का दावा किया था, लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद कुवैत में 3 F-15 मार गिराए गए थे, लेकिन ये अमेरिकी फाइटर जेट कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से मार गिराए थे। हूती के द्वारा F-15 को मार गिराए जाने के बाद अमेरिकी दावे और सऊदी का F-15 पर भरोसा डगमगा रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि ईरान पर हमले की अमेरिका ने अब तक क्या कीमत चुकाई है। देखिए,

0: अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि हुर्मुज के बाद अब बाब अल मंदेब में भी उसके लिए युद्ध का एक नया मोर्चा खुल जाए। हुर्मुज से जहाजों की आवाजाही करवाने के लिए अमेरिकी सेना को पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है, तब जाकर कहीं किसी दिन 10 तो किसी दिन 20 जहाज गुजर पाते हैं। IRGC के हमलों की वजह से हुर्मुज से जहाजों की आवाजाही करवाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब अगर लाल सागर में भी अमेरिकी सेना हूती के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरी तो अमेरिका के हथियारों की खपत भी बढ़ेगी और उनका खर्चा भी बढ़ेगा। फिलहाल जो स्थिति है उसमें अमेरिका नहीं चाहता कि वो युद्ध के दो मोर्चे खोलकर अरबों डॉलर समंदर में बहाता रहे। ईरान में ही अमेरिका भारी नुकसान झेल चुका है और ये अब भी जारी है। ईरान के हमलों में अभी तक अमेरिका 3,63,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है और युद्ध जारी रहने की स्थिति में हर महीने करीब 28,727 करोड़ रुपए का खर्च इसमें और जुड़ जाता है। एक तरह से अभी की स्थिति में ईरान युद्ध अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा बोझ बना हुआ है। युद्ध में अमेरिका को हथियारों का भी भारी नुकसान हुआ है, जिसमें कई फाइटर जेट्स, हवा में ईंधन भरने वाले हवाई जहाज, फाइटर हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन शामिल हैं। इस युद्ध में अब तक अमेरिका के 4 F-15E फाइटर जेट्स, एक F-35A फाइटर जेट और एक A-10 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट तबाह हुए हैं। इसके अलावा हवा में ईंधन भरने वाले 7 KC-135 हवाई जहाज और एक E-3 अर्ली वार्निंग सिस्टम एयरक्राफ्ट तबाह हुआ है। इसके अलावा 5 हेलीकॉप्टर, एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट और एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी तबाह हुए हैं। युद्ध के दौरान अमेरिका के 30 MQ-9 रीपर ड्रोन भी मार गिराए गए हैं। अभी ईरान युद्ध खत्म नहीं हुआ है और ये कब तक चलेगा इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। सीज फायर की चर्चा करना भी फिलहाल बेमानी है। ऐसे में अगर अमेरिका ने हूती के खिलाफ युद्ध का दूसरा मोर्चा खोल दिया तो सैन्य खर्च की सभी सीमाएं पार हो जाएंगी और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को ये समझाना भारी पड़ जाएगा कि आखिर दो मोर्चों पर अकेले युद्ध कब तक लड़ा जाएगा। नवंबर में ही अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं और अगर युद्ध का कोई अंत निकलता नहीं दिखता और खर्च ऐसे ही बढ़ता रहा तो ट्रंप को भारी नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में वो युद्ध का नया मोर्चा बिल्कुल नहीं खोलना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: खैर, आगे बढ़ते और आपको ये बताते हैं कि द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि चाइना दुनिया का पहला अंडर वाटर ड्रोन मदरशिप बना रहा है जो पूरी तरह रोबोट टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। और क्यों दुनिया चाइना के इस मदरशिप को लेकर चिंता जता रही है, उस पर हमारी ये रिपोर्ट भी।
0: समंदर की लड़ाई में चीन अब अपना एक नया हथियार लेकर आने वाला है। ये किसी भी वक्त जंग की सूरत बदल सकता है। इस नए हथियार ने दुनिया की सैन्य महाशक्तियों के भी होश उड़ा दिए हैं। चीन दुनिया का पहला अंडर वाटर ड्रोन मदरशिप बना रहा है। ये ऐसी सबमरीन होगी जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक और अनमैन्ड होगी, यानी समंदर के अंदर मौजूद इस सबमरीन को जमीन पर मौजूद किसी कमांड सेंटर से चलाया जा सकेगा। हाल फिलहाल के जितने भी युद्ध चल रहे हैं उसमें ड्रोन हथियारों का दम पूरी दुनिया देख रही है। ड्रोन अटैक के जरिए यूक्रेन रशिया पर कई बार भारी पड़ता दिखता है। ड्रोन के जरिए हमला करके IRGC भी अमेरिकी सेना को चौंकाती रही है। चीन ने दो कदम आगे की सोची है। ये पहली बार है जब किसी देश ने समंदर की लड़ाई के लिए ड्रोन का घातक स्वरूप तैयार कर लिया है। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस कंपनी विंटॉर ने एक तस्वीर जारी की है। ये तस्वीर है हुडोंग झोंग हुआ शिपयार्ड की, जहां एक लाल जहाज बनते हुए दिखाया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा ये जहाज ही अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप बताया जा रहा है। चीन के अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप की लंबाई करीब 205 मीटर और चौड़ाई 27 मीटर है। इसके पिछले हिस्से में करीब 55 मीटर लंबी और 13 मीटर चौड़ी वेट वेल है, जिसके जरिए ऑटोनॉमस सबमरीन समंदर में उतर पाएगी। वेट वेल के आगे बंद हैंगर है जहां 4 अनमैन्ड सबमरीन रखी जाएंगी। अनमैन्ड सबमरीन का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उन्हें क्रू के लिए जगह या लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं होगी और खतरनाक मिशन पर इसे तुरंत उतारा जा पाएगा।
2: देखिए समुद्री शक्ति संतुलन में चीन आगे निकल रहा है और ये देखना होगा कि अब वो आक्रामक नीति अपना रहा है, अपनी तकनीकी का इस्तेमाल करके वो अंडर वाटर मानव रहित ड्रोन का जो प्रयोग कर रहा है जिसकी रिपोर्ट आ रही है लगातार, इससे पूरे ईस्ट एशिया से लेकर के आसियान कंट्रीज और भारत जो पूरा इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन का पूरा रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है। अब चीन के पास एक अपर हैंड सिचुएशन होगी जिससे वो बार्गेनिंग पावर की कैपेसिटी डेवलप करके चाहे वो ईस्ट चाइना सी हो या साउथ चाइना सी हो जहां पर वो उसके जो एग्रेसिव पोस्टिंग हमेशा रहती है जैसे फिलीपींस हो, जापान हो, इस तरह के जो देश हैं जो परेशान रहते हैं या उनके जहाजों पर चीन कभी ब्लॉकेट करता है कभी आक्रमण करता है, तो अब अंडर वाटर ड्रोन से एक समुद्र के अंदर युद्ध की स्थिति बनने का खतरा है और इस पर जो वैश्विक एक कंट्रोल या वैश्विक एजेंसीज हैं उन्हें नजर रखनी होगी।
0: चीन की इस तैयारी का खुलासा पिछले साल जनवरी में हुआ था लेकिन अब की बार चीन ने साउथ चाइना सी के हेनान द्वीप के पास कुछ अनमैन्ड पनडुब्बियों का परीक्षण पूरा कर लिया है, यानी पनडुब्बियां तैयार हो चुकी हैं और उन्हें बस अपनी मदर शिप का इंतजार है। आज तक ब्यूरो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ता केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों ने विशेष उत्सव मनाया। पूरा देश उत्सव और सेवा के अनूठे रंग में रंगा नजर आया। अगर आप देखें तो तमाम राज्यों में कोने कोने में आशीर्वाद के दिए जलाकर प्रधानमंत्री की लंबी आयु अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई और सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत हुई।
0: जन्मभूमि से कर्मभूमि तक, आस्था से सेवा तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके को बीजेपी और एनडीए ने पूरे देश में भारत संपर्क और सेवा पर्व बना दिया। कोने कोने में सेवा संकल्प अभियान के तहत आशीर्वाद का दिया जलाया गया तो वहीं गुजरात के वडनगर से लेकर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी तक बाइकर्स के महाकाफिले की गूंज सुनाई। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष दर्शन पूजन हुआ जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक साथ नजर आए।
3: मुख्यमंत्री श्रीमानी योगी आदित्यनाथ जी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू जी नायडू और श्री चिराग जी पासवान एलजेपी के नेता और श्री पंकज जी चौधरी यहां के प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग यहां पर पूजा अर्चन करने के लिए काशी विश्वनाथ का आए थे और विधिवत पूजा अर्चन का कार्य संपन्न हुआ है और हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वह दीर्घायु करें।
0: वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की जन्मभूमि वडनगर के हटकेश्वर महादेव मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विशेष पूजा अर्चना की।
4: उन्होंने गहरी निराशा के गर्त से जनता को बाहर निकालकर नरेंद्र मोदी जी ने जनता को आत्मविश्वास से लवरेज कर 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत की यात्रा के साथ जोड़ने का काम किया।
0: इसके साथ ही शुरुआत हुई जन्मभूमि से कर्मभूमि को जोड़ने वाली एक ऐतिहासिक यात्रा की। वाराणसी से वडनगर और वडनगर से वाराणसी के लिए 300 यानी कुल 600 बाइकर्स की रैली को एक साथ हरी झंडी दिखाई गई। आगामी 7 अक्टूबर को पीएम मोदी के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद के 25 साल पूरे हो रहे हैं। ये 600 बाइकर्स देश के 7 राज्यों के 193 जिलों और सैकड़ों गांवों से गुजरते हुए मोदी जी के 25 वर्षों के सेवा कार्यों का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के साथ ही 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले बीजेपी के महीने भर लंबे सेवा संकल्प अभियान का बिगुल भी बज गया है। इंदौर में बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने भव्य रोड शो किया। उधर देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत अद्भुत नजारा देखने को मिला। लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर 1,00,000 दियों की रोशनी से पूरा परिसर नहला उठा। भुवनेश्वर में 40,000 से अधिक आदिवासी छात्र छात्राओं ने एक साथ दिए जलाकर अपने प्रिय प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने हुगरी तट पर आतिशबाजी के बीच दिए जलाए। उत्तराखंड के कालसी में सीएम पुष्कर सिंह धामी, पटना मरीन ड्राइव पर सम्राट चौधरी, इसके अलावा दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा और आशीष सूद भी इस दिया पर्व में शामिल हुए।
5: कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 76वें जन्मदिन को बीजेपी ने सेवा, समर्पण और जनसंपर्क का उत्सव बना दिया। आज तक ब्यूरो।
1: और अब बात पोल्यूशन के सोल्यूशन की। आज तक और दिल्ली सरकार के संयुक्त अभियान में प्रदूषण से निपटने के तरीकों पर नए नए आविष्कार सामने आ रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसा ही अनूठा डिवाइस दिखाने जा रहे हैं जो बारिश के मौसम में स्मार्ट तरीके से काम करता है।

0: मेरा नाम राजन हांडा है और मैं MRH टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ। ये जो प्रोडक्ट आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसको फिल्टर क्यूब बोलते हैं। ये फोर्स्ड एयर सर्कुलेशन के टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल किया जाता है। ये रोड की डस्ट को देखती है, स्मोक को देखती है। उसके अलावा कुछ जो गैसेज हैं, जैसे NO2 है या SO2 है, जो कि हार्मफुल होती हैं, ये उसको भी कैप्चर करती है। सारा सामान जो इसके अंदर लगता है, वो चाहे इंजीनियर जर्मनी में हुआ है, लेकिन मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रहा है, असेंबल इंडिया में हो रहा है। इससे इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत रीजनेबल हो जाती है और इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है और सर्विसिंग भी बहुत बढ़िया हो जाती है।
1: आई एम प्रियंका मनोचा, फाउंडिंग टीम ऑफ MRH टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एंड ऑन माई राइट इज प्रणव कौशिक फ्रॉम आर पार्टनर कंपनी मैन एंड हमल, एंड ही इज स्टीवन, अनदर एम्प्लॉय कॉलीग फ्रॉम मैन एंड हमल। सो टुगेदर वी ब्रिंग टू यू द पॉल्यूशन का सोल्यूशन दैट यू सी बिहाइंड अस, विच इज कॉल्ड एज फिल्टर क्यूब।
2: एक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जितनी हवा भर सकती है, उतनी हवा हर घंटे ये एक मशीन क्लीन करके एरिया में डालती है। तो ऐसी मल्टीपल मशीन से अब हम यूज करते हैं। सो व्हाट वी ट्राई टू डू, एक हम एक क्लीन एयर जोन क्रिएट करते हैं उस एरिया के लिए, ताकि वहां का जो लोकलाइज पॉल्यूशन है वो लोगों के ब्रीदेबल लिमिट्स में आ जाए।

0: और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट पे हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।
1: सॉरी।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Mera rutba hai mera signature. Mera jazba hai mera signature. Bebaak hai mera signature. Signature finest silver ilaichi, a premium product from Dilbar Group.
2: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स।
4: बेस्ट पेंट
7: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
4: JK Maxx Paints.
2: JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
1: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते,
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
1: विमल बोलो जुबा केसरी।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
0: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुमा केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
4: इन एसोसिएशन विद हिंट, एक हिंट तो देते
5: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
4: विमल बोलो जुबां केसरी।
3: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, दुनिया की सोच से ऊपर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
6: आखिर ये सेमीकंडक्टर है क्या? एक छोटी सी चिप इतनी जरूरी क्यों है? आइए एकदम आसान शब्दों में बताते हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए बिजली और उस बिजली को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। सेमीकंडक्टर चिप इसी काम को अंजाम देती है। ये चिप एक तरह से डिवाइस का दिमाग होती है, जो डिवाइस को बताती है कि कब क्या और कैसे करना है। अब सवाल है कि ये चिप बनती किस चीज से है? तो इसकी शुरुआत होती है सिलिकॉन से। सिलिकॉन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में सिलिका और कई खनिजों में पाया जाता है। इसे बेहद शुद्ध करके एक पतली गोल प्लेट बनाई जाती है, जिसे सिलिकॉन वेफर कहा जाता है। यही वेफर आगे चलकर चिप का आधार बनता है। इसको ऐसे समझिए कि सिलिकॉन से वेफर, वेफर से सर्किट, सर्किट से ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से चिप और सबसे अंत में टेस्टिंग और पैकेजिंग। इतने स्टेप से गुजरने के बाद सेमीकंडक्टर चिप तैयार होती है। यही वजह है कि चिप बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। चिप बनाने वाली फैक्ट्री में धूल का एक बेहद छोटा कण भी उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इन फैक्ट्रियों में बेहद साफ वातावरण और बेहद सटीक मशीनों की जरूरत होती है। सेमीकंडक्टर की पूरी दुनिया को अगर देखें तो चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका इसके बड़े केंद्र हैं। इन देशों के पास चिप बनाने की फैक्ट्रियां, तकनीक और पूरी सप्लाई चेन मौजूद है। लेकिन जब बात सबसे आधुनिक और अत्याधुनिक चिप बनाने की आती है, तो ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बनकर सामने आता है। दुनिया के बड़े देश सेमीकंडक्टर को सिर्फ कारोबार का हिस्सा नहीं, बल्कि अपनी तकनीकी और रणनीतिक ताकत मान रहे हैं। क्योंकि आज जिस मोबाइल को हम हाथ में लेकर घूमते हैं, जिस कार में सफर करते हैं और जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उन सब की असली ताकत उस छोटी सी चिप में छिपी है, जो ताइवान, चीन या अमेरिका की बनी है। भारत भी अब इन सेमीकंडक्टर बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। भारत के सेमीकॉन मिशन का विजन है कि पूरा इकोसिस्टम भारत में तैयार किया जाए। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और बांटने का इल्जाम दीवार पर है, लेकिन सच ये है कि आज एक कमरे में भी लोग अलग अलग रहते हैं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में दीपोत्सव, काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दीपक, पीएम ने आभार व्यक्त किया। सौ प्रतिशत टैरिफ वाले अमेरिकी कानून पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध, अलग अलग स्रोतों से जारी रहेगी ऊर्जा खरीद। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 में अभिषेक शर्मा का धमाका, महज 30 गेंदों में जड़ दिया शतक, टेस्ट खेलने वाले देशों में सबसे तेज सेंचुरी का बनाया रिकॉर्ड।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर। आप देख रहे हैं दस्तक, और आज दस्तक एक ऐसी खबर पर जो आपके लिए बहुत जरूरी है। जी हां, यह खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था से तो हर कोई परिचित रहता है, लेकिन जब डॉक्टर के नाम पर डॉक्टर के मरीजों का इलाज करने लगे तो सोचिए कि क्या होगा। जी हां, कानपुर के सरकारी अस्पताल में ऐसा ही खिलवाड़ हुआ। डॉक्टर आराम पर, छुट्टी पर, उनका ड्राइवर काम पर। और जब ड्राइवर डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ तो कानपुर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। तो आइए हम आपको दिखाएं ड्राइवर डॉक्टर का ओपीडी में जानलेवा इलाज।
1: इस हरकत पर तो यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में इलाज नहीं बल्कि दिन दहाड़े मरीजों के साथ जानलेवा खिलवाड़ चल रहा है। जी हां, कानपुर के कांशीराम अस्पताल में डॉक्टर आराम पर हैं और ड्राइवर काम पर हैं। ओपीडी में मरीज आ रहे हैं और डॉक्टर साहब का ड्राइवर मरीजों को धड़ाधड़ दवाइयां लिख रहा है। ड्राइवर डॉक्टर मरीजों से उनका हाल पूछता है और पर्ची पर पता नहीं कौन सी दवाई लिखकर आगे बढ़ा देता है, फिर अगले मरीज का नंबर लेता है। बाकायदा ड्राइवर की ये ओपीडी कानपुर के कांशीराम अस्पताल में जनरल मेडिसिन विभाग के हेड और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामकेश की ओपीडी में चल रही है। कहां तो स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और कहां अस्पताल में डॉक्टर की जगह उनके ड्राइवर ही इलाज करने बैठ जाएं तो मरीजों का हाल क्या होगा, ये आप और हम सभी समझ सकते हैं। यकीनन ये मरीजों के साथ जानलेवा खिलवाड़ से कम नहीं है। जब ड्राइवर ने ओपीडी चलाई तो सीएमओ कहां थे? जब ड्राइवर ओपीडी में मरीजों को देख रहा था तब सीएमएस कहां थे? इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की ओपीडी में ड्राइवर कैसे बैठा? सवाल यह है कि जब अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामकेश की ड्यूटी थी तो वो कहां थे? क्या डॉक्टर रामकेश ने ओपीडी में मरीजों के देखने के लिए अपने ड्राइवर को बैठा दिया? बड़ी बात यह है कि सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर से लेकर सीएमएस यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी अस्पताल में बैठते हैं, तो पूरा अस्पताल प्रशासन कहां था जिन्हें एक ड्राइवर ओपीडी चलाता हुआ नहीं दिखा? वीडियो वायरल होने के बाद पूरा अस्पताल प्रशासन जाग उठा है और कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि सरकारी सिस्टम कितना सड़ चुका है कि डॉक्टर की जगह ड्राइवर इलाज करता है। वीडियो में ड्राइवर मरीजों से उनकी परेशानी पूछता दिखाई दे रहा है। वो मरीजों से पूछ रहा है कि पेट में दर्द है या क्या तकलीफ है, इसके बाद वो पर्चे पर दवाई लिखता नजर आता है और मरीजों के पूछने पर वो उन्हें दवा अस्पताल से नहीं बल्कि बाहर मेडिकल स्टोर से लेने की बात कहता है। अब आपको दिखाते हैं डॉक्टर ड्राइवर ने जो पर्ची पर दवाइयां लिख कर दी आखिर पर्ची में क्या लिखा। पर्चे पर लिखा हुआ है जो हमें समझ आता है, कुछ BIG 500 लिखा है, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता, फिर कुछ OINT KT2 और कॉम्बी बी टाइप लिखा है, साथ ही KT2 200 mg लिखा है। अब ये कौन सी दवाइयां हैं जो ड्राइवर डॉक्टर ने मरीजों को लिख कर दी हैं? अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के ड्राइवर ही इलाज करेंगे तो फिर किस काम के CMO, किस काम के CMS और किस काम का स्वास्थ्य मंत्रालय? अस्पताल में ड्राइवर मरीजों का इलाज करते हुए पकड़ा गया तो अस्पताल के CMO हरिदत्त नेमी ने जांच कमेटी गठित करके पतली गली से बच निकलने की कोशिश की। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, CMO साहब पल्ला नहीं झाड़ सकते।
2: कल से वीडियो वायरल हुआ, मैंने भी उसे देखा है। वहाँ पर CMS हैं डॉक्टर पीयूष, तो डॉक्टर पीयूष से मेरी बात हुई है, तो वहाँ पर उसकी जाँच बिठा दी है और जाँच में जो भी जिसके भी जो दोष होगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई की।
1: अस्पताल के CMS यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पीयूष मिश्रा ड्राइवर पर FIR की बात करके बच नहीं सकते। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, CMS साहब जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते।
3: नहीं, मैंने स्पष्टीकरण ये अपना जवाब दे पहले। और 3 सदस्यीय हमने वरिष्ठ चिकित्सकों की कमेटी बनाई है और इनकी इस पूरी घटनाक्रम को उसके ड्राइवर के खिलाफ विरुद्ध FIR करेंगे और इनको इनके खिलाफ हम शासन को पत्र भी लिखने जा रहे हैं कि ये अनुशासनहीनता है, बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण। ये हमें बड़ा खेद के लगता है कि सुनने में भी ये इतना बड़ा अच्छा अस्पताल जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी इसको ऊंचाई तक ले जाऊं, इस प्रकार का बहुत ही खराब कार्य किया है इन्होंने।
1: आज तक ने इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर यानी डॉक्टर रामकेश से भी पूछा कि उनकी OPD में उनकी कुर्सी पर उनका ड्राइवर इलाज करने क्यों बैठा, ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, डॉक्टर रामकेश का कोई बहाना नहीं चलने वाला।
4: एक वीडियो वायरल हो रहा है कि आपका ड्राइवर आपकी सीट पे बैठ के दबा दे रहा
5: है। ये सर आप महोदय आप लोगों के माध्यम से या साहब CMS साहब के माध्यम से मुझे पता चला, तत्काल प्रभाव से उसे मैंने बाहर निकाल दिया अपने से।
4: तो ये क्या पहले भी कभी बैठता था क्या?
5: नहीं, मेरे साथ रहता तो मेरी गाड़ी वाड़ी साफ करता था।
4: अच्छा, उसको दवा वगैरह कुछ तो नॉलेज होगा?
5: नहीं, कोई नॉलेज
4: नहीं। तो दवा किसको दे रहा था ये?
5: नहीं, वो अब हम नहीं थे। अब उसने क्या किया है ये बताया, ये पता चला है कि वो उसके जानने वाला था, उसको लिख दिया है दवा।
4: तो वो सर आप कहाँ गए थे उस समय?
5: मैं कोर्ट गया था।
4: कोर्ट गया।
1: डॉक्टर रामकेश ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने ड्राइवर को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया है, लेकिन डॉक्टर रामकेश कहते हैं जब उनका ड्राइवर OPD में इलाज कर रहा था वो कोर्ट गए हुए थे। अब डॉक्टर रामकेश सच बोल रहे हैं या झूठ? लेकिन आज तक को अस्पताल के CMS पीयूष मिश्रा ने बताया कि उन्होंने अस्पताल का अटेंडेंट रजिस्टर चेक किया तो डॉक्टर रामकेश की कोई न्यायालय ड्यूटी नहीं थी। डॉक्टर रामकेश का कोर्ट वाला बहाना एक्सपोज।
3: ये किस समय आके कब बैठा, उस दिन कमरा में न्यायालय कार्य लिखा हुआ था, लेकिन अभी हमने उपस्थिति पंजिका को देखा तो उसमें कोई न्यायालय ड्यूटी थी नहीं इनकी पिछले लगभग 15 दिन से। लेकिन ये कमरे में नहीं थे उस समय मौजूद, समय ये वीडियो वायरल हुआ है।
1: तो क्या डॉक्टर रामकेश आराम पर थे और ड्राइवर काम पर था? कानपुर के सरकारी अस्पताल ने एक बार फिर से सरकारी अस्पतालों की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। कैसे सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर दिन दहाड़े खिलवाड़ किया जाता है?
6: वीडियो वायरल होने के बाद CMO ने जांच की बात की है, संबंधित अस्पताल और डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है। डॉक्टर ने भी अपना पल्ला यह कह के झाड़ दिया है कि उसने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या जांच की खाना पूर्ति से इतने बड़ी लापरवाही को दबाया जा सकता है? ना कोई तत्काल FIR, ना कोई ठोस कार्रवाई और ना कोई निलंबन। ऐसे में लोगों का प्रशासन से बड़ा सवाल है कि आखिरकार मरीजों की सुरक्षा के लिए जवाबदेही कब तय होगी?
1: रंजय सिंह के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।
0: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं द लखनऊ स्टोरी, कैसे एक लड़की को कार के बोनट पर घसीटते हुए वीडियो वायरल हुआ तो अब कहानी की परतें खुलने लगी। पीड़ित लड़की का आरोप है कि शाहनवाज नाम के लड़के ने पहले यश ठाकुर बनकर उससे दोस्ती की और विवाद होने पर शाहनवाज ने लड़की को कार से घसीटा। अब इसमें हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो गई जो इसे लव जिहाद बता रहे हैं और शाहनवाज के खिलाफ तगड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। आज तक ने पीड़ित लड़की से बातचीत की, वो भी हम आपको दिखाते हैं।
7: इनके साथ में 2 लड़कियां भी थी, यहाँ तक चाय पी रही थी। ये बहुत टाइम से मेरे साथ रिलेशनशिप में था, ठीक है। तो मतलब 2 लड़कियां थी, मैंने इससे पूछना चाहे कि वो लड़कियां कौन है। इतने में ये मुझसे चिल्लाने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये वो सब बोलने लगा, ठीक है। फिर इसका दोस्त तो ये दानिश दोनों जो थे ना वो कार में बैठ गए आके, ठीक है। और मतलब जो लड़कियां तो थी दोनों वो अलग पीछे वाले गेट से वो उधर चली गई, ठीक है। दोनों आए तो मुझसे मतलब चिल्लाने लगा, मैंने मतलब भागने लगे कार लेके, तो मैं सामने से इसे रोकना चाहूँ कि मुझे बता के जाओ। ये रुका नहीं, उसके बाद ये मुझसे गाड़ी चढ़ा के मेरे ऊपर से, और फिर मेरा हाथ शीशे की तरफ इसने मुझे बुलाया। हाथ में अभी भी चोट है, स्वेलिंग भी है, देख लीजिए आप सब लोग। हाँ, निशान पड़ा है शीशे में, मेरा पूरा हाथ दब गया था। मैं ऐसे करके हाथ निकालना चाह रही थी लेकिन शीशा ऐसे करके लॉक था, वो निकल नहीं पा रहा था,
8: इसने फंसा लिया,
7: फंस गया था, ठीक है। तभी तो मैं घसटी हुई, एकदम से घसीटते हुए ले गया, फिर अचानक से इसने शीशा ऐसे किया, तब मेरा हाथ निकला, तब हम गिर गए। इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, ये गाड़ी इनके दोस्त दानिश जो साथ में था शाहनवाज का दोस्त, उसने ये बोल के बोला है कि इसे आज मार दो, सामने से आया कुछ भी करे मार दो, वहां शीशे में दब गया दबने दो, मार के चलो को मार दो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ ना।

0: तो जानबूझ के गलती से होता वो चीज अलग है, जानबूझ के मुझ पे चढ़ाई गई करना।
1: शहनवाज को आप जानती थी कि वो शहनवाज है? हम शुरुआत
0: नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम स्टार्टिंग में मिले थे, हम टोटल बता रहे, हम जलवा क्लब में मिले थे। यहाँ तक कि एक हमारा वीडियो वायरल हो गया जिसमें हम बोल रहे हैं,
1: इसमें एक हम वीडियो बात करें, इसमें आप कह रहे हैं कि हम
0: दो वीडियो वायरल हुए हैं, एक इन्होंने और रिसेंटली डाला, वो इनके दोस्त ने शरीफ ने वायरल करवाया। शरीफ को मैंने भाई बोला था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, बहन को भी चीट कर सकते हैं। ठीक है,
1: वीडियो में जैसे आप कह रही हैं कि जो है हम हमारी गलती नहीं, हम ब्रेकअप करें, क्या ये सब बता रहे हैं?
0: ये सब इन लोगों ने जबरदस्ती करवाया था, मेरी दोस्त भी उस दिन साथ में थी। ठीक है, आप
1: वीडियो जबरदस्ती बना
0: उसके एक दिन पहले इन्होंने मुझे बहुत मारा था इनका, और वो भी इन्होंने हम तुम बंटी देखा है आपने, डीलअप के पास वहां पे भी मुझे मारा, मेरे ईंट उठाने की कोशिश की, माने आप चाहे तो सीसीटीवी कैमरा 15 दिन में हटा, वहां होगा तो चेक करवा सकते हैं। डीलअप में मारा, सिक्योरिटी पूरी आ गई थी, इन लोगों ने बात दबा दी कि कुछ नहीं हुआ, आपस में लड़ाई हुई है, पेट पे मेरे लाते मारे। उसके पहले एक बार नहीं, शहनवाज ने मुझे मारे बहुत टाइम, इनका दोस्त था एक आशीष गौतम, उसके सामने ये मार रहे थे मुझे,
1: मतलब मारते भी थे आपको
0: बहुत, तीन ऐसा नहीं है, तीन चार बार मारा है, लेकिन मैं कब तक बर्दाश्त कर गया बताओ, जब मुझे पूरी उस दिन मारने की कोशिश की तब मैं बात बोल रहे हैं।
1: सवाल ये था कि क्या आपको मालूम था ये शहनवाज हैं?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम था, जब हम स्टार्टिंग में जलवा क्लब में इन्होंने जो वीडियो वायरल हुआ वही बता रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ कि मैं इनसे जबरदस्ती नंबर मैंने।
2: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे महाराष्ट्र के नासिक में अजीब व गरीब विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आवारा कुत्तों से परेशान लोगों ने पंचायत के चीफ ऑफिसर के दफ्तर पर धावा बोल दिया और कुत्तों को ऑफिसर की टेबल पर छोड़ दिया।
3: ये है महाराष्ट्र के नासिक में पंचायत कार्यालय के मुख्य अधिकारी का दफ्तर। अचानक मुख्य अधिकारी के दफ्तर में शिवसेना यूबीटी की युवा सेना के कार्यकर्ता 3 बोरियां लेकर धावा बोलते हैं। मुख्य अधिकारी अपनी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहे होते हैं, तभी युवा सेना के कार्यकर्ता बोरियां उठाकर टेबल पर खोलते हैं तो उसमें से निकलते हैं कुत्ते, और ये देखिए कैसे कुत्ते टेबल पर दौड़ने लगते हैं। पंचायत कार्यालय के मुख्य अधिकारी हैरत में पड़ जाते हैं, आखिर ये है क्या, और कुत्ते टेबल पर कोने में जाकर फाइलों पर बैठ जाते हैं। फिर सब कुछ क्लियर होता है। जी हाँ, नासिक में आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ शिवसेना यूबीटी की युवा सेना का ये बड़ा ही अनोखा विरोध प्रदर्शन था, जिसमें 2 आवारा कुत्ते बोरियों में कैद करके मुख्य अधिकारी की बेस पर छोड़ दिए जाते हैं। शिवसेना यूबीटी की युवा सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि बार बार आवारा कुत्तों के आतंक की शिकायत करने पर भी प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा था, और जब कई बार शिकायत दर्ज कराने पर भी उनकी बातें नहीं सुनी गईं, तो मुख्य अधिकारी के दफ्तर में ही उनकी मेज पर आवारा कुत्ते छोड़ दिए गए।
4: आज निपाड शहरा मध्ये जर तुम्ही बघितलं, प्रत्येक गावात गल्लीत असेल, प्रत्येक चौका चौकामध्ये मोकट कुत्र्यांचं इतकं सुळसुळार झालेलं आहे। 6 महिन्यापासून मुख्य अधिकाऱ्यांना सांगतोय, धीरज भांबरे त्यांचं नाव आहे, 6 महिन्यापासून सांगतोय की असं असं मोकट कुत्र्यांचा प्रश्न आहे, तुम्ही मनावर घ्या। अनेक लहान बालकांना चावा घेतलाय, अनेक लोकांवर महिलांवर धावून आलेले, मोकट कुत्र्यांची परिस्थिती त्यांना दाखवली, तिथले फोटो टाकले, वारंवार सांगितलं, पण मला वाटतं लातो की भूतबातो सिने मानते। आज आम्ही त्याचा निषेध म्हणून इथं 4 कुत्रे त्यांच्या टेबलवर सोडले, त्याचप्रमाणे ते कुत्रे त्यांच्या टेबलवर बसवले।
3: लोगों का दावा है कि आवारा कुत्तों की आबादी लगातार बढ़ रही है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा, आवारा कुत्तों ने कई लोगों को काटा है।
2: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आज देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। तो आइए दिखाएं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न।

प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न। कहीं केक काटा गया, कहीं दिए जलाए गए। आशीर्वाद का दिया नाम से देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम हुए। वाराणसी में भी गंगा

0: घाट पर दीपोत्सव किया गया।
1: नमो घाट पर हूँ, एक तरफ पतित पावनी माँ गंगा है जो मेरे सामने तेज प्रवाह में बह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है आज माहौल बनारस में अयोध्या जैसा है, क्योंकि ये जो दिए हैं ना, ये दिए यहाँ पर लग गए हैं, असंख्यों दिए जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर लाए गए हैं, लगाए गए हैं, और बच्चों ने बकायदा काफी मेहनत की है इन दियों को यहाँ बिछाने के लिए। वाइड फ्रेम यहाँ से दिखाएं एक बार और पूरा दर्शकों को यहाँ से दिखाएं कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पर नमो घाट पर दिए लगा दिए गए हैं।
0: उज्जैन समेत पूरे मध्य प्रदेश में आज दीपोत्सव की रोशनी बिखरी हुई है। महाकाल की नगरी में शिप्रा के रामघाट, दत्त अखाड़ा घाट और महाकाल लोक में 25 लाख दीप जलाए गए।
2: महाकाल की इस पवित्र नगरी से प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की, दीर्घायु होने की कामना पूरा महाकाल के हमारे सभी लोग कर रहे हैं, यहाँ के नागरिक कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पवित्र तट से माननीय प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की कामना की जा रही है। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से करोड़ों लोगों के जीवन में जो बदलाव लाया, और इस तट की बात करें तो 800 करोड़ की अधिक सी योजना महाकाल कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री जी ने किया, जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म बढ़ा, आज यहाँ पर लोग का व्यवसाय बढ़ा है, उनके जीवन में उनके बदलाव आए हैं।
0: इसके अलावा श्रीनगर, कोलकाता और पटना में भी भव्य दीपोत्सव हुआ, और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भी 1 लाख दिए जलाए गए।
3: लगभग 1.5 लाख दिए एक समय पर जलाए जा रहे हैं, और ये जो प्रज्वलित दिए हैं जो आपको दूर तक नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे दिए इसीलिए जलाए गए हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक वादा किया था आज से 12 साल पहले, और लोगों से जो वादा किया था गुजरात के लोगों से आज से 25 साल पहले, उसको उन्होंने पूरा किया है। देखिए, हम लोग जब खुश होते हैं, जब हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसका कारण यही है कि हम बताते हैं कि किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, तो किस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ये दिए जो हैं इस समय उसी का सिंबल है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। पूरे विधि विधान से पूजन का अनुष्ठान हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, चिराग पासवान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस पूजा अर्चना में शामिल हुए।
4: सब लोग यहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए काशी विश्वनाथ का आए थे और विधिवत पूजा अर्चन का कार्य संपन्न हुआ है, और हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वह दीर्घायु करें।
5: बाबा से ही प्रार्थना की है कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु उन्हें प्राप्त हो और लंबे समय तक भारत का नेतृत्व उनके हाथों में रहे, जिससे भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विकसित भारत की संकल्पना उनके नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी देख सके।
0: राजनाथ सिंह ने वाराणसी से बाइक रैली को भी झंडी दिखाई, जो वाराणसी से वडनगर के लिए रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मभूमि वडनगर में सेवा संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। अमित शाह ने वडनगर में बाइक रैली को झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की, जो कि वाराणसी तक जाएगी।
6: 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 26 में 140 करोड़ भारतीय ये उत्साह और संकल्प के साथ, एक आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में समग्र विश्व में भारत सर्वप्रथम होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता का सामूहिक आत्मविश्वास खड़ा करना ये किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी कसौटी है, और वो भी तब जब जनता गहरी निराशा में डूबी हो। उन्होंने गहरी निराशा के गर्त से जनता को बाहर निकालकर नरेंद्र मोदी जी ने जनता को आत्मविश्वास से लवरेज कर 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत की यात्रा के साथ जोड़ने का काम किया।
0: उधर दिल्ली में इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जहां बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने रक्तदान किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इसमें शामिल हुए। दिल्ली सरकार के मंत्री और सीएम रेखा गुप्ता ने भी रक्तदान किया।
7: प्रधानमंत्री जी का ये जन्म दिवस हम सबको जन सेवा की प्रेरणा देता है और दिल्ली सरकार उनके दिखाए हुए रास्ते पर उनके मार्गदर्शन में हमेशा आगे बढ़ते हुए इस काम को करेगी। आज हम मोदी जी को समर्पित करते हुए हमारे स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए हुए एक बर्थडे सॉन्ग एक गीत का भी लॉन्चिंग करेंगे।
0: कुल मिलाकर 17 सितंबर का दिन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के जश्न के नाम रहा। आज तक ब्यूरो।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देने वालों को धन्यवाद दिया है, सभी अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद देते हुए ये कहा भी है कि मुझे शक्ति और ऊर्जा मिलती है। शुभकामनाओं के लिए तो आपका धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा कार्यों में लगे सभी लोगों की तारीफ मैं करता हूं क्योंकि आपसे मुझे शक्ति मिलती है, लोगों की बातें सेवा के लिए मुझे ऊर्जा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें भी कही हैं और सभी लोगों को, देशवासियों की बातें प्रेरणादायक लगती हैं। उन जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दीप जलाए, उन लोगों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दिया है। एक और बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। टीएमसी इलेक्शन कमीशन ने टीएमसी के दोनों गुटों पर प्रतिबंध लगा दिया है चुनाव चिन्ह को लेकर। टीएमसी का नाम और सिंबल इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। ममता बनर्जी और उनके विरोधी गुट जो कि दोनों टीएमसी पर अपना दावा कर रहे थे, 18 सितंबर तक तीन तीन विकल्प मांगे गए हैं। बताएं उपचुनाव में दोनों गुटों को अलग अलग सिंबल चुनाव आयोग की तरफ से दिए जाएंगे, लेकिन जो फिलहाल टीएमसी का सिंबल है, नाम है, उस पर दोनों चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे टैरिफ पर ट्रंप की 100% दादागिरी। आप देखते रहिए दस्तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
12: और वही कहाँ गए थे घूमने?
13: जीके मैक्स।
14: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
13: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
14: जेके वॉल मैक्स
13: बेस्ट पेंट,
14: जेके मैक्स।
13: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट, जेके मैक्स पेंट, खुशियों के रंग।
15: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
16: Shabam!
17: Ek to ek.
18: Ishram.

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
2: हाँ। ला, ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
2: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: SBI Celebrations Unlimited. ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
8: बहुत टायर्ड हो गई।
9: Take a date, not bites.
10: No added sugar, preservative के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया
3: है।
5: टाटा AIG है तो भरोसा है।
6: SBI Celebrations Unlimited, ये गणेशोत्सव बनेगा स्पेशल विद फेस्टिव ऑफर्स ऑन कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन एंड लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स।
7: बहुत टायर्ड हो गई।
8: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
9: लायन डेट नट बाइट्स।
10: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
11: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
12: सोच बदलो और बैंक भी।

0: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
1: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
2: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
3: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
4: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
5: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
6: अब मैं क्या ही बोलूं?
7: परिवार अटूट भरोसा।
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
12: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करें।
11: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल, सिग्नेचर फाइनेस्ट कार्डमम सीड्स,
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ पंचायत आज तक 18 सितंबर सिर्फ आज तक पर।
4: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
5: जल और थल के बाद अब नभ में भी अमेरिका अपनी ताकत में इजाफा कर चुका है। 21वीं सदी में अब अमेरिका ने अंतरिक्ष तक मोर्चा खोल दिया है। सुपर पावर अमेरिका ने एक ऐलान कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। कह दिया है कि उसने अंतरिक्ष में हथियार तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी स्पेस फोर्स के मुताबिक स्पेस वेपन्स रक्षा और हमले दोनों में इस्तेमाल हो सकते हैं। खुलासे के मुताबिक अमेरिकी हथियार अंतरिक्ष की कक्षा यानी ऑर्बिट में तैनात हैं। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने यह भी कहा है कि ये हथियार अंतरिक्ष में अमेरिकी सैन्य बलों को दुश्मन की कार्रवाई से बचाने और उसका मुकाबला करने के लिए है। चिंताएं कई हैं, सवाल उठना लाजमी है कि आखिर स्पेस में हथियारों की होड़ क्यों, लेकिन अमेरिका ने अभी इसके कई तथ्यों का खुलासा नहीं किया है। स्पेस फोर्स का कहना है कि उसके पास ऑर्बिट में मौजूद स्पेस कंट्रोल वेपन्स हैं, जिनका इस्तेमाल अमेरिकी सैन्य बलों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। हालांकि हथियारों की सही संख्या, उसके प्रकार या उनकी तैनाती की जगह की जानकारी देने से इनकार किया है। अमेरिका के इस कदम के बाद रूस और चीन ने चिंता जताई है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है, कहा है कि चीन अंतरिक्ष में किसी भी तरह की सैन्य होड़ या उसे युद्ध क्षेत्र में बदलने की कोशिश का कड़ा विरोध करता है। अमेरिका के स्पेस वेपन्स को लेकर कुछ ऐसी ही चिंता रूस ने भी जताई है। रूस ने कहा है कि अंतरिक्ष को किसी भी हथियार से मुक्त रखना चाहिए। तमाम चिंताओं के बीच अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ शुरू होने का नया खतरा है। अमेरिका पहले भी अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाने को लेकर लगातार काम करता रहा है। रूस, चीन और भारत समेत कई अन्य देश भी स्पेस में अपनी ताकत बढ़ा चुके हैं, जिनका इस्तेमाल सैन्य संचार, निगरानी और नेविगेशन से जुड़े सैटेलाइट को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन अब अंतरिक्ष में हथियारों की अमेरिकी तैनाती के बाद फिर से नई चिंता बढ़ा चुका है। आज तक बेरोज़

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नी 100 रुपए लेंगे तुमसे अभी हम,
1: लो मिठाई भी खाओ।
2: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा थे,
1: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कह जाएंगे।
3: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा हैं।
4: हाँ बिल्कुल है, हम नाराज हैं।
0: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा हैं।
3: क्या बात कर रहे हैं,
0: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
3: अच्छा।
0: सबसे अच्छे हुए।

0: देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली दादागिरी की। जी हां, अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत पर 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं। इससे संबंधित बिल अमेरिकी संसद में पास हो गया। चूंकि भारत अपनी जरूरत का 40% से अधिक क्रूड ऑयल रूस से खरीद रहा है, इसलिए उस पर इस टैरिफ का खतरा है। हम आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रूस से ज्यादा तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने वाला बिल पास हुआ। तो आइए दिखाएं आपको क्या ट्रंप का टैरिफ वाला यह हथकंडा।
1: The motion to concur, all members will record their votes by electronic device. This is a 15-minute vote.
2: This vote, the yeas are 262.
3: अमेरिकी संसद में 100% टैरिफ वाला बिल पास।
4: That's tariffs.
3: रूस से तेल खरीदने वालों पर 100% टैरिफ की बात। क्या भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? बार बार ट्रंप दुनिया को टैरिफ वाली धौंस क्यों दिखाते हैं? डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली 100% दादागिरी। पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर अमेरिका ने भी बधाई दी, तो अमेरिकी दूतावास की इस पोस्ट से सोशल मीडिया पर भारतीय भड़क गए हैं, क्योंकि एक दिन पहले ही अमेरिका ने रूस और ईरान को प्रतिबंधित करने वाले लिंडसे ओग्राहम अधिनियम 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत रूस और ईरान से तेल गैस का आयात करने वाले देशों पर ट्रंप 100% टैरिफ लगा सकते हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आने वाले साल में आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हैं। अमेरिकी दूतावास की इस बधाई पर एक यूजर ने आलोचना करते हुए लिखा, 100% टैरिफ और भारतीय अमरीकियों पर हमलों के साथ जन्मदिन की बधाई, बहुत बढ़िया। आपको बता दें कि अमेरिकी संसद के निचले सदन ने रूस और ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाला बिल पास कर दिया है। हाउस में बिल के पक्ष में 262 और विरोध में 159 वोट पड़े। अब बिल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत करते ही ये कानून बन जाएगा। इसका नाम लिंडसे ओग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 है। इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि बिल के पास होने के बाद ट्रंप को भारत पर 100% टैरिफ लगाने का अधिकार मिल गया है। रूस से ज्यादा तेल खरीदने पर जिन देशों पर 100% टैरिफ का प्रस्ताव है, उनमें भारत, चीन समेत 5 देश हैं। ये बिल ईरानी कच्चे तेल को खरीदने वाले देशों पर भी लागू होता है। इसके निशाने पर मुख्य रूप से चीन है, जो चोरी छिपे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को दरकिनार करके ईरान से भारी मात्रा में तेल खरीदता रहा है। ये बिल अंतिम हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच गया है, जिसके बाद ये तुरंत कानून बन जाएगा।
5: करेंसी मैनिपुलेशन एंड ट्रेड बैरियर्स।
3: लेकिन जिस तरह से ट्रंप बार बार टैरिफ वाली धौंस और दादागिरी दिखाते हैं, इस बार ब्रिक्स बिजनेस फोरम से पश्चिमी देशों पर तंज कस चुके हैं। जी हाँ, पुतिन ने कहा कि समझ नहीं आता कि कुछ कमजोर हो चुके पश्चिमी देश अब भी खुद को G7 क्यों कहते हैं, जबकि ब्रिक्स आर्थिक ताकत के मामले में G7 से काफी आगे निकल चुका है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव हो रहे हैं और अब नए देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं।
6: Over the last 5 years, more than 40 G7, the Green 7, well, I don't know why they call that, that the group of 7, it stands at only 29%. This is the case. Now, speaking about the growth of the world economy over the same period, we see that more than half of that growth has been accounted for by BRICS, whereas the G7 has only accounted for 18%. Why is that? The answer is simple. The BRICS countries account for more than half of the world's population, and that is why they have a great dynamic, vibrant domestic markets. Our countries see an explosion of growth of urban settlements. Urbanization is happening very fast.
3: आपको बता दें कि अमेरिका के इस टैरिफ में यूरोपीय देशों को राहत मिल सकती है। डेमोक्रेट सेनेटर रिचर्ड ब्लू बेंथल ने कहा है कि ये बिल यूरोपीय सहयोगियों के खिलाफ नहीं है। इसका निशाना सिर्फ वो देश है जो अब भी रूस के तेल कारोबार को सबसे ज्यादा आर्थिक सहारा दे रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि जो रूस से तेल खरीदेगा उसे रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का मददगार माना जाएगा। चूंकि भारत अपनी जरूरत का 40% से ज्यादा क्रूड ऑयल रूस से खरीद रहा है, इसलिए उस पर इस टैरिफ का खतरा है। अब सवाल ये है कि ट्रंप के इस टैरिफ का भारत पर कैसे असर होगा। तुरंत कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि टैरिफ ऑटोमेटिक नहीं है। कानून बनने के बाद भी भारत पर 100% टैरिफ तुरंत लागू नहीं होगा। ये राष्ट्रपति ट्रंप को दिया गया एक अधिकार है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यानी USTR पहले लक्षित देशों की सूची बनाएगा, जिसके बाद उन देशों को रूसी तेल आयात कम करने या अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए 180 दिनों का समय दिया जाएगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए साफ कहा है कि भारत अपने 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत वैश्विक बाजार में कीमतों और उपलब्धता के आधार पर अपने फैसले लेता रहेगा। ये जरूर कहा जा रहा है कि नए कानून के पास होने से ट्रंप को कोर्ट या संसद के हस्तक्षेप के बिना भारत पर दबाव बनाने का एक बेहद मजबूत कानूनी हथियार मिल गया है। आपको बता दें कि रूस के अलावा भारत मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर से तेल खरीदता है। इसके अलावा नाइजीरिया, अंगोला, ब्राजील और अमेरिका से भी कच्चा तेल आयात करता है। आज तक ब्यूरो।
0: और आइए हम आपको सीधे वॉशिंगटन DC लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रोहित शर्मा इस समय हमारे साथ हैं। रोहित, ये बिल क्या है, कैसे ये बिल हम पर 100% टैरिफ लगाने जा रहा है, जरा विस्तार से रोहित समझाइए इसे।
7: देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि बिल है क्या। ये रशिया सैंक्शंस बिल जो है, ये सेंटर लिंसी ग्रहम जो अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे, उनका एक हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट था। और वो जब सेनेट में थे तो उन्होंने 500% टैरिफ से एक बिल ये लेके आए थे। और ऐसा माना जाता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ओवरटर्न हो गया तो उन्होंने काफी कोशिश की थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप इसको लेवरेज करे, लेकिन उस समय प्रेसिडेंट ट्रंप इंटरेस्टेड नहीं थे। और इनफैक्ट ये भी कहा जाता है अभी भी इतने इंटरेस्टेड नहीं थे इस बिल में। लेकिन जब सेनेटर लिंसी ग्रहम का निधन हो गया तो सेनेट के कॉलीग्स ने एक ट्रिब्यूट के तौर पे इस बिल को पास किया। और जब बिल को पास किया गया तो 100% टैरिफ्स 500% से हटा के इसे 100% पे कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक इट वॉज नॉट, इतना सीरियस नहीं था। ये ऐसा था कि चलिए इसे हम एक ट्रिब्यूट के तौर पे कर देते हैं। लेकिन क्योंकि जब सेनेट ने बिल पास कर दिया था करीब 2.5 महीने पहले और उसके बाद ये हाउस में आया, तो माना ये जा रहा था कि हाउस इस बिल को मिड टर्म इलेक्शन के बाद जो चुनाव होने वाले नवंबर में, उसके बाद देखेगा इसकी और कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन फ्रीडम कॉकस जो एक ग्रुप है हाउस में, उसने इसको जो है इसको फास्ट ट्रैक किया और जो प्रोसीजरल हर्डल्स थे हमने देखा पिछले दिनों में, उसे फटाफट जल्दी जल्दी इस बिल को आगे बढ़ाया गया। तो ये बिल 100% जो टैरिफ है वो अथॉरिटी देता है प्रेसिडेंट को कि वो जो भी चाइना के, जो अमेरिका के रशिया से जो तेल खरीदते हैं और अमेरिका जिनसे नाराज है या हो सकता है उसके ऊपर टैरिफ्स लगाए। तो उसमें चाइना, इंडिया, तुर्की, इस तरह के जो देश हैं जो उनसे ऑयल और गैस एनर्जी लेते हैं, वो उनके ऊपर बिल ये 100% टैरिफ लगा सकते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और आने वाले कोई भी राष्ट्रपति। तो मोटा मोटी बिल ये करता है। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है बताने के लिए कि ये कोई व्हाइट हाउस की तरफ से पुश नहीं था या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई पुश नहीं था कि वो ये चाहते थे। ये US कांग्रेस ने एक एक्शन लिया है और क्योंकि अभी बिल पास हो गया है तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसे इस पर हस्ताक्षर करेंगे, ये लॉ बनेगा और फिर हमें देखना होगा कि इसे कैसे और कब यूज किया जाता है।
0: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कैसे हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब में हाहाकार मचा रखा है। हूती विद्रोहियों से युद्ध लड़ रहे सऊदी अरब को अब भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहले हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया और अब गिराए गए विमान का पूरा वीडियो रिलीज कर दिया। ऐसे में सऊदी अरब का काम न मक्का पैक्ट आ रहा है, न तुर्की और पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्होंने किनारा कर लिया है। इस बीच ट्रंप ने भी हूती विद्रोहियों से डील करके सऊदी अरब को अकेला छोड़ दिया है। तो आइए दिखाएं आपको अब सऊदी अरब क्या करेगा।
3: सऊदी अरब का ये लड़ाकू विमान 16 सितंबर को उस वक्त मार गिराया गया जब वो यमन के मारे प्रांत के ऊपर हूतियों के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा था। मार गिराया गया विमान मैकडोनल्ड डगलस F-15SA यानी स्ट्राइक ईगल था। मलबे के विश्लेषण और सैन्य डेटाबेस के अनुसार इस विमान का टेल नंबर 5529 था, जिसे इसी साल फरवरी में सऊदी अरब के वर्ल्ड डिफेंस शो में भी प्रदर्शित किया गया था। ये दो सीटों वाला अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, जिसे उड़ाने के लिए एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर की आवश्यकता होती है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने अभी तक विमान के क्रैश होने या पायलटों की स्थिति पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। हालांकि हवाई हादसों के अनुभवों और स्थानीय खुफिया इनपुट के अनुसार विमान के हवा में नष्ट होने के बाद दोनों पायलटों के बचने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है, क्योंकि हूतियों ने मलबे के चारों ओर जश्न मनाते हुए वीडियो जारी किया है। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने दावा किया कि उन्होंने विमान को निशाना बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर निर्मित वायु रक्षा मिसाइल का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये सब जानते हैं कि ईरान की IRGC लगातार लाल सागर के गुप्त समुद्री रास्तों के जरिए हूतियों के लिए एडवांस मिसाइल पार्ट्स और ड्रोन तकनीक की तस्करी करती आ रही है। हूती विद्रोहियों से लड़ने के लिए जब सऊदी अरब अमेरिका और इजराइल की तरफ मदद की आस से देख रहा है, तब डोनाल्ड ट्रंप ने भी हूती विद्रोहियों के साथ डील करके सऊदी अरब को जोर का झटका दिया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच एक सीक्रेट डील हुई है। ये डील ओमान में एक गुप्त बैठक के दौरान हुई है, जिसमें हूतियों ने अमेरिकी जहाजों पर हमला न करने का भरोसा दिया है। ओमान की मध्यस्थता से मस्कट में स्थित अमेरिकी दूतावास में हुई इस सीक्रेट डील के तहत हूतियों ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को सुरक्षित रास्ता देने का वादा किया है। उन्होंने वादा किया है कि वो मिडिल ईस्ट की जंग को लाल सागर तक नहीं ले जाएंगे। अमेरिका और हूती विद्रोहियों के बीच किन शर्तों पर समझौता हुआ है वो आपको दिखाते हैं। ये बातचीत ओमान की राजधानी मस्कट के अमेरिकी दूतावास में हुई। इसमें हूतियों के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद अब्दुल सलाम शामिल हुए। इस दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस और राष्ट्रपति ट्रंप भी हूतियों के संपर्क में थे। हूतियों ने वादा किया है कि वो लाल सागर और बाब अल मंदेब से गुजरने वाले अमेरिकी, इजरायली और अन्य जहाजों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ये छूट सऊदी अरब को नहीं मिलेगी, यानी सऊदी अरब के जहाजों पर हूती हमले जारी रहेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका ने वादा किया है कि वो हूतियों के खिलाफ सऊदी अरब की सैन्य मदद नहीं करेगा। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक हूती विद्रोहियों से आश्वासन मिलने के बाद ही ट्रंप ने ये बयान दिया कि ईरान के साथ युद्ध अंत की ओर है। सऊदी अरब के लिए संकट की इस घड़ी में एक और बुरी खबर ये है कि सऊदी अरब के पास अपनी रक्षा के लिए मिसाइल इंटरसेप्टर्स का खजाना लगभग खाली हो चुका है। सऊदी अरब ने फ्रांस, ब्रिटेन, पाकिस्तान और मिस्र से एयर डिफेंस में मदद मांगी है। हूती विद्रोहियों की मिसाइलें और ड्रोन लगातार सऊदी अरब के शहरों को निशाना बना रहे हैं। कल सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों पर मक्का के पवित्र शहर पर ड्रोन हमला करने का आरोप लगाया था। हूती विद्रोहियों ने इस आरोप को खारिज कर दिया, लेकिन सऊदी अरब के दूसरे शहरों पर उसके हमले जारी हैं। 8 सितंबर को अमेरिका ने ईरान के 5 तेल टैंकरों पर हमला किया था। इसी हमले के जवाब में ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों से पलटवार किया। करीब 48 घंटे तक वार पलटवार चलता रहा, लेकिन 10 सितंबर के बाद अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर कोई नया हमला नहीं किया। लेकिन जैसे ही युद्ध के एक मोर्चे पर बारूदी हमले रुके, हूती और सऊदी अरब के बीच भीषण जंग छिड़ गई। बीते 72 घंटों से हूती की मिसाइलों और ड्रोन हमलों से सऊदी में दहशत का माहौल है। एक के बाद एक सऊदी अरब के नए शहरों पर हूतियों के हमले जारी हैं। इसी कड़ी में अब सऊदी अरब ने हूतियों पर मक्का पर ड्रोन हमले की कोशिश का सनसनीखेज आरोप लगाया है। सऊदी अरब की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी रॉयल डिफेंस फोर्सेज ने एक दुश्मन ड्रोन को रोका और उसे नष्ट कर दिया। इस ड्रोन को हूती आतंकवादियों ने लॉन्च किया था। इसे मक्का के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में दाखिल होने से पहले रोक दिया गया। ये मक्का को निशाना बनाने की दूसरी शत्रुतापूर्ण और आतंकवादी कोशिश है। इससे पहले जुलाई 2017 में बैलिस्टिक मिसाइल दागकर मक्का को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। इसे शर्मनाक हरकत और पवित्र काबा के मेहमानों को डराने की कोशिश ही कहा जा सकता है। हूतियों की आक्रामक और आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से सऊदी अरब हिचकिचाएगा नहीं। सऊदी अरब के इसी आरोप को हूतियों ने सिरे से खारिज कर दिया है। हूतियों का दावा है कि मक्का पर कोई हमला नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने सऊदी के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया है। हूतियों का दावा है कि सऊदी अरब में उनसे मुकाबला करने की ताकत नहीं है, लिहाजा मक्का को ढाल बनाकर झूठी कहानी गढ़ी गई है। हूतियों का दावा है हमने अल्लाह की मदद और उसके आदेश से सऊदी अरब के एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया। ये लड़ाकू विमान मारी प्रांत के आसमान में अपने सैन्य अभियान के समर्थन में हमले कर रहा था। इसे स्थानीय स्तर पर बनाए गए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमारे हमले सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हैं। इन जगहों का पवित्र स्थलों से कोई संबंध नहीं है। सऊदी का दावा झूठा है। मक्का को निशाना बनाने का दावा एक घिसा पिटा झूठ है। पहले भी इसका इस्तेमाल किया जा चुका है और अब कोई इस पर भरोसा नहीं करता। बड़ी बात यह है कि मक्का पर ड्रोन हमले ने लोगों के दिमाग में 47 साल पुरानी डरावनी घटना की यादें ताजा कर दी हैं। दरअसल नवंबर 1989 में सऊदी अरब के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने 15 दिनों तक इस्लामी देशों को हिलाकर रख दिया। ये वो घटना थी जिसमें सलाफी समूह ने इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मक्का की मस्जिद को अपने कब्जे में ले लिया था और लोगों को बंधक बनाया था। बंधकों की रिहाई के लिए तब बड़ा ऑपरेशन चलाया गया जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। अब सऊदी अरब का क्या होगा? न मक्का पैक काम आ रहा है और अमेरिका भी हूती विद्रोहियों से डील करके बाजू हट रहा है। आज तक ब्यूरो।
0: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची अ प्रीमियम प्रोडक्ट फ्रॉम दिलबाग ग्रुप।
11: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
12: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
11: छक्का
12: सब कैशलेस हो गया
11: है। हाँ ला भाई मेरा बैट,
12: वो अभी तो ठीक हुआ। तो
13: चार्ज हुआ यार।
14: बैट किसका है?
15: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
2: AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है।
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।
2: In association with
3: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol. Signature finest cardamom seeds. E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
4: विधान सभा का चुनाव घोषणा होने के पहले हमने कह रखा है कि 1,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी यूपी के अंदर उपलब्ध करवाएंगे।
5: जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वादों और घोषणाओं की रफ्तार भी जोर पकड़ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आए दिन बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, कभी कैबिनेट में लिए गए फैसलों के जरिए तो कभी सार्वजनिक मंच से। यानी कि यूपी में बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। एक तरफ सरकार की ओर से ऐलान पर ऐलान हो रहा है तो दूसरी तरफ पार्टी भी आने वाली चुनौतियों के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। संगठन स्तर पर रणनीतियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यूपी में बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं और इस हफ्ते उनकी कई मंथन बैठक है। 17 और 18 सितंबर को गोरखपुर में, 19 और 20 सितंबर को अयोध्या में, 21 और 22 सितंबर को प्रयागराज में तावड़े सीधे जमीनी स्तर पर फीडबैक लेने वाले हैं। चर्चा संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों पर होगी। एक तरफ बीजेपी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ आरएसएस भी पूरी तैयारी के साथ मोर्चे पर उतर आया है। संघ और बीजेपी की अहम समन्वय बैठक हुई है। ये बैठक लखनऊ के बंथरा स्थित एक रिजॉर्ट में हुई। बैठक का फोकस अवध कानपुर में तैयारियों पर रहा। बैठक में संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने जमीनी फीडबैक लिया। आपको पता हो कि चुनावी अभियानों और बीजेपी को जीत दिलाने में संघ की हमेशा अहम भूमिका रही है। यूपी चुनाव में भी संघ एड़ी चोटी का जोर लगाने जा रहा है। समन्वय बैठक की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें संघ के सह सरकारीवाह अरुण कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जैसे बड़े चेहरे मौजूद थे। बीजेपी की चुनावी कामयाबी में उसकी तैयारियों का बड़ा रोल रहा है और इस बार भी यूपी में वो तैयारियों को अभी से देख रही है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: ये डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट हो रही है,
1: इसीलिए दवाइयों के साथ लीजिए कपीवा डायफ्री जूस, जिसमें है 11 आयुर्वेदिक हर्ब्स जो शुगर को मैनेज करने में मदद करे।
0: अब मैं आराम से चल पाता हूँ। कपीवा डायफ्री जूस।

0: भारत में सेमीकंडक्टर के मामले में आज की स्थिति ये है कि अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाना पड़ता है। बेंगलुरु नोएडा में कुछ टेक कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन जरूर करती हैं, लेकिन उत्पादन किसी दूसरे देश में होता है। भारत में मोबाइल फोन यूजर करोड़ों में है, मोबाइल की रीढ़ यानी सेमीकंडक्टर विदेश से आती है। सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत ने सोचना तो बहुत पहले शुरू किया था, लेकिन असल में काम हुआ साल 2021 में। कहने को साल 2007 में भारत ने अपनी सेमीकंडक्टर नीति बनाई, लेकिन मिशन मोड में काम शुरू हुआ 2021 में, जब भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की। भारत का विजन और मिशन स्पष्ट है कि सेमीकंडक्टर के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आज के समय में सेमीकंडक्टर की जरूरत लगभग हर तकनीक में है, फिर चाहे मोबाइल फोन हो, वाहन हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। भारत को सेमीकंडक्टर की भारी जरूरत है, क्योंकि भारत का बाजार बड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, रोजमर्रा के कामकाज में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है, इसलिए भारत को सेमीकंडक्टर की सबसे अधिक जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत को चिप से लेकर शिप तक हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की माने तो सेमीकंडक्टर में भारत के पास पहले से ही कुछ बढ़त है। दुनिया के लगभग 20% चिप डिजाइन इंजीनियर्स भारत में मौजूद हैं। ये इंजीनियर एम्बेडेड सिस्टम और सिस्टम इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट हैं। युद्धों और वैश्विक तनावों के बीच उलझी दुनिया में क्रिटिकल रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा है। जिन देशों के पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वो उसको हथियारों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देश सप्लाई चेन को प्रभावित करते हैं, जिससे दुनिया भर में तकनीक महंगी हो जाती। 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू हुआ था। सेमीकॉन 1 के लिए 76,000 करोड़ का बजट रखा गया। 2022 में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया। 2023 के बाद बड़े पैमाने पर फैब पैकेजिंग और टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने लगी। मई 2026 तक देश में 12 फैब पैकेजिंग यूनिट और 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए। फरवरी 2026 में गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर का कमर्शियल उत्पादन शुरू हो चुका है। जुलाई 2026 में सेमीकॉन 2.0 के लिए सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। ORF की रिपोर्ट कहती है कि भारत की असली चुनौती ग्लोबल मार्केट में पहले से मौजूद प्लेयर्स के बीच जगह बनाने की है। सेमीकंडक्टर का सबसे बड़ा हब ताइवान है। दुनिया की दिग्गज कंपनियां अपनी चिप ताइवान में बनवाती हैं। अब सवाल सिर्फ चिप बनाने का नहीं, बल्कि अपनी बनाई चिप को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का है। भारत सेमीकंडक्टर का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है, जिसमें कच्चा माल से लेकर अंतिम उत्पाद तक, मैन पावर से ब्रेन पावर तक सब कुछ भारत का होगा। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
1: पता नहीं ये सरकार क्या कर रहे हैं, इनकी पॉलिसी क्या है, क्या सोचते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। अचानक से कोई नियम या कुछ थोप दिया जाता है, फिर जनता पर जब उसकी आदत लग जाती है, जनता उसके आदि हो जाते हैं, फिर उसे बदल दिया जाता है। अगर इसमें भी इतना टैक्स थोप देंगे 2000 के ऊपर के पेमेंट पर, तब तो आने वाले समय में जनता काफी क्राइसिस में आ जाएगी। इमीडिएटली इसे बंद करना चाहिए। जो भी निर्णय है ये बिल्कुल गलत निर्णय है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
2: नहीं, UPI में तो ऐसा है कि भाई 2000 तक जो व्यापारी लोग होते हैं वो 2000 तक उसकी सीमा है, और उसमें कोई मतलब और ज्यादा पैसा ले रहे, इसी तरह का राहुल गांधी का आरोप है, वो इसमें तथ्य नहीं है। कोई सरकार ने अभी निर्णय ऐसा लिया भी नहीं है। वो किसी व्यापारी को और किसी लोगों को तकलीफ देने की भूमिका हमारी बिल्कुल नहीं है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में दीपोत्सव, काशी से कोलकाता तक, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए, प्रधानमंत्री ने जताया आभार। बंगाल उपचुनाव से पहले ममता और ऋतव्रत गुट को झटका, चुनाव आयोग ने टीएमसी के निशान और नाम के इस्तेमाल पर लगाई रोक, दोनों से कल तक मांगे गए 3-3 विकल्प। यूपी में हाईवे को लेकर अखिलेश ने सीएम योगी को घेरा, कहा बीजेपी सरकार में निर्माण बाद में पूरा होता है, गिरने वो पहले लगता है, बोले वो हर लेन देन पर लेंगे टैक्स। 100% टैरिफ वाले अमेरिकी कानून पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध, अलग अलग स्रोतों से जारी रहेगी ऊर्जा खरीद। और अफगानिस्तान के खिलाफ T20 में अभिषेक शर्मा का धमाका मैच, 30 गेंद में जड़ दिया शतक, टेस्ट खेलने वाले देशों में सबसे तेज सेंचुरी का बनाया रिकॉर्ड।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ये कहानी है बैग में रखी एक आधी अधूरी लाश के 2100 किलोमीटर के सफर की। चेन्नई से चलकर नई दिल्ली आने वाली चेन्नई एक्सप्रेस के एक जनरल कंपार्टमेंट में लाल रंग का एक बैग रखा था। ग्वालियर में पहली बार एक मुसाफिर की नजर इस बैग पर पड़ती है। आगरा में इस बैग को खोला जाता है, बैग के अंदर एक लाश थी लेकिन लाश का चेहरा गायब, और यहीं से इसकी तफ्तीश शुरू होती है और जांच जाकर खत्म होती है मणिपुर में। चेन्नई से दिल्ली जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस तय वक्त पर ग्वालियर पहुंच चुकी थी, लेकिन ग्वालियर से जैसे ही ट्रेन चली, ट्रेन में सवार एक मुसाफिर ने शिकायत की कि ट्रेन के पिछले हिस्से के जनरल कंपार्टमेंट में लाल रंग का एक ट्रॉली बैग लावारिस हालत में पड़ा है और उसके आसपास से बदबू आ रही है। ये खबर जैसे ही GRP यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस को मिली, GRP ने फौरन आगरा कंट्रोल रूम को इसकी खबर दी, जो कि ट्रेन का अगला स्टॉपेज आगरा था। ग्वालियर से आगरा तक की दूरी 1 घंटे में तय होनी थी। सूचना मिलते ही आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जेआरपी की पूरी टीम तैयारी के साथ तमिलनाडु एक्सप्रेस का इंतजार करने लगी। सुबह करीब 5 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकती है। कंट्रोल रूम से मिली सूचना के आधार पर अब रेलवे पुलिस की टीम उसी जनरल कंपार्टमेंट में दाखिल होती है। खबर सही थी, कंपार्टमेंट के पिछले हिस्से में एक लाल रंग का ट्रॉली बैग रखा हुआ था। बैग के नीचे से शायद खून रिस रहा था। रेलवे पुलिस ने ट्रॉली बैग को खोलने का फैसला किया, फिर जैसे ही बैग खोला, अंदर से वही बाहर आया जिसका डर था। ट्रॉली बैग में एक लाश के टुकड़े थे।
2: सूचना प्राप्त हुई कंट्रोल रूम से कि तमिलनाडु एक्सप्रेस जो 12631 ग्वालियर से निकल चुकी है, उसके जनरल कंपार्टमेंट में पीछे की तरफ एक ट्रॉली बैग लाल रंग का रखा है, जिसमें से कुछ द्रव बाहर निकल रहा है और बदबू आ रही है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आगरा कैंट GRP पुलिस और RPF के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। उस बैग को नीचे उतार के देखा तो उसमें कुछ सड़े गले अवशेष हैं जो मानव अवशेष प्रतीत हो रहे हैं, मिले हैं, जिनको तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
1: लाश का चेहरा गायब था क्योंकि बैग में सिर था ही नहीं। अब बिना चेहरे वाली लाश के टुकड़े की शिनाख्त कैसे, फिर अब तक ये भी पता नहीं था कि लाश वाला ये बैग ट्रेन में आया कहां से, इसे किस स्टेशन पर रखा गया। लेकिन तभी रेलवे पुलिस की नजर उस रैपर पर पड़ी जिसमें लाश के टुकड़े लपेटे गए थे। उस रैपर पर चेन्नई के किसी प्रोडक्ट का लोगो लगा हुआ था
2: और वो जो उसमें रैपर में जिसमें वो लिपटे हुए हैं उसमें चेन्नई का एक लोगो लगा है, जिसके आधार पर चेन्नई भी एक टीम जांच के लिए तत्काल रवाना कर दी गई।
3: अच्छा, कुछ अवशेष हैं कि पूरी बॉडी में?
2: नहीं, कुछ सड़े गले अवशेष हैं जो एकदम काले पड़ गए हैं, लेकिन देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि मानव अवशेष।
3: सर, CCTV कैमरे वगैरह खंगाले जा रहे हैं आगे के चेन्नई तक?
2: हाँ सब पूरा चेन्नई टीम रवाना की जा रही है और वहां से वो जैसे उसको आगे लीड मिलेगी उसी हिसाब से वो कार्रवाई करती है।
1: अब तफ्तीश शुरू होती है। दो चीजें ये इशारा कर रही थी कि इस लाश का कोई ना कोई कनेक्शन चेन्नई से हो सकता है। पहली, जिस रैपर में लाश लिपटी थी उस पर चेन्नई का लोगो, और दूसरी, तमिलनाडु एक्सप्रेस चेन्नई से ही चलती है। आगरा पुलिस ने अब फौरन चेन्नई की जीआरपी से संपर्क किया। ट्रेन नंबर 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस, जिसके जनरल अपार्टमेंट में ट्रॉली बैग में लाश मिली थी, ये ट्रेन 3 अगस्त की रात 10 बजे चेन्नई रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। अब सबसे पहले पुलिस ने 3 अगस्त की रात चेन्नई रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, ये देखने के लिए कि जनरल अपार्टमेंट में लाल रंग की ट्रॉली बैग के साथ कौन कौन मुसाफिर सवार हुए, चेन्नई स्टेशन से ही सवार हुआ या फिर किसी और स्टेशन से। इधर इस बीच चेन्नई के अलावा ग्वालियर और ग्वालियर से पहले के स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस खंगालने में जुट चुकी थी, पर कामयाबी चेन्नई रेलवे स्टेशन से ही मिली। 3 अगस्त की रात तमिलनाडु एक्सप्रेस जिस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी थी, उस प्लेटफॉर्म पर दो लोग बिल्कुल वैसा ही ट्रॉली बैग लिए दिखाई दिए। इनमें से एक महिला थी और दूसरा पुरुष। हालांकि ये दोनों ट्रेन में सवार नहीं हुए, बल्कि बैग ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में रखने के बाद दोनों वापस चल दिए। जब चेन्नई स्टेशन के बाकी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया तो पता चला कि ये दोनों गुड्डू वांचेरी से आने वाली एक ट्रेन से चेन्नई स्टेशन पहुंचे थे। अब पुलिस के पास कातिल के तौर पर दो चेहरे थे, कैमरे में कैद यही दो चेहरे, लेकिन ये कौन थे, इनका नाम क्या है, कहां रहते हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। पर चूंकि दोनों चेन्नई रेलवे स्टेशन पर दिखे तो पुलिस अंदाजा लगा रही थी कि ये चेन्नई में ही कहीं मिल सकते हैं। अब दोनों की तलाश शुरू होती है।
4: चेन्नई एक्सप्रेस है, एक लाल रंग के बैग में मानव अवशेष की सूचना प्राप्त हुई थी और जिसका पोस्टमार्टम भी कराया गया और फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट थे उनकी उपस्थिति में कराया गया ताकि ये वेरीफाई हो सके कि वो मानव अंश हैं और किसके हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं। इसके लीड और सीसीटीवी फुटेज को ट्रैक करते हुए हमारी टीम वापस उसी चेन्नई एक्सप्रेस से गई तो चेन्नई में लाल रंग के बैग को, जो बैग बरामद हुआ था, उस बैग को पुरुष और महिला लेकर के एक दूसरे ट्रेन से उतरे थे और उसके बाद चेन्नई एक्सप्रेस में रख करके वापस हो गए थे। ये जानकारी चेन्नई पुलिस के साथ शेयर की गई थी। यहाँ मुकदमा 0 FIR लिखा गया और बाकी यहाँ लिखने के बाद वो चेन्नई ट्रांसफर हो गया और चेन्नई पुलिस इसमें बाकी कार्रवाई कर रही है।
1: वक्त बीतता जाता है पर पुलिस न इन दोनों को ढूंढ पाती है और न ही ये पता लगा पाती है कि बैग में मिली लाश आखिर किसकी थी। हालांकि कोशिश जारी थी, पूरे 19 दिन बाद आखिरकार पुलिस को पहली कामयाबी मिली। कैमरे में कैद इन दोनों का पता मिलता है। पता चलता है कि ये दोनों चेन्नई के गुडू वांचेरी के घर में रहते हैं। पुलिस की टीम फौरन उस घर पर दबिश डालती है। वो दोनों तो वहां नहीं मिले, लेकिन घर के अंदर पुलिस को जो कुछ मिला, खुद पुलिस सिहर उठा। चेन्नई के बिल्कुल करीब ये छोटा सा गुडू वांचेरी का इलाका है और इसी इलाके में ये घर है। जैसे ही इस घर में पुलिस पहुंचती है, आसपास भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इधर घर के बाहर भीड़ ये जानने के लिए खड़ी थी कि घर के अंदर पुलिस क्यों है, और उधर घर के अंदर मौजूद पुलिस घर का कोना कोना तलाश रही थी। घर के बेड, फ्रिज, अलमारी, जब सबकी तलाशी ले ली फिर भी कुछ नहीं मिला, तब पुलिस किचन में दाखिल होती है। किचन में एक बड़ा सा बर्तन कहे, पतीला कहे, यदि रखा हुआ था। अब पुलिस ने जैसे ही इस बर्तन का ढक्कन हटाया, खुद पुलिस सकते में आ गई। इस बर्तन के अंदर एक इंसानी सिर और लाश के कुछ टुकड़े थे। अब पुलिस की टीम इस बर्तन को लेकर घर के बाहर आती है। तब तक बर्तन में इंसानी सिर और लाश के टुकड़े पड़े होने की खबर इलाके में फैल चुकी थी। इसके साथ ही आनन फानन में यह अफवाह उड़ गई कि इस बर्तन में इंसानी मांस को पकाया गया है। हालांकि बाद में खुद चेन्नई पुलिस ने इसे महज एक अफवाह बताया। दरअसल ये घर मणि को दीन लश्कर नाम के एक शख्स का था। यहाँ वो भगवती माझी नाम की महिला के साथ लिविंग में रहता था। पुलिस ने जब आस पड़ोस में लोगों से मणि को दीन के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि पिछले 20 दिनों से वो घर आया ही नहीं, साथ ही भगवती भी तभी से गायब है। जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर पड़ोसियों को दिखाई तो उन्होंने फौरन पहचान लिया कि ये मणि को दीन और भगवती ही है। इसी दौरान पड़ोसियों ने ये भी बताया कि करीब महीने भर पहले इसी घर में एक और महिला किराए पर रहने आई थी, उसका नाम हयातुन निशा था, वो भी पिछले 20 दिनों से गायब है। तो क्या ट्रॉली बैग में मिली लाश हयातुन निशा की थी?
4: ये तो स्टेट की पुलिस के आपसी कोऑर्डिनेशन का परिणाम है कि एक ब्लाइंड केस जिसमें मानव अवशेष मिलना और उसको लिंक जोड़ना और तमिलनाडु पुलिस के द्वारा कार्रवाई करना, तो ये एक अच्छी वो है, सफलता मिली है इसमें। पैसेंजर ने सूचना दी थी, वो ग्वालियर के आसपास की उसने बैग देखने की सूचना दी थी, फिर उस बैग को ट्रैप करते हुए चेन्नई तक जहां से ट्रेन स्टार्ट होती है वहां तक टीम गई और वहां के बाद वहां की सीसीटीवी फुटेज से चीजें क्लियर हुई कि वो एक अन्य ट्रेन से ला करके बैग को इसमें डाला गया था।
1: अब पुलिस गुडुवांचेरी में तफ्तीश आगे बढ़ा रही थी कि तभी लोकल पुलिस से जानकारी मिली कि हयातुन निशा की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखाने एक लड़का आया था। पुलिस ने जब वो रिपोर्ट पढ़ी तो पता चला कि रिपोर्ट लिखाने वाला 17 साल का एक लड़का है और हयातुन निशा उसकी माँ। अब पुलिस ने हयातुन निशा के बेटे से पूछताछ की तो आधी कहानी सामने आ गई। वो आधी कहानी ये थी कि हयातुन निशा उड़ीसा के जगत सिंहपुर की रहने वाली थी, चेन्नई में कंपनी में नौकरी करती थी, बेटा साथ रहा करता था, लेकिन फिर हयातुन निशा मणि को दीन के करीब आ गई। बेटे को ये बात पसंद नहीं आई, अब वो माँ से अलग रहने लगा और माँ मणि को दीन के साथ उसी के घर में किराएदार के तौर पर रहने लगी। हालांकि मणि को दीन पहले से ही भगवती के साथ लिविन में रह रहा था, पर अब हयातुन निशा के साथ भी उसके रिश्ते बन चुके थे। अब चेन्नई पुलिस की एक टीम फौरन उड़ीसा के लिए रवाना होती है। जगत सिंहपुर जाने के बाद ये साबित हो जाता है कि आगरा रेलवे स्टेशन पर बैग में जो लाश मिली थी वो हयातुन निशा की ही थी। गुडुवांचेरी के जिस घर में बर्तन में इंसानी सिर मिला उससे भी ये साबित हुआ कि हयातुन निशा का कत्ल उसी घर में किया गया था। कत्ल के बाद बैग में आधी अधूरी लाश डालकर मणि कुद्दीन और भगवती चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुंचे और फिर तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट में बैग रखकर वहां से निकल गए। फिलहाल वो दोनों ही फरार हैं। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए एक साथ कई जगहों पर दबिश डाल रही है। अब जब तक मणि को दी और भगवती गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक कहानी का क्लाइमेक्स अधूरा ही है। क्लाइमेक्स ये कि आखिर हयातुन निशा का कत्ल क्यों हुआ, चेन्नई से आगरा तक के इस सफर की असलियत क्या थी। तो इसी असलियत का पता लगाते लगाते चेन्नई पुलिस चेन्नई से 2000 किलोमीटर दूर मणिपुर पहुंचती। मणिपुर में जीरीबाम में मणि को दीन और भगवती के छुपने की खबर मिली थी। खबर तो पक्की थी पर दोनों मिल नहीं रहे थे। पूरे 7 दिन लग गए चेन्नई पुलिस की टीम जीरीबाम के इलाके में भटकती रही, फिर आखिरकार 28 अगस्त को कामयाबी मिली। दोनों उसी जीरीबाम से पकड़े गए, मणिपुर के एक कोर्ट में पेश कर दोनों का ट्रांजिट रिमांड लिया गया और फिर उन्हें चेन्नई लाया गया। चेन्नई पुलिस की कस्टडी में एयरपोर्ट से बाहर आते ये उसी मणि को दीन और भगवती की तस्वीर थी। चेन्नई पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में दोनों ने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं थी। चेन्नई के करीब गुडुवांचेरी के इस घर में 2 महीने पहले हयातुन निशा बतौर किराएदार रहने आई थी। इस घर में 2 कमरे थे, एक कमरे में मणि को दीन और भगवती रहते थे, दूसरे कमरे में हयातुन निशा। हयातुन निशा के पास पिछली नौकरी के करीब 4 लाख रुपए बैंक में मौजूद थे, इसके अलावा उसके पास सोने के जेवर भी थे। हयातुन निशा की शिनाख्त होने के बाद चेन्नई पुलिस ने जब तफ्तीश की तो पाया कि उसके बैंक के पैसे और जेवर दोनों गायब है। चेन्नई पुलिस सूत्रों के मुताबिक मणि को दीन और भगवती ने उन्हीं पैसों के लिए हयातुन निशा को घर के अंदर ही मार डाला, फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके कई टुकड़े किए। पर टुकड़े किए जाने के बाद भी लाश एक बैग में नहीं आ रही थी, लिहाजा आधी अधूरी लाश बैग में भरकर दोनों ने उसे चेन्नई से नई दिल्ली जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस में रख दिया और गायब हो गए। दोनों की प्लानिंग गजब थी, लेकिन दोनों ये भूल गए कि रेलवे स्टेशन पर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। फिर दोनों ने अपने चेहरे भी नहीं छुपाए थे, लिहाजा कैमरे में कैद हो गए। दोनों ने दूसरी गलती ये की कि लाश को जिस रैपर में लपेटा उसमें चेन्नई की एक कंपनी का लोगो था, और बस यही दो चीजें आखिरकार इनकी गिरफ्तारी की वजह बन जाती। और इस तरह चेन्नई टू आगरा के सफर के साथ साथ ये कहानी भी अपने अंजाम को पहुंचती है। आगरा से अरविंद शर्मा के साथ प्रमोद माधव, चेन्नई आज तक। और अब बात पत्नियों के हाथों मारे जा रहे पति की सबसे ताजा दास्तान की। जयपुर में एक पति की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है। पत्नी सदमे में चली जाती है, फिर अंतिम संस्कार के बाद पति की अंत्येष्टि को गंगा में प्रवाहित करने के लिए वो हरिद्वार जाती है। लेकिन जैसे ही हरिद्वार से लौटती है, एक कैमरा सारी कहानी पलट देता है।
5: जयपुर के विश्वकर्मा इलाके के 14 नंबर पुलिया के पास इस मंजर को 5 अगस्त के दिन वहां से गुजरते हुए हर शख्स ने देखा था। लेकिन इन तस्वीरों को देखते हुए तब शायद ही किसी ने ये सोचा हो कि वो जो कुछ देख रहे हैं वो कुछ और नहीं बल्कि एक शख्स का कत्ल। जी हाँ, चलती सड़क के किनारे एक दुकान के सामने तब एक महिला और कुछ लोग एक बीमार आदमी को संभालते और सहारा देते दिख रहे थे। लेकिन असल में वो न तो किसी को संभाल रहे थे और न ही सहारा दे रहे थे, बल्कि ये कत्ल की एक ऐसी सोची समझी साजिश थी जिसे बड़े आराम से सड़क के किनारे अंजाम दिया जा रहा था। बाद में इसी सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस केस का खुलासा हुआ। एक ऐसा केस जिसमें एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पहले उसे जहर मिला हुआ जूस धोखे से पिलाया और फिर जब पति की तबीयत बिगड़ गई तो उसे अस्पताल ले जाने की जगह सड़क पर टाइम पास करते रहे और आखिरकार 1.5 घंटे में तड़प तड़प कर पति की जान चली गई। फिलहाल जयपुर पुलिस ने इस केस का खुलासा करते हुए न सिर्फ बीवी और बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि ये भी पता चला है कि बीवी ने अपने पति के कत्ल के लिए खुद अपने ही पिता से धोखे से कीटनाशक दवा मंगाई थी और पूरे 4 महीने के इंतजार के बाद उसी कीटनाशक की मदद से पति की जान ले ली। अब आइए आपको धोखे, साजिश और कत्ल की ये चौंकाने वाली कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तस्वीरों में दिख रही इस लड़की का नाम है कविता। कविता किसी से बात कर रही है, हालांकि उसे पता नहीं है कि उससे बातचीत करने वाला शख्स ही उसे शर्ट की जेब में रखे मोबाइल फोन से चोरी छिपे शूट कर रहा है। लिहाजा कविता मुस्कुराते हुए सब बता रही है। वो कहती है, मैं तो मर गई, अब घर वाले मुझे मार देंगे। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर पति का कत्ल करने की ये सच्चाई कविता बिना डरे कैसे कबूल कर रही है। क्या उसे पुलिस, कानून या जेल का कोई खौफ नहीं है? तो जवाब है कि जब तक ये वीडियो शूट किया जा रहा था तब तक कविता को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसके घर वाले अब उसे पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं और चोरी छिपे शूट किए जा रहे ये वीडियो असल में उसके खिलाफ जुटाए जा रहे सबूतों का हिस्सा है। दिमाग घुमा देने वाली इस मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत होती है 5 अगस्त से, जब जयपुर के विश्वकर्मा इलाके का रहने वाला महेश मीणा अपनी पत्नी कविता को लेकर डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकलता है। दोनों बाइक पर सुबह ही बगरू के लिए रवाना होते हैं, लेकिन जब देर दोपहर तक लौट कर नहीं आते तो फिर घर वालों को फिक्र होती है। इसके बाद वो अपने बेटे महेश को फोन करते हैं, मगर फोन महेश नहीं उसकी पत्नी कविता उठाती है और बताती है कि वो कुछ ही देर में घर लौटने वाले हैं। लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद कविता फिर से अपने ससुराल में फोन कर एक डरावनी खबर देती है। वो बताती है कि उसके पति महेश की तबीयत अचानक रास्ते में ही खराब हो गई है और वो फिलहाल महेश के साथ 14 नंबर पुलिया के पास रुकी हुई है। वो बताती है कि वो किसी तरह बीमार महेश को बाइक पर बांध कर यहाँ तक पहुँची है। ये खबर सुनकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आनन फानन में मौके वारदात पर पहुंचते हैं और फौरन महेश को उठाकर सीकर रोड के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे मुर्दा करार देते हैं। ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि घर वालों को समझ ही नहीं आता कि जवान जहान महेश को आखिर अचानक क्या हुआ, उसकी जान इतनी जल्दी कैसे चली गई। अस्पताल की तरफ से ही पुलिस को इत्तला दी जाती है और इस सिलसिले में पुलिस अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज कर महेश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है, मगर पोस्टमार्टम में मौत की वजह साफ नहीं होती। महेश की मौत से कविता को गहरा सदमा लगता है। वो कभी कभी रोती तो है, लेकिन कई बार उसे देखकर लगता है कि कविता को महेश के जाने का ज्यादा गम नहीं है। ऐसे में महेश के पिता बाबूलाल मीणा खुद अपने बेटे की मौत की वजह जानने और इस मामले की तफ्तीश करने का फैसला करते हैं। घर के कुछ सदस्य जब महेश के अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार जाते हैं तो महेश के पिता बाबूलाल कविता को भी हरिद्वार भेज देते हैं। इधर कविता के जाने के बाद बाबूलाल मीणा सच्चाई जानने के लिए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां घर वालों ने पहली बार महेश को बीमार हालत में देखा, यानी 14 नंबर पुलिया के पास। इत्तेफाक से वहां उन्हें एक सीसीटीवी कैमरा नजर आता है। अब वो खुद ही सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने का फैसला करते हैं और कैमरे के मालिक से 5 अगस्त की फुटेज

पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ। पंचायत आज तक 18 सितंबर, सिर्फ आज तक पर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: राजस्थान में टूरिज्म का भले ही ऑफ सीजन चल रहा, लेकिन फिर भी वहाँ रिजॉर्ट और होटल फुल। राजस्थान के पार्षद स्विमिंग पूल में चिल कर रहे हैं, तो कहीं परिवार का जन्मदिन मनाने के लिए सबको रिजॉर्ट में बुला ले रहे हैं। देर रात तक गीत संगीत की महफिल चल रही है। नाली पानी सड़क बिजली के लिए संघर्ष कर रही जनता को पसीने पसीने छोड़कर पुष्कर के रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल में मजे कर रहे हैं। ये ब्यावर के कांग्रेस के पार्षद। 9 सितंबर को वोटिंग के बाद से ही इन्हें रिजॉर्ट में बंद कर दिया गया है। दौसा के महुआ नगरपालिका में जीते ये बीजेपी के पार्षद, जो जयपुर के जामवारागढ़ में रिजॉर्ट में महुआ के विधायक राजेंद्र मीणा की बेटी के जन्मदिन की पार्टी में शरीक हो रहे हैं। इस पार्टी में आशीर्वाद देने बाड़ेबंदी में ही कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आए। राजस्थान के 309 निकाय चुनाव में से बीजेपी को 85 निकाय में बहुमत मिला है, तो कांग्रेस को 45 निकाय में स्पष्ट बहुमत मिला है। बाकी 5 नगर निगम, 18 नगर परिषद और 122 नगर पालिकाओं में चाबी निर्दलियों के हाथ में है। 34 निकायों में तो निर्दलियों ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसे में पार्टी नेताओं को डर था कि कहीं जीतने

0: वाले पार्षदों पर दूसरे दलों की नजर ना पड़ जाए और बोर्ड बनाने के समय कोई खेला ना हो जाए। इसी आशंका के चलते प्रत्याशियों को अलग अलग होटलों में ठहराया गया। मतदान के बाद पार्षद अपने वार्ड में जनता के बीच कम और होटल की चारदीवारी में ज्यादा नजर आए। सबसे ज्यादा खतरा अजमेर के कांग्रेस के पार्षदों को, जिन्हें चार दिनों में चार होटल बदलने पड़े और आखिर में इन्हें कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक के बेंगलुरु में ले जाना पड़ा। अजमेर के कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी हमारे पार्षदों को तोड़ने में लगी है। होटलों में पार्षदों की आवभगत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लजीज पकवान खिलाए जा रहे हैं, मौज मस्ती का भी पूरा इंतजाम है ताकि वफादारी निभाने के समय ये भाग न जाए। जयपुर में तो बीजेपी ने बहुमत मिलने के बाद भी पार्षदों को 30 किलोमीटर दूर बगलू के होटल में बंद कर रखा है। गेट पर ताला बंद है। किसी की पत्नी प्रसाद लेकर पहुंच रही है तो किसी का बेटा दवाई लेकर आ रहा है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में दीपोत्सव, काशी से कोलकाता तक, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए, प्रधानमंत्री ने जताया आभार। बंगाल उपचुनाव से पहले ममता और ऋतव्रत गुट को झटका, चुनाव आयोग ने टीएमसी के निशान और नाम के इस्तेमाल पर लगाई रोक, दोनों से कल तक मांगे गए 3-3 विकल्प। यूपी में हाईवे को लेकर अखिलेश ने सीएम योगी को घेरा, कहा बीजेपी सरकार में निर्माण बाद में पूरा होता है, गिरने वो पहले लगता है, बोले वो हर लेन देन पर लेंगे टैक्स। 100% टैरिफ वाले अमेरिकी कानून पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध, अलग अलग स्रोतों से जारी रहेगी ऊर्जा खरीद। और अफगानिस्तान के खिलाफ T20 में अभिषेक शर्मा का धमाका मैच, 30 गेंद में जड़ दिया शतक, टेस्ट खेलने वाले देशों में सबसे तेज सेंचुरी का बनाया रिकॉर्ड।

प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में जश्न। महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर मनाया गया जश्न। पीयूष गोयल ने दहिसर पश्चिम के मंडपेश्वर में दिया जलाया। मोदी के जन्मदिन पर अहमदाबाद पहुंचे शिंदे। उद्धव ने बोला मराठवाड़ा की जगह शिंदे ने चुना अहमदाबाद। मोदी के जन्मदिन पर यूथ कांग्रेस का तंज। मुंबई से मेरी डिग्री का क्या कैंपेन लॉन्च किया गया। यूथ कांग्रेस का बयान देश में 50 लाख युवा बेरोजगार लेकिन पीएम अपना जन्मदिन मना रहे हैं। मेहसाणा में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर बाल बाल बचा। वडनगर के पास गुंजा में उड़ान से पहले आई थी तकनीकी खराबी। दिशा सालियान केस में नया मोड़। पिता ने आदित्य ठाकरे अनिल देशमुख को भेजा 500 करोड़ की मानहानि का नोटिस। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति बप्पा के दर्शनों के लिए लोगों की भारी भीड़। गणेशोत्सव पर तैयार की गई है वृंदावन के प्रेम मंदिर की प्रतिकृति। नागपुर में गणपति उत्सव की धूम है। मशहूर दक्षिणामूर्ति सार्वजनिक पंडाल में साकार किया गया। पुणे के आलंदी की संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर को। सूरत में भक्ति के साथ नजर आया विकास का संदेश भी। वंदे भारत ट्रेन की थीम पर बनाया गया है अनोखा गणेश पंडाल। अकोला में गणेश भक्त परिवार ने बनाई गणपति की अनोखी झांकी। घर के गणपति के साथ सजाई जेजुरी का खंडवा गढ़ की प्रतिकृति। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मुंबई और शिरडी अद्भुत मिलन। सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल में मुंबई के लालबाग चौराजा के साथ शिरडी साई बाबा के भी दर्शन। आज से जापान में एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत। क्रिकेट हॉकी कबड्डी बैडमिंटन के साथ कई खेलों में पदक के लिए दावेदारी पेश करेगा भारत। अफगानिस्तान के खिलाफ टी20 में अभिषेक शर्मा का धमाका मैच। 30 गेंद में जड़ा शतक। टेस्ट खेलने वाले देशों में सबसे तेज सेंचुरी का बनाया रिकॉर्ड। राशिद 200 टी20 इंटरनेशनल विकेट हासिल करने से 4 विकेट दूर हैं। ये उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बनेंगे राशिद। फिलहाल 117 मैचों में 196 विकेट उनके नाम। एशियन गेम्स से भी बाहर हुए वरुण चक्रवर्ती। विप्रज निगम ने पहली बार सीनियर टीम में उन्हें मौका मिला। वरुण को अफगानिस्तान के खिलाफ हुई थी हैमस्ट्रिंग। टी20 रैंकिंग में पहले दो पायदान पर भारतीय बल्लेबाजों का जलवा। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को पछाड़कर नंबर 2 पर अभिषेक शर्मा। ईशान किशन नंबर 1 पर काबिज। आज करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की दायरा हो रही है रिलीज। इसे मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। कुणाल खेमू की फिल्म वाईबी बॉक्स ऑफिस पर दिखाएगी कमाल फिल्म में कुणाल खेमू प्रीति जिंटा स्पर्श श्रीवास्तव दिनेश लाल यादव जैसे स्टार्स हैं। लव स्टोरीज का तीसरा सीजन भी रिलीज किया गया है। इसमें 4 अलग अलग कहानियां हैं जो प्यार नजदीकी और आधुनिक रिश्तों के बारे में दिखाती हैं। भारत में रेलवे टिकट पर एक बड़े घोटाले पर आधारित वेटिंग है नाम की सीरीज अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हो रही है स्ट्रीम। अभिनेता दिव्येंदु शर्मा अहम भूमिका में। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया सीजन शुरू होने की हो गई है घोषणा। 26 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर शुरू होगा 5वां सीजन।

0: 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत की यात्रा के साथ जोड़ने का काम किया।
1: मोदी जी ने भारत को नई ऊंचाइयां दी है और आगे चलकर मेरा विश्वास है कि विकसित भारत का सपना बहुत जल्दी मोदी जी पूरा करके दिखाएं।
2: हमारा मार्गदर्शन और हमारा नेतृत्व वर्षों तक मोदी जी करें।
3: जनता के प्रति उनका कार्य अरब सागर की गहराई से नापा जा सकता है।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर उनकी कर्मभूमि वाराणसी से लेकर उनकी जन्मभूमि गुजरात के वडनगर तक जमकर जश्न मनाया गया। आशीर्वाद का दिया नाम से आयोजित कार्यक्रम में शहर शहर बड़े नेताओं ने दिया जलाकर प्रधानमंत्री मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। मुंबई से लेकर दिल्ली तक जश्न मना तो विपक्ष ने किंतु परंतु के साथ जश्न पर सवाल उठाए।

0: मोदी जी ने भारत को नई ऊंचाइयां दी है।
1: इस देश के युवा की जवानी है मोदी, हर मुश्किल में हिम्मत की रवानी है मोदी, दुश्मनों के लिए बिजली तूफानी है मोदी।
2: जो हमने किया, पुरस्कार खरीद लिया, ये तुमसे ना हो पाएगा।
3: जिन्हें अपने जीवनात काहीच केलेलं नाही।
4: पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर बीजेपी ने पूरे देश में जोरदार जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम की कर्मभूमि वाराणसी से उनकी जन्मभूमि वडनगर तक अलग अलग तरीके से बधाई दी। वाराणसी और उज्जैन में दिए जलाए गए तो कहीं केक काटा गया। आशीर्वाद का दिया नाम से देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम हुए। वाराणसी में भी गंगा तट पर दीपोत्सव किया गया। महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा के रामघाट, दत्त अखाड़ा घाट और महाकाल लोक में 25 लाख दिए जलाए गए। मुंबई में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को दिए जलाकर शुभकामनाएं दी।
5: भारत को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से, भारत को आर्थिक महासत्ता बनाने के दृष्टिकोण से, भारत को विश्वगुरु बनाने के दृष्टिकोण से, ऐसे मोदी जी को आने वाले समय में ईश्वर शक्ति प्रदान करे कि वो सिर्फ भारत में ही नहीं लेकिन पूरे अखंड मानव जाति का कल्याण के लिए काम करे, विश्व कल्याण के लिए काम करे।
6: तो मुंबई के दहिसर इलाके के मंडपेश्वर केस में हम हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पर आप कह सकते हैं 5000 दिए जो है वो लगाए गए हैं और देख सकते हैं आप एक तरह से भव्य आरती जो है इस मंदिर के अंदर होती हुई दिख रही है और सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर आए और आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पूरे जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई के अलग अलग इलाकों में, उत्तर मुंबई के अलग अलग इलाकों में कई जगह से आप कह सकते हैं कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल खुद जा रहे हैं। उसके साथ साथ आप इस दहिसर के प्रोग्राम में देखेंगे कि लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, इस वक्त आरती हो रही है और उसके साथ साथ बधाइयां जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को दी जा रही है।
4: महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी पीएम मोदी को बधाई दी।
0: हम लोगों ने सेवा संकल्प अभियान यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में और देश में हम चला रहे हैं। इस अभियान के तहत आज एक दीप आशीर्वाद का, इसके तहत लाभार्थियों ने एक दिया जलाकर मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। मैं आज नागपुर में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आया हूँ। यहाँ अभी मेरे साथ 500 लाभार्थियों ने दीप जलाकर और मोदी जी को आशीर्वाद दिया है और ऐसा हर मोहल्ले में, हर जगह पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। मेरा विश्वास है कि मोदी जी ने भारत को नई ऊंचाइयां दी है और आगे चलकर मेरा विश्वास है कि विकसित भारत का सपना बहुत जल्दी मोदी जी पूरा करके दिखाएंगे।
7: जो सामूहिक संकल्प है देश को विकसित भारत 2047 बनाने का, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में, उनकी दूरदर्शिता के साथ हम इसको हासिल करेंगे। मोदी जी को ईश्वर लंबी आयु दे, दीर्घायु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे और हमारा मार्गदर्शन और हमारा नेतृत्व वर्षों वर्षों तक मोदी जी करें और हम सबको प्रेरित करें, हम सबको और उत्साहित करें देश को अपना जीवन समर्पित करने में। मैं ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ।
4: इधर शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे गृहमंत्री अमित शाह के साथ गुजरात दौरे पर रहे। अहमदाबाद में आयोजित भव्य समारोह में शिंदे ने पीएम मोदी को महाराष्ट्र की जनता की तरफ से शुभकामनाएं दी। शिंदे पीएम के जन्मदिन पर संकल्प अभियान की शुरुआत करने के लिए उनके गृहनगर वडनगर भी पहुंचे थे।
8: वडनगर नी पावन धरती ने शत शत नमन करता हूं और वडनगर नी धरती ना सपूत देश ने दुनिया ना लाडला बनी गया छे। आज आ धरती ऊपर आवीने हूं बहुज गर्व अनुभव छू।
4: इसके बाद संभाजीनगर पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिंदे पर निशाना साधा। उद्धव ने महायुति पर निशाना साधते हुए नारा दिया कि मराठवाड़ा का विकास तुमसे ना हो पाएगा। उद्धव बोले, शिंदे ने मराठवाड़ा मुक्ति आंदोलन के शहीदों को सम्मान देने के लिए संभाजीनगर आने की जगह गुजरात में जश्न मनाने और गुजराती में भाषण देने का विकल्प क्यों चुना।
2: हे मला असं वाटतं ते आपल्याला सांगतील हे तुमसे ना हो पाएगा हा एवढा निर्लज्जपणा तुम्हाला नाही जमणार म्हणजे ते उलट आपल्याला सांगतील जो हमने किया पुरस्कार खरीद लिया ये तुमसे ना हो पाएगा।
4: इतना ही नहीं शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे ने शिंदे की हालिया लंदन यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने शिंदे की तारीफ करने वाले महंगे विज्ञापनों की आलोचना करते हुए कहा मराठवाड़ा में किसान आत्महत्या कर रहे हैं जबकि कुछ नेता अवार्ड खरीदने के लिए विदेश यात्रा कर रहे हैं।
2: आदिवासी लोक तिकडे आंदोलन करता है आज जरांगे मला वाटतं मुंबईला चालले होते। एक माणूस स्वतःचे प्राण पणाला लावून तिकडे लढतोय आणि दुसरा माणूस लंडन मध्ये जाऊन पुरस्कार घेतोय।
4: वही उद्धव ठाकरे के तुमसे ना हो पाएगा आंदोलन पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को काम करने के कई मौके मिले लेकिन उन्होंने काम नहीं किया वही आज आंदोलन कर रहे हैं।
3: नागरिकांचं आंदोलन आहे त्यांनी आपल्या जीवनात काहीच केलेलं नाही संधी मिळाली तरी काही केलेलं नाही अशा नागरिकांचं आंदोलन आहे। आम्ही यापूर्वी करून दाखवलंय आताही करून दाखवू।
4: पीएम मोदी के जन्मदिन के बहाने विपक्ष जहां बीजेपी और उनके सहयोगी दलों पर तंज कस रहा है वहीं महायुति सरकार भी विपक्ष पर पलटवार करने में देरी नहीं कर रही।
9: मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के इस ऐतिहासिक दिन पर सियासी वार पलटवार ये साफ बता रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान और तेज होने वाला है। एक तरफ पीएम मोदी के जन्मदिन का भव्य जश्न और दूसरी तरफ किसानों की बदहाली और विदेशों से खरीदे गए अवार्ड का गंभीर आरोप। अब देखना यह होगा कि उद्धव ठाकरे के इन तीखे हमलों का एकनाथ शिंदे और सरकार क्या जवाब देती है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर मुंबई आज तक।
10: तो जहां एक ओर बीजेपी पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का जश्न मना रही है वहीं मुंबई में यूथ कांग्रेस ने आज से मेरी डिग्री का क्या कैंपेन देश भर में लॉन्च किया है। मुंबई में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जीनत सबरीन ने इस कैंपेन की शुरुआत करते हुए कहा कि देश में 50 लाख युवा बेरोजगार हैं, लेकिन मोदी जी अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहली बार जब देखा है कि किसी जीवित आदमी के लिए दिए जलाए जा रहे हैं। बात करेंगे दिशा सालियान मामले के बारे में क्योंकि उनके पिता सतीश सालियान ने आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख को 500 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा है। 19 सितंबर को आदित्य ठाकरे के घर मातोश्री जाकर उन्हें मानहानि का नोटिस खुद देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है और अपने कानूनी टीम के लिए वहां जाते समय पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है।
4: दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री पर सियासत हावी होती जा रही है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 500 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में दोनों नेताओं के बयानों पर आपत्ति जताई गई है। सतीश सालियान ने दोनों को बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने, बयान वापस लेने, लिखित माफी मांगकर उसे प्रिंट मीडिया में छपवाने, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 3 मिनट का माफीनामा वीडियो जारी करने की मांग की है।
11: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान जी की तरफ से आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख को डिफामेशन का नोटिस दिया गया है। ये अलग डिफामेशन का नोटिस है, उन्होंने जो पोस्ट किए उसके लिए एक और एडिशनल नोटिस दिया जा रहा है। तो ये जो नोटिस है ये उन्होंने मैटर वही है सिमिलर, उन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट पे कहा था कि सतीश सालियान के पिताजी ने पिटीशन गलत फाइल की है और ऑलरेडी इस मैटर में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके उनको क्लीन चिट दी है, लेकिन राजकीय हेतु से प्रेरित होकर और पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ मीडिया के लोग जिनके इनके ये संबंध ठीक नहीं है उनके इशारे पे ये पिटीशन फाइल की गई है।
4: दिशा के पिता ने 500 करोड़ के मानहानि के नोटिस में लिखा आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख ने मेरे बयानों और कानूनी कार्रवाई को लेकर झूठे दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप लगाए। दोनों नेताओं ने मेरी बेटी दिशा की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया। आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे हैं कि सीबीआई पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है। आदित्य कह रहे हैं कि वो दिशा को जानते ही नहीं थे, ये बात सच नहीं है। हमारे पास इन नेताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत है।
12: 17 पन्ने के इस लीगल नोटिस में कहा गया है कि नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख दोनों को ही एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी देनी है, और अनकंडीशनल अपॉलॉजी किस तरीके की हो ये भी स्पेसिफाई किया गया है। अखबार में एडवर्टीजमेंट A4 साइज के होने चाहिए, 3 मिनट से कम के वीडियो के नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 500 करोड़ जो डिफेमेशन में है किया है, जिसकी वजह से जो इतनी बदनामी हुई है उसका हर्जाना ये 500 करोड़ भी दिए जाएं। तो ये तमाम बातें इन 17 पन्नों में लिखे हैं, और अब अनिल देशमुख और आदित्य ठाकरे दोनों के ही वकील ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर से डील कैसे किया जाए।
4: दरअसल 16 सितंबर को आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिशा मौत मिस्ट्री केस में सफाई देते हुए लिखा था, मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और ना ही उन्हें जानता हूँ। पिछले 6 सालों से कुछ लोग जानबूझकर और बिना किसी सबूत के इस दुखद मामले से मेरा नाम जोड़कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बदनाम करने का यह अभियान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जोरदार टीवी डिबेट और मीडिया ट्रायल से सच्चाई नहीं बदलती। इस केस की जांच दोबारा आगे बढ़ने दें।
11: और बाकी जो उन्होंने अभी जो नया पोस्ट किया है कि इन्वेस्टिगेशन शांतिपूर्ण तरीके से होने दो, मीडिया के लोग डिबेट ना करें, तो इसको कहते हैं चोर मचाए शोर। इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दिया, इन्होंने खुद उसके रिकॉर्ड डिलीट करवाए, इन्होंने खुद सतीश सारंग के पिटीशन को ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि सीबीआई को मैटर ना जाए, इसी और इन्हीं की वजह से डिले हुआ है ये सब। तो अभी वो तो हमने इनको खिलाफ लड़के सबूत देके ये ऑर्डर लिया है, इनका सारा झूठ पकड़ा गया है, और अब यही खुद चिल्ला रहे और ये जो कह रहे दिशा का मेरा संबंध नहीं है, हमारे पास में सारे डिजिटल प्रूफ्स आई विटनेस से लेके सारी चीजें हैं। ये दो चीजों का आज तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आप इस ड्रग्स के बिजनेस में ड्रग्स का बिजनेस करते हुए और खुद ड्रग्स का सेवन करते हुए ड्रगिस्ट हो। ये नारकोटिक्स ब्यूरो के क्राइम नंबर 15/2020 में आया, आपके फोन सर्विलेंस में आया, ये हमने एफिडेविट पे कहा, उसका आप जवाब नहीं दे पाए और उसको मना भी नहीं कर रहे हो, उसके बारे में बोलो, और आपके मोबाइल टावर लोकेशन वहां थे, और आपने जो पहला डिफेंस लिया था कि मैं उस दिन बाहर था, मेरे नाना जी गुजर गए थे 8 जून को, मुंबई से बाहर था, वो भी झूठा साबित हो गया, नाना जी 14 जून को गुजरे थे। उसके बाद में आपने कहा इसकी जो आपकी मेन पार्टनर इन क्राइम है इसमें रिया चक्रवर्ती, बोले मैं इसको जानता नहीं, रिया ने कहा मैं आपको नहीं जानती, ये भी फोरेंसिक की चैट रिकवरी में ये भी झूठा साबित हो गया। उस तो आप हैबिचुअल झूठ बोलने वाले हो।
4: दिशा सालियान के पिता 6 साल से कह रहे हैं कि उनकी बेटी दिशा की गैंगरेप के बाद हत्या हुई थी। वो आदित्य ठाकरे समेत कई पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं।
13: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनो मौर्या, सुरेश पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करना है, सब कंप्लेंट दिया है।
4: हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को सतीश सालियान के आरोपों की कार्रवाई करने को कहा है। बीजेपी विधायक राम कदम भी लगातार तत्कालीन उद्धव सरकार की भूमिका संदिग्ध बताते रहे हैं।
14: दिशा सालियान की मौत, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष से ऊपर उठ करके है। श्रीमान आदित्य ठाकरे को 6.5 वर्ष लग गए ये बोलने के लिए कि उनका इस मामले में कोई संबंध नहीं है। इसके पहले उनकी खामोशी का क्या कारण था, किसने उन्हें रोका था? उनके पिता तो लगातार बार बार आरोप कर रहे थे, तब आप क्यों नहीं बोले? और कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का था? क्या कारण था कि आपकी सरकार पुलिस को जांच करने से क्यों रोक रही थी? और यदि पुलिस जांच नहीं कर रही है तो आपकी सरकार ने पुलिस से क्यों नहीं कहा उस पिता को न्याय मिलना चाहिए?
4: दिशा सालियान की मौत की शुरुआती जांच मुंबई पुलिस ने की थी। पुलिस की जांच में दिशा की मौत को आत्महत्या बताया गया था। मार्च 2025 में सामने आई मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में भी दिशा की मौत को सुसाइड बताते हुए उनकी मानसिक परेशानी का जिक्र किया गया था। लेकिन सवाल है कि क्या सीबीआई दिशा सालियान की मौत की गुत्थी सुलझाने में कामयाब हो पाएगी?
15: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने अपने वकील, अपने एडवोकेट द्वारा मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक पत्र द्वारा सिक्योरिटी मांगी है। ये सिक्योरिटी इसलिए मांगी है क्योंकि उनका कहना है कि आदित्य ठाकरे शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे पर जो वो मानहानि का नोटिस उन्हें देने जा रहे हैं 500 करोड़ का ये मानहानि का नोटिस है, डिफेमेशन नोटिस है, वो बाय हैंड डिलीवर करना चाहते हैं। इसीलिए 19 सितंबर को वो आदित्य ठाकरे के घर मातोश्री बैंड्रा जाएंगे और उन्होंने एडिक्वेट सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी की मांग की है पुलिस द्वारा।
4: विद्या के साथ दिव्यांश सिंह, मुंबई आज तक।
10: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे महाराष्ट्र के नासिक में अजीबोगरीब विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आवारा कुत्तों से परेशान लोगों ने पंचायत के चीफ ऑफिसर के दफ्तर में धावा बोला और कुत्तों को ऑफिसर की टेबल पर छोड़ दिया।
16: ये है महाराष्ट्र के नासिक में पंचायत कार्यालय के मुख्य अधिकारी का दफ्तर। अचानक मुख्य अधिकारी के दफ्तर में शिवसेना यूबीटी की युवा सेना के कार्यकर्ता 3 बोरियां लेकर धावा बोलते हैं। मुख्य अधिकारी अपनी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहे होते हैं, तभी युवा सेना के कार्यकर्ता बोरियां उठाकर टेबल पर खोलते हैं तो उसमें से निकलते हैं कुत्ते। और ये देखिए कैसे कुत्ते टेबल पर दौड़ने लगते हैं। पंचायत कार्यालय के मुख्य अधिकारी हैरत में पड़ जाते हैं, आखिर ये है क्या, और कुत्ते टेबल पर कोने में जाकर फाइलों पर बैठ जाते हैं। फिर सब कुछ क्लियर होता है। जी हाँ, नासिक में आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ शिवसेना यूबीटी की युवा सेना का ये बड़ा ही अनोखा विरोध प्रदर्शन था जिसमें दो।
10: उधर मुंबई में साइबर पुलिस ने एक ऐसे बुजुर्ग को पुलिस के नाम पर डिजिटल अरेस्ट करने वाले गिरोह का खुलासा किया है और इस गिरोह ने बुजुर्ग को लगभग 125 करोड़ रुपए का चूना लगाया था, डिजिटल अरेस्ट कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने एक आईआईटी ग्रेजुएट, एक बैंक का रीजनल मैनेजर, साथ ही साथ 6 और आरोपी जिन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह ने बुजुर्ग को फर्जी सिम कार्ड के जरिए 238 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जी पुलिस केस की धमकी दी और धमकाया बुरी तरह से, उसके बाद डिजिटल अरेस्ट कर लिया। और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहें आप हमारे साथ, देखते रहें आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए। क्या फर्क पड़ रहा है यूसीसी से, बताओ मुझे, कि निकाह नहीं होगा क्या हमारा? निकाह तो होगा, फेरे नहीं होंगे क्या? फेरे ही तो होंगे, क्या तमाशा बना रखा है? कुछ भी नहीं है।
1: छात्रों के मूवमेंट से डरी हुई सरकार के पास अब इसी तरह का कार्ड खेलने के अलावा और कोई चारा नहीं। और चुनाव में गिराने के लिए क्या है, नौकरियां वो दे नहीं पाए, स्टूडेंट्स जो है वो परेशान है, प्रोटेस्ट कर रहा है पूरे देश में, जेंजी से लेके जेन अल्फा तक। तो सरकार के पास मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यही सब है राज्यों में। ये भारत जो है वो विविधताओं का देश है, भारत जो है वो तमाम अलग अलग तरह के फूलों से मिलके बना। आप सब कुछ एक रंग का कर देना चाहते हैं, सब कुछ एक जैसा कर देना चाहते हैं, डाइवर्सिटी कहाँ चली जाएगी? तो गृहमंत्री जी को ये समझना पड़ेगा कि ये देश बहुत अलग अलग भाषाओं, अलग अलग बोलियों, अलग अलग कल्चर, अलग अलग तहजीब, अलग अलग धर्मों सबसे मिल करके भारत बनता है। आप सब कुछ एक कर देना चाहते हैं, एक रंग का, तो हम तिरंगे के साथ खड़े हैं, हम तिरंगे वाले लोग हैं।

0: पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ूसेठ हलवाई गणपति बप्पा के दर्शनों के लिए लोगों की भारी भीड़। गणेशोत्सव पर तैयार की गई वृंदावन के प्रेम मंदिर की प्रतिकृति यहां देखने को मिल रही है और आपको बता दें कि करीब 100 फीट ऊंची है प्रेम मंदिर की ये प्रतिकृति। करीब 120 फीट की लंबाई है, 90 फीट चौड़ा है भव्य पंडाल। मंदिर के दर्शनीय हिस्सों पर राधा और कृष्ण की भव्य प्रतिमाएं हैं। अलग अलग देवी देवताओं की तस्वीरों को भी यहां उकेरा गया है। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: भैया मेरे राखी के बंधन को नहीं। 100 रुपए लेंगे तुम सभी,
1: लो मिठाई भी खाओ।
2: क्योंकि फूफा भी कभी जीजा थे।
1: ताऊ भी एथेनॉल को लेके फूफा ही कहे जाएंगे।
3: हाँ ताऊ एथेनॉल फूफा हैं।
4: हाँ बिल्कुल है, हम नाराज हैं।
0: मेरे फूफा जो है दुनिया के सबसे अच्छे फूफा है।
3: क्या बात कर रहे हैं,
0: कसम से उनका नाम ही अच्छे खां है।
3: अच्छा। सबसे अच्छे हुए।

प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में दीपोत्सव। काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए, प्रधानमंत्री ने जताया आभार। बंगाल उपचुनाव से पहले ममता और ऋतव्रत गुट को झटका, चुनाव आयोग ने टीएमसी के निशान और नाम के इस्तेमाल पर लगाई रोक, दोनों से कल तक मांगे गए तीन तीन विकल्प। यूपी में हाईवे को लेकर अखिलेश ने सीएम योगी को घेरा, कहा बीजेपी सरकार में निर्माण बाद में पूरा होता है लेकिन गिरने वो पहले लगता है, बोले अब वो हर लेन देन पर लेंगे टैक्स। 100% टैरिफ वाले अमेरिकी कानून पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध, अलग अलग स्रोतों से जारी रहेगी ऊर्जा खरीद। और टी20 में अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान, महज 30 गेंद में जड़ा शतक, टेस्ट खेलने वाले देशों में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड, भारत ने 127 रन से जीता मैच।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में कई जगह दीपोत्सव का आयोजन। महाकाल नगरी उज्जैन में 33,27,000 दियों से रोशन हुए शिप्रा तट और महाकाल महालोक बना विश्व रिकॉर्ड। पीएम के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु की आरती की। आरती में सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन में कोलकाता में भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ। हजारों दीयों की रोशनी के साथ इलेक्ट्रिकल लाइट से जबरदस्त सजावट, मुख्यमंत्री शिवेंद्र अधिकारी ने जलाया दिया। पीएम के जन्मदिन पर कोलकाता में की गई जबरदस्त आतिशबाजी, पटाखों की रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुआ आसमान। अयोध्या के सूर्यकुंड मंदिर में दीपदान और लेजर लाइट शो का भी आयोजन किया गया। लेजर लाइट के जरिए रामायण के प्रसंगों को किया गया था चित्रित। लखनऊ में पीएम मोदी के 76वें जन्मदिन पर सीएम योगी ने सेवा संकल्प अभियान के तहत राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आशीर्वाद का दिया। कार्यक्रम में शामिल हुए वो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आवास पर जलाया आशीर्वाद का दिया, लंबी उम्र की कामना की। मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दहिसर पश्चिम के मंडपेश्वर में प्रज्वलित किया दिया। पटना में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम शामिल हुए सम्राट चौधरी, जलाया गया प्रधानमंत्री के नाम का दिया। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर गुजरात के केवड़िया में जलाए गए 51,000 से ज्यादा दिए। बड़ी संख्या में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता आम लोगों ने इसमें शामिल होकर भाग लिया। पीएम के जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जलाए गए हजारों दिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी जलाया आशीर्वाद का दिया। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और उप मुख्यमंत्री प्रावती परिदा ने मुक्तेश्वर मंदिर में आशीर्वाद का दिया अभियान में हिस्सा लिया, जलाए गए 11,000 दिए। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर लद्दाख में दुनिया में सबसे ऊंचाई पर फूलों से जुड़वा खेतों का उद्घाटन एलजीबी के सक्सेना ने लोकार्पण किया। 10,600 फीट की ऊंचाई पर 40 एकड़ में फैले हुए ये फूलों के खेत यहां लगाए गए हैं। फूलों में 44,00,000 लिलियम और 1,00,000 ग्लैडियोलस के फूल। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर जलाया आशीर्वाद का दिया, लंबी उम्र की कामना की। 100% टैरिफ वाले अमेरिकी कानून पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। अलग अलग स्रोतों से जारी रहेगी ऊर्जा खरीद। यूपी में हाईवे को लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी को घेरा, कहा बीजेपी सरकार में निर्माण बाद में होता है, वो गिरने पहले लगता है। बोले वो हर लेन देन पर टैक्स लेंगे। टाटा सन्स के चेयरमैन बने रहेंगे एन चंद्रशेखरन, बोर्ड सदस्यों ने पक्ष में किया है वोट, तीसरी बार 5 साल के लिए बढ़ाया कार्यकाल। मेहसाणा में महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का हेलीकॉप्टर बाल बाल बचा, वडनगर के पास गुंजा में उड़ान से पहले आई तकनीकी खराबी। बंगाल उपचुनाव से पहले ममता और ऋतिव्रत गुट को झटका, चुनाव आयोग ने टीएमसी के सिंबल और नाम के इस्तेमाल पर लगाई रोक, दोनों से कल तक मांगे गए 3-3 विकल्प। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की जयंती पर विधानसभा में सेंट्रल हॉल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्रद्धांजलि दी, कहा एमपी की सियासत में उनका अमूल्य योगदान। मध्य प्रदेश की सियासत में सफेद शेर के नाम से मशहूर थे श्रीनिवास तिवारी, कांग्रेस से कमलनाथ जीतू पटवारी ने भी नमन किया। पौत्र सिद्धार्थ तिवारी हैं रीवा की त्योंथर सीट से बीजेपी के विधायक। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर भोपाल के नरेला में प्रज्वलित किए गए सवालाख दिए, मंत्री विश्वास सारंग ने 25 फीट ऊंचे दीप स्तंभ पर जलाया दिया। मोदी के जन्मदिन पर नरेला हुआ 9,125 दीपों से जगमग, ऐशबाग में सेवा संकल्प अभियान के तहत रक्तदान शिविर। सोनीपत में पिटबुल का आतंक, 6 महीने के बच्चे पर झपटा खूंखार कुत्ता, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, अस्पताल में मासूम की हालत नाजुक। विकासनगर में सीवरेज के गड्ढे में गिरा बाइक सवार, स्थानीय लोगों ने युवक को बाहर निकाला। मिर्जापुर में रेलवे अंडरपास में बीजेपी विधायक की कीचड़ में गाड़ी फंसी, ट्रैक्टर से खींचकर ग्रामीणों ने बाहर निकाला, वीडियो वायरल हुआ। चित्रकूट में एम्बुलेंस को धक्का लगाने का वीडियो वायरल हुआ, मरीज को एम्बुलेंस उतारकर बाइक से ले जाने का वीडियो सामने आया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इको विलेज 2 सोसायटी में गार्ड से मारपीट, वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा, डीयू के स्टूडेंट ने कार से 4 युवकों को कुचल डाला, 2 की मौत हुई, 2 गंभीर रूप से घायल हुए। भोपाल में सनकी युवक ने मचाया आतंक, शादी से इनकार करने पर युवती के घर पर फेंका पेट्रोल बॉम्ब, मंगेतर को भी धमकी दी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।
झज्जर में दादरी रोड बाईपास स्थित एक दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा, फिलहाल किसी जनहानि की खबर नहीं। जयपुर पर कोटे के बाजार में भीषण अग्निकांड हुआ, आग की चपेट में आई 20 से ज्यादा दुकानें, 3 घंटे के बाद पाया गया काबू। गाजियाबाद में स्कूल वैन बेकाबू होकर सड़क से नीचे गिरी, बाल बाल बचे 4 बच्चे, सामने आया सीसीटीवी फुटेज। नोएडा में फिनटेक कंपनी का सर्वर हैक हुआ, 2,42,00,000 रुपए का फ्रॉड, 497 ट्रांजेक्शंस में 58 खातों में भेजी गई है रकम। सतना में 4 सहेलियों ने छात्रा से बेरहमी से मारपीट कर डाली, वीडियो वायरल हुआ। उधम सिंह नगर में महिला ने आग लगाने का लाइव वीडियो जारी किया, ई रिक्शा में आग लगने के बाद कूदती हुई महिला का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। गया में प्रेमिका को शादी के लिए मनाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गया था प्रेमी, घंटों के चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद नीचे उतारा गया। ग्रेटर नोएडा में रोड रेस का खौफनाक मामला, नशे में धुत कार सवारों ने बाइक चालक को टक्कर मारने के बाद मारपीट भी की। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हुई, बेहद मनमोहक नजर आया तीर्थस्थल का नजारा। बांदीपुरा जिले के गुरेज में तुलाई घाटी से ऊंचे इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी नजर आई, दिखा प्रकृति का सुंदर नजारा। लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी, बारालाचा दर्रे से घिपन पीक तक बिजी सफेद बर्फ, पहाड़ों पर बिछ गई सफेद बर्फ की चादर, बारिश और गिरते तापमान में लाहौल स्पीति के मौसम का रंग पूरी तरह से बदल दिया है। लाहौल स्पीति में ड्रिलबुर कोरा यात्रा के दौरान हादसा हुआ, 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत की खबर, एक घायल हुई है, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और हाइपोथर्मिया से जान चली गई। चमोली के रुद्रप्रयाग में हल्की बर्फबारी के साथ गिरे ओले, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर। कुल्लू में बदल गया मौसम, रोहतांग दर्रा में बर्फ से ढक गया है पूरा इलाका, हनुमान डिब्बा व्यासकुंड और खीरगंगा में भी सफेद चादर, तापमान में गिरावट। राजौरी में भी बदला मौसम का मिजाज, जमकर हुई बारिश, तापमान में गिरावट। श्रीनगर लेह हाईवे में जोजिला के 0 पॉइंट पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, तापमान में भारी गिरावट। गंगटोक में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, सड़क संपर्क बाधित हुआ, एक मकान भी क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड के औली में अमेरिका भारत का युद्धाभ्यास, 2026 ड्रोन शक्ति के साथ साथ रोबोटिक डॉग्स की भी नुमाइश। औली में युद्धाभ्यास 2026 का रोमांच, अमेरिकी और भारतीय सैनिकों ने काउंटर टेररिज्म ड्रिल में दिखाई आधुनिक तकनीक और सामरिक ताकत। आतंकवाद से निपटने की तैयारियों को परखा गया, 28 सितंबर 2026 तक चलेगा युद्धाभ्यास। उत्तरकाशी में बेटी दीपिका ने छेड़ी पिता की वतन वापसी की मुहिम, अब तक जुटे 11,80,00,000 रुपए, करीब 49,00,000 की और जरूरत है। मुंबई में गणेशोत्सव के दौरान परेल के राजा का दिखाई दिया अनोखा स्वरूप, वारकारी रूप धारण किए नजर आए बप्पा। पुणे के प्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ू सेठ हलवाई गणपति बप्पा के दर्शनों के लिए लोगों की भारी भीड़, गणेशोत्सव पर तैयार की गई है वृंदावन के प्रेम मंदिर की प्रतिकृति। नागपुर में गणपति उत्सव की धूम है, मशहूर दक्षिणामुखी सार्वजनिक पंडाल में साकार किया गया पुणे के आलंदी की संत ज्ञानेश्वर महाराज समाधि मंदिर। सूरत में भक्ति के साथ दिखाई दिया विकास का संदेश, वंदे भारत ट्रेन की थीम पर बनाया गया अनोखा गणेश पंडाल। अकोला में गणेश भक्त परिवार ने बनाई गणपति की अनोखी झांकी, घर के गणपति के साथ सजाई जेजुरी का खंडोबा गढ़ की प्रतिकृति। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में मुंबई और शिरडी अद्भुत मिलन, सिविल लाइन सार्वजनिक गणेश मंडल में मुंबई के लालबाग चौराहा के साथ शिरडी साईं बाबा के भी दर्शन। आज से जापान में एशियन गेम्स 2026 की शुरुआत, क्रिकेट हॉकी कबड्डी बैडमिंटन के साथ कई खेलों में पदक की दावेदारी पेश करेगा भारत। अफगानिस्तान के खिलाफ T20 में अभिषेक शर्मा का धमाका मैच, 30 गेंद में जड़ा शतक, टेस्ट खेलने वाले देशों में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड। राशिद 200 T20 इंटरनेशनल विकेट हासिल करने से 4 विकेट दूर ही उपलब्धि हासिल करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बनेंगे राशिद, फिलहाल 117 मैचों में 196 विकेट उनके नाम। एशियन गेम्स से भी बाहर हुए वरुण चक्रवर्ती, विप्रज निगम को पहली बार सीनियर टीम में मौका, वरुण को अफगानिस्तान के खिलाफ हुई थी हैमस्ट्रिंग। T20 रैंकिंग में पहले 2 पायदान पर भारतीय बल्लेबाजों का जलवा, पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान को पछाड़कर नंबर 2 पर अभिषेक शर्मा, ईशान किशन नंबर 1 पर काबिज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम में वापसी। शुभमन गिल की कप्तानी वाली वनडे टीम में जडेजा और मोहम्मद सिराज की भी वापसी, 27 सितंबर को त्रिवेंद्र में खेला जाएगा पहला वनडे मुकाबला। वेस्ट इंडीज दौरे पर खेले जाने वाले 5 T20 सीरीज के लिए भी टीम का ऐलान, वैभव सूर्यवंशी को टीम में मिली है जगह, श्रेयस अय्यर को टीम की कमान। 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेला जाएगा पहला T20 मुकाबला, रांची इंदौर हैदराबाद और बेंगलुरु में होंगे बाकी के मुकाबले।
आज करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन की दायरा हो रही है रिलीज, इसे मेघना गुलजार ने किया है डायरेक्ट। कुणाल खेमू की फिल्म वाइब भी बॉक्स ऑफिस पर दिखाएगी कमाल। फिल्म में कुणाल खेमू, प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव, दिनेश लाल यादव जैसे स्टार्स हैं। लव स्टोरी इसका तीसरा सीजन भी रिलीज हुआ है। इसमें चार अलग अलग कहानियां हैं जो प्यार, नजदीकी और आधुनिक रिश्तों की पेचदीगियों को दिखाती हैं। भारत में रेलवे टिकट के बड़े घोटाले पर आधारित वेटिंग है नाम की सीरीज अमेजॉन प्राइम पर वीडियो स्ट्रीम की जा रही है। अभिनेता दिव्येंदु शर्मा अहम भूमिका में। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का नया सीजन शुरू होने से हुई घोषणा, 26 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर शुरू होगा शो का पांचवा सीजन। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म द वन का ट्रेलर जारी किया गया। छठ मैया और बिहार की द वन देवी के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म की कहानी। सस्पेंस थ्रिलर और कोर्टरूम ड्रामा फिल्म लव लॉटरी की रिलीज डेट में बदलाव, अब 25 सितंबर को थिएटर में रिलीज की जाएगी। एक्टर आमिर और ईशा देओल एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आने को तैयार हैं। उनकी फिल्म प्रताप का पहला पोस्टर रिलीज किया गया। साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा एक बार फिर से अपने लोकप्रिय किरदार मुकुथी अम्मन के रूप में वापसी कर रही हैं। उनकी फिल्म महाशक्ति का टीजर भी रिलीज किया गया। दिसंबर में रिलीज किया जाएगा अल्लू अर्जुन की मोस्ट अवेटेड फिल्म राग का पहला लुक, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जानकारी दी। ईपीएफओ के अनिवार्य कवरेज और वेतन सीमा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए की गई है। पेंशन योग सैलरी और सेवा अवधि के आधार पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन में भी इजाफा होने की संभावना। अमेरिकी संसद में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल गया और इस कदम से भारत और चीन जैसे देशों के लिए मुश्किलें बढ़ने की आशंका। यूपीआई पर एमडीआर लागू होने के बाद ट्रेडर्स ने कैश पेमेंट्स पर जाने की संभावना जताई है। कई राज्यों में पेट्रोल पंप डीलर्स ने भी 2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई पेमेंट्स लेना बंद करने की चेतावनी दी। यूपीआई पेमेंट्स पर लगने वाले नए एमडीआर पर 18% जीएसटी लगेगा। जीएसटी में रजिस्टर्ड बिजनेस इनपुट तो टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकेंगे, लेकिन अनरजिस्टर्ड मर्चेंट को यह बोझ खुद ही उठाना पड़ेगा। एक सर्वे में दावा किया गया 70% शहरी भारतीय 60 साल से पहले रिटायर होना चाहते हैं। औसत रिटायरमेंट फंड जरूरत के अनुमान का 28% होने के बावजूद जल्द रिटायरमेंट की चाहत। एक साल में 20% बढ़ोतरी के बाद वेजिटेबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने पर विचार कर रही है सरकार। अपनी जरूरत का करीब 2/3 खाद्य तेल इंपोर्ट करता है भारत। इस त्योहारी सीजन में बिल्डर्स फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान और पोजिशन तक ईएमआई टालने जैसे ऑफर्स लाएंगे। सुस्त बाजार में घर खरीदारों को लुभाने की तैयारियां। पिछले 9 दिनों में प्याज की होलसेल कीमतें 9% तक लुढ़क गई हैं, लेकिन रिटेल मार्केट में औसत कीमत अभी भी करीब 54 रुपए प्रति किलो पर मौजूद। यूएस में बढ़ते हुए कर्ज और महंगे ब्याज दरों पर टैरिफ और दूसरे देशों पर लगाए जा रहे आर्थिक प्रतिबंधों से निवेशक मायूस हुए। नकली सामानों की घुसपैठ और तस्करी पर चर्चा के लिए FICCI में शामिल हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। टैक्स में हो रहे नुकसान, रोजगार में आ रही कमी को लेकर सरकार को दिए गए ठोस कदम उठाने के सुझाव। रूसी सेना का यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला, रिहायशी इमारत पर हुए हमले में 18 लोग घायल हुए, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। रूसी सरकार का बड़ा बयान, रूस पर नए अमेरिकी प्रतिबंधों से यूक्रेन में शांति समझौते की कोशिशें मुश्किल होंगी। अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने वाले प्रतिबंध पैकेज को मंजूरी दे दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूरोपीय यूनियन से युद्ध छेड़ने पर दिया है बयान, कहा अगर यूरोप ने रूस पर हमला किया तो यह बिल्कुल अलग तरह का और बहुत ही छोटा युद्ध होगा। यमन के हूती विद्रोहियों का बड़ा दावा, सऊदी अरब के हमलों के जवाब में हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको और सैन्य एयरबेस को मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बड़ा बयान, का अमेरिका मध्य पूर्व में डटा रहेगा। वेंस की चेतावनी दी है कि अगर मध्य पूर्व से निकला अमेरिका तो दुनिया भर में खड़ा हो जाएगा तेल संकट। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बड़ी खबर, अमेरिका के और हूती विद्रोहियों के बीच हुई एक बड़ी सीक्रेट डील। ओमान में मौजूद अमेरिकी दूतावास में गुप्त बैठक के दौरान यह डील हुई।

कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन है और इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों की ओर से आशीर्वाद का दिया अभियान चलाया गया। काशी से लेकर कच्छ तक और दिल्ली से लेकर उज्जैन तक प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए दिए जलाए गए। बीजेपी के सेवा संकल्प अभियान के तहत जगह जगह रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान चलाया गया। दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने दिए जलाने और कार्यक्रमों के खर्च पर सवाल खड़े किए हैं।

0: अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के भव्य यशोभूमि से सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का सबसे नया और सबसे भरोसेमंद ठिकाना बताया है। लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए के बजट वाले सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत भारत सिर्फ चिप्स खरीदेगा नहीं बल्कि देश के भीतर ही चिप डिजाइनिंग, फैब्रिकेशन, टेस्टिंग हो, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, इसका पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है।
1: दुनिया में जहां भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बने हैं वहां ये पूरा इकोसिस्टम दशकों की मेहनत के बाद तैयार हुई है, लेकिन भारत ने आपके सहयोग से चिप डिजाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इन सभी पर एक साथ काम किया।
0: और इसके बाद आपको अमेरिका का दोहरा मापदंड दिखाएंगे। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों से एक ऐसा बिल पास हुआ है जो भारत जैसे देशों पर 100% तक का भारी भरकम टैरिफ लगाने की ताकत अमेरिकी राष्ट्रपति को देता है। अमेरिका की दलील है कि इससे रशिया की जंग की फंडिंग रुक जाएगी। ये वही अमेरिका है जो अभी दो दिन पहले यूक्रेन से कह रहा था कि रशिया के रिफाइनरी और डीजल डिपो पर हमले रोक दिए जाएं, क्योंकि इससे ग्लोबल मार्केट में तेल की किल्लत हो रही है। बात सिर्फ रूसी तेल की नहीं है, अमेरिकी चालबाजियों की फेहरिस्त अब लंबी होती चली जा रही है। दशकों तक अमेरिका ने खाड़ी देशों के साथ पेट्रो डॉलर डील का खेल खेला, यानी तुम डॉलर में तेल बेचो हम तुम्हें सुरक्षा की गारंटी देंगे। लेकिन खबर है कि अमेरिका ने उसी सऊदी के कट्टर दुश्मन हूती विद्रोहियों से बैक चैनल डील कर ली है। शर्त यह है कि हूती लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर निशाना ना साधे, बदले में अमेरिका सऊदी अरब की मदद नहीं करेगा।

0: الحرج على الاستحمار.
1: जिस फाइटर जेट को अमेरिका अचूक और अजेय बताकर पूरी दुनिया को बेचता रहा, क्या वो सुपर पावर की साख डुबो रहा है? हुती विद्रोहियों का बहुत बड़ा दावा है। उन्होंने दावा किया है कि सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को उन्होंने मार गिराया। इतना ही नहीं, ईरान भी कई बार F-15 विमानों को गिराने का दावा कर चुका है। समुद्र की गहराइयों में चाइना के एक गुप्त प्लान ने दुनिया को हैरान कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों से चाइना की सीक्रेट मदरशिप का पता चला है, जिसे ड्रोन सबमरीन तैनात करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस मदरशिप के से एक साथ दर्जनों मानव रहित ड्रोन सबमरीन को लॉन्च किया जा सकेगा, जो बिना किसी इंसानी मदद के दुश्मन के जहाजों पर नजर रखने, जासूसी करने, पलक झपकते ही हमला करने में सक्षम होंगी। पहले चोर घर में घुसकर डाका डालते थे तो लोगों ने दरवाजों पर आधुनिक ताले जड़ दिए, लेकिन अब ना कोई दरवाजा टूटता है ना कोई ताला। अब चोरी, लूट, डाका सब आपकी जेब में रखे फोन के जरिए ऑनलाइन हो रहा है। महाराष्ट्र में साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड आर्मी मैन की जिंदगी भर की कमाई पर डाका डाल दिया। सिर्फ एक फर्जी पेंशन वेरिफिकेशन ऐप डाउनलोड करवाई और 3 घंटे के अंदर 9 ट्रांजेक्शन किया, 28,70,000 रूपये साफ कर दिए। उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका की सेना का युद्धाभ्यास 2026 जारी है, और इस बार आतंकवाद के खात्मे के लिए मैदान में सिर्फ जवान ही नहीं बल्कि हाईटेक रोबोटिक डॉग्स और एडवांस ड्रोन्स भी उतरे। इमारत में छिपे आतंकियों का सफाया करना हो या दुर्गम पहाड़ियों पर खुफिया निगरानी, रोबोटिक डॉग्स पलक झपकते लोकेशन क्लियर कर। महाराष्ट्र के नाशिक से विरोध प्रदर्शन की एक ऐसी तस्वीर आई है जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान गुस्साए लोगों ने बोरे में कुत्ते को भरकर नगर पंचायत के चीफ ऑफिसर की टेबल पर छोड़ दिया। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अफसर को नोटों की माला पहनाने की भी कोशिश हुई, जिसके बाद दफ्तर में हंगामा हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में आज अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने के बाद चांदी के दाम तेजी से टूटे, वहीं सोना भी अब तक के ऊंचे स्तर से काफी नीचे फिसल चुका है। आखिर बाजार में अचानक बड़ी गिरावट क्यों आई है? अमेरिका के फेडरल रिजर्व का फैसला इसकी वजह है या मजबूत होता डॉलर और मुनाफा वसूली? लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अमेरिका रशिया से यूरेनियम खरीदता है, प्लूटोनियम खरीदता है, न्यूक्लियर रिएक्टर रशिया से खरीदता है, हर साल लगभग $6 बिलियन यानी 57,000 करोड़ रुपए का व्यापार करता है, और जो यूक्रेन से यह कहता है कि वो रशिया की तेल रिफाइनरीज पर हमले ना करे,

0: की संसद की है जिसने 16 सितंबर को एक बेहद सख्त कानून पारित किया। इस कानून का नाम है लिंडसे ओग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 और इसका मकसद है रूस के कच्चे तेल और गैस के व्यापार पर आर्थिक चोट पहुंचाना और उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता को कमजोर करना। यानी जिन देशों ने अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से कच्चा तेल और गैस खरीदना बंद नहीं किया, उन देशों को इसकी सजा देने के लिए अमेरिकी संसद ने इस कानून को पारित किया है।
1: We can support Ukraine. We can hold Russia accountable. And we can store, we can protect the American people.
0: ये बिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये कानूनी शक्ति देता है कि वो रूस से तेल और गैस खरीदने वाले दुनिया के शीर्ष 5 बड़े देशों पर 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं और इस टैरिफ को दंडात्मक यानी सजा के रूप में वसूला जाने वाला टैरिफ बताया गया है। इन 5 देशों में भारत, चीन, हंगरी, स्लोवाकिया और अजरबैजान शामिल हैं। ये वो देश हैं जो मौजूदा वक्त में रूस से सबसे ज्यादा तेल और गैस खरीद रहे हैं। अगर ये टैरिफ भारत पर लगता है तो अमेरिका में भारत का जितना भी सामान निर्यात होता है वो सीधे सीधे दोगुना महंगा हो जाएगा और इसकी सबसे बड़ी मार भारतीय व्यापारियों पर पड़ेगी और अमेरिका में भारत का निर्यात तेजी से सिकुड़ने लगेगा।
2: To Vladimir Putin, we have your number. Your economy is reeling. We're going to throttle your war machine. China and India, to you, you better clean up your act, buy your oil and gas somewhere else.
0: अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद इस बिल को अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा और ट्रंप के हस्ताक्षर करते ही यह पूर्ण रूप से कानून बन जाएगा। हालांकि इस कानून को लेकर 3 बातें समझना बेहद जरूरी है। पहली बात, इसे पूरी दुनिया वेपनाइजेशन ऑफ टेररिस्ट बता रही है, यानी इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब अमेरिकी संसद किसी देश के युद्ध को रोकने के लिए टैरिफ को हथियार बना रही है, जबकि ये ग्लोबल ट्रेड यानी WTO के नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसा है। दूसरा, इस कानून को भारत अमेरिका रिश्तों के लिए टाइम बम जैसा माना जा रहा है, क्योंकि ये कानून ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की अंतिम दौर की बातचीत चल रही थी। और तीसरा, ये कानून अमेरिकी दबाव का एक मुखौटा भी हो सकता है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि 100% टैरिफ का आंकड़ा एक अधिकतम सीमा यानी सीलिंग है, ना कि ऑटोमेटिक टैक्स। राष्ट्रपति ट्रंप के पास इसे पूरी तरह माफ करने या कम करने का भी अधिकार रहेगा, इसलिए कई विश्लेषक इसे अमेरिका की एक दबाव बनाने की रणनीति यानी प्रेशर टैक्टिक्स मान रहे हैं, ताकि भारत को रूस से दूर किया जा सके या भारत से कोई एक तरफा व्यापार समझौता कराया जा सके, जबकि भारत इस दबाव के सामने बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए साफ कहा है कि भारत अपने 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और बाजार के हिसाब से तेल खरीदना जारी रखेगा। साथ ही भारत ने चेतावनी भी दी है कि वो अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। यानी भारत ने अमेरिका के इस कानून को सिरे से खारिज कर दिया है और हम ये स्थिति साफ करके चल रहे हैं कि अगर भारत को रशिया के कच्चे तेल की जरूरत होगी तो देश हित में हम ये आयात जारी रखेंगे। इस बिल का नाम अमेरिका के दिवंगत नेता लिंडसे ओग्राहम के नाम पर रखा गया है, जिनका निधन इसी साल 11 जुलाई को हुआ था। ये वही नेता थे जिन्होंने इस पूरा कानून का आइडिया दिया और यहाँ तक कहा कि रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले भारत और चीन जैसे देशों पर 500% का टैरिफ लगा देना चाहिए। ये आइडिया भी उन्होंने तब दिया जब वो मीडिया और सार्वजनिक मंचों से लगातार भारत के खिलाफ कई बयान दे रहे थे। उन्होंने ये तक कहा था कि अगर भारत, चीन और ब्राजील रशिया से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं तो रशिया को दिया गया उनका पैसा ब्लड मनी यानी खून से सना हुआ पैसा माना जाएगा। इन्हीं बयानों के बीच उन्होंने भारत को डराने के लहजे में आर्थिक तबाही की धमकी दी थी और क्रश योर इकोनॉमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। और सोचिए ये सब क्यों हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा है। लेकिन कड़वा सच ये है कि रशिया और भारत के व्यापार पर एतराज जताने वाला यही अमेरिका खुद रशिया के साथ अपना आयात निर्यात जारी रखता है। पिछले साल 2025 में अमेरिका और रशिया के बीच लगभग 6 बिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपयों में आज के हिसाब से 57,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जो 2024 के मुकाबले लगभग 15% ज्यादा था। इसका मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले साल में अमेरिका का रशिया के साथ कुल

0: व्यापार करीब 15% बढ़ गया, लेकिन अमेरिका में किसी ने वहां के पैसे को ब्लड मनी यानी खून से सना पैसा नहीं कहा। यह भी तब हुआ जब रशिया से अमेरिका को फर्टिलाइजर्स का निर्यात 38% बढ़ा, यूरेनियम और प्लूटोनियम का व्यापार 61% बढ़ा और न्यूक्लियर रिएक्टर्स और मशीनरी का व्यापार 12% बढ़ा। आज बड़ा सवाल यही है कि जब अमेरिका खुद रशिया से व्यापार करता है और इसे वो अपने राष्ट्रहित में जरूरी मानता है, तो वो भारत रशिया के व्यापार पर यही सोच क्यों नहीं रखता?
1: राष्ट्रपति पुतिन, दिलचस्प बात तो ये है ना कि अगर आप प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को देखें, उन्होंने यहां तक कह दिया था कि भारत तो कच्चा तेल खरीद रहा है रूस से और वही फंड कर रहा है इस पूरे युद्ध को। आप डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, उनके व्यक्तित्व को कैसे समझाएंगे?
2: मैं कभी अपने सहयोगियों का चरित्र चित्रण नहीं करता, उनका भी नहीं जिन्होंने मेरे साथ काम किया, और खास तौर पर राष्ट्राध्यक्षों का तो बिल्कुल नहीं। मेरे विचार में ये आकलन उस देश के नागरिकों को करना चाहिए जिन्होंने उन्हें वोट देकर सत्ता सौंपी। जहां तक भारत की ओर से रूस से ऊर्जा संसाधनों की खरीद की बात है, तो मैं साफ कर दूं कि अमेरिका अब भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए हमसे परमाणु ऊर्जा की खरीद करता है। इनमें अमेरिका में चल रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए यूरेनियम भी शामिल है। तो अगर अमेरिका खुद अपनी ऊर्जा जरूरतें रूस के जरिए पूरी करता है, तो फिर भारत की खरीद को लेकर उन्हें आपत्ति क्यों है? इस विषय पर गहन अध्ययन की जरूरत है और हम इसे लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से चर्चा के लिए भी तैयार है।
0: अमेरिका एक तरफ तो भारत को अपना सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार बताता है और दूसरी तरफ भारत पर ऐसे कानून थोपने की कोशिश करता है जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप है और ना ही किसी भी देश के लिए न्याय संगत है। और यही कारण है कि जब अमेरिकी संसद से यह बिल पास हुआ, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने बेहद कड़े शब्दों में इसे गैर कानूनी और अमित्रतापूर्ण यानी अनफ्रेंडली कदम बताया और साफ कह दिया कि भारत किसी की धमकी में आए बिना अपने 140 करोड़ लोगों के हितों की रक्षा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
1: क्या आप यकीन करेंगे कि जिस अमेरिका ने रशिया पर सैकड़ों प्रतिबंध लगाए हुए हैं, उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी के बाद बहामाज में हुई पार्टी का खर्च रशिया से जुड़े कारोबारी उमर क्रेमलेव ने उठाया था? और आरोप यही है कि ये वही रूसी कारोबारी है जो राष्ट्रपति पुतिन के काफी करीबी है। आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर रशिया पर अमेरिका द्वारा जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उनके पीछे की असली कहानी क्या है और इस कहानी में कितनी बड़ी ट्रेजेडी छिपी है।
0: ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने रशिया से कच्चा तेल और गैस खरीदने वाले देशों के खिलाफ टैरिफ को अपना हथियार बनाया है। राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ऐसा 4 बार कर चुका है। पिछले साल भी अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ इन्हीं वजहों से लगाया था और अब भी वो कुछ नया नहीं कर रहा है। अमेरिका बार बार अपने कड़े प्रतिबंधों को जायज ठहराने के लिए यूक्रेन युद्ध को आधार बनाता है। ये कहता है कि यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए वो रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन हकीकत में इन प्रतिबंधों के पीछे एक दूसरी कहानी है। इन प्रतिबंधों के पीछे पहला और सबसे असली कारण है अमेरिकी तेल का बाजार बढ़ाना, यानी अमेरिकी तेल की मोनोपोली और उसका मार्केट शेयर। किसी भी बाजार का सीधा नियम यही होता है कि अगर आप अपने सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी को मुख्य बाजार से बाहर कर देंगे, तो आपकी मोनोपोली अपने आप मजबूत हो जाएगी। और अमेरिका अभी यही कर रहा है, उसने प्रतिबंध लगाकर रूस को सीधे सीधे इस बाजार से बाहर किया हुआ है। इन प्रतिबंधों की दूसरी वजह है पेट्रोडॉलर साम्राज्य की रक्षा। दुनिया का ज्यादातर तेल आज भी अमेरिकी डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है और इसे पेट्रोडॉलर व्यवस्था कहते हैं। लेकिन रूस और चीन जैसे देश लगातार तेल के व्यापार को अपनी स्थानीय मुद्राओं या अन्य मुद्राओं में करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर रूस बिना किसी पाबंदी के दुनिया को तेल बेचता और डॉलर को दरकिनार करता है, तो अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी। और इसी चीज को देखते हुए अमेरिका उन देशों पर दबाव बनाता है जो डॉलर के अलावा किसी और मुद्रा में बड़ा व्यापार करने की कोशिश करते हैं। और यहां भारत भी रशिया से नेशनल करेंसी में तेल और गैस खरीद रहा है।
1: हेलो मिस्टर पेस्कोव, थैंक यू फॉर दिस इंटरेक्शन एंड इट्स नाइस दैट यू हैव कॉल्ड दिस सेशन टेलिंग द अनटोल्ड, सो वी आर काउंटिंग ऑन दैट। डोनाल्ड ट्रंप द अमेरिकन प्रेसिडेंट सेज ब्रिक्स इज अ फोरम अगेंस्ट द डॉलर। You yourself mentioned how 90% of the payments that Russia is doing with other BRICS countries has now moved on to national currency. There are other countries also within BRICS without sanctions who have opted for cross-border national currency payment systems. Why does Russia or BRICS shy away from openly claiming de-dollarization? And how would you respond to the allegation that BRICS is a forum against the dollar that Donald Trump often talks about?
3: Thank you. It's a very interesting question.
4: यह बहुत दिलचस्प सवाल है। खैर, मैं फिर से दोहराऊंगा। ब्रिक्स किसी के खिलाफ नहीं है। ब्रिक्स तो अपने सदस्य देशों के राष्ट्रीय हितों के लिए है, और रूस भी ब्रिक्स देशों में से एक है। रूस से अमेरिकी डॉलर और यूरो इस्तेमाल करने का अधिकार छीन लिया गया था। ये पूरी दुनिया के लिए रिजर्व करेंसी है, और अमेरिका ने हमें इस रिजर्व करेंसी का इस्तेमाल करने के अधिकार से वंचित करने का फैसला किया, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि हम अपनी खुद की करेंसी क्यों ना इस्तेमाल करें। क्या इसकी कीमत अमेरिकी डॉलर के बराबर है? नहीं, कुछ हद तक तो यह उससे भी बेहतर है। और हमने अलग अलग देशों को नेशनल करेंसी इस्तेमाल करने का प्रस्ताव देना शुरू किया। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम डॉलर के खिलाफ हैं, और हम किसी डी डॉलरलाइजेशन पॉलिसी का दावा भी नहीं करना चाहते। हम बस वही कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए बेहतर है।
3: बेटर कोरिस्पॉन्ड्स विद आवर नेशनल इंटरेस्ट्स। सो एंड I would say that,
4: तो मैं ये कहूंगा कि असल में अमेरिका ही डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पर नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी करेंसी रिजर्व करेंसी बनी रहे, तो आप कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जैसा मैंने बताया। तो अमेरिका अमेरिकी डॉलर पर भरोसा खत्म कर रहा है, और जितना ज्यादा भरोसा खत्म हो रहा है, उतना ही भरोसा नेशनल करेंसी की तरफ बढ़ रहा है। तो यही प्रक्रिया है, और यही इस प्रक्रिया का स्वरूप है।
3: More trust is going in favor of national currencies. So this is the process and this is the nature of the process.
4: और जाहिर है, सभी देश वही कर रहे हैं।
0: यहाँ बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर अमेरिका को रूस से इतनी ही दिक्कत है, तो उसने रूस का तेल पूरी तरह बंद क्यों नहीं करवा दिया? लेकिन हकीकत में यहीं पर अमेरिका की असली आर्थिक चालाकी समझ में आती है। अगर रूस का तेल पूरी तरह बाजार से गायब हो जाए, तो दुनिया में तेल की भारी कमी हो जाएगी। इससे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल से $200 प्रति बैरल तक जा सकती हैं, जिससे अमेरिका और पूरी दुनिया में भयानक महंगाई और मंदी आ जाएगी। इसीलिए अमेरिका और उसके सहयोगियों ने G7 प्राइस कैप नीति अपनाई। इसके तहत रूस को तेल बेचने की अनुमति तो है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि रूस $60 प्रति बैरल से ज्यादा कीमतों पर तेल का निर्यात नहीं कर सकता। इससे बाजार में तो तेल की सप्लाई बनी रहती है, और वैश्विक कीमतें भी नियंत्रण में रहती हैं, लेकिन रूस को उस तेल पर कोई बड़ा प्रॉफिट मार्जिन यानी मुनाफा नहीं मिलता, जो उसे सुपर पावर बनाने की ताकत रखता है। और चौथा बड़ा कारण है पश्चिमी देशों की सर्विस मोनोपोली। दुनिया के पास तेल भले हो, लेकिन उस तेल को समंदर के रास्ते एक देश से दूसरे देश भेजने के लिए जहाजों का बीमा और बड़े शिपिंग टैंकरों की जरूरत होती है। इस पूरी शिपिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर 90% नियंत्रण अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की कंपनियों का है। अमेरिका ने नियम बनाया है कि जो भी जहाज रूसी तेल को तय प्राइस कैप से महंगे दाम पर ले जाएगा, उसे पश्चिमी कंपनियां इंश्योरेंस नहीं देंगी। इस सर्विस मोनोपोली का इस्तेमाल करके भी अमेरिका तेल के बाजार में अपनी मोनोपोली बनाता है, और ये बात दुनिया समझ ही नहीं पाती कि इन प्रतिबंधों का असली खेल यूक्रेन युद्ध को रोकना नहीं है, बल्कि इनका असली खेल रशिया को तेल बाजार से बाहर कर देना है, और उसके सामने ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश है कि वो भविष्य की तकनीकों में निवेश करने के लिए पैसा न जुटा पाए और वैश्विक महाशक्ति की दौड़ में हमेशा पीछे रहे। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर यूक्रेन युद्ध अकेला इसका कारण होता, तो अमेरिका खुद भी रशिया से व्यापार बंद कर देता, और व्यापार ही क्यों। पिछले हफ्ते अमेरिका ने यूक्रेन से कहा था कि वो रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना न बनाए और इसके बाद रशिया ने अमेरिका को इसके लिए धन्यवाद दिया था। इससे पहले ये खबर भी आई थी कि राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी के बाद बहामास में हुई पार्टी का खर्च रूस से जुड़े कारोबारी उमर क्रेमलेव ने उठाया था, जो राष्ट्रपति पुतिन के करीबी है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने बेटे की शादी की पार्टी में रूस के कारोबारी से पैसा खर्च करवा देते हैं, खुद रशिया के साथ व्यापार कर लेते हैं, लेकिन भारत को उसके राष्ट्रहित में फैसले लेने पर 100% टैरिफ लगाने का कानून थोप देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
1: अब बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे फैसले लेकर अमेरिका अपनी कैसी क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता दुनिया में बना रहा है। वो खुद रशिया से व्यापार करता है, लेकिन भारत और चाइना जैसे देशों पर रशिया से कच्चा तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाने की धमकी देता है। और आप ये भी खबर भी देखिए जो सऊदी अरब से आ रही है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एक्सियोस और रॉयटर्स का दावा है कि अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की थी। ये बहुत बड़ा दावा है रॉयटर्स और एक्सियोस का कि अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों, जो कि एक आतंकी संगठन है जो अपने आप को रेजिस्टेंस फोर्स कहता है, उन हूती विद्रोहियों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की थी, जिसमें यह तय हुआ कि अगर हूती विद्रोही अमेरिकी जहाजों पर हमला नहीं करेंगे तो अमेरिका भी हूती के खिलाफ युद्ध में सऊदी अरब की कोई मदद नहीं करेगा। यानी जिस सऊदी अरब ने अमेरिका के लिए अपना कच्चा तेल जो है वो आज तक सिर्फ डॉलर में बेचा, उसी सऊदी अरब के साथ अमेरिका ने खेला कर दिया है। और अब ये खबर पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। देखिए,
0: हमले सऊदी अरब की नींद उड़ाए हुए हैं। सऊदी अरब को लगा था कि हूती के खिलाफ अमेरिका, पाकिस्तान और तुर्की जैसे दोस्त मदद के लिए आएंगे। उन्होंने बोला भी कुछ कुछ वैसा ही था, लेकिन जब हूती के साथ उसकी असली जंग शुरू हुई है तो सऊदी अरब का सच से सामना हो गया है। उसे समझ में आ गया है कि उसे बचाने कोई नहीं आएगा, वो भी नहीं जो डिफेंस डील करके उसका पैसा ऐंठने के लिए उसका दोस्त बने थे, और वो भी नहीं जो सऊदी के तेल के चक्कर में उसकी सुरक्षा देने का दावा करते नहीं थकते। अभी एक हफ्ता पहले सऊदी अरब ने अमेरिका से हूती के खिलाफ मदद मांगी थी। उसने अमेरिका से हूती के ठिकानों पर हमला करने की अपील की थी, लेकिन अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। अमेरिका ने ऐसा क्यों किया था यह सऊदी को तब समझ में नहीं आया था, लेकिन अब इस पर एक बड़ा खुलासा हो गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप सरकार और हूती के बीच एक सीक्रेट डील हो गई है। अमेरिकी न्यूज वेब पोर्टल एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक डील ये हुई है कि हूती लाल सागर और बाबल मंदेब के पूरे समुद्री मार्ग पर अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को निशाना नहीं बनाएंगे, और इसके बदले में अमेरिका यमन में हूती के ठिकानों पर हमले नहीं करेगा, यानी सऊदी अरब का साथ नहीं देगा। दावा है कि अमेरिकी अधिकारियों और हूती नेताओं के बीच ये सीक्रेट मीटिंग पिछले हफ्ते ओमान की राजधानी मस्कट में हुई थी, और खास बात यह है कि ये मीटिंग अमेरिकी दूतावास के अंदर हुई थी। इससे पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ये पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका हूती के संपर्क में है। हूती के हमलों के खिलाफ सऊदी अरब की मदद न करने के पीछे अमेरिका के पास यही एक वजह है, वो अपने और अपने मित्र देशों के जहाजों को नुकसान से बचाना चाहता है। हॉर्मूज पर अमेरिका ईरान जंग की वजह से वैसे ही दुनिया में कच्चे तेल का 20% व्यापार प्रभावित हो रहा है। एक एक कंटेनर को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिकी सेना को पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है। युद्ध से पहले जहां 140 जहाज प्रतिदिन निकलते थे, युद्ध के बाद यह संख्या 14 पहुंच गई। अब अगर ऐसे में हूती ने बाबल मंदेब और लाल सागर में जहाजों पर हमले शुरू कर दिए तो हालात ज्यादा खराब हो जाएंगे, और दुनिया का 12% कच्चे तेल का व्यापार और प्रभावित होने लगेगा। हॉर्मूज युद्ध की वजह से इस मार्ग पर जहां पहले 70 जहाज प्रतिदिन गुजरते थे, अब ये संख्या 26 हो गई है, और अगर हूती ने भी हमले शुरू कर दिए तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इस खतरे को भांपते हुए ही अमेरिका ने हूती से डील की ताकि व्यापार प्रभावित न हो, और डील का फायदा यह हुआ है कि हूती ने लाल सागर और बाबल मंदेब में केवल सऊदी जहाजों और सऊदी का तेल ले जाने वाले जहाजों को टारगेट करने की बात कही। हूती नेताओं का दावा है कि यमन पर सऊदी अरब की नाकेबंदी और सैन्य कार्रवाई की वजह से ही उनके जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि अमेरिका से तो साल 2025 से ही उनका सीजफायर चल रहा है। और हूती और अमेरिका के इस डील की कहानी साल 2023 से ही शुरू हो जाती है, जब हमास के आतंकियों ने इसराइल में नरसंहार किया था। हमास के इस हमले के बाद इसराइल ने उनके खिलाफ एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इसराइल हमास युद्ध में यमन के हूती ने फिलिस्तीन का साथ देने का ऐलान किया था। युद्ध में मदद के नाम पर हूती ने लाल सागर और बाबल मंदेब में इसराइल से जुड़े जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू कर दिए थे। हूती के इन हमलों की वजह से लाल सागर का पूरा समुद्री मार्ग खतरे में आ गया था। साल 2023 में हूती के इन हमलों ने अमेरिका और कई अन्य देशों को परेशान करके रखा था। बड़े स्तर पर समुद्री व्यापार प्रभावित हो रहा था। इस वजह से अमेरिका और ब्रिटेन ने साल 2024 में हूती के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए, लेकिन इसके बावजूद हूती ने लाल सागर में अपने हमले बंद नहीं किए। साल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद अमेरिका ने मार्च में हूती के खिलाफ एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया, जिसका नाम था ऑपरेशन रफ राइडर। इस ऑपरेशन के तहत करीब 2 महीने तक यमन में हूती के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। अमेरिका के इन हमलों से हूती ठंडे पड़ गए। वो अमेरिकी हमलों को रुकवाना चाहते थे। इस मौके का फायदा ओमान ने उठाया। उसने 6 मई 2025 को अमेरिका और हूती के बीच युद्ध विराम करवा दिया। ये किसी तरह का लिखित युद्ध विराम नहीं था। इसमें यह तय हुआ था कि अमेरिकी सेना हूती के ठिकानों पर बमबारी नहीं करेगी और हूती अमेरिका और अन्य देशों के जहाजों को निशाना नहीं बनाएंगे। हालांकि इस डील में इसराइल शामिल था। यानी हर बार अमेरिका ने अपना फायदा देखा। इसराइल हमास युद्ध में भी अमेरिका तभी मैदान में उतरा जब अमेरिकी जहाजों पर हूती ने हमले शुरू किए। उससे पहले वो भी कुछ नहीं कर रहा था। और ठीक उसी तरह से जब सऊदी अरब और हूती के बीच जंग शुरू हुई है, तो अमेरिका ने हूती पर हमला करने से इनकार कर दिया, क्योंकि व्यापार प्रभावित हो सकता है। दोनों ही मामलों में अमेरिका ने अपना फायदा देखा और दोस्ती यारी को साइडलाइन कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि क्या कभी अजेय और अचूक माना जाने वाला अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान अब फेलियर 15 बन रहा है। हूती का दावा है कि उसने भी सऊदी अरब का F-15 लड़ाकू विमान मार गिराया है। उसने इसके मलबे की तस्वीरें, मिसाइल हमले का एक वीडियो सब जारी किया है, जबकि सऊदी अरब ने इन दावों की अब तक कोई पुष्टि नहीं की है। यह दावा भी ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसी साल अप्रैल में ईरान ने भी अमेरिकी F-15E को मार गिराने का दावा किया था और अमेरिकी F-15 को लेकर दूसरी घटनाओं ने भी इस विमान के अजेय होने पर सवाल खड़े किए थे। तो आखिर जिस F-15 को दशकों तक दुनिया का सबसे भरोसेमंद और घातक लड़ाकू विमानों में गिना गया, उसकी मुश्किल क्या है और क्यों ये फाइटर जेट अब अमेरिका से लड़ाकू विमान खरीदने वाले देशों को परेशान कर सकता है, उसके लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखें।

0: ये तस्वीरें देखकर सऊदी अरब ने सिर पकड़ लिया होगा और अमेरिका मुंह छिपाकर बैठ गया होगा। जिस फाइटर जेट का मलबा आप देख रहे हैं उसे अमेरिका दुनिया के सबसे खतरनाक और हाईटेक फाइटर जेट्स में से एक बताता था। ये अमेरिकी फाइटर जेट F-15 का मलबा है जिसे हूतियों ने मार गिराया है। सोचिए, अमेरिका का हाईटेक फाइटर जेट हूती जैसे लड़ाकों ने मार गिराया जिनके पास हाईटेक हथियार भी नहीं है। हूती का दावा है कि उन्होंने यमन के मारिब में सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया। हूती नेताओं ने तो F-15 गिराने की तस्वीरें जारी करके सऊदी अरब और अमेरिका का मजाक उड़ाया है। हूती नेता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा कि F-15 के मलबे की तस्वीरें इसलिए जारी की गई हैं ताकि पश्चिमी देश सऊदी अरब की बातों में आकर उनसे लड़ने न पहुंच जाएं। सऊदी अरब अपने इस फाइटर जेट के गिराए जाने से बहुत परेशान है। वो परेशान इसलिए है क्योंकि F-15 उसकी एयरफोर्स के पास मौजूद सबसे ताकतवर जेट था और हूती द्वारा उसे मार गिराना उसकी एयरफोर्स के लिए शर्मनाक है। सऊदी अरब के पास कुल 283 फाइटर जेट हैं, जिनमें 231 तो केवल F-15 फाइटर जेट ही हैं। सऊदी अरब 1975 से ही अमेरिका से F-15 फाइटर जेट खरीद रहा है और समय समय पर उन्हें अपग्रेड भी करा रहा है और आज जब युद्ध के मैदान में इसकी जरूरत पड़ी तो हूती जैसे लड़ाकों ने उसे मार गिराया। सऊदी अरब के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है कि वो अपने सबसे ताकतवर फाइटर जेट के दम पर हूती को हराने की योजना बना रहे हैं और हूती उसी फाइटर जेट को मार गिरा रहे हैं। सऊदी के पास हूती पर हवाई हमले करने के लिए फाइटर के विकल्प बहुत कम हैं। सऊदी को लगा था कि अमेरिका का ये फाइटर जेट उसके बहुत काम आने वाला है क्योंकि अमेरिका ने इसको लेकर बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। अमेरिका का दावा है कि F-15 को हवाई लड़ाई में आज तक कोई नहीं गिरा पाया है और ये अभी तक सही माना जाता है क्योंकि F-15 को हवाई लड़ाई में नहीं बल्कि जमीन से हमला करके गिराया गया है। F-15E एक ट्विन इंजन मल्टी रोल ऑल वेदर फाइटर जेट है जिसे एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर चलाते हैं, इसीलिए F-15 अमेरिकी एयरफोर्स का भी एक फ्रंट लाइन फाइटर जेट है जिसे अटैक मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। F-15 से 10,000 किलोग्राम तक के हथियार ले जाए जा सकते हैं और इसमें लेजर गाइडेड बम, एयर टू एयर मिसाइल और GPS गाइडेड हथियार भी शामिल हैं। F-15 की रफ्तार 2900 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है और इसकी एक खासियत ये भी है कि वो रात के समय में भी कई टारगेट का पता लगा सकता है और उन्हें ट्रैक करके हमला कर सकता है। इसकी इसी खासियत की वजह से कई देशों ने अमेरिका से ये फाइटर जेट खरीदा है। इस वक्त F-15 फाइटर जेट इजराइल, सऊदी अरब, सिंगापुर, कतर और जापान के पास हैं। इजराइल और सऊदी के पास F-15E हैं और जापान के पास F-15J। वहीं सिंगापुर और कतर जैसे देश इसका अपग्रेडेड वर्जन F-15EX Eagle 2 इस्तेमाल करते हैं। हालांकि F-15 की बेजोड़ काबिलियत के बावजूद युद्ध के मैदान में ये कई बार नाकाम रहा है। हाल के दिनों में ही कई F-15 गिराने का दावा किया गया है। इसी साल अप्रैल में ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने दावा किया कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने एक F-15 को ध्वस्त कर दिया। ये F-15E था जो 2-सीटर फाइटर जेट था। मार्च में भी ईरान ने एक F-15 मार गिराने का दावा किया था लेकिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद कुवैत में 3 F-15 मार गिराए गए थे लेकिन ये अमेरिकी फाइटर जेट कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से मार गिराए थे। हूती के द्वारा F-15 को मार गिराए जाने के बाद अमेरिकी दावे और सऊदी का F-15 पर भरोसा डगमगा रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि ईरान पर हमले की अमेरिका ने अब तक क्या कीमत चुकाई है। देखिए,

0: अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता कि हुर्मुज के बाद अब बाब अल मंदेब में भी उसके लिए युद्ध का एक नया मोर्चा खुल जाए। हुर्मुज से जहाजों की आवाजाही करवाने के लिए अमेरिकी सेना को पूरी ताकत झोंकनी पड़ती है, तब जाकर कहीं किसी दिन 10 तो किसी दिन 20 जहाज गुजर पाते हैं। IRGC के हमलों की वजह से हुर्मुज से जहाजों की आवाजाही करवाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब अगर लाल सागर में भी अमेरिकी सेना हूती के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरी तो अमेरिका के हथियारों की खपत भी बढ़ेगी और उनका खर्चा भी बढ़ेगा। फिलहाल जो स्थिति है उसमें अमेरिका नहीं चाहता कि वो युद्ध के दो मोर्चे खोलकर अरबों डॉलर समंदर में बहाता रहे। ईरान में ही अमेरिका भारी नुकसान झेल चुका है और ये अब भी जारी है। ईरान के हमलों में अभी तक अमेरिका 3,63,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है और युद्ध जारी रहने की स्थिति में हर महीने करीब 28,727 करोड़ रुपए का खर्च इसमें और जुड़ जाता है। एक तरह से अभी की स्थिति में ईरान युद्ध अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा बोझ बना हुआ है। युद्ध में अमेरिका को हथियारों का भी भारी नुकसान हुआ है, जिसमें कई फाइटर जेट्स, हवा में ईंधन भरने वाले हवाई जहाज, फाइटर हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन शामिल हैं। इस युद्ध में अब तक अमेरिका के 4 F-15E फाइटर जेट्स, एक F-35A फाइटर जेट और एक A-10 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट तबाह हुए हैं। इसके अलावा हवा में ईंधन भरने वाले 7 KC-135 हवाई जहाज और एक E-3 अर्ली वार्निंग सिस्टम एयरक्राफ्ट तबाह हुआ है। इसके अलावा 5 हेलीकॉप्टर, एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट और एक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी तबाह हुए हैं। युद्ध के दौरान अमेरिका के 30 MQ-9 रीपर ड्रोन भी मार गिराए गए हैं। अभी ईरान युद्ध खत्म नहीं हुआ है और ये कब तक चलेगा इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। सीज फायर की चर्चा करना भी फिलहाल बेमानी है। ऐसे में अगर अमेरिका ने हूती के खिलाफ युद्ध का दूसरा मोर्चा खोल दिया तो सैन्य खर्च की सभी सीमाएं पार हो जाएंगी और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को ये समझाना भारी पड़ जाएगा कि आखिर दो मोर्चों पर अकेले युद्ध कब तक लड़ा जाएगा। नवंबर में ही अमेरिका में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं और अगर युद्ध का कोई अंत निकलता नहीं दिखता और खर्च ऐसे ही बढ़ता रहा तो ट्रंप को भारी नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में वो युद्ध का नया मोर्चा बिल्कुल नहीं खोलना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि द टेलीग्राफ की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि चाइना दुनिया का पहला अंडर वाटर ड्रोन मदरशिप बना रहा है जो पूरी तरह रोबोट टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। और क्यों दुनिया चाइना के इस मदरशिप को लेकर चिंता जता रही है उस पर हमारी ये रिपोर्ट भी।
0: समंदर की लड़ाई में चीन अब अपना एक नया हथियार लेकर आने वाला है। ये किसी भी वक्त जंग की सूरत बदल सकता है। इस नए हथियार ने दुनिया की सैन्य महाशक्तियों के भी होश उड़ा दिए हैं। चीन दुनिया का पहला अंडर वाटर ड्रोन मदरशिप बना रहा है। ये ऐसी सबमरीन होगी जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक और अनमैन्ड होगी, यानी समंदर के अंदर मौजूद इस सबमरीन को जमीन पर मौजूद किसी कमांड सेंटर से चलाया जा सकेगा। हाल फिलहाल के जितने भी युद्ध चल रहे हैं उसमें ड्रोन हथियारों का दम पूरी दुनिया देख रही है। ड्रोन अटैक के जरिए यूक्रेन रशिया पर कई बार भारी पड़ता दिखता है। ड्रोन के जरिए हमला करके IRGC भी अमेरिकी सेना को चौंकाती रही है। चीन ने दो कदम आगे की सोची है। ये पहली बार है जब किसी देश ने समंदर की लड़ाई के लिए ड्रोन का घातक स्वरूप तैयार कर लिया है। अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस कंपनी विंटॉर ने एक तस्वीर जारी की है। ये तस्वीर है हुडोंग झोंगहुआ शिपयार्ड की, जहां एक लाल जहाज बनते हुए दिखाया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा ये जहाज ही अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप बताया जा रहा है। चीन के अंडरवाटर ड्रोन मदरशिप की लंबाई करीब 205 मीटर और चौड़ाई 27 मीटर है। इसके पिछले हिस्से में करीब 55 मीटर लंबी और 13 मीटर चौड़ी वेट वेल है, जिसके जरिए ऑटोनॉमस सबमरीन समंदर में उतर पाएगी। वेट वेल के आगे बंद हैंगर है जहां 4 अनमैन्ड सबमरीन रखी जाएंगी। अनमैन्ड सबमरीन का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उन्हें क्रू के लिए जगह या लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं होगी और खतरनाक मिशन पर इसे तुरंत उतारा जा पाएगा।
2: देखिए समुद्री शक्ति संतुलन में चीन आगे निकल रहा है और ये देखना होगा कि अब वो आक्रामक नीति अपना रहा है, अपनी तकनीकी का इस्तेमाल करके वो अंडर वाटर मानव रहित ड्रोन का जो प्रयोग कर रहा है जिसकी रिपोर्ट आ रही है लगातार, इससे पूरे ईस्ट एशिया से लेकर के आसियान कंट्रीज और भारत, जो पूरा इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन का पूरा रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है। अब चीन के पास एक अपर हैंड सिचुएशन होगी जिससे वो बार्गेनिंग पावर की कैपेसिटी डेवलप करके, चाहे वो ईस्ट चाइना सी हो या साउथ चाइना सी हो, जहां पर वो उसके जो एग्रेसिव पोस्टिंग हमेशा रहती है, जैसे फिलीपींस हो, जापान हो, इस तरह के जो देश हैं जो परेशान रहते हैं या उनके जहाजों पर चीन कभी ब्लॉकिंग, कभी ब्लॉकेट करता है, कभी आक्रमण करता है, तो अब अंडर वाटर ड्रोन से एक समुद्र के अंदर युद्ध की स्थिति बनने का खतरा है। और इस पर जो वैश्विक एक कंट्रोल या वैश्विक एजेंसीज हैं उन्हें नजर रखनी होगी।
0: चीन की इस तैयारी का खुलासा पिछले साल जनवरी में हुआ था, लेकिन अब की बार चीन ने साउथ चाइना सी के हेनान द्वीप के पास कुछ अनमैन्ड पनडुब्बियों का परीक्षण पूरा कर लिया है, यानी पनडुब्बियां तैयार हो चुकी हैं और उन्हें बस अपनी मदर शिप का इंतजार है। आज तक ब्यूरो।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ता, केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी और प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों ने विशेष उत्सव मनाया। पूरा देश उत्सव और सेवा के अनूठे रंग में रंगा नजर आया। अगर आप देखें तो तमाम राज्यों में कोने कोने में आशीर्वाद के दिए जलाकर प्रधानमंत्री की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की गई और सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत हुई।
0: जन्मभूमि से कर्मभूमि तक, आस्था से सेवा तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके को बीजेपी और एनडीए ने पूरे देश में भारत संपर्क और सेवा पर्व बना दिया। कोने कोने में सेवा संकल्प अभियान के तहत आशीर्वाद का दिया जलाया गया, तो वहीं गुजरात के वडनगर से लेकर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी तक बाइकर्स के महाकाफिले की गूंज सुनाई। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष दर्शन पूजन हुआ, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक साथ नजर आए।
3: मुख्यमंत्री श्रीमानी योगी आदित्यनाथ जी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू जी नायडू और श्री चिराग जी पासवान, एलजेपी के नेता, और श्री पंकज जी चौधरी यहां के प्रदेश अध्यक्ष, सब लोग यहां पर पूजा अर्चन करने के लिए काशी विश्वनाथ का आए थे और विधिवत पूजा अर्चन का कार्य संपन्न हुआ है। और हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वह दीर्घायु करें।
0: वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी की जन्मभूमि वडनगर के हटकेश्वर महादेव मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विशेष पूजा अर्चना।
4: उन्होंने गहरी निराशा के गर्त से जनता को बाहर निकालकर नरेंद्र मोदी जी ने जनता को आत्मविश्वास से लवरेज कर 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत की यात्रा के साथ जोड़ने का काम किया।
0: इसके साथ ही शुरुआत हुई जन्मभूमि से कर्मभूमि को जोड़ने वाली एक ऐतिहासिक यात्रा की। वाराणसी से वडनगर और वडनगर से वाराणसी के लिए 300 यानी कुल 600 बाइकर्स की रैली को एक साथ हरी झंडी दिखाई गई। आगामी 7 अक्टूबर को पीएम मोदी के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद के 25 साल पूरे हो रहे हैं। ये 600 बाइकर्स देश के 7 राज्यों के 193 जिलों और सैकड़ों गांवों से गुजरते हुए मोदी जी के 25 वर्षों के सेवा कार्यों का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के साथ ही 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले बीजेपी के महीने भर लंबे सेवा संकल्प अभियान का बिगुल भी बज गया है। इंदौर में बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने भव्य रोड शो किया। उधर देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के तहत अद्भुत नजारा देखने को मिला। लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर 1,00,000 दियों की रोशनी से पूरा परिसर नहला उठा। भुवनेश्वर में 40,000 से अधिक आदिवासी छात्र छात्राओं ने एक साथ दिए जलाकर अपने प्रिय प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी ने हुगली तट पर आतिशबाजी के बीच दिए जलाए। उत्तराखंड के कालसी में सीएम पुष्कर सिंह धामी, पटना मरीन ड्राइव पर सम्राट चौधरी, इसके अलावा दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा और आशीष सूद भी इस दिया पर्व में शामिल हुए।
5: कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 76वें जन्मदिन को बीजेपी ने सेवा, समर्पण और जनसंपर्क का उत्सव बना दिया। आज तक ब्यूरो।
1: और अब बात पोल्यूशन के सोल्यूशन की। आज तक और दिल्ली सरकार के संयुक्त अभियान में प्रदूषण से निपटने के तरीकों पर नए नए आविष्कार सामने आ रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसा ही अनूठा डिवाइस दिखाने जा रहे हैं जो बारिश के मौसम में स्मार्ट तरीके से काम करता है।

0: मेरा नाम राजन हांडा है और मैं MRH टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ। ये जो प्रोडक्ट आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसको फिल्टर क्यूब बोलते हैं। ये फोर्स्ड एयर सर्कुलेशन के टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल किया जाता है। ये रोड की डस्ट को देखती है, स्मोक को देखती है, उसके अलावा कुछ जो गैसेज हैं जैसे NO2 है या SO2 है जो कि हार्मफुल होती हैं, ये उसको भी कैप्चर करती है। सारा सामान जो इसके अंदर लगता है वो चाहे इंजीनियर जर्मनी में हुआ है लेकिन मैन्युफैक्चर इंडिया में हो रहा है, असेंबल इंडिया में हो रहा है। इससे इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत रीजनेबल हो जाती है और इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है और सर्विसिंग भी बहुत बढ़िया हो जाती है।
1: आई एम प्रियंका मनोचा, फाउंडिंग टीम ऑफ MRH टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एंड ऑन माय राइट इज प्रणव कौशिक फ्रॉम आवर पार्टनर कंपनी मैन एंड हमल, एंड ही इज स्टीवन, अनदर एम्प्लॉय कॉलीग फ्रॉम मैन एंड हमल। So together we bring to you the pollution ka solution that you see behind us, which is called as filter cube.
2: एक क्रिकेट स्टेडियम के अंदर जितनी हवा भर सकती है उतनी हवा हर घंटे ये एक मशीन क्लीन करके एरिया में डालती है। तो ऐसी मल्टीपल मशीन से अब हम यूज करते हैं। सो वॉट वी ट्राई टू डू, एक हम एक क्लीन एयर जोन क्रिएट करते हैं उस एरिया के लिए, ताकि वहाँ का जो लोकलाइज पॉल्यूशन है वो लोगों के ब्रीदेबल लिमिट्स में आ जाए।

0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और बांटने का इल्जाम दीवार पर है, लेकिन सच ये है कि आज एक कमरे में भी लोग अलग अलग रहते हैं। नमस्कार।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन पूरे धूमधाम से उनका मनाया गया। आशीर्वाद का कार्यक्रम रखा गया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर सीएम योगी समेत दिग्गज नेताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न।

0: प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न। कहीं केक काटा गया, कहीं दिए जलाए गए। आशीर्वाद का दिया नाम से देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम हुए। वाराणसी में भी गंगा तट पर दीपोत्सव किया गया।
1: नमो घाट पर हूँ, एक तरफ पतित पावनी माँ गंगा है जो मेरे सामने तेज प्रवाह में बह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है आज माहौल बनारस में अयोध्या जैसा है, क्योंकि ये जो दिए हैं ना, ये दिए यहाँ पर लग गए हैं, असंख्यों दिए जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर लाए गए हैं, लगाए गए हैं, और बच्चों ने बकायदा काफी मेहनत की है इन दियों को यहाँ बिछाने के लिए। वाइड फ्रेम यहाँ से दिखाएं एक बार और पूरा दर्शकों को यहाँ से दिखाएं कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पर नमो घाट पर दिए लगा दिए गए हैं।
0: उज्जैन समेत पूरे मध्य प्रदेश में आज दीपोत्सव की रोशनी बिखरी हुई है। महाकाल की नगरी में शिप्रा के रामघाट, दत्त अखाड़ा घाट और महाकाल लोक में 25 लाख दीप जलाए गए।
2: महाकाल की इस पवित्र नगरी से प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की, दीर्घायु होने की कामना पूरा महाकाल के हमारे सभी लोग कर रहे हैं, यहाँ के नागरिक कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पवित्र तट से माननीय प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की कामना की जा रही है। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से करोड़ों लोगों के जीवन में जो बदलाव लाया, और इस तट की बात करें तो 800 करोड़ की अधिक सी योजना महाकाल कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री जी ने किया, जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म बढ़ा, आज यहाँ पर लोग का व्यवसाय बढ़ा है, उनके जीवन में उनके बदलाव आए हैं।
0: इसके अलावा श्रीनगर, कोलकाता और पटना में भी भव्य दीपोत्सव हुआ। और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भी 1 लाख दिए जलाए गए।
3: लगभग 1.5 लाख दिए एक समय पर जलाए जा रहे हैं, और ये जो प्रज्वलित दिए हैं जो आपको दूर तक नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे दिए इसीलिए जलाए गए हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक वादा किया था आज से 12 साल पहले, और लोगों से जो वादा किया था गुजरात के लोगों से आज से 25 साल पहले, उसको उन्होंने पूरा किया है। देखिए, हम लोग जब खुश होते हैं, जब हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसका कारण यही है कि हम बताते हैं कि किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, तो किस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ये दिए जो हैं इस समय उसी का सिंबल है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। पूरे विधि विधान से पूजन का अनुष्ठान हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, चिराग पासवान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस पूजा अर्चना में शामिल हुए।
4: सब लोग यहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए काशी विश्वनाथ का आए थे और विधिवत पूजा अर्चन का कार्य संपन्न हुआ है, और हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वह दीर्घायु करें।
5: बाबा से ही प्रार्थना की है कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु उन्हें प्राप्त हो और लंबे समय तक भारत का नेतृत्व उनके हाथों में रहे, जिससे भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विकसित भारत की संकल्पना उनके नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी देख सके।
0: राजनाथ सिंह ने वाराणसी से बाइक रैली को भी झंडी दिखाई, जो वाराणसी से वडनगर के लिए रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मभूमि वडनगर में सेवा संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। अमित शाह ने वडनगर में बाइक रैली को झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की, जो कि वाराणसी तक जाएगी।
6: 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 26 में 140 करोड़ भारतीय ये उत्साह और संकल्प के साथ, एक आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में समग्र विश्व में भारत सर्वप्रथम होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता का सामूहिक आत्मविश्वास खड़ा करना ये किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी कसौटी है, और वो भी तब जब जनता गहरी निराशा में डूबी हो। उन्होंने गहरी निराशा के गर्त से जनता को बाहर निकालकर नरेंद्र मोदी जी ने जनता को आत्मविश्वास से लवरेज कर 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत की यात्रा के साथ जोड़ने का काम किया।
0: उधर दिल्ली में इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने रक्तदान किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इसमें शामिल हुए। दिल्ली सरकार के मंत्री और सीएम रेखा गुप्ता ने भी रक्तदान किया।
7: प्रधानमंत्री जी का ये जन्म दिवस हम सबको जन सेवा की प्रेरणा देता है और दिल्ली सरकार उनके दिखाए हुए रास्ते पर उनके मार्गदर्शन में हमेशा आगे बढ़ते हुए इस काम को करेगी। आज हम मोदी जी को समर्पित करते हुए हमारे स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए हुए एक बर्थडे सॉन्ग, एक गीत का भी लॉन्चिंग करेंगे।
0: कुल मिलाकर 17 सितंबर का दिन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के जश्न के नाम रहा। आज तक ब्यूरो।
3: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान 19 सितंबर को आदित्य ठाकरे के घर मातोश्री जाकर उन्हें मानहानि का नोटिस खुद सौंपेंगे। साथ ही साथ उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर अपने और अपनी कानूनी टीम के लिए वहां जाते समय पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है।

0: दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री पर सियासत हावी होती जा रही है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 500 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में दोनों नेताओं के बयानों पर आपत्ति जताई गई है। सतीश सालियान ने दोनों को बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने, बयान वापस लेने, लिखित माफी मांगकर उसे प्रिंट मीडिया में छपवाने, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 3 मिनट का माफीनामा वीडियो जारी करने की मांग की है।
1: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान जी की तरफ से आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख को डिफामेशन का नोटिस दिया गया है। ये अलग डिफामेशन का नोटिस है, उन्होंने जो पोस्ट किए उसके लिए एक और एडिशनल नोटिस दिया जा रहा है। तो ये जो नोटिस है, ये उन्होंने मैटर वही है, सिमिलर। उन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट पे कहा था कि सतीश सालियान के पिताजी ने पिटीशन गलत फाइल की है और ऑलरेडी इस मैटर में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके उनको क्लीन चिट दी है, लेकिन राजकीय हेतु से प्रेरित होकर और पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ मीडिया के लोग जिनके इनके ये संबंध ठीक नहीं है उनके इशारे पे ये पिटीशन फाइल की गई है।
0: दिशा के पिता ने 500 करोड़ के मानहानि के नोटिस में लिखा, आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख ने मेरे बयानों और कानूनी कार्रवाई को लेकर झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप लगाए। दोनों नेताओं ने मेरी बेटी दिशा की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया। आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे हैं कि सीबीआई पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है। आदित्य कह रहे हैं कि वो दिशा को जानते ही नहीं थे, ये बात सच नहीं है। हमारे पास इन नेताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत है।
2: 17 पन्ने के इस लीगल नोटिस में कहा गया है कि नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख दोनों को ही एक अनकंडीशनल अपॉलोजी देनी है, और अनकंडीशनल अपॉलोजी किस तरीके की हो ये भी स्पेसिफाई किया गया है। अखबार में एडवर्टीजमेंट A4 साइज के होने चाहिए, 3 मिनट से कम के वीडियो के नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 500 करोड़ जो डिफेमेशन में है किया है, जिसकी वजह से जो इतनी बदनामी हुई है उसका हर्जाना ये 500 करोड़ भी दिए जाएं। तो ये तमाम बातें इन 17 पन्नों में लिखे हैं, और अब अनिल देशमुख और आदित्य ठाकरे दोनों के ही वकील ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर से डील कैसे किया जाए।
0: दरअसल 16 सितंबर को आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिशा मौत मिस्ट्री केस में सफाई देते हुए लिखा था, मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और ना ही उन्हें जानता हूँ। पिछले 6 सालों से कुछ लोग जानबूझकर और बिना किसी सबूत के इस दुखद मामले से मेरा नाम जोड़कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बदनाम करने का यह अभियान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जोरदार टीवी डिबेट और मीडिया ट्रायल से सच्चाई नहीं बदलती। इस केस की जांच दोबारा आगे बढ़ने दें।
1: और बाकी जो उन्होंने अभी जो नया पोस्ट किया है कि इन्वेस्टिगेशन शांतिपूर्ण तरीके से होने दो, मीडिया के लोग डिबेट ना करें, तो इसको कहते हैं चोर मचाए शोर। इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दिया, इन्होंने खुद उसके रिकॉर्ड डिलीट करवाए, इन्होंने खुद सतीश सालियान के पिटीशन को ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि सीबीआई को मैटर ना जाए, इसी और इन्हीं की वजह से डिले हुआ है ये सब। तो अभी वो तो हमने इनको खिलाफ लड़के सबूत देके ये ऑर्डर लिया है, इनका सारा झूठ पकड़ा गया है, और अब यही खुद चिल्ला रहे और ये जो कह रहे हैं दिशा का मेरा संबंध नहीं है, हमारे पास में सारे डिजिटल प्रूफ्स आई विटनेस से लेके सारी चीजें हैं। ये दो चीजों का आज तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आप इस ड्रग्स के बिजनेस में ड्रग्स का बिजनेस करते हुए और खुद ड्रग्स का सेवन करते हुए ड्रगिस्ट हो, ये नारकोटिक्स ब्यूरो के क्राइम नंबर 15/2020 में आया, आपके फोन सर्विलेंस में आया, ये हमने एफिडेविट पे कहा, उसका आप जवाब नहीं दे पाए और उसको मना भी नहीं कर रहे हो, उसके बारे में बोलो, और आपके मोबाइल टावर लोकेशन वहां थे, और आपने जो पहला डिफेंस लिया था कि मैं उस दिन बाहर था, मेरे नाना जी गुजर गए थे 8 जून को, मुंबई से बाहर था, वो भी झूठा साबित हो गया, नाना जी 14 जून को गुजरे थे। उसके बाद में आपने कहा इसकी जो आपकी मेन पार्टनर इन क्राइम है इसमें रिया चक्रवर्ती, बोले मैं इसको जानता नहीं, रिया ने कहा मैं आपको नहीं जानती, ये भी फोरेंसिक की चैट रिकवरी में ये भी झूठा साबित हो गया। तो आप हैबिचुअल झूठ बोलने वाले हो।
0: दिशा सालियान के पिता 6 साल से कह रहे हैं कि उनकी बेटी दिशा की गैंगरेप के बाद हत्या हुई थी। वो आदित्य ठाकरे समेत कई पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं।
3: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनो मौर्या, सुरेश पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने हैं, ऐसा कमेंट दिया है।
0: हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को सतीश सालियान के आरोपों की कार्रवाई करने को कहा है। बीजेपी विधायक राम कदम भी लगातार तत्कालीन उद्धव सरकार की भूमिका संदिग्ध बताते रहे हैं।
4: दिशा सालियान की मौत, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष से ऊपर उठ करके है। श्रीमान आदित्य ठाकरे को 6.5 वर्ष लग गए ये बोलने के लिए कि उनका इस मामले में कोई संबंध नहीं है। इसके पहले उनकी खामोशी का क्या कारण था? किसने उन्हें रोका था? उनके पिता तो लगातार बार बार आरोप कर रहे थे, तब आप क्यों नहीं बोले? और कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का था? क्या कारण था कि आपकी सरकार पुलिस को जांच करने से क्यों रोक रही थी? और यदि पुलिस जांच नहीं कर रही है तो आपकी सरकार ने पुलिस से क्यों नहीं कहा उस पिता को न्याय मिलना चाहिए?
0: दिशा सालियान की मौत की शुरुआती जांच मुंबई पुलिस ने की थी। पुलिस की जांच में दिशा की मौत को आत्महत्या बताया गया था। मार्च 2025 में सामने आई मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में भी दिशा की मौत को सुसाइड बताते हुए उनकी मानसिक परेशानी का जिक्र किया गया था। लेकिन सवाल है कि क्या सीबीआई दिशा सालियान की मौत की गुत्थी सुलझाने में कामयाब हो पाएगी?
5: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने अपने वकील अपने एडवोकेट द्वारा मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक पत्र द्वारा सिक्योरिटी मांगी है। ये सिक्योरिटी इसलिए मांगी है क्योंकि उनका कहना है कि आदित्य ठाकरे शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे पर जो वो मानहानि का नोटिस उन्हें देने जा रहे हैं, 500 करोड़ का ये मानहानि का नोटिस है, डिफेमेशन नोटिस है, वो बाय हैंड डिलीवर करना चाहते हैं। इसीलिए 19 सितंबर को वो आदित्य ठाकरे के घर मातोश्री बैंड्रा जाएंगे और उन्होंने एडिक्वेट सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी की मांग की है पुलिस द्वारा।
0: विद्या के साथ दिव्यांश सिंह, मुंबई आज तक।
6: सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था से तो हर कोई वाकिफ रहता है, लेकिन जब डॉक्टर्स के नाम पर उनके ड्राइवर मरीजों का इलाज करने लग जाएं तो सोचिए कि क्या ही होता होगा। जी हां, कानपुर के सरकारी अस्पताल में ऐसा खिलवाड़ हुआ है। डॉक्टर आराम पर और उनका ड्राइवर काम पर। जब ड्राइवर डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कानपुर से लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। तो आइए देखते हैं ड्राइवर डॉक्टर का ओपीडी में जानलेवा इलाज। तस्वीरें देखिए आप।
7: इस हरकत पर तो यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में इलाज नहीं बल्कि दिन दहाड़े मरीजों के साथ जानलेवा खिलवाड़ चल रहा है। जी हां, कानपुर के काशीराम अस्पताल में डॉक्टर आराम पर हैं और ड्राइवर काम पर हैं। ओपीडी में मरीज आ रहे हैं और डॉक्टर साहब का ड्राइवर मरीजों को धड़ाधड़ दवाइयां लिख रहा है। ड्राइवर डॉक्टर मरीजों से उनका हाल पूछता है और पर्ची पर पता नहीं कौन सी दवाई लिखकर आगे बढ़ा देता है, फिर अगले मरीज का नंबर लेता है। बाकायदा ड्राइवर की ये ओपीडी कानपुर के काशीराम अस्पताल में जनरल मेडिसिन विभाग के हेड और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामकेश की ओपीडी में चल रही है। कहां तो स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और कहां अस्पताल में डॉक्टर की जगह उनके ड्राइवर ही इलाज करने बैठ जाएं तो मरीजों का हाल क्या होगा, ये आप और हम सभी समझ सकते हैं। यकीनन ये मरीजों के साथ जानलेवा खिलवाड़ से कम नहीं है। जब ड्राइवर ने ओपीडी चलाई तो सीएमओ कहां थे? जब ड्राइवर ओपीडी में मरीजों को देख रहा था तब सीएमएस कहां थे? इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की ओपीडी में ड्राइवर कैसे बैठा? सवाल यह है कि जब अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामकेश की ड्यूटी थी तो वो कहां थे? क्या डॉक्टर रामकेश ने ओपीडी में मरीजों के देखने के लिए अपने ड्राइवर को बैठा दिया? बड़ी बात यह है कि सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर से लेकर सीएमएस यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी अस्पताल में बैठते हैं, तो पूरा अस्पताल प्रशासन कहां था जिन्हें एक ड्राइवर ओपीडी चलाता हुआ नहीं दिखा? वीडियो वायरल होने के बाद पूरा अस्पताल प्रशासन जाग उठा है और कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि सरकारी सिस्टम कितना सड़ चुका है कि डॉक्टर की जगह ड्राइवर इलाज करता है। वीडियो में ड्राइवर मरीजों से उनकी परेशानी पूछता दिखाई दे रहा है। वो मरीजों से पूछ रहा है कि पेट में दर्द है या क्या तकलीफ है। इसके बाद वो पर्चे पर दवाई लिखता नजर आता है और मरीजों के पूछने पर वो उन्हें दवा अस्पताल से नहीं बल्कि बाहर मेडिकल स्टोर से लेने की बात कहता है। अब आपको दिखाते हैं डॉक्टर ड्राइवर ने जो पर्ची पर दवाइयां लिखकर दी आखिर पर्ची में क्या लिखा। पर्चे पर लिखा हुआ है जो हमें समझ आता है, कुछ BIG 500 लिखा है, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता, फिर कुछ OINT KT2 और कॉम्बी बी टाइप लिखा है, साथ ही KT2 200 mg लिखा है। अब ये कौन सी दवाइयां हैं जो ड्राइवर डॉक्टर ने मरीजों को लिख कर दी हैं? अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के ड्राइवर ही इलाज करेंगे तो फिर किस काम के CMO, किस काम के CMS और किस काम का स्वास्थ्य मंत्रालय? अस्पताल में ड्राइवर मरीजों का इलाज करते हुए पकड़ा गया तो अस्पताल के CMO हरिदत्त नेमी ने जांच कमेटी गठित करके पतली गली से बच निकलने की कोशिश की। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, CMO साहब पल्ला नहीं झाड़ सकते।
8: कल से वीडियो वायरल हुआ, मैंने भी उसे देखा है। वहाँ पर CMS हैं डॉक्टर पीयूष, तो डॉक्टर पीयूष से मेरी बात हुई है तो वहाँ पर उसकी जांच बिठा दी है और जांच में जो भी जिसके भी जो दोष होगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई की।
7: अस्पताल के CMS यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पीयूष मिश्रा ड्राइवर पर FIR की बात करके बच नहीं सकते। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, CMS साहब जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते।
9: नहीं, मैंने स्पष्टीकरण ये अपना जवाब दें पहले। और 3 सदस्यीय हमने वरिष्ठ चिकित्सकों की कमेटी बनाई है और इनकी इस पूरी घटनाक्रम को उसके ड्राइवर के खिलाफ विरुद्ध FIR करेंगे और इनको इनके खिलाफ हम शासन को पत्र भी लिखने जा रहे हैं। ये अनुशासनहीनता है, बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण। ये हमें बड़ा खेद के लगता है कि सुनने में भी ये इतना बड़ा अच्छा अस्पताल जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी इसको ऊंचाई तक ले जाऊँ, इस प्रकार का बहुत ही खराब कार्य किया है इन्होंने।
7: आज तक ने इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर यानी डॉक्टर रामकेश से भी पूछा कि उनकी OPD में उनकी कुर्सी पर उनका ड्राइवर इलाज करने क्यों बैठा। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, डॉक्टर रामकेश का कोई बहाना नहीं चलने वाला।
10: एक वीडियो वायरल हुआ कि आपका ड्राइवर आपकी सीट पे बैठ के दवा दे रहा
11: है। सर आप महोदय, आप लोगों के माध्यम से या साहब CMS साहब के माध्यम से मुझे पता चला, तत्काल प्रभाव से उसे मैंने बाहर निकाल दिया अपने।
10: तो ये

0: को लिख दिया है दवा।
1: तो वो सर आप कहाँ गए थे उस समय?
0: मैं कोर्ट गया था।
1: कोर्ट गया।
2: डॉक्टर रामकेश ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने ड्राइवर को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया है, लेकिन डॉक्टर रामकेश कहते हैं जब उनका ड्राइवर ओपीडी में इलाज कर रहा था वो कोर्ट गए हुए थे। अब डॉक्टर रामकेश सच बोल रहे हैं या झूठ? लेकिन आज तक को अस्पताल के CMS पीयूष मिश्रा ने बताया कि उन्होंने अस्पताल का अटेंडेंट रजिस्टर चेक किया तो डॉक्टर रामकेश की कोई न्यायालय ड्यूटी नहीं थी। डॉक्टर रामकेश का कोर्ट वाला बहाना एक्सपोज।
3: ये किस समय आके कब बैठा उस दिन कमरा में न्यायालय कार्य लिखा हुआ था, लेकिन अभी हमने उपस्थिति पंजिका को देखा तो उसमें कोई न्यायालय ड्यूटी थी नहीं इनकी पिछले लगभग 15 दिन से। लेकिन ये कमरे में नहीं थे उस समय, मौजूद समय ये वीडियो वायरल हुआ है।
2: तो क्या डॉक्टर रामकेश आराम पर थे और ड्राइवर काम पर था? कानपुर के सरकारी अस्पताल ने एक बार फिर से सरकारी अस्पतालों की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। कैसे सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर दिन दहाड़े खिलवाड़ किया जाता है?
4: वीडियो वायरल होने के बाद CMO ने जांच की बात की है, संबंधित अस्पताल और डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है। डॉक्टर ने भी अपना पल्ला यह कह के झाड़ दिया है कि उसने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या जांच की खाना पूर्ति से इतने बड़ी लापरवाही को दबाया जा सकता है? ना कोई तत्काल FIR, ना कोई ठोस कार्रवाई और ना कोई निलंबन। ऐसे में लोगों का प्रशासन से बड़ा सवाल है कि आखिरकार मरीजों की सुरक्षा के लिए जवाबदेही कब तय होगी?
2: रंजय सिंह के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।
5: और अब आपको दिखाते हैं द लखनऊ स्टोरी। कैसे एक लड़की को कार के बोनट पर घसीटते हुए वीडियो वायरल हुआ, तो अब कहानी पूरी तरह से परत दर परत खुलती जा रही है। पीड़ित लड़की का आरोपी है कि शहनवाज नाम के लड़के ने पहले यश ठाकुर बनकर उससे दोस्ती की, उसके बाद विवाद होने पर शहनवाज ने लड़की को कार से घसीटा। अब इसमें हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो चुकी है जो इसे लव जिहाद बता रहे हैं और तगड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं।
2: लखनऊ से आई ये तस्वीरें देश भर में वायरल हो जाती हैं, जिसमें सफेद रंग की ये वर्ना कार एक महिला को बोनट के आगे घसीटते हुए दिखाई देती है। वीडियो में कार का नंबर साफ दिखता है, UP 32 KH 8090। आज तक के कैमरे पर आकाश नाम के चश्मदीद ने इस पूरी घटना की गवाही दी।
6: दीदी मतलब कि उसके ऊपर ऐसे रुक गई, रोक रोकने की कोशिश कर रही थी तो उसने नहीं रोका, फिर यहाँ यही मेरी दुकान के सामने रोका, ठीक है। रोकने के बाद में फिर आगे रुकते रहते वहाँ रुक गई दीदी, फिर वहाँ रुकी और दीदी बस जैसे साइड से मतलब बात करने की कोशिश कर रही थी, बस तुरंत ही रुक गए। बस रोकने के बाद में बस इतनी स्पीड में भगाया जैसे दीदी थोड़ा साइड में, बस दीदी फिर ऐसे रोकने की कोशिश, बहुत गिर गई दीदी ने, पर यहाँ चोट खा गई। मेरे दुकान पे कस्टमर बैठे वो भी वीडियो बनाए।
2: कार और कार चलाने वाले शहनवाज को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन बाद में कहानी कुछ और ही निकलती है। कार के भीतर गाड़ी चला रहे शख्स का नाम शहनवाज है और जिस लड़की को इसने टक्कर मारी उसका नाम अनामिका है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सोशल मीडिया पर अनामिका के दो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें वो आरोपी शहनवाज के साथ एक कार में बैठी नजर आ रही है और वो खुद बता रही है कैसे दोनों की मुलाकात हुई।
7: ये मैं हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक। कली क्यों है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है। हमारे बीच में ये हुआ है, हमें छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम छोड़ नहीं रहे। हमने इससे बोला कि 1 से 2 महीने का मुझे टाइम दो, मैं अपने आप छोड़ दूंगी अगर ना।
5: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

झटका। चुनाव आयोग ने टीएमसी के निशान और नाम के इस्तेमाल पर लगाई रोक। दोनों से कल तक मांगे गए तीन तीन विकल्प। यूपी में हाईवे को लेकर अखिलेश ने सीएम योगी को घेरा। कहा बीजेपी सरकार में निर्माण बाद में पूरा होता है लेकिन गिरने वो पहले लगता है। बोले अब वो हर लेन देन पर लेंगे टैक्स। 100% टैरिफ वाले अमेरिकी कानून पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध। अलग अलग स्रोतों से जारी रहेगी ऊर्जा खरीद। और टी20 में अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान। महज 30 गेंद में जड़ा शतक। टेस्ट खेलने वाले देशों में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड। भारत ने 127 रन से जीता मैच। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन पूरे धूमधाम से उनका मनाया गया। आशीर्वाद का कार्यक्रम रखा गया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर सीएम योगी समेत दिग्गज नेताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न।

प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में दीपोत्सव। काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए, प्रधानमंत्री ने जताया आभार। बंगाल उपचुनाव से पहले ममता और ऋतव्रत गुट को।

0: प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न। कहीं केक काटा गया, कहीं दिए जलाए गए। आशीर्वाद का दिया नाम से देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम हुए। वाराणसी में भी गंगा तट पर दीपोत्सव किया गया।
1: नमो घाट पर हूँ, एक तरफ पतित पावनी माँ गंगा है जो मेरे सामने तेज प्रवाह में बह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है आज माहौल बनारस में अयोध्या जैसा है, क्योंकि ये जो दिए हैं ना, ये दिए यहाँ पर लग गए हैं, असंख्यों दिए जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर लाए गए हैं, लगाए गए हैं, और बच्चों ने बकायदा काफी मेहनत की है इन दियों को यहाँ बिछाने के लिए। वाइड फ्रेम यहाँ से दिखाएं एक बार और पूरा दर्शकों को यहाँ से दिखाएं कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पर नमो घाट पर दिए लगा दिए गए हैं।
0: उज्जैन समेत पूरे मध्य प्रदेश में आज दीपोत्सव की रोशनी बिखरी हुई है। महाकाल की नगरी में शिप्रा के राम घाट, दत्त अखाड़ा घाट और महाकाल लोक में 25 लाख दीप जलाए गए।
2: महाकाल की इस पवित्र नगरी से प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की, दीर्घायु होने की कामना पूरा महाकाल के हमारे सभी लोग कर रहे हैं, यहाँ के नागरिक कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पवित्र तट से माननीय प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की कामना की जा रही है। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से करोड़ों लोगों के जीवन में जो बदलाव लाया, और इस तट की बात करें तो 800 करोड़ की अधिक सी योजना महाकाल कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री जी ने किया, जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म बढ़ा, आज यहाँ पर लोग का व्यवसाय बढ़ा है, उनके जीवन में उनके बदलाव आए हैं।
0: इसके अलावा श्रीनगर, कोलकाता और पटना में भी भव्य दीपोत्सव हुआ। और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भी 1 लाख दिए जलाए गए।
3: लगभग 1.5 लाख दिए एक समय पर जलाए जा रहे हैं, और ये जो प्रज्वलित दिए हैं जो आपको दूर तक नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे दिए इसीलिए जलाए गए हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक वादा किया था आज से 12 साल पहले, और लोगों से जो वादा किया था गुजरात के लोगों से आज से 25 साल पहले, उसको उन्होंने पूरा किया है। देखिए, हम लोग जब खुश होते हैं, जब हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसका कारण यही है कि हम बताते हैं कि किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, तो किस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ये दिए जो हैं इस समय उसी का सिंबल है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। पूरे विधि विधान से पूजन का अनुष्ठान हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, चिराग पासवान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस पूजा अर्चना में शामिल हुए।
4: सब लोग यहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए काशी विश्वनाथ का आए थे और विधिवत पूजा अर्चन का कार्य संपन्न हुआ है, और हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वह दीर्घायु करें।
5: बाबा से ही प्रार्थना की है कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु उन्हें प्राप्त हो और लंबे समय तक भारत का नेतृत्व उनके हाथों में रहे, जिससे भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विकसित भारत की संकल्पना उनके नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी देख सके।
0: राजनाथ सिंह ने वाराणसी से बाइक रैली को भी झंडी दिखाई, जो वाराणसी से वडनगर के लिए रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मभूमि वडनगर में सेवा संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। अमित शाह ने वडनगर में बाइक रैली को झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की, जो कि वाराणसी तक जाएगी।
6: 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 26 में 140 करोड़ भारतीय ये उत्साह और संकल्प के साथ, एक आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में समग्र विश्व में भारत सर्वप्रथम होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता का सामूहिक आत्मविश्वास खड़ा करना ये किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी कसौटी है, और वो भी तब जब जनता गहरी निराशा में डूबी हो। उन्होंने गहरी निराशा के गर्त से जनता को बाहर निकालकर नरेंद्र मोदी जी ने जनता को आत्मविश्वास से लवरेज कर 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत की यात्रा के साथ जोड़ने का काम किया।
0: उधर दिल्ली में इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने रक्तदान किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इसमें शामिल हुए। दिल्ली सरकार के मंत्री और सीएम रेखा गुप्ता ने भी रक्तदान किया।
7: प्रधानमंत्री जी का ये जन्म दिवस हम सबको जन सेवा की प्रेरणा देता है और दिल्ली सरकार उनके दिखाए हुए रास्ते पर उनके मार्गदर्शन में हमेशा आगे बढ़ते हुए इस काम को करेगी। आज हम मोदी जी को समर्पित करते हुए हमारे स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए हुए एक बर्थडे सॉन्ग, एक गीत का भी लॉन्चिंग करेंगे।
0: कुल मिलाकर 17 सितंबर का दिन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के जश्न के नाम रहा। आज तक ब्यूरो।
3: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान 19 सितंबर को आदित्य ठाकरे के घर मातोश्री जाकर उन्हें मानहानि का नोटिस खुद सौंपेंगे। साथ ही साथ उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर अपने और अपनी कानूनी टीम के लिए वहां जाते समय पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है।

0: दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री पर सियासत हावी होती जा रही है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 500 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में दोनों नेताओं के बयानों पर आपत्ति जताई गई है। सतीश सालियान ने दोनों को बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने, बयान वापस लेने, लिखित माफी मांगकर उसे प्रिंट मीडिया में छपवाने, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 3 मिनट का माफीनामा वीडियो जारी करने की मांग की है।
1: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान जी की तरफ से आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख को डिफामेशन का नोटिस दिया गया है। ये अलग डिफामेशन का नोटिस है, उन्होंने जो पोस्ट किए उसके लिए एक और एडिशनल नोटिस दिया जा रहा है। तो ये जो नोटिस है, ये उन्होंने मैटर वही है, सिमिलर। उन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट पे कहा था कि सतीश सालियान के पिताजी ने पिटीशन गलत फाइल की है और ऑलरेडी इस मैटर में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके उनको क्लीन चिट दी है, लेकिन राजकीय हेतु से प्रेरित होकर और पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ मीडिया के लोग जिनके इनके ये समन ठीक नहीं है, उनके इशारे पे ये पिटीशन फाइल की गई है।
0: दिशा के पिता ने 500 करोड़ के मानहानि के नोटिस में लिखा, आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख ने मेरे बयानों और कानूनी कार्रवाई को लेकर झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप लगाए। दोनों नेताओं ने मेरी बेटी दिशा की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया। आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे हैं कि सीबीआई पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है। आदित्य कह रहे हैं कि वो दिशा को जानते ही नहीं थे, ये बात सच नहीं है। हमारे पास इन नेताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत है।
2: 17 पन्ने के इस लीगल नोटिस में कहा गया है कि नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख दोनों को ही एक अनकंडीशनल अपॉलोजी देनी है, और अनकंडीशनल अपॉलोजी किस तरीके की हो ये भी स्पेसिफाई किया गया है। अखबार में एडवर्टीजमेंट A4 साइज के होने चाहिए, 3 मिनट से कम के वीडियो के नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 500 करोड़ जो डिफेमेशन में है किया है, जिसकी वजह से जो इतनी बदनामी हुई है उसका हर्जाना ये 500 करोड़ भी दिए जाएं। तो ये तमाम बातें इन 17 पन्नों में लिखे हैं, और अब अनिल देशमुख और आदित्य ठाकरे दोनों के ही वकील ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर से डील कैसे किया जाए।
0: दरअसल 16 सितंबर को आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिशा मौत मिस्ट्री केस में सफाई देते हुए लिखा था, मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और ना ही उन्हें जानता हूँ। पिछले 6 सालों से कुछ लोग जानबूझकर और बिना किसी सबूत के इस दुखद मामले से मेरा नाम जोड़कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बदनाम करने का यह अभियान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जोरदार टीवी डिबेट और मीडिया ट्रायल से सच्चाई नहीं बदलती। इस केस की जांच दोबारा आगे बढ़ने दें।
1: और बाकी जो उन्होंने अभी जो नया पोस्ट किया है कि इन्वेस्टिगेशन शांतिपूर्ण तरीके से होने दो, मीडिया के लोग डिबेट ना करें, तो इसको कहते हैं चोर मचाए शोर। इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दिया, इन्होंने खुद उसके रिकॉर्ड डिलीट करवाए, इन्होंने खुद सतीश सालियान के पिटीशन को ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि सीबीआई को मैटर ना जाए, इसी और इन्हीं की वजह से डिले हुआ है ये सब। तो अभी वो तो हमने इनको खिलाफ लड़के सबूत दे के ये ऑर्डर लिया है, इनका सारा झूठ पकड़ा गया है, और अब यही खुद चिल्ला रहे और ये जो कह रहे हैं दिशा का मेरा संबंध नहीं है, हमारे पास में सारे डिजिटल प्रूफ्स आई विटनेस से लेके सारी चीजें हैं। ये दो चीजों का आज तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आप इस ड्रग्स के बिजनेस में ड्रग्स का बिजनेस करते हुए और खुद ड्रग्स का सेवन करते हुए ड्रगिस्ट हो, ये नारकोटिक्स ब्यूरो के क्राइम नंबर 15/2020 में आया, आपके फोन सर्विलेंस में आया, ये हमने एफिडेविट पे कहा, उसका आप जवाब नहीं दे पाए और उसको मना भी नहीं कर रहे हो उसके बारे में बोलो, और आपके मोबाइल टावर लोकेशन वहां थे, और आपने जो पहला डिफेंस लिया था कि मैं उस दिन बाहर था, मेरे नाना जी गुजर गए थे 8 जून को, मुंबई से बाहर था, वो भी झूठा साबित हो गया, नाना जी 14 जून को गुजरे थे। उसके बाद में आपने कहा इसकी जो आपकी मेन पार्टनर इन क्राइम है इसमें रिया चक्रवर्ती, बोले मैं उसको जानता नहीं, रिया ने कहा मैं आपको नहीं जानती, ये भी फोरेंसिक की चैट रिकवरी में ये भी झूठा साबित हो गया। उस तो आप हैबिचुअल झूठ बोलने वाले हो।
0: दिशा सालियान के पिता 6 साल से कह रहे हैं कि उनकी बेटी दिशा की गैंगरेप के बाद हत्या हुई थी। वो आदित्य ठाकरे समेत कई पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं।
3: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनो मौर्या, सुरेश पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने हैं, ऐसा कंप्लेंट दिया है।
0: हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को सतीश सालियान के आरोपों की कार्रवाई करने को कहा है। बीजेपी विधायक राम कदम भी लगातार तत्कालीन उद्धव सरकार की भूमिका संदिग्ध बताते रहे हैं।
4: दिशा सालियान की मौत, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष से ऊपर उठ करके है। श्रीमान आदित्य ठाकरे को 6.5 वर्ष लग गए ये बोलने के लिए कि उनका इस मामले में कोई संबंध नहीं है। इसके पहले उनकी खामोशी का क्या कारण था? किसने उन्हें रोका था? उनके पिता तो लगातार बार बार आरोप कर रहे थे, तब आप क्यों नहीं बोले? और कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का था? क्या कारण था कि आपकी सरकार पुलिस को जांच करने से क्यों रोक रही थी? और यदि पुलिस जांच नहीं कर रही है तो आपकी सरकार ने पुलिस से क्यों नहीं कहा उस पिता को न्याय मिलना चाहिए?
0: दिशा सालियान की मौत की शुरुआती जांच मुंबई पुलिस ने की थी। पुलिस की जांच में दिशा की मौत को आत्महत्या बताया गया था। मार्च 2025 में सामने आई मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में भी दिशा की मौत को सुसाइड बताते हुए उनकी मानसिक परेशानी का जिक्र किया गया था। लेकिन सवाल है कि क्या सीबीआई दिशा सालियान की मौत की गुत्थी सुलझाने में कामयाब हो पाएगी?
5: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने अपने वकील अपने एडवोकेट द्वारा मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक पत्र द्वारा सिक्योरिटी मांगी है। ये सिक्योरिटी इसलिए मांगी है क्योंकि उनका कहना है कि आदित्य ठाकरे शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे पर जो वो मानहानि का नोटिस उन्हें देने जा रहे हैं 500 करोड़ का ये मानहानि का नोटिस है, डिफेमेशन नोटिस है, वो बाय हैंड डिलीवर करना चाहते हैं। इसीलिए 19 सितंबर को वो आदित्य ठाकरे के घर मातोश्री बैंड्रा जाएंगे और उन्होंने एडिक्वेट सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी की मांग की है पुलिस द्वारा।
0: विद्या के साथ दिव्यांश सिंह, मुंबई आज तक।
6: और अब आपको दिखाते हैं द लखनऊ स्टोरी। कैसे एक लड़की को कार के बोनट पर घसीटते हुए वीडियो वायरल हुआ, तो अब कहानी पूरी तरह से परत दर परत खुलती जा रही है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि शहनवाज नाम के लड़के ने पहले यश ठाकुर बनकर उससे दोस्ती की, उसके बाद विवाद होने पर शहनवाज ने लड़की को कार से घसीटा। अब इसमें हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो चुकी है जो इसे लव जिहाद बता रहे हैं और तगड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं।
7: लखनऊ से आई ये तस्वीरें देश भर में वायरल हो जाती हैं, जिसमें सफेद रंग की ये वर्ना कार एक महिला को बोनट के आगे घसीटते हुए दिखाई देती है। वीडियो में कार का नंबर साफ दिखता है, UP 32 KH 8090। आज तक के कैमरे पर आकाश नाम के चश्मदीद ने इस पूरी घटना की गवाही दी।
8: दीदी मतलब कि उसके ऊपर ऐसे रुक गई, रोक रोकने की कोशिश कर रही थी, तो उसने नहीं रोका, फिर यहाँ यही मेरी दुकान के सामने रोका, ठीक है। रोकने के बाद में फिर आगे रुकते रहते वहाँ रुक गई दीदी, फिर वहाँ रुकी और दीदी बस जैसे साइड से मतलब बात करने की कोशिश कर रही थी, बस तुरंत ही रुक गए। बस रोकने के बाद में बस इतनी स्पीड में भगाया जैसे दीदी थोड़ा साइड में, बस दीदी फिर ऐसे रोकने को से बहुत उन गिर गई दीदी ने, पर यहाँ चोट खा गई। मेरे दुकान पे कस्टमर बैठे वो भी वीडियो बनाए।
7: कार और कार चलाने वाले शहनवाज को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन बाद में कहानी कुछ और ही निकलती है। कार के भीतर गाड़ी चला रहे शख्स का नाम शहनवाज है और जिस लड़की को इसने टक्कर मारी उसका नाम अनामिका है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सोशल मीडिया पर अनामिका के दो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें वो आरोपी शहनवाज के साथ एक कार में बैठी नजर आ रही है और वो खुद बता रही है कैसे दोनों की मुलाकात हुई।
9: ये मैं हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक। कली क्यों है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है। हमारे बीच में ये हुआ है, हमसे हमें छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम छोड़ नहीं रहे। हमने इससे बोला कि 1 से 2 महीने का मुझे टाइम दो, मैं अपने आप छोड़ दूंगी, अगर ना छोड़ा तो तुम मुझे खुद छोड़ देना बस।
10: कल मैं टकला बनवा लूंगा।
9: तुम ये चाहे टकला बनवा ले, चाहे लंगड़ा बनवा ले, चाहे एक आंख फूट जाए तब भी हम इसके साथ रहेंगे।
10: पहचान में
9: आए या ना आए तब भी हम इसके साथ रहेंगे। अब और मैं गई थी इसके पास, इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने नंबर मांगा था, हमने जबरदस्ती नंबर लिया था फोन से निकाल के इसके, मैंने इसे मारा था, तोड़ा था, तब नंबर इसने दिया था। तभी हमारे साथ रिलेशनशिप में आया था, डर गया था बेचारा कि बहुत मारेगी अगर हमसे बात ना की।
7: आज तक ने अनामिका से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, हम आपको अनामिका का पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अनामिका ने पुलिस को बताया कि आरोपी शहनवाज ने उससे अपना असली नाम छुपाकर दोस्ती की थी। शहनवाज ने अपना नाम यश ठाकुर बताया था।
11: गाड़ी उस व्यक्ति की नहीं थी, उस व्यक्ति ने जो भी झूठ वूठ बोला है, जो मुझे प्राइमा फेसी पता चला है, तो इसकी हम लोग जांच करवाएंगे। और इसके पीछे भी अगर कोई गुट शामिल है जो धर्मांतरण करा रहा है, या कोई इस प्रकार के लोग हैं जहां पर हिंदू लड़कियां टारगेट हो रही हैं, तो उनका भी पर्दाफाश होगा।
7: वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
12: ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल गिरोह हो सकता है। जिस तरह से जमालुद्दीन छांगुर बाबा जैसा व्यक्ति हजारों हिंदू बेटियों को शिकार बनाया, निकाह कराया, धर्मांतरण कराया, चाहे पैसा देकर कराया, चाहे जबरन कराया, तो ऐसी स्थिति में आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डीसीपी पूर्वी कार्यालय पर आज मैडम को मैं ये ज्ञापन देने आया था। ज्ञापन का प्रक्रिया क्या है कि उच्च स्तरीय जाँच हो।
7: 16 सितंबर को जनेश्वर मिश्र पार्क के पास अनामिका चाय पीने पहुंची थी। इसी दौरान शहनवाज भी एक दूसरी महिला मित्र के साथ कार से वहां पहुंचा। दूसरी युवती को शहनवाज के साथ देखकर अनामिका भड़क गई और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद शहनवाज वहां से कार लेकर निकलने लगा। शहनवाज जब कार लेकर जाने लगा तो अनामिका उसकी कार के सामने खड़ी हो गई। आरोप है कि शहनवाज ने कार आगे बढ़ा दी, इससे अनामिका कार के बोनट पर आ गई, जिसके बाद शहनवाज ने कार की स्पीड बढ़ा दी और अनामिका को घसीटते हुए चला गया। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: आज तक ने पीड़ित लड़की से खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं उसने क्या कहा।
9: इनके साथ में दो लड़कियां भी थी, यहाँ तक चाय पी रही थी। ये बहुत टाइम से मेरे साथ रिलेशनशिप में था, ठीक है, तो मतलब दो लड़कियां थी। मैंने इससे पूछना चाहे कि वो लड़कियां कौन है, इतने में ही मुझसे चिल्लाने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये वो सब बोलने लगा, ठीक है। फिर इसका दोस्त तो ये दानिश, दोनों जो थे ना वो कार में बैठ गए आके, ठीक है। और मतलब जो लड़कियां तो थी दोनों, वो अलग पीछे वाले गेट से वो उधर चली गई, ठीक है। दोनों आए तो मुझसे मतलब चिल्लाने लगा, मैंने मतलब भागने लगे कार लेके, तो मैं सामने से इसे रोकना चाहूं कि मुझे बता के जाओ, ये रुका नहीं। उसके बाद ही मुझसे गाड़ी चढ़ा के मेरे ऊपर से, और फिर मेरा हाथ शीशे की तरफ इसने मुझे बुलाया, हाथ में अभी भी चोट है, स्वेलिंग भी है, देख लीजिए आप सब लोग, हाँ निशान पड़ा है। शीशे में मेरा पूरा हाथ दब गया था, मैं ऐसे करके हाथ निकालना चाह रही थी लेकिन शीशा ऐसे करके लॉक था, वो निकल नहीं पा रहा था,
13: इसने फंसा लिया,
9: फंस गया था, ठीक है। तभी तो मैं घसटी हूँ, एकदम से घसीटते हुए ले गया, फिर अचानक से इसने शीशा ऐसे किया, तब मेरा हाथ निकला, तब हम गिर गए। इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, ये गाड़ी इनके दोस्त दानिश जो साथ में था, शहनवाज का दोस्त, उसने ये बोल के बोला है कि इसे आज मार दो, सामने से आया कुछ भी करे मार दो, वहाँ शीशे में दब गया, दबने दो, मार के चलो को मार दो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ ना, ये तो जानबूझ के गलती से होता, वो चीज अलग है, जानबूझ के मुझ पे चढ़ाई गई कार ना।
14: शहनवाज को आप जानती थी कि वो शहनवाज है? हम शुरुआत
9: नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम स्टार्टिंग में मिले थे, हम टोटल बता रहे हैं, हम जलबाग क्लब में मिले थे। यहाँ तक कि एक हमारा वीडियो वायरल हो गया जिसमें हम वो बोल रहे हैं,
14: इसमें एक हम वीडियो बात करें, इसमें आप कह रहे हैं कि हम
9: दो वीडियो वायरल हुए हैं, एक इन्होंने और रिसेंटली डाला, वो इनके दोस्त ने शरीफ ने वायरल करवाया। शरीफ को मैंने भाई बोला था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, बहन को भी चीट कर सकते हैं, ठीक है।
14: वीडियो में जैसे आप कह रही हैं कि जो है हम हमारी गलती नहीं, हम ब्रेकअप करेंगे, क्या ये सब बता रहे हैं?
9: ये सब इन लोगों ने जबरदस्ती करवाया था, मेरी दोस्त भी उस दिन साथ में थी, ठीक है। आप
14: वीडियो जबरदस्ती बना
9: उसके एक दिन पहले इन्होंने मुझे बहुत मारा था इनका, और वो भी इन्होंने हम तुम बंटी देखा है आपने, डीलअप के पास हुआ वहां पे भी मुझे मारा, मेरे ईट उठाने की कोशिश की, माने आप चाहे तो सीसीटीवी कैमरा 15 दिन हटा वहां होगा तो चेक करवा सकते हैं। डीलअप में मारा, सिक्योरिटी पूरी आ गई थी, इन लोगों ने बात दबा दी कि कुछ नहीं हुआ, आपस में लड़ाई हुई है, पेट पे मेरे लाते मारे, उसके पहले एक बार नहीं शहनवाज ने मुझे मारे, बहुत टाइम इनका दोस्त था एक आशीष गौतम, उसके सामने ये मार रहे थे मुझे,
14: मारते भी था आपको
9: बहुत, तीन ऐसा नहीं है, तीन चार बार मारा है, लेकिन मैं कब तक बर्दाश्त कर गया बताओ, जब मुझे पूरी उस दिन मारने की कोशिश की तब मैं बात बोल रहे हैं।
14: सवाल ये था कि क्या आपको मालूम था ये शहनवाज हैं?
9: नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम था, जब हम स्टार्टिंग में जलबा क्लब में इन्होंने जो वीडियो वायरल हुआ वही बता रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ कि मैं इनसे जबरदस्ती नंबर मैंने लिया था, मारा था, हम मेरी इतनी हिम्मत है इतनी पब्लिक में उस लड़के को मार के मैं जबरदस्ती फोन से नंबर ले सकती हूँ, आप सोचिए, आप बताइए ना, मुझे नहीं ले सकती हूँ ना, नंबर इन्होंने मुझे भी नहीं दिया था,
14: वीडियो उसने बनवाया था,
9: जी, ये मेरी बुआ जी को नंबर दिया था, उसके पहले आशीष गौतम के सामने मारा था, तब हम लोग अलग आ गए थे कार में, तब इन्होंने वीडियो बनवाया था कि बनाओ, क्योंकि हमने इनसे बोला था हम कंप्लेन करेंगे, इतना मारा ही था मुझे कि मैं बिल्कुल होश में, मेरे यहाँ पे नीला नीला हाथ में सब पड़ा था, वो भी हम लोगों की बात स्टार्ट हुई, हमसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा, हमने कहा मुस्कान सिंह, तो इन्होंने बोला मैं भी ठाकुर हूँ, अब ये नहीं बताया था कि मैं लखनऊ से हूँ, ठीक है, मैं कहीं भी कसम खाने के लिए तैयार हूँ, अपनी कसम, इन्होंने ये नहीं बताया था कि मैं लखनऊ से हूँ, इन्होंने ये बताया था मैं आजमगढ़ से हूँ, मैं भी ठाकुर हूँ, आयुष नाम बताया था, ठीक है, चलो कोई नहीं, तो हम बात करते रहे, नॉर्मल हमारी मिलना जुलना होने लगा, ठीक है, बात होती रही, उसके कुछ टाइम बाद मुझे ये पता चला, वो भी इन्होंने बताया था, मैंने इनका इंस्टाग्राम चेक किया था, तब उस पर दूसरा नाम आया,
14: तब आप शॉक्ड हो गए,
9: मैं फिर भी हमारे बीच में लड़ाई हुई, ठीक है, उस लड़ाई ठीक हो गया, चलो ठीक है भाई, इतने तो हम मतलब बात होती रही, ठीक है नॉर्मल, उसके बाद ये चीजें अभी 2-3 महीने से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो गए, ये मुझे ब्लॉक कर देते हैं, चलो आपने जैसे शरीफ बोल रहे हैं कि 3 महीने पहले वो छोड़ना चाहता था, इन्होंने जबरदस्ती रह रही थी, जबरदस्ती नहीं रह रहे थे, जबरदस्ती अगर रखना चाहते अभी भी रख सकते थे ना, हम जबरदस्ती रख रहे थे, ज्यादातर इनकी भी जितनी भी दोस्त है जब भी मैंने देखा सब हिंदू है, कोई ठाकुर है कोई पंडित है।
14: ओके, तो ये अपना नाम क्या,
9: फोन होगा पास में, चेक कर लीजिए, सब सब प्रूफ मिल जाएंगे आपको,
14: तो ये अपने प्रोफाइल और नाम अलग बना के रखते हैं क्या,
9: नाम प्रोफाइल तो इनके इंस्टाग्राम पे है नहीं, फेसबुक का मुझे पता नहीं है, नाम जो मुझे स्टार्टिंग में बताया मुझे अपना खुद का पता है, उनका नहीं पता, बताते या नहीं बताते, और हमें ये डर है कि इनकी बेल होगी तो उसके बाद भी हम पे कुछ करे ना, मुझे अब बहुत डर लग रहा है,
14: आप चाहती क्या क्या हो इस पूरे मामले में,
9: इसके मामले में जितने मुझे जख्म आए भाई, हम तो यही चाहेंगे कि हमें भाई, हमें पब्लिक जो देख रही है ना, उनको जो गलत बताया जा रहा है, पब्लिक को यही मैं बताना चाहूंगी कि मैं हमेशा लड़कियां गलत नहीं होती हैं, ठीक है, मेरे साथ अभी जुआ दूसरी लड़की के साथ हो गया, जो लड़कियां कमेंट करें क्या पता उनके साथ भी हो, तब क्या करेंगी वो, तब अपने लिए लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये लोग मेरे वीडियो इसलिए वायरल कर रहे हैं कि मैं वो सब देख के डर जाऊं, वो चुप हो जाऊं।
13: और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे महाराष्ट्र के नासिक में अजीब और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आवारा कुत्तों से परेशान लोगों ने पंचायत के चीफ ऑफिसर के दफ्तर पर धावा बोला और कुत्तों को ऑफिसर की टेबल पर छोड़ दिया।
15: यह है महाराष्ट्र के नासिक में पंचायत कार्यालय के मुख्य अधिकारी का दफ्तर। अचानक मुख्य अधिकारी के दफ्तर में शिवसेना यूबीटी की युवा सेना के कार्यकर्ता 3 बोरियां लेकर धावा बोलते हैं। मुख्य अधिकारी अपनी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहे होते हैं, तभी युवा सेना के कार्यकर्ता बोरियां उठाकर टेबल पर खोलते हैं, तो उसमें से निकलते हैं कुत्ते, और ये देखिए कैसे कुत्ते टेबल पर दौड़ने लगते हैं। पंचायत कार्यालय के मुख्य अधिकारी हैरत में पड़ जाते हैं, आखिर ये है क्या, और कुत्ते टेबल पर कोने में जाकर फाइलों पर बैठ जाते हैं। फिर सब कुछ क्लियर होता है। जी हां, नासिक में आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ शिवसेना यूबीटी की युवा सेना का ये बड़ा ही अनोखा विरोध प्रदर्शन था, जिसमें 2 आवारा कुत्ते बोरियों में कैद करके मुख्य अधिकारी की बेस पर छोड़ दिए जाते हैं। शिवसेना यूबीटी की युवा सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि बार बार आवारा कुत्तों के आतंक की शिकायत करने पर भी प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा था, और जब कई बार शिकायत दर्ज कराने पर भी उनकी बातें नहीं सुनी गईं, तो मुख्य अधिकारी के दफ्तर में ही उनकी मेज पर आवारा कुत्ते छोड़ दिए गए।
16: आज निपड शहरामध्ये जर तुम्ही बघितलं प्रत्येक गावात गल्लीत असेल प्रत्येक चौका चौकामध्ये मोकट कुत्र्यांचा इतका सुसवाड झालेला आहे। 6 महिन्यापासून मुख्य अधिकाऱ्यांना सांगतोय, धीरज भांबरे त्यांचं नाव आहे, 6 महिन्यापासून सांगतोय की असं असं मोकट कुत्र्यांचा प्रश्न आहे, तुम्ही मनावर घ्या। अनेक लहान बालकांना चावा घेतलाय, अनेक लोकांवर महिलांवर धावून आलेले, मोकट कुत्र्यांची परिस्थिती त्यांना दाखवली, तिथले फोटो टाकले, वारंवार सांगितलं, पण मला वाटतं लातो की भूतबातो से नाही मानते। आज आम्ही त्याचा निषेध म्हणून इथं 4 कुत्रे त्यांच्या टेबलवर सोडले, त्याचप्रमाणे ते कुत्रे त्यांच्या टेबलवर बसवले।
15: लोगों का दावा है कि आवारा कुत्तों की आबादी लगातार बढ़ रही है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा आवारा कुत्तों ने कई लोगों को काटा है, और प्रशासन ने बार बार शिकायत करने पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब मुख्य अधिकारी के दफ्तर में इस तरह से कुत्ते छोड़ने पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, और सरकारी काम में रुकावट डालने, कर्मचारियों पर हमला करने और दंगा करने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। प्रवीण बी ठाकरे, नासिक, आज तक।
13: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ। पंचायत आज तक 18 सितंबर, सिर्फ आज तक पर।

प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में दीपोत्सव। काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए, प्रधानमंत्री ने जताया आभार। बंगाल उपचुनाव से पहले ममता और ऋतव्रत गुट को झटका, चुनाव आयोग ने टीएमसी के निशान और नाम के इस्तेमाल पर लगाई रोक, दोनों से कल तक मांगे गए तीन तीन विकल्प। यूपी में हाईवे को लेकर अखिलेश ने सीएम योगी को घेरा, कहा बीजेपी सरकार में निर्माण बाद में पूरा होता है लेकिन गिरने वो पहले लगता है, बोले अब वो हर लेन देन पर लेंगे टैक्स। 100% टैरिफ वाले अमेरिकी कानून पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध, अलग अलग स्रोतों से जारी रहेगी ऊर्जा खरीद। और टी20 में अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान, महज 30 गेंद में जड़ा शतक, टेस्ट खेलने वाले देशों में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड, भारत ने 127 रन से जीता मैच। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन पूरे धूमधाम से उनका मनाया गया, आशीर्वाद का कार्यक्रम रखा गया, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर सीएम योगी समेत दिग्गज नेताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न।

0: प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न। कहीं केक काटा गया, कहीं दिए जलाए गए। आशीर्वाद का दिया नाम से देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम हुए। वाराणसी में भी गंगा तट पर दीपोत्सव किया गया।
1: नमो घाट पर हूँ, एक तरफ पतित पावनी माँ गंगा है जो मेरे सामने तेज प्रवाह में बह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है आज माहौल बनारस में अयोध्या जैसा है, क्योंकि ये जो दिए हैं ना, ये दिए यहाँ पर लग गए हैं, असंख्यों दिए जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर लाए गए हैं, लगाए गए हैं, और बच्चों ने बकायदा काफी मेहनत की है इन दियों को यहाँ बिछाने के लिए। वाइड फ्रेम यहाँ से दिखाएं एक बार और पूरा दर्शकों को यहाँ से दिखाएं कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पर नमो घाट पर दिए लगा दिए गए हैं।
0: उज्जैन समेत पूरे मध्य प्रदेश में आज दीपोत्सव की रोशनी बिखरी हुई है। महाकाल की नगरी में शिप्रा के राम घाट, दत्त अखाड़ा घाट और महाकाल लोक में 25 लाख दीप जलाए गए।
2: महाकाल की इस पवित्र नगरी से प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की, दीर्घायु होने की कामना पूरा महाकाल के हमारे सभी लोग कर रहे हैं, यहाँ के नागरिक कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पवित्र तट से माननीय प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की कामना की जा रही है। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से करोड़ों लोगों के जीवन में जो बदलाव लाया, और इस तट की बात करें तो 800 करोड़ की अधिक सी योजना महाकाल कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री जी ने किया, जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म बढ़ा, आज यहाँ पर लोग का व्यवसाय बढ़ा है, उनके जीवन में उनके बदलाव आए।
0: इसके अलावा श्रीनगर, कोलकाता और पटना में भी भव्य दीपोत्सव हुआ, और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भी 1 लाख दिए जलाए गए।
3: लगभग 1.5 लाख दिए एक समय पर जलाए जा रहे हैं, और ये जो प्रज्वलित दिए हैं जो आपको दूर तक नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे दिए इसीलिए जलाए गए हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक वादा किया था आज से 12 साल पहले, और लोगों से जो वादा किया था गुजरात के लोगों से आज से 25 साल पहले, उसको उन्होंने पूरा किया है। देखिए, हम लोग जब खुश होते हैं, जब हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसका कारण यही है कि हम बताते हैं कि किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, तो किस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ये दिए जो हैं इस समय उसी का सिंबल है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। पूरे विधि विधान से पूजन का अनुष्ठान हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, चिराग पासवान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस पूजा अर्चना में शामिल हुए।
4: सब लोग यहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए काशी विश्वनाथ का आए थे, और विधिवत पूजा अर्चन का कार्य संपन्न हुआ है, और हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वह दीर्घायु करें।
5: बाबा से ही प्रार्थना की है कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु उन्हें प्राप्त हो और लंबे समय तक भारत का नेतृत्व उनके हाथों में रहे, जिससे भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विकसित भारत की संकल्पना उनके नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी देख सके।
0: राजनाथ सिंह ने वाराणसी से बाइक रैली को भी झंडी दिखाई, जो वाराणसी से वडनगर के लिए रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मभूमि वडनगर में सेवा संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। अमित शाह ने वडनगर में बाइक रैली को झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की, जो कि वाराणसी तक जाएगी।
6: 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 26 में 140 करोड़ भारतीय ये उत्साह और संकल्प के साथ, एक आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में समग्र विश्व में भारत सर्वप्रथम होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता का सामूहिक आत्मविश्वास खड़ा करना ये किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी कसौटी है, और वो भी तब जब जनता गहरी निराशा में डूबी हो। उन्होंने गहरी निराशा के गर्त से जनता को बाहर निकालकर नरेंद्र मोदी जी ने जनता को आत्मविश्वास से लवरेज कर 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत की यात्रा के साथ जोड़ने का काम किया।
0: उधर दिल्ली में इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने रक्तदान किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इसमें शामिल हुए। दिल्ली सरकार के मंत्री और सीएम रेखा गुप्ता ने भी रक्तदान किया।
7: प्रधानमंत्री जी का ये जन्म दिवस हम सबको जन सेवा की प्रेरणा देता है और दिल्ली सरकार उनके दिखाए हुए रास्ते पर उनके मार्गदर्शन में हमेशा आगे बढ़ते हुए इस काम को करेगी। आज हम मोदी जी को समर्पित करते हुए हमारे स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए हुए एक बर्थडे सॉन्ग, एक गीत का भी लॉन्चिंग करेंगे।
0: कुल मिलाकर 17 सितंबर का दिन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के जश्न के नाम रहा। आज तक ब्यूरो।
3: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान 19 सितंबर को आदित्य ठाकरे के घर मातोश्री जाकर उन्हें मानहानि का नोटिस खुद सौंपेंगे। साथ ही साथ उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर अपने और अपनी कानूनी टीम के लिए वहां जाते समय पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है।

0: दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री पर सियासत हावी होती जा रही है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 500 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में दोनों नेताओं के बयानों पर आपत्ति जताई गई है। सतीश सालियान ने दोनों को बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने, बयान वापस लेने, लिखित माफी मांगकर उसे प्रिंट मीडिया में छपवाने, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 3 मिनट का माफीनामा वीडियो जारी करने की मांग की है।
1: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान जी की तरफ से आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख को डिफामेशन का नोटिस दिया गया है। ये अलग डिफामेशन का नोटिस है, उन्होंने जो पोस्ट किए उसके लिए एक और एडिशनल नोटिस दिया जा रहा है। तो ये जो नोटिस है, ये उन्होंने मैटर वही है, सिमिलर। उन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट पे कहा था कि सतीश सालियान के पिताजी ने पिटीशन गलत फाइल की है और ऑलरेडी इस मैटर में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके उनको क्लीन चिट दी है, लेकिन राजकीय हेतु से प्रेरित होकर और पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ मीडिया के लोग जिनके इनके ये संबंध ठीक नहीं है उनके इशारे पे ये पिटीशन फाइल की गई है।
0: दिशा के पिता ने 500 करोड़ के मानहानि के नोटिस में लिखा, आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख ने मेरे बयानों और कानूनी कार्रवाई को लेकर झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप लगाए। दोनों नेताओं ने मेरी बेटी दिशा की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया। आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे हैं कि सीबीआई पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है। आदित्य कह रहे हैं कि वो दिशा को जानते ही नहीं थे, ये बात सच नहीं है। हमारे पास इन नेताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत है।
2: 17 पन्ने के इस लीगल नोटिस में कहा गया है कि नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख दोनों को ही एक अनकंडीशनल अपॉलोजी देनी है, और अनकंडीशनल अपॉलोजी किस तरीके की हो ये भी स्पेसिफाई किया गया है। अखबार में एडवर्टीजमेंट A4 साइज के होने चाहिए, 3 मिनट से कम के वीडियो के नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 500 करोड़ जो डिफेमेशन में है किया है, जिसकी वजह से जो इतनी बदनामी हुई है उसका हर्जाना ये 500 करोड़ भी दिए जाएं। तो ये तमाम बातें इन 17 पन्नों में लिखे हैं, और अब अनिल देशमुख और आदित्य ठाकरे दोनों के ही वकील ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर से डील कैसे किया जाए।
0: दरअसल 16 सितंबर को आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिशा मौत मिस्ट्री केस में सफाई देते हुए लिखा था, मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और ना ही उन्हें जानता हूँ। पिछले 6 सालों से कुछ लोग जानबूझकर और बिना किसी सबूत के इस दुखद मामले से मेरा नाम जोड़कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बदनाम करने का ये अभियान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जोरदार टीवी डिबेट और मीडिया ट्रायल से सच्चाई नहीं बदलती। इस केस की जांच दोबारा आगे बढ़ने दें।
1: और बाकी जो उन्होंने अभी जो नया पोस्ट किया है कि इन्वेस्टिगेशन शांतिपूर्ण तरीके से होने दो, मीडिया के लोग डिबेट ना करें, तो इसको कहते हैं चोर मचाए शोर। इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दिया, इन्होंने खुद उसके रिकॉर्ड डिलीट करवाए, इन्होंने खुद सतीश सालियान के पिटीशन को ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि सीबीआई को मैटर ना जाए, इसी और इन्हीं की वजह से डिले हुआ है ये सब। तो अभी वो तो हमने इनको खिलाफ लड़के सबूत दे के ये ऑर्डर लिया है, इनका सारा झूठ पकड़ा गया है, और अब यही खुद चिल्ला रहे और ये जो कह रहे हैं दिशा का मेरा संबंध नहीं है, हमारे पास में सारे डिजिटल प्रूफ्स आई विटनेस से लेके सारी चीजें हैं। ये दो चीजों का आज तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आप इस ड्रग्स के बिजनेस में ड्रग्स का बिजनेस करते हुए और खुद ड्रग्स का सेवन करते हुए ड्रगिस्ट हो, ये नारकोटिक्स ब्यूरो के क्राइम नंबर 15/2020 में आया, आपके फोन सर्विलेंस में आया, ये हमने एफिडेविट पे कहा, उसका आप जवाब नहीं दे पाए और उसको मना भी नहीं कर रहे हो, उसके बारे में बोलो, और आपके मोबाइल टावर लोकेशन वहां थे, और आपने जो पहला डिफेंस लिया था कि मैं उस दिन बाहर था, मेरे नाना जी गुजर गए थे 8 जून को, मुंबई से बाहर था, वो भी झूठा साबित हो गया, नाना जी 14 जून को गुजरे थे। उसके बाद में आपने कहा इसकी जो आपकी मेन पार्टनर इन क्राइम है इसमें रिया चक्रवर्ती, बोले मैं उसको जानता नहीं, रिया ने कहा मैं आपको नहीं जानती, ये भी फोरेंसिक की चैट रिकवरी में ये भी झूठा साबित हो गया। उस तो आप हैबिचुअल झूठ बोलने वाले हो।
0: दिशा सालियान के पिता 6 साल से कह रहे हैं कि उनकी बेटी दिशा की गैंगरेप के बाद हत्या हुई थी। वो आदित्य ठाकरे समेत कई पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं।
3: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनू मौर्या, सुरेश पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने हैं, कंप्लेंट दिया है।
0: हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को सतीश सालियान के आरोपों की कार्रवाई करने को कहा है। बीजेपी विधायक राम कदम भी लगातार तत्कालीन उद्धव सरकार की भूमिका संदिग्ध बताते रहे हैं।
4: दिशा सालियान की मौत, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष से ऊपर उठ करके है। श्रीमान आदित्य ठाकरे को 6.5 वर्ष लग गए ये बोलने के लिए कि उनका इस मामले में कोई संबंध नहीं है। इसके पहले उनकी खामोशी का क्या कारण था? किसने उन्हें रोका था? उनके पिता तो लगातार बार बार आरोप कर रहे थे, तब आप क्यों नहीं बोले? और कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का था? क्या कारण था कि आपकी सरकार पुलिस को जांच करने से क्यों रोक रही थी? और यदि पुलिस जांच नहीं कर रही है तो आपकी सरकार ने पुलिस से क्यों नहीं कहा उस पिता को न्याय मिलना चाहिए?
0: दिशा सालियान की मौत की शुरुआती जांच मुंबई पुलिस ने की थी। पुलिस की जांच में दिशा की मौत को आत्महत्या बताया गया था। मार्च 2025 में सामने आई मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में भी दिशा की मौत को सुसाइड बताते हुए उनकी मानसिक परेशानी का जिक्र किया गया था। लेकिन सवाल है कि क्या सीबीआई दिशा सालियान की मौत की गुत्थी सुलझाने में कामयाब हो पाएगी?
5: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने अपने वकील अपने एडवोकेट द्वारा मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक पत्र द्वारा सिक्योरिटी मांगी है। ये सिक्योरिटी इसलिए मांगी है क्योंकि उनका कहना है कि आदित्य ठाकरे शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे पर जो वो मानहानि का नोटिस उन्हें देने जा रहे हैं, 500 करोड़ का ये मानहानि का नोटिस है, डिफेमेशन नोटिस है, वो बाय हैंड डिलीवर करना चाहते हैं। इसीलिए 19 सितंबर को वो आदित्य ठाकरे के घर मातोश्री बैंड्रा जाएंगे और उन्होंने एडिक्वेट सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी की मांग की है पुलिस द्वारा।
0: विद्या के साथ दिव्यक्ष सिंह, मुंबई आज तक।
6: और अब आपको दिखाते हैं द लखनऊ स्टोरी, कैसे एक लड़की को कार के बोनट पर घसीटते हुए वीडियो वायरल हुआ, तो अब कहानी पूरी तरह से परत दर परत खुलती जा रही है। पीड़ित लड़की का आरोप यह है कि शहनवाज नाम के लड़के ने पहले यश ठाकुर बनकर उससे दोस्ती की, उसके बाद विवाद होने पर शहनवाज ने लड़की को कार से घसीटा। अब इसमें हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो चुकी है जो इसे लव जिहाद बता रहे हैं और तगड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं।
7: लखनऊ से आई ये तस्वीरें देश भर में वायरल हो जाती हैं, जिसमें सफेद रंग की ये वर्ना कार एक महिला को बोनट के आगे घसीटते हुए दिखाई देती है। वीडियो में कार का नंबर साफ दिखता है, UP 32 KH 8090। आज तक के कैमरे पर आकाश नाम के चश्मदीद ने इस पूरी घटना की गवाही दी।
8: दीदी मतलब कि उसके ऊपर ऐसे रुक गई, रोक रोकने की कोशिश कर रही थी, तो उसने नहीं रोका, फिर यहाँ यही मेरी दुकान के सामने रोका, ठीक है। रोकने के बाद में फिर आगे रुकते रोकते वहाँ रुक गई दीदी, फिर वहाँ रुकी और दीदी बस जैसे साइड से मतलब बात करने की कोशिश कर रही थी, बस तुरंत ही रुक गए। बस रोकने के बाद में बस इतनी स्पीड में भगाया जैसे दीदी थोड़ा साइड में, बस दीदी फिर ऐसे रोकने की कोशिश, बहुत गिर गई दीदी ने, पर यहाँ चोट खा गई। मेरे दुकान पे कस्टमर बैठे वो भी वीडियो बनाए।
7: कार और कार चलाने वाले शहनवाज को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन बाद में कहानी कुछ और ही निकलती है। कार के भीतर गाड़ी चला रहे शख्स का नाम शहनवाज है और जिस लड़की को इसने टक्कर मारी उसका नाम अनामिका है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सोशल मीडिया पर अनामिका के दो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें वो आरोपी शहनवाज के साथ एक कार में बैठी नजर आ रही है और वो खुद बता रही है कैसे दोनों की मुलाकात हुई।
9: ये मैं हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है।
10: ठीक,
9: कली क्यों है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है। हमारे बीच में ये हुआ है, हमें छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम छोड़ नहीं रहे। हमने इससे बोला कि 1 से 2 महीने का मुझे टाइम दो, मैं अपने आप छोड़ दूंगी, अगर ना छोड़ा तो तुम मुझे खुद छोड़ देना बस।
10: कल मैं टकला बनवा लूंगा।
9: तुम ये चाहे टकला बनवा ले, चाहे लंगड़ा बनवा ले, चाहे एक आंख फूट जाए, तब भी हम इसके साथ रहेंगे।
10: पहचान में
9: आए या ना आए तब भी हम इसके साथ रहेंगे। अब और मैं गई थी इसके पास, इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने नंबर मांगा था, हमने जबरदस्ती नंबर लिया था फोन से निकाल के इसके, मैंने इसे मारा था, तोड़ा था, तब नंबर इसने दिया था, तब हमारे साथ रिलेशनशिप में आया था, डर गया था बेचारा कि बहुत मारेगी अगर हमसे बात ना की।
7: आज तक ने अनामिका से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, हम आपको अनामिका का पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अनामिका ने पुलिस को बताया कि आरोपी शहनवाज ने उससे अपना असली नाम छुपाकर दोस्ती की थी। शहनवाज ने अपना नाम यश ठाकुर बताया था।
11: गाड़ी उस व्यक्ति की नहीं थी, उस व्यक्ति ने जो भी झूठ वूट बोला है, जो मुझे प्राइमा फेसी पता चला है, तो इसकी हम लोग जांच करवाएंगे। और इसके पीछे भी अगर कोई गुट शामिल है जो धर्मांतरण करा रहा है, या कोई इस प्रकार के लोग हैं जहां पर हिंदू लड़कियां टारगेट हो रही हैं, तो उनका भी पर्दाफाश होगा।
7: वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।
12: ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल गिरोह हो सकता है, जिस तरह से जमालुद्दीन छांगुर बाबा जैसा व्यक्ति हजारों हिंदू बेटियों को शिकार बनाया, निकाह कराया, धर्मांतरण कराया, चाहे पैसा देकर कराया चाहे जबरन कराया। तो ऐसी स्थिति में आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डीसीपी पूर्वी कार्यालय पर आज मैडम को मैं ये ज्ञापन देने आया था। ज्ञापन का प्रक्रिया क्या है कि उच्च स्तरीय जाँच हो।
7: 16 सितंबर को जनेश्वर मिश्र पार्क के पास अनामिका चाय पीने पहुंची थी। इसी दौरान शहनवाज भी एक दूसरी महिला मित्र के साथ कार से वहां पहुंचा। दूसरी युवती को शहनवाज के साथ देखकर अनामिका भड़क गई और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद शहनवाज वहां से कार लेकर निकलने लगा। शहनवाज जब कार लेकर जाने लगा तो अनामिका उसकी कार के सामने खड़ी हो गई। आरोप है कि शहनवाज ने कार आगे बढ़ा दी, इससे अनामिका कार के बोनट पर आ गई, जिसके बाद शहनवाज ने कार की स्पीड बढ़ा दी और अनामिका को घसीटते हुए चला गया। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: आज तक ने पीड़ित लड़की से खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं उसने क्या कहा।
9: इनके साथ में दो लड़कियां भी थी, यहाँ तक चाय पी रही थी। ये बहुत टाइम से मेरे साथ रिलेशनशिप में था, ठीक है। तो मतलब दो लड़कियां थी, मैंने इससे पूछना चाहिए कि वो लड़कियां कौन है। इतने में ही मुझसे चिल्लाने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये वो सब बोलने लगा, ठीक है। फिर इसका दोस्त तो ये दानिश, दोनों जो थे ना वो कार में बैठ गए आके, ठीक है। और मतलब जो लड़कियां तो थी दोनों, वो अलग पीछे वाले गेट से वो उधर चली गई, ठीक है। दोनों आए तो मुझसे मतलब चिल्लाने लगा, मैंने मतलब भागने लगे कार लेके, तो मैं सामने से इसे रोकना चाहूं कि मुझे बता के जाओ। ये रुका नहीं, उसके बाद ही मुझसे गाड़ी चढ़ा के मेरे ऊपर से, और फिर मेरा हाथ शीशे की तरफ इसने मुझे बुलाया। हाथ में अभी भी चोट है, स्वेलिंग भी है, देख लीजिए आप सब लोग, हाँ निशान पड़ा है। शीशे में मेरा पूरा हाथ दब गया था, मैं ऐसे करके हाथ निकालना चाह रही थी लेकिन शीशा ऐसे करके लॉक था, वो निकल नहीं पा रहा था,
13: इसने फंसा लिया,
9: फंस गया था, ठीक है। तभी तो मैं घसटी हूँ, एकदम से घसीटते हुए ले गया, फिर अचानक से इसने शीशा ऐसे किया, तब मेरा हाथ निकला, तब हम गिर गए। इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, ये गाड़ी इनके दोस्त दानिश जो साथ में था, शहनवाज का दोस्त, उसने ये बोल के बोला है कि इसे आज मार दो, सामने से आए या कुछ भी करे मार दो, वहां शीशे में दब गया, दबने दो, मार के चलो को मार दो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ ना, ये तो जानबूझ के गलती से होता, वो चीज अलग है, जानबूझ के मुझ पे चढ़ाई का ना।
13: शहनवाज को आप जानती थी कि वो शहनवाज है? हम शुरुआत
9: नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम स्टार्टिंग में मिले थे, हम टोटल बता रहे, हम जलवा क्लब में मिले थे। यहाँ तक कि एक हमारा वीडियो वायरल हो गया जिसमें हम वो बोल रहे हैं,
13: इसमें एक हम वीडियो बात करें, इसमें आप कह रहे हैं कि हम
9: दो वीडियो वायरल हुए हैं, एक इन्होंने और रिसेंटली डाला, वो इनके दोस्त ने शरीफ ने वायरल करवाया। शरीफ को मैंने भाई बोला था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, बहन को भी चीट कर सकते हैं, ठीक है।
13: वीडियो में जैसे आप कह रही हैं कि जो है हम हमारी गलती नहीं, हम ब्रेकअप करें, क्या ये सब बता रहे हैं?
9: ये सब इन लोगों ने जबरदस्ती करवाया था, मेरी दोस्त भी उस दिन साथ में थी, ठीक है। आप
13: वीडियो जबरदस्ती बना
9: उसके एक दिन पहले इन्होंने मुझे बहुत मारा था इनका, और वो भी इन्होंने हम तुम बंटी देखा है आपने, डीलअप के पास वहां पे भी मुझे मारा, मेरे ईंट उठाने की कोशिश की, माने आप चाहे तो सीसीटीवी कैमरा 15 दिन में हटा, वहां होगा तो चेक करवा सकते हैं। डीलअप में मारा, सिक्योरिटी पूरी आ गई थी, इन लोगों ने बात दबा दी कि कुछ नहीं हुआ, आपस में लड़ाई हुई है, पेट पे मेरे लाते मारे, उसके पहले एक बार नहीं शहनवाज ने मुझे मारे, बहुत टाइम इनका दोस्त था एक आशीष गौतम, उसके सामने ये मार रहे थे मुझे,
13: मारते थे आपको
9: बहुत, तीन ऐसा नहीं है, तीन चार बार मारा है, लेकिन मैं कब तक बर्दाश्त कर गया बताओ, जब मुझे पूरी उस दिन मारने की कोशिश थी तब मैं बात बोल रहे हैं।
13: सवाल ये था कि क्या आपको मालूम था ये शहनवाज हैं?
9: नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम था, जब हम स्टार्टिंग में जलवा क्लब में इन्होंने जो वीडियो वायरल हुआ वही बता रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ कि मैं इनसे जबरदस्ती नंबर मैंने लिया था, मारा था, हम मेरी इतनी हिम्मत है इतनी पब्लिक में उस लड़के को मार के मैं जबरदस्ती फोन से नंबर ले सकती हूँ? आप सोचिए, आप बताइए ना, मुझे नहीं ले सकती हूँ ना, नंबर इन्होंने मुझे भी नहीं दिया था।
13: वीडियो उसने बनवाया था?
9: जी, ये मेरी बुआ जी को नंबर दिया था, उसके पहले आशीष गौतम के सामने मारा था, तब हम लोग अलग आ गए थे कार में, तब इन्होंने वीडियो बनवाया था कि बनाओ, क्योंकि हमने इनसे बोला था हम कंप्लेन करेंगे, इतना मारा ही था मुझे कि मैं बिल्कुल होश में, मेरे यहाँ पे नीला नीला हाथ में सब पड़ा था, वो भी ना, हम लोगों की बात स्टार्ट हुई, हमसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा, हमने कहा मुस्कान सिंह, तो इन्होंने बोला मैं भी ठाकुर हूँ, अब ये नहीं बताया था कि मैं लखनऊ से हूँ, ठीक है, मैं कहीं भी कसम खाने के लिए तैयार हूँ, अपनी कसम, इन्होंने ये नहीं बताया था कि मैं लखनऊ से हूँ, इन्होंने ये बताया था मैं आजमगढ़ से हूँ, मैं भी ठाकुर हूँ, आयुष नाम बताया था, ठीक है, चलो कोई नहीं, तो हम बात करते रहे, नॉर्मल हमारी मिलना जुलना होने लगा, ठीक है, बात होती रही, उसके कुछ टाइम बाद मुझे ये पता चला, वो भी इन्होंने बताया था, मैंने इनका इंस्टाग्राम चेक किया था, तब उस पे दूसरा नाम आया,
13: तब आप शॉक्ड हो गए,
9: मैं फिर भी हमारे बीच में लड़ाई हुई, ठीक है, उस लड़ाई ठीक हो गया, चलो ठीक है भाई, इतने तो हम मतलब बात होती रही, ठीक है, नॉर्मल, उसके बाद ये चीजें अभी 2-3 महीने से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो गए, ये मुझे ब्लॉक कर देते हैं, चलो आपने जैसे शरीफ बोल रहे हैं कि 3 महीने पहले वो छोड़ना चाहता था, इन्होंने जबरदस्ती रह रही थी, जबरदस्ती नहीं रह रहे थे, जबरदस्ती अगर रखना चाहते अभी भी रख सकते थे ना, हम जबरदस्ती रख रहे थे, ज्यादातर इनकी जितनी भी दोस्त है जब भी मैंने देखा सब हिंदू है, कोई ठाकुर है कोई पंडित है,
13: ओके, तो ये अपना नाम क्या,
9: फोन होगा पास में, चेक कर लीजिए, सब सब प्रूफ मिल जाएंगे आपको,
13: तो ये अपने प्रोफाइल और नाम अलग बना के रखते हैं क्या,
9: नाम प्रोफाइल तो इनके इंस्टाग्राम पे है नहीं, फेसबुक का मुझे पता नहीं है, नाम जो मुझे स्टार्टिंग में बताया मुझे अपना खुद का पता है, उनका नहीं पता, बताते या नहीं बताते, और हमें ये डर है कि इनकी बेल होगी तो उसके बाद भी हम पे कुछ करे ना, मुझे अब बहुत डर लग रहा है,
13: आप चाहती क्या क्या हो इस पूरे मामले में,
9: इसके मामले में जितने मुझे जख्म आए भाई, हम तो यही चाहेंगे कि हमें भाई, हमें पब्लिक जो देख रही है ना, उनको जो गलत बताया जा रहा है, पब्लिक को यही मैं बताना चाहूंगी कि मेरी हमेशा लड़कियां गलत नहीं होती हैं, ठीक है, मेरे साथ अभी जुआ हो, दूसरी लड़की के साथ हो गया, जो लड़कियां कमेंट करें क्या पता उनके साथ भी हो, तब क्या करेंगे वो, तब अपने लिए लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये लोग मेरे वीडियो इसलिए वायरल कर रहे हैं कि मैं वो सब देख के डर जाऊं, वो चुप हो जाऊं।
14: और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे महाराष्ट्र के नासिक में अजीब और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आवारा कुत्तों से परेशान लोगों ने पंचायत के चीफ ऑफिसर के दफ्तर पर धावा बोला और कुत्तों को ऑफिसर की टेबल पर छोड़ दिया।
7: ये है महाराष्ट्र के नासिक में पंचायत कार्यालय के मुख्य अधिकारी का दफ्तर। अचानक मुख्य अधिकारी के दफ्तर में शिवसेना यूबीटी की युवा सेना के कार्यकर्ता 3 बोरियां लेकर धावा बोलते हैं। मुख्य अधिकारी अपनी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहे होते हैं, तभी युवा सेना के कार्यकर्ता बोरियां उठाकर टेबल पर खोलते हैं, तो उसमें से निकलते हैं कुत्ते, और ये देखिए कैसे कुत्ते टेबल पर दौड़ने लगते हैं। पंचायत

0: क्लियर होता है। जी हां, नासिक में आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ शिवसेना यूबीटी की युवा सेना का ये बड़ा ही अनोखा विरोध प्रदर्शन था, जिसमें दो आवारा कुत्ते बोरियों में कैद करके मुख्य अधिकारी की बेस पर छोड़ दिए जाते हैं। शिवसेना यूबीटी की युवा सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि बार बार आवारा कुत्तों के आतंक की शिकायत करने पर भी प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा था, और जब कई बार शिकायत दर्ज कराने पर भी उनकी बातें नहीं सुनी गईं, तो मुख्य अधिकारी के दफ्तर में ही उनकी मेज पर आवारा कुत्ते छोड़ दिए गए।
1: आज निपाड़ी शहरा मध्ये जर तुम्ही बघितलं, प्रत्येक गावात गल्लीत असेल, प्रत्येक चौका चौका मध्ये मोकट कुत्र्यांचा इतका सुळसुळाट झालेला आहे। सहा महिन्यापासून मुख्य अधिकाऱ्यांना सांगतोय, धीरज भांबरे त्यांचं नाव आहे, सहा महिन्यापासून सांगतोय की असं असं मोकट कुत्र्यांचा प्रश्न आहे, तुम्ही मनावर घ्या। अनेक लहान बालकांना चावा घेतलाय, अनेक लोकांवर महिलांवर धावून आलेले, मोकट कुत्र्यांची परिस्थिती त्यांना दाखवली, तिथले फोटो टाकले, वारंवार सांगितलं, पण मला वाटतं लातो की भूतबातो सिने मानते। आज आम्ही त्याचा निषेध म्हणून इथं चार कुत्रे त्यांच्या टेबलवर सोडले, त्याचप्रमाणे ते कुत्रे त्यांच्या टेबलवर बसवले।
0: लोगों का दावा है कि आवारा कुत्तों की आबादी लगातार बढ़ रही है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा, आवारा कुत्तों ने कई लोगों को काटा है और प्रशासन ने बार बार शिकायत करने पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब मुख्य अधिकारी के दफ्तर में इस तरह से कुत्ते छोड़ने पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, और सरकारी काम में रुकावट डालने, कर्मचारियों पर हमला करने और दंगा करने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। प्रवीण बी ठाकरे, नासिक आज तक।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ। पंचायत आज तक 18 सितंबर, सिर्फ आज तक पर।

प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में दीपोत्सव। काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए। प्रधानमंत्री ने जताया आभार। बंगाल उपचुनाव से पहले ममता और ऋतव्रत गुट को झटका। चुनाव आयोग ने टीएमसी के निशान और नाम के इस्तेमाल पर लगाई रोक। दोनों से कल तक मांगे गए तीन तीन विकल्प। यूपी में हाईवे को लेकर अखिलेश ने सीएम योगी को घेरा। कहा बीजेपी सरकार में निर्माण बाद में पूरा होता है लेकिन गिरने वो पहले लगता है। बोले अब वो हर लेन देन पर लेंगे टैक्स। 100% टैरिफ वाले अमेरिकी कानून पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध। अलग अलग स्रोतों से जारी रहेगी ऊर्जा खरीद। और टी20 में अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान। महज 30 गेंद में जड़ा शतक। टेस्ट खेलने वाले देशों में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड। भारत ने 127 रन से जीता मैच। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन पूरे धूमधाम से उनका मनाया गया। आशीर्वाद का कार्यक्रम रखा गया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर सीएम योगी समेत दिग्गज नेताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न।

0: दिन का जोरदार जश्न। कहीं केक काटा गया, कहीं दिए जलाए गए। आशीर्वाद का दिया नाम से देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम हुए। वाराणसी में भी गंगा तट पर दीपोत्सव किया गया।
1: नमो घाट पर हूँ, एक तरफ पतित पावनी माँ गंगा है जो मेरे सामने तेज प्रवाह में बह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है आज माहौल बनारस में अयोध्या जैसा है, क्योंकि ये जो दिए हैं ना, ये दिए यहाँ पर लग गए हैं, असंख्यों दिए जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर लाए गए हैं, लगाए गए हैं, और बच्चों ने बकायदा काफी मेहनत की है इन दियों को यहाँ बिछाने के लिए। वाइड फ्रेम यहाँ से दिखाएं एक बार और पूरा दर्शकों को यहाँ से दिखाएं कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पर नमो घाट पर दिए लगा दिए गए हैं।
0: उज्जैन समेत पूरे मध्य प्रदेश में आज दीपोत्सव की रोशनी बिखरी हुई है। महाकाल की नगरी में शिप्रा के राम घाट, दत्त अखाड़ा घाट और महाकाल लोक में 25 लाख दीप जलाए गए।
2: महाकाल की इस पवित्र नगरी से प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की, दीर्घायु होने की कामना पूरा महाकाल के हमारे सभी लोग कर रहे हैं, यहाँ के नागरिक कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पवित्र तट से माननीय प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की कामना की जा रही है। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से करोड़ों लोगों के जीवन में जो बदलाव लाया, और इस तट की बात करें तो 800 करोड़ की अधिक सी योजना महाकाल कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री जी ने किया, जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म बढ़ा, आज यहाँ पर लोग का व्यवसाय बढ़ा है, उनके जीवन में उनके बदलाव आए हैं।
0: इसके अलावा श्रीनगर, कोलकाता और पटना में भी भव्य दीपोत्सव हुआ। और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भी 1 लाख दिए जलाए गए।
3: लगभग 1.5 लाख दिए एक समय पर जलाए जा रहे हैं, और ये जो प्रज्वलित दिए हैं जो आपको दूर तक नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे दिए इसीलिए जलाए गए हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक वादा किया था आज से 12 साल पहले, और लोगों से जो वादा किया था गुजरात के लोगों से आज से 25 साल पहले, उसको उन्होंने पूरा किया है। देखिए, हम लोग जब खुश होते हैं, जब हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसका कारण यही है कि हम बताते हैं कि किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, तो किस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ये दिए जो हैं इस समय उसी का सिंबल है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। पूरे विधि विधान से पूजन का अनुष्ठान हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, चिराग पासवान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस पूजा अर्चना में शामिल हुए।
4: सब लोग यहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए काशी विश्वनाथ का आए थे और विधिवत पूजा अर्चन का कार्य संपन्न हुआ है, और हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वह दीर्घायु करें।
5: बाबा से ही प्रार्थना की है कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु उन्हें प्राप्त हो और लंबे समय तक भारत का नेतृत्व उनके हाथों में रहे, जिससे भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विकसित भारत की संकल्पना उनके नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी देख सकें।
0: राजनाथ सिंह ने वाराणसी से बाइक रैली को भी झंडी दिखाई, जो वाराणसी से वडनगर के लिए रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मभूमि वडनगर में सेवा संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। अमित शाह ने वडनगर में बाइक रैली को झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की, जो कि वाराणसी तक जाएगी।
6: 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 26 में 140 करोड़ भारतीय ये उत्साह और संकल्प के साथ, एक आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में समग्र विश्व में भारत सर्वप्रथम होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता का सामूहिक आत्मविश्वास खड़ा करना ये किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी कसौटी है, और वो भी तब जब जनता गहरी निराशा में डूबी हो। उन्होंने गहरी निराशा के गर्त से जनता को बाहर निकालकर नरेंद्र मोदी जी ने जनता को आत्मविश्वास से लवरेज कर 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत की यात्रा के साथ जोड़ने का काम किया।
0: उधर दिल्ली में इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने रक्तदान किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इसमें शामिल हुए। दिल्ली सरकार के मंत्री और सीएम रेखा गुप्ता ने भी रक्तदान किया।
7: प्रधानमंत्री जी का ये जन्म दिवस हम सबको जन सेवा की प्रेरणा देता है और दिल्ली सरकार उनके दिखाए हुए रास्ते पर उनके मार्गदर्शन में हमेशा आगे बढ़ते हुए इस काम को करेगी। आज हम मोदी जी को समर्पित करते हुए हमारे स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए हुए एक बर्थडे सॉन्ग, एक गीत का भी लॉन्चिंग करेंगे।
0: कुल मिलाकर 17 सितंबर का दिन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के जश्न के नाम रहा। आज तक ब्यूरो।
3: सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था से तो हर कोई वाकिफ रहता है, लेकिन जब डॉक्टर्स के नाम पर उनके ड्राइवर मरीजों का इलाज करने लग जाएं तो सोचिए कि क्या ही होता होगा। जी हाँ, कानपुर के सरकारी अस्पताल में ऐसा खिलवाड़ हुआ है। डॉक्टर आराम पर और उनका ड्राइवर काम पर। जब ड्राइवर डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कानपुर से लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। तो आइए देखते हैं ड्राइवर डॉक्टर का ओपीडी में जानलेवा इलाज। तस्वीरें देखिए आप।
0: इस हरकत पर तो यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में इलाज नहीं बल्कि दिन दहाड़े मरीजों के साथ जानलेवा खिलवाड़ चल रहा है। जी हां, कानपुर के काशीराम अस्पताल में डॉक्टर आराम पर हैं और ड्राइवर काम पर हैं। ओपीडी में मरीज आ रहे हैं और डॉक्टर साहब का ड्राइवर मरीजों को धड़ाधड़ दवाइयां लिख रहा है। ड्राइवर डॉक्टर मरीजों से उनका हाल पूछता है और पर्ची पर पता नहीं कौन सी दवाई लिखकर आगे बढ़ा देता है, फिर अगले मरीज का नंबर लेता है। बाकायदा ड्राइवर की ये ओपीडी कानपुर के काशीराम अस्पताल में जनरल मेडिसिन विभाग के हेड और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामकेश की ओपीडी में चल रही है। कहां तो स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और कहां अस्पताल में डॉक्टर की जगह उनके ड्राइवर ही इलाज करने बैठ जाएं तो मरीजों का हाल क्या होगा, ये आप और हम सभी समझ सकते हैं। यकीनन ये मरीजों के साथ जानलेवा खिलवाड़ से कम नहीं है। जब ड्राइवर ने ओपीडी चलाई तो सीएमओ कहां थे? जब ड्राइवर ओपीडी में मरीजों को देख रहा था तब सीएमएस कहां थे? इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की ओपीडी में ड्राइवर कैसे बैठा? सवाल यह है कि जब अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामकेश की ड्यूटी थी तो वो कहां थे? क्या डॉक्टर रामकेश ने ओपीडी में मरीजों के देखने के लिए अपने ड्राइवर को बैठा दिया? बड़ी बात यह है कि सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर से लेकर सीएमएस यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी अस्पताल में बैठते हैं, तो पूरा अस्पताल प्रशासन कहां था जिन्हें एक ड्राइवर ओपीडी चलाता हुआ नहीं दिखा? वीडियो वायरल होने के बाद पूरा अस्पताल प्रशासन जाग उठा है और कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि सरकारी सिस्टम कितना सड़ चुका है कि डॉक्टर की जगह ड्राइवर इलाज करता है। वीडियो में ड्राइवर मरीजों से उनकी परेशानी पूछता दिखाई दे रहा है। वो मरीजों से पूछ रहा है कि पेट में दर्द है या क्या तकलीफ है। इसके बाद वो पर्चे पर दवाई लिखता नजर आता है और मरीजों के पूछने पर वो उन्हें दवा अस्पताल से नहीं बल्कि बाहर मेडिकल स्टोर से लेने की बात कहता है। अब आपको दिखाते हैं डॉक्टर ड्राइवर ने जो पर्ची पर दवाइयां लिख कर दी आखिर पर्ची में क्या लिखा। पर्चे पर लिखा हुआ है जो हमें समझ आता है, कुछ BIG 500 लिखा है, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता, फिर कुछ OINT KT2 और कॉम्बी बी टाइप लिखा है, साथ ही KT2 200 mg लिखा है। अब ये कौन सी दवाइयां हैं जो ड्राइवर डॉक्टर ने मरीजों को लिख कर दी हैं? अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के ड्राइवर ही इलाज करेंगे तो फिर किस काम के CMO, किस काम के CMS और किस काम का स्वास्थ्य मंत्रालय? अस्पताल में ड्राइवर मरीजों का इलाज करते हुए पकड़ा गया तो अस्पताल के सीएमओ हरिदत्त नेमी ने जांच कमेटी गठित करके पतली गली से बच निकलने की कोशिश की। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, सीएमओ साहब पल्ला नहीं झाड़ सकते।
8: कल से वीडियो वायरल हुआ, मैंने भी उसे देखा है। वहाँ पर सीएमएस हैं डॉक्टर पीयूष, तो डॉक्टर पीयूष से मेरी बात हुई है, तो वहाँ पर उसकी जांच बिठा दी है और जांच में जो भी जिसके भी जो दोष होगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई की।
0: अस्पताल के सीएमएस यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पीयूष मिश्रा ड्राइवर पर एफआईआर की बात करके बच नहीं सकते। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, सीएमएस साहब जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते।
9: मैंने स्पष्टीकरण ये अपना जवाब दे पहले, और तीन सदस्यीय हमने वरिष्ठ चिकित्सकों की कमेटी बनाई है और इनकी इस पूरी घटनाक्रम को उसके ड्राइवर के खिलाफ विरुद्ध एफआईआर करेंगे और इनको इनके खिलाफ हम शासन को पत्र भी लिखने जा रहे हैं कि ये अनुशासनहीनता है। बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, ये हमें बड़ा खेद के लगता है कि सुनने में भी ये इतना बड़ा अच्छा अस्पताल जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी इसको ऊंचाई तक ले जाऊँ, इस प्रकार का बहुत ही खराब कार्य किया है इन्होंने।
0: आज तक ने इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर यानी डॉक्टर रामकेश से भी पूछा कि उनकी ओपीडी में उनकी कुर्सी पर उनका ड्राइवर इलाज करने क्यों बैठा। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, डॉक्टर रामकेश का कोई बहाना नहीं चलने वाला।
10: एक वीडियो वायरल हो कि आपका ड्राइवर आपकी सीट पे बैठ के दबा दे रहा
11: है। सर आप महोदय आप लोगों के माध्यम से या साहब सीएमएस साहब के माध्यम से मुझे पता चला, तत्काल प्रभाव से उसे मैंने बाहर निकाल दिया अपने।
10: तो ये क्या पहले भी कभी बैठता था क्या?
11: नहीं, मेरे साथ रहता तो मेरी गाड़ी साफ करता था।
10: अच्छा, उसको दवा वगैरह कुछ तो नॉलेज होगा?
11: नहीं, कोई नॉलेज,
10: कोई नॉलेज नहीं। तो दवा किसको दे रहा था ये?
11: नहीं, वो अब हम नहीं थे। अब उसने क्या किया है ये बताया, ये पता चला है कि वो उसके जानने वाला था, उसको लिख दिया है दवा।
10: तो वो सर आप कहाँ गए थे उसने?
11: मैं कोर्ट गया था।
10: कोर्ट गया था।
0: डॉक्टर रामकेश ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने ड्राइवर को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया है, लेकिन डॉक्टर रामकेश कहते हैं जब उनका ड्राइवर ओपीडी में इलाज कर रहा था वो कोर्ट गए हुए थे। अब डॉक्टर रामकेश सच बोल रहे हैं या झूठ? लेकिन आज तक को अस्पताल के सीएमएस पीयूष मिश्रा ने बताया कि उन्होंने अस्पताल का अटेंडेंट रजिस्टर चेक किया तो डॉक्टर रामकेश की कोई न्यायालय ड्यूटी नहीं थी। डॉक्टर रामकेश का कोर्ट वाला बहाना एक्सपोज।
9: ये किस समय आके कब बैठा, उस दिन कमरा में न्यायालय कार्य लिखा हुआ था, लेकिन अभी हमने उपस्थिति पंजिका को देखा तो उसमें कोई न्यायालय ड्यूटी थी नहीं इनकी पिछले लगभग 15 दिन से। लेकिन ये कमरे में नहीं थे उस समय मौजूद, समय ये वीडियो वायरल हुआ है।
0: तो क्या डॉक्टर रामकेश आराम पर थे और ड्राइवर काम पर था? कानपुर के इस सरकारी अस्पताल ने एक बार फिर से सरकारी अस्पतालों की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। कैसे सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर दिन दहाड़े खिलवाड़ किया जाता है?
12: वीडियो वायरल होने के बाद सीएमओ ने जांच की बात की है, संबंधित अस्पताल और डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है। डॉक्टर ने भी अपना पल्ला ये कह के झाड़ दिया है कि उसने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या जांच की खानापूर्ति से इतने बड़ी लापरवाही को दबाया जा सकता है? ना कोई तत्काल एफआईआर, ना कोई ठोस कार्रवाई और ना कोई निलंबन। ऐसे में लोगों का प्रशासन से बड़ा सवाल है कि आखिरकार मरीजों की सुरक्षा के लिए जवाबदेही कब तय होगी।
0: रंजय सिंह के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।
3: और अब आपको दिखाते हैं द लखनऊ स्टोरी। कैसे एक लड़की को कार के बोनट पर घसीटते हुए वीडियो वायरल हुआ, तो अब कहानी पूरी तरह से परत दर परत खुलती जा रही है। पीड़ित लड़की का आरोपी है कि शहनवाज नाम के लड़के ने पहले यश ठाकुर बनकर उससे दोस्ती की, उसके बाद विवाद होने पर शहनवाज ने लड़की को कार से घसीटा। अब इसमें हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो चुकी है जो इसे लव जिहाद बता रहे हैं और तगड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं।
0: लखनऊ से आई ये तस्वीरें देश भर में वायरल हो जाती हैं, जिसमें सफेद रंग की ये वर्ना कार एक महिला को बोनट के आगे घसीटते हुए दिखाई देती है। वीडियो में कार का नंबर साफ दिखता है, UP 32 KH 8090। आज तक के कैमरे पर आकाश नाम के चश्मदीप ने इस पूरी घटना की गवाही दी।
13: दीदी मतलब कि उसके ऊपर ऐसे रुक गई, रोक रोकने की कोशिश कर रही थी, तो उसने नहीं रोका, फिर यहाँ यही मेरी दुकान के सामने रोका, ठीक है, रोकने के बाद में फिर आगे रोकते रोकते वहाँ रुक गई दीदी, फिर वहाँ रुकी और दीदी बस जैसे साइड से मतलब बात करने की कोशिश कर रही थी, बस तुरंत ही रुक गए, बस रोकने के बाद में बस इतनी स्पीड में भगाया जैसे दीदी थोड़ा साइड में, बस दीदी फिर ऐसे रोकने को से बहुत गिर गई दीदी ने, पर यहाँ चोट खा गई, मेरे दुकान पे कस्टमर बैठे वो भी वीडियो बनाए।
0: कार और कार चलाने वाले शहनवाज को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन बाद में कहानी कुछ और ही निकलती है। कार के भीतर गाड़ी चला रहे शख्स का नाम शहनवाज है और जिस लड़की को इसने टक्कर मारी उसका नाम अनामिका है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सोशल मीडिया पर अनामिका के दो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें वो आरोपी शहनवाज के साथ एक कार में बैठी नजर आ रही है और वो खुद बता रही है कैसे दोनों की मुलाकात हुई।
14: ये मैं हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है,
15: ठीक,
14: अली क्यों है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है, हमारे बीच में ये हुआ है, हमसे हमें छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम छोड़ नहीं रहे हैं, हमने इससे बोला कि एक से दो महीने का मुझे टाइम दो, मैं अपने आप छोड़ दूंगी, अगर ना छोड़ा तो तुम मुझे खुद छोड़ देना बस।
15: कल मैं टकला बनवा लूंगा।
14: तुम ये चाहे टकला बनवा ले, चाहे लंगड़ा बनवा ले, चाहे एक आंख फूट जाए तब भी हम इसके साथ रहेंगे, पहचान में आए या ना आए तब भी हम इसके साथ रहेंगे। अब और मैं गई थी इसके पास, इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने नंबर मांगा था, हमने जबरदस्ती नंबर लिया था फोन से निकाल के इसके, मैंने इसे मारा था, तोड़ा था, तब नंबर इसने दिया था, तभी हमारे साथ रिलेशनशिप में आया था, डर गया था बेचारा कि बहुत मारेगी अगर हमसे बात ना की।
0: आज तक ने अनामिका से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, हम आपको अनामिका का पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अनामिका ने पुलिस को बताया कि आरोपी शहनवाज ने उससे अपना असली नाम छुपाकर दोस्ती की थी। शहनवाज ने अपना नाम यश ठाकुर बताया था।
16: गाड़ी उस व्यक्ति की नहीं थी, उस व्यक्ति ने जो भी झूठ वूट बोला है, जो मुझे प्राइमा फेसी पता चला है, तो इसकी हम लोग जांच करवाएंगे, और इसके पीछे भी अगर कोई गुट शामिल है जो धर्मांतरण करा रहा है या कोई इस प्रकार के लोग हैं जहां पर हिंदू लड़कियां टारगेट हो रही हैं, तो उनका भी पर्दाफाश होगा।
0: वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं, हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
17: ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल गिरोह हो सकता है, जिस तरह से जमालुद्दीन छांगुर बाबा जैसा व्यक्ति हजारों हिंदू बेटियों को शिकार बनाया, निकाह कराया, धर्मांतरण कराया, चाहे पैसा देकर कराया चाहे जबरन कराया, तो ऐसी स्थिति में आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डीसीपी पूर्वी कार्यालय पर आज मैडम को मैं ये ज्ञापन देने आया था। ज्ञापन का प्रक्रिया क्या है कि उच्च स्तरीय जांच हो।
0: 16 सितंबर को जनेश्वर मिश्र पार्क के पास अनामिका चाय पीने पहुंची थी, इसी दौरान शहनवाज भी एक दूसरी महिला मित्र के साथ कार से वहां पहुंचा। दूसरी युवती को शहनवाज के साथ देखकर अनामिका भड़क गई और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद शहनवाज वहां से कार लेकर निकलने लगा। शहनवाज जब कार लेकर जाने लगा तो अनामिका उसकी कार के सामने खड़ी हो गई। आरोप है कि शहनवाज ने कार आगे बढ़ा दी, इससे अनामिका कार के बोनट पर आ गई, जिसके बाद शहनवाज ने कार की स्पीड बढ़ा दी और अनामिका को घसीटते हुए चला गया। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: आज तक ने पीड़ित लड़की से खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं उसने क्या कहा।
14: के साथ में दो लड़कियां भी थी, यहाँ तक चाय पी रही थी, ये बहुत टाइम से मेरे साथ रिलेशनशिप में था, ठीक है, तो मतलब दो लड़कियां थी, मैंने इससे पूछना चाहे कि वो लड़कियां कौन है, इतने में ही मुझसे चिल्लाने लगा तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये वो सब बोलने लगा, ठीक है, फिर इसका दोस्त तो ये दानिश दोनों जो थे ना वो कार में बैठ गए आके, ठीक है, और मतलब जो लड़कियां तो थी दोनों वो अलग पीछे वाले गेट से वो उधर चली गई, ठीक है, दोनों आए तो मुझसे मतलब चिल्लाने लगा, मैंने मतलब भागने लगे कार लेके, तो मैं सामने से इसे रोकना चाहूं कि मुझे बता के जाओ, ये रुका नहीं, उसके बाद ही मुझसे गाड़ी चढ़ा के मेरे ऊपर से, और फिर मेरा हाथ शीशे की तरफ इसने मुझे बुलाया, हाथ में अभी भी चोट है, स्वेलिंग भी है, देख लीजिए आप सब लोग, हाँ निशान पड़ा है, शीशे में मेरा पूरा हाथ दब गया था, मैं ऐसे करके हाथ निकालना चाह रही थी लेकिन शीशा ऐसे करके लॉक था वो निकल नहीं पा रहा था,
18: इसने फंसा लिया,
14: फंस गया गया था, ठीक है, तभी तो मैं घसटी हूँ, एकदम से घसीटते हुए ले गया, फिर अचानक से इसने शीशा ऐसे किया तब मेरा हाथ निकला तब हम गिर गए। इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, ये गाड़ी इनके दोस्त दानिश जो साथ में था शहनवाज का दोस्त, उसने ये बोल के बोला है कि इसे आज मार दो, सामने से आया कुछ भी करे मार दो, वहां शीशे में दब गया दबने दो, मार के चलो को मार दो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ ना, ये तो जानबूझ के गलती से होता, वो चीज अलग है, जानबूझ के मुझ पे चढ़ाई गई करना।
8: शहनवाज को आप जानती थी कि वो शहनवाज है? हम शुरुआत
14: नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम स्टार्टिंग में मिले थे, हम टोटल बता रहे, हम जलबाग क्लब में मिले थे, यहाँ तक कि एक हमारा वीडियो वायरल हो गया जिसमें हम वो बोल रहे हैं,
8: इसमें एक हम वीडियो बात करें, इसमें आप कह रहे हैं कि हम
14: दो वीडियो वायरल हुए हैं, एक इन्होंने और रिसेंटली डाला, वो इनके दोस्त ने शरीफ ने वायरल करवाया, शरीफ को मैंने भाई बोला था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, बहन को भी चीट कर सकते हैं, ठीक है।
8: वीडियो में जैसे आप कह रही हैं कि जो है हम हमारी गलती नहीं, हम ब्रेकअप करेंगे, क्या ये सब बता रहे हैं?
14: ये सब इन लोगों ने जबरदस्ती करवाया था, मेरी दोस्त भी उस दिन साथ में थी, ठीक है। आप
8: वीडियो जबरदस्ती बना
14: उसके एक दिन पहले इन्होंने मुझे बहुत मारा था इनका, और वो भी इन्होंने हम तुम बंटी देखा है आपने डीलअप के पास, वहां पे भी मुझे मारा, मेरे ईट उठाने की कोशिश की, माने आप चाहे तो सीसीटीवी कैमरा 15 दिन हटा, वहां होगा तो चेक करवा सकते हैं, डीलअप में मारा, सिक्योरिटी पूरी आ गई थी, इन लोगों ने बात दबा दी कि कुछ नहीं हुआ, आपस में लड़ाई हुई है, पेट पे मेरे लाते मारे, उसके पहले एक बार नहीं शहनवाज ने मुझे मारे, बहुत टाइम इनका दोस्त था एक आशीष गौतम, उसके सामने ये मार रहे थे मुझे,
8: मारते भी था आपको
14: बहुत, तीन ऐसा नहीं है, तीन चार बार मारा है, लेकिन मैं कब तक बर्दाश्त कर गया बताओ, जब मुझे पूरी उस दिन मारने की कोशिश की तब मैं बात बोल रहे हैं।
8: सवाल ये था कि क्या आपको मालूम था ये शहनवाज हैं?
14: नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम था, जब हम स्टार्टिंग में जलबा क्लब में इन्होंने जो वीडियो वायरल हुआ वही बता रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ कि मैं इनसे जबरदस्ती नंबर मैंने लिया था, मारा था, हम मेरी इतनी हिम्मत है इतनी पब्लिक में उस लड़के को मार के मैं जबरदस्ती फोन से नंबर ले सकती हूँ, आप सोचिए, आप बताइए ना, मुझे नहीं ले सकती हूँ ना, नंबर इन्होंने मुझे भी नहीं दिया था,
8: वीडियो उसने बनवाया था
14: जी, ये मेरी बुआ जी को नंबर दिया था, उसके पहले आशीष गौतम के सामने मारा था, तब हम लोग अलग आ गए थे कार में, तब इन्होंने वीडियो बनवाया था कि बनाओ, क्योंकि हमने इनसे बोला था हम कंप्लेन करेंगे, इतना मारा ही था मुझे कि मैं बिल्कुल होश में, मेरे यहाँ नीला नीला हाथ में सब पड़ा था, वो भी हम लोगों की बात स्टार्ट हुई, हमसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा, हमने कहा मुस्कान सिंह, तो इन्होंने बोला मैं भी ठाकुर हूँ, अब ये नहीं बताया था कि मैं लखनऊ से हूँ, ठीक है, मैं कहीं भी कसम खाने के लिए तैयार हूँ, अपनी कसम, इन्होंने ये नहीं बताया था कि मैं लखनऊ से हूँ, इन्होंने ये बताया था मैं आजमगढ़ से हूँ, मैं भी ठाकुर हूँ, आयुष नाम बताया था, ठीक है, चलो कोई नहीं, तो हम बात करते रहे, नॉर्मल हमारी मिलना जुलना होने लगा, ठीक है, बात होती रही, उसके कुछ टाइम बाद मुझे ये पता चला, वो भी इन्होंने बताया था, मैंने इनका इंस्टाग्राम चेक किया था, तब उस पर दूसरा नाम आया,
8: तब आप शॉक्ड हो गए,
14: मैं फिर भी हमारे बीच में लड़ाई हुई, ठीक है, उस लड़ाई ठीक हो गया, चलो ठीक है भाई, इतने तो हम मतलब बात होती रही, ठीक है, नॉर्मल, उसके बाद ये चीजें अभी 2-3 महीने से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो गए, ये मुझे ब्लॉक कर देते हैं, चलो आपने जैसे शरीफ बोल रहे हैं कि 3 महीने पहले वो छोड़ना चाहता था, इन्होंने जबरदस्ती रह रही थी, जबरदस्ती नहीं रह रहे थे, जबरदस्ती अगर रखना चाहते अभी भी रख सकते थे ना, हम जबरदस्ती रख रहे थे, ज्यादातर इनकी भी जितनी भी दोस्त है जब भी मैंने देखा सब हिंदू है, कोई ठाकुर है कोई पंडित है।
8: ओके, तो ये अपना नाम क्या,
14: फोन होगा पास में, चेक कर लीजिए, सब सब प्रूफ मिल जाएंगे आपको,
8: तो ये अपने प्रोफाइल और नाम अलग बना के रखते हैं क्या?
14: नाम प्रोफाइल तो इनके इंस्टाग्राम पे है नहीं, फेसबुक का मुझे पता नहीं है, नाम जो मुझे स्टार्टिंग में बताया मुझे अपना खुद का पता है, उनका नहीं पता, बताते या नहीं बताते, और हमें ये डर है कि इनकी बेल होगी तो उसके बाद भी हम पे कुछ करे ना, मुझे अब बहुत डर लग रहा है।
8: आप चाहती क्या क्या हो इस पूरे मामले में?
14: इसके मामले में जितने मुझे जख्म आए भाई, हम तो यही चाहेंगे कि हमें भाई, हमें पब्लिक जो देख रही है ना, उनको जो गलत बताया जा रहा है, पब्लिक को यही मैं बताना चाहूंगी कि हमेशा लड़कियां गलत नहीं होती हैं, ठीक है, मेरे साथ अभी जुआ और दूसरी लड़की के साथ हो गया, जो लड़कियां कमेंट करें क्या पता उनके साथ भी हो, तब क्या करेंगी वो, तब अपने लिए लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये लोग मेरे वीडियो इसलिए वायरल कर रहे हैं कि मैं वो सब देख के डर जाऊं, वो चुप हो जाऊं।
18: और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे महाराष्ट्र के नासिक में अजीब और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आवारा कुत्तों से परेशान लोगों ने पंचायत के चीफ ऑफिसर के दफ्तर पर धावा बोला और कुत्तों को ऑफिसर की टेबल पर छोड़ दिया।
19: यह है महाराष्ट्र के नासिक में पंचायत कार्यालय के मुख्य अधिकारी का दफ्तर। अचानक मुख्य अधिकारी के दफ्तर में शिवसेना यूबीटी की युवा सेना के कार्यकर्ता 3 बोरियां लेकर धावा बोलते हैं। मुख्य अधिकारी अपनी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहे होते हैं, तभी युवा सेना के कार्यकर्ता बोरियां उठाकर टेबल पर खोलते हैं तो उसमें से निकलते हैं कुत्ते, और ये देखिए कैसे कुत्ते टेबल पर दौड़ने लगते हैं। पंचायत कार्यालय के मुख्य अधिकारी हैरत में पड़ जाते हैं, आखिर ये है क्या, और कुत्ते टेबल पर कोने में जाकर फाइलों पर बैठ जाते हैं। फिर सब कुछ क्लियर होता है। जी हाँ, नासिक में आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ शिवसेना यूबीटी की युवा सेना का ये बड़ा ही अनोखा विरोध प्रदर्शन था, जिसमें दो आवारा कुत्ते बोरियों में कैद करके मुख्य अधिकारी की बेस पर छोड़ दिए जाते हैं। शिवसेना यूबीटी की युवा सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि बार बार आवारा कुत्तों के आतंक की शिकायत करने पर भी प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा था, और जब कई बार शिकायत दर्ज कराने पर भी उनकी बातें नहीं सुनी गईं, तो मुख्य अधिकारी के दफ्तर में ही उनकी मेज पर आवारा कुत्ते छोड़ दिए गए।
20: आज निपाड शहरामध्ये जर तुम्ही बघितलं, प्रत्येक गावात गल्लीत असेल, प्रत्येक चौका चौकामध्ये मोकट कुत्र्यांचा इतका सुळसुळाट झालेला आहे। सहा महिन्यापासून मुख्य अधिकाऱ्यांना सांगतोय, धीरज भांबरे त्यांचं नाव आहे, सहा महिन्यापासून सांगतोय की असं असं मोकट कुत्र्यांचा प्रश्न तुम्ही मनावर घ्या। अनेक लहान बालकांना चावा घेतलाय, अनेक लोकांवर महिलांवर धावून आलेले, मोकट कुत्र्यांची परिस्थिती त्यांना दाखवली, तिथले फोटो टाकले, वारंवार सांगितलं, पण मला वाटतं लातो की भूतबातो से नाही मानते। आज आम्ही त्याचा निषेध म्हणून इथं चार कुत्रे त्यांच्या टेबलवर सोडले, त्याचप्रमाणे ते कुत्रे त्यांच्या टेबलवर बसवले।
19: लोगों का दावा है कि आवारा कुत्तों की आबादी लगातार बढ़ रही है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा, आवारा कुत्तों ने कई लोगों को काटा है और प्रशासन ने बार बार शिकायत करने पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब मुख्य अधिकारी के दफ्तर में इस तरह से कुत्ते छोड़ने पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, और सरकारी काम में रुकावट डालने, कर्मचारियों पर हमला करने और दंगा करने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। प्रवीण बी ठाकरे, नासिक आज तक।
18: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में दीपोत्सव। काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए, प्रधानमंत्री ने जताया आभार। बंगाल उपचुनाव से पहले ममता और ऋतव्रत गुट को झटका। चुनाव आयोग ने टीएमसी के निशान और नाम के इस्तेमाल पर लगाई रोक। दोनों से कल तक मांगे गए तीन तीन विकल्प। यूपी में हाईवे को लेकर अखिलेश ने सीएम योगी को घेरा। कहा, बीजेपी सरकार में निर्माण बाद में पूरा होता है लेकिन गिरने वो पहले लगता है। बोले, अब वो हर लेन देन पर लेंगे टैक्स। 100% टैरिफ वाले अमेरिकी कानून पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध। अलग अलग स्रोतों से जारी रहेगी ऊर्जा खरीद। और टी20 में अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान। महज 30 गेंद में जड़ा शतक। टेस्ट खेलने वाले देशों में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड। भारत ने 127 रन से जीता मैच। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन पूरे धूमधाम से उनका मनाया गया। आशीर्वाद का कार्यक्रम रखा गया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर सीएम योगी समेत दिग्गज नेताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न।

0: प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न। कहीं केक काटा गया, कहीं दिए जलाए गए। आशीर्वाद का दिया नाम से देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम हुए। वाराणसी में भी गंगा तट पर दीपोत्सव किया गया।
1: नमो घाट पर हूँ, एक तरफ पतित पावनी माँ गंगा है जो मेरे सामने तेज प्रवाह में बह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है आज माहौल बनारस में अयोध्या जैसा है, क्योंकि ये जो दिए हैं ना, ये दिए यहाँ पर लग गए हैं, असंख्यों दिए जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर लाए गए हैं, लगाए गए हैं, और बच्चों ने बकायदा काफी मेहनत की है इन दियों को यहाँ बिछाने के लिए। वाइट फ्रेम यहाँ से दिखाएं एक बार और पूरा दर्शकों को यहाँ से दिखाएं कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पर नमो घाट पर दिए लगा दिए गए हैं।
0: उज्जैन समेत पूरे मध्य प्रदेश में आज दीपोत्सव की रोशनी बिखरी हुई है। महाकाल की नगरी में शिप्रा के रामघाट, दत्त अखाड़ा घाट और महाकाल लोक में 25 लाख दीप जलाए गए।
2: महाकाल की इस पवित्र नगरी से प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की, दीर्घायु होने की कामना पूरा महाकाल के हमारे सभी लोग कर रहे हैं, यहाँ के नागरिक कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पवित्र तट से माननीय प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की कामना की जा रही है। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से करोड़ों लोगों के जीवन में जो बदलाव लाया, और इस तट की बात करें तो 800 करोड़ की अधिक सी योजना महाकाल कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री जी ने किया, जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म बढ़ा, आज यहाँ पर लोग का व्यवसाय बढ़ा है, उनके जीवन में उनके बदलाव आए हैं।
0: इसके अलावा श्रीनगर, कोलकाता और पटना में भी भव्य दीपोत्सव हुआ, और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भी 1 लाख दिए जलाए गए।
3: लगभग 1.5 लाख दिए एक समय पर जलाए जा रहे हैं, और ये जो प्रज्वलित दिए हैं जो आपको दूर तक नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे दिए इसीलिए जलाए गए हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक वादा किया था आज से 12 साल पहले, और लोगों से जो वादा किया था गुजरात के लोगों से आज से 25 साल पहले, उसको उन्होंने पूरा किया है। देखिए, हम लोग जब खुश होते हैं, जब हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसका कारण यही है कि हम बताते हैं कि किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, तो किस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ये दिए जो हैं इस समय उसी का सिंबल है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। पूरे विधि विधान से पूजन का अनुष्ठान हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, चिराग पासवान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस पूजा अर्चना में शामिल हुए।
4: सब लोग यहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए काशी विश्वनाथ का आए थे और विधिवत पूजा अर्चन का कार्य संपन्न हुआ है, और हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वह दीर्घायु करें।
5: बाबा से ही प्रार्थना की है कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु उन्हें प्राप्त हो और लंबे समय तक भारत का नेतृत्व उनके हाथों में रहे, जिससे भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विकसित भारत की संकल्पना उनके नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी देख सके।
0: राजनाथ सिंह ने वाराणसी से बाइक रैली को भी झंडी दिखाई, जो वाराणसी से वडनगर के लिए रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मभूमि वडनगर में सेवा संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। अमित शाह ने वडनगर में बाइक रैली को झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की, जो कि वाराणसी तक जाएगी।
6: 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 26 में 140 करोड़ भारतीय ये उत्साह और संकल्प के साथ, एक आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में समग्र विश्व में भारत सर्वप्रथम होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता का सामूहिक आत्मविश्वास खड़ा करना ये किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी कसौटी है, और वो भी तब जब जनता गहरी निराशा में डूबी हो। उन्होंने गहरी निराशा के गर्त से जनता को बाहर निकालकर नरेंद्र मोदी जी ने जनता को आत्मविश्वास से लवरेज कर 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत की यात्रा के साथ जोड़ने का काम किया।
0: उधर दिल्ली में इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने रक्तदान किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इसमें शामिल हुए। दिल्ली सरकार के मंत्री और सीएम रेखा गुप्ता ने भी रक्तदान किया।
7: प्रधानमंत्री जी का ये जन्म दिवस हम सबको जन सेवा की प्रेरणा देता है और दिल्ली सरकार उनके दिखाए हुए रास्ते पर उनके मार्गदर्शन में हमेशा आगे बढ़ते हुए इस काम को करेगी। आज हम मोदी जी को समर्पित करते हुए हमारे स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए हुए एक बर्थडे सॉन्ग, एक गीत का भी लॉन्चिंग करेंगे।
0: कुल मिलाकर 17 सितंबर का दिन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के जश्न के नाम रहा। आज तक ब्यूरो।
3: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान 19 सितंबर को आदित्य ठाकरे के घर मातोश्री जाकर उन्हें मानहानि का नोटिस खुद सौंपेंगे। साथ ही साथ उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर अपने और अपनी कानूनी टीम के लिए वहां जाते समय पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है।

0: दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री पर सियासत हावी होती जा रही है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 500 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में दोनों नेताओं के बयानों पर आपत्ति जताई गई है। सतीश सालियान ने दोनों को बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने, बयान वापस लेने, लिखित माफी मांगकर उसे प्रिंट मीडिया में छपवाने, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 3 मिनट का माफीनामा वीडियो जारी करने की मांग की है।
1: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान जी की तरफ से आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख को डिफामेशन का नोटिस दिया गया है। ये अलग डिफामेशन का नोटिस है, उन्होंने जो पोस्ट किए उसके लिए एक और एडिशनल नोटिस दिया जा रहा है। तो ये जो नोटिस है ये उन्होंने मैटर वही है सिमिलर, उन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट पे कहा था कि सतीश सालियान के पिताजी ने पिटीशन गलत फाइल की है और ऑलरेडी इस मैटर में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके उनको क्लीन चिट दी है, लेकिन राजकीय हेतु से प्रेरित होकर और पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ मीडिया के लोग जिनके इनके ये संबंध ठीक नहीं है उनके इशारे पे ये पिटीशन फाइल की गई है।
0: दिशा के पिता ने 500 करोड़ के मानहानि के नोटिस में लिखा, आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख ने मेरे बयानों और कानूनी कार्रवाई को लेकर झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप लगाए। दोनों नेताओं ने मेरी बेटी दिशा की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया। आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे हैं कि सीबीआई पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है। आदित्य कह रहे हैं कि वो दिशा को जानते ही नहीं थे, ये बात सच नहीं है। हमारे पास इन नेताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत है।
2: 17 पन्ने के इस लीगल नोटिस में कहा गया है कि नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख दोनों को ही एक अनकंडीशनल अपॉलोजी देनी है और अनकंडीशनल अपॉलोजी किस तरीके की हो ये भी स्पेसिफाई किया गया है। अखबार में एडवर्टीजमेंट A4 साइज के होने चाहिए, 3 मिनट से कम के वीडियो के नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 500 करोड़ जो डिफेमेशन में है किया है जिसकी वजह से जो इतनी बदनामी हुई है उसका हर्जाना ये 500 करोड़ भी दिए जाएं। तो ये तमाम बातें इन 17 पन्नों में लिखे हैं और अब अनिल देशमुख और आदित्य ठाकरे दोनों के ही वकील ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर से डील कैसे किया जाए।
0: दरअसल 16 सितंबर को आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिशा मौत मिस्ट्री केस में सफाई देते हुए लिखा था, मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और ना ही उन्हें जानता हूँ। पिछले 6 सालों से कुछ लोग जानबूझकर और बिना किसी सबूत के इस दुखद मामले से मेरा नाम जोड़कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बदनाम करने का ये अभियान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जोरदार टीवी डिबेट और मीडिया ट्रायल से सच्चाई नहीं बदलती। इस केस की जांच दोबारा आगे बढ़ने दें।
1: और बाकी जो उन्होंने अभी जो नया पोस्ट किया है कि इन्वेस्टिगेशन शांतिपूर्ण तरीके से होने दो, मीडिया के लोग डिबेट ना करें, तो इसको कहते हैं चोर मचाए शोर। इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दिया, इन्होंने खुद उसके रिकॉर्ड डिलीट करवाए, इन्होंने खुद सतीश सालियान के पिटीशन को ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि सीबीआई को मैटर ना जाए, इसी और इन्हीं की वजह से डिले हुआ है ये सब। तो अभी वो तो हमने इनको खिलाफ लड़के सबूत दे के ये ऑर्डर लिया है, इनका सारा झूठ पकड़ा गया है और अब यही खुद चिल्ला रहे और ये जो कह रहे दिशा का मेरा संबंध नहीं है, हमारे पास में सारे डिजिटल प्रूफ्स आई विटनेस से लेके सारी चीजें हैं। ये दो चीजों का आज तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आप इस ड्रग्स के बिजनेस में ड्रग्स का बिजनेस करते हुए और खुद ड्रग्स का सेवन करते हुए ड्रगिस्ट हो, ये नारकोटिक्स ब्यूरो के क्राइम नंबर 15/2020 में आया, आपके फोन सर्विलेंस में आया, ये हमने एफिडेविट पे कहा, उसका आप जवाब नहीं दे पाए और उसको मना भी नहीं कर रहे हो उसके बारे में बोलो, और आपके मोबाइल टावर लोकेशन वहां थे और आपने जो पहला डिफेंस लिया था कि मैं उस दिन बबाहर था, मेरे नाना जी गुजर गए थे 8 जून को, मुंबई से बाहर था, वो भी झूठा साबित हो गया, नाना जी 14 जून को गुजरे थे। उसके बाद में आपने कहा इसकी जो आपकी मेन पार्टनर इन क्राइम है इसमें रिया चक्रवर्ती, बोले मैं उसको जानता नहीं, रिया ने कहा मैं आपको नहीं जानती, ये भी फोरेंसिक की चैट रिकवरी में ये भी झूठा साबित हो गया। उस तो आप हैबिचुअल झूठ बोलने वाले हो।
0: दिशा सालियान के पिता 6 साल से कह रहे हैं कि उनकी बेटी दिशा की गैंगरेप के बाद हत्या हुई थी। वो आदित्य ठाकरे समेत कई पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं।
3: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनू मौर्या, सुरेश कंसोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने हैं, ऐसा कंप्लेंट दिया है।
0: हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को सतीश सालियान के आरोपों की कार्रवाई करने को कहा है। बीजेपी विधायक राम कदम भी लगातार तत्कालीन उद्धव सरकार की भूमिका संदिग्ध बताते रहे हैं।
4: दिशा सालियान की मौत, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष से ऊपर उठ करके है। श्रीमान आदित्य ठाकरे को 6.5 वर्ष लग गए ये बोलने के लिए कि उनका इस मामले में कोई संबंध नहीं है। इसके पहले उनकी खामोशी का क्या कारण था? किसने उन्हें रोका था? उनके पिता तो लगातार बार बार आरोप कर रहे थे, तब आप क्यों नहीं बोले? और कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का था? क्या कारण था कि आपकी सरकार पुलिस को जांच करने से क्यों रोक रही थी? और यदि पुलिस जांच नहीं कर रही है तो आपकी सरकार ने पुलिस से क्यों नहीं कहा उस पिता को न्याय मिलना चाहिए?
0: दिशा सालियान की मौत की शुरुआती जांच मुंबई पुलिस ने की थी। पुलिस की जांच में दिशा की मौत को आत्महत्या बताया गया था। मार्च 2025 में सामने आई मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में भी दिशा की मौत को सुसाइड बताते हुए उनकी मानसिक परेशानी का जिक्र किया गया था। लेकिन सवाल है कि क्या सीबीआई दिशा सालियान की मौत की गुत्थी सुलझाने में कामयाब हो पाएगी?
5: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने अपने वकील अपने एडवोकेट द्वारा मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक पत्र द्वारा सिक्योरिटी मांगी है। ये सिक्योरिटी इसलिए मांगी है क्योंकि उनका कहना है कि आदित्य ठाकरे शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे पर जो वो मानहानि का नोटिस उन्हें देने जा रहे हैं, 500 करोड़ का ये मानहानि का नोटिस है, डिफेमेशन नोटिस है, वो बाय हैंड डिलीवर करना चाहते हैं। इसीलिए 19 सितंबर को वो आदित्य ठाकरे के घर मातोश्री बैंड्रा जाएंगे और उन्होंने एडिक्वेट सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी की मांग की है पुलिस द्वारा।
0: विद्या के साथ दिव्यांश सिंह, मुंबई आज तक।
6: सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था से तो हर कोई वाकिफ रहता है, लेकिन जब डॉक्टर्स के नाम पर उनके ड्राइवर मरीजों का इलाज करने लग जाएं तो सोचिए कि क्या ही होता होगा। जी हाँ, कानपुर के सरकारी अस्पताल में ऐसा खिलवाड़ हुआ है। डॉक्टर आराम पर और उनका ड्राइवर काम पर। जब ड्राइवर डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कानपुर से लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। तो आइए देखते हैं ड्राइवर डॉक्टर का ओपीडी में जानलेवा इलाज। तस्वीरें देखिए आप।
7: इस हरकत पर तो यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में इलाज नहीं बल्कि दिन दहाड़े मरीजों के साथ जानलेवा खिलवाड़ चल रहा है। जी हाँ, कानपुर के काशीराम अस्पताल में डॉक्टर आराम पर हैं और ड्राइवर काम पर हैं। ओपीडी में मरीज आ रहे हैं और डॉक्टर साहब का ड्राइवर मरीजों को धड़ाधड़ दवाइयां लिख रहा है। ड्राइवर डॉक्टर मरीजों से उनका हाल पूछता है और पर्ची पर पता नहीं कौन सी दवाई लिखकर आगे बढ़ा देता है, फिर अगले मरीज का नंबर लेता है। बाकायदा ड्राइवर की ये ओपीडी कानपुर के काशीराम अस्पताल में जनरल मेडिसिन विभाग के हेड और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामकेश की ओपीडी में चल रही है। कहा तो स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और कहा अस्पताल में डॉक्टर की जगह उनके ड्राइवर ही इलाज करने बैठ जाएं तो मरीजों का हाल क्या होगा, ये आप और हम सभी समझ सकते हैं। यकीनन ये मरीजों के साथ जानलेवा खिलवाड़ से कम नहीं है। जब ड्राइवर ने ओपीडी चलाई तो सीएमओ कहाँ थे? जब ड्राइवर ओपीडी में मरीजों को देख रहा था तब सीएमएस कहाँ थे? इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की ओपीडी में ड्राइवर कैसे बैठा? सवाल यह है कि जब अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामकेश की ड्यूटी थी तो वो कहाँ थे? क्या डॉक्टर रामकेश ने ओपीडी में मरीजों के देखने के लिए अपने ड्राइवर को बैठा दिया? बड़ी बात यह है कि सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर से लेकर सीएमएस यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी अस्पताल में बैठते हैं, तो पूरा अस्पताल प्रशासन कहाँ था जिन्हें एक ड्राइवर ओपीडी चलाता हुआ नहीं दिखा? वीडियो वायरल होने के बाद पूरा अस्पताल प्रशासन जाग उठा है और कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि सरकारी सिस्टम कितना सड़ चुका है कि डॉक्टर की जगह ड्राइवर इलाज करता है। वीडियो में ड्राइवर मरीजों से उनकी परेशानी पूछता दिखाई दे रहा है। वो मरीजों से पूछ रहा है कि पेट में दर्द है या क्या तकलीफ है। इसके बाद वो पर्चे पर दवाई लिखता नजर आता है और मरीजों के पूछने पर वो उन्हें दवा अस्पताल से नहीं बल्कि बाहर मेडिकल स्टोर से लेने की बात कहता है। अब आपको दिखाते हैं डॉक्टर ड्राइवर ने जो पर्ची पर दवाइयां लिख कर दी आखिर पर्ची में क्या लिखा। पर्चे पर लिखा हुआ है जो हमें समझ आता है, कुछ BIG 500 लिखा है, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता, फिर कुछ OINT KT2 और कॉम्बी बी टाइप लिखा है, साथ ही KT2 200 mg लिखा है। अब ये कौन सी दवाइयां हैं जो ड्राइवर डॉक्टर ने मरीजों को लिख कर दी हैं? अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के ड्राइवर ही इलाज करेंगे तो फिर किस काम के CMO, किस काम के CMS और किस काम का स्वास्थ्य मंत्रालय? अस्पताल में ड्राइवर मरीजों का इलाज करते हुए पकड़ा गया तो अस्पताल के CMO हरिदत्त नेमी ने जांच कमेटी गठित करके पतली गली से बच निकलने की कोशिश की। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, CMO साहब पल्ला नहीं झाड़ सकते।
8: कल से वीडियो वायरल हुआ, मैंने भी उसे देखा है। वहाँ पर CMS है डॉक्टर पीयूष, तो डॉक्टर पीयूष से मेरी बात हुई है तो वहाँ पर उसकी जांच बिठा दी है और जांच में जो भी जिसके भी जो दोष होगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई की।
7: अस्पताल के CMS यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पीयूष मिश्रा ड्राइवर पर FIR की बात करके बच नहीं सकते। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, CMS साहब जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते।
9: नहीं, मैंने स्पष्टीकरण ये अपना जवाब दे पहले। और 3 सदस्यीय हमने वरिष्ठ चिकित्सकों की कमेटी बनाई है और इनकी इस पूरी घटनाक्रम को उसके ड्राइवर के खिलाफ विरुद्ध FIR करेंगे और इनको इनके खिलाफ हम शासन को पत्र भी लिखने जा रहे हैं कि ये अनुशासनहीनता है, बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण। ये हमें बड़ा खेद के लगता है कि सुनने में भी ये इतना बड़ा अच्छा अस्पताल जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ऊंचाई तक ले जाऊँ, इस प्रकार का बहुत ही खराब कार्य किया है इन्होंने।
7: आज तक ने इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर यानी डॉक्टर रामकेश से भी पूछा कि उनकी OPD में उनकी कुर्सी पर उनका ड्राइवर इलाज करने क्यों बैठा। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, डॉक्टर रामकेश का कोई बहाना नहीं चलने वाला।
10: एक वीडियो वायरल हुआ कि आपका ड्राइवर आपकी सीट पे बैठ के दवा दे रहा
11: है। सर आप महोदय, आप लोगों के माध्यम से या साहब CMS साहब के माध्यम से मुझे पता चला, तत्काल प्रभाव से उसे मैंने बाहर निकाल दिया अपने।
10: तो ये क्या पहले भी कभी बैठता था क्या?
11: नहीं, मेरे साथ रहता तो मेरी गाड़ी साफ करता था।
10: अच्छा, उसको दवा वगैरह कुछ तो नॉलेज होगा?
11: नहीं, कोई नॉलेज,
10: कुछ नॉलेज नहीं। तो ये दवा किसको दे रहा था ये?
11: नहीं, वो अब हम नहीं थे। अब उसने क्या किया है ये बताया, ये पता चला है कि वो उसके जानने वाला था, उसको लिख दिया है दवा।
10: तो वो सर आप कहाँ गए थे उसने?
11: मैं कोर्ट गया था।
10: कोर्ट गया था।
7: डॉक्टर रामकेश ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने ड्राइवर को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया है, लेकिन डॉक्टर रामकेश कहते हैं जब उनका ड्राइवर OPD में इलाज कर रहा था वो कोर्ट गए हुए थे। अब डॉक्टर रामकेश सच बोल रहे हैं या झूठ? लेकिन आज तक को अस्पताल के CMS पीयूष मिश्रा ने बताया कि उन्होंने अस्पताल का अटेंडेंट रजिस्टर चेक किया तो डॉक्टर रामकेश की कोई न्यायालय ड्यूटी नहीं थी। डॉक्टर रामकेश का कोर्ट वाला बहाना एक्सपोज।
9: ये किस समय आके कब बैठा, उस दिन कमरा में न्यायालय कार्य लिखा हुआ था, लेकिन अभी हमने उपस्थिति पंजिका को देखा तो उसमें कोई न्यायालय ड्यूटी थी नहीं इनकी पिछले लगभग 15 दिन से। लेकिन ये कमरे में नहीं थे उस समय मौजूद, समय ये वीडियो वायरल हुआ है।
7: तो क्या डॉक्टर रामकेश आराम पर थे और ड्राइवर काम पर था? कानपुर के सरकारी अस्पताल ने एक बार फिर से सरकारी अस्पतालों की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। कैसे सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर दिन दहाड़े खेलवाड़ किया जाता है?
12: वीडियो वायरल होने के बाद CMO ने जांच की बात की है, संबंधित अस्पताल और डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है। डॉक्टर ने भी अपना पल्ला यह कह के झाड़ दिया है कि उसने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या जांच की खाना पूर्ति से इतने बड़ी लापरवाही को दबाया जा सकता है? ना कोई तत्काल FIR, ना कोई ठोस कार्रवाई और ना कोई निलंबन। ऐसे में लोगों का प्रशासन से बड़ा सवाल है कि आखिरकार मरीजों की सुरक्षा के लिए जवाबदेही कब तय होगी।
7: रंजय सिंह के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।
6: और अब आपको दिखाते हैं द लखनऊ स्टोरी। कैसे एक लड़की को कार के बोनट पर घसीटते हुए वीडियो वायरल हुआ, तो अब कहानी पूरी तरह से परत दर परत खुलती जा रही है। पीड़ित लड़की का आरोप यह है कि शहनवाज नाम के लड़के ने पहले यश ठाकुर बनकर उससे दोस्ती की, उसके बाद विवाद होने पर शहनवाज ने लड़की को कार से घसीटा। अब इसमें हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो चुकी है जो इसे लव जिहाद बता रहे हैं और तगड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं।
7: लखनऊ से आई ये तस्वीरें देश भर में वायरल हो जाती हैं, जिसमें सफेद रंग की ये वर्ना कार एक महिला को बोनट के आगे घसीटते हुए दिखाई देती है। वीडियो में कार का नंबर साफ दिखता है, यूपी 32 KH 8090। आज तक के कैमरे पर आकाश नाम के चश्मदीद ने इस पूरी घटना की गवाही दी।
13: दीदी मतलब कि उसके ऊपर ऐसे रुक गई, रोक रोकने की कोशिश कर रही थी, तो उसने नहीं रोका, फिर यहाँ यही मेरी दुकान के सामने रोका, ठीक है। रोकने के बाद में फिर आगे रुकते रोकते वहाँ रुक गई दीदी, फिर वहाँ रुकी और दीदी बस जैसे साइड से ना साइड से मतलब बात करने की कोशिश कर रही थी, बस तुरंत ही रुक गई। पर रोकने के बाद में बस इतनी स्पीड में भगाया जैसे दीदी थोड़ा साइड में, दीदी फिर ऐसे रोकने की कोशिश, बहुत गिर गई दीदी ने, पर यहाँ चोट खा गई। मेरे दुकान पे कस्टमर बैठे वो भी वीडियो बनाए।
7: कार और कार चलाने वाले शहनवाज को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन बाद में कहानी कुछ और ही निकलती है। कार के भीतर गाड़ी चला रहे शख्स का नाम शहनवाज है और जिस लड़की को इसने टक्कर मारी उसका नाम अनामिका है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सोशल मीडिया पर अनामिका के दो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें वो आरोपी शहनवाज के साथ एक कार में बैठी नजर आ रही है और वो खुद बता रही है कैसे दोनों की मुलाकात हुई।
14: ये मैं हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है,
15: ठीक।
14: कली क्यों है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है। हमारे बीच में ये हुआ है, हमसे हमें छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम छोड़ नहीं रहे। हमने इससे बोला कि 1 से 2 महीने का मुझे टाइम दो, मैं अपने आप छोड़ दूंगी, अगर ना छोड़ा तो तुम मुझे खुद छोड़ देना बस।
15: कल मैं टकला बनवा लूंगा।
14: तुम ये चाहे टकला बनवा ले, चाहे लंगड़ा बनवा ले, चाहे एक आंख फूट जाए, तब भी हम इसके साथ रहेंगे।
15: पहचान में
14: आए या ना आए तब भी हम इसके साथ रहेंगे। अब और मैं गई थी इसके पास, इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने नंबर मांगा था, हमने जबरदस्ती नंबर लिया था फोन से निकाल के इसके, मैंने इसे मारा था, तोड़ा था, तब नंबर इसने दिया था, तभी हमारे साथ रिलेशनशिप में आया था। डर गया था बेचारा कि बहुत मारेगी अगर हमसे बात ना की।
7: आज तक ने अनामिका से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, हम आपको अनामिका का पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अनामिका ने पुलिस को बताया कि आरोपी शहनवाज ने उससे अपना असली नाम छुपाकर दोस्ती की थी। शहनवाज ने अपना नाम यश ठाकुर बताया था।
16: गाड़ी उस व्यक्ति की नहीं थी, उस व्यक्ति ने जो भी झूठ वूट बोला है, जो मुझे प्राइमा फेसी पता चला है, तो इसकी हम लोग जांच करवाएंगे। और इसके पीछे भी अगर कोई गुट शामिल है जो धर्मांतरण करा रहा है, या कोई इस प्रकार के लोग हैं जहां पर हिंदू लड़कियां टारगेट हो रही हैं, तो उनका भी पर्दाफाश होगा।
7: वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं, हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
17: ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल गिरोह हो सकता है, जिस तरह से जमालुद्दीन छांगुर बाबा जैसा व्यक्ति हजारों हिंदू बेटियों को शिकार बनाया, निकाह कराया,

0: 16 सितंबर को जनेश्वर मिश्र पार्क के पास अनामिका चाय पीने पहुंची थी। इसी दौरान शहनवाज भी एक दूसरी महिला मित्र के साथ कार से वहां पहुंचा। दूसरी युवती को शहनवाज के साथ देखकर अनामिका भड़क गई और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद शहनवाज वहां से कार लेकर निकलने लगा। शहनवाज जब कार लेकर जाने लगा तो अनामिका उसकी कार के सामने खड़ी हो गई। आरोप है कि शहनवाज ने कार आगे बढ़ा दी, इससे अनामिका कार के बोनट पर आ गई, जिसके बाद शहनवाज ने कार की स्पीड बढ़ा दी और अनामिका को घसीटते हुए चला गया। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: और इसी के साथ हमें

0: पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ। पंचायत आज तक 18 सितंबर सिर्फ आज तक पर।
1: There is a very famous quote ki history repeat itself.
2: There are certain things which have a same formula. So when formula is same, whenever it happens, it seems that the history is repeating.
3: Kuch left aur right wing ke log history ko alag alag interpret karte hain sir. Usse sir social harmony aur peace mein kuch dikkatein aati hain desh mein.
2: Dekho, duniya mein ek subject hai itihas jisko kisi bhi tarah se pesh kiya ja sakta hai. Jaise Aurangzeb, wo bechara kabar mein kitna karwat badalta hoga idhar udhar. Subah se shaam tak is desh mein log usko yaad karte hain.

प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में दीपोत्सव। काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए। प्रधानमंत्री ने जताया आभार। बंगाल उपचुनाव से पहले ममता और ऋतव्रत गुट को झटका। चुनाव आयोग ने टीएमसी के निशान और नाम के इस्तेमाल पर लगाई रोक। दोनों से कल तक मांगे गए तीन तीन विकल्प। यूपी में हाईवे को लेकर अखिलेश ने सीएम योगी को घेरा। कहा बीजेपी सरकार में निर्माण बाद में पूरा होता है लेकिन गिरने वो पहले लगता है। बोले अब वो हर लेन देन पर लेंगे टैक्स। 100% टैरिफ वाले अमेरिकी कानून पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध। अलग अलग स्रोतों से जारी रहेगी ऊर्जा खरीद। और टी20 में अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान। महज 30 गेंद में जड़ा शतक। टेस्ट खेलने वाले देशों में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड। भारत ने 127 रन से जीता मैच। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन पूरे धूमधाम से उनका मनाया गया। आशीर्वाद का कार्यक्रम रखा गया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर सीएम योगी समेत दिग्गज नेताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न।

0: प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न। कहीं केक काटा गया, कहीं दिए जलाए गए। आशीर्वाद का दिया नाम से देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम हुए। वाराणसी में भी गंगा तट पर दीपोत्सव किया गया।
1: नमो घाट पर हूँ, एक तरफ पतित पावनी माँ गंगा है जो मेरे सामने तेज प्रवाह में बह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है आज माहौल बनारस में अयोध्या जैसा है, क्योंकि ये जो दिए हैं ना, ये दिए यहाँ पर लग गए हैं, असंख्यों दिए जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर लाए गए हैं, लगाए गए हैं, और बच्चों ने बकायदा काफी मेहनत की है इन दियों को यहाँ बिछाने के लिए। वाइड फ्रेम यहाँ से दिखाएं एक बार और पूरा दर्शकों को यहाँ से दिखाएं कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पर नमो घाट पर दिए लगा दिए गए हैं।
0: उज्जैन समेत पूरे मध्य प्रदेश में आज दीपोत्सव की रोशनी बिखरी हुई है। महाकाल की नगरी में शिप्रा के राम

0: घाट, दत्त अखाड़ा घाट और महाकाल लोक में 25 लाख दीप जलाए गए।
1: महाकाल की इस पवित्र नगरी से प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की, दीर्घायु होने की कामना पूरा महाकाल के हमारे सभी लोग कर रहे हैं, यहाँ के नागरिक कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पवित्र तट से माननीय प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की कामना की जा रही है। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से करोड़ों लोगों के जीवन में जो बदलाव लाया, और इस तट की बात करें तो 800 करोड़ की अधिक सी योजना महाकाल कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री जी ने किया, जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म बढ़ा, आज यहाँ पर लोग का व्यवसाय बढ़ा है, उनके जीवन में उनके बदलाव आए हैं।
0: इसके अलावा श्रीनगर, कोलकाता और पटना में भी भव्य दीपोत्सव हुआ। और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भी 1 लाख दिए जलाए गए।
2: लगभग 1.5 लाख दिए एक समय पर जलाए जा रहे हैं, और ये जो प्रज्वलित दिए हैं जो आपको दूर तक नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे दिए इसीलिए जलाए गए हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक वादा किया था आज से 12 साल पहले, और लोगों से जो वादा किया था गुजरात के लोगों से आज से 25 साल पहले, उसको उन्होंने पूरा किया है। देखिए, हम लोग जब खुश होते हैं, जब हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसका कारण यही है कि हम बताते हैं कि किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, तो किस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ये दिए जो हैं इस समय उसी का सिंबल है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। पूरे विधि विधान से पूजन का अनुष्ठान हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, चिराग पासवान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस पूजा अर्चना में शामिल हुए।
3: सब लोग यहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए काशी विश्वनाथ का आए थे और विधिवत पूजा अर्चन का कार्य संपन्न हुआ है। और हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वह दीर्घायु करें।
4: बाबा से ही प्रार्थना की है कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु उन्हें प्राप्त हो और लंबे समय तक भारत का नेतृत्व उनके हाथों में रहे, जिससे भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विकसित भारत की संकल्पना उनके नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी देख सके।
0: राजनाथ सिंह ने वाराणसी से बाइक रैली को भी झंडी दिखाई, जो वाराणसी से वडनगर के लिए रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मभूमि वडनगर में सेवा संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। अमित शाह ने वडनगर में बाइक रैली को झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की, जो कि वाराणसी तक जाएगी।
5: 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 26 में 140 करोड़ भारतीय ये उत्साह और संकल्प के साथ, एक आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में समग्र विश्व में भारत सर्वप्रथम होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता का सामूहिक आत्मविश्वास खड़ा करना ये किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी कसौटी है, और वो भी तब जब जनता गहरी निराशा में डूबी हो। उन्होंने गहरी निराशा के गर्त से जनता को बाहर निकालकर नरेंद्र मोदी जी ने जनता को आत्मविश्वास से लवरेज कर 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत की यात्रा के साथ जोड़ने का काम किया।
0: उधर दिल्ली में इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने रक्तदान किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इसमें शामिल हुए। दिल्ली सरकार के मंत्री और सीएम रेखा गुप्ता ने भी रक्तदान किया।
6: प्रधानमंत्री जी का ये जन्म दिवस हम सबको जन सेवा की प्रेरणा देता है, और दिल्ली सरकार उनके दिखाए हुए रास्ते पर, उनके मार्गदर्शन में हमेशा आगे बढ़ते हुए इस काम को करेगी। आज हम मोदी जी को समर्पित करते हुए हमारे स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए हुए एक बर्थडे सॉन्ग, एक गीत का भी लॉन्चिंग करेंगे।
0: कुल मिलाकर 17 सितंबर का दिन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के जश्न के नाम रहा। आज तक ब्यूरो।
2: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान 19 सितंबर को आदित्य ठाकरे के घर मातोश्री जाकर उन्हें मानहानि का नोटिस खुद सौंपेंगे। साथ ही साथ उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर अपने और अपनी कानूनी टीम के लिए वहां जाते समय पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है।

0: दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री पर सियासत हावी होती जा रही है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 500 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में दोनों नेताओं के बयानों पर आपत्ति जताई गई है। सतीश सालियान ने दोनों को बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने, बयान वापस लेने, लिखित माफी मांगकर उसे प्रिंट मीडिया में छपवाने, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 3 मिनट का माफीनामा वीडियो जारी करने की मांग की है।
1: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान जी की तरफ से आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख को डिफामेशन का नोटिस दिया गया है। ये अलग डिफामेशन का नोटिस है, उन्होंने जो पोस्ट किए उसके लिए एक और एडिशनल नोटिस दिया जा रहा है। तो ये जो नोटिस है, ये उन्होंने मैटर वही है, सिमिलर। उन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट पे कहा था कि सतीश सालियान के पिताजी ने पिटीशन गलत फाइल की है और ऑलरेडी इस मैटर में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके उनको क्लीन चिट दी है, लेकिन राजकीय हेतु से प्रेरित होकर और पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ मीडिया के लोग जिनके इनके ये संबंध ठीक नहीं है उनके इशारे पे ये पिटीशन फाइल की गई है।
0: दिशा के पिता ने 500 करोड़ के मानहानि के नोटिस में लिखा, आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख ने मेरे बयानों और कानूनी कार्रवाई को लेकर झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप लगाए। दोनों नेताओं ने मेरी बेटी दिशा की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया। आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे हैं कि सीबीआई पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है। आदित्य कह रहे हैं कि वो दिशा को जानते ही नहीं थे, ये बात सच नहीं है। हमारे पास इन नेताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत है।
2: 17 पन्ने के इस लीगल नोटिस में कहा गया है कि नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख दोनों को ही एक अनकंडीशनल अपॉलोजी देनी है, और अनकंडीशनल अपॉलोजी किस तरीके की हो ये भी स्पेसिफाई किया गया है। अखबार में एडवर्टीजमेंट A4 साइज के होने चाहिए, 3 मिनट से कम के वीडियो के नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 500 करोड़ जो डिफेमेशन में है किया है, जिसकी वजह से जो इतनी बदनामी हुई है उसका हर्जाना ये 500 करोड़ भी दिए जाएं। तो ये तमाम बातें इन 17 पन्नों में लिखे हैं, और अब अनिल देशमुख और आदित्य ठाकरे दोनों के ही वकील ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर से डील कैसे किया जाए।
0: दरअसल 16 सितंबर को आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिशा मौत मिस्ट्री केस में सफाई देते हुए लिखा था, मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और ना ही उन्हें जानता हूँ। पिछले 6 सालों से कुछ लोग जानबूझकर और बिना किसी सबूत के इस दुखद मामले से मेरा नाम जोड़कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बदनाम करने का ये अभियान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जोरदार टीवी डिबेट और मीडिया ट्रायल से सच्चाई नहीं बदलती। इस केस की जांच दोबारा आगे बढ़ने दें।
1: और बाकी जो उन्होंने अभी जो नया पोस्ट किया है कि इन्वेस्टिगेशन शांतिपूर्ण तरीके से होने दो, मीडिया के लोग डिबेट ना करें, तो इसको कहते हैं चोर मचाए शोर। इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दिया, इन्होंने खुद उसके रिकॉर्ड डिलीट करवाए, इन्होंने खुद सतीश सालियान के पिटीशन को ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि सीबीआई को मैटर ना जाए, इसी और इन्हीं की वजह से डिले हुआ है ये सब। तो अभी वो तो हमने इनको खिलाफ लड़के सबूत दे के ये ऑर्डर लिया है, इनका सारा झूठ पकड़ा गया है, और अब यही खुद चिल्ला रहे और ये जो कह रहे हैं दिशा का मेरा संबंध नहीं है, हमारे पास में सारे डिजिटल प्रूफ्स, आई विटनेस से लेके सारी चीजें हैं। ये दो चीजों का आज तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आप इस ड्रग्स के बिजनेस में ड्रग्स का बिजनेस करते हुए और खुद ड्रग्स का सेवन करते हुए ड्रगिस्ट हो। ये नारकोटिक्स ब्यूरो के क्राइम नंबर 15/2020 में आया, आपके फोन सर्विलेंस में आया, ये हमने एफिडेविट पे कहा, उसका आप जवाब नहीं दे पाए और उसको मना भी नहीं कर रहे हो, उसके बारे में बोलो, और आपके मोबाइल टावर लोकेशन वहां थे, और आपने जो पहला डिफेंस लिया था कि मैं उस दिन बबाहर था, मेरे नाना जी गुजर गए थे 8 जून को, मुंबई से बाहर था, वो भी झूठा साबित हो गया, नाना जी 14 जून को गुजरे थे। उसके बाद में आपने कहा इसकी जो आपकी मेन पार्टनर इन क्राइम है इसमें रिया चक्रवर्ती, बोले मैं उसको जानता नहीं, रिया ने कहा मैं आपको नहीं जानती, ये भी फोरेंसिक की चैट रिकवरी में ये भी झूठा साबित हो गया। उस तो आप हैबिचुअल झूठ बोलने वाले हो।
0: दिशा सालियान के पिता 6 साल से कह रहे हैं कि उनकी बेटी दिशा की गैंगरेप के बाद हत्या हुई थी। वो आदित्य ठाकरे समेत कई पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं।
3: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनू मौर्या, सुरेश पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने ऐसा कंप्लेंट दिया है।
0: हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को सतीश सालियान के आरोपों की कार्रवाई करने को कहा है। बीजेपी विधायक राम कदम भी लगातार तत्कालीन उद्धव सरकार की भूमिका संदिग्ध बताते रहे हैं।
4: दिशा सालियान की मौत, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष से ऊपर उठ करके है। श्रीमान आदित्य ठाकरे को 6.5 वर्ष लग गए ये बोलने के लिए कि उनका इस मामले में कोई संबंध नहीं है। इसके पहले उनकी खामोशी का क्या कारण था? किसने उन्हें रोका था? उनके पिता तो लगातार बार बार आरोप कर रहे थे, तब आप क्यों नहीं बोले? और कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का था? क्या कारण था कि आपकी सरकार पुलिस को जांच करने से क्यों रोक रही थी? और यदि पुलिस जांच नहीं कर रही है तो आपकी सरकार ने पुलिस से क्यों नहीं कहा उस पिता को न्याय मिलना चाहिए?
0: दिशा सालियान की मौत की शुरुआती जांच मुंबई पुलिस ने की थी। पुलिस की जांच में दिशा की मौत को आत्महत्या बताया गया था। मार्च 2025 में सामने आई मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में भी दिशा की मौत को सुसाइड बताते हुए उनकी मानसिक परेशानी का जिक्र किया गया था। लेकिन सवाल है कि क्या सीबीआई दिशा सालियान की मौत की गुत्थी सुलझाने में कामयाब हो पाएगी?
5: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने अपने वकील अपने एडवोकेट द्वारा मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक पत्र द्वारा सिक्योरिटी मांगी है। ये सिक्योरिटी इसलिए मांगी है क्योंकि उनका कहना है कि आदित्य ठाकरे शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे पर जो वो मानहानि का नोटिस उन्हें देने जा रहे हैं 500 करोड़ का ये मानहानि का नोटिस है, डिफेमेशन नोटिस है, वो बाय हैंड डिलीवर करना चाहते हैं। इसीलिए 19 सितंबर को वो आदित्य ठाकरे के घर मातोश्री बैंड्रा जाएंगे और उन्होंने एडिक्वेट सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी की मांग की है पुलिस द्वारा।
0: विद्या के साथ दिव्यक्ष सिंह, मुंबई आज तक।
6: सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था से तो हर कोई वाकिफ रहता है, लेकिन जब डॉक्टर्स के नाम पर उनके ड्राइवर मरीजों का इलाज करने लग जाएं तो सोचिए कि क्या ही होता होगा। जी हाँ, कानपुर के सरकारी अस्पताल में ऐसा खिलवाड़ हुआ है। डॉक्टर आराम पर और उनका ड्राइवर काम पर। जब ड्राइवर डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कानपुर से लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। तो आइए देखते हैं ड्राइवर डॉक्टर का ओपीडी में जानलेवा इलाज। तस्वीरें देखिए आप।
7: इस हरकत पर तो यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में इलाज नहीं बल्कि दिन दहाड़े मरीजों के साथ जानलेवा खिलवाड़ चल रहा है। जी हां, कानपुर के काशीराम अस्पताल में डॉक्टर आराम पर हैं और ड्राइवर काम पर हैं। ओपीडी में मरीज आ रहे हैं और डॉक्टर साहब का ड्राइवर मरीजों को धड़ाधड़ दवाइयां लिख रहा है। ड्राइवर डॉक्टर मरीजों से उनका हाल पूछता है और पर्ची पर पता नहीं कौन सी दवाई लिखकर आगे बढ़ा देता है, फिर अगले मरीज का नंबर लेता है। बाकायदा ड्राइवर की ये ओपीडी कानपुर के काशीराम अस्पताल में जनरल मेडिसिन विभाग के हेड और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामकेश की ओपीडी में चल रही है। कहा तो स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और कहा अस्पताल में डॉक्टर की जगह उनके ड्राइवर ही इलाज करने बैठ जाएं तो मरीजों का हाल क्या होगा, ये आप और हम सभी समझ सकते हैं। यकीनन ये मरीजों के साथ जानलेवा खिलवाड़ से कम नहीं है। जब ड्राइवर ने ओपीडी चलाई तो सीएमओ कहाँ थे? जब ड्राइवर ओपीडी में मरीजों को देख रहा था तब सीएमएस कहाँ थे? इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की ओपीडी में ड्राइवर कैसे बैठा? सवाल यह है कि जब अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामकेश की ड्यूटी थी तो वो कहाँ थे? क्या डॉक्टर रामकेश ने ओपीडी में मरीजों के देखने के लिए अपने ड्राइवर को बैठा दिया? बड़ी बात यह है कि सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर से लेकर सीएमएस यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी अस्पताल में बैठते हैं, तो पूरा अस्पताल प्रशासन कहाँ था जिन्हें एक ड्राइवर ओपीडी चलाता हुआ नहीं दिखा? वीडियो वायरल होने के बाद पूरा अस्पताल प्रशासन जाग उठा है और कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि सरकारी सिस्टम कितना सड़ चुका है कि डॉक्टर की जगह ड्राइवर इलाज करता है। वीडियो में ड्राइवर मरीजों से उनकी परेशानी पूछता दिखाई दे रहा है। वो मरीजों से पूछ रहा है कि पेट में दर्द है या क्या तकलीफ है। इसके बाद वो पर्चे पर दवाई लिखता नजर आता है और मरीजों के पूछने पर वो उन्हें दवा अस्पताल से नहीं बल्कि बाहर मेडिकल स्टोर से लेने की बात कहता है। अब आपको दिखाते हैं डॉक्टर ड्राइवर ने जो पर्ची पर दवाइयां लिख कर दी आखिर पर्ची में क्या लिखा। पर्चे पर लिखा हुआ है जो हमें समझ आता है, कुछ BIG 500 लिखा है, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता, फिर कुछ OINT KT2 और कॉम्बी बी टाइप लिखा है, साथ ही KT2 200 mg लिखा है। अब ये कौन सी दवाइयां हैं जो ड्राइवर डॉक्टर ने मरीजों को लिख कर दी हैं? अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के ड्राइवर ही इलाज करेंगे तो फिर किस काम के CMO, किस काम के CMS और किस काम का स्वास्थ्य मंत्रालय? अस्पताल में ड्राइवर मरीजों का इलाज करते हुए पकड़ा गया तो अस्पताल के CMO हरिदत्त नेमी ने जांच कमेटी गठित करके पतली गली से बच निकलने की कोशिश की। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, CMO साहब पल्ला नहीं झाड़ सकते।
8: कल से वीडियो वायरल हुआ, मैंने भी उसे देखा है। वहाँ पर CMS हैं डॉक्टर पीयूष, तो डॉक्टर पीयूष से मेरी बात हुई है तो वहाँ पर उसकी जांच बिठा दी है और जांच में जो भी जिसके भी जो दोष होगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई की।
7: अस्पताल के CMS यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पीयूष मिश्रा ड्राइवर पर FIR की बात करके बच नहीं सकते। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, CMS साहब जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते।
9: मैंने स्पष्टीकरण ये अपना जवाब दे पहले, और 3 सदस्यीय हमने वरिष्ठ चिकित्सकों की कमेटी बनाई है और इनकी ये इस पूरी घटनाक्रम को उसके ड्राइवर के खिलाफ विरुद्ध FIR करेंगे और इनको इनके खिलाफ हम शासन को पत्र भी लिखने जा रहे हैं कि ये अनुशासनहीनता है। बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, ये हमें बड़ा खेद के लगता है कि सुनने में भी ये इतना बड़ा अच्छा अस्पताल जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ऊंचाई तक ले जाऊँ, इस प्रकार का बहुत ही खराब कार्य किया है इन्होंने।
7: आज तक ने इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर यानी डॉक्टर रामकेश से भी पूछा कि उनकी OPD में उनकी कुर्सी पर उनका ड्राइवर इलाज करने क्यों बैठा। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, डॉक्टर रामकेश का कोई बहाना नहीं चलने वाला।
10: एक वीडियो वायरल हो रहा है कि आपका ड्राइवर आपकी सीट पे बैठ के दवा दे रहा है।
11: सर आप महोदय, आप लोगों के माध्यम से या साहब CMS साहब के माध्यम से मुझे पता चला, तत्काल प्रभाव से उसे मैंने बाहर निकाल दिया अपने।
10: तो ये क्या पहले भी कभी बैठता था क्या?
11: नहीं, मेरे साथ रहता तो मेरी गाड़ी वाड़ी साफ करता था।
10: अच्छा, उसको दवा वगैरह कुछ तो नॉलेज होगा?
11: नहीं, कोई नॉलेज
10: नहीं। तो ये दवा किसको दे रहा था ये?
11: नहीं, वो अब हम नहीं थे। अब उसने क्या किया है ये बताया, ये पता चला है कि वो उसके जानने वाला था, उसको लिख दिया है दवा।
10: तो वो सर आप कहाँ गए थे उस समय?
11: मैं कोर्ट गया था।
10: कोर्ट गया था।
7: डॉक्टर रामकेश ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने ड्राइवर को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया है, लेकिन डॉक्टर रामकेश कहते हैं जब उनका ड्राइवर OPD में इलाज कर रहा था वो कोर्ट गए हुए थे। अब डॉक्टर रामकेश सच बोल रहे हैं या झूठ? लेकिन आज तक को अस्पताल के CMS पीयूष मिश्रा ने बताया कि उन्होंने अस्पताल का अटेंडेंट रजिस्टर चेक किया तो डॉक्टर रामकेश की कोई न्यायालय ड्यूटी नहीं थी। डॉक्टर रामकेश का कोर्ट वाला बहाना एक्सपोज।
9: ये किस समय आके कब बैठा, उस दिन कमरा में न्यायालय कार्य लिखा हुआ था, लेकिन अभी हमने उपस्थिति पंजिका को देखा तो उसमें कोई न्यायालय ड्यूटी थी नहीं इनकी पिछले लगभग 15 दिन से। लेकिन ये कमरे में नहीं थे उस समय मौजूद, समय ये वीडियो वायरल हुआ है।
7: तो क्या डॉक्टर रामकेश आराम पर थे और ड्राइवर काम पर था? कानपुर के सरकारी अस्पताल ने एक बार फिर से सरकारी अस्पतालों की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। कैसे सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर दिन दहाड़े खिलवाड़ किया जाता है।
12: वीडियो वायरल होने के बाद CMO ने जांच की बात की है, संबंधित अस्पताल और डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है। डॉक्टर ने भी अपना पल्ला यह कह के झाड़ दिया है कि उसने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या जांच की खाना पूर्ति से इतने बड़ी लापरवाही को दबाया जा सकता है? ना कोई तत्काल FIR, ना कोई ठोस कार्रवाई और ना कोई निलंबन। ऐसे में लोगों का प्रशासन से बड़ा सवाल है कि आखिरकार मरीजों की सुरक्षा के लिए जवाबदेही कब तय होगी।
7: रंजय सिंह के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।
6: और अब आपको दिखाते हैं द लखनऊ स्टोरी। कैसे एक लड़की को कार के बोनट पर घसीटते हुए वीडियो वायरल हुआ, तो अब कहानी पूरी तरह से परत दर परत खुलती जा रही है। पीड़ित लड़की का आरोपी है कि शहनवाज नाम के लड़के ने पहले यश ठाकुर बनकर उससे दोस्ती की, उसके बाद विवाद होने पर शहनवाज ने लड़की को कार से घसीटा। अब इसमें हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो चुकी है जो इसे लव जिहाद बता रहे हैं और तगड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं।
7: लखनऊ से आई ये तस्वीरें देश भर में वायरल हो जाती हैं, जिसमें सफेद रंग की ये वर्ना कार एक महिला को बोनट के आगे घसीटते हुए दिखाई देती है। वीडियो में कार का नंबर साफ दिखता है, यूपी 32 KH 8090। आज तक के कैमरे पर आकाश नाम के चश्मदीद ने इस पूरी घटना की गवाही दी।
13: दीदी मतलब कि उसके ऊपर ऐसे रुक गई, रोक रोकने की कोशिश कर रही थी, तो उसने नहीं रोका, फिर यहाँ यही मेरी दुकान के सामने रोका, ठीक है। रोकने के बाद में फिर आगे रुकते रहते वहाँ रुक गई दीदी, फिर वहाँ रुकी और दीदी बस जैसे साइड से ना साइड से मतलब बात करने की कोशिश कर रही थी, बस तुरंत ही रुक गए। बस रोकने के बाद में बस इतनी स्पीड में भगाया जैसे दीदी थोड़ा साइड में, बस दीदी फिर ऐसे रोकने की कोशिश, बहुत गिर गई दीदी ने, पर यहाँ चोट खा गई। मेरे दुकान पे कस्टमर बैठे वो भी वीडियो बनाए।
7: कार और कार चलाने वाले शहनवाज को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन बाद में कहानी कुछ और ही निकलती है। कार के भीतर गाड़ी चला रहे शख्स का नाम शहनवाज है और जिस लड़की को इसने टक्कर मारी उसका नाम अनामिका है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सोशल मीडिया पर अनामिका के दो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो आरोपी शहनवाज के साथ एक कार में बैठी नजर आ रही है और वो खुद बता रही है कैसे दोनों की मुलाकात हुई।
14: ये मैं हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक। कली क्यों है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है। हमारे बीच में ये हुआ है, हमें छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम छोड़ नहीं रहे। हमने इससे बोला कि 1 से 2 महीने का मुझे टाइम दो, मैं अपने आप छोड़ दूंगी, अगर ना छोड़ा तो तुम मुझे खुद छोड़ देना बस।
15: कल मैं टकला बनवा लूंगा।
14: तुम ये चाहे टकला बनवा ले चाहे लंगड़ा बनवा ले चाहे एक आंख फूट जाए तब भी हम इसके साथ रहेंगे।
15: पहचान में
14: आए या ना आए तब भी हम इसके साथ रहेंगे। अब और मैं गई थी इसके पास, इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने नंबर मांगा था, हमने जबरदस्ती नंबर लिया था फोन से निकाल के इसके, मैंने इसे मारा था तोड़ा था तब नंबर इसने दिया था, तभी हमारे साथ रिलेशनशिप में आया था। डर गया था बेचारा कि बहुत मारेगी अगर हमसे बात ना की।
7: आज तक ने अनामिका से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, हम आपको अनामिका का पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अनामिका ने पुलिस को बताया कि आरोपी शहनवाज ने उससे अपना असली नाम छुपाकर दोस्ती की थी। शहनवाज ने अपना नाम यश ठाकुर बताया था।
16: गाड़ी उस व्यक्ति की नहीं थी, उस व्यक्ति ने जो भी झूठ वूट बोला है, जो मुझे प्राइमा फेसी पता चला है, तो इसकी हम लोग जांच करवाएंगे। और इसके पीछे भी अगर कोई गुट शामिल है जो धर्मांतरण करा रहा है या कोई इस प्रकार के लोग हैं जहां पर हिंदू लड़कियां टारगेट हो रही हैं, तो उनका भी पर्दाफाश होगा।
7: वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं, हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।
17: ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल गिरोह हो सकता है, जिस तरह से जमालुद्दीन छांगुर बाबा जैसा व्यक्ति हजारों हिंदू बेटियों को शिकार बनाया, निकाह कराया, धर्मांतरण कराया, चाहे पैसा देकर कराया चाहे जबरन कराया, तो ऐसी स्थिति में आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में DCP पूर्वी कार्यालय पर आज मैडम को मैं ये ज्ञापन देने आया था। ज्ञापन का प्रक्रिया क्या है कि उच्च स्तरीय जाँच हो।
7: 16 सितम्बर को जनेश्वर मिश्र पार्क के पास अनामिका चाय पीने पहुँची थी, इसी दौरान शहनवाज भी एक दूसरी महिला मित्र के साथ कार से वहां पहुंचा। दूसरी युवती को शहनवाज के साथ देखकर अनामिका भड़क गई और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद शहनवाज वहां से कार लेकर निकलने लगा। शहनवाज जब कार लेकर जाने लगा तो अनामिका उसकी कार के सामने खड़ी हो गई। आरोप है कि शहनवाज ने कार आगे बढ़ा दी, इससे अनामिका कार के बोनट पर आ गई, जिसके बाद शहनवाज ने कार की स्पीड बढ़ा दी और अनामिका को घसीटते हुए चला गया। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में दीपोत्सव। काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए, प्रधानमंत्री ने जताया आभार। बंगाल उपचुनाव से पहले ममता और ऋतव्रत गुट को झटका। चुनाव आयोग ने टीएमसी के निशान और नाम के इस्तेमाल पर लगाई रोक। दोनों से कल तक मांगे गए तीन तीन विकल्प। यूपी में हाईवे को लेकर अखिलेश ने सीएम योगी को घेरा। कहा, बीजेपी सरकार में निर्माण बाद में पूरा होता है लेकिन गिरने वो पहले लगता है। बोले, अब वो हर लेन देन पर लेंगे टैक्स। 100% टैरिफ वाले अमेरिकी कानून पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध। अलग अलग स्रोतों से जारी रहेगी ऊर्जा खरीद। और टी20 में अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान। महज 30 गेंद में जड़ा शतक। टेस्ट खेलने वाले देशों में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड। भारत ने 127 रन से जीता मैच। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन पूरे धूमधाम से उनका मनाया गया। आशीर्वाद का कार्यक्रम रखा गया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर सीएम योगी समेत दिग्गज नेताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न।

0: प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न। कहीं केक काटा गया, कहीं दिए जलाए गए। आशीर्वाद का दिया नाम से देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम हुए। वाराणसी में भी गंगा तट पर दीपोत्सव किया गया।
1: नमो घाट पर हूँ, एक तरफ पतित पावनी माँ गंगा है जो मेरे सामने तेज प्रवाह में बह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है आज माहौल बनारस में अयोध्या जैसा है, क्योंकि ये जो दिए हैं ना, ये दिए यहाँ पर लग गए हैं, असंख्यों दिए जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर लाए गए हैं, लगाए गए हैं, और बच्चों ने बकायदा काफी मेहनत की है इन दियों को यहाँ बिछाने के लिए। वाइड फ्रेम यहाँ से दिखाएं एक बार और पूरा दर्शकों को यहाँ से दिखाएं कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पर नमो घाट पर दिए लगा दिए गए हैं।
0: उज्जैन समेत पूरे मध्य प्रदेश में आज दीपोत्सव की रोशनी बिखरी हुई है। महाकाल की नगरी में शिप्रा के राम घाट, दत्त अखाड़ा घाट और महाकाल लोक में 25 लाख दीप जलाए गए।
2: महाकाल की इस पवित्र नगरी से प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की, दीर्घायु होने की कामना पूरा महाकाल के हमारे सभी लोग कर रहे हैं, यहाँ के नागरिक कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पवित्र तट से माननीय प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की कामना की जा रही है। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से करोड़ों लोगों के जीवन में जो बदलाव लाया, और इस तट की बात करें तो 800 करोड़ की अधिक सी योजना महाकाल कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री जी ने किया, जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म बढ़ा, आज यहाँ पर लोग का व्यवसाय बढ़ा है, उनके जीवन में उनके बदलाव आए।
0: इसके अलावा श्रीनगर, कोलकाता और पटना में भी भव्य दीपोत्सव हुआ। और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भी 1 लाख दिए जलाए गए।
3: यहाँ पर लगभग 1.5 लाख दिए एक समय पर जलाए जा रहे हैं, और ये जो प्रज्वलित दिए हैं जो आपको दूर तक नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे दिए इसीलिए जलाए गए हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक वादा किया था आज से 12 साल पहले, और लोगों से जो वादा किया था गुजरात के लोगों से आज से 25 साल पहले, उसको उन्होंने पूरा किया है। देखिए, हम लोग जब खुश होते हैं, जब हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसका कारण यही है कि हम बताते हैं कि किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, तो किस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ये दिए जो है इस समय उसी का सिंबल है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। पूरे विधि विधान से पूजन का अनुष्ठान हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, चिराग पासवान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस पूजा अर्चना में शामिल हुए।
4: सब लोग यहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए काशी विश्वनाथ का आए थे, और विधिवत पूजा अर्चन का कार्य संपन्न हुआ है, और हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वह दीर्घायु करें।
5: बाबा से ही प्रार्थना की है कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु उन्हें प्राप्त हो और लंबे समय तक भारत का नेतृत्व उनके हाथों में रहे, जिससे भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विकसित भारत की संकल्पना उनके नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी देख सकें।
0: राजनाथ सिंह ने वाराणसी से बाइक रैली को भी झंडी दिखाई, जो वाराणसी से वडनगर के लिए रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मभूमि वडनगर में सेवा संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। अमित शाह ने वडनगर में बाइक रैली को झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की, जो कि वाराणसी तक जाएगी।
6: 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 26 में 140 करोड़ भारतीय ये उत्साह और संकल्प के साथ, एक आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में समग्र विश्व में भारत सर्वप्रथम होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता का सामूहिक आत्मविश्वास खड़ा करना ये किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी कसौटी है, और वो भी तब जब जनता गहरी निराशा में डूबी हो। उन्होंने गहरी निराशा के गर्त से जनता को बाहर निकालकर नरेंद्र मोदी जी ने जनता को आत्मविश्वास से लवरेज कर 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत की यात्रा के साथ जोड़ने का काम किया।
0: उधर दिल्ली में इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने रक्तदान किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इसमें शामिल हुए। दिल्ली सरकार के मंत्री और सीएम रेखा गुप्ता ने भी रक्तदान किया।
7: प्रधानमंत्री जी का ये जन्म दिवस हम सबको जन सेवा की प्रेरणा देता है और दिल्ली सरकार उनके दिखाए हुए रास्ते पर उनके मार्गदर्शन में हमेशा आगे बढ़ते हुए इस काम को करेगी। आज हम मोदी जी को समर्पित करते हुए हमारे स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए हुए एक बर्थडे सॉन्ग, एक गीत का भी लॉन्चिंग करेंगे।
0: कुल मिलाकर 17 सितंबर का दिन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के जश्न के नाम रहा। आज तक ब्यूरो।
3: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान 19 सितंबर को आदित्य ठाकरे के घर मातोश्री जाकर उन्हें मानहानि का नोटिस खुद सौंपेंगे। साथ ही साथ उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर अपने और अपनी कानूनी टीम के लिए वहां जाते समय पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है।

0: दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री पर सियासत हावी होती जा रही है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 500 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में दोनों नेताओं के बयानों पर आपत्ति जताई गई है। सतीश सालियान ने दोनों को बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने, बयान वापस लेने, लिखित माफी मांगकर उसे प्रिंट मीडिया में छपवाने, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 3 मिनट का माफीनामा वीडियो जारी करने की मांग की है।
1: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान जी की तरफ से आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख को डिफामेशन का नोटिस दिया गया है। ये अलग डिफामेशन का नोटिस है, उन्होंने जो पोस्ट किए उसके लिए एक और एडिशनल नोटिस दिया जा रहा है। तो ये जो नोटिस है, ये उन्होंने मैटर वही है, सिमिलर, उन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट पे कहा था कि सतीश सालियान के पिताजी ने पिटीशन गलत फाइल की है और ऑलरेडी इस मैटर में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके उनको क्लीन चिट दी है, लेकिन राजकीय हेतु से प्रेरित होकर और पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ मीडिया के लोग जिनके इनके ये संबंध ठीक नहीं है उनके इशारे पे ये पिटीशन फाइल की गई है।
0: दिशा के पिता ने 500 करोड़ के मानहानि के नोटिस में लिखा, आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख ने मेरे बयानों और कानूनी कार्रवाई को लेकर झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप लगाए। दोनों नेताओं ने मेरी बेटी दिशा की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया। आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे हैं कि सीबीआई पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है। आदित्य कह रहे हैं कि वो दिशा को जानते ही नहीं थे, ये बात सच नहीं है। हमारे पास इन नेताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत है।
2: 17 पन्ने के इस लीगल नोटिस में कहा गया है कि नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख दोनों को ही एक अनकंडीशनल अपॉलोजी देनी है, और अनकंडीशनल अपॉलोजी किस तरीके की हो ये भी स्पेसिफाई किया गया है। अखबार में एडवर्टीजमेंट A4 साइज के होने चाहिए, 3 मिनट से कम के वीडियो के नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 500 करोड़ जो डिफेमेशन में है किया है, जिसकी वजह से जो इतनी बदनामी हुई है उसका हर्जाना ये 500 करोड़ भी दिए जाएं। तो ये तमाम बातें इन 17 पन्नों में लिखे हैं, और अब अनिल देशमुख और आदित्य ठाकरे दोनों के ही वकील ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर से डील कैसे किया जाए।
0: दरअसल 16 सितंबर को आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिशा मौत मिस्ट्री केस में सफाई देते हुए लिखा था, मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और ना ही उन्हें जानता हूँ। पिछले 6 सालों से कुछ लोग जानबूझकर और बिना किसी सबूत के इस दुखद मामले से मेरा नाम जोड़कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बदनाम करने का ये अभियान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जोरदार टीवी डिबेट और मीडिया ट्रायल से सच्चाई नहीं बदलती। इस केस की जांच दोबारा आगे बढ़ने दें।
1: और बाकी जो उन्होंने अभी जो नया पोस्ट किया है कि इन्वेस्टिगेशन शांतिपूर्ण तरीके से होने दो, मीडिया के लोग डिबेट ना करें, तो इसको कहते हैं चोर मचाए शोर। इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दिया, इन्होंने खुद उसके रिकॉर्ड डिलीट करवाए, इन्होंने खुद सतीश सालियान के पिटीशन को ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि सीबीआई को मैटर ना जाए, इसी और इन्हीं की वजह से डिले हुआ है ये सब। तो अभी वो तो हमने इनको खिलाफ लड़के सबूत दे के ये ऑर्डर लिया है, इनका सारा झूठ पकड़ा गया है, और अब यही खुद चिल्ला रहे और ये जो कह रहे हैं दिशा का मेरा संबंध नहीं है, हमारे पास में सारे डिजिटल प्रूफ्स आई विटनेस से लेके सारी चीजें है। ये दो चीजों का आज तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आप इस ड्रग्स के बिजनेस में ड्रग्स का बिजनेस करते हुए और खुद ड्रग्स का सेवन करते हुए ड्रगिस्ट हो, ये नारकोटिक्स ब्यूरो के क्राइम नंबर 15/2020 में आया, आपके फोन सर्विलेंस में आया, ये हमने एफिडेविट पे कहा, उसका आप जवाब नहीं दे पाए और उसको मना भी नहीं कर रहे हो उसके बारे में बोलो, और आपके मोबाइल टावर लोकेशन वहां थे, और आपने जो पहला डिफेंस लिया था कि मैं उस दिन बबाहर था, मेरे नाना जी गुजर गए थे 8 जून को, मुंबई से बाहर था, वो भी झूठा साबित हो गया, नाना जी 14 जून को गुजरे थे। उसके बाद में आपने कहा इसकी जो आपकी मेन पार्टनर इन क्राइम है इसमें रिया चक्रवर्ती, बोले मैं इसको जानता नहीं, रिया ने कहा मैं आपको नहीं जानती, ये भी फोरेंसिक की चैट रिकवरी में ये भी झूठा साबित हो गया। उस तो आप हैबिचुअल झूठ बोलने वाले हो।
0: दिशा सालियान के पिता 6 साल से कह रहे हैं कि उनकी बेटी दिशा की गैंगरेप के बाद हत्या हुई थी। वो आदित्य ठाकरे समेत कई पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं।
3: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है, जो आदित्य ठाकरे, दिनू मौर्या, सुरेश पंचोली, उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने हैं, ऐसा कंप्लेंट दिया है।
0: हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को सतीश सालियान के आरोपों की कार्रवाई करने को कहा है। बीजेपी विधायक राम कदम भी लगातार तत्कालीन उद्धव सरकार की भूमिका संदिग्ध बताते रहे हैं।
4: दिशा सालियान की मौत, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष से ऊपर उठ करके है। श्रीमान आदित्य ठाकरे को 6.5 वर्ष लग गए ये बोलने के लिए कि उनका इस मामले में कोई संबंध नहीं है। इसके पहले उनकी खामोशी का क्या कारण था? किसने उन्हें रोका था? उनके पिता तो लगातार बार बार आरोप कर रहे थे, तब आप क्यों नहीं बोले? और कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का था? क्या कारण था कि आपकी सरकार पुलिस को जांच करने से क्यों रोक रही थी? और यदि पुलिस जांच नहीं कर रही है तो आपकी सरकार ने पुलिस से क्यों नहीं कहा उस पिता को न्याय मिलना चाहिए?
0: दिशा सालियान की मौत की शुरुआती जांच मुंबई पुलिस ने की थी। पुलिस की जांच में दिशा की मौत को आत्महत्या बताया गया था। मार्च 2025 में सामने आई मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में भी दिशा की मौत को सुसाइड बताते हुए उनकी मानसिक परेशानी का जिक्र किया गया था। लेकिन सवाल है कि क्या सीबीआई दिशा सालियान की मौत की गुत्थी सुलझाने में कामयाब हो पाएगी?
5: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने अपने वकील अपने एडवोकेट द्वारा मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक पत्र द्वारा सिक्योरिटी मांगी है। ये सिक्योरिटी इसलिए मांगी है क्योंकि उनका कहना है कि आदित्य ठाकरे शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे पर जो वो मानहानि का नोटिस उन्हें देने जा रहे हैं 500 करोड़ का ये मानहानि का नोटिस है, डिफेमेशन नोटिस है, वो बाय हैंड डिलीवर करना चाहते हैं। इसीलिए 19 सितंबर को वो आदित्य ठाकरे के घर मातोश्री बैंड्रा जाएंगे और उन्होंने एडिक्वेट सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी की मांग की है पुलिस द्वारा।
0: विद्या के साथ दिव्यांश सिंह, मुंबई आज तक।
6: सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था से तो हर कोई वाकिफ रहता है, लेकिन जब डॉक्टर्स के नाम पर उनके ड्राइवर मरीजों का इलाज करने लग जाएं तो सोचिए कि क्या ही होता होगा। जी हाँ, कानपुर के सरकारी अस्पताल में ऐसा खिलवाड़ हुआ है, डॉक्टर आराम पर और उनका ड्राइवर काम पर। जब ड्राइवर डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कानपुर से लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। तो आइए देखते हैं ड्राइवर डॉक्टर का ओपीडी में जानलेवा इलाज। तस्वीरें देखिए आप।
7: इस हरकत पर तो यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में इलाज नहीं बल्कि दिन दहाड़े मरीजों के साथ जानलेवा खिलवाड़ चल रहा है। जी हाँ, कानपुर के काशीराम अस्पताल में डॉक्टर आराम पर हैं और ड्राइवर काम पर हैं। ओपीडी में मरीज आ रहे हैं और डॉक्टर साहब का ड्राइवर मरीजों को धड़ाधड़ दवाइयां लिख रहा है। ड्राइवर डॉक्टर मरीजों से उनका हाल पूछता है और पर्ची पर पता नहीं कौन सी दवाई लिखकर आगे बढ़ा देता है, फिर अगले मरीज का नंबर लेता है। बाकायदा ड्राइवर की ये ओपीडी कानपुर के काशीराम अस्पताल में जनरल मेडिसिन विभाग के हेड और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामकेश की ओपीडी में चल रही है। कहा तो स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और कहा अस्पताल में डॉक्टर की जगह उनके ड्राइवर ही इलाज करने बैठ जाएं तो मरीजों का हाल क्या होगा, ये आप और हम सभी समझ सकते हैं। यकीनन ये मरीजों के साथ जानलेवा खिलवाड़ से कम नहीं है। जब ड्राइवर ने ओपीडी चलाई तो सीएमओ कहाँ थे? जब ड्राइवर ओपीडी में मरीजों को देख रहा था तब सीएमएस कहाँ थे? इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की ओपीडी में ड्राइवर कैसे बैठा? सवाल यह है कि जब अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामकेश की ड्यूटी थी तो वो कहाँ थे? क्या डॉक्टर रामकेश ने ओपीडी में मरीजों के देखने के लिए अपने ड्राइवर को बैठा दिया? बड़ी बात यह है कि सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर से लेकर सीएमएस यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी अस्पताल में बैठते हैं, तो पूरा अस्पताल प्रशासन कहाँ था जिन्हें एक ड्राइवर ओपीडी चलाता हुआ नहीं दिखा? वीडियो वायरल होने के बाद पूरा अस्पताल प्रशासन जाग उठा है और कार्रवाई की बात कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि सरकारी सिस्टम कितना सड़ चुका है कि डॉक्टर की जगह ड्राइवर इलाज करता है। वीडियो में ड्राइवर मरीजों से उनकी परेशानी पूछता दिखाई दे रहा है। वो मरीजों से पूछ रहा है कि पेट में दर्द है या क्या तकलीफ है। इसके बाद वो पर्चे पर दवाई लिखता नजर आता है और मरीजों के पूछने पर वो उन्हें दवा अस्पताल से नहीं बल्कि बाहर मेडिकल स्टोर से लेने की बात कहता है। अब आपको दिखाते हैं डॉक्टर ड्राइवर ने जो पर्ची पर दवाइयां लिख कर दी आखिर पर्ची में क्या लिखा। पर्चे पर लिखा हुआ है जो हमें समझ आता है, कुछ BIG 500 लिखा है, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता, फिर कुछ OINT KT2 और कॉम्बी बी टाइप लिखा है, साथ ही KT2 200 mg लिखा है। अब ये कौन सी दवाइयां हैं जो ड्राइवर डॉक्टर ने मरीजों को लिख कर दी हैं? अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के ड्राइवर ही इलाज करेंगे तो फिर किस काम के CMO, किस काम के CMS और किस काम का स्वास्थ्य मंत्रालय? अस्पताल में ड्राइवर मरीजों का इलाज करते हुए पकड़ा गया तो अस्पताल के CMO हरिदत्त नेमी ने जांच कमेटी गठित करके पतली गली से बच निकलने की कोशिश की। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, CMO साहब पल्ला नहीं झाड़ सकते।
8: कल से वीडियो वायरल हुआ, मैंने भी उसे देखा है। वहाँ पर CMS है डॉक्टर पीयूष, तो डॉक्टर पीयूष से मेरी बात हुई है तो वहाँ पर उसकी जांच बिठा दी है और जांच में जो भी जिसके भी जो दोष होगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई की।
7: अस्पताल के CMS यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पीयूष मिश्रा ड्राइवर पर FIR की बात करके बच नहीं सकते। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, CMS साहब जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते।
9: मैंने स्पष्टीकरण ये अपना जवाब दे पहले, और 3 सदस्यीय हमने वरिष्ठ चिकित्सकों की कमेटी बनाई है और इनकी इस पूरी घटनाक्रम को उसके ड्राइवर के खिलाफ विरुद्ध FIR करेंगे और इनको इनके खिलाफ हम शासन को पत्र भी लिखने जा रहे हैं। ये अनुशासनहीनता है, बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण। ये हमें बड़ा खेद के लगता है कि सुनने में भी ये इतना बड़ा अच्छा अस्पताल जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ऊंचाई तक ले जाऊँ, इस प्रकार का बहुत ही खराब कार्य किया है इन्होंने।
7: आज तक ने इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर यानी डॉक्टर रामकेश से भी पूछा कि उनकी OPD में उनकी कुर्सी पर उनका ड्राइवर इलाज करने क्यों बैठा। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, डॉक्टर रामकेश का कोई बहाना नहीं चलने वाला।
10: एक वीडियो वायरल हुआ कि आपका ड्राइवर आपकी सीट पे बैठ के दवा दे रहा
11: है। सर आप महोदय आप लोगों के माध्यम से या साहब CMS साहब के माध्यम से मुझे पता चला, तत्काल प्रभाव से उसे मैंने बाहर निकाल दिया अपने।
10: तो ये क्या पहले भी कभी बैठता था क्या?
11: नहीं, मेरे साथ रहता तो मेरी गाड़ी वाली साफ करता था।
10: अच्छा, उसको दवा वगैरह कुछ तो नॉलेज होगा?
11: नहीं, कोई नॉलेज
10: कुछ नॉलेज नहीं। तो ये दवा किसको दे रहा था ये?
11: नहीं, वो अब हम नहीं थे। अब उसने क्या किया है ये बताया, ये पता चला है कि वो उसके जानने वाला था, उसको लिख दिया है दवा।
10: तो वो सर आप कहाँ गए थे उस समय?
11: मैं कोर्ट गया था।
10: कोर्ट गया था।
7: डॉक्टर रामकेश ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने ड्राइवर को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया है, लेकिन डॉक्टर रामकेश कहते हैं जब उनका ड्राइवर OPD में इलाज कर रहा था वो कोर्ट गए हुए थे। अब डॉक्टर रामकेश सच बोल रहे हैं या झूठ? लेकिन आज तक को अस्पताल के CMS पीयूष मिश्रा ने बताया कि उन्होंने अस्पताल का अटेंडेंट रजिस्टर चेक किया तो डॉक्टर रामकेश की कोई न्यायालय ड्यूटी नहीं थी। डॉक्टर रामकेश का कोर्ट वाला बहाना एक्सपोज।
9: ये किस समय आके कब बैठा, उस दिन कमरा में न्यायालय कार्य लिखा हुआ था, लेकिन अभी हमने उपस्थिति पंजिका को देखा तो उसमें कोई न्यायालय ड्यूटी थी नहीं इनकी पिछले लगभग 15 दिन से। लेकिन ये कमरे में नहीं थे उस समय मौजूद, समय ये वीडियो वायरल हुआ है।
7: तो क्या डॉक्टर रामकेश आराम पर थे और ड्राइवर काम पर था? कानपुर के सरकारी अस्पताल ने एक बार फिर से सरकारी अस्पतालों की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। कैसे सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर दिन दहाड़े खिलवाड़ किया जाता है?
12: वीडियो वायरल होने के बाद CMO ने जांच की बात की है, संबंधित अस्पताल और डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है। डॉक्टर ने भी अपना पल्ला यह कह के झाड़ दिया है कि उसने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या जांच की खाना पूर्ति से इतने बड़ी लापरवाही को दबाया जा सकता है? ना कोई तत्काल FIR, ना कोई ठोस कार्रवाई और ना कोई निलंबन। ऐसे में लोगों का प्रशासन से बड़ा सवाल है कि आखिरकार मरीजों की सुरक्षा के लिए जवाबदेही कब तय होगी।
7: रंजय सिंह के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।
6: और अब आपको दिखाते हैं द लखनऊ स्टोरी। कैसे एक लड़की को कार के बोनट पर घसीटते हुए वीडियो वायरल हुआ, तो अब कहानी पूरी तरह से परत दर परत खुलती जा रही है। पीड़ित लड़की का आरोप यह है कि शहनवाज नाम के लड़के ने पहले यश ठाकुर बनकर उससे दोस्ती की, उसके बाद विवाद होने पर शहनवाज ने लड़की को कार से घसीटा। अब इसमें हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो चुकी है जो इसे लव जिहाद बता रहे हैं और तगड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं।
7: लखनऊ से आई ये तस्वीरें देश भर में वायरल हो जाती हैं, जिसमें सफेद रंग की ये वर्ना कार एक महिला को बोनट के आगे घसीटते हुए दिखाई देती है। वीडियो में कार का नंबर साफ दिखता है, यूपी बसेस KH 8090। आज तक के कैमरे पर आकाश नाम के चश्मदीद ने इस पूरी घटना की गवाही दी।
13: दीदी मतलब कि उसके ऊपर ऐसे रुक गई, रोक रोकने की कोशिश कर रही थी, तो उसने नहीं रोका, फिर यहाँ यही मेरी दुकान के सामने रोका, ठीक है। रोकने के बाद में फिर आगे रुकते रोकते वहाँ रुक गई दीदी, फिर वहाँ रुकी और दीदी बस जैसे साइड से ना साइड से मतलब बात करने की कोशिश कर रही थी, बस तुरंत ही रुक गए। बस रोकने के बाद में बस इतनी स्पीड में भगाया जैसे दीदी थोड़ा साइड में, बस दीदी फिर ऐसे रोकने की कोशिश, बहुत गिर गई दीदी ने, पर यहाँ चोट खा गई। मेरे दुकान पे कस्टमर बैठे वो भी वीडियो बनाए।
7: कार और कार चलाने वाले शहनवाज को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन बाद में कहानी कुछ और ही निकलती है। कार के भीतर गाड़ी चला रहे शख्स का नाम शहनवाज है और जिस लड़की को इसने टक्कर मारी उसका नाम अनामिका है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सोशल मीडिया पर अनामिका के दो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो आरोपी शहनवाज के साथ एक कार में बैठी नजर आ रही है और वो खुद बता रही है कैसे दोनों की मुलाकात हुई।
14: ये मैं हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है,
15: ठीक।
14: कली क्यों है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है। हमारे बीच में ये हुआ है, हमसे हमें छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम छोड़ नहीं रहे। हमने इससे बोला कि 1 से 2 महीने का मुझे टाइम दो, मैं अपने आप छोड़ दूंगी, अगर ना छोड़ा तो तुम मुझे खुद छोड़ देना बस।
15: कल मैं टकला बनवा लूंगा।
14: तुम ये चाहे टकला बनवा ले, चाहे लंगड़ा बनवा ले, चाहे एक आंख फूट जाए, तब भी हम इसके साथ रहेंगे।
15: पहचान में
14: आए या ना आए, तब भी हम इसके साथ रहेंगे। अब और मैं गई थी इसके पास, इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने नंबर मांगा था, हमने जबरदस्ती नंबर लिया था फोन से निकाल के इसके, मैंने इसे मारा था, तोड़ा था, तब नंबर इसने दिया था, तभी हमारे साथ रिलेशनशिप में आया था। डर गया था बेचारा कि बहुत मारेगी अगर हमसे बात ना की।
7: आज तक ने अनामिका से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, हम आपको अनामिका का पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अनामिका ने पुलिस को बताया कि आरोपी शहनवाज ने उससे अपना असली नाम छुपाकर दोस्ती की थी। शहनवाज ने अपना नाम यश ठाकुर बताया था।
6: गाड़ी उस व्यक्ति की नहीं थी, उस व्यक्ति ने जो भी झूठ वूट बोला है, जो मुझे प्राइमा फेसी पता चला है, तो इसकी हम लोग जांच करवाएंगे। और इसके पीछे भी अगर कोई गुट शामिल है जो धर्मांतरण करा रहा है, या कोई इस प्रकार के लोग हैं जहां पर हिंदू लड़कियां टारगेट हो रही हैं, तो उनका भी पर्दाफाश होगा।
7: वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं, हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जाँच शुरू कर दी है।
16: ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल गिरोह हो सकता है, जिस तरह से जमालुद्दीन छांगुर बाबा जैसा व्यक्ति हजारों हिंदू बेटियों को शिकार बनाया, निकाह कराया, धर्मांतरण कराया, चाहे पैसा देकर कराया, चाहे जबरन कराया। तो ऐसी स्थिति में आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में DCP पूर्वी कार्यालय पर आज मैडम को मैं ये ज्ञापन देने आया था। ज्ञापन का प्रक्रिया क्या है कि उच्च स्तरीय जाँच हो।
7: 16 सितंबर को जनेश्वर मिश्र पार्क के पास अनामिका चाय पीने पहुंची थी, इसी दौरान शहनवाज भी एक दूसरी महिला मित्र के साथ कार से वहां पहुंचा। दूसरी युवती को शहनवाज के साथ देखकर अनामिका भड़क गई और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद शहनवाज वहां से कार लेकर निकलने लगा। शहनवाज जब कार लेकर जाने लगा तो अनामिका उसकी कार के सामने खड़ी हो गई। आरोप है कि शहनवाज ने कार आगे बढ़ा दी, इससे अनामिका कार के बोनट पर आ गई, जिसके बाद शहनवाज ने कार की स्पीड बढ़ा दी और अनामिका को घसीटते हुए चला गया। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे
1: किया जा सकता है। जैसे औरंगजेब वो बेचारा कब्र में कितना करवट बदलता होगा इधर उधर, सुबह से शाम तक इस देश में लोग उसको याद करते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में दीपोत्सव। काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए। प्रधानमंत्री ने जताया आभार। बंगाल उपचुनाव से पहले ममता और ऋतव्रत गुट को झटका। चुनाव आयोग ने टीएमसी के निशान और नाम के इस्तेमाल पर लगाई रोक। दोनों से कल तक मांगे गए तीन तीन विकल्प। यूपी में हाईवे को लेकर अखिलेश ने सीएम योगी को घेरा। कहा, बीजेपी सरकार में निर्माण बाद में पूरा होता है लेकिन गिरने वो पहले लगता है। बोले, अब वो हर लेन देन पर लेंगे टैक्स। 100% टैरिफ वाले अमेरिकी कानून पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध। अलग अलग स्रोतों से जारी रहेगी ऊर्जा खरीद। और टी20 में अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान। महज 30 गेंद में जड़ा शतक। टेस्ट खेलने वाले देशों में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड। भारत ने 127 रन से जीता मैच। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन पूरे धूमधाम से उनका मनाया गया। आशीर्वाद का कार्यक्रम रखा गया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर सीएम योगी समेत दिग्गज नेताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न।

0: प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न। कहीं केक काटा गया, कहीं दिए जलाए गए। आशीर्वाद का दिया नाम से देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम हुए। वाराणसी में भी गंगा तट पर दीपोत्सव किया गया।
1: नमो घाट पर हूँ, एक तरफ पतित पावनी माँ गंगा है जो मेरे सामने तेज प्रवाह में बह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है आज माहौल बनारस में अयोध्या जैसा है, क्योंकि ये जो दिए हैं ना, ये दिए यहाँ पर लग गए हैं, असंख्यों दिए जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर लाए गए हैं, लगाए गए हैं, और बच्चों ने बकायदा काफी मेहनत की है इन दियों को यहाँ बिछाने के लिए। वाइड फ्रेम यहाँ से दिखाएं एक बार और पूरा दर्शकों को यहाँ से दिखाएं कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पर नमो घाट पर दिए लगा दिए गए हैं।
0: उज्जैन समेत पूरे मध्य प्रदेश में आज दीपोत्सव की रोशनी बिखरी हुई है। महाकाल की नगरी में शिप्रा के रामघाट, दत्त अखाड़ा घाट और महाकाल लोक में 25 लाख दीप जलाए गए।
2: महाकाल की इस पवित्र नगरी से प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की, दीर्घायु होने की कामना पूरा महाकाल के हमारे सभी लोग कर रहे हैं, यहाँ के नागरिक कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पवित्र तट से माननीय प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की कामना की जा रही है। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से करोड़ों लोगों के जीवन में जो बदलाव लाया, और इस तट की बात करें तो 800 करोड़ की अधिक सी योजना महाकाल कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री जी ने किया, जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म बढ़ा, आज यहाँ पर लोग का व्यवसाय बढ़ा है, उनके जीवन में उनके बदलाव आए हैं।
0: इसके अलावा श्रीनगर, कोलकाता और पटना में भी भव्य दीपोत्सव हुआ, और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भी 1 लाख दिए जलाए गए।
3: लगभग 1.5 लाख दिए एक समय पर जलाए जा रहे हैं, और ये जो प्रज्वलित दिए हैं जो आपको दूर तक नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे दिए इसीलिए जलाए गए हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक वादा किया था आज से 12 साल पहले, और लोगों से जो वादा किया था गुजरात के लोगों से आज से 25 साल पहले, उसको उन्होंने पूरा किया है। देखिए, हम लोग जब खुश होते हैं, जब हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसका कारण यही है कि हम बताते हैं

0: किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, तो किस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ये दिए जो है इस समय उसी का सिंबल है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। पूरे विधि विधान से पूजन का अनुष्ठान हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, चिराग पासवान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस पूजा अर्चना में शामिल हुए।
2: सब लोग यहां पर पूजा अर्चन करने के लिए काशी विश्वनाथ का आए थे और विधिवत पूजा अर्चन का कार्य संपन्न हुआ है और हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वह दीर्घायु करें।
3: बाबा से ही प्रार्थना की है कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु उन्हें प्राप्त हो और लंबे समय तक भारत का नेतृत्व उनके हाथों में रहे, जिससे भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विकसित भारत की संकल्पना उनके नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी देख सके।
1: राजनाथ सिंह ने वाराणसी से बाइक रैली को भी झंडी दिखाई, जो वाराणसी से वडनगर के लिए रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मभूमि वडनगर में सेवा संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। अमित शाह ने वडनगर में बाइक रैली को झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की, जो कि वाराणसी तक जाएगी।
4: 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 26 में 140 करोड़ भारतीय ये उत्साह और संकल्प के साथ, एक आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में समग्र विश्व में भारत सर्वप्रथम होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता का सामूहिक आत्मविश्वास खड़ा करना ये किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी कसौटी है, और वो भी तब जब जनता गहरी निराशा में डूबी हो। उन्होंने गहरी निराशा के गर्त से जनता को बाहर निकालकर नरेंद्र मोदी जी ने जनता को आत्मविश्वास से लवरेज कर 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत की यात्रा के साथ जोड़ने का काम किया।
1: उधर दिल्ली में इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने रक्तदान किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इसमें शामिल हुए। दिल्ली सरकार के मंत्री और सीएम रेखा गुप्ता ने भी रक्तदान किया।
5: प्रधानमंत्री जी का ये जन्म दिवस हम सबको जन सेवा की प्रेरणा देता है और दिल्ली सरकार उनके दिखाए हुए रास्ते पर, उनके मार्गदर्शन में हमेशा आगे बढ़ते हुए इस काम को करेगी। आज हम मोदी जी को समर्पित करते हुए हमारे स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए हुए एक बर्थडे सॉन्ग, एक गीत का भी लॉन्चिंग करेंगे।
1: कुल मिलाकर 17 सितंबर का दिन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के जश्न के नाम रहा। आज तक ब्यूरो।
6: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान 19 सितंबर को आदित्य ठाकरे के घर मातोश्री जाकर उन्हें मानहानि का नोटिस खुद सौंपेंगे। साथ ही साथ उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर अपने और अपनी कानूनी टीम के लिए वहां जाते समय पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है।

0: दिशा सालियान की मौत मिस्ट्री पर सियासत हावी होती जा रही है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 500 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। नोटिस में दोनों नेताओं के बयानों पर आपत्ति जताई गई है। सतीश सालियान ने दोनों को बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने, बयान वापस लेने, लिखित माफी मांगकर उसे प्रिंट मीडिया में छपवाने, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर 3 मिनट का माफीनामा वीडियो जारी करने की मांग की है।
1: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान जी की तरफ से आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख को डिफामेशन का नोटिस दिया गया है। ये अलग डिफामेशन का नोटिस है, उन्होंने जो पोस्ट किए उसके लिए एक और एडिशनल नोटिस दिया जा रहा है। तो ये जो नोटिस है ये उन्होंने मैटर वही है सिमिलर, उन्होंने हाईकोर्ट में एफिडेविट पे कहा था कि सतीश सालियान के पिताजी ने पिटीशन गलत फाइल की है और ऑलरेडी इस मैटर में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करके उनको क्लीन चिट दी है, लेकिन राजकीय हेतु से प्रेरित होकर और पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ मीडिया के लोग जिनके इनके ये संबंध ठीक नहीं है उनके इशारे पे ये पिटीशन फाइल की गई है।
0: दिशा के पिता ने 500 करोड़ के मानहानि के नोटिस में लिखा, आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख ने मेरे बयानों और कानूनी कार्रवाई को लेकर झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक आरोप लगाए। दोनों नेताओं ने मेरी बेटी दिशा की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग को राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया। आदित्य ठाकरे झूठ बोल रहे हैं कि सीबीआई पहले ही उन्हें क्लीन चिट दे चुकी है। आदित्य कह रहे हैं कि वो दिशा को जानते ही नहीं थे, ये बात सच नहीं है। हमारे पास इन नेताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत है।
2: 17 पन्ने के इस लीगल नोटिस में कहा गया है कि नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख दोनों को ही एक अनकंडीशनल अपॉलोजी देनी है और अनकंडीशनल अपॉलोजी किस तरीके की हो ये भी स्पेसिफाई किया गया है। अखबार में एडवर्टीजमेंट A4 साइज के होने चाहिए, 3 मिनट से कम के वीडियो के नहीं होने चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 500 करोड़ जो डिफेमेशन में है किया है जिसकी वजह से जो इतनी बदनामी हुई है उसका हर्जाना ये 500 करोड़ भी दिए जाएं। तो ये तमाम बातें इन 17 पन्नों में लिखे हैं और अब अनिल देशमुख और आदित्य ठाकरे दोनों के ही वकील ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर से डील कैसे किया जाए।
0: दरअसल 16 सितंबर को आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिशा मौत मिस्ट्री केस में सफाई देते हुए लिखा था, मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और ना ही उन्हें जानता हूँ। पिछले 6 सालों से कुछ लोग जानबूझकर और बिना किसी सबूत के इस दुखद मामले से मेरा नाम जोड़कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बदनाम करने का ये अभियान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जोरदार टीवी डिबेट और मीडिया ट्रायल से सच्चाई नहीं बदलती। इस केस की जांच दोबारा आगे बढ़ने दें।
1: और बाकी जो उन्होंने अभी जो नया पोस्ट किया है कि इन्वेस्टिगेशन शांतिपूर्ण तरीके से होने दो, मीडिया के लोग डिबेट ना करें, तो इसको कहते हैं चोर मचाए शोर। इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन होने नहीं दिया, इन्होंने खुद उसके रिकॉर्ड डिलीट करवाए, इन्होंने खुद सतीश सालियान के पिटीशन को ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि सीबीआई को मैटर ना जाए, इसी और इन्हीं की वजह से डिले हुआ है ये सब। तो अभी वो तो हमने इनको खिलाफ लड़के सबूत दे के ये ऑर्डर लिया है, इनका सारा झूठ पकड़ा गया है और अब यही खुद चिल्ला रहे और ये जो कह रहे हैं दिशा का मेरा संबंध नहीं है, हमारे पास में सारे डिजिटल प्रूफ्स आई विटनेस से लेके सारी चीजें हैं। ये दो चीजों का आज तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आप इस ड्रग्स के बिजनेस में ड्रग्स का बिजनेस करते हुए और खुद ड्रग्स का सेवन करते हुए ड्रगिस्ट हो, ये नारकोटिक्स ब्यूरो के क्राइम नंबर 15/2020 में आया, आपके फोन सर्विलेंस में आया, ये हमने एफिडेविट पे कहा, उसका आप जवाब नहीं दे पाए और उसको मना भी नहीं कर रहे हो उसके बारे में बोलो, और आपके मोबाइल टावर लोकेशन वहां थे और आपने जो पहला डिफेंस लिया था कि मैं उस दिन बाहर था, मेरे नाना जी गुजर गए थे 8 जून को, मुंबई से बाहर था, वो भी झूठा साबित हो गया, नाना जी 14 जून को गुजरे थे। उसके बाद में आपने कहा इसकी जो आपकी मेन पार्टनर इन क्राइम है इसमें रिया चक्रवर्ती, बोले मैं उसको जानता नहीं, रिया ने कहा मैं आपको नहीं जानती, ये भी फोरेंसिक की चैट रिकवरी में ये भी झूठा साबित हो गया। उस तो आप हैबिचुअल झूठ बोलने वाले हो।
0: दिशा सालियान के पिता 6 साल से कह रहे हैं कि उनकी बेटी दिशा की गैंगरेप के बाद हत्या हुई थी। वो आदित्य ठाकरे समेत कई पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते रहे हैं।
3: मैं इम्पोर्टेंट जो दोषी है जो आदित्य ठाकरे दिनो मौर्या सुरेश पंचोली उसका सब इन्वेस्टिगेशन करके अरेस्ट करने हैं, ऐसा कंप्लेंट दिया है।
0: हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को सतीश सालियान के आरोपों की कार्रवाई करने को कहा है। बीजेपी विधायक राम कदम भी लगातार तत्कालीन उद्धव सरकार की भूमिका संदिग्ध बताते रहे हैं।
4: दिशा सालियान की मौत, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और कटाक्ष से ऊपर उठ करके है। श्रीमान आदित्य ठाकरे को 6.5 वर्ष लग गए ये बोलने के लिए कि उनका इस मामले में कोई संबंध नहीं है। इसके पहले उनकी खामोशी का क्या कारण था? किसने उन्हें रोका था? उनके पिता तो लगातार बार बार आरोप कर रहे थे, तब आप क्यों नहीं बोले? और कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का था? क्या कारण था कि आपकी सरकार पुलिस को जांच करने से क्यों रोक रही थी? और यदि पुलिस जांच नहीं कर रही है तो आपकी सरकार ने पुलिस से क्यों नहीं कहा उस पिता को न्याय मिलना चाहिए?
0: दिशा सालियान की मौत की शुरुआती जांच मुंबई पुलिस ने की थी। पुलिस की जांच में दिशा की मौत को आत्महत्या बताया गया था। मार्च 2025 में सामने आई मुंबई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट में भी दिशा की मौत को सुसाइड बताते हुए उनकी मानसिक परेशानी का जिक्र किया गया था। लेकिन सवाल है कि क्या सीबीआई दिशा सालियान की मौत की गुत्थी सुलझाने में कामयाब हो पाएगी?
5: दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने अपने वकील अपने एडवोकेट द्वारा मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक पत्र द्वारा सिक्योरिटी मांगी है। ये सिक्योरिटी इसलिए मांगी है क्योंकि उनका कहना है कि आदित्य ठाकरे शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे पर जो वो मानहानि का नोटिस उन्हें देने जा रहे हैं 500 करोड़ का ये मानहानि का नोटिस है, डिफेमेशन नोटिस है, वो बाय हैंड डिलीवर करना चाहते हैं। इसीलिए 19 सितंबर को वो आदित्य ठाकरे के घर मातोश्री बैंड्रा जाएंगे और उन्होंने एडिक्वेट सिक्योरिटी यानी सिक्योरिटी की मांग की है पुलिस द्वारा।
0: विद्या के साथ दिव्यांश सिंह, मुंबई आज तक।
6: और अब आपको दिखाते हैं द लखनऊ स्टोरी। कैसे एक लड़की को कार के बोनट पर घसीटते हुए वीडियो वायरल हुआ, तो अब कहानी पूरी तरह से परत दर परत खुलती जा रही है। पीड़ित लड़की का आरोपी है कि शहनवाज नाम के लड़के ने पहले यश ठाकुर बनकर उससे दोस्ती की, उसके बाद विवाद होने पर शहनवाज ने लड़की को कार से घसीटा। अब इसमें हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो चुकी है जो इसे लव जिहाद बता रहे हैं और तगड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं।
7: लखनऊ से आई ये तस्वीरें देश भर में वायरल हो जाती हैं, जिसमें सफेद रंग की ये वर्ना कार एक महिला को बोनट के आगे घसीटते हुए दिखाई देती है। वीडियो में कार का नंबर साफ दिखता है, यूपी बसेस KH 8090। आज तक के कैमरे पर आकाश नाम के चश्मदीद ने इस पूरी घटना की गवाही दी।
8: दीदी मतलब कि उसके ऊपर ऐसे रुक गई, रोक रोकने की कोशिश कर रही थी, तो उसने नहीं रोका, फिर यहाँ यही मेरी दुकान के सामने रोका, ठीक है। रोकने के बाद में फिर आगे रुकते रहते वहाँ रुक गई दीदी, फिर वहाँ रुकी और दीदी बस जैसे साइड से मतलब बात करने की कोशिश कर रही थी, बस तुरंत ही रुक गए। बस रोकने के बाद में बस इतनी स्पीड में भगाया जैसे दीदी थोड़ा साइड में, दीदी फिर ऐसे रोकने की कोशिश, बहुत गिर गई दीदी ने, पर यहाँ चोट खा गई। मेरे दुकान पे कस्टमर बैठे वो भी वीडियो बनाए।
7: कार और कार चलाने वाले शहनवाज को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन बाद में कहानी कुछ और ही निकलती है। कार के भीतर गाड़ी चला रहे शख्स का नाम शहनवाज है और जिस लड़की को इसने टक्कर मारी उसका नाम अनामिका है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सोशल मीडिया पर अनामिका के दो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें वो आरोपी शहनवाज के साथ एक कार में बैठी नजर आ रही है और वो खुद बता रही है कैसे दोनों की मुलाकात हुई।
9: ये मैं हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है,
10: ठीक।
9: अली क्यों है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है। हमारे बीच में ये हुआ है, हमसे हमें छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम छोड़ नहीं रहे। हमने इससे बोला कि 1 से 2 महीने का मुझे टाइम दो, मैं अपने आप छोड़ दूंगी, अगर ना छोड़ा तो तुम मुझे खुद छोड़ देना बस।
10: कल मैं टकला बनवा लूंगा।
9: तुम ये चाहे टकला बनवा ले, चाहे लंगड़ा बनवा ले, चाहे एक आंख फूट जाए तब भी हम इसके साथ रहेंगे।
10: पहचान में
9: आए या ना आए तब भी हम इसके साथ रहेंगे। अब और मैं गई थी इसके पास, इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने नंबर मांगा था, हमने जबरदस्ती नंबर लिया था फोन से निकाल के इसके, मैंने इसे मारा था, तोड़ा था, तब नंबर इसने दिया था। तभी हमारे साथ रिलेशनशिप में आया था, डर गया था बेचारा कि बहुत मारेगी अगर हमसे बात ना की।
7: आज तक ने अनामिका से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, हम आपको अनामिका का पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अनामिका ने पुलिस को बताया कि आरोपी शहनवाज ने उससे अपना असली नाम छुपाकर दोस्ती की थी। शहनवाज ने अपना नाम यश ठाकुर बताया था।
11: गाड़ी उस व्यक्ति की नहीं थी, उस व्यक्ति ने जो भी झूठ वूट बोला है, जो मुझे प्राइमा फेसी पता चला है, तो इसकी हम लोग जांच करवाएंगे। और इसके पीछे भी अगर कोई गुट शामिल है जो धर्मांतरण करा रहा है, या कोई इस प्रकार के लोग हैं जहां पर हिंदू लड़कियां टारगेट हो रही हैं, तो उनका भी पर्दाफाश होगा।
7: वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
12: ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल गिरोह हो सकता है। जिस तरह से जमालुद्दीन छांगुर बाबा जैसा व्यक्ति हजारों हिंदू बेटियों को शिकार बनाया, निकाह कराया, धर्मांतरण कराया, चाहे पैसा देकर कराया, चाहे जबरन कराया, तो ऐसी स्थिति में आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डीसीपी पूर्वी कार्यालय पर आज मैडम को मैं ये ज्ञापन देने आया था। ज्ञापन का प्रक्रिया क्या है कि उच्च स्तरीय जांच हो।
7: 16 सितंबर को जनेश्वर मिश्र पार्क के पास अनामिका चाय पीने पहुंची थी। इसी दौरान शहनवाज भी एक दूसरी महिला मित्र के साथ कार से वहां पहुंचा। दूसरी युवती को शहनवाज के साथ देखकर अनामिका भड़क गई और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद शहनवाज वहां से कार लेकर निकलने लगा। शहनवाज जब कार लेकर जाने लगा तो अनामिका उसकी कार के सामने खड़ी हो गई। आरोप है कि शहनवाज ने कार आगे बढ़ा दी, इससे अनामिका कार के बोनट पर आ गई, जिसके बाद शहनवाज ने कार की स्पीड बढ़ा दी और अनामिका को घसीटते हुए चला गया। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
6: आज तक ने पीड़ित लड़की से खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं उसने क्या कहा।
9: के साथ में दो लड़कियां भी थी, यहाँ तक चाय पी रही थी। ये बहुत टाइम से मेरे साथ रिलेशनशिप में था, ठीक है। तो मतलब दो लड़कियां थी, मैंने इससे पूछना चाहा कि वो लड़कियां कौन है। इतने में ये मुझसे चिल्लाने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये वो सब बोलने लगा, ठीक है। फिर इसका दोस्त तो ये दानिश, दोनों जो थे ना वो कार में बैठ गए आके, ठीक है। और मतलब जो लड़कियां तो थी दोनों, वो अलग पीछे वाले गेट से वो उधर चली गई, ठीक है। दोनों आए तो मुझसे मतलब चिल्लाने लगा, मैंने मतलब भागने लगे कार लेके, तो मैं सामने से इसे रोकना चाहूं कि मुझे बता के जाओ। ये रुका नहीं, उसके बाद ही मुझसे गाड़ी चढ़ा के मेरे ऊपर से, और फिर मेरा हाथ शीशे की तरफ इसने मुझे बुलाया। हाथ में अभी भी चोट है, स्वेलिंग भी है, देख लीजिए आप सब लोग। हाँ, निशान पड़ा है शीशे में, मेरा पूरा हाथ दब गया था। मैं ऐसे करके हाथ निकालना चाह रही थी, लेकिन शीशा ऐसे करके लॉक था, वो निकल नहीं पा रहा था,
13: इसने फंसा लिया,
9: फंस गया था, ठीक है। तभी तो मैं घसटी हूँ, एकदम से घसीटते हुए ले गया, फिर अचानक से इसने शीशा ऐसे किया, तब मेरा हाथ निकला, तब हम गिर गए। इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, ये गाड़ी इनके दोस्त दानिश जो साथ में था, शहनवाज का दोस्त, उसने ये बोल के बोला है कि इसे आज मार दो, सामने से आया कुछ भी करे मार दो, हाथ शीशे में दब गया, दबने दो, मार के चलो को मार दो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ ना, ये तो जानबूझ के गलती से होता, वो चीज अलग है, जानबूझ के मुझ पे चढ़ाई गई कार ना।
14: शहनवाज को आप जानती थी कि वो शहनवाज है? हम शुरुआत
9: नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम स्टार्टिंग में मिले थे, हम टोटल बता रहे, हम जलवा क्लब में मिले थे। यहाँ तक कि एक हमारा वीडियो वायरल हो गया जिसमें हम वो बोल रहे,
14: इसमें एक हम वीडियो बात करें, इसमें आप कह रहे हैं कि हम
9: दो वीडियो वायरल हुए हैं, एक इन्होंने और रिसेंटली डाला, वो इनके दोस्त ने शरीफ ने वायरल करवाया। शरीफ को मैंने भाई बोला था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, बहन को भी चीट कर सकते हैं, ठीक है।
14: वीडियो में जैसे आप कह रही हैं कि जो है हम हमारी गलती नहीं, हम ब्रेकअप करें, अच्छा, क्या ये सब बता रहे हैं?
9: ये सब इन लोगों ने जबरदस्ती करवाया था, मेरी दोस्त भी उस दिन साथ में थी, ठीक है। आप
14: वीडियो जबरदस्ती बना
9: उसके एक दिन पहले इन्होंने मुझे बहुत मारा था इनका, और वो भी इन्होंने हम तुम बंटी देखा है आपने, डीलअप के पास वहां पे भी मुझे मारा, मेरे ईंट उठाने की कोशिश की, माने आप चाहे तो सीसीटीवी कैमरा 15 दिन में हटक वहां होगा तो चेक करवा सकते हैं। डीलअप में मारा, सिक्योरिटी पूरी आ गई थी, इन लोगों ने बात दबा दी कि कुछ नहीं हुआ, आपस में लड़ाई हुई है, पेट पे मेरे लाते मारे, उसके पहले एक बार नहीं शहनवाज ने मुझे मारे, बहुत टाइम इनका दोस्त था एक आशीष गौतम, उसके सामने ये मार रहे थे मुझे,
14: मारते भी था आपको
9: बहुत, तीन ऐसा नहीं है, तीन चार बार मारा है, लेकिन मैं कब तक बर्दाश्त कर गया बताओ, जब मुझे पूरी उस दिन मारने की कोशिश की तब मैं बात बोल रहे हैं।
14: सवाल ये था कि क्या आपको मालूम था ये शहनवाज हैं?
9: नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम था, जब हम स्टार्टिंग में जलवा क्लब में इन्होंने जो वीडियो वायरल हुआ वही बता रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ कि मैं इनसे जबरदस्ती नंबर मैंने लिया था, मारा था, हम मेरी इतनी हिम्मत है इतनी पब्लिक में उस लड़के को मार के मैं जबरदस्ती फोन से नंबर ले सकती हूँ? आप सोचिए, आप बताइए ना, मुझे नहीं ले सकती हूँ ना, नंबर इन्होंने मुझे भी नहीं दिया था।
14: वीडियो उसने बनवाया था?
9: जी, ये मेरी बुआ जी को नंबर दिया था, उसके पहले आसिफ गौतम के सामने मारा था, तब हम लोग अलग आ गए थे कार में, तब इन्होंने वीडियो बनवाया था कि बनाओ, क्योंकि हमने इनसे बोला था हम कंप्लेन करेंगे, इतना मारा ही था मुझे कि मैं बिल्कुल होश में, मेरे यहाँ पे नीला नीला हाथ में सब पड़ा था, वो भी हम लोगों की बात स्टार्ट हुई, हमसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा, हमने कहा मुस्कान सिंह, तो इन्होंने बोला मैं भी ठाकुर हूँ, अब ये नहीं बताया था कि मैं लखनऊ से हूँ, ठीक है, मैं कहीं भी कसम खाने के लिए तैयार हूँ, अपनी कसम, इन्होंने ये नहीं बताया था कि मैं लखनऊ से हूँ, इन्होंने ये बताया था मैं आजमगढ़ से हूँ, मैं भी ठाकुर हूँ, आयुष नाम बताया था, ठीक है, चलो कोई नहीं, तो हम बात करते रहे, नॉर्मल हमारी मिलना जुलना होने लगा, ठीक है, बात होती रही, उसके कुछ टाइम बाद मुझे ये पता चला, वो भी इन्होंने बताया था, मैंने इनका इंस्टाग्राम चेक किया था, तब उस पर दूसरा नाम आया,
14: तब आप शॉक्ड हो गए,
9: मैं फिर भी हमारे बीच में लड़ाई हुई, ठीक है, उस लड़ाई ठीक हो गया, चलो ठीक है भाई, इतने तो हम मतलब बात होती रही, ठीक है, नॉर्मल, उसके बाद ये चीजें अभी 2-3 महीने से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो गए, ये मुझे ब्लॉक कर देते हैं, चलो आपने जैसे शरीफ बोल रहे हैं कि 3 महीने पहले वो छोड़ना चाहता था, इन्होंने जबरदस्ती रह रही थी, जबरदस्ती नहीं रह रहे थे, जबरदस्ती अगर रखना चाहते अभी भी रख सकते थे ना, हम जबरदस्ती रख रहे थे, ज्यादातर इनकी भी जितनी भी दोस्त है जब भी मैंने देखा सब हिंदू है, कोई ठाकुर है कोई पंडित है।
14: ओके, तो ये अपना नाम क्या,
9: फोन होगा पास में, चेक कर लीजिए, सब सब प्रूफ मिल जाएंगे आपको,
14: तो अपने प्रोफाइल और नाम अलग बना के रखते हैं क्या,
9: नाम प्रोफाइल तो इनकी इंस्टाग्राम पे है नहीं, फेसबुक का मुझे पता नहीं है, नाम जो मुझे स्टार्टिंग में बताया मुझे अपना खुद का पता है, उनका नहीं पता, बताते या नहीं बताते, और हमें ये डर है कि इनकी बेल होगी तो उसके बाद भी हम पे कुछ करे ना, मुझे अब बहुत डर लग रहा है,
14: आप चाहती क्या क्या हो इस पूरे मामले में,
9: इसके मामले में जितने मुझे जख्म आए भाई, हम तो यही चाहेंगे कि हमें भाई, हमें पब्लिक जो देख रही है ना, उनको जो गलत बताया जा रहा है, पब्लिक को यही मैं बताना चाहूंगी कि हमेशा लड़कियां गलत नहीं होती हैं, ठीक है, मेरे साथ अभी जुआ दूसरी लड़की के साथ हो गया, जो लड़कियां कमेंट करें क्या पता उनके साथ भी हो, तब क्या करेंगी वो, तब अपने लिए लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये लोग मेरे वीडियो इसलिए वायरल कर रहे हैं कि मैं वो सब देख के डर जाऊं, वो चुप हो जाऊं।
13: और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे महाराष्ट्र के नासिक में अजीब और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आवारा कुत्तों से परेशान लोगों ने पंचायत के चीफ ऑफिसर के दफ्तर पर धावा बोला और कुत्तों को ऑफिसर की टेबल पर छोड़ दिया।
15: यह है महाराष्ट्र के नासिक में पंचायत कार्यालय के मुख्य अधिकारी का दफ्तर। अचानक मुख्य अधिकारी के दफ्तर में शिवसेना यूबीटी की युवा सेना के कार्यकर्ता 3 बोरियां लेकर धावा बोलते हैं। मुख्य अधिकारी अपनी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहे होते हैं, तभी युवा सेना के कार्यकर्ता बोरियां उठाकर टेबल पर खोलते हैं, तो उसमें से निकलते हैं कुत्ते, और ये देखिए कैसे कुत्ते टेबल पर दौड़ने लगते हैं। पंचायत कार्यालय के मुख्य अधिकारी हैरत में पड़ जाते हैं, आखिर ये है क्या, और कुत्ते टेबल पर कोने में जाकर फाइलों पर बैठ जाते हैं। फिर सब कुछ क्लियर होता है। जी हाँ, नासिक में आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ शिवसेना यूबीटी की युवा सेना का ये बड़ा ही अनोखा विरोध प्रदर्शन था, जिसमें 2 आवारा कुत्ते बोरियों में कैद करके मुख्य अधिकारी की बेस पर छोड़ दिए जाते हैं। शिवसेना यूबीटी की युवा सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि बार बार आवारा कुत्तों के आतंक की शिकायत करने पर भी प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा था, और जब कई बार शिकायत दर्ज कराने पर भी उनकी बातें नहीं सुनी गईं, तो मुख्य अधिकारी के दफ्तर में ही उनकी मेज पर आवारा कुत्ते छोड़ दिए गए।
16: आज निपाड शहरामध्ये जर तुम्ही बघितलं, प्रत्येक गावात गल्लीत असेल, प्रत्येक चौका चौकामध्ये मोकट कुत्र्यांचं इतकं सुळसुळाट झालेलं आहे। 6 महिन्यापासून मुख्याधिकाऱ्यांना सांगतोय, धीरज भांबरे त्यांचं नाव आहे, 6 महिन्यापासून सांगतोय की असं असं मोकट कुत्र्यांचा प्रश्न आहे, तुम्ही मनावर घ्या। अनेक लहान बालकांना चावा घेतलाय, अनेक लोकांवर महिलांवर धावून आलेले, मोकट कुत्र्यांची परिस्थिती त्यांना दाखवली, तिथले फोटो टाकले, वारंवार सांगितलं, पण मला वाटतं लातो की भूतबातो सिने म्हणते, आज आम्ही त्याचा निषेध म्हणून इथं 4 कुत्रे त्यांच्या टेबलवर सोडले, त्याचप्रमाणे ते कुत्रे त्यांच्या टेबलवर बसवले।
15: लोगों का दावा है कि आवारा कुत्तों की आबादी लगातार बढ़ रही है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा, आवारा कुत्तों ने कई लोगों को काटा है और प्रशासन ने बार बार शिकायत करने पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब मुख्य अधिकारी के दफ्तर में इस तरह से कुत्ते छोड़ने पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, और सरकारी काम में रुकावट डालने, कर्मचारियों पर हमला करने और दंगा करने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। प्रवीण बी ठाकरे, नासिक, आज तक।
13: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में दीपोत्सव। काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए। प्रधानमंत्री ने जताया आभार। बंगाल उपचुनाव से पहले ममता और ऋतव्रत गुट को झटका। चुनाव आयोग ने टीएमसी के निशान और नाम के इस्तेमाल पर लगाई रोक। दोनों से कल तक मांगे गए तीन तीन विकल्प। यूपी में हाईवे को लेकर अखिलेश ने सीएम योगी को घेरा। कहा बीजेपी सरकार में निर्माण बाद में पूरा होता है लेकिन गिरने वो पहले लगता है। बोले अब वो हर लेन देन पर लेंगे टैक्स। 100% टैरिफ वाले अमेरिकी कानून पर विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध। अलग अलग स्रोतों से जारी रहेगी ऊर्जा खरीद। और टी20 में अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान। महज 30 गेंद में जड़ा शतक। टेस्ट खेलने वाले देशों में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड। भारत ने 127 रन से जीता मैच। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन पूरे धूमधाम से उनका मनाया गया। आशीर्वाद का कार्यक्रम रखा गया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर सीएम योगी समेत दिग्गज नेताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न।

0: प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न। कहीं केक काटा गया, कहीं दिए जलाए गए। आशीर्वाद का दिया नाम से देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम हुए। वाराणसी में भी गंगा तट पर दीपोत्सव किया गया।
1: नमो घाट पर हूँ, एक तरफ पतित पावनी माँ गंगा है जो मेरे सामने तेज प्रवाह में बह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है आज माहौल बनारस में अयोध्या जैसा है, क्योंकि ये जो दिए हैं ना, ये दिए यहाँ पर लग गए हैं, असंख्यों दिए जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर लाए गए हैं, लगाए गए हैं, और बच्चों ने बकायदा काफी मेहनत की है इन दियों को यहाँ बिछाने के लिए। वाइड फ्रेम यहाँ से दिखाएं एक बार और पूरा दर्शकों को यहाँ से दिखाएं कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पर नमो घाट पर दिए लगा दिए गए हैं।
0: उज्जैन समेत पूरे मध्य प्रदेश में आज दीपोत्सव की रोशनी बिखरी हुई है। महाकाल की नगरी में शिप्रा के राम घाट, दत्त अखाड़ा घाट और महाकाल लोक में 25 लाख दीप जलाए गए।
2: महाकाल की इस पवित्र नगरी से प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की, दीर्घायु होने की कामना पूरा महाकाल के हमारे सभी लोग कर रहे हैं, यहाँ के नागरिक कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पवित्र तट से माननीय प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की कामना की जा रही है। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से करोड़ों लोगों के जीवन में जो बदलाव लाया, और इस तट की बात करें तो 800 करोड़ की अधिक सी योजना महाकाल कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री जी ने किया, जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म बढ़ा, आज यहाँ पर लोग का व्यवसाय बढ़ा है, उनके जीवन में उनके बदलाव आए हैं।
0: इसके अलावा श्रीनगर, कोलकाता और पटना में भी भव्य दीपोत्सव हुआ, और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भी 1 लाख दिए जलाए गए।
3: लगभग 1.5 लाख दिए एक समय पर जलाए जा रहे हैं, और ये जो प्रज्वलित दिए हैं जो आपको दूर तक नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे दिए इसीलिए जलाए गए हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक वादा किया था आज से 12 साल पहले, और लोगों से जो वादा किया था गुजरात के लोगों से आज से 25 साल पहले, उसको उन्होंने पूरा किया है। देखिए, हम लोग जब खुश होते हैं, जब हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसका कारण यही है कि हम बताते हैं कि किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, तो किस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ये दिए जो हैं इस समय उसी का सिंबल है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। पूरे विधि विधान से पूजन का अनुष्ठान हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, चिराग पासवान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस पूजा अर्चना में शामिल हुए।
4: सब लोग यहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए काशी विश्वनाथ का आए थे और विधिवत पूजा अर्चन का कार्य संपन्न हुआ है, और हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वह दीर्घायु करें।
5: बाबा से ही प्रार्थना की है कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु उन्हें प्राप्त हो और लंबे समय तक भारत का नेतृत्व उनके हाथों में रहे, जिससे भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विकसित भारत की संकल्पना उनके नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी देख सकें।
0: राजनाथ सिंह ने वाराणसी से बाइक रैली को भी झंडी दिखाई, जो वाराणसी से वडनगर के लिए रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनकी जन्मभूमि वडनगर में सेवा संकल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। अमित शाह ने वडनगर में बाइक रैली को झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की, जो कि वाराणसी तक जाएगी।
6: 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 26 में 140 करोड़ भारतीय ये उत्साह और संकल्प के साथ, एक आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 में समग्र विश्व में भारत सर्वप्रथम होगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता का सामूहिक आत्मविश्वास खड़ा करना ये किसी भी नेतृत्व की सबसे बड़ी कसौटी है, और वो भी तब जब जनता गहरी निराशा में डूबी हो। उन्होंने गहरी निराशा के गर्त से जनता को बाहर निकालकर नरेंद्र मोदी जी ने जनता को आत्मविश्वास से लवरेज कर 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत की यात्रा के साथ जोड़ने का काम किया।
0: उधर दिल्ली में इस मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी के नेता और मंत्रियों ने रक्तदान किया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इसमें शामिल हुए। दिल्ली सरकार के मंत्री और सीएम रेखा गुप्ता ने भी रक्तदान किया।
7: प्रधानमंत्री जी का ये जन्म दिवस हम सबको जन सेवा की प्रेरणा देता है और दिल्ली सरकार उनके दिखाए हुए रास्ते पर उनके मार्गदर्शन में हमेशा आगे बढ़ते हुए इस काम को करेगी। आज हम मोदी जी को समर्पित करते हुए हमारे स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए हुए एक बर्थडे सॉन्ग, एक गीत का भी लॉन्चिंग करेंगे।
0: कुल मिलाकर 17 सितंबर का दिन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के जश्न के नाम रहा। आज तक ब्यूरो।
3: सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था से तो हर कोई वाकिफ रहता है, लेकिन जब डॉक्टर्स के नाम पर उनके ड्राइवर मरीजों का इलाज करने लग जाएं तो सोचिए कि क्या ही होता होगा। जी हाँ, कानपुर के सरकारी अस्पताल में ऐसा खिलवाड़ हुआ है। डॉक्टर आराम पर और उनका ड्राइवर काम पर। जब ड्राइवर डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कानपुर से लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। तो आइए देखते हैं ड्राइवर डॉक्टर का ओपीडी में जानलेवा इलाज। तस्वीरें देखिए आप।
0: इस हरकत पर तो यूपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में इलाज नहीं बल्कि दिन दहाड़े मरीजों के साथ जानलेवा खिलवाड़ चल रहा है। जी हाँ, कानपुर के काशीराम अस्पताल में डॉक्टर आराम पर हैं और ड्राइवर काम पर हैं। ओपीडी में मरीज आ रहे हैं और डॉक्टर साहब का ड्राइवर मरीजों को धड़ाधड़ दवाइयाँ लिख रहा है। ड्राइवर डॉक्टर मरीजों से उनका हाल पूछता है और पर्ची पर पता नहीं कौन सी दवाई लिखकर आगे बढ़ा देता है, फिर अगले मरीज का नंबर लेता है। बाकायदा ड्राइवर की ये ओपीडी कानपुर के काशीराम अस्पताल में जनरल मेडिसिन विभाग के हेड और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामकेश की ओपीडी में चल रही है। कहा तो स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और कहा अस्पताल में डॉक्टर की जगह उनके ड्राइवर ही इलाज करने बैठ जाएं तो मरीजों का हाल क्या होगा, ये आप और हम सभी समझ सकते हैं। यकीनन ये मरीजों के साथ जानलेवा खिलवाड़ से कम नहीं है। जब ड्राइवर ने ओपीडी चलाई तो सीएमओ कहाँ थे? जब ड्राइवर ओपीडी में मरीजों को देख रहा था तब सीएमएस कहाँ थे? इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की ओपीडी में ड्राइवर कैसे बैठा? सवाल यह है कि जब अस्पताल में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामकेश की ड्यूटी थी तो वो कहाँ थे? क्या डॉक्टर रामकेश ने ओपीडी में मरीजों के देखने के लिए अपने ड्राइवर को बैठा दिया? बड़ी बात यह है कि सीएमओ यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर से लेकर सीएमएस यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी अस्पताल में बैठते हैं, तो पूरा अस्पताल प्रशासन कहाँ था जिन्हें एक ड्राइवर ओपीडी चलाता हुआ नहीं दिखा? वीडियो वायरल होने के बाद पूरा अस्पताल प्रशासन जाग उठा है और कार्रवाई की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि सरकारी सिस्टम कितना सड़ चुका है कि डॉक्टर की जगह ड्राइवर इलाज करता है। वीडियो में ड्राइवर मरीजों से उनकी परेशानी पूछता दिखाई दे रहा है। वो मरीजों से पूछ रहा है कि पेट में दर्द है या क्या तकलीफ है, इसके बाद वो पर्चे पर दवाई लिखता नजर आता है और मरीजों के पूछने पर वो उन्हें दवा अस्पताल से नहीं बल्कि बाहर मेडिकल स्टोर से लेने की बात कहता है। अब आपको दिखाते हैं डॉक्टर ड्राइवर ने जो पर्ची पर दवाइयां लिख कर दी आखिर पर्ची में क्या लिखा। पर्चे पर लिखा हुआ है जो हमें समझ आता है, कुछ BIG 500 लिखा है, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आता, फिर कुछ OINT KT2 और कॉम्बी बी टाइप लिखा है, साथ ही KT2 200 mg लिखा है। अब ये कौन सी दवाइयां हैं जो ड्राइवर डॉक्टर ने मरीजों को लिख कर दी हैं? अगर सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के ड्राइवर ही इलाज करेंगे तो फिर किस काम के CMO, किस काम के CMS और किस काम का स्वास्थ्य मंत्रालय? अस्पताल में ड्राइवर मरीजों का इलाज करते हुए पकड़ा गया तो अस्पताल के सीएमओ हरिदत्त नेमी ने जांच कमेटी गठित करके पतली गली से बच निकलने की कोशिश की। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, सीएमओ साहब पल्ला नहीं झाड़ सकते।
8: कल से वीडियो वायरल हुआ, मैंने भी उसे देखा है। वहाँ पर सीएमएस हैं डॉक्टर पीयूष, तो डॉक्टर पीयूष से मेरी बात हुई है, तो वहाँ पर उसकी जांच बिठा दी है और जांच में जो भी जिसके भी जो दोष होगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई की।
0: अस्पताल के सीएमएस यानी चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पीयूष मिश्रा ड्राइवर पर एफआईआर की बात करके बच नहीं सकते। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, सीएमएस साहब जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते।
9: नहीं, मैंने स्पष्टीकरण ये अपना जवाब दे पहले। और तीन सदस्यीय हमने वरिष्ठ चिकित्सकों की कमेटी बनाई है और इनकी इस पूरी घटनाक्रम को उसके ड्राइवर के खिलाफ विरुद्ध एफआईआर करेंगे और इनको इनके खिलाफ हम शासन को पत्र भी लिखने जा रहे हैं कि ये अनुशासनहीनता है। बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण, ये हमें बड़ा खेद के लगता है कि सुनने में भी ये इतना बड़ा अच्छा अस्पताल जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी इसको ऊंचाई तक ले जाऊँ, इस प्रकार का बहुत ही खराब कार्य किया है इन्होंने।
0: आज तक ने इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर यानी डॉक्टर रामकेश से भी पूछा कि उनकी ओपीडी में उनकी कुर्सी पर उनका ड्राइवर इलाज करने क्यों बैठा। ड्राइवर कैसे बना डॉक्टर, डॉक्टर रामकेश का कोई बहाना नहीं चलने वाला।
10: एक वीडियो वायरल हुआ कि आपका ड्राइवर आपकी सीट पे बैठ के दबा दे रहा
11: है। सर आप महोदय, आप लोगों के माध्यम से या साहब सीएमएस साहब के माध्यम से मुझे पता चला, तत्काल प्रभाव से उसे मैंने बाहर निकाल दिया अपने से।
10: तो ये क्या पहले भी कभी बैठता था क्या?
11: नहीं, मेरे साथ रहता तो मेरी गाड़ी साफ करता था।
10: अच्छा, उसको दवा वगैरह कुछ तो नॉलेज होगा?
11: नहीं, कोई नॉलेज,
10: कोई नॉलेज नहीं। तो ये दवा किसको दे रहा था ये?
11: नहीं, वो अब हम नहीं थे। अब उसने क्या किया है ये बताया, ये पता चला है कि वो उसके जानने वाला था, उसको लिख दिया है दवा।
10: तो वो सर आप कहाँ गए थे उस समय?
11: मैं कोर्ट गया था।
10: कोर्ट गया था।
0: डॉक्टर रामकेश ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अपने ड्राइवर को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया है, लेकिन डॉक्टर रामकेश कहते हैं जब उनका ड्राइवर ओपीडी में इलाज कर रहा था वो कोर्ट गए हुए थे। अब डॉक्टर रामकेश सच बोल रहे हैं या झूठ? लेकिन आज तक को अस्पताल के सीएमएस पीयूष मिश्रा ने बताया कि उन्होंने अस्पताल का अटेंडेंट रजिस्टर चेक किया तो डॉक्टर रामकेश की कोई न्यायालय ड्यूटी नहीं थी। डॉक्टर रामकेश का कोर्ट वाला बहाना एक्सपोज।
9: ये किस समय आके कब बैठा, उस दिन कमरा में न्यायालय कार्य लिखा हुआ था, लेकिन अभी हमने उपस्थिति पंजिका को देखा तो उसमें कोई न्यायालय ड्यूटी थी नहीं इनकी पिछले लगभग 15 दिन से। लेकिन ये कमरे में नहीं थे उस समय मौजूद, समय ये वीडियो वायरल हुआ है।
0: तो क्या डॉक्टर रामकेश आराम पर थे और ड्राइवर काम पर था? कानपुर के इस सरकारी अस्पताल ने एक बार फिर से सरकारी अस्पतालों की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। कैसे सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर दिन दहाड़े खिलवाड़ किया जाता है?
12: वीडियो वायरल होने के बाद सीएमओ ने जांच की बात की है, संबंधित अस्पताल और डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगा है। डॉक्टर ने भी अपना पल्ला ये कह के झाड़ दिया है कि उसने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया है। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या जांच की खाना पूर्ति से इतने बड़ी लापरवाही को दबाया जा सकता है? ना कोई तत्काल एफआईआर, ना कोई ठोस कार्रवाई और ना कोई निलंबन। ऐसे में लोगों का प्रशासन से बड़ा सवाल है कि आखिरकार मरीजों की सुरक्षा के लिए जवाबदेही कब तय होगी?
0: रंजय सिंह के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।
3: और अब आपको दिखाते हैं द लखनऊ स्टोरी। कैसे एक लड़की को कार के बोनट पर घसीटते हुए वीडियो वायरल हुआ तो अब कहानी पूरी तरह से परत दर परत खुलती जा रही है। पीड़ित लड़की का आरोपी है कि शहनवाज नाम के लड़के ने पहले यश ठाकुर बनकर उससे दोस्ती की, उसके बाद विवाद होने पर शहनवाज ने लड़की को कार से घसीटा। अब इसमें हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो चुकी है जो इसे लव जिहाद बता रहे हैं और तगड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं।
0: लखनऊ से आई ये तस्वीरें देश भर में वायरल हो जाती हैं, जिसमें सफेद रंग की ये वर्ना कार एक महिला को बोनट के आगे घसीटते हुए दिखाई देती है। वीडियो में कार का नंबर साफ दिखता है, UP 32 KH 8090। आज तक के कैमरे पर आकाश नाम के चश्मदीद ने इस पूरी घटना की गवाही दी।
13: दीदी मतलब कि उसके ऊपर ऐसे रुक गई, रोक रोकने की कोशिश कर रही थी, तो उसने नहीं रोका, फिर यहाँ यही मेरी दुकान के सामने रोका, ठीक है। रोकने के बाद में फिर आगे रुकते रोकते वहाँ रुक गई दीदी, फिर वहाँ रुकी और दीदी बस जैसे साइड से ना साइड से मतलब बात करने की कोशिश कर रही थी, बस तुरंत ही रुक गए। रोकने के बाद में बस इतनी स्पीड में भगाया जैसे दीदी थोड़ा साइड में, दीदी फिर ऐसे रोकने को से बहुत उन गिर गई दीदी ने, तो यहाँ चोट खा गई, मेरे दुकान पे कस्टमर बैठे वो भी वीडियो बनाए।
0: कार और कार चलाने वाले शहनवाज को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन बाद में कहानी कुछ और ही निकलती है। कार के भीतर गाड़ी चला रहे शख्स का नाम शहनवाज है और जिस लड़की को इसने टक्कर मारी उसका नाम अनामिका है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। सोशल मीडिया पर अनामिका के दो वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें वो आरोपी शहनवाज के साथ एक कार में बैठी नजर आ रही है और वो खुद बता रही है कैसे दोनों की मुलाकात हुई।
14: ये मैं हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक। कली क्यों है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है। हमारे बीच में ये हुआ है, हमसे हमें छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम छोड़ नहीं रहे हैं। हमने इससे बोला है कि एक से दो महीने का मुझे टाइम दो, मैं अपने आप छोड़ दूंगी, अगर ना छोड़ा तो तुम मुझे खुद छोड़ देना बस।
15: कल मैं टकला बनवा लूंगा।
14: तुम ये चाहे टकला बनवा ले, चाहे लंगड़ा बनवा ले, चाहे एक आंख फूट जाए तब भी हम इसके साथ रहेंगे। पहचान में आए या ना आए तब भी हम इसके साथ रहेंगे अब। और मैं गई थी इसके पास, इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने नंबर मांगा था, हमने जबरदस्ती नंबर लिया था फोन से निकाल के इसके, मैंने इसे मारा था, तोड़ा था, तब नंबर इसने दिया था, तब हमारे साथ रिलेशनशिप में आया था, डर गया था बेचारा कि बहुत मारेगी अगर हमसे बात ना की।
0: आज तक ने अनामिका से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, हम आपको अनामिका का पूरा इंटरव्यू दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अनामिका ने पुलिस को बताया कि आरोपी शहनवाज ने उससे अपना असली नाम छुपाकर दोस्ती की थी। शहनवाज ने अपना नाम यश ठाकुर बताया था।
16: गाड़ी उस व्यक्ति की नहीं थी, उस व्यक्ति ने जो भी झूठ ऊट बोला है, जो मुझे प्राइमा फेसी पता चला है, तो इसकी हम लोग जांच करवाएंगे। और इसके पीछे भी अगर कोई गुट शामिल है जो धर्मांतरण करा रहा है, या कोई इस प्रकार के लोग हैं जहां पर हिंदू लड़कियां टारगेट हो रही हैं, तो उनका भी पर्दाफाश होगा।
0: वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन इसे लव जिहाद का मामला बता रहे हैं, हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
17: ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल गिरोह हो सकता है, जिस तरह से जमालुद्दीन छांगुर बाबा जैसा व्यक्ति हजारों हिंदू बेटियों को शिकार बनाया, निकाह कराया, धर्मांतरण कराया, चाहे पैसा देकर कराया चाहे जबरन कराया, तो ऐसी स्थिति में आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डीसीपी पूर्वी कार्यालय पर आज मैडम को मैं ये ज्ञापन देने आया था। ज्ञापन का प्रक्रिया क्या है कि उच्च स्तरीय जांच हो।
0: 16 सितंबर को जनेश्वर मिश्र पार्क के पास अनामिका चाय पीने पहुंची थी, इसी दौरान शहनवाज भी एक दूसरी महिला मित्र के साथ कार से वहां पहुंचा। दूसरी युवती को शहनवाज के साथ देखकर अनामिका भड़क गई और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इसके बाद शहनवाज वहां से कार लेकर निकलने लगा। शहनवाज जब कार लेकर जाने लगा तो अनामिका उसकी कार के सामने खड़ी हो गई। आरोप है कि शहनवाज ने कार आगे बढ़ा दी, इससे अनामिका कार के बोनट पर आ गई, जिसके बाद शहनवाज ने कार की स्पीड बढ़ा दी और अनामिका को घसीटते हुए चला गया। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
3: आज तक ने पीड़ित लड़की से खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं उसने क्या कहा।
14: के साथ में दो लड़कियां भी थी, यहाँ तक चाय पी रही थी, ये बहुत टाइम से मेरे साथ रिलेशनशिप में था, ठीक है। तो मतलब दो लड़कियां थी, मैंने इससे पूछना चाहिए कि वो लड़कियां कौन है, इतने में ये मुझसे चिल्लाने लगा तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये वो सब बोलने लगा, ठीक है। फिर इसका दोस्त तो ये दानिश, दोनों जो थे ना वो कार में बैठ गए आके, ठीक है। और मतलब जो लड़कियां तो थी दोनों, वो अलग पीछे वाले गेट से वो उधर चली गई, ठीक है। दोनों आए तो मुझसे मतलब चिल्लाने लगा, मैंने मतलब भागने लगे कार लेके, तो मैं सामने से इसे रोकना चाहूं कि मुझे बता के जाओ, ये रुका नहीं। उसके बाद ये मुझसे गाड़ी चढ़ा के मेरे ऊपर से, और फिर मेरा हाथ शीशे की तरफ इसने मुझे बुलाया, हाथ में अभी भी चोट है, स्वेलिंग भी है, देख लीजिए आप सब लोग, हाँ निशान पड़ा है, शीशे में मेरा पूरा हाथ दब गया था, मैं ऐसे करके हाथ निकालना चाह रही थी लेकिन शीशा ऐसे करके लॉक था, वो निकल नहीं पा रहा था,
18: इसने फंसा लिया,
14: फंस गया गया था, ठीक है, तभी तो मैं घसटी हुई, एकदम से घसीटते हुए ले गया, फिर अचानक से इसने शीशा ऐसे किया तब मेरा हाथ निकला तब हम गिर गए। इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, ये गाड़ी इनके दोस्त दानिश जो साथ में था शहनवाज का दोस्त, उसने ये बोल के बोला है कि इसे आज मार दो, सामने से आया कुछ भी करे मार दो, वहां शीशे में दब गया दबने दो, मार के चलो को मार दो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ ना, ये तो जानबूझ के गलती से होता, वो चीज अलग है, जानबूझ के मुझ पे चढ़ाएगी करना।
18: शहनवाज को आप जानती थी कि वो शहनवाज है? हम शुरुआत
14: नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम स्टार्टिंग में मिले थे, हम टोटल बता रहे हैं, हम जलवा क्लब में मिले थे, यहाँ तक कि एक हमारा वीडियो वायरल हो गया जिसमें हम वो बोल रहे हैं,
18: इसमें एक हम वीडियो बात करें, इसमें आप कह रहे हैं कि हम
14: दो वीडियो वायरल हुए हैं, एक इन्होंने और रिसेंटली डाला, वो इनके दोस्त ने शरीफ ने वायरल करवाया। शरीफ को मैंने भाई बोला था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग ऐसे ही होते हैं, बहन को भी चीट कर सकते हैं, ठीक है।
18: वीडियो में जैसे आप कह रही हैं कि जो है हम हमारी गलती नहीं, हम ब्रेकअप करें, अच्छा, क्या ये सब बता रहे हैं?
14: ये सब इन लोगों ने जबरदस्ती करवाया था, मेरी दोस्त भी उस दिन साथ में थी, ठीक है। आप
18: वीडियो जबरदस्ती बना
14: उसके एक दिन पहले इन्होंने मुझे बहुत मारा था इनका, और वो भी इन्होंने हम तुम बंटी देखा है आपने डीलअप के पास, वहां पे भी मुझे मारा, मेरे ईंट उठाने की कोशिश की, माने आप चाहे तो सीसीटीवी कैमरा 15 दिन में हटा, वहां होगा तो चेक करवा सकते हैं। डीलअप में मारा, सिक्योरिटी पूरी आ गई थी, इन लोगों ने बात दबा दी कि कुछ नहीं हुआ, आपस में लड़ाई हुई है, पेट पे मेरे लाते मारे, उसके पहले एक बार नहीं शहनवाज ने मुझे मारे, बहुत टाइम इनका दोस्त था एक आशीष गौतम, उसके सामने ये मार रहे थे मुझे,
18: मारते भी था आपको
14: बहुत, तीन ऐसा नहीं है, तीन चार बार मारा है, लेकिन मैं कब तक बर्दाश्त कर गया बताओ, जब मुझे पूरी उस दिन मारने की कोशिश की तब मैं बात बोल रहे हैं।
18: सवाल ये था कि क्या आपको मालूम था ये शहनवाज हैं?
14: नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम था, जब हम स्टार्टिंग में जलवा क्लब में इन्होंने जो वीडियो वायरल हुआ वही बता रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ कि मैं इनसे जबरदस्ती नंबर मैंने लिया था, मारा था, हम मेरी इतनी हिम्मत है इतनी पब्लिक में उस लड़के को मार के मैं जबरदस्ती फोन से नंबर ले सकती हूँ, आप सोचिए, आप बताइए ना, मुझे नहीं ले सकती हूँ ना, नंबर इन्होंने मुझे भी नहीं दिया था,
18: वीडियो उसने बनवाया था
14: जी, ये मेरी बुआ जी को नंबर दिया था, उसके पहले आशीष गौतम के सामने मारा था, तब हम लोग अलग आ गए थे कार में, तब इन्होंने वीडियो बनवाया था कि बनाओ, क्योंकि हमने इनसे बोला था हम कंप्लेन करेंगे, इतना मारा ही था मुझे कि मैं बिल्कुल होश में, मेरे यहाँ पे नीला नीला हाथ में सब पड़ा था, वो भी हम लोगों की बात स्टार्ट हुई, हमसे पूछा क्या नाम है तुम्हारा, हमने कहा मुस्कान सिंह, तो इन्होंने बोला मैं भी ठाकुर हूँ, अब ये नहीं बताया था कि मैं लखनऊ से हूँ, ठीक है, मैं कहीं भी कसम खाने के लिए तैयार हूँ, अपनी कसम, इन्होंने ये नहीं बताया था कि मैं लखनऊ से हूँ, इन्होंने ये बताया था मैं आजमगढ़ से हूँ, मैं भी ठाकुर हूँ, आयुष नाम बताया था, ठीक है, चलो कोई नहीं, तो हम बात करते रहे, नॉर्मल हमारी मिलना जुलना होने लगा, ठीक है, बात होती रही, उसके कुछ टाइम बाद मुझे ये पता चला, वो भी इन्होंने बताया था, मैंने इनका इंस्टाग्राम चेक किया था, तब उस पर दूसरा नाम आया,
18: तब आप शॉक्ड हो गए,
14: मैं फिर भी हमारे बीच में लड़ाई हुई, ठीक है, उस लड़ाई ठीक हो गया, चलो ठीक है भाई, इतने तो हम मतलब बात होती रही, ठीक है, नॉर्मल, उसके बाद ये चीजें अभी दो तीन महीने से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो गए, ये मुझे ब्लॉक कर देते हैं, चलो आपने जैसे शरीफ बोल रहे हैं कि तीन महीने पहले वो छोड़ना चाहता था, इन्होंने जबरदस्ती रह रही थी, जबरदस्ती नहीं रह रहे थे, जबरदस्ती अगर रखना चाहते अभी भी रख सकते थे ना, हम जबरदस्ती रख रहे थे, ज्यादातर इनकी भी जितनी भी दोस्त है जब भी मैंने देखा सब हिंदू है, कोई ठाकुर है कोई पंडित है।
18: ओके, तो ये अपना नाम क्या,
14: फोन होगा पास में, चेक कर लीजिए, सब सब प्रूफ मिल जाएंगे आपको,
18: तो अपने प्रोफाइल और नाम अलग बना के रखते हैं क्या?
14: नाम प्रोफाइल तो इनके इंस्टाग्राम पे है नहीं, फेसबुक का मुझे पता नहीं है, नाम जो मुझे स्टार्टिंग में बताया मुझे अपना खुद का पता है, उनका नहीं पता, बताते या नहीं बताते, और हमें ये डर है कि इनकी बेल होगी तो उसके बाद भी हम पे कुछ करे ना, मुझे अब बहुत डर लग रहा है।
18: आप चाहती क्या क्या हो इस पूरे मामले में?
14: इसके मामले में जितने मुझे जख्म आए भाई, हम तो यही चाहेंगे कि हमें भाई, हमें पब्लिक जो देख रही है ना, उनको जो गलत बताया जा रहा है, पब्लिक को यही मैं बताना चाहूंगी कि हमेशा लड़कियां गलत नहीं होती हैं, ठीक है, मेरे साथ अभी जुआ और दूसरी लड़की के साथ हो गया, जो लड़कियां कमेंट करें क्या पता उनके साथ भी हो, तब क्या करेंगी वो, तब अपने लिए लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? ये लोग मेरे वीडियो इसलिए वायरल कर रहे हैं कि मैं वो सब देख के डर जाऊं, वो चुप हो जाऊं।
19: और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे महाराष्ट्र के नासिक में अजीब और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। आवारा कुत्तों से परेशान लोगों ने पंचायत के चीफ ऑफिसर के दफ्तर पर धावा बोला और कुत्तों को ऑफिसर की टेबल पर छोड़ दिया।
20: यह है महाराष्ट्र के नासिक में पंचायत कार्यालय के मुख्य अधिकारी का दफ्तर। अचानक मुख्य अधिकारी के दफ्तर में शिवसेना यूबीटी की युवा सेना के कार्यकर्ता तीन बोरियां लेकर धावा बोलते हैं। मुख्य अधिकारी अपनी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहे होते हैं, तभी युवा सेना के कार्यकर्ता बोरियां उठाकर टेबल पर खोलते हैं तो उसमें से निकलते हैं कुत्ते, और ये देखिए कैसे कुत्ते टेबल पर दौड़ने लगते हैं। पंचायत कार्यालय के मुख्य अधिकारी हैरत में पड़ जाते हैं, आखिर ये है क्या, और कुत्ते टेबल पर कोने में जाकर फाइलों पर बैठ जाते हैं। फिर सब कुछ क्लियर होता है। जी हाँ, नासिक में आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ शिवसेना यूबीटी की युवा सेना का ये बड़ा ही अनोखा विरोध प्रदर्शन था, जिसमें दो आवारा कुत्ते बोरियों में कैद करके मुख्य अधिकारी की बेस पर छोड़ दिए जाते हैं। शिवसेना यूबीटी की युवा सेना के कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि बार बार आवारा कुत्तों के आतंक की शिकायत करने पर भी प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा था, और जब कई बार शिकायत दर्ज कराने पर भी उनकी बातें नहीं सुनी गईं, तो मुख्य अधिकारी के दफ्तर में ही उनकी मेज पर आवारा कुत्ते छोड़ दिए गए।
1: आज निपाड शहरामध्ये जर तुम्ही बघितलं, प्रत्येक गावात गल्लीत असेल, प्रत्येक चौका चौकामध्ये मोकाट कुत्र्यांचं इतकं सुळसुळाट झालेलं आहे। सहा महिन्यापासून मुख्य अधिकाऱ्यांना सांगतोय, धीरज भांबरे त्यांचं नाव आहे, सहा महिन्यापासून सांगतोय की असं असं मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न तुम्ही मनावर घ्या। अनेक लहान बालकांना चावा घेतलाय, अनेक लोकांवर महिलांवर धावून आलेले, मोकाट कुत्र्यांची परिस्थिती त्यांना दाखवली, तिथले फोटो टाकले, वारंवार सांगितलं, पण मला वाटतं लातो की भूतबातो सिने मानते। आज आम्ही त्याचा निषेध म्हणून इथं चार कुत्रे त्यांच्या टेबलवर सोडले, त्याचप्रमाणे ते कुत्रे त्यांच्या टेबलवर बसवले।
20: लोगों का दावा है कि आवारा कुत्तों की आबादी लगातार बढ़ रही है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा, आवारा कुत्तों ने कई लोगों को काटा है और प्रशासन ने बार बार शिकायत करने पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब मुख्य अधिकारी के दफ्तर में इस तरह से कुत्ते छोड़ने पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, और सरकारी काम में रुकावट डालने, कर्मचारियों पर हमला करने और दंगा करने की कोशिश के आरोप लगाए हैं। प्रवीण बी ठाकरे, नासिक आज तक।
19: और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

पाटलिपुत्र की पावन धरा से उठेगा सियासत का सबसे बड़ा शोर, जनता के सबसे बड़े सवाल, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ। पंचायत आज तक 18 सितंबर, सिर्फ आज तक पर।

प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन पर देश भर में दीपोत्सव। काशी से कोलकाता, दिल्ली और पटना से उज्जैन तक जगमगाए लाखों दिए, प्रधानमंत्री ने जताया आभार। बंगाल उपचुनाव से पहले ममता और ऋतव्रत गुट को झटका, चुनाव आयोग ने टीएमसी के निशान और नाम के इस्तेमाल पर लगाई रोक, दोनों से कल तक मांगे गए 3-3 विकल्प।

विदेश मंत्रालय का दो टूक जवाब, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत प्रतिबद्ध, अलग अलग स्रोतों से जारी रहेगी ऊर्जा खरीद। और टी20 में अभिषेक शर्मा के तूफान में उड़ा अफगानिस्तान, महज 30 गेंद में जड़ा शतक, टेस्ट खेलने वाले देशों में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड, भारत ने 127 रन से जीता मैच। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जन्मदिन पूरे धूमधाम से उनका मनाया गया, आशीर्वाद का कार्यक्रम रखा गया, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से लेकर सीएम योगी समेत दिग्गज नेताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न।

0: प्रधानमंत्री मोदी के 76वें जन्मदिन का जोरदार जश्न। कहीं केक काटा गया, कहीं दिए जलाए गए। आशीर्वाद का दिया नाम से देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम हुए। वाराणसी में भी गंगा तट पर दीपोत्सव किया गया।
1: नमो घाट पर हूँ, एक तरफ पतित पावनी माँ गंगा है जो मेरे सामने तेज प्रवाह हमें बह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है आज माहौल बनारस में अयोध्या जैसा है, क्योंकि ये जो दिए हैं ना, ये दिए यहाँ पर लग गए हैं, असंख्यों दिए जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर लाए गए हैं, लगाए गए हैं, और बच्चों ने बकायदा काफी मेहनत की है इन दियों को यहाँ बिछाने के लिए। वाइट फ्रेम यहाँ से दिखाएं एक बार और पूरा दर्शकों को यहाँ से दिखाएं कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पर नमो घाट पर दिए लगा दिए गए हैं।
0: उज्जैन समेत पूरे मध्य प्रदेश में आज दीपोत्सव की रोशनी बिखरी हुई है। महाकाल की नगरी में शिप्रा के राम घाट, दत्त अखाड़ा घाट और महाकाल लोक में 25 लाख दीप जलाए गए।
2: महाकाल की इस पवित्र नगरी से प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की, दीर्घायु होने की कामना पूरा महाकाल के हमारे सभी लोग कर रहे हैं, यहाँ के नागरिक कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पवित्र तट से माननीय प्रधानमंत्री के यशस्वी होने की कामना की जा रही है। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से करोड़ों लोगों के जीवन में जो बदलाव लाया, और इस तट की बात करें तो 800 करोड़ की अधिक सी योजना महाकाल कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री जी ने किया, जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म बढ़ा, आज यहाँ पर लोग का व्यवसाय बढ़ा है, उनके जीवन में उनके बदलाव आए हैं।
0: इसके अलावा श्रीनगर, कोलकाता और पटना में भी भव्य दीपोत्सव हुआ। और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भी 1 लाख दिए जलाए गए।
3: लगभग 1.5 लाख दिए एक समय पर जलाए जा रहे हैं, और ये जो प्रज्वलित दिए हैं जो आपको दूर तक नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे दिए इसीलिए जलाए गए हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक वादा किया था आज से 12 साल पहले, और लोगों से जो वादा किया था गुजरात के लोगों से आज से 25 साल पहले, उसको उन्होंने पूरा किया है। देखिए, हम लोग जब खुश होते हैं, जब हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसका कारण यही है कि हम बताते हैं कि किस तरीके से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, तो किस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ये दिए जो हैं इस समय उसी का सिंबल है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मोदी के जन्मदिन के मौके पर पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। पूरे विधि विधान से पूजन का अनुष्ठान हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, चिराग पासवान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू इस पूजा अर्चना में शामिल हुए।
4: सब लोग यहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए काशी विश्वनाथ का आए थे और विधिवत पूजा अर्चन का कार्य संपन्न हुआ है, और हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को वह दीर्घायु करें।
5: बाबा से ही प्रार्थना की है कि वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु उन्हें प्राप्त हो और लंबे समय तक भारत का नेतृत्व उनके हाथों में रहे, जिससे भारत आत्मनिर्भर, सुरक्षित और विकसित भारत की संकल्पना उनके नेतृत्व में 140 करोड़ भारतवासी देख सके।
0: राजनाथ सिंह ने वाराणसी से बाइक रैली को भी झंडी दिखाई, जो वाराणसी से वडनगर के लिए रवाना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उनकी